अब कुछ होना चाहिए, अब कुछ होना चाहिए, लेकिन ताकत नहीं है। आप बच्चों में तो संकल्प को पूर्ण करने की ताकत है, फॉलो फादर है ना, ब्रह्मा बाप का जन्म ही दृढ़ संकल्प से हुआ है, करना है। सोचेंगे नहीं क्या करूं क्या नहीं करूं, करना है। उस एक दृढ़ संकल्प ने इतने बच्चों का भविष्य बनाया। एक ब्रह्मा बाप ने कितनी हिम्मत रखी, आधा हिस्सा मिला और यज्ञ रचा। बाबा को अपने पार्टनर से आधा हिस्सा मिला और यज्ञ रच दिया। यज्ञ के ब्राह्मण रचे और अब देश विदेश की आत्माएं पहुंच गई है। ब्रह्मा बाबा का कितना पावरफुल संकल्प, जो जैसे ही आधा हिस्सा बिजनेस से मिला कि यज्ञ रच दिया, यज्ञ के ब्राह्मण रचे और अब देश विदेश की आत्माएं पहुंच गई है। एक ब्रह्मा बाप के दृढ़ संकल्प के कारण। तो दृढ़ संकल्प क्या नहीं कर सकता, ये तो आपके आगे एग्जाम्पल है। ब्रह्मा बाबा तो सबके आगे एग्जाम्पल है। संकल्प करते हो, बहुत अच्छे अच्छे संकल्प बाप के पास पहुंचते हैं, लेकिन उसमें दृढ़ता कम होती है। कोई बात सामने आई ना तो दृढ़ता कम हो जाती है, कोई छोटी सी बात भी सामने आई तो बस संकल्प ढीला हो जाता है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। देखो, दिल्ली वालों ने दृढ़ संकल्प किया, करना ही है, हो गया ना। सोचेंगे देखेंगे या नहीं किया, सबका दृढ़ संकल्प, निमित्त बने हुए बच्चों का सहयोग और दृढ़ संकल्प, उसने प्रैक्टिकल सफलता लाई। इसमें सबने साथ दिया और एक मत हुए। हाँ ना नहीं, एक दृढ़ मत हुई तो दृढ़ता में इतनी शक्ति है। जो कार्य आरंभ करते हैं उसमें पहले दृढ़ संकल्प का बीज डालो, उसका फल निकलना ही है। यह इतना 75 वर्ष कैसे बीता, ब्रह्मा बाप और बच्चों के साथ ने दृढ़ संकल्प से 75 वर्ष पूरे किए। बाबा कहते ब्रह्मा बाप और बच्चों के साथ ने दृढ़ संकल्प से 75 वर्ष पूरे किए। उमंग उत्साह से बढ़ते बढ़ाते रहे, तब ये 75 वर्ष पूरे किए। अभी यह संकल्प करो, आज व्यर्थ समय व्यर्थ संकल्प समाप्त करना ही है। ये दृढ़ संकल्प बाबा करे, बाबा कहे करना है कि आज व्यर्थ समय व्यर्थ संकल्प समाप्त करना ही है। जब व्यर्थ समाप्त हो जाएगा तो सदा श्रेष्ठ संकल्प का खजाना कमाल दिखाएगा। तो बाप दादा डबल विदेशियों को देख खुश है, वृद्धि भी कर रहे हैं और डबल सेवा के तरफ अटेंशन अच्छा है। सिर्फ बाप दादा यह इशारा फिर भी दे रहा है कि आपस में संस्कार मिलन की रास करो, संस्कार मिलन की रास करो। ये नहीं सोचो सेंटर तो अच्छा चल रहा है, सर्विस तो अच्छी हो रही है, लेकिन जब एक परिवार है, प्रभु परिवार है, लौकिक परिवार नहीं प्रभु परिवार है, तो प्रभु परिवार का अर्थ ही है एक दो में शुभ भावना, कल्याण की भावना। एक दो में यही संकल्प रहे कि हम सभी को साथ साथ एक दो को आगे बढ़ाते, मुक्ति का गेट खोल के साथ जाना ही है। इसलिए हर सेंटर में ऐसा वायुमंडल हो जो समझ में आवे ये 8 नहीं 10 नहीं लेकिन 10 ही एक है। ये 8 10 अलग अलग नहीं लेकिन ये 10 ही एक है।
तो दिवाली पर हर एक अपने में संकल्प करो कि अभी संस्कार मिलन की रास करनी ही है। एक भी आत्मा एक दो से दूर नहीं हो, सब एक हो, तो इस दिवाली पर संस्कार मिलन की रास करना, मन में दृढ़ संकल्प करना कि एक भी मेरे से भारी न हो। बाबा कहे यह दृढ़ संकल्प करना कि कोई एक आत्मा भी मेरे से भारी नहीं हो, सब हल्के। संस्कार नहीं मिलते हैं तो भारी होते हैं, तो बाप समझते हैं कि इस संकल्प से मुक्ति का दरवाजा खोलने के लिए जल्दी तैयार हो जाएंगे। चेक करो कोई भी हमारे से नाराज तो नहीं, लेकिन भारी भी नहीं होना चाहिए, नाराज भी नहीं होना चाहिए, भारी भी नहीं होना चाहिए। हो सकता है या हो सकता है कांध हिलाओ, हो सकता है, हो सकता है तो हाथ उठाओ। तो इस दिवाली पर अच्छी रौनक हो जाएगी। बाप दादा डबल फॉरेनर्स को रोज दिल में इमर्ज करते हैं, वतन में बाबा रोज उनको अपने दिल में इमर्ज करते हैं। क्यों क्यों इमर्ज करते हैं? क्योंकि डबल फॉरेनर्स निमित्त बने हैं सारे विश्व में बाप का नाम बाला करने के लिए। किस बात पर? कि जब ये भारतवासी नहीं है, फॉरेनर्स है, इन्होंने अपना भाग्य बना लिया तो हम क्यों रह जाए? बाबा कहे लोग ये सोचेंगे कि फॉरेनर्स ने अपना भाग्य बना लिया तो क्यों नहीं हम बनाए, क्यों हम रह जाए। यह प्रेरणा इस दिल्ली के प्रोग्राम से भारत में अच्छी फैली है, इसलिए बाप दादा सेवा के निमित्त आप सभी को इमर्ज करते हैं। भारत को जगाएंगे, जगा रहे हैं, और आगे भी ऐसे VIP तैयार करेंगे जो भारत को जगाएंगे। बाबा के डबल विदेशी बच्चे भारत के VIP को जगाएंगे, उनका अनुभव भारत वालों को जगाएगा। बाप दादा को याद है शुरू शुरू में बहुत VIPs ले आते थे, विदेशी बच्चे भी बहुत VIPs ले आते थे, प्रोग्राम्स करते थे। अभी यह सेवा नहीं है, अभी वो पहले वाली सेवा नहीं है। ऐसे VIP तैयार करो जो स्टेज पर अपना अनुभव सुनाए। अभी ज्यादा कल्चरल दिखाया, उस समय ज्यादा कल्चरल दिखाया, अनुभव भी सुनाए, लेकिन थोड़ा टाइम था। अभी ऐसे VIPs लाओ जो भारत वालों की तकदीर को जगाए। अभी भी जो फॉरेनर्स और भारत की सेवा इकट्ठी की उसका भी प्रभाव अच्छा रहा। अब मिल करके ऐसी सेवा को बढ़ाते चलो। और मुख्य बात, अपने को हर एक, चाहे भारतवासी चाहे फॉरेनर्स, जल्दी जल्दी ऐसे संपन्न बनाओ जो आप सबकी संपन्नता मुक्ति का गेट खोल दे। बस बाबा को जैसे लगन लगी है अभी मुक्ति का गेट खोलना ही है। अच्छा, चारों ओर के चाहे सामने बैठे हैं चाहे कहां भी बैठे हैं, लेकिन सबका अटेंशन मधुबन में है, बाप दादा को देख रहे हैं, मेजॉरिटी तो देख ही रहे हैं। बाबा कहे मेजॉरिटी तो देख ही रहे हैं, बाप दादा भी सभी बच्चों को, चारों ओर के बच्चों को सदा हर्षित रहने वाले, सदा डबल पुरुषार्थी, डबल पुरुषार्थी अर्थात स्व के पुरुषार्थ में भी और सेवा के पुरुषार्थ में, ऐसे डबल पुरुषार्थी और डबल निश्चय और नशे में रहने वाले, सदा बाप के साथ रहने वाले, सदा आपस में भी कल्याण और रहम की भावना में रहने वाले, एक एक बच्चे को नाम सहित बाप दादा दिल की याद प्यार दे रहे हैं। हम सब रूहानी बच्चों की
रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। फिर बाबा कहते, लेकिन आज की बात, आज बाबा ने अंडरलाइन कौन सी बात कराई, आज की बात व्यर्थ संकल्प की समाप्ति की भूल नहीं जाना। बाप दादा के पास रिकॉर्ड तो पहुंच ही जाता है, बाप दादा देखेंगे कितने तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं और एक दो को भी उमंग उत्साह दे आगे बढ़ाने वाले हैं। अगर कोई गलत भी करता है तो उसके प्रति वह गलत करता है और आप उसकी गलती का मन में संकल्प करते हो, यह करता है यह करता है यह करता है, यह भी खत्म करो। उनको सहयोग दो, श्रेष्ठ भावना दो, ऐसी सेवा करते सारे संगठन को श्रेष्ठ संकल्प वाले बनाना ही है। कोई सेंटर पर कभी भी एक दो के प्रति कोई भी और भावना नहीं हो, शुभ भावना शुभ कामना, ठीक है ना? बहुत अच्छा। अभी सभी बच्चों को बाप दादा मुबारक के साथ दिल का याद प्यार भी साथ में दे रहे हैं। अच्छा, आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, निष्काम सेवा द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणी रहम दिल भव। निष्काम सेवा द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणी रहम दिल भव। जो निष्काम सेवाधारी है उन्हें कभी यह संकल्प नहीं आ सकता कि मैंने इतना किया, मुझे इससे कुछ शान मान व महिमा मिलनी चाहिए, यह भी लेना हुआ। दाता के बच्चे अगर लेने का संकल्प भी करते हैं तो दाता नहीं हुए, ये लेना भी देने वाले के आगे शोभता नहीं। हाँ, बाबा कहे मान लेना महिमा प्राप्त करना, यह भी देने वाले के आगे शोभता नहीं। जब यह संकल्प समाप्त हो तब विश्व महाराजन का स्टेटस प्राप्त हो। ऐसा निष्काम सेवाधारी बेहद का वैरागी ही विश्व कल्याणी रहम दिल बनता है। आज का स्लोगन है, अपनी गलती दूसरे पर लगाना यह भी पर चिंतन है। अपनी गलती दूसरे पर लगाना यह भी पर चिंतन है। आज का अव्यक्त इशारा है, अब अपने दाता स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, सबसे बड़े से बड़ी देन है दाता के बच्चे बन सर्व को सहयोग देना। बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक करने में सदा सर्व के सहयोगी बनना। इसने यह कहा, यह किया, यह देखते सुनते समझते हुए भी अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा परिवर्तन कर उसे भरपूर करना, यह सबसे बड़ा दान है। यह सबसे बड़ा दान है, किसी को भरपूर करना, कोई कैसी भी आत्मा है उसको भरपूर करना। अच्छा, ओके।

ओम शांति। हम इस धरा पर महान आत्माएं हैं, पूज्य आत्माएं हैं। हम इस सृष्टि का श्रृंगार हैं। सभी अपने श्रेष्ठ स्वमान को महसूस करें। हम साधारण नहीं हैं, परम पूज्य हैं। जबकि हमारी जड़ मूर्तियों की भी इतनी मान्यता है, तो हम चेतन में तो उससे बहुत ज्यादा श्रेष्ठ हैं। हमारी पवित्रता हमारी पूज्य स्थिति का आधार है, और हमारी पवित्रता इस सृष्टि के लिए वरदान है, प्रकृति के लिए सूक्ष्म शक्ति है, संसार में सुख शांति स्थापित करने का आधार है। हमने भी बाबा के साथ इस संसार में अवतार लिया है, यहाँ पवित्रता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए, इस धरा पर सुख शांति स्थापित करने के लिए, ताकि हवाओं में भी चैन हो जाए, ताकि हवाएं भी सुखद हो जाएं, ताकि हर व्यक्ति यहाँ सुख चैन की बंसी बजा सके, क्योंकि ये सारा संसार हमारा ही परिवार है। हमें अपने इस बेहद परिवार की निरंतर पालना करनी है। अपने इस महान कर्तव्य को सदा याद रखें। ये परम आवश्यक है कि हमें अपने महान कर्तव्य स्मृति में रहें। कर्तव्यों की विस्मृति हमें स्थिति से नीचे ले आएगी। आज जरा याद रखें, मेरा परिवार बहुत बड़ा है और मैं इस परिवार की पूर्वज हूँ। मुझे अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना है। मेरे परिवार में कोई भी दुखी न हो, कोई भी परेशान न रहे, कोई भी रोता न हो, कोई भी भूखा न हो, कोई भी चिंताओं की अग्नि में न जलता हो, कोई भी एक दूसरे को कष्ट न पहुंचाता हो, यहाँ श्रेष्ठ कर्मों की गंगा बहती हो, ऐसा महान कर्तव्य मुझे करना है। तो मुझे अपनी स्थिति को सदा ही बहुत ही महान बनाए रखना है। मैं साधारण बातों में, साधारण संकल्पों में, साधारण कार्यों में रहकर अपने इस महान कर्तव्य को कैसे भूल सकता हूँ। ये महान कर्तव्य की स्मृति हमें बहुत ऊंचा उठा देगी। तो सभी गहराई से एकांत में स्थित होकर चिंतन करें, मेरा कर्तव्य कितना महान है और मेरी स्थिति कैसी है, मुझे करने कितने महान कार्य हैं और मेरे संकल्प कैसे हैं। जिनके संकल्प साधारण होंगे, जिनके बोल साधारण होंगे, जो ऐसे ही साधारण रूप से जीवन चलाते होंगे, वो भला ऐसे महान कार्य कैसे कर सकेंगे। जो इस संसार की समय पालना करेंगे, वही संसार के मालिक बन जाएंगे, विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो मैं परम पूज्य आत्मा हूँ, मैं पूर्वज हूँ। ये सदा स्मृति रहने से हमारे वाइब्रेशंस के द्वारा सर्वात्माओं की स्वतः ही पालना भी होती रहेगी। तो आइए आज हम सभी इन दोनों स्वमान के नशे में सारा दिन रहेंगे। मैं पूज्य हूँ और मैं पूर्वज हूँ, और संसार को सकास देंगे। अपने पूर्व पूज्य स्वरूप में स्थित होकर ये सीन देखेंगे। मेरे सामने हजारों करोड़ों मनुष्य आत्माएं हैं, जो मेरे द्वार पर आई हैं, जो मुझसे सुख शांति मांग रही हैं। अब मेरे ऊपर बाबा की किरणें पड़ रही हैं और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। तो आज सारा दिन हम लाइट हाउस, माइट हाउस बनकर रहेंगे, ताकि संसार को
हमसे गुड वाइब्रेशंस मिलते रहें। विधि यही, बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। ओम शांति।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अमृतधारा प्रोग्राम में मैं भक्ति आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। स्वागतम। एक सुंदर विचार के साथ करते हैं आज के प्रोग्राम की शुरुआत। कहते हैं कि सहन करने से मन, दान करने से धन और स्नान करने से तन शुद्ध होता है, लेकिन पूरा जीवन ही सुखमय और शुद्ध रहे उसके लिए आपको ईमानदार बनकर रहना बहुत जरूरी है। सचमुच हम कितने सहनशील हैं, उतने ही हम लोगों के मन में अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। दान धन का तो करते ही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम सुविचारों का दान करें, दूसरों के लिए शुभ प्रेरणाओं का दान करें, तो वो कितनी अच्छी बात है। और स्नान पानी से तो तन शुद्ध करने के लिए करते ही है, लेकिन मन को भी रोज स्नान कराना बहुत बहुत जरूरी है। दोस्तों, चलिए मन को स्नान कराना, उसके लिए चाहिए सुचिंतन, उसके लिए चाहिए एक ऐसा अलग रीति से मंथन, जो विचारों की धारा हमारे मन में बहती है, आज तक बहती रही है, उससे कुछ हटकर और भी विचार करें, जिसके लिए हम श्रीमद् भागवत कथा का मंथन, चिंतन और चर्चा करते हैं। उसे सिलसिले में हमारे स्टूडियो में उपस्थित है ज्ञानेश्वर जी, हम उनका स्वागत करेंगे। आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद भक्ति जी, और आपको और हमारे रेडियो मधुबन के सभी श्रोतागण को दिल से, मन से और आनंद से सुप्रभात, गुड मॉर्निंग और ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्ति जी, मन का स्नान सुबह सुबह उठने के बाद हम क्या कहते हैं, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए ना आए गाना चाहिए। गाना कैसे गाएंगे? ठंडा पानी अगर शरीर पे आता है तो गाना कैसे गाएंगे? ऐसे कहते हैं कि जब गीत गाने लगते हैं वो ठंड भाग जाती है। इसके ऊपर जब मैं सोच रहा था कि मन का स्नान, शरीर का स्नान ये है, और इसके लिए बताया गया कि ठंडा पानी है शरीर पे गिरता है तब हम गाना गाते हैं, तब पूरी जो तकलीफ है, थकावट है, वो दूर हो जाती है। लेकिन मन का स्नान, मन के ऊपर ठंडा पानी, ठंडा पानी का मतलब यह है कि देखिए, अगर हम किसी के प्रति ठंडा स्वभाव रखते हैं, ठंडा बर्ताव करते हैं, तो वो क्या कहते हैं, बहुत ठंडे दिल के हैं। अगर बहुत गर्म दिमाग से गर्म बर्ताव करते हैं, गर्मी वाला बर्ताव करते हैं, हॉट डिस्कशन होता है, तब क्या होता है, वो भी मन को तकलीफ देता है। लेकिन हम नर्म से, वार्म जिसको कहते हैं, ऐसे पानी से नहाते हैं, तब क्या होता है, दिल को सुकून मिलता है, मन को भी सुकून मिलता है। और इसलिए कहते हैं कि जब हम हमेशा बातें करते समय हमें ज्यादा ठंडी भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा गर्मी भी नहीं होनी चाहिए, हमारी बातों में दूसरों को सुख देने का भाव होना चाहिए। कहने का भाव यह है कि जैसे शरीर का स्नान और मन का स्नान, इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं। शरीर के स्नान के लिए तो पानी की जरूरत है, लेकिन मन के स्नान के लिए पानी की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सुविचारों की जरूरत है, दुआओं की जरूरत है, आशीर्वाद की जरूरत है, और ये हम एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकते हैं। सिर्फ सुविचार हम व्हाट्सएप पे अगर किसी को सुबह सुबह भेजे, गुड मॉर्निंग मैसेज करे, तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो डिलीट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम दिल से किसी को शुभ भावना देते हैं तो उनके तरफ पहुंचती है, और इसलिए हम हमेशा गुड मॉर्निंग जब कहते हैं और दूसरा जब हमें गुड मॉर्निंग वापस करता है, विश करता है, शुभ भावना देता है, तो आदान प्रदान शुभ भावना का जो है वो मन का स्नान है। और ऐसे स्नान हम भले दिन में 2-3 बार करें तो भी अच्छा है।
0: बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर एक कहानी का समय आ गया है जिसका नाम है हम निमित्त मात्र है। सचमुच कराने वाला करा रहा है और बस हम कर रहे हैं, ये भाव सतत निरंतर अगर हमारे मन में जागृत रहे तो कितनी सुंदर हमारे मन की भी स्थिति होगी। एक शीतलता आएगी और भगवान के प्रति स्नेह जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। दोस्तों, ये कहानी मैं समझती हूँ आप सबको ज्ञात भी हो और इस पर भी आपने कभी गौर किया हो। कहानी है महाभारत के युद्ध की। अर्जुन और उनके सारथी श्री कृष्ण जी की। कहते हैं कि जैसे ही अर्जुन का बाण छूटता था, महाभारत युद्ध में जैसे ही अर्जुन का बाण छूटता था, कर्ण का रथ दूर तक पीछे चला जाता था, और जब कर्ण का बाण छूटता तो अर्जुन का रथ 7 कदम पीछे चला जाता। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन की प्रशंसा के स्थान पर कर्ण के लिए एक बार क्या कहा? श्री कृष्ण जी ने कहा कि कितना वीर है यह कर्ण जो उनके रथ को 7 कदम पीछे धकेल देता है। जैसे ही ये बात अर्जुन ने सुनी, अर्जुन बड़े परेशान हुए। असमंजस की स्थिति में वे पूछ बैठे, हे वासुदेव, ये पक्षपात क्यों? मेरे पराक्रम की आप प्रशंसा ही नहीं करते, एवं मात्र 7 कदम पीछे धकेल देने वाले कर्ण को बारंबार वाह वाह देते हो। दोस्तों देखिए, अर्जुन जैसे वीर के मन में भी किस प्रकार की अभिमान की भावना आ गई। अब इस अभिमान की भावना को श्री कृष्ण जी ने किस प्रकार से बहुत ही सोच समझ कर जवाब दिया, सुनने के लिए आप बहुत उत्सुक होंगे। सुनते हैं एक ब्रेक के बाद। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो, ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, बहुत ही सुंदर कथा हम सुन रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम जानते नहीं, तुम्हारे रथ में महावीर हनुमान एवं स्वयं मैं वासुदेव श्री कृष्ण विराजमान है। यदि हम दोनों न होते तो तुम्हारे रथ का अभी अस्तित्व भी नहीं होता। इस रथ को 7 कदम भी पीछे हटा देना कर्ण के महाबली होने का परिचायक है। अर्जुन को यह सुनकर अपनी क्षुद्रता पर ग्लानि हुई। इस तथ्य को अर्जुन और भी अच्छी तरह तब समझ पाए दोस्तों जब युद्ध की समाप्ति हो गई। प्रत्येक दिन अर्जुन जब युद्ध से लौटते, श्री कृष्ण पहले उतरते, फिर सारथी धर्म के नाते अर्जुन को उतारते। अंतिम दिन क्या हुआ? अंतिम दिन वे बोले, हे अर्जुन, तुम पहले उतरो और थोड़ी दूर जाओ, रथ से थोड़ा दूर जाओ। भगवान के उतरते ही कुछ पल में रथ भस्म हो गया। अर्जुन आश्चर्यचकित हुए। भगवान बोले, हे पार्थ, तुम्हारा रथ तो कब का भस्म हो चुका था? भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और कर्ण के दिव्यास्त्रों से यह नष्ट हो चुका था। मेरे संकल्प ने इसे युद्ध समापन तक जीवित रखा था। अपनी श्रेष्ठता के मद में चूर हुए अर्जुन का अभिमान पल भर में ही चूर चूर हो गया। अपना सर्वस्व त्याग कर वे प्रभु के चरणों पर नतमस्तक हुए। इसलिए दोस्तों, अभिमान का व्यर्थ बोझ जब हम उतार देते हैं तब कितना हल्का महसूस कर लेते हैं। गीता श्रवण के बाद इससे बढ़कर और क्या उपदेश हो सकता था कि सब भगवान का ही किया हुआ है, हम केवल निमित्त मात्र है। काश हमारे अंदर का अर्जुन जो है वो इस बात को समझ पाए। दोस्तों, हम सब जानते हैं अर्जुन अर्थात अर्जन करने वाला, ग्रहण करने वाला। हमने तो आज तक यही समझ लिया था कि श्री कृष्ण जी और अर्जुन ये दोनों केवल मात्र महाभारत के मुख्य पात्र है। लेकिन क्या इस कथा के बाद हम इस बात को समझ रहे हैं कि हम अर्जुन तब बन सकते हैं जब हम किसी भी अच्छी बात को अर्जन करते हैं, ग्रहण करते हैं और उस अनुसार हम हमारा बर्ताव भी करते हैं। तो अर्जुन कोई एक नहीं, जो अर्जन करता है वो हर कोई अर्जुन है। और अर्जन क्या करना है? अर्जन यही करना है कि कराने वाला करा रहा है, हम केवल निमित्त मात्र है। तो सब भार, सब बोझ अगर उसे सौंप दो तो मुझे लगता है कि हमारे जीवन की नैया भी बहुत ही सुंदर, हर प्रकार से खुशियों से भरी हुई रहेगी। ज्ञानेश्वर जी, कितनी सुंदर कहानी है।
2: बिल्कुल भक्ति जी, बहुत ही सुंदर कहानी है। और ये कहानी आपने जैसे कहा भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की है, लेकिन अर्जुन सिर्फ महाभारत का जो वीर है वही अर्जुन नहीं है, हम ही अर्जुन है। ये जब भावना होगी तब मेरे ख्याल से श्रीमद् भगवद गीता समझ में आएगी। भगवान तो है, भगवान हमेशा अर्जुन का साथ देता है, वैसे भगवान मैं भी अर्जुन हूँ और मेरा साथ हमेशा भगवान दे रहा है। ये जब भावना होगी तब हम हर परिस्थिति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेरे मन में ऐसे विचार आया कि देखिए, अर्जुन तो महापराक्रमी था। महाभारत में जितना भी वर्णन है अर्जुन के पराक्रम का वर्णन है, और इतना पराक्रमी अर्जुन जो है उसके सामने कर्ण और ये कथा जो बताई गई है उसका भाव क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका रहस्य क्या है, वो जानने की अगर हम कोशिश करें तो देखिए हम भी पराक्रमी हैं। कोई भी व्यक्ति पराक्रमी है, वो करतूत उसकी बहुत अच्छी है, वो सफलता प्राप्त करती है, बहुत अच्छी है वो। लेकिन फिर भी अगर उसके मन में अहंकार आ जाता है तब क्या होता है, उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, उसकी शक्ति कम हो जाती है। और इसलिए कहते हैं अहंकार हमेशा इंसान को धोखा देता है, इंसान की शक्ति खत्म कर देता है। और ये अहंकार मन में ना आए इसके लिए ऐसे कहानियों का उपयोग होता है। मेरे मन में अगर अहंकार आता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही करता हूँ, तो क्या होगा, मैं जितनी शक्ति से करता हूँ उतना नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मेरे मन में ऐसे विचार आया कि जो कुछ हो रहा है भगवान की दया से, भगवान की मदद से हो रहा है, तो मेरी शक्ति दोगुनी हो जाती है। ये भावना मन में हमें शक्ति देती है, ये भावना मन में हमारे अहंकार को नष्ट कर देती है। और इसलिए ये हमेशा ख्याल रखना चाहिए, अगर सब कुछ भगवान करता है, मैं कुछ नहीं करता, ये भावना मन को कभी कभी क्षीण भी कर सकती है। क्योंकि जो करने वाला है भगवान है, मुझे तो कुछ करना नहीं है, मेरा कर्म मुझे करना है, मेरा कार्य मुझे करना है। लेकिन उसमें सफलता अगर नहीं मिलती है तब मुझे मायूस नहीं होना है, मैं ये कह सकता हूँ कि भगवान की इच्छा है। और अगर सफलता मिलती है तो भी मुझे अहंकार मन में नहीं आना चाहिए, मैं ये कहता हूँ ये भगवान की कृपा से हो रहा है। तो क्या होगा, हम स्थित प्रज्ञ रहते हैं। और स्थित प्रज्ञ की बहुत महिमा भगवद गीता में कही गई है, ऐसा मुझे लगता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, श्री कृष्ण और अर्जुन की बहुत सुंदर कथाओं का रोचक वर्णन हम अलग अलग प्रकार से महाभारत में आज तक सुनते ही आए हैं। लेकिन इसका सार यही है, अर्जुन ने सदा सारथी के रूप में श्री कृष्ण जी को चुना, भगवान को चुना, और इसके लिए वे सदा के लिए विजयी बन गए। तो हम भी अगर सदा अपने मन में सारथी के रूप में भगवान को रखते हैं, उसको बिठाते हैं, तो हमारी विजय हर डगर पर निश्चित है। चलिए दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं नीलम कंबोज, करनाल हरियाणा से, और आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते

रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, दशम स्कंध में जो 29वां अध्याय है उसमें बहुत ही सुंदर रास लीला का आरंभ कैसे हुआ, रास लीला का वर्णन जो हर कोई जानता है। कई बार हमने ये बहुत सुंदर चित्र भी देखे हुए है। श्री कृष्ण हर गोपिका के साथ है और उनके चेहरे के भाव देखने के बाद हम केवल वो देखते हुए भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ये बहुत ही सुंदर वर्णन है। यहाँ शुकदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। शरद ऋतु में बहुत ही सुंदर सब फूल सुगंधित होकर खिलखिलाकर महक रहे हैं और भगवान ने चीरहरण के समय गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था वो रात्र वही रात्र थी और उसको भगवान ने कैसे दिव्य बनाया। तो गोपिकाएं भी चाहती थी कि भगवान हमें अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया के सहारे निमित्त बनाकर रास क्रीड़ा हमारे साथ

0: भक्ति जी, अमन ये जो शब्द है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और बड़ा विचित्र भी है। एक तरीके से आप देखेंगे तो लगता है कि जिसको मन नहीं है वही अमन है, लेकिन ऐसी बात नहीं है।
1: अमन शांति को भी कहा जाता है।
0: बिल्कुल, अमन शांति को भी कहा जाता है, और इसलिए कहते हैं जिंदगी में अमन चैन है। तो मन नहीं है, शांति कब होती है? अगर किसी भी चीज में अगर हमारा मन है, इच्छा है, आकर्षण है, आसक्ति है, और वो अगर चीज हमें नहीं मिलती है तो क्या होगा? शांति खत्म हो जाती है, और इसलिए अमन जो है, शांति का स्वरूप जो है, वो खत्म हो जाता है। इसलिए अगर मन में इच्छा ही नहीं है, इच्छा नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि हमने कोई इच्छा करनी नहीं है, लेकिन इच्छा का मतलब है मन में आसक्ति नहीं है, तो क्या होगा? वो चीज मिले या ना मिले उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए संन्यस्त वृत्ति का भाव ये नहीं है कि हम घर बार छोड़ के संन्यास ले, लेकिन संन्यस्त वृत्ति का भाव ये है कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जय हो, जो भगवद गीता में कहा गया है, सुख भी हो और दुख भी हो उसमें मेरा मन है ही नहीं। मेरा मन अगर ईश्वर में है, भगवत प्राप्ति में है, तो फिर क्या होगा? मैं हमेशा के लिए खुश रहूंगा। और आध्यात्मिक बातें जितनी भी है, चाहे पुराण हो, भागवत कथा हो, या रामायण हो, महाभारत हो, और कोई शास्त्र हो, हर शास्त्र में, हर पुराण में, हर कथा में यही प्रयास किया गया है कि इंसान की जिंदगी खुशहाल कैसे बने। और इंसान की जिंदगी खुशहाल बनने में एक मुख्य अड़चन जो है वो है हमारा मन, हमारे मन में रही आसक्ति, और उसको अगर हम खत्म करें तो जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, और यही मकसद है ऐसा मुझे लगता है।
1: बिल्कुल, तो बहुत सुंदर वर्णन है शरद पूनम का। वैसे भी शरद ऋतु जो है वह सुहाना ऋतु है, और उसमें भी अगर पूनम मासी का चांद हो और बहुत ही सुंदर चारों दिशाओं में बहुत सुनहरा चांद का प्रकाश हो, तो फिर तो वातावरण की महिमा और ही बढ़ती है। तो वही समय था और चांद जो है वो अपनी कोमल किरणों से सारा वन अनुराग में रंग रहा था। वन के कोने कोने में चांदनी का अमृत जैसा प्रकाश फैल गया था। और ऐसे समय पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य उज्जवल रस के उद्दीपन की पूरी सामग्री उन्हें और उस वन को देखकर अपनी बांसुरी पर मन को हरण करने वाली काम बीज क्लिम की अस्पष्ट एवं मधुर तान छेड़ी। ज्ञानेश्वर जी, वैसे भी मंत्र जो है उसमें भी एक ये शब्द आता है, ओम ह्रीम क्लिम, और कहते हैं कि क्लिम मंत्र जो है वो काम बीज का मंत्र है, मन में कामनाओं का पैदा होना। और यहाँ भी यही भागवतकार हमें बताना चाहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी हमेशा उनकी बांसुरी पर गोपियों का मन जो है उसका हरण करते थे। बहुत सुंदर वर्णन हम सब ने अलग अलग प्रकार से सुना हुआ है, तो यहाँ भी भागवतकार यही वर्णन करते हैं।
0: बिल्कुल, तो मुरली है, श्री कृष्ण जी की बांसुरी है, मुरली है, और उसके जो स्वर है, उसकी जो धुन है, उससे क्या होगा? गोपियों का आकर्षण बढ़ता है और कामना मन में पैदा होती है, क्लीन,
1: और यहाँ शुद्ध कामना है।
0: बिल्कुल, ये कामना जो होती है वो अगर हमारी शुद्ध है, मेरी कामना है श्री कृष्ण प्राप्ति की, मेरी कामना है भगवत प्राप्ति की, मेरी कामना है हमेशा खुश रहने की, खुशी की, तो क्या होगा? हम हमेशा खुश रहेंगे। तो कामना क्या करना है ये भी हमें देखना है, और कामना जो होती है, पूजा विधि जो होती है उसमें भी हम संकल्प करते हैं, उसमें भी कुछ कामना है,
1: मनोकामना बोलते हैं, हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। तो यहाँ भागवतकार इस श्रृंगार रस को बहुत ही सुंदर रीति से वर्णन करते हैं, ऐसा मुझे लगता है।
0: बिल्कुल, और श्रृंगार रस जो है वो नवरसों में एक बहुत महत्वपूर्ण रस है। लेकिन ये श्रृंगार क्या है? देखिए, श्रृंगार ऐसे कहते हैं कि अगर कोई स्त्री जो है वो तैयार होती है उसको भी श्रृंगार कहते हैं। अगर वो गालों के ऊपर लाली लगाती है, आंखों में काजल लगाती है।

0: बाल सवारती है तो भी वो श्रृंगार कहा जाता है, ऐसे ही अगर हम भी श्रृंगार करें और ये कल्पना करें कि भगवान मेरा श्रृंगार कर रहा है, मेरी होठों में हमेशा मुस्कान रहे, मेरी आंखों में हमेशा खुशी रहे, आनंद रहे, मेरे चेहरे पे हमेशा प्रसन्नता रहे, ऐसा अगर श्रृंगार होता है वो श्रृंगार भी हमेशा के लिए फायदेमंद होता है, ऐसा मुझे लगता है।
1: बिल्कुल, और यहाँ भी दोस्तों वही सुंदर भाव है, और इसीलिए हमने कई बार ऐसे सुंदर चित्र देखे हुए हैं जो श्री कृष्ण हर गोपी के साथ दिखाया है। श्री कृष्ण तो इतने नहीं थे लेकिन गोपियां तो बहुत सारी थी। तो क्या ये आत्मा और परमात्मा का वर्णन करना चाहते हैं? भागवतकार आखिर इस बात को किस प्रकार से स्पष्ट करना चाहते हैं? हम जरूर इस पर चिंतन करेंगे एक ब्रेक के बाद। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट है। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूँ ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम यू वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। गोपिकाएं, श्रीमद् भागवत कार कहते हैं गोपी माना क्या, गो अर्थात इंद्रिय और पी अर्थात उनको पीने वाली। तो इंद्रियों का दमन करना यहाँ बताया है, इंद्रियों की अनासक्त भाव का यहाँ वर्णन है, न कि श्रृंगार रस में वो आसक्तियां है। और भागवतकार कहते हैं कि सब गोपिकाएं जो है वो एक दूसरे को सूचना देने लगे। श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने की उनके अंदर जो लालसा थी वो अभी पूर्ण हो रही थी, ऐसा भी बहुत सुंदर वर्णन है। और जैसे ही श्री कृष्ण ने बांसुरी की तान छेड़ी, गोपिकाएं जो भी काम कर रही थी उन्होंने वो ध्वनि जब सुना तो जो गोपियां दूध दूह रही थी अत्यंत उत्सुकतावश उन्होंने अपना काम छोड़ दिया और चल पड़ी। जो चूल्हे पर दूध आटा रही थी वे उफनता हुआ दूध छोड़कर वहां से जैसे कि वैसी चली पड़ी। जो भोजन परस रही थी वो परोसना छोड़कर चल पड़ी। जो छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी उन्होंने भी दूध पिलाना छोड़ दिया। जो पतियों की सेवा कर रही थी उन्होंने अपनी सेवा छोड़ दी। जो स्वयं भोजन कर रही थी उन्होंने अपना भोजन करना भी छोड़ दिया। और ऐसी सारी गोपिकाएं जैसे ही मुरली की तान सुनी वो चल पड़ी। ज्ञानेश्वर जी कितना सुंदर वर्णन है, ऐसा भागवतकार नहीं कहते हैं कि उन्होंने काम आधा छोड़ा इसीलिए घर वालों से उनके ऊपर कुछ बीती, लेकिन यहाँ वो प्रेम भाव है, यहाँ वो समर्पण भाव भागवतकार बताना चाहते हैं कि भगवान की ये एक धुन से मन की स्थिति कैसी है। और हम सब जैसे कि आत्मा रूप में गोपी गाए हैं और एक परमात्मा जो है उसकी धुन पर कहो, उसके इशारे पर कहो या उसकी एक सुंदर तान पर कहो, हम भी अपना देह भान देह बुद्धि भूल जाते हैं और परमात्मा में समर्पण होने का जो हमारा एक बहुत सुंदर भाव है वो उफन कर आता है, ऐसा मुझे लगता है।
1: बिल्कुल भक्ति जी, जैसे हम कहते हैं कि भागवत कथा और भागवतकार जब भी कोई कथा सुनाते हैं, कथा लिखते हैं, तो उसके पीछे का भाव हमेशा कल्याणकारी होता है। अभी देखिए, गोपियां जब मुरली की धुन बांसुरी की धुन सुनते हैं तब काम छोड़ के चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम भोजन कर रहे हैं तो भोजन करते समय भोजन छोड़ के हमें भागना नहीं है, लेकिन भोजन करते समय हमें उसका ध्यान करना है, श्री कृष्ण जी के पास जाना है। उसका मतलब यह है कि भगवान के पास मन से जाना है, ना कि शरीर से। बहुत बार ऐसे कहते हैं कि हम यात्रा करते हैं, यात्रा सफल होने के लिए बहुत बार धक्के खाते हैं। इसका मतलब यह नहीं यात्रा नहीं करनी है, यात्रा जरूर करनी है, अपनी आस्था के अनुसार करनी है, लेकिन जब भी मैं यात्रा नहीं करता हूँ शरीर की तब मन की यात्रा जरूर करनी है। और मन अगर हम भगवान के पास लगा के रखे तो उसका आनंद है। और इसलिए कहते हैं कि हर रिश्ता जो है वो भगवान से जोड़ना चाहिए। मित्र है, सखा है, या पति है, या और कोई रिश्ता है, माता पिता, ये सब रिश्ते जो है भगवान से अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, जब भी भगवान का बुलावा आया इसका मतलब श्री कृष्ण जी को मन में रखना है, श्री कृष्ण जी का भाव या भक्ति मन में रखनी है और ये कहना है कि भगवान मुझे खिला रहा है, मैं खा रहा हूँ भगवान खिला रहा है, मैं पानी पी रहा हूँ भगवान पिला रहा है। और इतना भी नहीं, माता अगर स्तनपान करती है बच्चे के लिए वो भी अगर उसी भाव से करे तो क्या होगा, बच्चे के ऊपर बहुत ही अच्छा असर होगा। और इसलिए बचपन से ही अगर हम खुद के ऊपर और हमारे बालकों के ऊपर संस्कार अच्छा करें तो बहुत ही कल्याण होगा। और शायद यही भाव यहाँ दिखाना है। और दूसरी चीज, आध्यात्मिक रीति से देखे तो गोपिका जो है वो हम आत्मा है और श्री कृष्ण जी है वो परमात्मा है। और आपने जैसे कहा एक ही समय अनेक गोपियों के साथ श्री कृष्ण जी थे, तो अनेक श्री कृष्ण जी तो थे नहीं, एक भगवान है और ये भगवान अनेकों के साथ मदद करता है, अनेकों के साथ रहता है। इसका मतलब यह है कि जैसे देखिए, अगर मैं कहीं जगह हूँ, आप कहीं जगह है, मैंने भगवान को याद किया, मैंने भगवान की मदद मांगी और आपने भी मांगी, तो उस समय ये नहीं होता कि भगवान ऑल द लाइन्स इन दिस रूट आर बिजी, प्लीज डायल आफ्टर सम टाइम, ऐसे नहीं आता। भगवान हर जगह पहुंचता है और यही भाव दिखाने के लिए श्री कृष्ण जी सभी गोपियों के साथ है, ये दिखाया गया होगा, ऐसा मुझे लगता है।
0: बिल्कुल, और इसीलिए ज्ञानेश्वर जी यहाँ बहुत एक सुंदर शब्द का वर्णन भागवतकार करते हैं। वो कहते हैं, परीक्षित, यद्यपि उनका उस समय श्री कृष्ण के प्रति जार भाव भी था, तथापि कहीं सत्य वस्तु भी भाव की अपेक्षा रखती है। उन्होंने जैसे ही श्री कृष्ण को आलिंगन किया, वो तो स्वयं परमात्मा थे, इसलिए उन्होंने पाप पुण्य रूप कर्म के परिणाम से बने हुए गुणमय शरीर का परित्याग किया। यह शरीर का भान कैसे चला जाता है? और फिर कहते हैं कि भगवान की लीला में सम्मिलित होने के कारण योग्य दिव्य अप्राकृत शरीर उसी समय उन्हें प्राप्त हुआ। बहुत सुंदर बात है, यहाँ हमारी बुद्धि जो है वो बहुत सीमित विचार करती है, लेकिन मुझे लगता है ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का अत्युच्च जो क्षण है, उस क्षण का वर्णन रास लीला में करना चाहते हैं भागवतकार।
1: बिल्कुल, और दुख की बात यह है कि जब भी हम श्री कृष्ण जी और गोपियों का वर्णन देखते हैं, तब हम वही देखते हैं कि शरीर का भान है, शारीरिक आकर्षण है, और इसके परे जाके हम जब विचार करेंगे तब हमें श्रीमद् भागवत कथा समझ में आएगी। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसे नहीं होता है, हर कोई श्री कृष्ण जी या गोपिकाओं के शरीर में ही फंसे रहते हैं, उनका श्रृंगारिक वर्णन करते हैं, उसके परे जाना चाहिए। और इसलिए कहते हैं कि गोपिकाओं ने भले शारीरिक भान से, शारीरिक आकर्षण से श्री कृष्ण जी को चाहा, श्री कृष्ण जी को आलिंगन दिया, लेकिन क्या हो गया, अंत में शरीर का भान छूट गया। तो भले शारीरिक आकर्षण शुरुआत में होगा, लेकिन जब भगवत प्राप्ति होगी, भगवान से मिलन होगा, तब शारीरिक आकर्षण अपने आप निकल जाएगा और हम आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, और सूक्ष्म शरीर जो है वो हम धारण कर सकते हैं, जिसे हम ऑरा कहते हैं। और वो ऑरा जब हमारा पवित्र हो जाता है, तब हर किसी को हम शक्ति दे सकते हैं, साक्षात्कार करा सकते हैं और देवता स्वरूप के नजदीक जा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है।
0: बिल्कुल दोस्तों, बहुत सुंदर, बहुत महीन और बहुत ही गुह्य राज है इन सब बातों में। मुझे लगता है हम अगर उस एकाग्र भाव से इन सब बातों का फिर से रसक ग्रहण करें, तो हमें भी भागवतकारों का जो आशय है, उनका जो कहना है, उनकी जो भावना है, उसका बहुत ही समर्पक रूप से आकलन होगा। और यही आकलन कराने के लिए भागवतकारों ने बहुत सुंदर रास लीला का वर्णन किया है। चलिए दोस्तों, इन्हीं सभी बातों के साथ मैं भक्ति अपने वाणी को यहाँ ही विराम देती हूँ। फिर से मिलेंगे अमृत धारा में।

0: हेलो सर, मैं स्वाति बोल रही हूँ आपके खाई बैंक से। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर।
1: सावधान रहे, ये एक स्कैम कॉल है। अपना ओटीपी या एटीएम पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। समाधान में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, संसार का हर एक व्यक्ति अपना सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास चाहता है और उसमें भी विशेषकर युवा वर्ग अपना व्यक्तित्व बहुत ही निखारना चाहता है, उसे संवारना चाहता है। यही कारण है कि हम चर्चा कर रहे हैं युवा वर्ग के लिए कि वो किस प्रकार अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकता है। कल हम लोगों ने चर्चा की शारीरिक व्यक्तित्व के बारे में कि किस प्रकार आदतें, व्यक्ति का स्वास्थ्य और साथ ही उसका वेशभूषा किस प्रकार से उसके व्यक्तित्व में चार चांद लगाते हैं और किन बातों पर वो ध्यान रखे। इसी चर्चा को हम आज भी आगे बढ़ाएंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। दादा जी, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक्स।
0: राता जी, व्यक्तित्व की जब बात आती है तो हर एक व्यक्ति के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो कैसा भी है, चाहे गरीब है, अमीर है, किसी भी वर्ग का है, किसी भी जाति धर्म का है, वो चाहता है कि वो एक आकर्षक व्यक्तित्व का धनी बने। कल आपने शारीरिक व्यक्तित्व की बहुत सुंदर सुंदर बातें कही थी और एक बात जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि वो चर्चा अधूरी रह गई थी, नींद। नींद एक बहुत आवश्यक पहलू है। कई बार हम हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो हम बहुत ही थके थके से महसूस करते हैं अपने आप को और दूसरों को भी, हमारे व्यक्तित्व में कोई उमंग और उत्साह दिखाई नहीं देता। तो नींद के विषय में भी आप जरूर थोड़ा प्रकाश डालें।
1: बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है मनुष्य जीवन का नींद, और नींद में भी बहुत गहरी नींद, साउंड स्लीप
0: जी।
1: क्योंकि अगर बहुत स्वप्न आते रहें, नींद में भी मन इधर उधर भटकता रहे, तो बहुत लंबा समय नींद करने के बाद भी मनुष्य फ्रेश नहीं होगा। और जब वो उठेगा तो सुस्ती को लिए उठेगा, थकान के साथ उठेगा। वो कहेगा मैं 10 घंटे तो सो लिया, फिर भी मुझे बहुत थकान है, डॉक्टरों के पास जाएगा। लेकिन वास्तव में गहरी नींद हमारे ब्रेन को एनर्जी देती है, और ब्रेन एक वंडरफुल रचना है इस संसार की, इस देह को चलाने की। और देखिए, हर मनुष्य के पास एक ब्रेन है, मैं कहूँगा बहुत सुंदर ब्रेन है। उसको एनर्जेटिक रखना ये भी एक सुंदर पर्सनालिटी के लिए बहुत आवश्यक है। तो अच्छी नींद, कल भी हमने चर्चा की कि 10 से और 2 बजे तक की जो नींद है, ये वास्तव में नींद का समय है। प्रकृति भी उस तरह की है उस समय। अगर 4 घंटे किसी को गहरी नींद आ जाए तो वही नींद उसकी दूसरे समय की 8 घंटे नींद के बराबर हो जाती है। तो विद्यार्थियों को, युवकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो 10:30 तक अपनी दिनचर्या को पूर्ण करें, सो जाएं, और फिर सवेरे उठकर जो बाकी तैयारी करनी है वो करें।
0: आजकल चाहे वो बड़े शहरों की बात हो, कस्बों की बात हो, युवा वर्ग में एक प्रचलन, विद्यार्थियों में एक प्रचलन चल पड़ा है कि वो देर रात तक जागते हैं, उसके बाद देर सुबह उठते हैं। तो इस प्रकार से उनके व्यक्तित्व में भी कई बार इस बात का बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है, और कैसे इसमें परिवर्तन लाएं?
1: हाँ, बिल्कुल, न केवल युवकों में लेकिन बड़े भी बहुत लोग 12-12 बजे तक होटलों में जा रहे हैं, फिर देर से सो रहे हैं 1 बजे तक, फिर 9-10 बजे तक सो रहे हैं। तो इन सब चीजों का इफेक्ट उसके ब्रेन पर बहुत बुरा पड़ता है। विद्यार्थी मान लो रात को 12 बजे, 1-2 बजे तक स्टडी कर रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट है कि सारा दिन स्टडी करने के बाद उनका ब्रेन थक गया होगा। अब वो पढ़ रहे हैं ये सोच के कि हम और तैयारी कर लें, ये भी तैयार कर लें, ये भी तैयार कर लें, लेकिन ब्रेन तो रेस्ट चाहता है, उस पर हम एक दबाव डाल रहे हैं, तो वो टेंशन में भी है ब्रेन, तो इससे कभी भी अच्छे परिणाम नहीं होंगे। और उसके बाद जो नींद भी आएगी, अगर गहरी आ गई तो बहुत अच्छी बात है, तो ब्रेन बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, और नहीं आई तो फिर ब्रेन में कठिनाई पैदा होंगी, लोगों को जिसको कहते हैं अटैक हो जाता है ब्रेन पर, कुछ भी उसकी एफिशिएंसी नष्ट हो जाती है, ऐसा अनुभव होगा। इसलिए सहज समाधान के हर मनुष्य को अपनी दिनचर्या को फिक्स करना चाहिए। ये भी नहीं कि रात को देर तक टीवी देखकर सो रहे हैं, क्योंकि जो लोग टीवी देखकर सोते हैं उनको भी गहरी नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो सीन उनके सबकॉन्शियस माइंड में अंकित हो जाएंगे और वो नींद में उभरते रहेंगे, कुछ चिंतन जैसे कि चलता ही रहेगा। इसलिए लक्ष्य रख लेना चाहिए 10-10:30 बजे सब समाप्त, और कुछ अच्छे चिंतन के साथ निद्रा देवी की गोद में हम जाएंगे तो नींद बहुत गहरी होगी, सवेरे बहुत फ्रेश उठेंगे और इससे ये जो बाकी समस्याएं हैं ये समाप्त हो जाएंगी।
0: बिल्कुल, कई बार हम ये मान के चलते हैं व्रता जी कि अब ये हमारे जीवन का अंग बन गया है और हम परिवर्तन के लिए प्रयास नहीं करते, पुरुषार्थ नहीं करते। तो जरूर युवा वर्ग को भी यदि अपना सर्वांगीण विकास करना है, अपने शारीरिक व्यक्तित्व को निखारना है, तो जरूर इस आदत में भी थोड़ा परिवर्तन अवश्य लाएं कि जल्दी सो जाएं और थोड़ा जल्दी उठने का प्रयास।
1: परिवर्तन के लिए मनुष्य को तैयार रहना ही चाहिए पूरा जीवन, जो भी चीजें उसके काम की हों। ये तो एक फील्ड की हम बात कर रहे हैं, कहीं उसे विचारों का भी परिवर्तन करना पड़े, कहीं उसे अपने व्यवहार में भी परिवर्तन करना पड़े, कहीं उसे अपने संस्कारों में भी परिवर्तन करना पड़े, तो परिवर्तन के लिए एक समझदार व्यक्ति को हमेशा ही तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सब कुछ भी तो बदल रहा है। अगर हम उन्हीं चीजों को अपनाते चलेंगे जो अब से 30 साल पहले थी, 50 साल पहले थी, तो निश्चित रूप से हम दौड़ में पीछे रह जाएंगे। इसलिए परिवर्तन के लिए तैयार हों और जरा सवेरे उठकर तो देखें। ठीक है, जो राजयोग का अभ्यास करते हो तो 4 बजे उठेंगे, लेकिन आम लोग सूर्योदय से पहले उठें, 5 उठें 5:30 उठें और देखें प्रकृति कितनी सुंदर है, ये परमात्मा की रचना कितनी सौंदर्य से भरपूर है और उसका मनुष्य के ब्रेन पर, उसके व्यक्तित्व पर कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति यदि सवेरे उठकर आधा घंटा आराम से टहल ले, वॉकिंग करे और कुछ सुंदर चिंतन में वो समय बिताए, तो वो पाएगा कि जैसे उसने अपने को चार्ज कर लिया सवेरे सवेरे और ये चार्ज्ड स्थिति सारा दिन उसको सुख में व्यतीत करने में मदद करेगी।
0: वैसे भी एक इंग्लिश में कहावत भी है व्रता जी कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अस हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो ये बात बहुत सोच समझ करके ही कही गई होगी कि जल्दी सो जाना और जल्दी उठ जाना, ये स्वास्थ्य के लिए भी और अन्य शारीरिक जो हमारे क्षेत्र है या हमारे विकास के जो क्षेत्र हैं उन सब के लिए बहुत आवश्यक,
1: उनके लिए भी आवश्यक है। देखिए हेल्दी लाइफ के लिए मनुष्य जल्दी उठेगा, उसके पास 2 घंटे हैं, वही व्यक्ति 9 बजे उठ रहा है और उसे फटाफट काम पर जाना है, तो एक तो उसने टेंशन को इनवाइट कर लिया, दूसरा उसके पास अपने लिए समय नहीं रहा कि वो आधा पौना घंटा व्यायाम में दे, कुछ पठन पाठन में दे, कुछ अच्छे चिंतन में वो लगाए, ऐसा समय उसके पास नहीं बचता। जो व्यक्ति सवेरे जल्दी उठ जाएगा वो अपने को सारा दिन बहुत रिलैक्स फील करेगा, हल्का फील करेगा और उसके पास समय होगा अपने लिए। पर इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि सवेरे के समय, क्योंकि मनुष्य का मन शांत होता है इसलिए उसकी बुद्धि का लेवल बहुत ऊंचाई पर होता है, वो थोड़ा पढ़ेगा ज्यादा ग्रहण करेगा और ये एक सुंदर तरीका हो जाएगा अपनी एकाग्रता को बढ़ाने का, अपनी मेमोरी पावर में विकास करने का।
0: आपने एक बहुत सुंदर बात कही व्रता जी कि एक तो सुबह उठना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण ये भी है कि हम उस समय कुछ आध्यात्मिक पठन पाठन अवश्य करें, एक अच्छा चिंतन अवश्य करें, क्योंकि आमतौर पर आज देखने में ये आता है कि जैसे ही व्यक्ति उठता है, भले वो 6 बजे उठ रहा है, 7 बजे उठ रहा है, 8 बजे उठ रहा है, जैसे ही उठता है या तो टीवी ऑन कर लेता है या न्यूज़पेपर लेकर के बैठ जाता है कि आज का समाचार क्या है, तो जैसे ही उसके अंदर बहुत सारी नेगेटिव इन्फॉर्मेशंस पहले से ही चली जाती हैं, तो शायद उसके व्यक्तित्व पे, निजर्य पे भी बहुत ज्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। तो एक चीज बहुत अच्छी तरह से ये समझ ले वो और जान ले कि मुझे सुबह उठ करके आध्यात्मिक पठन पाठन से ही दिनचर्या की शुरुआत।
1: मैं यही इसी बारे में कुछ कहना चाहता हूं कि आम लोग इसलिए भी जल्दी नहीं उठते कि वो करें क्या,
0: राइट,
1: तो वो बोर हो जाते हैं कि इतना लंबा समय कैसे पास करें। तो एक सुंदर प्रोग्राम हर मनुष्य के पास सवेरे के लिए 2 घंटे के समय को यूज करने का होना चाहिए। भाई हम आधा घंटा घूम के आएंगे, हम आधा पौना घंटा अच्छी तरह व्यायाम करेंगे, हम आधा घंटा कुछ सत साहित्य का अध्ययन करेंगे, फिर भले ही टीवी आदि भी देखेंगे तो निगेटिव चीजें हमारे ब्रेन में एंटर नहीं करेंगी। तो एक सुंदर प्रोग्राम लेकर यदि मनुष्य चलेगा तो उसका ये समय वास्तव में उसके लिए अति अति कल्याणकारी हो जाएगा।
0: जी, वैसे भी संसार के जितने भी महापुरुष हुए हैं भ्राता जी, वो सब बहुत जल्दी उठ जाया करते थे। जितने भी विचारक हैं, विद्वान हैं, वो भी सुबह के महत्व को समझते हैं। तो जरूर अपने शारीरिक व्यक्तित्व को श्रेष्ठ करने के लिए हमारे युवा वर्ग को भी सुबह उठने की आदत अवश्य डालनी
1: चाहिए। इसमें ये भी जान लेना चाहिए कि प्रकृति में ये एक ऐसा बैलेंस है कि सोने का जो पीरियड है वो समाप्त हो जाता है और अर्ली मॉर्निंग के जो आवर्स हैं ये इस समय में प्रकृति मनुष्य को बहुत कुछ देने के लिए तैयार है। ये बात एक डी फिलोसफी की है, बहुत लोग इसे जानते नहीं, कि सूर्योदय से पहले 2-3 घंटा पहले प्रकृति मनुष्य को बहुत कुछ देने के लिए तत्पर है। अगर मनुष्य उस समय को सोने में व्यतीत कर रहा, वास्तव में वो सोना भी नहीं होता, एक तरह की सुस्ती जैसी होती है, तो उन चीजों से वो वंचित है। तो जरा सवेरे उठकर प्रकृति जो कुछ हमें दे रही है उसका हम लाभ उठाएं, तो ये हमारे व्यक्तित्व को चमकाने के लिए बहुत सुंदर बात होगी।
0: तो भ्राता जी, शारीरिक व्यक्तित्व में जैसे हम लोगों ने चर्चा की, एक तो वेशभूषा पे ध्यान दिया जाए, हमारी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत पॉजिटिव हो, इसी प्रकार हमारी कुछ बहुत सुंदर और श्रेष्ठ आदतें हो, हमारा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा हो, जैसे अभी आपने कहा हमारी दिनचर्या भी बहुत व्यवस्थित हो। तो ये तो भ्राता जी रही शारीरिक व्यक्तित्व निखारने के लिए हम इस प्रकार की बातों का ध्यान रखें। आपने व्यवहारिक व्यक्तित्व की भी बात कही थी, तो इसमें कौन कौन सी बातें शामिल हैं?
1: देखिए, व्यवहार तो मनुष्य के लिए, मनुष्य का एक दर्पण है दूसरों के लिए
0: जी।
1: जैसा उसका व्यवहार होगा वैसी छाप दूसरे मनुष्यों पर उसकी पड़ेगी। एक व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा हो लेकिन वो व्यवहारिक न हो, उसमें रॉयल मैनर्स न हो, तो लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। हमने ऐसे बहुत सारे लोग देखे, युवक देखे, जिनके पास 4-4, 5-5 डिग्रीज हैं, लेकिन उनके चेहरों पर मुरझाहट रहती है, खुशी की कोई झलक दिखाई नहीं देती। उसको, उनको इसकी भी अनुभूति नहीं होती कि वो वेल एजुकेटेड हैं तो उन्हें कुछ रॉयल्टी से रहना चाहिए, वो मैनर्स को के बारे में ख्याल ही नहीं करते हैं। तो इससे उनका जो चमकने वाला एक व्यक्तित्व है वो जैसे धूमिल हो जाता है। तो व्यवहार सचमुच एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, गांव की माताएं हमने देखी, जो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन ऐसी अच्छी व्यवहारिक हैं, ये लोगों के दिल को अट्रैक्ट कर लेती हैं तुरंत, कि और पढ़े लिखे लोग समझते हैं कि इनके पास रहेंगे तो हमें जीवन के कई गुर सीखने को मिलेंगे।
0: जी जी, जब व्यवहारिकता की बात आती है भ्राता जी, तो मूल रूप से बोल के माध्यम से हम व्यवहार में आते हैं। तो कई बार लोगों के बोल ऐसे होते हैं जो लोगों का जो व्यक्तित्व है वो दिखाई दे जाता है। जैसे कहा भी गया है कि हमारा शरीर एक दुकान की तरह है, मुख शटर है उसका, जैसे ये शटर खुलता है तो वैसे ही पता चल जाता है कि ये जो दुकान है वो कोयले की है या हीरे की है। तो बोल बहुत महत्वपूर्ण है, जिसपे लोग कई बार शायद ध्यान नहीं दे पाते। तो एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए, व्यवहारिक व्यक्तित्व के लिए इसकी कितनी महत्ता है?
1: बिल्कुल संपूर्ण महत्व है। अगर मनुष्य बोलना ही न जानता हो तो उसकी नॉलेज का, उसकी डिग्रियों का, उसके व्यक्तित्व का मूल्य ही कितना रह जाता है। देखिए, एक बच्चा भी 2 साल तक बोलना सीख जाता है, पर कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं कि 50 साल में बोलना नहीं सीखे। जैसे आपने उदाहरण दिया मुख को शटर कहा, मैं इसका इसको एक और बात कहूंगा। ये बॉडी हमारी एक सुंदर फैक्ट्री है
0: जी।
1: और मुख इसकी चिमनी भी है। तो जिस चिमनी से कई कई लोग धुआं निकालते रहते हैं, मुंह खुला और धुआं निकला तो लोग परेशान होते हैं,
0: दूर भागने लगते हैं,
1: घुटने लगेगा ना दम लोगों का, तो उनके शब्द सुन के हर व्यक्ति परेशान होने लगता है और लोग यही सोचते हैं कि ये व्यक्ति चुप ही रहे तो अच्छा ही है। तो सचमुच बोल हमारे रॉयल मैनर्स के प्रतीक हैं। बोल किसी के महावाक्य बन जाते हैं, किसी के बोल वरदान बन जाते हैं, किसी के बोल लोग टेप रिकॉर्ड कर लेते हैं, सदा ही सुनने के लिए तत्पर रहते हैं, और किसी के बोल कटुता से भरपूर हो जाते हैं, किसी के बोल दूसरों को श्रापित करने वाले होते हैं, किसी के बोल अहंकार से भरे हुए नजर आते हैं, तो ये अच्छे मैनर्स नहीं होते हैं। तो हम अपने बोल में बहुत मधुरता लाएं, उसमें क्रोध जरा भी ना हो, बोलने के जो शब्द हमारे हों उनका भी चयन बहुत सुंदर ढंग से हम करें। कई बार लोग, जैसा आपने देखा होगा, आपको भी कई लोग मिलते होंगे, कई लोग बड़े भी और छोटे भी, भाई हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हम तो जो बात कहनी सीधी सीधी कहते हैं, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन ये एक रॉयल पर्सनैलिटी नहीं है। अच्छी बात अच्छे शब्दों में कहना
0: जी,
1: सत्यता को सभ्यता पूर्वक कहना, कौन बात किस समय पर कहनी है इसमें विवेकपूर्णता का परिचय देना, ये परम आवश्यक है। हर बात हर जगह बोल देना तो लोग ऐसे व्यक्ति को कभी पसंद नहीं करते हैं और उससे दूर भागते हैं, उसके व्यक्तित्व का आकर्षण किसी को भी नहीं होता है। इसलिए हम इतना ध्यान दे दें कि हमारे बोल बहुत रॉयल हों, हमारे बोल बहुत सुखदायी हों, हमारे बोल दूसरों के लिए प्रोत्साहन हो, प्रेरक हो, ताकि किसी को कोई भी समस्या हो जाए, कोई भी टेंशन हो जाए तो हमारे पास आ जाएं और उन्हें विश्वास हो कि ये दो बोल बोलेंगे और हम रिलैक्स होकर आएंगे।
0: वैसे भी कहते हैं ब्रदर जी, कोयल और कौवा दोनों ही काले हैं, लेकिन कौवे की आवाज कोई नहीं सुनना चाहता क्योंकि वो कर्कश है, और वहीं कोयल की आवाज सभी सुनना चाहते हैं क्योंकि वो मधुर है। तो हम अपनी वाणी में इस मधुरता को अवश्य शामिल करें यदि हम अपने व्यवहारिक व्यक्तित्व को बहुत श्रेष्ठ और महान बनाना चाहते हैं। तो ब्रदर जी, एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आ रही है। एक राजा के पास ज्योतिषी जी आए, तो राजा ने अपना हाथ दिखाया और कहा कि ज्योतिषी जी बताइए कि इस हाथ में क्या है। तो उन्होंने कहा, स्ट्रेट फॉरवर्ड की जवाब बात कही आपने, ज्योतिषी ने कहा कि महाराज आपकी हाथ की रेखाएं कहती हैं कि आपका पूरा खानदान आपकी आंख के सामने ही मर जाएगा। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि मेरा खानदान बाद में मरेगा, पहले
1: इसको जेल में डालो।
0: जी, वही एक मास के बाद दूसरा ज्योतिषी आया और फिर से राजा ने अपना हाथ दिखाया। तो ज्योतिषी ने कहा, महाराज आपकी हाथ की रेखाएं तो बहुत अच्छी है, आपकी आयु तो आपके पूरे खानदान से बहुत लंबी है, बहुत ज्यादा है। तो राजा बहुत खुश हुआ, उसको धन धान्य दे के विदा किया। तो बात एक ही, लेकिन सचमुच कहने का तरीका जो आपने कहा, स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो के हम बात को बहुत मधुरता पूर्वक, बहुत सभ्यता पूर्वक, बहुत शालीनता पूर्वक भी कह सकते हैं, ये शायद सीखने की आवश्यकता है।
1: इसमें और भी एक चीज है, देखो बोलते तो सभी हैं।

0: लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि बात थोड़ी सी कहनी है, लेक्चर देंगे एक घंटा, और एक घंटे के बाद भी लोग कहेंगे कि आखिर कहना क्या चाहता है ये व्यक्ति, ये तो समझ में नहीं आया कि आखिर मतलब क्या था। और कुछ लोग ऐसे हैं कि लंबी चौड़ी बात को सार युक्त दो चार शब्दों में बोलकर पूर्ण कर देते हैं। ये भी हमारे व्यक्तित्व को बहुत आकर्षक बनाने वाली चीज है कि हम कम बोलें, संयमित बोलें, बहुत मधुर बोलें और राइट टाइम पर बोले, और शब्दों का चयन भी इतना सुंदर हो जो दूसरों को बहुत कुछ सीखने को मिले, तो बहुत अच्छा रहे।
1: जी, तो ये बहुत सीखने की बात है भ्राता जी, कि कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, ये भी व्यक्ति अपने अनुभव से भी सीखता चलता है। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान अवश्य रखना चाहिए। कई लोग बहुत टकेटिव होते हैं कि बोलते ही रहते हैं और सामने वाला परेशान हो जाता है कि आखिर ये व्यक्ति चुप कब होगा। हम लोग एक स्थान पे गए थे तो वहां एक बहन जी थी, उन्होंने कहा कि इसे संभल के रहना, इस भाई से ये तो MP3 प्लेयर है, मतलब एक बार शुरू हो गया तो बस शुरू ही हो गया,
0: दूसरों को मौका ही नहीं मिलता,
1: तो इसमें भी शायद हमारे व्यक्तित्व को बहुत ज्यादा जैसे हानि पहुंचाने वाली बात हो जाती है कि लोग हमारी बातों को सुनना नहीं चाहते, हमसे दूरी बनाते चले जाते हैं। प्रति जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी वाणी से दूसरों को घाव देने के आदि हो जाते हैं, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे?
0: देखिए, इसके पीछे मनुष्य का अभिमान, उसकी रिवेंजफुल फीलिंग, कुछ अपने को सबसे ज्यादा समझना, ये भावनाएं काम करती हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए जो दूसरों को घाव दे रहा है उसको भी घाव देने वाला कोई अवश्य मिल जाएगा। किसी को हम कटु वचन बोल रहे हैं, आखिर लोग कब तक सहन करेंगे, कब तक सुनेंगे, तो कोई ऐसा भी मिल जाएगा जो हमसे भी तेज तराक हो और जितने घाव हमने दूसरों को दिए हैं वो एक ही साथ हमें दे जाए और हमें सिखा भी जाए कि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। तो वास्तव में हमें तो घाव को भरना है, सबके मरहम लगाना है, बहुत स्वीटनेस हमारे व्यक्तित्व में होनी चाहिए, वो सब हमारे चेहरे पर भी झलकेगा। हमारा चेहरा, अगर हमारा व्यवहार श्रेष्ठ है तो हमारे चेहरे पर एक शालीनता, एक रॉयल्टी स्पष्ट दिखाई देगी और उसका आकर्षण सबको होगा ही।
1: जी, वो कहते हैं ना कि तलवार का घाव तो एक बार भर भी जाता है, लेकिन वाणी के द्वारा जो घाव हम दे देते हैं दूसरों को, कुछ अपना अपमानजनक शब्द बोल जाते हैं, कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसे व्यक्ति जीवन भर याद रखता है कि इसने मुझे ऐसा कहा था, तो ऐसे शब्दों से निश्चित रूप से बचना चाहिए और अपने शब्दों में जो संयम है, मिठास है या श्रेष्ठता है, वरदानी बोल जैसा आप कह रहे थे, उन बोलों का समावेश करना चाहिए। जी, तो ऐसी क्या सूची बना के अवश्य व्यक्ति को रख लेना चाहिए कि मुझे इस प्रकार के बोल बोलने हैं और इस प्रकार के बोल नहीं बोलने, क्योंकि ध्यान देने की आवश्यकता तो प्रारंभ में अवश्य पड़ेगी।
0: देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं बचपन से ही, या एक पारिवारिक संपदा उन्हें मिलती है कि वो बोल चाल में बड़े रॉयल होते हैं
1: जी।
0: लेकिन कभी कभी अगर कोई दो भाई हैं तो एक बहुत रॉयल होगा, दूसरा ऐसा ही कर्कश होगा। लेकिन अगर उस व्यक्ति को अपने में चेंज करने की इच्छा है, यदि वो समझता है मेरे बोल भी बड़े रॉयल हों, गुड मैनर्स को प्रदर्शित करने वाले हों, तो उसे अवश्य अपने को चेक करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा कि ये बोल गलती उससे होगी। अब एक बार गलती हो गई तुरंत उसे करेक्ट कर लें, फिर दूसरी बार दूसरी गलती हो गई उसे करेक्ट कर लें। कुछ ही दिन यदि इस बात पे मनुष्य ध्यान दे 3 मास तक ही, तो उसके बोल में काफी सुधार आ जाएगा और ये उसके व्यक्तित्व को निखारने वाली बहुत सुंदर बात होगी।
1: और जैसे हम बात कर रहे थे भ्राता जी कि यदि हमें ऊपर जाना है, उन्नति करनी है, तो परिवर्तन के लिए हमेशा हमें तैयार रहना ही चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसा कहते हैं भ्राता जी, जब बात वाणी की चल रही है, कि हमारा भाव गलत नहीं होता लेकिन हमारी आवाज ही ऐसी है।
0: हाँ, उनकी आदत ऐसी है, एक्चुअली आवाज नहीं, वो आदतन वैसी आवाज निकालते हैं, तो भाव भी थोड़ा बहुत होता है लेकिन फिर छुपाने के लिए ऐसा कह देते हैं। लेकिन हमारे शब्दों में हमारा भाव तो स्पष्ट दिखाई देता ही है, कोई कितना भी छुपाए उससे वो छुपते नहीं हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को भी बहुत निर्मल करें, शुभ भावनाओं में बदलें और अपने अहम को जरा डाउन करें। इसमें मुख्य काम कर रहा है मनुष्य का अभिमान, जो उसके मुख से ये धुआं निकलवाता है, ये गलत शब्द बोलने का धुआं, जिससे दूसरों का दम घुटने लगता है, क्योंकि आज परिवार परिवार में संबंधों में सारे झंझट ही बोल के कारण है ना। अगर मनुष्य अपने बोल को सुधार ले तो संसार की आधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मैं तो ये कहूंगा कोर्ट में जितने केस हैं 1/3 तो बोल के कारण प्रारंभ हुए थे, ऐसे क्रिमिनल केसेस जो कोर्ट में पहुंचे। अगर सचमुच मनुष्य अपने बोल को रॉयल कर ले तो बहुत सारी बातें समाप्त
1: जी। और हम देखते भी हैं रहते जी कि रामायण यदि हम ले लें या महाभारत भी ले लें, हमारे जो महान ग्रंथ हैं, उनमें भी वाणी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्याओं का कारण बन गया था। तो वो भी आज भी हमारे जीवन में वाणी ही समस्या का कारण बन रहा है। तो निश्चित रूप से जो इस बात को समझते हैं और चाहते हैं कि वो व्यावहारिक अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण रूप से विकास करें, बोल पर विशेष रूप से उन लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। बस मैं यही
0: कहूंगा कि जब मनुष्य बोले जिसका व्यक्तित्व सुंदर है या जो अपने व्यक्तित्व को सुंदर बनाना चाहते हैं, जब वो बोले तो उनके मुख से अमृत धारा बहे, उनके मुख से जैसे पुष्प झड़ते हो, सुगंधित पुष्प जो सुनने वालों के मन को भी सुगंधित कर दें, निर्मल कर दें, दूसरों की टेंशन को भी हर लें, उनके दुखों को कम कर दें, उनके जीवन में छाए हुए निराशा के काले बादलों को एकदम बिखार दें, बिखरा दें और एकदम उमंग उत्साह से जीवन भर दें, ऐसे सुंदर बोल वास्तव में बोलने वाले की बहुत शोभा है।
1: एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रहता जी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मान लीजिए मैं तो सबके साथ मीठा बोलता हूं, मेरा व्यवहार अच्छा है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति बार बार मुझे टीज करता है, मेरा अपमान करता है, मुझे नीचे गिराने की कोशिश करता है, मेरे साथ गुस्से से व्यवहार करता है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ मैं कैसे मधुरता से पेश आ सकता हूं?
0: बिल्कुल, ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है संसार में जी। कि हम तो बहुत अच्छे हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो हमसे जलते हैं, हमें आगे बढ़ता देखकर उनसे सहन नहीं होता है, तो वो इस तरह की बातें हमसे करते हैं। इसमें हमारी सहन शक्ति भी होनी चाहिए। लेकिन जैसा हम बात कर रहे थे, एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हमारी स्पिरिचुअलिटी में है और वो है सेल्फ एस्टीम, स्वमान जी। अगर हम इसके साथ साथ स्वमान का भी अभ्यास करते हैं तो हमारे वाइब्रेशन ही इतने अच्छे हो जाते हैं कि कोई व्यक्ति हमसे रफ व्यवहार फिर नहीं करेगा। हमारे सामने आते ही उसकी भावनाएं बदल जाएंगी, उसके बोल बदल जाएंगे। लेकिन ये काम भी हमें स्वयं करना होगा और इस चीज के लिए तैयार रहना होगा कि हम बहुत स्वीट हैं, हम बहुत पोलाइट हैं, इट्स ओके, लेकिन दूसरे व्यक्ति तो वैसे नहीं है ना, वो तो न जाने कैसे कैसे हैं, तो उनके व्यवहार को देखकर भी हमें अपनी स्वीटनेस, अपनी पोलाइटनेस, अपनी ह्यूमिलिटी को समाप्त नहीं करना है
1: जी। क्योंकि एक बुरे व्यक्ति को देख करके मैं अपनी अच्छाई को समाप्त ना करूं। और साथ ही जो बात आपने स्वमान की कही रहता है जी, उस पर हम थोड़ी सी अवश्य आपसे प्रकाश चाहेंगे, आज समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत अच्छी चर्चा चल रही है व्यक्तित्व विकास की, इसे हम आपके साथ जारी रखेंगे। आज जो सुंदर बातें आपने हमारे दर्शकों के सम्मुख रखी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपने देखा कि व्यक्तित्व विकास एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे जीवन का, और उसमें भी शारीरिक व्यक्तित्व के साथ साथ व्यावहारिक व्यक्तित्व बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो व्यक्ति बाहर से दूर से शारीरिक रूप से बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, यदि आप उसके व्यवहार में आते हैं और वो कर्कश है, उसके बोल में शालीनता नहीं है या वो गालियों का उपयोग करता है, तो निश्चित रूप से उसके शारीरिक व्यक्तित्व का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसीलिए आवश्यक है कि हम अपने बोल में मधुरता को शामिल करें, शालीनता को शामिल करें और अपने व्यवहारिक व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाने का लक्ष्य रखें। आज के समाधान में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद में उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट, देन नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, wherever and for however long I want. So then it's my choice. So now it's your choice. आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, create it.
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्ते मित्रों, मैं हूं कवयित्री डॉक्टर कविता किरण और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, जैसे से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

राम राम, सुप्रभात, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग आबू। आज है 6 सितंबर 2026, शक संवत 1948, भाद्रपद कृष्ण दशमी रविवार, विक्रम संवत 2083 है। 6 सितंबर सन 2026 अंग्रेजी तारीख है। सूर्य दक्षिणायन, उत्तरगुल वर्षा ऋतु है। राहु काल शाम को 5:03 से 6:37 तक है। दशमी तिथि शाम को 7:29 तक उपरांत एकादशी तिथि का आरंभ है। आद्रा नक्षत्र शाम को 7:52 तक उपरांत पुनर्वसु नक्षत्र का आरंभ है। सीधी योग प्रातः 9:45 तक उपरांत व्यतिपात योग का आरंभ है। वणिजकरण प्रातः 8:41 तक उपरांत विष्टि यानी कि भद्राकरण का आरंभ है। चंद्रमा दिन रात मिथुन राशि पर संचार करेगा। सूर्योदय का समय 6:01 पर हुआ है। सूर्यास्त 6:37 पर होगा। चंद्रोदय का समय 7 सितंबर मध्य रात्रि 1:40 पर और चंद्र अस्त का समय 2:03 पर 6 सितंबर को है। सूर्यदेव सिंह राशि में स्थित है, चंद्रदेव मिथुन राशि में स्थित है। सुबह 3:55 से 4:41 तक ब्रह्म मुहूर्त था। अभिजीत मुहूर्त 11:54 से 12:44 तक है। अमृतकाल सुबह 10:33 से 12:03 तक रहेगा। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी पंचांग के साथ। और इस्लामी हिजरी के अनुसार 1448-23 रबीउल अव्वल इतवार आद्रा है आज के दिन।

मैं हूं सुनील खरे, मैं ग्लोबल हॉस्पिटल आबू रोड में काम करता हूं। अब सुनिए आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन को 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

बैक सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग आबू। आइए चलते हैं वेदर रिपोर्ट्स की ओर। राजधानी जयपुर में 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री तक जा सकता है। दिन के समय बारिश होने की संभावना है 50% से ज्यादा। उदयपुर में 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम 23 डिग्री तक जा सकते हैं। उदयपुर में भी दिन के समय 50% से ज्यादा संभावना है बारिश होने की। आबू रोड में 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम 24 डिग्री तक जा सकता है। और वहीं पर माउंट आबू में 24 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 19 डिग्री तक जा सकता है। जोधपुर में 36 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 26 डिग्री तक जा सकता है। सूरत में 31 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 26 डिग्री तक जा सकता है। बादल छाए रहेंगे आसमान पर, बारिश होने की कम संभावना है दिन के समय। राजकोट में 34 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। गांधीनगर और अहमदाबाद के अंचल में 34 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है। और वहीं पर राजधानी दिल्ली में 29 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 25 डिग्री तक जा सकता है। बादल छाए रहेंगे आसमान पर दिन के समय, बारिश होने की संभावना 60% से ज़्यादा है। कोलकाता में 33 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है। बादल छाए रहेंगे आसमान पर, बारिश होने की संभावना भी है दिन के समय ज़्यादा, रात्रि के समय कम संभावनाएं हैं। बेंगलुरु में 32 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 20 डिग्री तक जा सकता है। मुंबई में 31 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 27 डिग्री तक जा सकता है। यहाँ पर 55% तक संभावना है बारिश होने की। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में 35 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 27 डिग्री तक जा सकता है। 55% तक संभावना बारिश होने की है दिन के समय चेन्नई में। सिरोही की बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम 25 डिग्री तक जा सकता है। और जिला सिरोही में 70% तक संभावना है बारिश होने की आज दिन के समय। रात्रि के समय बादल छाए रहेंगे आसमान पर, 50% तक चांसेस है बारिश होने की। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे आसपास के वेदर रिपोर्ट्स के साथ। इसके साथ साथ देश के प्रमुख महानगरों के ऊपर भी हमने नजर डाला कि मौसम की क्या कुछ हालचाल है। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

उन आप सभी का स्वागत है 8:01 रेडियो मधुबन की घड़ी पर। आइए चलते हैं हम रेल इन्फॉर्मेशन की ओर। उससे पहले फिरोज भाई का कॉल था और उन्होंने जन्माष्टमी बहुत अच्छे से मनाया और सत्संग करवाया, जिससे बहुत सारे लाइफ के समस्याओं के समाधान उन्हें उस सत्संग के दौरान मिला। इसके साथ साथ सुभाष भाई जी का भी कॉल आया था, उन्होंने भी आप सभी को याद किया। आइए चलते हैं अबरूड रेलवे स्टेशन की ओर, जानते हैं आने वाली गाड़ियों के बारे में जानकारी। ग्वालियर से गांधीग्राम तक जाने वाली सुपरफर्स्ट एक्सप्रेस 8:33 पर अबरूड रेलवे स्टेशन पर आएगी 8 मिनट की मामूली देरी के साथ। आरावली एक्सप्रेस 1470 8:30 पर पहुंचेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस 1246 9:05 पर पहुंचेगी। गरीब नवाज एक्सप्रेस 1653 9:10 पर पहुंचेगी। जम्मू तवी साबरमती एक्सप्रेस 1924 9:45 पर पहुंचेगी। 10:10 पर अजमेर मैसूर एक्सप्रेस 1609 पहुंचने वाली है। जोधपुर सुपरफर्स्ट एक्सप्रेस 20496 10:30 पर पहुंचने वाली है। 11:00 प्रयागराज से गांधीग्राम जाने वाली स्पेशल ट्रेन 04111 पहुंचने वाली है। 19412 दौलतपुर गांधीनगर एक्सप्रेस 11:30 पर पहुंचेगी। 11:40 पर गांधीग्राम जोधपुर एक्सप्रेस 14822 पहुंचने वाली है। योगा एक्सप्रेस 19032 12:25 पर 1:35 देरी से चलती हुई पहुंचेगी, जो 10:50 पर पहुंचने वाली थी वो दोपहर बाद 12:25 पर पहुंचने वाली है। तो ये अब से 4 घंटे तक अबरूड रेलवे स्टेशन पर आने वाली गाड़ियों के बारे में जानकारियां रही। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम कार्यक्रम सुन रहे हैं आप। गुड मॉर्निंग आबू। आइए चलते हैं सोने और चांदी के दामों के ऊपर नजर डालते हैं। सोने के भाव है 24 कैरेट प्योर गोल्ड 178,750 रुपये 10 ग्राम के हिसाब से विथ मेकिंग चार्जेस इंडिया में आज ये रेट चल रहा है। वहीं पर 22 कैरेट है 163,869 और 18 कैरेट 134,106 रुपये। चांदी के कीमतों के ऊपर नज़र डालते तो 2,50,000 है चांदी पर किलोग्राम के हिसाब से। आइए बात करते हैं हम पेट्रोल की, और पेट्रोल राजधानी जयपुर के हिसाब से हमारे राजस्थान में क्या कुछ यहाँ पर रेट्स चल रहे जानते हैं। राजधानी जयपुर में 112.69 रुपये और 81 पैसे कम हुआ है पेट्रोल राजधानी जयपुर में। डीजल है 97.78 रुपये 72 पैसे कम हुआ है डीजल राजधानी जयपुर में, और LPG 945.50 रुपये और डोमेस्टिक और कमर्शियल है 2,776 रुपये। और वहीं पर CNG है 96.50 रुपये पर KG और PNG है 49.50 रुपये पर ACM।

0: आइए आगे बढ़ते हुए मुद्रा जगत के बारे में जानते हैं। एक यूएसडी के मुकाबले इंडियन करेंसी है 94.41 रुपये और एडी है 25.70 रुपये, यूरो के मुकाबले 109.65 रुपये। इस मोड पर एक दोस्त बात करना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो नमस्ते, रेडियो मधुबन पर स्वागत है आपका।
1: जी नमस्कार, मदन भाई बोल रहा हूँ। दीदी
0: जी जी नमस्ते मदन भाई, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया हूँ और घर पे ही हूँ, आज थोड़ी छुट्टी रखी है
0: जी।
1: सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, आप तो सुन रहे हैं, अच्छे हैं प्रोग्राम और अच्छा सुना है मौसम के बारे में, रेलवे के बारे में सुना रहे हैं और रेलवे का हम भी इंतजार कर रहे हैं कि 2 महीने के बाद में फिर हमको भी जाना है बनारस
0: जी। क्या बात है,
1: तो बस आपको नमस्कार करते हैं रेडियो मधुबन को और सुबह से सुन रहे हैं, अच्छे हैं
0: और नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए जी।
1: जी जी
0: शुक्रिया।
1: और बस गाना लगा दीजिए
0: जी। नाश्ता हुआ आपका? नाश्ता होने वाला है?
1: नाश्ता नहीं किया आज।
0: नहीं करेंगे,
1: आज थोड़ी तबीयत नरम थी तो और कल रात से थोड़ा ऐसा हो गया, कुछ खान पीन में हुआ है या मौसम के या सोने की वजह से कम नींद के हिसाब से, और अभी दवा लड़के आएंगे बाजार से अच्छे डॉक्टर के पास से और घर पे हैं। नमस्कार करते रहेंगे
0: जी जी, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते नमस्ते
1: जी जी जी, ख्याल रखिएगा, हम जरूर आपको नमस्कार और सभी भाई बंधु को और सभी जो सुन रहे सभी को नमस्कार।
0: शुक्रिया शुक्रिया, ओम शांति। क्योंकि सीजन चेंज भी हो रहा है और कई बार बारिश के पानी में कंटामिनेशन भी देखने को मिलता है तो इन्फेक्शन होने की भी संभावना हो जाती है, इसलिए अपना ख्याल रखते हुए कोई भी चीज़ हम कंज्यूम करते हैं देख के परख के कर सकते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो ये कुछ बातें भी जुड़ी हुई थी हमारे अर्थव्यवस्था के साथ, हमने बात भी मदन भाई से भी किया। आइए लेते हैं यहाँ पर एक अल्पविराम, मिलते हैं अल्पविराम के उस पार।

0: ना ना मैं तेरी गुजरिया ना तू मेरा दीवाना।
1: नमस्कार, मैं हूं पार्श्व गायिका श्रद्धा पंडित। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

पुनः सभी का स्वागत है रेडियो मधुन मंजूसन पर एफएम सुन रहे हैं आप। आइए कुछ बातें जो जुड़ी हुई हमारे आसपास के साथ जानते हैं। सूर्य हुई आपूर्ण भास्कर के जरिए और निकाय चुनाव के कारण हेड़ेंगे शहर की सरकार। सिरा शहर की सरकार है और सिरोही निकाय चुनाव 2026 की अगर बात करें तो 35 वार्डों में 34,000 मतदाता हैं, जिसमें 4,000 जैन जी हैं और पार्टी उन्हें भी इन्हीं पर जता है भरोसा। यानी कि अमृत पीढ़ी की अगर बात करें, जैन जी यानी कि अमृत पीढ़ी के हाथ जीत की चाबी है। 35% युवा चेहरे हैं। नगर पालिका में इस बार रोचक मुकाबले हैं। निर्दलीय प्रत्याशी की भी भरमार है, तो एक ही घर में माँ बेटा बहू मैदान में तीनों ही अलग अलग वार्ड से लड़ रहे हैं चुनाव। और वहीं पर चुनाव में कानून व्यवस्था को लेकर बैठक आज है। नगरीय निकाय आम चुनाव के तहत कानून व्यवस्था की तैयारियों को लेकर के जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में रविवार शाम 5 बजे जिला परिषद सिरोही के सभागार में बैठक निकलेगी। और वहीं पर 6 निकायों की ईवीएम का 6 को इसमें वेरिफिकेशन है और इसमें नगर निकाय चुनाव 2026 के तहत जिले के नगर निकाय सिरोही शिवगंज पिंडवाड़ा आबू रोड आबू पर्वत मंडार के लिए भी ईवीएम का द्वितीय वेरिफिकेशन 6 सितंबर को सुबह 9 बजे DOIT वीजा कक्ष में होगा। शिवगंज में 41 निर्दलीय चुनौती बने तो 10 वार्डों में त्रिकोणीय मुकाबला है। और वहीं पर आबू रोड में नगर पालिका के वार्ड 11 और 14 के सड़क और नाली की समस्या मतदाताओं के लिए प्रमुख मुद्दा बनी हुई है। दोनों वार्डों में कई जगह सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, वहीं नालियों की स्थिति भी लोगों के लिए परेशानी का कारण है। तो इस प्रकार से बातें सामने आई है। रेवदर में गोविंदा आला रे की धुन पर मटकी फोड़ कार्यक्रम का झलका उत्साह। रेवदर में छात्रों ने संभाला स्कूल का पूरा कामकाज। और वहीं पर सिरोड़ी में नृत्य और नाटक से मनाया गया शिक्षक दिवस। कालंदरी में विद्यार्थियों ने लिया पढ़ाने का अनुभव। शिक्षक बने छात्र, तिलक और मौली बांधकर शिक्षकों का किया गया सम्मान। छात्रों ने संभाला स्कूल का पूरा कार्यभार। 14 महीने बाद पुलिस के हाथ लगी नाबालिग। अनादरा थाने पुलिस ने 14 महीने से लापता 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को गुजरात के सूरत से बरामद किया। पुलिस ने अपहरण के मामले में 5,000 रुपये के इनामी आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता की मां ने 6 जुलाई 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में बताया गया कि 5 जुलाई के दोपहर करीब 2:30 बजे लड़की आइसक्रीम लेने की बात कहकर घर से निकली थी और वापस नहीं लौटी। परिजनों की तलाश में सामने आया कि एक युवक उसे परेशान करता था और बहला फुसला कर ले गया। पुलिस के मुताबिक लड़की घर से सोने की चेन, 2 अंगूठियां, कान की बालियां, चांदी की पायल और 50,000 रुपये नकद भी ले गई थी। वहीं पर 8 से शुरू होगा पर्युषण और कल्प सूत्र का होगा वचन। इसके साथ साथ माउंट आबू में भील समाज ने निकाली कानूड़ा की शोभा यात्रा। आईटी प्रोफेशनल्स सीख रहे हैं स्ट्रेस फ्री लाइफ के मंत्र। और वहीं पर कंधों पर ठाकुर जी का रथ और पुष्प वर्षा के बीच गूंज रहे श्री कृष्ण भक्ति के जय जयकार निम्बज में। टोकरी में विराजा लल्ला और गूंजा हरी हरे मुरारी का जय घोष और सभी ने हरी बोल की धुन भी लगाई। कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में 25-30 हजार दर्शनार्थियों ने मंदिर पहुंचकर भगवान कृष्ण का दर्शन किया। और ये बात है शिवगंज की। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे आसपास के साथ।
सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। यहीं पर रुकते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में। अभी आप बहुत ही अच्छा भजन सुनेंगे, उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो के सौजन्य से सुनेंगे समाचार प्रभात। आपका दिन शुभ मंगलमय हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।

0: बोलना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ सॉन्ग, जीवन एक बहुत सुंदर संगीत है। सिंग इट, सिंग इट। जीवन एक बहुत सुंदर गीत है और इस गीत को हमें गाना बजाना आना चाहिए। मुझे एक सिंगिंग कंसर्ट में बुलाया गया और मुझे ये बताया गया कि ये कंसर्ट जो है कुछ अलग है, यूनिक है। और जब मैं वहाँ पहुंचा तो मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि वो जो सारे कंसर्ट में जो पार्टिसिपेंट थे वो पूरी तरह अंधे थे। चाहे वो गीत गायक क्यों ना हो, बजाने वाले क्यों ना हो, दे वर ऑल पीपल हु वर नॉट एबल टू सी। एक डेढ़ घंटे का जब मैं ये प्रोग्राम सुना मुझे इतना अच्छा लगा बिकॉज इट वॉज सच अ वंडरफुल कलरफुल शो बाई दोज पीपल हु हैव नेवर सीन कलर इन देयर लाइफ। उसी तरह जीवन एक बहुत सुंदर गीत है, उसको गाना बजाना आना चाहिए। अगर हम उन गायक की तरह गीत नहीं गा सकते हैं, अगर हम लता मंगेशकर की तरह गीत नहीं गा सकते, नथिंग टू वरी, लेकिन हमारे शब्द तो मीठे हो सकते हैं ना, हमारे शब्द तो सुखदाई हो सकते हैं ना। इसलिए मुझे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में मैंने एक स्लोगन पढ़ा जिसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ ये बोलना, पहले सुनना, और वो है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच कर बोलो। क्योंकि हमारे शब्द जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, वैल्यूएबल है। सभी बोलेंगे, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच कर बोलो। ठीक है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, भारतीय युवा परामर्श, लेखा, वित्त और कानून से जुड़ी ऐसी संस्थाओं का निर्माण करें जो वैश्विक स्तर के हों। भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। एनआईए की विशेष अदालत ने 2013 में छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड में 10 माओवादियों को दोषी ठहराया। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को पहले आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। भारत ने दुबई में महिला T20 क्रिकेट एशिया कप मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर के हों। कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा कि आज भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भी भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो उसकी आर्थिक क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है और दुनिया देख रही है कि भारत सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि अप्रैल से जून के बीच बिजली उत्पादन में 9% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान वाहनों की बिक्री 20% से अधिक बढ़ी है। उन्होंने बताया कि स्मार्टफोन का निर्यात अब 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है और घरेलू रक्षा उत्पादन लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय मिलकर देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे।
1: मुझे विश्वास है हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भी बनाएंगे, आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। आने वाले समय में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा। आने वाले समय में रिसर्च एंड इनोवेशन का हब हिंदुस्तान होगा। भारत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की सुपर पावर होगा।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह आज गृह मंत्रालय की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे।
2: अमित शाह का आज का दौरा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से जुड़ा है। गृह मंत्रालय की बैठक में गोवा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बाद में बीजेपी के नए राज्य कार्यालय अटल भवन का उद्घाटन किया जाएगा। दिन के अंत में पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक भी होगी। कल अमित शाह पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे और गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान लेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
3: जो निर्देश होगा, जो भी प्रधानमंत्री जी का, वो सबको स्वीकार है और हमेशा मैं कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ। तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर कल सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। श्री सिंह की ये सऊदी अरब की पहली यात्रा है। वे सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और जलवायु पर्यावरण, जल तथा कृषि उपमंत्री से मुलाकात करेंगे। श्री सिंह सऊदी अरब में भारतीय मूल के लोगों, भारतीय व्यापार प्रमुखों, उद्यमियों तथा पेशेवरों से भी मिलेंगे। वे सऊदी में कार्यरत भारतीय कामगारों से भी बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। नई दिल्ली में इस महीने की 12 और 13 तारीख को आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। ये आयोजन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समानांतर होगा। सम्मेलन का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य देशों और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, भरोसेमंद बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है। एक रिपोर्ट।
4: संप्रभु धन कोष, पेंशन कोष और परिवार कार्यालय कुल मिलाकर $1 ट्रिलियन मूल्य की संपत्ति का प्रबंधन करते हैं। सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की UPI भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमेरिकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितम्बर को होगा। दिल्ली में नकली दवा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली पुलिस की अपराध नियंत्रण शाखा ऐसी आपराधिक गतिविधियों की पहचान के लिए लगातार निगरानी कर रही है, जिससे गलत लेबल वाली और नकली दवाओं के निर्माण और वितरण को रोका जा सके।
5: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी मिलने पर दिल्ली पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। इसी लगातार निगरानी और कार्रवाई के तहत दिल्ली अपराध शाखा ने इस साल अप्रैल में दिल्ली में बिना लाइसेंस वाली जगह से गलत लेबल वाली और खराब गुणवत्ता की रेबीज वैक्सीन जब्त की थी। पिछले महीने की 27 तारीख को एक सूचना के जरिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने सभी राज्यों के ड्रग्स कंट्रोलर से कहा कि वे अपने इंस्पेक्टर स्टाफ को अलर्ट करें और दवा के गलत लेबल वाले बैच की आवाजाही, वितरण और उपलब्धता पर कड़ी नजर रखें। DCGI ने यह भी पुष्टि की है कि संबंधित बैच का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश में निर्यात नहीं किया गया था। अस्पतालों, क्लिनिकों और सरकारी हेल्थ केयर सेंटरों में दी जाने वाली वैक्सीन सिर्फ लाइसेंस वाली फार्मेसियों के जरिए ही दी जाती है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: महाराष्ट्र के मेलाघाट और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों

0: के पुनर्वास मामले में देश के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं। इन केंद्रों में गिद्धों को पाला गया और उनके जीवित रहने की दर उत्साहजनक रही है। एक रिपोर्ट।
1: बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के अनुसार दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच दोनों अभयारण्यों में कुल 29 गिद्ध छोड़े गए थे। BNHS ने कहा है कि यह सफलता दर्शाती है कि गिद्धों को पर्याप्त शिकार और कम मानवीय हस्तक्षेप वाले बाघ अभयारण्यों में छोड़ना एक प्रभावी तरीका साबित हो सकता है। ये परिणाम देश में घटती गिद्ध आबादी के संरक्षण और पुनर्स्थापना के प्रयासों को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देते हैं। प्रार्थना के साथ माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का दिल का दौरा पड़ने से गिरिडीह के मर्सी अस्पताल में निधन हो गया है। देर रात तबीयत खराब होने के बाद उन्हें रात करीब 2 बजे अस्पताल लाया गया, जहां सुबह करीब 4 बजे उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुदिव्य कुमार सोनू के निधन को अपनी व्यक्तिगत क्षति बताते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन झारखंड की अस्मिता, अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई को समर्पित कर दिया। ईरान की नौसेना ने होर्मुज जल डबरू मध्य से गुजर रहे 3 तेल टैंकरों और अमरीका से जुड़े 3 जहाजों पर हमले का दावा किया है। इससे पहले अमरीका ने फारस की खाड़ी और ओमान सागर में 3 ईरानी तेल टैंकरों पर हमला किया था। महिला क्रिकेट में दुबई में T20 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 ओवर और 1 गेंद में महज 55 रन बनाकर आउट हो गई। ये T20 में उसका अब तक का सबसे कम स्कोर है। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की ओर से स्पिनर श्री चरणी और प्रेमा रावत ने 3-3 जबकि दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट हासिल किए। ये मैच हरमनप्रीत का बतौर कप्तान 150वां T20 मैच था। वे पुरुष या महिला क्रिकेट में ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली कप्तान हैं। बैडमिंटन में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में उनका मुकाबला आज चीन के हेजीटिंग और रेन जियांग यू की जोड़ी से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज में दिए गए वक्तव्य को प्रमुखता दी है। युवा ही विकसित भारत बनाएंगे, मुझे पूरा भरोसा। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री की युवाओं को सलाह को सुर्खी बनाया है, बड़े सपने देखें और पूरा करने में जान लगा दें। जनसत्ता ने खतरा शीर्षक से IIT मंडी के शोध को प्रकाशित किया है। हिमाचल में आकार में तेजी से बढ़ रही 9 हिमनद झीलों की पहचान हुई। एक दशक में हिमालय क्षेत्र में हिमनद झीलें करीब 30% बढ़ी। 457 साल बाद बदलेगा दुनिया का नक्शा, लिखता है राजस्थान पत्रिका। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पारित, भारत सहित 164 देशों का इक्वल अर्थ मानचित्र के पक्ष में वोट। वर्ष 1569 में बने मर्केटर प्रोजेक्शन की जगह वर्ष 2018 के इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन को बढ़ावा देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। अमर उजाला ने न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर को प्रमुखता दी है। 1200 बेकाबू AI एजेंट्स ने इंटरनेट पर बना ली खुद की सरकार। पकड़े जाने के डर से मिटाए सबूत, OpenAI और एंथ्रोपिक ने रोकी सबसे ताकतवर मॉडल की ट्रेनिंग। नवभारत टाइम्स ने परवरिश पृष्ठ पर AI की बढ़ती दखलंदाजी को प्रमुखता दी है। पेरेंट्स की जगह तो नहीं ले रहा AI, मम्मी पापा नहीं समझ पा रहे बच्चों को चैटबॉट से क्या हो रहे हैं नुकसान। पत्र ने बचाने के रास्ते भी दिए हैं। चैट हिस्ट्री जरूर देखें, अपना ज्यादा से ज्यादा समय दें, AI को दोस्त बनने से रोकें और हर जवाब तुरंत मत लेने दें।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील। भारतीय युवा परामर्श, लेखा, वित्त और कानून से जुड़ी ऐसी संस्थाओं का निर्माण करें जो वैश्विक स्तर की हों। भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। NIA की विशेष अदालत ने 2013 में छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड में 10 माओवादियों को दोषी ठहराया। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान आई ब्रिक्स सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। और क्रिकेट में भारत ने दुबई में महिला T20 एशिया कप मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: उसमें से ये कोई हो।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए, आज जो है संडे है और संडे हम लोग अलग अलग डॉक्टरों से आपकी मुलाकात कराते हैं और पूरा 9 से 10 बजे तक जो है हम डॉक्टर के साथ बातें करते हैं। और आप भी 94-14-15-14-15 इस नंबर पर जुड़कर अपनी बातें पूछते रहते हैं तो आपको घर बैठे जो है कंसल्टेशन मिल जाता है और बहुत सारा स्वस्थ रहने का ज्ञान प्राप्त होता है। तो आज हमारे साथ है आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर दिलीप निलगे जी, जो एमपी रतलाम में अपनी प्रैक्टिस, वो मेडिकल प्रिंसिपल है मेडिकल कॉलेज में, आयुर्वेद कॉलेज में, और साथ ही साथ राजयोगा प्रैक्टिस भी कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। तो ऐसे डबल डॉक्टर हमारे साथ हैं जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं और निश्चित तौर पे आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और आज के समय में जैसे कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सीजनल डिजीज़ के बारे में बात करें, आयुर्वेदाचार्य में क्या सिस्टम है और कैसे उसको कंट्रोल या क्योर किया जा सकता है। कई बार अभी देखते हैं सीजन में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और खांसी हो जाते तो टॉन्सिल हो गया ना, खांसी हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, खौ खौ चालू ही है, गोलियां भी खा रहे हैं, दवा भी पी रहे हैं, लेकिन वो देख रहा है कि आदमी 15 दिन हो गया अब तक खांसी जा नहीं रहा है। तो ऐसे में बड़ी दिक्कत हो जाती है। और ऑफिस में अगर आप अच्छे पोस्ट में हैं और खो खो करता रहेगा तो क्या लोगों के ऊपर असर होता है ये आप खुद ही समझ सकते हैं। तो ऐसे में बड़ी दिक्कतें होती हैं, तो इन्हें कंट्रोल कैसे किया जाए, क्या ऐसे कुछ आयुर्वेद नुस्खे हैं जिससे हमें उस समय जैसे हम काम कर रहे हैं तो अगर हम कुछ खा लें या कुछ चूस लें या कुछ ऐसे काढ़ा बना के पी लें जिससे हमारा वो 4-5 घंटे कम से कम ऑफिस आवर्स में कंट्रोल में रहें, तो वो सारी बातें भी हम लोग करने वाले हैं। तो डॉक्टर दिलीप निलगे सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम शांति, कैसे हैं आप?
2: मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई जी आपका।
1: जी जी जी जी, हमें खुशी हुई कि आप हमारे साथ आज एक घंटा समय देंगे और हमारे सभी श्रोता बंधु जो हमें सुनते हैं, हमारे बहुत सारे लिसनर्स हैं जो रेगुलर लिसनर्स भी हैं, वो भी फोन करके आपको जरूर पूछेंगे, हेलो हाय करेंगे तो अच्छा लगेगा हमें। तो आइए सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप आयुर्वेदा है तो वर्तमान समय कहाँ है और इससे पहले कहाँ थे, थोड़ा सा अपना परिचय शिक्षा दीक्षा के बारे में जरूर बताइए ताकि हमारे श्रोता बंधु आप ये है ये समझ जाए।
2: जी बिल्कुल। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मुखातिब होने का ये एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: रेडियो मधुबन के माध्यम से।
1: जी जी जी,
2: मैं डॉक्टर दिलीप नलगे, बेसिकली मैं मुंबई से हूँ लेकिन वर्तमान समय में मैं रतलाम में आयुर्वेद महाविद्यालय है, पंडित डॉक्टर शिव शक्तिलाल शर्मा आयुर्वेद कॉलेज, वहाँ पे एक साल से ऊपर मुझे अभी हो गया, एज अ प्रिंसिपल मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है। तो लगभग मुझे आयुर्वेद के क्षेत्र में 95 से हूँ मैं, मतलब लगभग 30 साल हो गए मुझे आयुर्वेद से जुड़े हुए, और लगभग उसी के दरमियान मेरा राजयोग मेडिटेशन से भी कनेक्शन हुआ था।
1: अच्छा,
2: तो उसके लगभग 2-3 साल बाद में मेडिटेशन से जुड़ा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कैसे आप राजयोग से जुड़े और पिछले काफ़ी लंबे समय से आप जो है मेडिकल फील्ड में, खास आयुर्वेद की फील्ड में अपनी सेवा दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पे एक अच्छा अनुभव आपके पास है। और मैं चाहूँगा जो सीजनल डिजीज़ है, ऋतु जो संस्कृत में कहते हैं कि ऋतु के अनुसार हमारे जीवन में या हमारे शरीर में परिवर्तन आता है, उसका इफेक्ट होता है
2: जी।
1: तो अब जैसे कि ठंड का समय है, ऐसे में बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं कि एक तो ठंड भी है और ऊपर से सर्दी जुकाम या खांसी हो जाती है
2: जी।
1: तो ये सारी चीज़ें चलती हैं और कई बार हम देखते हैं कि ठंड के समय में खुजली भी बहुत ज़्यादा होती है, इचिंग हो जाता है और वो बड़ा अनकम्फर्ट लगता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं
2: जी जी,
1: तो उन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं ताकि हमारे श्रोता बंधु इस बात को समझ लें।
2: बिल्कुल रमेश भाई जी, आयुर्वेद में देखिए उसका जो पर्पस बताया है ना,
1: जी जी जी, हाँ हाँ हाँ,
2: वो दो चीजें बताई है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम माना स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, जिसको हम आजकल की भाषा में प्रिवेंशन कहते हैं,
1: बिल्कुल
2: प्रिवेंटिव एस्पेक्ट। और दूसरा है आतुरस्य विकार प्रशमनम, माना अब बीमारी आ गई है तो उसको ठीक कैसे करना है। तो आयुर्वेद एक ऐसा साइंस है हमारा, हजारों साल पुराना ये विज्ञान है, जिसमें प्रतिबंधात्मक या प्रिवेंटिव एस्पेक्ट इतना अच्छी तरह से बताया है जो बहुत लोगों को पता ही नहीं है। अब आपको ये जान के आश्चर्य होगा, लेकिन आयुर्वेद में ये बात भी बताई हुई है कि अलग अलग ऋतु के अनुसार हमें अपना आहार और विहार चेंज करना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: क्योंकि जैसे देखिए बाहर परिवर्तन आ रहा है, है ना, तो बाहर जो परिवर्तन आ रहा है उसका असर हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है, हमारे जठराग्नि के ऊपर पड़ता है, हमारे शरीर के एक एक सेल के ऊपर पड़ता है। तो जो असर पड़ता है उसको कैसे हम मतलब उससे बच सकते हैं, कैसे बचा जा सकता है, इसका बहुत ही सुंदर वर्णन ऋतुचर्या नाम से आयुर्वेद में किया गया है।
1: जी जी, जी।
2: अब ऋतुचर्या के लिए पहले तो ये पता होना आवश्यक है कि भाई ऋतु कितने होते हैं। क्योंकि आप अगर किसी को भी पूछेंगे कि भाई कितने ऋतु होते हैं, तो लोग कहते हैं तीन ऋतु होते हैं, गर्मी सर्दी और बरसात। या तो कोई कोई कहते हैं चार होते हैं, कोई कहते हैं पांच होते हैं, मतलब ऐसे अलग अलग आंसर्स आपको मिलेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: है ना। लेकिन वास्तव में ऋतु जो है ना वो छह बताए गए हैं आयुर्वेद।
1: बिल्कुल,
2: है ना। तो हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, इस प्रकार से ये छह ऋतु जो है वो वर्णन किए गए हैं। और अलग अलग ऋतु के अनुसार जो परिवर्तन आते हैं हमारे शरीर में ना, तीन दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। ये तीन दोष अगर साम्यावस्था में रहते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, और ये तीनों में अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो हम बीमार पड़ते हैं। ये एक बेसिक कंसेप्ट है आयुर्वेद का।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो सीजन के हिसाब से क्या होता है कि इन दोषों में भी परिवर्तन आता है, और फिर उस अनुसार हमें बीमारियां होती है।
1: बिल्कुल।
2: जैसे अभी ये ठंड का समय चल रहा है, तो ठंड के दिनों में क्या होता है, बाहर के वातावरण में ठंड माना शीत गुण बढ़ जाता है, रुक्ष गुण बढ़ जाता है। तो ये जो शीत और रुक्ष गुण जो बढ़ जाता है, उसकी वजह से शरीर में भी जो है ना वो वात जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, और उसके अनुसार कुछ कुछ वात और कफ की बीमारियां जो है वो हो जाती है। आपने ये चीज नोट की होगी, देखिए लॉकडाउन जो लगा कोरोना की वजह से,
1: जी जी जी जी,
2: कौन से महीने में लगा पहला लॉकडाउन?
1: मेरे ख्याल से
2: मार्च में लगा।
1: मार्च में,
2: है ना। और मार्च में ही क्यों लगा, उसका भी आंसर आयुर्वेद दे सकता है।
1: अच्छा।
2: मार्च में क्या होता है कि ठंड कम हो जाती है और
1: गर्मी की शुरुआत हो जाती है। हाँ,
2: और उस समय क्या होता है कि शरीर में जो कफ जमा हो गया, ठंड के दिनों में हमने जो चीजें खाई उसकी वजह से कफ जमा हो गया, वो जैसे उसको गर्मी लगती है ना वैसे पिघलना शुरू हो जाता है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: और कफ की बीमारियां शुरू होती है उस समय में, इसलिए उसको कफ प्रकोप का काल कहा गया है।
1: अच्छा।
2: हमारे शरीर में कफ दोष प्रकोपित हो जाता है। तो नेचुरली मार्च और अप्रैल ये महीनों में सभी के शरीर में जो है ना कफ पिघलने लगता है, और सर्दी खांसी ये नेचुरली होता है।
1: जी जी जी जी।
2: और इसीलिए उस दौरान फिर कोरोना ज्यादा बढ़ गया था और लॉकडाउन लगाना पड़ा।
1: सही बात है जी। और बहुत ही अच्छी बात है, आपने बता दिया कैसे हम लोग जो है ये चीजें हमारे बीच में आती है। और लेकिन ये काफी, जैसे सर्दी खांसी या जुकाम के लिए बात करें
2: जी,
1: तो कितने दिन में ये ठीक हो जाना चाहिए, या फिर नहीं हो रहा है इतने दिन के बाद तो हमें इलाज करने की जरूरत है?
2: जी जी जी
1: जी जी, जी।
2: देखिए आयुर्वेद में तो है ना आहार को ही औषधि कहा गया है।
1: अच्छा। हाँ हाँ।
2: डाइट इज द बेस्ट मेडिसिन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसको यूज कैसे करना
1: कैसे
2: है?
1: करे वो समझ में नहीं आता,
2: ये हमें पता नहीं होता है
1: जी।
2: अब देखिए आयुर्वेद में एक संस्कृत श्लोक बताया है, पथ्ये सति गदार्थस्य भेषजम किम निषेवणैहि, पथ्ये असति गदार्थस्य भेषजम किम निषेवणैहि। आप बोलेंगे आपने ये संस्कृत में क्या बोला,
1: क्या आपको क्या बोला, आपको नहीं कुछ बल्ले ही नहीं पड़ा।
2: इसका मतलब ये है कि अगर हम सही आहार लेते हैं तो हमें दवाई की क्या आवश्यकता,
1: सही बात है।
2: और अगर हम सही आहार नहीं लेते हैं तो भी दवाई क्या काम करेगी?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो सही आहार लेना ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू माना गया है स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद में। और इसीलिए आयुर्वेद में आहार के गुणधर्म बताए हैं। जैसे हम खाना खाते हैं ना, वो दो प्रकार की तासीर होती है उसकी, या तो ठंडी तासीर होती है या तो गर्म तासीर होती है, और उस अनुसार उसका असर हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। तो अब जब शरीर में कफ बढ़ता है तो उस समय कौन से तासीर वाला खाना खाना चाहिए? तो नेचुरली गर्म तासीर वाला खाना खाना चाहिए, ठंडी तासीर वाला खाना अवॉइड करना चाहिए।
1: बिल्कुल।
2: लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि ठंडी तासीर किसकी, गर्म तासीर किसकी, तो क्या करेंगे, हम गलती कर बैठते हैं।
1: बिल्कुल,
2: और इसीलिए फिर बीमारी बढ़ जाती है।
1: सही बात है।
2: अब जैसे हमें ये पता ही नहीं ना कि चावल की तासीर ठंडी होती है, और हमें कफ बढ़ रहा है और हम चावल खाए जा रहे हैं, हम दूध पिए जा रहे हैं जो ठंडी तासीर वाली चीजें हैं।
1: जी जी जी।
2: और गर्म तासीर वाली चीजें कौन सी होती है? जैसे देखो हम किचन में बहुत सारी चीजें यूज करते हैं उसमें से, जैसे अदरक है,
1: हाँ।
2: गर्म तासीर है, काली मिरी है, गर्म तासीर है, और जो दालचीनी है, गर्म तासीर वाली चीज। तो गर्म मसाले के लिए भी जो चीजें यूज की जाती है ना, जिसको हम गर्म मसाला कहते हैं किचन में, तो ये गर्म तासीर वाली चीजें हैं। तो इसीलिए ये थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज हर एक के पास रहता भी है। आपने देखा होगा पहले के जमाने में कहां इतने फैमिली डॉक्टर हुआ करते थे,
1: नहीं हुआ करते थे।
2: पहले के जमाने में तो दादा दादी और नाना नानी यही डॉक्टर हुआ करते थे।

0: और वो अपने अनुभव के आधार से घर में से ही कोई ऐसी चीज निकालते थे, उसकी दवाई बना के पिलाते थे और लोग ठीक हो जाते थे।
1: बिल्कुल।
0: तो इसीलिए आज ये समय आ गया है कि हम हर एक व्यक्ति को भी आयुर्वेद का थोड़ा बहुत ज्ञान वो रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रखेंगे तभी हम अपना बचाव कर सकेंगे बीमारियों से, है ना। क्योंकि शरीर में देखिए जो तीन दोषों की मैंने बात की,
1: जी जी जी,
0: तो ठंडी तासीर से वात और कफ बढ़ता है और गर्म तासीर से पित्त बढ़ता है।
1: अच्छा।
0: तो अगर हमारे शरीर में ऐसा हो गया है कि भाई पित्त बढ़ गया है, तो हमें ठंडी तासीर वाली चीजें फायदे की है, जैसे नारियल है, ठंडी तासीर है, दूध है, ठंडी तासीर है, तो ये पित्त को कम करने में मदद
1: करता है।
0: तो ये बेसिक चीजें हमें पता होना बहुत आवश्यक है।
1: जी जी।
0: तो हम अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, अपने आप को ठीक रख सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बता दिया और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोता बंधुओं को भी अच्छा लग रहा है। और मैं चाहूँगा कि आप भी जो है अपनी अगर कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे आप किसी भी चीज़ से जूझ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप जो है हमें फ़ोन कर सकते हैं और बात कर सकते हैं कि किस तरह से आप आयुर्वेद का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और डॉक्टर साहब आपको पूरी डिटेल बताएंगे, अगर आप प्रश्न पूछते हैं तो अच्छा होगा। आइए, एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और वो कुछ पूछेंगे तो बात हो जाएगी। हेलो जी, नमस्कार।
2: हेलो, नमस्कार, ओम शांति, मैं दयाराम बोल रहा हूँ, राजस्थान रामपुरा से।
1: जी जी जी जी, दयाराम जी बोलिए, कैसे हैं आप?
2: बहुत ही अच्छा हूँ, बाबा की कृपा है और सभी मित्रों की, भाइयों की, बहनों की, और आप, आपका और हमारे
1: डॉक्टर साहब, जी जी,
2: डॉक्टर साहिबा का रेडियो मधुबन स्टूडियो में तहे दिल से उनका भी स्वागत है।
0: थैंक यू।
2: तो डॉक्टर साहब आते हैं तो हमारे कोई जो समस्या होती है तो हम उसका हल ढूंढने के लिए डॉक्टर से बात करते हैं।
0: जी।
2: तो डॉक्टर साहब जी, हमारे जो एक बहन जी है तो उनके पैर से, घुटने से नीचे और पैर के बीच में जो हड्डी है तो उसमें दर्द हो रहा है। तो वो कभी कभी दर्द होता है, थोड़ा चलने में भी दिक्कत होती है उनको, तो उसके लिए डॉक्टर साहब जी क्या करना पड़ेगा?
0: एक तो सबसे पहली बात, उनकी उम्र क्या है अभी?
2: उसकी उम्र तो 45 साल है जी।
0: अच्छा। तो देखिए क्या होता है ना, कि मैंने जैसे आपको बताया कि तीन दोष होते हैं शरीर में, वात, पित्त और कफ। तो बचपन का हमारा जो समय होता है ना, वो कफ का समय होता है, तो कफ थोड़ा सा ज्यादा रहता है शरीर में और इसीलिए कफ से संबंधित बीमारियां ज्यादा होती है। हमारी जो युवावस्था रहती है ना, वो पित्त का काल रहता है, तो इसीलिए शरीर में पित्त की समस्याएं ज्यादा बढ़ती है। और ये जो आफ्टर 40-45 जो है ना, वो शरीर में वात ज्यादा बढ़ने लगता है, और जो वात बढ़ता है उसकी वजह से क्या होता है, वात की निशानी क्या है, माने शरीर में जो दर्द होता है ना, जैसे खास करके हड्डियों में, घुटनों में, घुटनों के नीचे, पैरों में, तो ये मुख्य रूप से वात की वजह से होता है। तो जो वात बढ़ा हुआ है उसके वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो वात के लिए सबसे उत्तम औषधि जो बताई है आयुर्वेद में, वो है ऑयल। लेकिन ऑयल भी कौन सा यूज करना चाहिए, ये हमें समझने की आवश्यकता है। तो जैसे अलग अलग प्रकार के ऑयल आते हैं, सबसे सरल और सबसे अच्छा जो है वो तिल्ली का जो तेल होता है, तिल्ली का तेल गर्म तासीर वाला भी होता है और उससे वात को कम करने में भी मदद मिलती है, एब्जॉर्प्शन भी उसका अच्छा होता है। तो अगर घर में तिल्ली का तेल है, चलो तिल्ली का तेल नहीं, आप सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं। तो सरसों के तेल को थोड़ा सा गर्म करके उसमें थोड़ा सा नमक मिला के उसको अगर रेगुलरली अगर उससे मसाज करेंगे जहां पे भी दर्द हो रहा है, तो अगर वो ज्यादा पुराना दर्द नहीं होगा ना, तो इतने से उपाय से भी वो शांत होने लगेगा। लेकिन ये कब करना है, स्नान करने से पहले करना है, और ये करने के बाद में थोड़ा सा गरम गरम पानी से उसको सेकना है। तो आयुर्वेद में इसको स्नेहन और स्वेदन ऐसे कहा गया है। तो ये मैंने आपको घर ही घर में कैसे आप कर सकते हैं ये बताया। बाकी अगर आपके आसपास कोई पंचकर्म चिकित्सा करने वाला अगर चिकित्सक अवेलेबल है तो उसकी सलाह लेकर भी आप इसको कर सकते हैं और उनके वहां जाके भी आप इसको करवा सकते हैं। वहां जाएंगे तो वो अलग अलग ऑयल यूज करते हैं, जैसे सबसे फेमस इसमें एक तेल है जो आपने शायद नाम सुना भी होगा, महानारायण तेल। ये बहुत ही सुप्रसिद्ध तेल है वात रोगों के लिए। तो कहीं भी शरीर में दर्द हो रहा है ना, तो वो तेल को थोड़ा सा अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने से पहले उसको थोड़ा गर्म करना आवश्यक होता है, तो ये भी कर लेंगे ना तो उससे भी काफी उनको राहत मिलेगी।
2: शरीर में कहीं की कौन सी जगह पे हो तो हम उसकी मसाज करने से वो थोड़ा दर्द कम होगा जरूर।
0: जी
2: जी सर, धन्यवाद धन्यवाद सर आपका, बहुत ही आपका हमारी समस्या का हल बताया आपको, धन्यवाद, थैंक यू।
0: जी जी जी,
1: चलिए दयाराम जी बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए, शुक्रिया, आपका दिन शुभ रहे। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि आपने देखा दयाराम जी ने अपनी समस्याएं बताई और डॉक्टर दिलीप नलगे जी ने उन्हें समस्या का समाधान सुनाया, तो निश्चित तौर पे आप भी अगर किसी तरह की कोई बीमारी से परेशान हो तो ज़रूर बताइएगा। और जैसे मैं अभी खांस रहा था, ये खांसी 3-4 दिन से है।
0: अच्छा,
1: तो इसके लिए क्या है कि वो खत्म नहीं हो रहा है, शायद 10 दिन हो गया।
0: मैं आपको बहुत सरल उपाय बताता हूँ इसके लिए। देखिए, अदरक का जूस निकाल के उसमें शहद मिला करके रात को सोने से जस्ट पहले उसको चाटना है।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो जितना शहद का जूस, जितना शहद उतना ही अदरक का जूस।
1: ओके ओके,
0: और सुबह भी एक बार उसको चाटना है। 2-3 दिन में आपकी सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, एक दो डोज में ही हो जाएगी।
1: अरे वाह,
0: ऐसा प्रैक्टिकली हुआ है।
1: हुआ है तो फिर अपन बात करते हैं। अच्छा, यहाँ एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो जी, नमस्ते।
3: नमस्ते, ओम शांति।
1: ओम शांति जी, बोलिए।
3: सगुना बेन बोल रही
1: हूँ, जोटाना। सगुना बेन जोटाना से स्वागत है। स्वागत है, डॉक्टर दिलीप नलगे जी से बात कीजिए, सुन रहे हैं। जी
3: डॉक्टर जी को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्ते जी,
1: ओम शांति।
0: ओम शांति
3: सर, मुझे ना सर्दी हो गई है
0: जी,
3: 4-5 दिन हो गया
0: जी,
3: और इसके पहले भी हो गई थी, 1 साल हो गया अब
0: जी।
3: तो पहले कभी नहीं हुआ, अभी ऐसी सर्दी हो गई तो ऐसे कफ, खांसी तो आती है लेकिन कफ निकलता नहीं, अंदर आवाज थी आती सोचती है ना, तो अंदर कफ की आवाज आती है और निकलता नहीं है। अभी मैं दवा लाती हूँ फिर भी कोई आराम नहीं हुआ है, 2-3 हो गया दवा लाई लेकिन अंदर खांसी आती है ना तो निकलता नहीं कफ।
0: अच्छा, माना जम गया है कफ।
3: हाँ,
0: अच्छा, तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सरल उपाय बताता हूँ। किसी को भी ऐसा अगर होता है ना कि जैसे खांसी तो आ रही है लेकिन कफ निकल नहीं रहा है, मतलब जैसे अंदर जम गया हो, तो उसके लिए तिल्ली का तेल या सरसों का तेल थोड़ा सा गर्म करके उसमें नमक मिला करके चेस्ट को मसाज करना है, अपनी चेस्ट को जो है वो मसाज करना है और गरम गरम पानी से थोड़ा सा सेक करना है, उससे जो कफ जमा हो गया है ना उसको पिघलने में मदद मिलती है, पिघलने में मदद मिलती है और वो पिघलने लगता है। और उसके साथ साथ आपको रात को सोते समय अदरक का रस निकाल के उसमें उतना ही शहद मिला करके और थोड़ी सी हल्दी, ये आपको चाटना है रात को सोते समय भी और सुबह उठने के बाद भी। ऐसा 2 टाइम आप करेंगे, चावल बिल्कुल बंद कर दीजिए, चावल आपको नहीं खाने हैं, जब तक आपको सर्दी खांसी है तब तक आपको चावल नहीं खाने हैं, ठीक है?
3: हाँ।
0: है ना, इतना आप कर लेंगे तो भी आपको बहुत उससे राहत मिलेगी और आपका प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगा।
3: हाँ,
0: तिल्ली या सरसों के तेल में से कोई भी तेल चलेगा, उसको थोड़ा गरम जरूर कर लीजिए।
3: हाँ, हाँ,
0: और उसमें फिर नमक मिला करके उससे मसाज करना है। जी जी, और मसाज करने के बाद फिर थोड़ा गरम पानी से सेक करना है, ठीक है? तो उससे अपने आप जो कफ है ना वो आने लगेगा, माना बलगम निकलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कफ को बाहर निकालना आवश्यक है।
3: ऐसे खांसी इतनी ज्यादा भी नहीं आती है, कभी कभी आती है थोड़ी
0: जी।
3: तो मैंने सोचा क्या मालूम क्या हो गया है, अभी डॉक्टर को दिखाया तो बोले दवाई दिया तो बोले हो जाएगा ठीक, लेकिन अभी दो दिन हो गया
0: जी।

0: जी, ओम शांति
1: जी। शुक्रिया बहन, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। चलिए, आपने अच्छा सवाल पूछा कि कैसे हम लोग जो है सर्दी खांसी जुकाम और ये ठीक नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए और किस तरह का हमारा डाइट जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। हम कभी कभी डाइट को भूल जाते हैं और जैसे एलोपैथी में तो डाइट बताते ही नहीं है
0: जी।
1: कि ये नहीं खाना, ये नहीं, सब खाओ और ये दवा भी खाओ बोलते हैं तो वो बड़ा आसान लगता है, तो हम लोग आसान चीजों पे ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं।
0: देखिए मैं आपको बताऊं, ये डॉक्टर के लिए भी अच्छा है क्योंकि आप परहेज मत करिए और हमारे पास आते रहिए, हमारी फीस देते रहिए
1: जी जी जी जी। आइए एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्कार।
2: हाँ, बुरा राम बोल रहा हूँ रमेश भाई। राम राम है सुबह सुबह।
1: राम राम। बुरा राम जी, स्वागत है आपका, बोलिए।
2: डॉक्टर साहब से बोले तो थोड़ा मेरे को बात करने का था।
1: ठीक है डॉक्टर साहब, सुन रहे, बात कीजिए
0: जी, बोलिए। बोला राम जी,
2: नमस्कार।
0: नमस्ते नमस्ते।
2: अच्छा, मेरे को कम से कम ये दो महीने से ज्यादा ये सांस की बीमारी हो गई है, तो कोई भी काम करता हूँ या सीढ़ी चढ़ता हूँ उतरता हूँ तो मेरे को ये सांस फूल जाता है और मैं ये काम कर सकता हूँ।
0: अच्छा,
2: इसके लिए कोई दवाई है तो?
0: उम्र क्या है आपकी बोला राम जी?
2: हाँ,
0: उम्र, उम्र, एज?
2: उम्र है मेरा 75।
0: अच्छा, और आपका हीमोग्लोबिन वगैरह आपने चेक करवाया था कभी?
2: खून दवा लेता हूँ लेकिन वो थोड़ा रिलीफ मिलता है लेकिन वापस चालू हो जाता है।
0: हाँ, देखिए सांस फूलने के दो कारण हो सकते हैं। अगर शरीर में खून, शरीर में खून की कमी हो जाती है ना, तो उसकी वजह से भी सांस फूल सकता है, और या तो फिर दमा की बीमारी अगर हो गई तो भी सांस फूल सकता है।
2: तो दमे एक तरीका है मेरे को।
0: अच्छा, तो आपको ये कैसे पता चला कि आपको ये मना दमे जैसा प्रॉब्लम हुआ है? क्या ठंड में आपको ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है, ऐसा होता है क्या?
2: ऐसा बोले तो क्या है कि ये पहले तो थोड़ा थोड़ा मेरे को सर्दी खांसी तो हमेशा इसी मतलब नाक
0: अच्छा
2: तो रहता मेरा।
0: अच्छा,
2: और अभी पहले खांसी थी लेकिन मैंने वो पहले सिगरेट बीड़ी पीता था तो वो बंद कर दिया तो कम हो गई मेरे को खांसी, कम है अभी
0: जी,
2: लेकिन ये सांस फूलना ये ज्यादा हो गया
0: जी जी जी जी। अभी तो इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक तो देखिए त्रिकटु चूर्ण आता है उसको, त्रिकटु चूर्ण आता है, या तो सौंठ जो होती है ना, सौंठ, सौंठ है, मिरी है, पीपर है, है ना, ये तीनों को मिला के त्रिकटु कहा जाता है।
2: अच्छा, सौंठ और क्या?
0: सौंठ, मरी, मरी, काली मरी,
1: काली मरी,
0: काली मरी।
3: आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल,
1: हेलो,
3: आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे,
1: हेलो हेलो,
2: हाँ मैं बात क्यों बंद होगी?
1: हाँ वो अपने आप ही बंद हो गए, बोलिए बोलिए आपको। हाँ, काली मिरी,
0: सौंठ,
1: सौंठ,
2: काली
1: मिरी, सौंठ और
0: पीपर,
1: पीपर, पिपली, पिपली का पाउडर।
0: ये ना त्रिकटु चूर्ण नाम से मिलता है, आप अगर देखिए
1: बाजार में आपको मिल जाएगा डायरेक्टली रेडीमेड, त्रिकटु नाम लिख लीजिए,
0: त्रिकटु,
1: त्रिकटु, त्रिकटु,
2: त्रिकटु,
1: त्रिकटु, त्रिकटु। हाँ
2: अच्छा,
1: त्रिकटु
2: त्रिकटु ने,
1: हाँ हाँ
0: हाँ हाँ, ये सुबह शाम है ना आप आधा आधा चम्मच ले लीजिए।
2: अच्छा,
0: शहद में मिला करके,
2: शहद में मिला करने,
1: हाँ हाँ बिल्कुल।
0: और अच्छा, कनकासव नाम की एक दवाई आती है, कनकासव,
1: कनकासव, ये लिक्विड है,
2: कनकासव,
0: हाँ कनकासव
1: बोतल,
0: ये सुबह शाम, अच्छा, सुबह नाश्ते के बाद रात के भोजन के बाद 15-15 ml उतने ही गर्म पानी में मिलाकर,
2: अच्छा,
0: माना 3-4 चम्मच, तीन से चार चम्मच गर्म पानी ऐसे मिला करके उसको आप लेना शुरू कर दीजिए।
2: अच्छा अच्छा,
0: और ठंडी तासीर वाली चीजों से परहेज रखिए।
2: हाँ ठंडी।

0: चाहिए, इससे ज्यादा हो जाता
1: है। हाँ, चावल वगैरह आप मत खाना है ना,
2: जब तक ठीक नहीं हो रहा है तब चावल बंद करना।
0: अच्छा अच्छा,
2: ठीक हो गया तो फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा शुरू कर सकते, ठीक है।
0: ओके
2: ओके, बुराराम जी बहुत बहुत धन्यवाद। कौन
0: धन्यवाद
1: जी
2: जी, ओम शांति।
1: ओके ओम शांति।
2: चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर बातें करेंगे।
3: महिलाओं के लिए एक नई उम्मीद, अब एनीमिया के उपचार के लिए FCM का एक ही इंजेक्शन लगवाएं और निश्चिंत हो जाएं। गर्भावस्था के दौरान दूसरी और तीसरी तिमाही में खून की कमी से होने वाले दुष्परिणामों जैसे थकान, कमजोरी, भूख में कमी और अन्य जटिलताओं तथा कम वजन वाले नवजात शिशुओं की समस्या से निपटने के लिए अब FCM इंजेक्शन की एक ही खुराक काफी है।
4: FCM यानी फेरस कार्बोक्सी माल्टोस खून की कमी को दूर करने का एक सुरक्षित और प्रभावी तरीका है, तो बिना देर किए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर आज ही FCM का इंजेक्शन लगवाएं और स्वस्थ रहें।
3: हर रोग का मिटे नामो निशान, ये है संकल्प, स्वस्थ रहे राजस्थान। NHMIEC राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: हेलो जी नमस्कार। हेलो हेलो हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका। अच्छा आपका फोन चालू है, शायद आप दूसरे से बात कर रहे हैं, एक बार फोन कट कर लीजिए और आइए आगे बढ़ते हैं। बुराराम जी का फोन चालू ही रहा गया और शायद वो बातें भी कर रहे हैं, तो आइए आज रविदास जयंती है तो ललिता जयंती भी है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं। चलिए अब बात करते हैं आयुर्वेद से जुड़ी हुई सारी बातें, जैसे हम लोग अभी सर्दी खांसी जुकाम की बातें चल रही थी, अब बात करते हैं वात पित्त के बारे में भी, ये भी क्या सीजनल होते हैं, ऋतु इसके साथ भी जुड़ा हुआ है क्या, अगर ऐसा है तो फिर कैसे इसके ऊपर काम करें जी।
1: देखिए आयुर्वेद में जो स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा बताई है डेफिनेशन, उसमें उन्होंने कहा है समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक क्रियः प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। ये महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में 5000 साल पहले ये चीज लिखी हुई है।
2: अच्छा,
1: तो उसमें उन्होंने ये बात बताई है कि अगर हमारे शरीर में जो तीन दोष हैं वात पित्त और कफ, ये तीनों अगर बैलेंस में रहते हैं, हमारा अग्नि माना डाइजेस्टिव फायर ये भी अगर सही रहता है, समदोषा समाग्निश्च समधातु, हमारे शरीर में जो सात धातु है रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये भी अगर बैलेंस में रहते हैं, मलक क्रिया माना हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छे से काम करता है, हमारी आत्मा मन और इंद्रियां ये प्रसन्न रहती है, तो हम स्वस्थ कह सकते हैं अपने। तो उस दृष्टि से वात पित्त कफ का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। और इसीलिए ये समझना हमें आवश्यक है, जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि ये कफ जो है वो बढ़ता है, उसका सीजन होता है जैसे ठंड का जो एंड है है ना, और गर्मी शुरू हो जाती है मार्च में, तो ये कफ के प्रकोप का समय रहता है।
2: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: ऐसे ही पित्त के प्रकोप का जो समय रहता है वो सितंबर अक्टूबर, जिसको शरद ऋतु कहा जाता है। जैसे ही बरसात खत्म होने लगती है और बरसात खत्म होने लगती है और थोड़ा सा उस समय भी गर्मी बढ़ जाती है, तो वो जो सितंबर अक्टूबर का समय है, जैसे कहते भी है ना कि अक्टूबर हीट, तो उस समय में गर्मी जो है वो बढ़ जाती है और शरीर में जो पित्त दोष है वो प्रकोपित हो जाता है, और इसीलिए उस दौरान पित्त से संबंधित बीमारियां बढ़ जाती है, है ना, जैसे एसिडिटी है, स्किन डिसीजेस है, शरीर में गर्मी बढ़ जाती है और उसकी वजह से माना एक्सेसिव स्वेटिंग हो जाना, फोड़े फुंसी आ जाना शरीर पर, ये सारी पित्त की बीमारियां हैं। तो ये पित्त की बीमारियां उस दौरान बढ़ती है। और वात की बीमारियां कब बढ़ती है, आपने भी ये देखा होगा कि हमें देखिए काफी साल पहले कोई जगह पे जो है वो लग गया था और वो दर्द बाकी समय में नहीं दर्द आता है, लेकिन बरसात जब होने लगती है ना तो वो दर्द उभर के आता
2: है, ठंड में उभर के आता है
1: जी। तो ये बरसात का समय जो होता है ना, ये एक वात के प्रकोप का काल होता है।
2: अच्छा अच्छा, आइए इस बीच हम लोग हमारे कॉलर से बात करते हैं, उसके बाद फिर बात पित्त के बारे में जो बातें कर रहे थे उसको भी समझ लेते हैं। हेलो जी नमस्कार।
5: हाँ जी साहेब नमस्कार, रमेश भाई।
2: નમસ્કાર જી, નમસ્કાર, બોલીએ.
5: તો હું એમ કહેતો હતો, મારા હું તકલીફ એ થાય છે, પણ આ ઘણી વસ્તુ કહું ને, ગળપણ,
2: હા,
5: તો એનાથી મારા પેલું ટાબડિયા જેવું શું થાય છે, શ્વાસમાં લેવા, શ્વાસ લેવા.
1: હિન્દી મેં નહીં બાત કર સકતે આપ? હિન્દી મેં, હિન્દી મેં,
5: હા હિન્દી મેં, તો મેં બોલતા હું. ગુડ વાલી જો ચીજ આતી હૈ ને,
1: હા,
5: મીઠાઈ વાલી, તો મેં ખાતા હું ના, તો મેરે કો તકલીફ હોતા હૈ શ્વાસ લેને મેં.
1: અચ્છા,
5: જો ગુજરાતી મેં ઉસકો બોલતે હૈ, છોટે બચ્ચે કો નહીં હોતા ટાબડિયા,
1: હા,
5: એસા મેરે કો હોતા હૈ.
1: અચ્છા,
5: મેં ડોક્ટર કો બતાયા, રિપોર્ટ કરવાયા, મગર ઉસને બોલા જો મીઠાઈ વાલી ચીજ કમ ખાના, તો ખાના હી નહીં. તો મેં જો ખીચડી બોલતે और आलू बोलते वो भी खाता हूँ तो भी होता है. तो इसके लिए साहब को
2: क्या कुछ उपाय बताएं?
1: आपकी उम्र कितनी है?
5: 44 वर्ष.
1: अच्छा, और कब से आपको ये तकलीफ हो रही है?
5: ये मेरे को साल ही लगा है, एक साल,
2: एक हाँ, साल हो गया.
1: तो आप ये समझ लेना कि ये कफ के बढ़ने से हो रहा है.
5: हाँ,
1: है ना? तो आलू खाने से भी, चावल खिचड़ी खाने से भी कफ बढ़ता है शरीर में.
5: हाँ, जो जो सब्जी में भी मिठाई आती है ना, वो भी खाता हूँ ना.
1: हाँ,
5: आलू खाओ, खिचड़ी खाओ तो भी.
1: आपको मैं एक मीठी चीज बताता हूँ, वो आप खा सकते हो, जो कफ नहीं बढ़ाती है.
5: हाँ, बोलो बोलो.
1: गुड़ जो होता है ना, गुड़.
5: हाँ, गुड़, गुड़.
1: लेकिन वो भी कैसा?
2: ब्लैक.
1: ब्लैक जो होता है, जो नेचुरली जो बनाया है,
2: ऑर्गेनिक, आयुर्वेद,
1: ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक गुड़,
2: देसी गुड़, देसी गुड़,
1: देसी गुड़, बिना केमिकल वाला, है ना? उसको आप थोड़ा बहुत खा सकते हो, क्योंकि बाकी सारी चीजें आपके कफ को बढ़ाएगी
2: ये नहीं बढ़ा,
1: और आपको तकलीफ होगी. तो इसीलिए बाकी सारी मीठी चीजें आप अवॉइड करो.
5: हाँ, तो ये तो बंद कर दिया है
1: ना. लेकिन बहुत ही क्रेविंग जैसे होता है ना, जिसको जो चीज पसंद आती है, अगर पूरी तरह से बंद करो तो उसको एकदम अजीब लगने लगता है. तो इसीलिए आपको जब भी ऐसा लगे, मीठा खाने की इच्छा हो, तो थोड़ा सा गुड़ आप खा सकते हो,
2: देसी गुड़ खा लेना, वो रख लेना अपने घर में, और जब ऐसा मन करे तब खाना, रेगुलर खाने की जरूरत नहीं. हाँ,
5: और मैं जो आदू आता है, आदू और गुड़,
1: हाँ,
5: मुंह में रखता हूँ ना,
1: हाँ,
5: तो इससे ठीक होता है.
1: हाँ, तो आदू भी कफ कम करता है.
5: हाँ, आदू और गुड़ दोनों में,
2: दोनों का उपयोग सही है.
1: हाँ,
5: मुंह में रखता हूँ तो इससे ठीक होता है.
1: हाँ,
5: और बाद में तो जो ज्यादा वो होता है, तो मेरे गोली खाना पड़ता है.
1: तो इसीलिए अदरक और गुड़ ये आपके लिए काम की चीजें हैं.
5: अदरक, गुड़,
1: हाँ, ठीक है,
5: दोनों रखूं.
1: हाँ, लेकिन गुड़ भी बहुत ज्यादा प्रमाण में नहीं खाना है, ये ध्यान रखना है.
5: हाँ,
1: ठीक है.
5: हाँ, ठीक है,
1: हाँ हाँ हाँ,
2: ओके जी, थैंक यू,
1: ओके.
2: हाँ, तो ये थे हमारे दोस्त जो कफ के चक्कर में आ गए हैं, बड़े परेशान हैं
1: जी.
2: तो उनके लिए रेगुलर जो है चीनी या फिर चावल, ये सारी
1: मीठा खाने से भी कफ बढ़ता है.
2: बढ़ता है बिल्कुल, और चावल वगैरह भी खाने से बढ़ जाता
1: जी,
2: है.
1: चावल, आलू,
2: आलू, ये सारी चीजें थोड़ी सी कम कर दे
1: जी,
2: जब तक आप नॉर्मल पोजीशन पर नहीं आए तब
1: जी.
2: तक, और गुड़, अदरक, ये सारी चीजें थोड़ा सा रख लीजिए आपकी जो है बैलेंस करने के लिए. आइए, आप बात कर रहे थे हम लोग पित्त और वात के बारे में, तो वो जैसे की बात चल रही थी तो वो पूरा कर लेते हैं जी.
1: तो देखिए, वात दोष हमारे शरीर में कुपित होता है बरसात के समय में. तो बरसात के समय में पुराने पुराने दर्द जो है ना, वो उभरने लगते हैं. ऐसा लगता है कि अरे, साल भर तो मुझे कुछ प्रॉब्लम
2: नहीं हुआ, अभी कैसे हुआ?
1: अभी ये जैसे ही बादल आ गए, बरसात होने लग गई, तो दर्द ये बढ़ गया. क्योंकि उसका रीजन ये रहता है कि उस समय शरीर में वात दोष बढ़ता है, और वात का कनेक्शन दर्द के साथ है. तो जहां जहां भी दर्द है, वो वात की वजह से ही होता है, वात के प्रकुपित होने की वजह से होता है.
2: बिल्कुल.
1: जहां जहां बर्निंग सेंसेशन है, जिसको आयुर्वेद में दाह कहा गया है, वो पित्त की वजह से होता है, बढ़े हुए पित्त की वजह से. और जहां जहां खुजली है, कंडू है, वो बढ़े हुए कफ की वजह से होता है. तो इसीलिए ये चीजें भी हमें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए. और एक बात मैं इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ कि हमारे खाने में जैसे जो 6 रस होते हैं ना, ये 6 रस भी इन दोषों को कंट्रोल में रखने में मदद करते हैं।
2: अच्छा,
1: जैसे देखिए छह रस कौन कौन से होते हैं, मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा, कशैला। ठीक है, तो ये जो तीखा, कड़वा और कशैला है और गर्म तासीर वाली चीजें हैं, ये कफ को कंट्रोल में रखने में मदद करती है। मीठा, खट्टा, नमकीन और गर्म तासीर वाली जो चीजें हैं, ये वात को नियंत्रण में रखने में मदद करती है। मीठा, कड़वा और कशैला और ठंडी तासीर वाली चीजें पित्त को नियंत्रण में रखने में मदद करती है।
2: एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्कार।
6: नमस्ते सर, कैसे हो?
2: बढ़िया बढ़िया, बताइए आप कैसे हैं?
6: हमारे दिल्ली सर को भी हमारे तरफ से नमस्ते।
1: नमस्ते जी, नमस्ते।
6: और जी, मेरा तो सवाल था लेकिन मुझे तो जवाब मिल गया इसमें से।
1: अच्छा।
6: कि कई सारे सवाल था लेकिन फिर भी एक सवाल में सभी जवाब मुझे मिल गया है। पहले तो मैं आपको बात करना चाहता था कि वो कफ के बारे में, तो
1: जी
6: वो तो हमारे सगुना बहन ने जो बात की और हमारे जगदीश भाई ने भी बात की, तो इसमें भी मेरा जवाब मिल गया कि मेरे भी थोड़ी कफ की तकलीफ है। लेकिन मैं जो आपने बताए गुड़ की बात, तो सही है, बिल्कुल मैं गुड़ खा लेता हूँ कभी कभी, तो गुड़ से अच्छा रहता है
1: जी,
6: और देसी गुड़ आता है, बहुत अच्छा रहता है। मैं मीठा तो नहीं खाता, मुझे कि मेरे भी डायबिटीज का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मीठा तो मैं नहीं खा सकता हूँ। और दूसरी बात सर बताए, मेरा तो सवाल ये था जो आपने शुरुआत में बताया कि सरसों का तेल की बात की, तो बिल्कुल सही बात है सर, सरसों का तेल हम भी हमारे घर में रखते हैं, क्योंकि मैं बताते हमारी पत्नी को नीचे जब पक्के तलवे आते हैं तो उससे बहुत दर्द रहता था। तो एक बार आपने बताया था वो सरसों का तेल, तो इसमें हमको इसका हम तो उपयोग किया हमने
1: जी,
6: उसको गर्म करके जो मीठा डाल के वो जो नीचे मालिश करते हैं पैरों में इसके तलवे, तो इससे बिल्कुल ठीक हो गया सर
1: जी।
6: आज वो बिल्कुल नहीं कहती कि मुझे दर्द हो रहा है
1: जी,
6: तो 5-7 दिन 7-8 दिन तक हमने लगवाया वहाँ इसको बात से, तो वो अभी बिल्कुल ठीक है और बोलती नहीं है कि मुझे कोई दर्द होता है।
1: वेरी गुड।
6: तो इसे आपने जो आपने बताया था सर, पहले बताया था, तो ये दवाई हमने की है वो देसी दवाई, तो हमने
1: जी
6: यही वो जो सरसों तेल से बिल्कुल अच्छा है, इसकी मालिश करना भी अच्छी है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा जो गर्दन के पास थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता था, दर्द होता था, लेकिन हमने भी वहाँ वो सरसों का तेल की मालिश की तो अब ठीक हो गया
1: जी। जी जी जी,
6: बहुत सरसों का तेल बिल्कुल अच्छा है, सबकी दवाई ये की है,
1: बहुत अच्छा। आपने अभी जैसे सरसों के तेल की बात की ना, ऐसे और एक तेल है जो बहुत ही फायदेमंद है लेकिन उसके बारे में लोग उतना जानते नहीं है या उसका उतना उपयोग नहीं करते हैं,
6: तो आप बताइए।
1: वो है कैस्टर ऑयल।
6: क्या?
1: कैस्टर ऑयल।
6: कैस्टर ऑयल,
1: हाँ, एरंडी का तेल,
6: अरंडी का तेल
1: है ना,
6: बाजार में मिलता होगा मेडिकल में
1: जी, तो अरंडी का तेल पीना भी चाहिए।
6: अच्छा, वो हमारे एरंडी का तेल आता है, सही है, उसको हम दिवाल भी बोलते हैं, दिवेल भी बोलते हैं।
1: हाँ, राइट,
6: हमारे यहाँ दिवेल भी बोला जाता है। हाँ, जो गेहूँ के जो गेहूँ मोने गेहूँ को तो रगड़ने के लिए जो
2: यूज करता है, बराबर बराबर,
1: सप्ताह में एक बार जरूर पीना चाहिए, उससे पेट भी अच्छे से साफ हो जाता है।
6: बिल्कुल जी, मैं बताऊं सर, तो हमारे पहले हमारे पिताजी जैसे दादाजी थे वही करते थे कि 10-15 दिन होता था तो एक बार जो चाय में डाल देते थे, 2-4 बूंद डाल देते थे वो चाय में
1: जी,
6: तो इससे कई सारे फायदे होते थे, एक तो पेट आपका साफ हो जाता था, कलोजा की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती थी और पेट का दर्द भी मिट जाता था।
1: बिल्कुल
6: सही बात है आपकी,
1: आधी बीमारियां तो पेट से ही शुरू होती है, तो पेट को अगर ठीक रखेंगे तो वैसे ही आधी बीमारियां खत्म हो जाएंगी।
6: सही है, बिल्कुल बिल्कुल, सभी बीमारियां पेट से शुरुआत होती है
1: जी।
6: तो आपने बहुत अच्छा एक ताजा हमको कर दिया वो दवाई आपने, क्योंकि हम तो भूल गए थे, पहले जमाने की बात है, पहले तो लोग यही करते थे, कोई ऐसी कोई दवाई के डॉक्टर के पास नहीं जाते थे।
1: हमारे भी दादाजी जो है ना, हमें याद है बचपन में सबको जब छुट्टी का दिन रहता था ना, सारे बच्चों को घर में जितने लोग हैं सबको अरंडी का तेल पिलाते थे और धूप में बिठाते थे, और उसके बाद फिर थोड़ा पेट वगैरह अच्छे से साफ हो जाता था, सब बिल्कुल स्वस्थ रहते थे, कोई बीमारी नहीं हुआ करती थी।
6: बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये अच्छी दवा है, 100% गारंटी वाली।
1: जी बिल्कुल, और आजकल जैसे सायटिका का प्रॉब्लम भी जो देखा जाता है ना
6: जी,
1: तो सायाटिका की भी अगर शुरुआत हो रही है तो उसके लिए अरंडी का तेल ये सबसे बेस्ट मेडिसिन है।
6: बेस्ट है, हाँ, सबसे बेस्ट है,
1: सही माना है, इतना इजीली अवेलेबल है लेकिन इतना उपयोगी है, मेरा खुद का भी अनुभव है और मैंने कई पेशेंट्स को भी ये दिया हुआ है।
6: सही है, बिल्कुल आपकी बात सही है सर, अरंडी का तेल तो देखो एक लाजवाब, कहते हैं ना लाजवाब, एक
1: जी जी जी इसमें बिल्कुल बिल्कुल
6: बहुत अच्छा बताया सर आपने, धन्यवाद आपका।
1: तो बस मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने आयुर्वेद के बारे में अपना अनुभव जो है वो सबके साथ शेयर किया।
6: जी लोगों को भी पता चले सर, आपने जो अरंडी का तेल बताया मुझे, मैंने सरसों का तेल बताया, वो लोगों के लिए फायदा कारक है, वो भी समझ पाए कि भाई सही है, वो करने से हमको कई सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं।
1: बिल्कुल,
6: कई सारी बीमारियां इसमें से जो गुम हो जाती है डिवेल से।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
2: चलो सुरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू।
1: देखिए ये जो बात कर रहे थे ना अभी
2: सुरेश जी,
1: वास्तव में हमारे शरीर में जो बीमारियां होती है ना वो आधे से ज्यादा बीमारियां पेट से ही शुरू होती है।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: इसके लिए बहुत अच्छी बात किसी ने कही है
2: जी,
1: कि भाई स्वस्थ किसको कहेंगे, जिसके हाथ पैर गर्म, पेट नरम और सिर ठंडा,
2: अरे वाह,
1: तो डॉक्टर को लगाओ डंडा। माना अगर हमारे हाथ पैर गर्म है, पेट नरम कब रहेगा, जब साफ रहेगा तभी तो नरम रहेगा।
2: बिल्कुल,
1: लेकिन आजकल क्या हो गया है, हाथ पैर हो गए ठंडे, पेट हो गया है कड़क और सिर हो जाता है छोटी छोटी बातों में गर्म। तो ये तीन चीजों को अगर हमने मैनेज कर लिया ना तो हमें स्वस्थ रखने से कोई भी रोक नहीं सकता है, स्वस्थ रहने से।
2: सही बात है। चलिए बहुत अच्छी बात आपने बता दिया, आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि आज विशेष एक तारीख है और अच्छा दिन है, और पहली तारीख में आपको सारा ज्ञान मिल गया सेहत का, और अपने सेहत को अच्छा रखने से आपका पूरा जो साल है वो अच्छा बीतेगा, महीना भी अच्छा बीतेगा। हेलो जी नमस्कार।
7: नमस्कार
2: जी, नमस्ते सर जी,
7: मैं दत्ता जी बोल रहा हूँ।
2: दत्ता जी बोलिए, स्वागत है आपका।
7: मेरा अभी एक महीने से लेफ्ट साइड वाले पैर पे सांधे पे उसका नस दबी है, उसके लिए क्या करना है?
1: आपको तकलीफ क्या होती है उसकी वजह से?
7: मैं छींक आए तो भी पेन हो रहा है, पाँव उठाए तो भी पेन हो रहा है।
1: अच्छा,
7: डॉक्टर ने तो ऑपरेशन बोला है।
1: अच्छा, कौन सी सिर दबी है आपकी, मना कुछ ऐसा उसमें आया है रिपोर्ट में?
7: हाँ रिपोर्ट में आया, वो तो रीढ़ की हड्डी वाला, वो तो L5 में।
1: ओके, L5 में।
7: और दूसरा जो सांधा जो है, जहाँ अपना पैर घूमता है ना।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ,
7: उधर
1: मना घुटने के पास।
7: हिप।
1: अच्छा हिप, मना पीछे की तरफ से दर्द हो रहा है ना आपको?
7: हाँ हाँ, उसके अंदर नस दबी है, वो उठानी है
1: जी। तो मना सायाटिका जैसा ही आपका ये समस्या मुझे दिख रही है, ठीक है? तो आपको भले ही एक डॉक्टर ने ये राय दी हो ऑपरेशन की, लेकिन मैं सभी श्रोताओं को ये निवेदन करना चाहूंगा कि अगर किसी भी डॉक्टर से आपको ये राय दी जाती है ऑपरेशन की, तो आप कम से कम और दो डॉक्टरों से जरूर सलाह ले। हो सकता है कि ऑपरेशन से बचने का आपको कोई रास्ता उससे मिल जाए।
7: उन्होंने ही बताया है 10 दिन की दवाई दे, 10 तारीख तक, उसके बाद ठीक हुआ नहीं तो ऑपरेशन करना।
1: नहीं नहीं, तो मैं वही बता रहा हूँ कि एलोपैथी में बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें वो ऑपरेशन के सिवाय कोई चारा नहीं ऐसा लगता है, लेकिन वो आयुर्वेद से ठीक होती हुई दिखाई देती है, ऐसे कई केसेस हमने देखे हैं। तो इसीलिए भले ही एक डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन की सलाह दी है, लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप जरूर पास में कोई आयुर्वेद चिकित्सक से भी एक बार सलाह अवश्य लें। हो सकता है कि आपको उसके राहत मिल जाए, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाए। और मैं यहाँ से भी आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको ये समस्या कितने समय से आ रही है? अभी
7: 28 दिन से।
1: माना ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसीलिए
7: मैं अथाई से तो चल नहीं पा रहा, उठ नहीं पा रहा, सो नहीं पा रहा, बैठ नहीं पा रहा।
1: अच्छा, बैठ भी नहीं पा रहे?
7: हाँ,
1: सो भी नहीं पा रहे।
7: साइड वाला जो हिप है तो उसके ऊपर ही हुआ है ना ज्यादा।
1: तो कंटिन्यूअस पेन है क्या? कंटिन्यूअस है?
7: हाँ,

0: पंतुनज पे मैं।
1: अच्छा ओके, तो आप का पेट वगैरह ठीक है, साफ है?
0: सवेरे शाम फर्स्ट क्लास साफ होता है।
1: ओके फिर भी आप अपने पास में पंचकर्म ट्रीटमेंट करने वाले जो आयुर्वेद के चिकित्सक होते हैं, ऐसे किसी एक चिकित्सक को अवश्य दिखा दें, ये मेरी सलाह है आपको। ठीक है
2: ओके जी जी ओके भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। हाँ नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ, इस कार्य को आप सुन रहे हैं और देखिए कैसे कैसे जो है प्रॉब्लम्स हमारे बीच में आ जाती हैं, तो ऐसे में हमें जो है दो सलाह जरूर लेना चाहिए और बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो हमें आगे बढ़ भी जाना चाहिए, तो निश्चित तौर पे आप देखिए कि उन चीज़ों को करने से आपको आगे भी कोई तकलीफ ना हो, ऐसा भी एक जो है एश्योरेंस आप देखना पड़ेगा। कई बार हम लोग ऑपरेशन कर लेते हैं, महीना दो महीना ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर से कुछ नई चीज़ें शुरू हो जाती हैं या साइड से कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसा कुछ साइड इफ़ेक्ट्स वाली बातें ना हो इसका भी हमें ध्यान रखना है, तो वो थोड़ा सा जो है इसलिए दो तीन लोगों से आपको राय सलाह करने की बात होती है, तो आप पूछने से दोनों चीज़ें बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी की बात होनी चाहिए ताकि आपको सब चीज़ों का ज्ञान हो, ताकि आप उन चीज़ों को करें भी तो आपको ये अंडरस्टैंड हो, हाँ इसके बाद ये चीज़ें होगी, क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, तो इसके बाद ये चीज़ें हो सकती हैं, इसके लिए मुझे इस तरह से उसको मैनेज करना है, तो बहुत ही अच्छा होता है। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोता बंधुओं को आज रेडियो के माध्यम से आपका स्वास्थ्य आपके हाथ इस कार्यक्रम के माध्यम से काफ़ी अच्छी बातें उनको सुनने को मिला और सीजनल डिजीजेस के बारे में हमने बातें की, ऋतु के अनुसार जो बीमारियां होती हैं वो सर्दी खांसी जुकाम से लेकर वात पित्त कफ इन सभी चीज़ों पर हमने बातें की, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है अलग भी हो सकती हैं, जैसे कि हमने अभी पेन के बारे में, दर्द के बारे में कभी फिर विषय लेकर स्पेशली उसी पर बात कर सकते हैं, दर्द क्यों होता है, क्या कारण है, उसे कैसे हम बच सकते हैं। ऐसा कहा गया एलोपैथी में सबसे बड़ा बिजनेस जो है पेन किलर से हो रहा है उनकी, अलग अलग ऐसा देखा गया कि पूरी वैरायटी जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन है उसमें ज़्यादा जो वैरायटी है वो दर्द वाली दवाओं से बनी है, तो उसको लेकर लोग जो है ठीक होते हैं। कई बार हमने देखा मेडिकल स्टोर में एक एक आदमी जो है ऐसे पूरे प्लास्टिक डब्बा भर के दवाइयाँ ले जाते हैं, 6 महीने का वो ख़त्म होने का फिर से डब्बा ले जाएगा, फिर भर लेगा, फिर चला जाएगा और वो कंटिन्यू उनके चलती रहती हैं और वो डब्बा ख़त्म नहीं होता, उसके साथ और एक डब्बा 6 महीने के बाद बढ़ जाता है क्योंकि जितनी गोलियां वो पहले खा चुके हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स के और कुछ बीमारियां बढ़ जाती हैं, तो ऐसा ना हो इसके लिए हमें जो है आयुर्वेद या फिर घरेलू नुस्खा या फिर हमारा जो जीवन पद्धति है, लाइफस्टाइल जो है उसको अगर हम बदलाव करते हैं, हमारे खान पीन में बदलाव करते हैं, जैसे ऋतुचर्य को समझ कर हम अगर खाने को चेंज करते हैं तो इससे हमें दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती बल्कि हम अपने आप ही ठीक होते हैं। जी डॉक्टर साहब बताइए, आप कुछ बता रहे हैं।
1: हाँ मैं कुछ चीज़ें बताना चाह रहा था कि अगर हमें स्वस्थ रहना है ना तो अगर हम थोड़ा सा ये चीज़ों पर भी ध्यान दें कि हम खाना ऐसा खाएं जिसमें कुछ ना कुछ फाइबर्स जरूर
2: हो,
1: है ना, जैसे फल जरूर खाएं, कच्ची चीजें थोड़ी खाने में शामिल करें ताकि हमारा पेट जो है वो साफ रहे।
2: बिल्कुल
1: जैसे मैंने बताया ना, पेट नरम, हाथ पैर गरम रखने के लिए कोई ना कोई योगा, कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर करें और सिर को ठंडा रखने के लिए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास जरूर करें, तो इतना भी अगर कर लेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ रहने में इसकी बहुत मदद मिलेगी।
2: बिल्कुल
1: जी, और कहा जाता है ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन
2: क्योर, सही
1: ना, बीमारी होने के बाद उसका उपाय करने से अच्छा है कि बीमारी हो ही नहीं, ऐसा कुछ
2: इलाज कर ले। चलिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत ही सुंदर बातें आपने बताया और हमारे दयाराम जी, सुरेश जी और भी बहुत सारे लोग, सुगना बहन और लक्ष्मण जी और बुराराम जी, सभी ने फ़ोन करके पूछा, सभी को सही जवाब मिला होगा, तो प्रैक्टिस कीजिए आप, इसका उपयोग करें, अगले हफ्ते ज़रूर हमें अपने अनुभवों को साझा कीजिएगा। तो डॉक्टर दिलीप नलगे सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं चाहूँगा जाते जाते एक छोटा सा मैसेज कुछ देना चाहें तो ज़रूर।
1: जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने आहार का जरूर ध्यान रखें, अपना आहार जो है ना उसी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है. जैसे आजकल फास्ट फूड का चलन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. तो पहले के जमाने में हमारा आहार सही था इसलिए बीमारियां कम थी. अभी आहार बहुत गड़बड़ हो गया है तो इसीलिए बाहर का खाने से बचे. और हम क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, क्या हम भूख के अनुसार खा रहे हैं, ये भी ध्यान रखें. पानी जरूरत से ज्यादा ना पिए, जितना आवश्यक है उतना ही पिए. और दूसरा इम्पोर्टेंट है कि जैसे हाथ पैर हमारे गर्म रहने चाहिए उसके लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर करें. और निश्चित रूप से हमेशा सकारात्मक रहे हर परिस्थिति में. अपना जो दृष्टिकोण है वो पॉजिटिव रखें और हमेशा आशावादी रहे जीवन के प्रति. तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा अनुभव कर सकते हैं, बहुत ही स्वस्थ और खुशहाल जीवन का अनुभव कर सकते हैं. तो इसीलिए मेरी आप सबके प्रति यही शुभकामना है कि आप सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अस्त व्यस्त ना रहे.
2: चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिलीप नलगे सर. और स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहें ऐसी शुभ आशा के साथ फिर मिलते हैं अगले संडे कुछ नई बातें लेकर. तब तक आप बने रहिए हमारे साथ. सलाम नमस्ते खमा गणिसा. जय हिंद जय भारत. ओम शांति. सुनते रहो मुस्कुराते रहो.

0: आबू की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। आपकी अपनी उषा के साथ वंदे मातरम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आप सभी को, राम राम। आज आपको मिलवाएंगे आबू तलेटी के रहने वाले शरावती महाजन से। आपके उम्र 76 वर्ष के हैं, 76 इयर्स के, और आप में बहुत सारी खूबियां हैं। भजन कीर्तन करना, कढ़ाई बुनाई का काम करना, सिलाई करना, घर के सारे काम को संभालते हुए कैसे परिवार को एक साथ में लेके चलना, तो आपकी बहुत बड़ी खूबी है। आइए आपसे मिलवाएंगे शरावती महाजन से। मैडम नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: कैसे हो आप?
1: अच्छे।
0: अच्छा मैडम, अभी आपके उम्र 76 इयर्स के आप हैं, जीवन में काफी, कहते हैं ना कि 76 साल का जो सफर है जीवन का बहुत लंबा होता है, और काफी अनुभव आपको हुए होंगे जीवन में। तो चलिए हम वर्तमान की बात तो फिर बाद में पूछेंगे, लेकिन थोड़े से बचपन को याद कर लीजिए कि आपका बचपन कहाँ पर बीता, कैसे बीता?
1: हमारा बचपन कोकण में बीता है।
0: था कोकण महाराष्ट्र?
1: हाँ, कोकण महाराष्ट्र में बीत गए हैं।
0: अच्छा, आप कितने भाई बहन थे, कैसे रहते थे?
1: हमारे दो भाई थे और मैं अकेली।
0: अच्छा, तीन भाई बहन।
1: हाँ,
0: तो आप इकलौती बहन होने के नाते आपको बहुत प्यार मिला होगा।
1: हाँ, प्यारी तो थी सबकी।
0: आप छोटे थे या भाइयों से बड़े थे?
1: मैं सबसे बड़ी। अच्छा। भाई छोटे थे।
0: अच्छा, आपके माता पिता उस समय क्या काम करते थे?
1: हमारा मना पिताजी का किर्लोस्कर प्रेस में कैंटीन था।
0: अच्छा, कैंटीन था। माता जी भी कुछ करते थे?
1: माता जी ने घर काम, माता जी काम नहीं करती थी।
0: अच्छा, तो आप जैसे तीन भाई बहन थे, आपस में कैसे रहते थे?
1: आपस में अच्छे रहते थे हम।
0: कभी झगड़ा होता था? खट्टी मिट्टी वो तकरार कहते हैं ना, होती थी?
1: नहीं, हम पहले से ही, मेरी माँ पहले से ही एकदम मना आनंदी स्वभाव की थी, इसीलिए हम भी कुछ भी हो जाए आनंदी रहते थे ऐसे।
0: बहुत अच्छी बात है। हाँ। आपके माता जी खुश मिजाज रहते थे, तो आप भी हमेशा खुश मिजाज ही रहते थे।
1: हाँ, मेरे को भी ऐसे बिलिंग बिलिंग ऐसा कुछ नहीं था, बिंदास रहने का ही स्वभाव हमारा।
0: अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई की आपने?
1: 11वीं हुई है, वो पुणे में हुआ।
0: अच्छा, वो पुणे में, तो क्यों कोकण में पढ़ाई नहीं थी?
1: कोकण में नहीं की, हम बचपन पूरा हुआ और पुणे में ही आए, तो माना बात का जीवन हमारा पूरा पुणे में गया।
0: बचपन आपने कोकण में बिताया।
1: हाँ।
0: और उसके बाद आप
1: पुणे में आए?
0: जी,
1: क्योंकि हमारा पिताजी किर्लोस्कर प्रेस पुणे में है ना, इसीलिए हम पुणे में आए।
0: अच्छा, आप कितने साल के होंगे और पुणे में आए?
1: 7 साल के।
0: अच्छा, तो फिर कोकण की तो आप याद ही भूल गए होंगे।
1: नहीं,
0: में
1: कोकण की अच्छी तरह से याद है हमको, बहुत अच्छा लगता था कोकण भी और पुणे में भी।
0: बीच बीच में आना जाना होता था पुणे से कोकण?
1: हाँ, कभी जाते थे कुछ हुआ तो बीच बीच में।
0: अच्छा, और पुणे में आपने फिर पढ़ने, मतलब पढ़ाई की शुरुआत आपकी पुणे में हुई या कोकण में भी जाते थे स्कूल?
1: नहीं, स्कूल में कोकण में नहीं जाती थी, पुणे में ही जाने लगी।
0: अच्छा, तो पढ़ाई के साथ साथ और आपको क्या क्या शौक था? उस समय आप कौन सा खेल खेला करते थे?
1: खेल से हम आजकल के जमाने जैसा नहीं, बच्चे बच्चिया सब इकट्ठा खेलते थे हम बिंदास। माना हमारा पेशवेकालीन वाड़ा था 3-4 मजली, तो उसमें हम रहते थे ना, तो सब इकट्ठा खेलते थे, ताश खेलने का खेलते थे, और सब लुका छुपी क्या बोलते हैं ऐसे खेल खेलते थे हम।
0: अच्छा, और वो कहते हैं कि कभी कभी खेल खेल में कभी झगड़े भी हो जाते, तो ऐसा भी होता था खेलते खेलते कभी कोई जीत गया कोई हार गया तो झगड़े हो जाते, तो कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ?
1: झगड़े नहीं, ऐसे सब अच्छे थे।
0: अच्छा, और स्कूल में आपने पढ़ाई की, वहाँ पर कैसा माहौल था, कैसा माहौल मिला आपको?
1: पढ़ाई पहले मैं 2-3 बरस मना म्यूनिसिपल स्कूल में नजदीक था ना, पुणे से आई थी तो वो मालूम नहीं था मेरे को भी, तो नजदीक थी इसीलिए म्यूनिसिपल स्कूल में रही थी 2-3 बरस, तो उधर इतना अच्छा माहौल नहीं था, हमारे टीचर विचर बेकार थे, माना वो लड़कियों पर नजर विजर ऐसा होता था। प्रिंसिपल स्कूल में तभी टीचर अच्छे नहीं होते थे।
0: अच्छा, फिर बाद में क्या किया, स्कूल चेंज किया?
1: बाद में लड़कियों के स्कूल में जाने लगी। मैं मेरे पिताजी को बोली मैं इसमें ये स्कूल में नहीं रहेगी, मेरे को दूसरे स्कूल में जाना है, तो लेडीज स्कूल में जाने लगी मैं।
0: अच्छा, पढ़ाई में कैसे थे आप?
1: पढ़ाई में माना ठीक था, ऐसे 5 नंबर के अंदर ही आते थे।
0: तब तो होशियार थे आप, टॉप 5 में आते थे आप।
1: हाँ,
0: बहुत अच्छी बात है। और उस समय तो थोड़ी सी भी पढ़ाई करो जॉब मिल जाती थी, तो आपके भी सर्विस का ऑफर आया आपको भी?
1: सर्विस जाती थी।
0: अच्छा, सर्विस की थी।
1: हाँ।
0: चलिए सर्विस की बात जरूर करेंगे कि कब से आपने शुरू की, परंतु अभी चल रहा है कि जैसे आपने बताया कि टॉप 5 में आप आते थे, और भी कोई एक्टिविटीज होती थी आपके स्कूल में, जैसे खो खो है, कबड्डी? हाँ, है
1: खेल बिल पीटी ऐसा होता था, ले जिम बिजिम सब सिखाते थे हमको।
0: तो आप भी रहते थे?
1: हाँ, मेरे को भी अच्छा लगता था ले जिम बिजिम।
0: अच्छा, और कौन कौन से कंपटीशन में आप रहते थे? गीत संगीत कविताओं वगैरह डांस वगैरह में भी आप रहते थे?
1: हाँ, गाना बिना खेलते थे हम।
0: गाने का शौक था आपको?
1: हाँ, गाना बिना गाती थी।
0: किस तरह के गाने आप गाते थे?
1: कौन सा भी गाना हो मेरे को अच्छा लगता था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा भजन या राष्ट्रगीत ऐसे अच्छे लगते थे मेरे को पहले से। पढ़ने का भी शौक था, बहुत छोटी छोटी किताबें मैं पहले से ही पढ़ती थी।
0: तो राष्ट्रीय गीत आप सुनाते थे?
1: हाँ, मैं भी सुनाती थी।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप घर पर अपने मम्मी को किस तरह हेल्प करवाते थे, घर के कामों में हेल्प करवाते थे?
1: नहीं, इतना नहीं, घर में काम करने को मेरे को इतना ये नहीं था, खाली सफाई थोड़े करती थी। मेरी मम्मी मजबूत थी, वो हमको देती नहीं थे ऐसे काम, स्वयं करने का उसको शौक था। और मेरे को सहेली या बाहर खेलना ऐसा अच्छा लगता था।
0: अच्छा, खेलना अच्छा लगता था?
1: हाँ, खेलना, थोड़े बड़े होने के बाद बातें करना अच्छा लगता था, उसमें समय जाता था। और पढ़ाई भी हम सहेलियों के साथ ही करते थे, कभी हम उनके घर में जाते थे, वो हमारे घर में आते थे ऐसे।
0: तो चलिए मैडम, आपसे और भी बातचीत करेंगे, परंतु अभी समय हो चला है एक गीत सुनने का। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधु, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में। शरावती जी महाजन जो आबू तलेटी के रहने वाले हैं, आपकी उम्र 76 वर्ष की है, काफी अनुभवी हैं, इनके अनुभव हमने सुने भी हैं और भी सुनेंगे, परंतु एक गीत के बाद। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई, चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए। अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो न, न,
0: अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
4: वंदे मातरम में पुनः आप सभी का स्वागत है। शरावती जी महाजन जो आबू तलेटी के रहने वाले हैं और आपकी उम्र 76 वर्ष की है, आपकी बचपन की बातें हमने सुनी थी और भी सुनेंगे। चलिए तो मैडम आपका पुनः स्वागत है वंदे मातरम कार्यक्रम में। थैंक यू। आपके बचपन की बातें चल रही थी, आपको कैसा लग रहा है आज आप 76 वर्ष के हैं और बचपन की बातें जो आपको ताजा ताजा याद आ गई और जो बातें आप कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको?
5: हमको बचपन तो बहुत अच्छा ही, किसी को भी लगता है, मेरे को तो बहुत ही अच्छा गया बचपन।
4: जी जी, तो आपको हर एक एक्टिविटीज में रहने का शौक था है ना?
5: हाँ बहुत एक्टिविटी थी, गाना गाना और दूसरों को खुश रखना और हम भी खुश रहना।
4: क्या बात है, बहुत खूब। तो अच्छा आपको गाना गाने का शौक था, तो आप दो लाइन सुनाएंगे?
5: हाँ, ये मैंने खुद किया है तैयार गाना, वही गाती हूँ।

0: अच्छा, तो आप मराठी में गाते थे, है ना?
1: हाँ,
0: और मराठी में बनाते भी थे।
1: हाँ,
0: तो ये जो दो लाइन आपने सुनाई है, इसका अर्थ क्या है?
1: उस टाइम बालक वर्ष था ना,
0: अंतरराष्ट्रीय बालक दिवस।
1: हाँ, तो मेरे पोते को ये मैं लिख के दिया था, और ये गाने के ऊपर उन्होंने कार्यक्रम भी किया था स्कूल में उसके।
0: अच्छा, बहुत खूब। तो पढ़ाई आप करते थे उस समय भी, गीत बनाते थे?
1: नहीं, तभी इतना खेलने में टाइम जाता था।
0: अच्छा, और बोले हुए गीत गाते थे?
1: हाँ, टाइम मिलेगा तभी गाने बोलते थे या बनाते थे ऐसे।
0: जी जी जी। और आपके अंदर ऐसी क्या विशेषता है जो मतलब सभी पसंद करते हो?
1: माना ऐसे अच्छे अच्छे आइटम किचन में बनाना, हमारे मोदक, उकड़ी के मोदक बोलते हैं, उकड़ बना के उसके मोदक करते हैं, वो हमको अच्छे आते थे। केक भी बनाती थी।
0: क्या बात है, ये सब शादी के बाद शुरू किया या पहले ही बनाते थे आप?
1: पहले से भी बनाती थी।
0: अच्छा।
1: पूरी हमारी प्रसिद्ध है, वो भी आती थी।
0: तो आपने अपने मम्मी से सीखा?
1: हाँ, मम्मी से सीखा।
0: अच्छा, कितने साल के थे और आपकी शादी हुई?
1: 21 बरस की थी तभी मेरी शादी हुई।
0: और आप कह रहे थे कि आपने जॉब भी की, तो जॉब आपने कब की? 10th की पढ़ाई के बाद शुरू की या कब की आपने?
1: शादी के पहले ही की थी।
0: हाँ, तो स्कूल में की? टीचर बने थे आप?
1: नहीं, रेडियो का पार्ट बनाने की कंपनी थी, उसमें की थी। और उधर भी हमको अच्छे सब मिले थे, माना कर्मचारी सब बहुत अच्छे थे।
0: कितने समय तक की आपने नौकरी?
1: 2 बरस तक की।
0: अच्छा।
1: और 400 रुपए था, लेकिन तभी तो बहुत माना इसको मूल्य था।
0: 400 रुपए
1: मैंने शादी के लिए आधा खर्चा मैंने ही किया था।
0: जी जी जी। आज आप 76 साल के हैं और बात है आपके कम से कम 60-65 साल पहले की, है ना? क्योंकि आपके बचपन की बातें चल रही है, तो आप 15-17 साल के बाद आपने सर्विस की होगी, 18 साल के बाद। तो इतने समय पहले 400 रुपए की बहुत कीमत हुआ करती थी।
1: बहुत कीमत थी तभी। सोना 140 रुपए है
0: तोला।
1: तोला
0: जी जी, बहुत सस्ता था उस समय। तो बहुत अच्छा है, आपने फिर जॉब क्यों छोड़ी? जब इतनी अच्छी जॉब थी, अच्छी सैलरी थी, फिर आपने क्यों छोड़ी?
1: शादी के बाद हम बम्बई में आए ना, इसीलिए पुणे छोड़ना पड़ा।
0: अच्छा, शादी के बाद भाई कि अब बॉम्बे रहना है तो फिर कोई फायदा नहीं जॉब करने का,
1: तो छोड़ के बम्बई में आई। उसके बाद हम नहीं कर सके, क्योंकि बम्बई में पहली बार आई ना, तो कुछ भी मालूम नहीं था।
0: शादी करके आप बॉम्बे में आए, तो आपके ससुराल बॉम्बे में?
1: नहीं, ये बॉम्बे में नौकरी करते थे, ससुराल हमारा कोकण में ही था।
0: अच्छा, वापिस कोकण चले गए।
1: इसीलिए बम्बई में सब बात का जीवन गया।
0: अच्छा, तो फिर आप कोकण से, आपके हस्बैंड की जॉब बॉम्बे थी इसलिए आप बॉम्बे आ गए। तो क्या जॉब करते थे आपके हस्बैंड?
1: रेलवे में नौकरी थी उनको।
0: अच्छा, परिवार के साथ रहे आप कोकण में कभी?
1: हाँ, बीच बीच में जाते थे ना, तो परिवार हमारा अच्छा था, सास भी अच्छी थी। आम के दिन में हम हमेशा जाते थे, तो आम भी हमारे लिए अच्छे अच्छे रखती थी, तो बच्चियों को भी और हमको भी अच्छा लगता था।
0: कितना बड़ा परिवार था ससुराल में?
1: ससुराल में था, लेकिन वो अपने अपने घर में ही था ना, एक देवर खाली था, सास थी और इनके बड़े भाई की 2 बच्चियां थी। वो हमारी सास देवरानी माना बच्चियों की माँ बचपन से ही गई, तो वो दोनों हमारे साथ संभालती थी। एक अच्छी थी और एक थोड़ा सिर पर परिणाम था। वो अच्छी एक थी, वो उसको हम पति को बोले कि हम उसको ले जाएंगे और उसका शिक्षा सब अच्छा करेंगे, तो हम उसको लेकर बम्बई में आई और उसका एजुकेशन, बाद में थोड़े दिन नौकरी करती थी।
0: बेटियों को लेके आए?
1: हाँ, उसके देवर के बेटी को लेके आई, क्योंकि सास को दोनों संभालना जमता नहीं था ना, इसीलिए लेके आई और उसकी शादी भी हमने की।
0: अच्छा, तो देरानी कहाँ गई आपकी?
1: ऑफ हो गई।
0: अच्छा, भगवान को प्यारी हो गई
1: बचपन से। ऑफ हो गई थी।
0: अच्छा, बेटियों को जन्म देने के बाद।
1: इसीलिए मैं उसको पालना दी।
0: जी जी जी, आपके कितने बच्चे?
1: मेरी दो बच्चे है।
0: जी जी जी, आपके दो बेटियां है और एक बेटी हो, तीन बेटियां आपके। और फिर जैसे कि आपके देवरानी नहीं है, खाली देवर आपके गांव में रहे और आपके सास ससुर आपके साथ रहते थे या कोकण में ही रहते थे?
1: नहीं, कोकण में ही रहते थे, बाकी सब
0: बीच बीच में आप जाते थे।
1: हाँ,
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मैडम आपसे और भी बातचीत करेंगे, फिर से समय हो चला है गीत सुनने का, तो सुनेंगे एक गीत।

नमस्कार, मैं हूँ शिप्ला, डिस्ट्रिक्ट मोहाली, स्टेट पंजाब से। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें।

0: और किस तरह आपने शिक्षा और संस्कार दिए अपने बच्चों को?
1: मैंने मेरी बेटियों को, दोनों बेटियों को और मेरे देवर की लड़की को, तीनों को बहुत अच्छे संस्कार दिए और अच्छे अच्छे कपड़े भी सिलाती थी उन्हों को, वो भी बहुत अच्छे संस्कार वाली हो गई।
0: अच्छा, और कपड़े आपको सिलाई कढ़ाई बुनाई इन सब का भी शौक है ना, तो आप क्या क्या करते थे घर में?
1: हम घर में सब थैलिया पर्दा ऐसे बच्चों का थोड़ा सा कपड़ा भी सिलाती थी, माना हमने कोर्स किया था
0: सिलाई का।
1: हाँ,
0: कहाँ, बॉम्बे आने के बाद या पुणे में ही?
1: पुणे में किया था।
0: अच्छा, तो और क्या सिल लेते थे आप, और क्या सिलाई करते थे? बच्चों के कपड़े वगैरह भी आप ही सिलते थे?
1: हाँ, आती थी, छोटे छोटे कपड़े होते थे तभी मैं सिलाती थी।
0: अच्छा, कभी आपने मोल की सिलाई भी की, दूसरों के भी सिले?
1: नहीं, दूसरों के नहीं की, घर में ही सबका टाइम जाता था।
0: जी जी, और कढ़ाई बुनाई में क्या करते थे आप?
1: कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा आता था, इतना नहीं किया है।
0: अच्छा, आपको भजनों का बड़ा शौक है, तो सत्संग में जाते थे आप?
1: हाँ, मेरे बाजू वाली और हम भजन के क्लास में रोज जाते थे।
0: तो पूरे आपका ग्रुप था?
1: हाँ, माना उनका ही ग्रुप था, उसमें हम दोनों जाती थी। तो हमारे टीचर बहुत अच्छे थे, माना शास्त्रोक्त गाना भजन गीत सिखाते थे हमको।
0: आप सीखने जाते थे या सत्संग करने जाते थे?
1: सत्संग नहीं इतना किया हम।
0: अच्छा, तो आप गीत संगीत सीखने जाते थे?
1: हाँ, सीखने के लिए जाती थी मैं।
0: तो उस समय क्या फीस लेते होंगे?
1: अच्छे अच्छे भजन गीत उसने सिखाए हमको, हमने लिख भी दिए सब।
0: अच्छा, तो फीस लगती होगी ना?
1: फीस थोड़ी सी थी, 100 रुपया ऐसा कुछ था।
0: अच्छा, तो मतलब तीन बच्चों का काम करना, फिर आपके हस्बैंड का भी काम करना, पांच जनों का काम करने के बाद भी आपको समय मिलता था?
1: दोपहर का टाइम मिलता था ना, तब भी जाते थे, 1 घंटा होता था तब भी जाती थी।
0: अच्छा, तो कितने समय तक आप गए इस तरह सीखने के लिए?
1: 1-2 बरस तक गई।
0: 1-2 साल तक आपने गीत संगीत सीखे?
1: हाँ, भजन गीत अच्छा लगता था ना, तो मैंने मना सीख लिया ऐसे।
0: अच्छा, तो कभी आपने फिर गाया भजन जैसे आप सीखे साल दो साल, उसके बाद कभी आपको गाने का अवसर मिला?
1: हाँ, ऐसे कभी मिलता था तभी गाती थी।
0: अच्छा, तो फिर तो आप, वो कहते हैं ना कि साल दो साल अगर हम क्लास करते हैं तो काफी परफेक्ट हो जाते हैं, तो आपके भजन सभी पसंद करते होंगे फिर तो?
1: हाँ, भजन गीत मेरे को बहुत अच्छे लगते, भीमसेन जोशी ऐसे अच्छे अच्छे गीत वाले के गीत भी मेरे को अच्छे लगते हैं, लेकिन मराठी में, हिंदी में नहीं था ना।
0: अच्छा, मराठी में सीखा आपने?
1: हाँ, मराठी में सीखी ना, ज्ञानेश्वर, पंढरी का विठोबा, इसके ऊपर सब गीत थे, तुकाराम महाराज।
0: अच्छा, पर सारे मराठी में।
1: हाँ,
0: तो वो कहते हैं कि जब हम गीत संगीत सीखते हैं तो खुद का भी अनुभव बढ़ता है और हम खुद भी बनाते हैं। तो जैसे आपने 2 लाइन तो बोली थी कि आपने ही बनाई, इसके अलावा भी आपने बनाए होंगे गीत संगीत?
1: संगीत ऐसे बनाए नहीं है मैंने, गाने को अच्छा लगता था।
0: अच्छा, गाना अच्छा लगता था, लेकिन आपने कभी बनाया नहीं?
1: नहीं,
0: कभी कोशिश नहीं की?
1: नहीं, याद भी नहीं आए।
0: अच्छा, आप कह रहे थे आपके 3 बेटियां है, तो बेटियों को भी आपने पढ़ाया तीनों को?
1: जो वाले एक थे तो मैं मराठी पढ़ाती थी उसको, वो कर्नाटक की थी ना, मद्रासी थी, तो उस समय मराठी विषय स्कूल में था, तो उसके बेटी को मैंने मराठी पढ़ाया है।
0: अच्छा, पड़ोस की बेटी को?
1: हाँ।
0: और आपने अपनी तीनों बेटियों को कहाँ तक पढ़ाई कराई?
1: बड़ी वाली बीकॉम हो गई और छोटी वाली 13वीं तक गई, और बाद में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी।
0: अच्छा, ऐसा क्यों? बड़े वाले ने जब बीकॉम पूरी कर ली तो छोटे वाले को भी तो पूरे करनी चाहिए ना, डिग्री तो पूरी लेनी चाहिए।
1: अध्यात्म में बड़ी गई ना, तो इसको भी जाना था, इसीलिए पढ़ाई छोड़ दी।
0: अच्छा, अध्यात्म में इंटरेस्ट आ गया था इसलिए।
1: सबको, हमको सभी को अध्यात्म में इंटरेस्ट था।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि जीवन में हम घर का काम काज करते हुए अध्यात्म को अपनाते हैं, सत्संग को अपनाते हैं, तो अच्छा ही है ना। हमारी श्रद्धा अच्छी बनी रहती है, हमारे विचार अच्छे चलते हैं।

0: मैडम आपने बेटियों को किस तरह की शिक्षा और संस्कार दिए?
1: बेटियां भी अपने आप ही सीखी मेरे से ही, तो वो भी मना अच्छे संस्कार वाली निकल गई और अध्यात्म में आगे गई।
0: जी जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। और शादी भी करवाई होगी बेटी की?
1: हाँ, एक बेटी ने शादी की, एक ने नहीं की, बड़ी ने।
0: जी जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जैसे आपको भजन में इंटरेस्ट था, आपने सीखा भी, इस तरह बेटियों को भी अलग से कोई कोर्स करवाया?
1: हाँ, उन्होंने दोनों को गाने के क्लास में डाला था, तो गाना दोनों को भी पसंद है इसीलिए। और छोटी वाली को डांस भी सीखी है।
0: अच्छा, डांस क्लास भी करवाया आपने?
1: हाँ, और बड़ी छोटो दोनों को गाने के क्लास में भी जाती थी।
0: अच्छा, और आपकी तीसरी बेटी, आप कह रहे थे देवर की बेटी, उसने भी किया?
1: नहीं, उसने नहीं किया।
0: अच्छा, उसकी शादी हुई या क्या हुआ?
1: शादी की उसकी, और अच्छी तरह से रहती है। ऐसे हमने बहुत जनों के शादियां भी की है। मेरी एक मौसी की लड़की की, एक हमारा पहचान गांव में रहते थे ना, तो उसमें गांव में लड़के अच्छे अच्छे मिलते नहीं थे मना शादी के लिए, तो हमको पत्र लिखती थी कि हमको भी उधर देखो। तो मेरे एक लड़की को मना मौसेरी बहन को लाया, उसकी शादी की। दूसरी ने भी फोन किया, उधर देखो, तो दूसरी की भी लाया और शादी की। मेरे भाई को भी पूना से बम्बई लाया, उसको मना नौकरी लगवाई, उसकी शादी भी हमने ही की। ऐसे बहुत जनों के शादियां भी की है।
0: क्या बात है, बहुत आपने दुआओं का काम किया, बहुत सेवा की लोगों की।
1: हाँ, दुआएं तो होती है पीछे।
0: तो जैसे आपने इतना सपोर्ट किया सभी का, तो सभी खुश तो हुए होंगे ना?
1: हाँ, मेरे से सभी खुश है, मेरा कोई शत्रु नहीं है।
0: बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है मैडम। आपसे और भी बात करेंगे, परंतु समय हो चला है एक ब्रेक का, तो ले लेते हैं एक ब्रेक, पुनः लौट करके आ रही हूँ। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी। लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू। आप सच बोलेंगे, देयर इज नो रीजन। कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में शरावती महाजन, इनसे हमने सुने हैं इनके काफी जीवन के अनुभव, और भी सुनेंगे, लेकिन इनके बेटी यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। नमस्ते मैडम।
3: नमस्ते जी।
2: आपका शुभ नाम?
3: तेजश्री।
2: तेजश्री जी, आप जैसे कि माता जी ने बताया है कि आप दो बहने हैं, है ना, तो आप बड़ी वाले?
3: जी हम बड़े हैं।
2: अच्छा, तो आप थोड़ा सा अपने बारे में परिचय देंगे कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की और आपको किस तरह के विशेष आपकी रुचि है?
3: हमने पढ़ा है बीकॉम, ग्रेजुएशन पूरा किया, और मेरा रुचि हमेशा ये रहा कि कोई भी जो पॉजिटिव काम होता है उसमें आगे बढ़ना है। तो बीकॉम पूरा करके साथ में मैंने और भी बहुत कुछ सीखा भी, जैसे टाइपिंग सीखा, गाना भी सीखा, जरूरी जितना सिलाई सीखा, ताकि हम अपना खुद का काम खुद कर सके। उसके साथ में हम टेलीग्राम उस समय होता था, टेलीप्रिंटर वगैरह, उसके भी कोर्सेस किए। तो केक का मुझे शौक था, तो केक के भी क्लासेस किए। तो ऐसे हर प्रकार से शौक था, तो जितना मेरी कैपेसिटी थी उतने में क्लास पूरा करके लाइफ में अपनाने का मैंने प्रयत्न किया।
2: बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीजें सीखना भी जरूरी है। तो कभी किसी चीज में आप आगे बढ़ पाए जो आपने प्रोफेशन बनाया हो उसको?
3: हाँ जी, जैसे देखो पढ़ाई तो होती है, वो तो हमको हर व्यवहार में काम आती है। पढ़ना ये जरूरी है, ये मेरे लाइफ का एक मकसद था एकदम। और मेरे मदर फादर जो है, माता पिता, वो भी यही मेरे को शुरू से बचपन से हम सुनते आए कि पढ़ना है बच्ची, पढ़ना है। पढ़ने से अपना जीवन खुद भी हम बना सकते हैं और दूसरों को भी हम मदद कर सकते, राह दिखा सकते हैं। इसलिए वो पढ़ाई तो एक तो मुझे बहुत काम आई। दूसरी चीज है केक का जो मुझे शौक था, तो आज के लाइफ में भी मैं अनेकों को अपने जन्मदिन के लिए केक बना के देती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो केक जो है वो एक मेरा एक हॉबी होने के कारण, बेकरी आइटम, मैं अनेकों को मेरी ये कला का लाभ दे सकी, आज भी दे रही हूँ। और बाकी जो है जैसे सिलाई होती है या कोई चीज का जैसे गाना होता है, तो ये हमको फंक्शन होता है उसमें प्रोत्साहन देने में काम आता है। सिलाई होती है तो हम दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, हम अपना छोटा मोटा काम जो है वो कर सकते हैं। तो मेरी ये सदैव इच्छा रही कि मैं खुद भी करती हूँ और दूसरों को भी मैं हमेशा प्रोत्साहन देती हूँ कि अपने जीवन में पढ़ना जरूरी है, पढ़ करके दूसरों को बनाने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जीवन ऐसा होना चाहिए जो हमको देख करके और 10 जन बने, ऐसा जीवन ना हो कि हमको देख करके 10 लोग भी बुराई की तरफ जाए, ऐसा नहीं। इसलिए पढ़ाई जरूरी है, तो ये लक्ष्य मेरा रहा।
2: क्या बात है, बहुत खूब तेजश्री जी, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत स्वयं को भी सीखने को मिला। और जैसे आप दो बहने हो, फिर एक आपके अंकल की लड़की भी है, फिर आपके मम्मी पापा की भी जिम्मेवारी है, तो अभी आपकी एज क्या होगी?
3: मेरी एज अभी 55 चल रही है।
2: 55 के आप क्या बात करते, लगते नहीं है। और आपने भाई शादी नहीं करने का जो फैसला लिया है, वो इन्हीं वजह से लिया या आप बताएंगे?
3: जी देखो, ये शादी ये एक जिम्मेवारी, शादी यानी जिम्मेवारी, शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं अपनी लाइफ में जिम्मेदारी को महत्व देती हूँ। तो हम दो बहने हैं और छोटी बहन की शादी हो गई है, तो मदर फादर को कौन संभालेगा, ये मेरी जिम्मेवारी है, भगवान ने मुझे दिया है, ऐसा मैं समझती थी, और इसी वजह से मैंने शादी नहीं की। लेकिन जैसे शादी होती है ना, तो एक नया परिवार से हम जुड़ जाते हैं, लेकिन इसके वजह से, मना शादी के हिसाब से नहीं, लेकिन शादी ना करके भी मैं बहुत बड़े परिवार से जुड़ी हूँ। पूरा विश्व मेरा परिवार है और ईश्वर मेरा साथी है, तो बस हम इसलिए मदर फादर को साथ रख करके अपना जीवन बहुत ही आनंद से गुजार रहे हैं।
2: जी जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी सोच है आपकी कि आपने अपने माता पिता के बारे में सोचा कि माता पिता की सेवा कौन करेगा, और इस वजह से बहुत सारे कारण जो कि आप ईश्वर में रुचि रखते हैं, अध्यात्म में रुचि रखते हैं, ये भी कारण है, फिर माता पिता की सेवा का भी सवाल है, तो बहुत बड़ा त्याग किया आपने।
3: मुझे तो त्याग तो नहीं लगता है, लेकिन ये लगता है कि लाइफ जीने की कला हमेशा सीखते रहना चाहिए, और ये सीखना कभी भी बंद नहीं होगा, अंतिम सांस तक ये सीखते रहना है और सीखते रहना चाहिए, ये मेरा लक्ष्य है।
2: बहुत खूब, बहुत सुंदर लक्ष्य है। और तेजश्री जी, जैसे कि हमारे बहुत सारे श्रोता बंधु सुन रहे हैं ये कार्यक्रम, तो उनको आप अपने जीवन के अनुभव से क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने अपने माता पिता की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली, बड़े प्यार से आप सभी के साथ रहते हैं, तो क्या कहेंगे आप समाज में?
3: एक समाज का एक छोटा सा हिस्सा मैं खुद होने के कारण मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि समाज में हम रह रहे हैं, ये अवेयरनेस, ये जागृति हमको जरूर होना चाहिए कि हम जो करते हैं उसका असर हर चीज का समाज के ऊपर पड़ता है, फिर चाहे वो गलत हो चाहे अच्छा हो। तो हमको हमेशा ये लक्ष्य रहना चाहिए कि हमको अच्छा ही करना है ताकि हम भी अच्छे बने और हमको देख करके भी दूसरे अच्छे बने। बुरा करो, कोई आपको मना नहीं करेगा, आप किसी का बुरा कर सकते, किसी को मार सकते, कुछ भी कर सकते, लेकिन भोगना तो आपको ही पड़ेगा, है ना? क्योंकि हम जो कर्म करेंगे वही हमारे साथ जाएगा। दुनिया वालों का किसी का बुरा नहीं होगा, मेरा खुद का बुरा होगा, इसलिए मेरे को ये सदैव याद रहता है कि मुझे जब मैं शरीर छोड़ूंगी यानी भगवान के पास जाऊंगी तो मुझे मेरे अच्छे कर्म के साथ ही जाना है, है ना? तो ये मेरी सदिच्छा है।
2: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया है। चलिए अब हम फिर से मैडम की तरफ चलते हैं। मैडम, आप जैसे बॉम्बे में रहे, पुणे में रहे, पुणे में बड़े हुए, बॉम्बे में आए, बॉम्बे से फिर आबू कैसे आना हुआ?
4: क्योंकि हम बूढ़े हो गए, तो बूढ़े होने के बाद बीमारी वगैरह आई, तो तेजश्री बड़ी लड़की इधर थी इसीलिए हम उसके साथ आए।
2: अच्छा, तेजश्री जी आबू में थे तो आप भी दोनों जने इधर आ गए।
4: हाँ, उसके नजदीक ही जगह ली और इधर आना हुआ।
2: जी जी, तो कितने साल से आप यहाँ रह रहे हो?
4: 2 साल हुई।
2: अच्छा, आबू में अच्छा लगता है आपको?
4: हाँ, आबू तो अच्छा ही है, बहुत अच्छा है।
2: कहाँ आपकी मराठी भाषा, फिर कहाँ यहाँ राजस्थानी भाषा?
4: हिंदी भी हम ऐसे बोलते हैं ना, मराठी तो है ही हमारी भाषा, लेकिन हिंदी में ऐसा सब फर्क नहीं लग, मना द्वंद्व नहीं रखते।
2: जी जी जी, हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा है और ये भाषा सब जगह चलती है।
4: हाँ, सब जगह चलती है ना, इसीलिए ऐसा कुछ लगा नहीं मना।
2: अच्छा माता जी, लास्ट में आपसे इतना सा पूछना चाहूंगी कि 76 वर्ष के सफर में विशेष आपको क्या अनुभव हुए, आपको क्या सीखने को मिला जो हमारे समाज को आप प्रेरणा दे सकते हैं?
4: हमको प्रेरणा मिली कि हम कुछ स्ट्रांग रहना चाहिए, माताएं होके भी हम पुरुष के जैसे स्ट्रांग रहना चाहिए, क्योंकि पहले से ही पुरुषों ने महिलाओं को द्वितीय स्थान दिया है, लेकिन अभी वो समय रहा नहीं है, इसीलिए हम स्ट्रांग रहेंगे तो हमको कोई तकलीफ नहीं होगी। अब स्ट्रांग रहने के साथ भी हमको अच्छा भी रहना चाहिए, हमको आनंदी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, तो दूसरे भी हमको मान देंगे और स्वयं भी खुश रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे।
2: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया है कि महिला है तो क्या हुआ, महिला होने के बावजूद भी हम स्ट्रांग रह सकते हैं, तो ये बहुत ही सुंदर मैसेज आपने दिया है। हमारी माताएं बहनें सभी सुन रही हैं, जरूर आपके मैसेज पर गौर करेगी। और अब आपसे मैं अनुमति चाहूंगी, बहुत ही सुंदर आपने जीवन के अनुभव दिए हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
4: थैंक यू, आपको भी धन्यवाद।
2: तो शरावती महाजन, जिनका सुंदर सा नाम है, काफी आपने देखे पढ़ाई भी अच्छी की है और जीवन के अनुभव भी काफी शेयर किए हैं, लेकिन परिवार के साथ मिलजुल कर रहना, और जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे परिवारों की शादी भी आपने करवाई है, तो इतने जनों का आपने सपोर्ट भी किया, और हर कार्य करना, सीखना और बच्चों को सिखाना, उमंग उत्साह में लाना, जॉब करना, कहते हैं कि नारी कहीं पर भी हारती नहीं है, हर परिस्थिति में कड़ी होती है, चाहे अच्छी परिस्थिति हो चाहे विपरीत परिस्थिति हो, खुद को कैसे ढालना एक नारी शक्ति को आना चाहिए, जो आपने बखूबी निभाया है। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृ शक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल कर सकते हो और अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हो। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4।

0: मैं अशोक खोसला बोल रहा हूँ और मैं रेडियो मधुबन सुनने वालों सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ सबको। वो सबको बहुत बहुत खुश गवार गुजरे, सब बहुत खुश रहे और आगे भी प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलें, यही शुभकामना है। धन्यवाद। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: अभी बजे हैं सुबह के 11। एक मिनट के स्वचिंतन से टेंशन होगी 9-2-11।

श्रोताओं, आज का हमारा कार्यक्रम केंद्रित है दो महान क्रांतिकारी नेताओं कनकलता बरुआ और कन्हैयालाल भट्टाचार्य जी पर। असम के लोगों ने अगस्त क्रांति में खुलकर भाग लिया था। पहले तो उनका आंदोलन पूर्ण रूप से अहिंसक और केवल प्रदर्शन तक ही सीमित था, लेकिन जब पुलिस और फौज ने उन पर अत्याचार करना प्रारंभ किया तो असमिया लोग भी भड़क उठे और उनके सत्याग्रह आंदोलन ने क्रांतिकारी रूप धारण कर लिया। श्रोताओं, असम की क्रांति की चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, मगर फिलहाल वक्त है एक देशभक्ति गीत सुनने का। तो आइए सुनते हैं पहले ये देशभक्ति।

असम के गोपुर गांव की जनता अपने गांव के थाने पर तिरंगा झंडा लगाने के लिए बढ़ चली। लगभग 5,000 ग्रामीण उस जुलूस में शामिल थे। उस जुलूस में स्त्रियां भी थीं और बच्चे भी शामिल थे। बढ़ता हुआ ये जुलूस थाने के सामने पहुंच गया। थाने पर पहुंचने के लिए एक नाले को पार करना पड़ता था। तब जुलूस दो भागों में विभक्त हो गया और दो दिशाओं से नाले को पार करके जुलूस फिर एक होकर थाने के फाटक की ओर आगे बढ़ने लगा। जुलूस के आगे कनकलता बरुआ नाम की एक 14 वर्ष की बालिका तिरंगा झंडा लेकर नेतृत्व कर रही थी। उसे रोकने के लिए थानेदार भी अपने सिपाहियों के साथ फाटक के पास पहुंच गया। तब कनकलता बरुआ ने पुलिस को संबोधित करते हुए कहा, श्रोताओं, कनकलता के साहस की कहानी आगे बढ़ाएंगे, मगर फिलहाल सुनते हैं ये देशभक्ति रचना। तो आइए सुनते हैं पहले ये देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, गीत सुनने से पहले हम बात कर रहे थे असम की क्रांति की और कनकलता बरुआ की। कनकलता बरुआ ने पुलिस को संबोधित करते हुए कहा, आप लोग तो हमारे भाई हैं, हमें रोकने के स्थान पर आप लोग भी हम में सम्मिलित हो जाइए, हम सब लोग मिलकर थाने पर राष्ट्रीय झंडा लगाएंगे। लेकिन थानेदार एक बच्ची के मुंह से ऐसी बातें सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसने साफ साफ कह दिया, वो किसी को भी थाने के अंदर नहीं आने देगा। तब इस पर कनकलता भड़क गई और कहा, पुलिस स्टेशन तो जनता की संपत्ति होती है, जनता की संपत्ति के रक्षक यदि जनता का कहना नहीं मानेंगे तो जनता उन्हें हटा देगी और अपनी संपत्ति को अपने अधिकार में ले लेगी। श्रोताओं, कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है एक देशभक्ति गीत सुनने का। उसके बाद हम जानेंगे कि किस तरह कनकलता शहीद हो गईं।

श्रोताओं, गीत सुनने से पहले हमने जाना कि थानेदार की बात कनकलता ने नहीं मानी और वे पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ गईं। थानेदार को ललकारते हुए कनकलता फाटक के अंदर जाने लगीं। तब कनकलता की जबरदस्ती देखकर थानेदार ने उन पर गोली चला दी और कनकलता वहीं शहीद हो गईं। कनकलता को गिरते हुए देखकर मुकुंद काप्ता नाम के एक नौजवान ने उनके हाथ से झंडा ले लिया और वे आगे बढ़ने लगे। तब मुकुंद काप्ता को भी गोली मार दी गई और वे शहीद हो गए। अब तो जनता के धैर्य का बांध टूट गया और कई तरफ से लोग थाने के अंदर एक साथ पहुंचने लगे। तब पुलिस वालों ने भी अंधाधुंध गोलियां चलाना प्रारंभ कर दिया। लोग गोलियां खाकर गिरते रहे और आगे बढ़ते गए और आखिरकार एक दल थाने की इमारत पर चढ़ने में सफल हो गया और वहां उस निशान के साथ तिरंगा झंडा लगा दिया। इस संघर्ष में लगभग 60 व्यक्ति शहीद हुए। तो श्रोताओं, ऐसे थे हमारी आजादी के दीवाने क्रांतिकारी, जिन्होंने अपनी जान न्योछावर कर दी।

अब चर्चा करते हैं एक और क्रांतिकारी नेता कन्हाई लाल भट्टाचार्य जी की। न्यायमूर्ति आर आर गार्लिक उस ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष थे जिसने 2 फरवरी 1931 को दिनेश गुप्त को फांसी का दंड सुनाया था। दिनेश गुप्त ने कलकत्ता में पुलिस इंस्पेक्टर जनरल मिस्टर सिंपनसन को उसके कार्यालय में ही गोली से भून डाला था। वही न्यायमूर्ति गार्लिक महोदय 27 जुलाई 1931 को अपने इजलास में एक मामले की सुनवाई में व्यस्त थे। वे ये देख नहीं पाए कि 20 वर्ष का एक दुबला पतला युवक कब एक दरवाजे से इजलास में प्रविष्ट हुआ और गवाह के कटघरे तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने अपना रिवॉल्वर निकाला और न्यायमूर्ति गार्लिक को निशाना बनाकर 2 गोलियां उन पर छोड़ दी। श्रोताओं, न्यायमूर्ति पर हमले की चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे, मगर फिलहाल वक्त है कार्यक्रम में एक देशभक्ति गीत का।

0: श्रोताओं, गीत सुनने से पहले हमने कार्यक्रम में जाना कि न्यायमूर्ति गार्लिक महोदय पर एक व्यक्ति ने गोलियां छोड़ दी। पहली गोली तो खाली चली गई, पर दूसरी गोली न्यायमूर्ति महोदय के मस्तक पे लगी और वे अपनी कुर्सी से वहीं लुढ़क गए। इजलास में सीआईडी का एक सिपाही नागरिक वेश में उपस्थित था। उसके पास भी रिवॉल्वर था और उसने अपनी गोली उस युवक पर छोड़ दी, पर उसका निशाना चूक गया। अब युवक ने एक गोली उस सिपाही पर छोड़ी जो उसके कंधे पर लगी और वो भूमि पर गिर गया। एक सार्जेंट भी अदालत में पहले से ही उपस्थित था। उसने अपने रिवॉल्वर से दो गोलियां उस युवक पर दागी। दोनों गोलियां उसके शरीर में ही लगी और वो युवक भूमि पर गिर गया। घटना स्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। न्यायमूर्ति गार्लिक को अस्पताल भिजवाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। न्यायमूर्ति गार्लिक की हत्या करने वाले युवक की जेब में एक कागज पाया गया, जिस पर लिखा था, दिनेश गुप्त को अन्यायपूर्वक फांसी का दंड देने का पुरस्कार मृत्यु से प्राप्त कीजिए। श्रोताओं, मृत युवक का चित्र अखबारों में छपवाकर उसकी सही जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया। तब मालूम चला कि उनका वास्तविक नाम कन्हैयालाल भट्टाचार्य था और वे 24 परगना के माजिलपुर के रहने वाले थे। तो श्रोताओं, ऐसे थे हमारे आजादी के वीर क्रांतिकारी नेता, जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
1: याद करो कुर्बानी।
2: बहू बहू, जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
3: जी आई माँ जी।
2: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
3: जी माँ जी, आ गई, चलिए।
2: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
4: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
2: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
4: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
2: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए। अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
4: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू, क्या तुम भी यही चाहती हो?
2: जी वो न, न, अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
4: देखिए, भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है। इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
5: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।

0: नमस्कार, आप सुन रहे ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी संगीत प्रेमी मित्रों का स्वागत है। हमने पहले भी समझा है संगीत का मानव जीवन में क्या रोल है, या संगीत कैसे हमारे जीवन को परिपूर्ण करता है। जैसे बादल बिना सूरज की रोशनी आकर्षक नहीं हो सकती, सृष्टि चक्र में रात और दिन अविरत होते ही रहते हैं। अर्थात दिन के होने से रात का महत्व और रात के होने से दिन का महत्व हम जान सकते हैं। वैसे ही एक इंसान हर सांस में संगीत का संपूर्ण रूप से लाभ उठा सके तो गम के पलों में भी वो आत्मविश्वास के साथ फिर से अपनी जीवन यात्रा तय कर सकता है। तो आइए ऐसे महत्वपूर्ण संगीत की भूमिका जो हमारे जीवन में हमेशा ही रहती है, इसको समझने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ मौजूद है श्यामली जी। श्यामली जी, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हाँ गीता जी, आपको भी प्रणाम करती हूँ, जितने सारे लिसनर है सबको मैं प्रणाम करती हूँ।
0: श्यामली जी, पिछले एपिसोड में हमने पटदीप राग के बारे में आपसे जानकारी ली।
1: हाँ जी,
0: आगे आप हमें क्या सिखाने वाले हैं?
1: आगे हम आज तो बंदिश लेकर आए हैं, तान लेकर आए हैं, वो कराना है। तो अगर लिसनर जो है बंदिश लिख लेते हैं तो अच्छा है ना
0: जी।
1: तो
0: जी,
1: मैं बोलना शुरू करती हूँ। ताल तीन ताल की है, मैंने पहले बताया कि पांच मात्रा की मुखड़ा है। मैं तोड़े संग, ये जो है पांच मात्रा की मुखड़ा है। मैं तोड़े संग ना जाऊ पियर वा ढीट लंगर वा, मैं तोरे संग ना जाऊ पियर वा ढीट लंगर वा, बस इतना तक है साई।
0: अच्छा,
1: ठीक है। अंतरा है, हमारी तुम संग ना ही बनई रे, हमारी तुम संग ना ही बनई रे, रात रहे तुम सौतन दिंग वा, मैं तोरे संग ना जाऊ। अभी हम क्या करते हैं, ये बंदिश को सुर में सजा देते हैं जैसे हमने किया
0: जी।
1: ठीक है।

0: ये हमने क्या किया, स्थाई अंतरा जो है, बंदिश जो हमने लिखा दिया
1: जी,
0: तो आपको उसको बैठा दिया सुर में और थोड़ा सा बिस्तर भी कर दिया। अगर लिसनर तबला के साथ कर सकते हैं, गुरुजी के पास शिक्षा लेते हैं तो अच्छा है। कैसे उसको थोड़ा सा बिस्तर करना है, कैसे करना है, मेरे पास तो अभी तबला नहीं है, लेकिन तबला के साथ जैसे अच्छा लगता है
1: उससे मैं ताल बिठा के वो आराम से सीख सकते हैं।
0: जैसे हमने किया ना सुर में भी।

0: सहेंगे, थोड़ा रिदिम से करना है, करके बाद वो आसानी से उठ जाएंगे।
1: अच्छा okay? श्यामली जी, इसी के साथ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में हम सभी सुनेंगे पटदीप राग से संबंधित एक मीठा सा गीत। पुनः हम लौटते हैं संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 90.4 FM।

0: पुनः आप सभी श्रोता मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में स्वागत है। ब्रेक में आपने एक सुंदर सा मीठा सा गीत का आनंद लिया। ब्रेक से पहले हमने बंदिश सीखी।
1: हाँ जी,
0: आगे श्यामली जी हमें पटदीप राग में क्या सिखाएंगे?
1: हाँ, थोड़ा सा तान भी करना है ना, तान बिना संपूर्ण नहीं होता है। तान करते हैं अगर शास्त्रीय संगीत में द्रुत ख्याल में थोड़ा तान नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे अच्छा। उसको थोड़ा बोलतान करेंगे, तान करेंगे, तब उसको संपूर्णता आते हैं। ठीक है,
0: पूरा ही मेरे को लगता है पैकेज होता है।
1: पैकेज होता है,
0: आपने सही संगीत है। में भी हर राग का एक पैकेज होता है। ये अगर इसमें से कुछ एक भी कमी होती है तो पूरा राग संपूर्ण नहीं होता।
1: सब्जी में नमक बिना जैसे होता है।
0: जी जी,
1: चलो मैं करके सुनाती हूँ।
0: हाँ जी।

0: ये तान।
1: हाँ जी, तान के साथ
0: आकार भी।
1: हाँ, तान आकार भी किया है, बिस्तर भी थोड़ा सा, बिस्तर भी के अंतरा में बिस्तर भी किया है। ठीक है, अंतरा स्थाई अंतरा की तान किया हमने।
0: जाते जाते मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि ये जो आप बोल रहे हैं सभी राग की अपनी अपनी बंदिश होती है,
1: जी,
0: तो कोई भी गुरु के पास यही बंदिश मिलेगी या अलग अलग?
1: ऐसे कोई बात नहीं, सबके गुरु के पास अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, हमने जैसे बचपन में सीखा है, जैसे हमने गुरु के पास शिक्षा लिया है, वही बंदिश करती हूँ। बीच अच्छा। बीच में दूसरा भी बंदिश करती हूँ,
0: अलग कलेक्शन भी होगा।
1: अलग जैसे करती हूँ ना, कभी कभी दो बंदिश करती हूँ ना, जैसे हमें अभी भी किया है, जो हमने पिछले एपिसोड में हमने गीत किया है, तो वो भी बंदिश रूप से ले सकता है। एक तल के ऊपर थे, तीन तीन तीन तीन करके 12 मात्रा में थे, तो वो बंदिश भी हो सकता है।
0: ये जरूरी नहीं है कि सभी गुरुजी के पास एक ही जैसी बंदिश हो, अलग अलग बंदिश में भी सीख सकते हैं।
1: जैसे सिखा रही हूँ, अगर गुरु के पास जैसे शिक्षा लिखता है वही सही है
0: जी।
1: जो गुरु देते हैं वही सदगुरु है, वही देते हैं
0: जी।
1: जो जैसे सदगुरु है सच ही देते हैं, गुरु के पास वही सच मिलता है।
0: अच्छा,
1: ठीक है
0: श्यामली जी, जाते जाते आज आप हमें क्या सुनाने वाले?
1: प्रदीप राकी पर बहुत सुंदर एक लता जी का कंपोजिशन है, शर्मिली फिल्म है,
0: शर्मिली
1: वो लता जी का है, मेघा छाए आधी रात। अगर ये गीत नहीं करेंगे तो प्रदीप राग अधूरा हो जाते हैं, तो मैं ये करना चाहती हूँ, कोशिश करती हूँ। ठीक है
0: जी।

0: वाह बहुत सुंदर,
1: थैंक यू।
0: मैं भी बोलती हूँ मैं भी क्या करूँ क्योंकि समय तो अपने समय पर देता है।
1: बहुत प्रदीप राग की पर ये जो गीत है इतना सुंदर है, लता जी ने भी इतना अच्छा खूबी निभाए हैं।
0: जी जी, और इसके सारे शब्द भी
1: है, हमने अब बताया ना प्रकृति इसको शांत है, शांत प्रकृति का है। पिछले एपिसोड में थोड़ा चंचल था बीच जो था, तो अभी ये जो राग इतना प्रकृति शांत,
0: जी
1: शाम की राग है ना, 3 से 6 बजे अगर करते हैं प्रदीप राग प्रेजेंट करते हैं तो कितना अच्छा है ना।
0: जी जी श्यामली जी, इसी के साथ समय देता है हमको इजाजत, पुनः मिलेंगे हम अगले हफ्ते संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। श्रोता मित्रों, आपके कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कुछ पूछना चाहते हो संगीत के विषय में, आप हमें जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9414151415। फिर से रिपीट करती हूँ, हमारा नंबर है 9414151415। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 90.4 FM।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज़, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: अगर आप किसी से रास्ता पूछें और वो गलत बता दे तो कितना घूम जाते हैं, है ना? समझ ही नहीं आता कि थोड़ा और आगे देख लिया जाए या फिर पीछे से टर्न लिया जाए। बस राठौड़ परिवार में अभी कुछ वैसा ही माहौल है। सब ने कड़वी बातें बोल तो दी हैं और घर के बड़े यानी भगवत सिंह राठौड़ जी ने निर्देश दिया कि पहले होगी पेट पूजा, फिर होगा काम दूजा, यानी लड़ाई को टेम्पररी रूप से स्थगित कर दिया गया है। अब ब्रेक के बाद आग और भड़केगी या फिर शांत होगी, चलिए देखते हैं।
1: जमाई साहब, नाश्ता शुरू कीजिए।
2: माँ साहब, मैं बस आता हूँ, आप लोग शुरू कीजिए।
1: लेकिन जमाई साहब, आप कुछ तो खाइए फिर चले जाइएगा।
2: नहीं, मैं अभी बाद में लेता हूँ।
3: अरे आपके पास कौन सा काम है फला जमाई साहब?
4: इधर की बात उधर करने से तो अच्छा है इंसान कोई काम ना करे।
3: क्या कहा आपने, क्या कहा आपने? मैं क्या कुछ नहीं करती इस घर में? हाँ, आपको क्या पता, नाश्ता करके निकल जाएंगे अपने काम पे। इस घर में मैं ना हूँ तो कोई काम ना हो ठीक से। क्या हुआ देवर जी, कोई प्रॉब्लम है का?
5: नहीं तो बड़ी भाभी, बस गले की खराश थी।
3: तो पानी पी लीजिए, नहीं तो राजकुमारी से कह के काढ़ा बनवा दे।
6: हाँ हाँ देवर जी, अभी बना लाती हूँ मैं। थोड़ा सा करेला, थोड़ा सामने वाले पेड़ की छाल और हरे नीम के पत्ते के साथ बस दो बूंद गरम घी।
5: नहीं मतलब नहीं, जरूरत नहीं है भाभी, मैं एकदम ठीक हूँ। देखिए, गा के सुनाओ।
7: नहीं, नहीं।
4: किशन, माना तुम कविता लिख लेते हो पर तुमसे अच्छा मेरा पुराना टेप रिकॉर्डर गाता है।
5: क्या बड़े भैया, आप भी। वैसे आपका वो पुराना टेप रिकॉर्डर तो खराब हो गया था ना, उसमें तो एई एई की आवाज आ रही थी।
3: पुराना टेप रिकॉर्डर आपने तो उसी कबाड़ी वाले को दे दिया था ना, जिसका मोल बड़ा कम लगाया था उस नालायक ने।
4: वो मतलब, अरे क्या मेरी बात लेके बैठ गए, कोई जमाई साहब को तो देखो अब तक आए नहीं, हम लोग नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं भाई।
8: शांति, जाओ जमाई साहब को लेकर आओ।
6: मैं नहीं जाऊंगी वीरेंद्र भैया, बच्चा थोड़ी है, खुद ही आ जाएगा।
1: हे राम, किस मुहूर्त में पैदा हुई थी तू? कोई अपने पति को ऐसे बोलता है क्या?
6: हाँ, आप भी मुझे ही बोलो, इस घर में मुझे कोई नहीं समझता है।
5: शांति दीदी, बस हाँ, ज्यादा फिल्मी हो रहे हैं आप, मैं जाता हूँ जीजा जी को बुलाने।
0: वैसे कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, पर ये बहस सालों से चली आ रही है कि फिल्मों में वही दिखाते हैं जो समाज में हो रहा है, या फिर फिल्मों में जो देखते हैं वो समाज में होने लगता है। वैसे जो हम देखते हैं सुनते हैं, भाई उसका असर मन पर तो पड़ता ही है। फिलहाल शांति जी अपने दर्द को सबसे बड़ा मान बैठी हैं। आखिर उनके पति बाकी पतियों की तरह कमा जो नहीं रहे, और उनके पति सूरजमल कुछ न कर पाने का दुख और जिल्लत के बोझ को झेलकर अपने गम छुपाए कमरे में बैठे हैं। किशन उन्हें बुलाने गया है, अब देखते हैं क्या वो कामयाब होगा। चलिए
5: जीजा जी, मैं अंदर आ जाऊं।
2: किशन, अब अभी जाऊं यहाँ से।
5: जीजा जी, आप रो रहे हैं।
2: नहीं, किसने कहा? जाओ जाओ, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है।
5: जीजा जी प्लीज, मुझे अंदर आना है, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकता, मैं भी तो आपका भाई जैसा हूँ। जीजा जी, ये लीजिए, पानी पीजिए।
2: देखो किशन, मैं यहाँ जब से आया हूँ तब से कोई खुश नहीं है, ऊपर से शांति भी नाराज है। वो सही कहती है, मैं ही नकारा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ उसके लिए। सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया है।
5: जीजा जी, जो भी हुआ है उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, और आप इतना कुछ होने के बाद भी दोबारा कोशिश कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है।
2: क्या फायदा इस कोशिश का जो रंग ना लाए।
8: जमाई सा, मैं कुछ कहूं?
2: भैया, आपने तो मुझे शुरू से बहुत हौसला दिया है, लेकिन मैं
8: जमाई सा, आप रो लीजिए, लेकिन मैं बस इतना कहूंगा कि हम आपको ससम्मान इस घर में जगह दे रहे हैं, और आपके काम करने या ना करने से ये कम ज्यादा नहीं होगा।
5: माफ कीजिएगा जीजा जी, शांति दीदी तो अशांति करके रखती है पूरे घर में। बचपन में एक बार उनको मार्केट नहीं लेके गए थे बड़े भैया, क्या हंगामा मचाया था, सारे घर के शीशे तोड़ दिए थे।
2: कोई रिफंड प्रोसेस है क्या इसका?
8: जमाई सा, आपको तो सिर्फ उल्टा सुनना पड़ता है, मुझे तो खाना भी पड़ता है, वो भी चुपचाप।
5: इसी बात पे अर्ज किया है।
8: बोल भाई बोल।
5: वो नहीं है लेकिन उनकी महक है हवाओं में, वो नहीं है लेकिन उनकी महक है हवाओं में, उन्हें इल्म भी नहीं बस वही है हमारे ख्यालों में।
8: हाँ? ये किसकी बात करने लगा?
5: नाश्ते की भैया, भूख लगी जोरों से और कुछ नहीं सूझ रहा अब मुझे।
8: तू भी किशन, चल चलिए जमाई सा नाश्ता करते हैं।
6: जमाई साहब तक आए नहीं, इतनी देर हो गई।
7: जमाई साहब रो रहे होंगे, छोटी छोटी बातों पे औरतों से ज्यादा रोने लगते हैं।
6: माँ साहब, मैं देखकर आती हूँ क्या हुआ।
9: माँ, मैं जाती हूँ, मैं बताती हूँ उनको कि इस शांति की बात को ज्यादा सीरियसली ना लें, इसकी बातें इसको ही समझ नहीं आती है।
10: दीदी, मैं चुप बैठी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलोगी आप।
9: वाह, शांति और शांत, वाह वाह, ये तो चमत्कार है। अगर तूने उन्हें खरी खोटी ना सुनाई होती तो अभी सब अच्छे से बैठ करके नाश्ता कर रहे होते।
10: दीदी, वैसे तो बड़ी फेमिनिस्ट बनकर घूमती हो आप, अभी मेरा साथ नहीं दे सकती आप?
9: शांति, फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं होता कि लड़की की गलती हो तो भी उसका साथ दिया जाए।
11: शांति।
10: पर पापा ये।
11: बस बेटा, अब बस कर। अगर गलती जमाईसा के भी होती ना, तब भी ऐसे ताने कसने से नहीं हो जाती, और थोड़ा सा उनका दुख समझ, कितनी बड़ी परेशानी से निकले हैं वो, अभी तुझे तो उनका साथ देना चाहिए।
10: पापा, सिर्फ अभी की बात नहीं है, वहाँ पर भी घर में यही होता है, इनको समझ में ही नहीं आती है दुनियादारी।
6: और तुझे आती है?
11: तुम लोग डिसाइड कर लो, समस्या का हल चाहिए या सिर्फ नाराजगी से पेट भर लोगे?
6: हल चाहिए।
11: तो बस हो गया अब।
4: शांति, रागिनी, नाश्ता ठंडा हो गया है, जाओ जाके राजकुमारी की मदद करो, गरम करके लेके आओ, जाओ।
12: लो, आ गए जमाईसा। जमाईसा, अब बैठिए, बस नाश्ता गरम ही हो रहा है।
5: माँ, माहौल तो ठंडा है ना यहाँ का, वो गरम नहीं होना चाहिए।
3: अरे, कोई जमाईसा के लिए गरम गरम दाल बाटी लेके आओ। जमाईसा, आप खाइए, मेरी रेसिपी है, एकदम स्वादिष्ट।
5: इनको क्या हो गया, बड़े प्यार से बात कर रही।
4: अरे, भूख लगी है ना, अभी गुस्सा दिखाने से फिर जमाई सा चले गए तो दाल बाटी नहीं मिलेगी।
6: चलिए चलिए, सब लोग खाइए, नाश्ता ठंडा हो रहा है, ये लीजिए। हाँ बच्चों, तुम लोग इधर आ जाओ।
3: अरे वाह, लाओ लाओ, मुंह में पानी आ गया मेरे तो।
1: वाह राजकुमारी, आज तो तूने कमाल कर दिया, बड़ी स्वादिष्ट दाल बाटी बनाई है।
6: थैंक यू मासा, आपसे ही तो सीखा है, इसमें मैंने अपना कुछ भी ऐड नहीं किया।
8: धन्यवाद भगवान का, बच गए।
1: चलो चलो, सब लोग खाओ गर्मा गर्म दाल बाटी चूरमा। इस वक्त तो दूध वाला पेपर वाला कोई नहीं आता, अब कौन आ गया गेट पे?
8: शांति, गेट खोलो।
6: अरे किशन, जाओ ना गेट खोलो।
9: अरे अरे, गेट खोलो ना।
10: जाइए, गेट खोलिए।
4: कोई तो जाओ।
6: अरे गेट खोलिए,
4: कोई तो जाओ।
8: शांति, गेट खोल दो।
10: अरे गेट खोलो तो कोई।
9: हाँ किसी को उठ गया तो जाना नहीं है, सभी को एक दूसरे को बोलते रहते बस यही पे ऐसे ही
8: कर क्या रहे हैं। लेकिन अब बता, अरे कोई देखो बाहर कोई है।
3: अरे कौन है गेट पे?
8: पुलिस।
11: पुलिस?
8: अरे कौन
13: पुलिस?
9: यहाँ तो कोई घरेलू हिंसा भी नहीं हुई, वैसे मेंटल हैरासमेंट तो किया है इसने, ये कहीं शांति को पकड़ने तो नहीं आए?
10: क्या दीदी मुझे क्यों पकड़ेंगे, मैं तो कितनी मासूम हूँ।
8: ये ना जरूर किशन की घटिया पोएट्री के लिए उसे पकड़ने आए होंगे।
5: भैया कहीं परेशान होकर जीजा जी ने तो पुलिस नहीं बुला ली?
14: मैंने नहीं बुलाई, मैं तो कमरे में था।
8: अरे तुम लोग चुप हो जाओ, मैं देखता हूँ।
0: क्या लगता है आपको पुलिस क्या करने आई होगी राठौड़ परिवार में? अब कौन सा नया ट्विस्ट आने वाला है इन घर वालों के जीवन में? भाई ये तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। वैसे कितना कुछ हो गया ना आज, सोचिए बचपन में जब एक दूसरे से रूठते थे तो कैसे फटाफट मान भी जाते थे। काश वो मासूमियत हमेशा रहती। आज हम एक दूसरे से ऐसे नाराज होते हैं कि उनका दुख भी दिखाई नहीं देता। ईगो इतना बड़ा हो जाता है कि मेरी बात, मेरी परेशानी, मैं सही, बस मैं ही रह जाता है। बाद में जब ये मैंपन का नशा उतरता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। कबीर दास जी ने तो कहा है कि प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। परिवार मतलब प्रेम, प्रेम मतलब मैं नहीं हम। खैर अब राठौड़ परिवार तो आनंद ले रहे हैं राजस्थानी पकवान का, मैं भी चलता हूँ क्योंकि मेरे पेट के चूहे भी अब मुझे और बातें नहीं करने देंगे, है ना? फिर मिलेंगे जल्दी। आखिर आपको बताना भी तो है ना कि पुलिस क्यों आई है राठौड़ परिवार के दरवाजे पर। फिलहाल के लिए नमस्ते, टाटा, बाय बाय, घड़ी गम्मा दोस्तों।
15: घर ऑन एयर पात्र परिचय। दादाजी भगवत सिंह राठौड़, आरजे ज्ञानेश्वर। दादी जी अंबिका देवी राठौड़, आरजे संध्या। चाचा किशन सिंह राठौड़, आरजे श्रीनिधि। ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौड़, आरजे रोहित। ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा। बुआ रागनी राठौड़, आरजे कृष्णा। बुआ शांति राठौड़, आरजे मोना। वीरेंद्र राठौड़, आरजे विशाल। राजकुमारी राठौड़, आरजे आरुषि। बच्चे रूहानी, अमीक्षा। नैरेटर आरजे अमित।

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते

0: नमस्कार, मैं हूँ वर्षा सिंह।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक।
0: प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक।
1: दोस्तों, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपके लिए लेकर आता है उन महान व्यक्तित्वों की कहानियां जिन्होंने भारत का नाम विश्व में रोशन किया। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे महान गणितज्ञ की अद्भुत जीवन गाथा जिन्होंने गणित के सबसे कठिन क्षेत्रों में अपना परचम लहराया। आज हम बात करेंगे प्रोफेसर श्रीराम शंकर अभ्यंकर की, एक ऐसे व्यक्ति की जिनका नाम बीजगणितीय ज्यामिति के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है।
0: ये कहानी है समर्पण की, कठिन परिश्रम की और अपनी जड़ों से जुड़े रहने की। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने अमेरिका में रहते हुए भी अपनी भारतीयता को कभी नहीं भुलाया। तो आइए शुरू करते हैं ये यात्रा बचपन से लेकर उनके जीवन के अंतिम क्षणों तक, और साथ में जानेंगे उनके परिवार, उनके छात्रों और उनके सहयोगियों के अनुभव।
1: तारीख थी 22 जुलाई 1930, ग्रीष्मकाल की एक गर्म सुबह, मध्य प्रदेश का प्राचीन शहर उज्जैन, वही पवित्र नगरी जहां महाकवि कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी। उज्जैन जो सदियों से भारतीय गणित, ज्योतिष और विज्ञान का केंद्र रहा है, यही एक साधारण परिवार में जन्म हुआ एक असाधारण प्रतिभा का, श्री राम शंकर अभ्यंकर। उनके पिता शंकर केशव अभ्यंकर एक सरकारी सेवक थे, माता एक पारंपरिक भारतीय गृहिणी थी जो संस्कार, शिक्षा और धर्म में गहरी आस्था रखती थी।
0: घर का वातावरण बहुत शिक्षा प्रद था। शाम को संस्कृत के श्लोक, सुबह वेदों का पाठ और बच्चों के लिए शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता, यही वो माहौल था जिसमें श्रीराम का पालन पोषण हुआ। बचपन से ही श्रीराम में कुछ अलग था। जब गली के अन्य बच्चे गुल्ली डंडा खेलने में व्यस्त रहते, तब छोटा श्रीराम घर के एक कोने में बैठा संख्याओं के साथ खेल रहा होता। उनकी माता को याद था कि जब श्रीराम महज 5-6 साल के थे, तब वे रेत पर अंक बनाते और उन्हें जोड़ते घटाते रहते। ये कोई साधारण बच्चा नहीं था।
1: उज्जैन के स्थानीय विद्यालय में जब श्रीराम ने प्रवेश लिया तो शिक्षकों ने बहुत जल्दी उनकी असाधारण प्रतिभा को पहचान लिया। उनके गणित के शिक्षक पंडित रामनाथ शास्त्री अक्सर कहा करते थे, ये बालक साधारण नहीं है, इसकी बुद्धि तीक्ष्ण है और गणित में इसकी रुचि असामान्य है। एक बार की बात है, कक्षा में एक कठिन गणितीय समस्या दी गई, पूरी कक्षा परेशान थी, लेकिन श्री राम ने महज 10 मिनट में उसे हल कर दिया। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उन्होंने उसे 3 अलग-अलग तरीकों से हल किया था। शिक्षक भी चकित रह गए थे।
0: लेकिन श्रीराम घमंडी नहीं थे। उनके एक बचपन के मित्र मनोहर देसाई ने बाद में याद करते हुए कहा था, श्रीराम हमेशा से अलग था। जब हम क्रिकेट खेलते तो वो किताबों में खोया रहता, लेकिन वो कभी यह नहीं दिखाता कि वो हमसे ज्यादा होशियार है। बहुत विनम्र था। विनम्रता, ये गुण उनके साथ जीवन भर रहा। चाहे वे कितने भी बड़े गणितज्ञ बन गए, लेकिन उनमें घमंड का लेश भी नहीं था। श्रीराम की शिक्षा में संस्कृत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। उनके पिता चाहते थे कि बच्चे अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहें।
1: हर शाम खाना खाने के बाद परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठते और संस्कृत के श्लोक पढ़ते। पाणिनी का व्याकरण, वेदों के मंत्र, ये सब श्री राम के जीवन का हिस्सा था और यहीं से शुरू हुआ उनका संस्कृत से गहरा प्रेम। उन्होंने पाणिनी के व्याकरण में एक गणितीय संरचना देखी। बाद में जब वे विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ बन गए, तब भी वे कहते थे, संस्कृत गणित की भाषा है, इसकी संरचना पूरी तरह तार्किक और गणितीय है। यह दृष्टिकोण उन्हें अन्य गणितज्ञों से अलग बनाता था। वे प्राचीन भारतीय ज्ञान को आधुनिक गणित से जोड़ने में विश्वास रखते थे।
0: 1940 के दशक का भारत, देश स्वतंत्रता संग्राम से गुजर रहा था। गांधी जी का नाम हर घर में गूंज रहा था। लेकिन किशोर श्रीराम का मन किसी और दुनिया में था, गणित की दुनिया में। उनके कमरे में यूक्लिड, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त की किताबें सजी रहती। उनके पिता चाहते थे कि श्रीराम आईएएस बने, सरकारी सेवा में जाएं। ये उस समय का सबसे प्रतिष्ठित करियर था, लेकिन श्रीराम के सपने अलग थे। एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं गणितज्ञ बनना चाहता हूँ, मुझे संख्याओं और समीकरणों से प्यार है, मैं इसी में अपना जीवन लगाना चाहता हूँ। पिता पहले तो चिंतित हुए, गणित में क्या भविष्य है, लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे की आंखों में जुनून देखा तो वे समझ गए कि ये साधारण इच्छा नहीं है।
1: और इस तरह एक पिता ने अपने बेटे के सपने को पंख दिए। ये निर्णय श्री राम के जीवन को बदल देने वाला था। 1947 वो साल जब भारत आजाद हुआ, और वही साल था जब 17 वर्षीय श्री राम ने उज्जैन छोड़ा और बॉम्बे यानी कि मुंबई की ओर रुख किया। बॉम्बे सपनों का शहर, अवसरों का शहर। बॉम्बे विश्वविद्यालय में उनका दाखिला हो गया था। पहली बार घर से दूर एक नए शहर में, नए लोगों के बीच, लेकिन श्री राम डरे नहीं। उनके साथ था उनका जुनून, गणित का जुनून। बॉम्बे विश्वविद्यालय में उन्हें मिले कुछ उत्कृष्ट प्राध्यापक, प्रोफेसर वी नरलीकर, प्रोफेसर डी कोसंबी। ये वो नाम थे जिन्होंने श्री राम की प्रतिभा को और निखारा।
0: कॉलेज के दिनों में श्री राम का एक ही रूटीन था, सुबह कक्षाएं, दोपहर को पुस्तकालय, शाम को समस्याएं हल करना और रात को अध्ययन। उनके सहपाठी अक्सर मजाक में कहते थे, श्री राम तुम मनुष्य हो या मशीन, कभी तो आराम करो। और उनका जवाब था, गणित करना ही मेरा आराम है, जब मैं समीकरण हल करता हूँ तो मुझे शांति मिलती है। और ये सच था, गणित उनके लिए बोझ नहीं बल्कि आनंद था। यही जुनून उन्हें महानता की ओर ले जा रहा था। 1951 श्री राम ने बॉम्बे विश्वविद्यालय से गणित में बीएससी की डिग्री प्राप्त की, और वो भी प्रथम श्रेणी में सर्वोच्च अंकों के साथ। उनके प्राध्यापक उनकी प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे। प्रोफेसर नीलिकर ने उन्हें बुलाया और कहा, श्री राम तुम्हारी प्रतिभा भारत में सीमित नहीं रह सकती, तुम्हें विदेश जाना चाहिए, वहाँ के महान गणितज्ञों से सीखना चाहिए।
1: विदेश, ये शब्द सुनते ही श्री राम के मन में हजारों सवाल उठे। क्या वे भारत छोड़ सकते हैं? क्या वे अपने परिवार से दूर रह सकते हैं? लेकिन फिर उन्होंने सोचा, ये भागना नहीं है, ये सीखने जाना है, ताकि एक दिन वे भारत लौट सकें और यहां के युवाओं को प्रेरित कर सकें। और इस तरह शुरू हुई अमेरिका जाने की तैयारी। परीक्षाएं, आवेदन पत्र, छात्रवृत्ति के लिए प्रयास, सब कुछ एक साथ। और फिर एक दिन वो पत्र आया, हार्वर्ड विश्वविद्यालय से स्वीकृति पत्र, दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक। श्री राम और उनके परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन साथ ही एक दुख भी था, अलग होने का दुख। प्रस्थान का दिन आ गया। 1951 की एक सर्द सुबह घर में सन्नाटा था, लेकिन हर किसी की आंखों में आंसू थे। मां ने श्री राम के माथे पर तिलक लगाया, उनके सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया, बेटा जा, जाकर नाम कमा, लेकिन कभी अपनी जड़ों को मत भूलना, तू भारत का बेटा है, ये हमेशा याद रखना। श्री राम ने मां के पैर छुए, पिता ने उन्हें गले लगाया, और फिर वे निकल पड़े एक नई दुनिया की ओर, नए सपनों की ओर। जहाज में बैठकर जब उन्होंने भारत की तरफ आखिरी बार देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में दृढ़ संकल्प था, मैं वापस लौटूंगा, लेकिन एक महान गणितज्ञ बनकर। मैं अपने देश का नाम रोशन करूंगा। बोस्टन हवाई अड्डा, ठंडी हवा, अजनबी चेहरे, अलग भाषा, श्री राम के लिए सब कुछ नया था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, विशाल इमारतें, विशाल पुस्तकालय और हर तरफ विद्वानों का जमघट। पहले दिन जब श्री राम गणित विभाग पहुंचे तो उनका परिचय हुआ प्रोफेसर ऑस्कर जारेंस्की से। बीजगणितीय ज्यामिति के पितामह प्रोफेसर जारेंस्की ने श्री राम को देखा, उनकी आंखों में झांका और मुस्कुराते हुए कहा, सो यू आर फ्रॉम इंडिया, द लैंड ऑफ रामानुजन, लेट्स सी व्हाट यू कैन डू।
0: ये चुनौती थी और श्री राम ने इसे स्वीकार किया। उन्होंने ठान लिया कि वे रामानुजन की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। हार्वर्ड में जीवन आसान नहीं था, अलग देश, अलग संस्कृति, कड़ाके की ठंड, सब कुछ चुनौतीपूर्ण था। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी गणित का वो स्तर जो यहाँ अपेक्षित था। हार्वर्ड में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ छात्र आते थे, लेकिन श्रीराम ने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत, पुस्तकालय में घंटों अध्ययन और प्रोफेसर जारेंस्की के कठिन प्रश्नों का सामना। प्रोफेसर जारेंस्की और श्रीराम के बीच एक विशेष रिश्ता विकसित हुआ। ये सिर्फ शिक्षक छात्र का रिश्ता नहीं था, बल्कि गुरु शिष्य की प्राचीन भारतीय परंपरा थी। जारेंस्की ने श्रीराम की प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने देखा कि ये युवा भारतीय कुछ अलग है, उनकी सोच मौलिक है, उनका दृष्टिकोण नवीन है। एक दिन जारेंस्की ने श्रीराम को अपने कार्यालय में बुलाया और कहा, श्रीराम, आई हैव अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम फॉर यू, इट्स अबाउट रेजोल्यूशन ऑफ सिंगुलरिटीज, मैनी हैव ट्राइड, मैनी हैव फेल्ड, डू यू वांट टू ट्राई। श्रीराम ने कहा, प्रोफेसर, आई एम रेडी, इवन इफ आई फेल आई विल लर्न समथिंग।
1: और इस तरह शुरू हुआ उनका शोध कार्य, एक ऐसी समस्या पर जो गणित जगत को दशकों से परेशान कर रही थी। अगले 3 साल श्री राम ने दिन रात इसी समस्या पर काम किया। कई बार असफल हुए, कई बार निराश हुए, लेकिन हर बार जारेंस्की उन्हें प्रोत्साहित करते, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ग्रेट डिस्कवरीज कम आफ्टर ग्रेट फेलियर्स। ये सबक श्री राम ने जीवन भर याद रखा और बाद में अपने छात्रों को भी यही सिखाया। 1955 की वसंत ऋतु, श्री राम ने अपना शोध प्रबंध पूरा किया, लोकल यूनिफॉर्माइजेशन ऑन अलजेब्रिक सरफेसेस ओवर मॉड्यूलर फील्ड्स। ये कोई साधारण शोध नहीं था, ये बीजगणितीय ज्यामिति में एक महत्वपूर्ण योगदान था। जब उन्होंने अपने शोध प्रबंध की रक्षा की तो कमरे में उपस्थित सभी प्रोफेसर आश्चर्यचकित रह गए। परीक्षक समिति के एक सदस्य ने कहा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट डिसर्टेशन आई हैव सीन इन माय 30 इयर्स एट हार्वर्ड, यंग मैन, यू हैव अ ग्रेट फ्यूचर अहेड।
0: प्रोफेसर जारेंस्की की आंखों में गर्व के आंसू थे, उनका शिष्य सफल हो गया था। और इस तरह मात्र 25 वर्ष की आयु में श्री राम शंकर अभ्यंकर ने हार्वर्ड से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वो सिर्फ एक डिग्री नहीं थी, ये एक भारतीय युवा की विश्व मंच पर पहली विजय थी। और अब शुरू होती है एक प्रेम कहानी। 1955 की गर्मियों में एक शैक्षणिक सम्मेलन में श्री राम की मुलाकात हुई यवोन से। यवोन एक बुद्धिमान और शिक्षित युवती थी। गणित में उनकी रुचि नहीं थी, लेकिन विज्ञान और साहित्य में गहरी रुचि थी। पहली मुलाकात में ही दोनों को एहसास हो गया कि ये कुछ खास है। श्रीराम को यवोन की बुद्धिमत्ता आकर्षित करती थी और यवोन को श्रीराम का समर्पण और विनम्रता। बाद में यवोन ने एक साक्षात्कार में बताया था, When I was first met Shri Ram, I was struck by his intensity. He talked about mathematics with such passion as if it was poetry. I had never met anyone like him. कुछ महीनों की मुलाकात के बाद श्री राम ने यवोन से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने ईमानदारी से कहा, यवोन, I must be honest with you. Mathematics is my first love. If you marry me, you will have to share me with mathematics. यवोन ने कहा, I know Shri Ram and I am ready for that. I have never seen anyone love their work as much as you do. It's beautiful.
1: 1956 में श्री राम और यवोन ने विवाह कर लिया। एक साधारण लेकिन सुंदर समारोह, कुछ मित्र, कुछ सहकर्मी और ढेर सारा प्यार। भारत से श्री राम के माता पिता नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने आशीर्वाद भेजा। माँ ने एक पत्र लिखा था, बेटा बहुत खुशी हुई तेरे विवाह का समाचार सुनकर। यवोन को हमारा आशीर्वाद, उसे बता देना कि भारतीय परिवार में बहू का बहुत सम्मान होता है। यवोन ने भारतीय संस्कृति को खुले दिल से अपनाया। उन्होंने हिंदी सीखने की कोशिश की, भारतीय खाना बनाना सीखा। विवाह के बाद जीवन एक नई दिशा में मुड़ गया। श्रीराम अब कॉर्नेल विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे। घर की जिम्मेदारियां, पढ़ाने की जिम्मेदारियां और शोध का काम, सब कुछ एक साथ। लेकिन यवोन ने पूरा साथ दिया। यवोन ने बाद में एक साक्षात्कार में कहा था, मैंने बहुत जल्द समझ लिया था कि श्री राम के काम में बाधा बनना संभव नहीं है, इसलिए मैंने उनका सहयोगी बनने का निर्णय लिया। मैं उनके पेपर टाइप करती थी, उनके छात्रों के लिए घर पर चाय कॉफी की व्यवस्था करती थी।
0: 1958 में उनकी पहली संतान हुई, बेटी किरण। श्री राम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पहली बार जब उन्होंने अपनी बेटी को गोद में लिया तो उनकी आंखों में आंसू थे। उस दिन मैंने श्री राम को पहली बार इतना भावुक देखा। वे किरण को गोद में लेकर घंटों बैठे रहे। उन्होंने कहा, अब मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। फिर 1960 में बेटे केतन का जन्म हुआ और 1963 में छोटे बेटे अरुण का। घर अब बच्चों की किलकारियों से गूंजने लगा था। लेकिन श्रीराम का शेड्यूल नहीं बदला। सुबह जल्दी उठना, फिर विश्वविद्यालय जाना, शाम को वापस आकर बच्चे के साथ थोड़ा समय और फिर रात को शोध का काम। किरण अभ्यंकर, जो अब एक सफल पेशेवर हैं, याद करती हैं, पिताजी के साथ बड़े होना एक अनोखा अनुभव था। हमारा घर एक साधारण घर नहीं था। हमारे कमरे में किताबें थी, दीवारों पर गणितीय सूत्र लिखे होते थे। पिताजी का अध्ययन कक्ष हमारे लिए एक रहस्यमय जगह थी।
1: 1963 श्री राम के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़। विस्कॉन्सिन मेडिसन विश्वविद्यालय से उन्हें प्रोफेसर बनने का प्रस्ताव मिला। ये कोई साधारण प्रस्ताव नहीं था। विस्कॉन्सिन का गणित विभाग अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ विभागों में से एक था। परिवार के साथ मेडिसन शहर पहुंचे। सुंदर झीलों वाला शहर, शांत वातावरण और एक जीवंत विश्वविद्यालय, यहीं श्री राम ने अपना सबसे महत्वपूर्ण काम किया। यहीं वे एक महान शिक्षक बने और यहीं उन्होंने जीवन के अंतिम दिन बिताए। विस्कॉन्सिन में उनके पहले दिन विभाग के अध्यक्ष ने कहा था, प्रोफेसर अभ्यंकर, वी आर ऑनर्ड टू हैव यू हियर। योर वर्क ऑन रेजोल्यूशन ऑफ सिंगुलरिटीज इज ऑलरेडी लीजेंडरी। वी लुक फॉरवर्ड टू योर कॉन्ट्रीब्यूशन। और श्री राम ने निराश नहीं किया। अगले 50 वर्षों में उन्होंने विस्कॉन्सिन को बीज गणितीय ज्यामिति का एक वैश्विक केंद्र बना दिया।
0: 1965 में श्री राम के पास उनका पहला PhD छात्र आया, बाल्टिक करासलर, एक युवा प्रतिभाशाली लेकिन डरा हुआ छात्र। बाल्टिक याद करते हैं वो पहली मुलाकात। मैं बहुत घबराया हुआ था। प्रोफेसर अभ्यंकर की प्रतिष्ठा पहले ही बहुत थी। जब मैं उनके कार्यालय में गया तो वे एक बोर्ड पर समीकरण लिख रहे थे। उन्होंने मुड़कर देखा और पूछा, क्या तुम वाकई में गणितज्ञ बनना चाहते हो या सिर्फ डिग्री चाहिए? मैं सकते में आ गया। मैंने कहा कि मैं वाकई गणितज्ञ बनना चाहता हूँ। तो फिर तैयार रहो, ये यात्रा आसान नहीं होगी। तुम्हें कई बार असफल होना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम डटे रहे तो तुम सफल होगे। ये था प्रोफेसर अभ्यंकर का तरीका। बिल्कुल ईमानदार, बिल्कुल सीधा, कोई झूठी उम्मीदें नहीं, सिर्फ कड़ी मेहनत का वादा।
1: एक अन्य छात्रा ने कहा, पहले दिन मैं सोच रही थी कि मैंने गलत कक्षा में दाखिला ले लिया है। प्रोफेसर अभ्यंकर ने जो समीकरण बोर्ड पर लिखे वे मेरी समझ से परे थे, लेकिन धीरे धीरे समझ आने लगा। प्रोफेसर अभ्यंकर कभी नहीं बैठते थे। 3 घंटे की कक्षा में वे लगातार खड़े रहते, चलते फिरते, बोलते और लिखते रहते। उनके हाथ में हमेशा चौक होता और जूते हमेशा चौक की धूल से सफेद। कभी कभी उनके कपड़ों पर चौक के निशान होते, लेकिन जो छात्र बने रहते उन्हें एक अनमोल खजाना मिलता, गणित की गहरी समझ। प्रोफेसर अभ्यंकर की कक्षा में सवाल पूछना एक कला थी। डॉक्टर विलियम हाइंजर, जो अब स्वयं प्रोफेसर हैं, बताते हैं, एक बार मैंने एक बहुत बुनियादी सवाल पूछ लिया। प्रोफेसर अभ्यंकर रुके, मुड़े और मेरी ओर देखा, फिर बोले, तुमने पिछली रात पढ़ा नहीं, ये तो मैंने कल ही समझाया था, ध्यान कहां था तुम्हारा। मैं शर्मिंदा हो गया, लेकिन फिर उन्होंने पूरी कक्षा को संबोधित करते हुए कहा, देखो गणित में हर चीज महत्वपूर्ण है, अगर तुम बुनियादी बातें नहीं समझोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। कल रात की पढ़ाई दोहराओ, सब दोहराओ।
0: लेकिन जब कोई गहरा और विचारशील सवाल पूछता तो प्रोफेसर अभ्यंकर की आंखें चमक उठती। एक छात्रा डॉक्टर जेसिका मिलर बताती हैं, एक बार मैंने सवाल पूछा जो थोड़ा अलग दृष्टिकोण से भरा था। प्रोफेसर अभ्यंकर तुरंत रुके और बोले, अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल, आओ इस पर चर्चा करते हैं। और फिर अगले 45 मिनट तक हमने उसी सवाल पर चर्चा की। पूरी कक्षा ने साथ में सीखा। उस दिन मुझे समझ आया कि अच्छे सवाल पूछना भी एक कला है। प्रोफेसर अभ्यंकर अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़े रखना चाहते थे। अरुण अभ्यंकर सबसे छोटे बेटे, बताते हैं हर रविवार की सुबह पिताजी हमें संस्कृत के श्लोक सिखाते थे। पहले तो हम बोर हो जाते थे, लेकिन धीरे धीरे समझ आने लगा। अरुण याद करते हैं कि एक बार उन्होंने पूछा, पिताजी हम अमेरिका में रहते हैं, संस्कृत क्यों सीखें?
1: प्रोफेसर अभ्यंकर ने प्यार से समझाया, बेटे तुम भले ही अमेरिका में रहते हो, लेकिन तुम्हारी जड़ें भारत में हैं। संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं है, ये एक विचारधारा है, एक दर्शन है, और सबसे महत्वपूर्ण ये गणित की भाषा है। फिर उन्होंने मुझे दिखाया कि कैसे पाणिनि के व्याकरण में गणितीय पैटर्न है। उस दिन से संस्कृत मेरे लिए रोचक हो गई। दिवाली और होली पर अभ्यंकर परिवार का घर रोशनी और रंगों से भर जाता था। यवोन ने भारतीय व्यंजन बनाना सीख लिया था। समोसे, जलेबी, पूड़ी, सब्जी, सब कुछ घर में बनता था। दिवाली पर पिताजी सबसे ज्यादा उत्साहित होते थे। वे कहते थे कि ये अंधकार पर प्रकाश की जीत है, ठीक वैसे ही जैसे गणित में ज्ञान अज्ञानता पर विजय पाता है। सन 1998 में भारत सरकार ने प्रोफेसर अभ्यंकर को पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा की। ये खबर सुनकर प्रोफेसर अभ्यंकर बहुत भावुक हो गए। केतन बताते हैं, जब पिताजी को ये खबर मिली तो वे अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद मम्मी ने मुझे बुलाया, पिताजी रो रहे थे। मैंने पूछा, पिताजी क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? उन्होंने कहा, बेटे ये सम्मान मेरी मातृभूमि से है, फील्ड मेडल से भी बड़ा है मेरे लिए, भारत ने मुझे याद रखा। सम्मान समारोह के लिए पूरा परिवार भारत गया। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में समारोह था। जब राष्ट्रपति ने उन्हें पद्मश्री प्रदान किया तो प्रोफेसर अभ्यंकर ने अपने संक्षिप्त भाषण में कहा, मैं आज यहां एक गणितज्ञ के रूप में नहीं बल्कि भारत के एक बेटे के रूप में खड़ा हूं। ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं बल्कि उन सभी भारतीय विद्वानों का है जो विश्व मंच पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
0: सम्मान समारोह के बाद प्रोफेसर अभ्यंकर परिवार के साथ उज्जैन गए। अपनी जन्मभूमि किरण याद करती हैं। जब हम उज्जैन पहुंचे तो पिताजी का चेहरा देखने लायक था, वे बच्चे की तरह उत्साहित थे। प्रोफेसर अभ्यंकर अपने बचपन के घर गए, वो घर जहां उन्होंने गणित के सपने देखे थे। यहीं इसी आंगन में मैं बैठकर गणित की किताबें पढ़ता था, यहीं मेरे सपने शुरू हुए थे। उन्होंने अपने पुराने स्कूल का दौरा किया, वहां के छात्रों से मिले। एक युवा छात्र ने पूछा, सर आप इतने बड़े गणितज्ञ कैसे बने? उन्होंने जवाब दिया, बेटे मैं कोई बड़ा गणितज्ञ नहीं हूँ, मैं बस एक व्यक्ति हूँ जो गणित से प्यार करता है। तुम भी अपने पैशन को फॉलो करो, मेहनत करो, सफलता मिलेगी।
1: 2012 शरद ऋतु का समय, प्रोफेसर अभ्यंकर का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। परिवार चिंतित था। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें आराम की जरूरत है, लेकिन प्रोफेसर अभ्यंकर काम करना नहीं छोड़ना चाहते थे। केतन बताते हैं, अक्टूबर 2012 में पिताजी की तबीयत खराब हो गई। हमने उन्हें अस्पताल ले जाना चाहा, लेकिन वे मना कर रहे थे। नहीं बेटे, मुझे अभी एक प्रमाण पूरा करना है, अस्पताल बाद में चलेंगे। अंततः परिवार के आग्रह पर वे अस्पताल गए, लेकिन वहां भी उनके बिस्तर के पास गणित की किताबें और कागज रखे रहते थे। एक नर्स ने बाद में बताया, मैंने ऐसा मरीज कभी नहीं देखा। वे अस्पताल के बिस्तर पर भी समीकरण लिख रहे थे। उनका समर्पण अद्भुत था।
0: 6 नवंबर 2012 प्रोफेसर अभ्यंकर के जीवन का आखिरी दिन। परिवार उनके पास था, यवोन, केतन, किरण, अरुण, सबके सब भावुक होकर याद करते हैं। पिताजी बहुत कमजोर हो गए थे, लेकिन उनका मन अभी भी चल रहा था। वे धीमी आवाज में कुछ कह रहे थे। यवोन ने कान पास किया। वे कह रहे थे, वह प्रमाण P47, वहां एक गलती है, उसे ठीक करना होगा। जीवन के अंतिम क्षण तक प्रोफेसर अभ्यंकर गणित के बारे में सोच रहे थे। फिर उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, केतन बेटे, गणित को आगे बढ़ाना है। और फिर शांति। उस महान आत्मा ने अपनी अंतिम यात्रा शुरू कर दी। 6 नवंबर 2012 शाम 5:30 बजे प्रोफेसर श्रीराम शंकर अभ्यंकर ने इस दुनिया को अलविदा कहा।
1: विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय ने तुरंत एक बयान जारी किया। गणित विभाग और पूरा विश्वविद्यालय प्रोफेसर श्रीराम शंकर अभ्यंकर के निधन से गहरे शोक में है। हमने एक महान गणितज्ञ, एक समर्पित शिक्षक और एक अद्भुत इंसान खो दिया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय, MIT, प्रिंसटन, सभी प्रमुख संस्थानों ने शोक संदेश भेजे। भारत में भी गहरा शोक था। TIFR मुंबई ने कहा, प्रोफेसर अभ्यंकर ने विश्व को दिखाया कि भारतीय गणित की महान परंपरा अभी भी जीवित है। रामानुजन के बाद वे सबसे प्रभावशाली भारतीय गणितज्ञ थे। भारत में भी प्रोफेसर अभ्यंकर को याद रखा जाता है। TIFR मुंबई में एक वार्षिक व्याख्यान उनके नाम पर है। IIT और IISc में छात्रवृत्तियां उनके नाम पर स्थापित की गई हैं। उज्जैन में उनके जन्म स्थान के पास एक स्मारक बनाने की योजना है। स्थानीय विद्यालय में अभ्यंकर गणित क्लब भी है।
0: प्रोफेसर अभ्यंकर के जीवन से हमें अनेक पाठ मिलते हैं, आइए उन्हें याद करें। पहला पाठ, समर्पण। उन्होंने अपना पूरा जीवन गणित को समर्पित कर दिया। ये समर्पण ही उन्हें महान बनाया। दूसरा पाठ, अपनी जड़ों से जुड़े रहना। अमेरिका में 60 साल रहने के बाद भी वे भारतीय बने रहे। उन्होंने अपनी संस्कृति को कभी नहीं भुलाया। तीसरा पाठ, कठिन परिश्रम और कोई शॉर्टकट नहीं, कोई आसान रास्ता नहीं, बस मेहनत, मेहनत और मेहनत। चौथा पाठ, ज्ञान को बांटना। उन्होंने अपना ज्ञान अपने छात्रों के साथ उदारता से साझा किया। यही असली शिक्षक का लक्षण है। पांचवा पाठ, विनम्रता। इतने बड़े गणितज्ञ होने के बावजूद वे सदा विनम्र रहे। घमंड ने उन्हें कभी छुआ तक नहीं। छठा पाठ, परिवार का महत्व। काम के प्रति समर्पण होने के साथ साथ उन्होंने अपने परिवार की परवाह की।
1: उन्होंने एक बार कहा था, गणित में जल्दबाजी नहीं होती, सिर्फ सही या गलत होता है। समय लो, लेकिन सही करो। एक अन्य अवसर पर उन्होंने कहा, यदि समस्या आसान लगे तो तुमने इसे ठीक से समझा नहीं।

असाधारण प्रतिभा की, एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने उज्जैन की गलियों से शुरुआत की और हार्वर्ड विस्कॉन्सिन के मंचों पर भारत का नाम रोशन किया, एक ऐसे भारतीय की जिन्होंने अपनी जड़ों को कभी नहीं भुलाया। आज 2025 में जब हम उन्हें याद करते हैं तो हमें ये समझ आता है कि महानता का मतलब सिर्फ उपलब्धियां नहीं है, महानता का मतलब है अपने पैशन को फॉलो करना, कठिन परिश्रम करना और अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटना। तो आइए उन्हें श्रद्धांजलि दें, उनके जीवन से सीखें और उनकी विरासत को आगे बढ़ाएं, क्योंकि यही होगी उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि, उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना।

0: तो साथियों, आज कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक में हमने बातचीत की श्री राम शंकर अभ्यंकर के जीवन के बारे में। तो अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का, तो दीजिए विदा अपनी मित्र वर्षा को
1: और दीपक नीमा को। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन अखिलेश कुमार वर्मा।

0: This is Aditya Raj Kapoor and you are listening to Brahma Kumari's community radio station, Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling.
1: Namaskar. आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको हिंदी साहित्य के एक ऐसे महान साहित्यकार से परिचित करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। जी हाँ, आज का हमारा ये कार्यक्रम समर्पित है वृंदावन लाल वर्मा जी को।
2: श्रोताओं, हिंदी साहित्य के गगन में वृंदावन लाल वर्मा का नाम एक उज्जवल नक्षत्र के समान है। वे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यासकारों में गिने जाते हैं। उन्होंने ऐतिहासिक उपन्यासों को इतनी ऊंचाई प्रदान की कि उन्हें हिंदी के सर वॉल्टर स्कॉट की उपाधि दी गई। उनके उपन्यास झांसी की रानी और मृगनयनी ने हिंदी साहित्य में नए कीर्तिमान स्थापित किए। 80 वर्षों के अपने जीवन काल में उन्होंने 70 से अधिक पुस्तकें लिखी और हिंदी साहित्य को अपार समृद्धि प्रदान की।
1: वृंदावन लाल वर्मा का जन्म 9 जनवरी 1889 को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मऊरानीपुर नामक स्थान पर हुआ था। उनका जन्म एक कुलीन श्रीवास्तव कायस्थ परिवार में हुआ था। यह परिवार परंपरागत रूप से शिक्षा और संस्कृति को महत्व देने वाला था। उनके पिता का नाम अयोध्या प्रसाद वर्मा था। श्री अयोध्या प्रसाद झांसी के तहसीलदार के कार्यालय में रजिस्ट्रार कानूनगो के पद पर कार्यरत थे। यह एक सम्मानजनक सरकारी पद था। पिता का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता रहता था, जिसके कारण वृंदावन लाल वर्मा का बचपन विभिन्न स्थानों पर बीता।
2: वृंदावन लाल वर्मा का परिवार अत्यंत रूढ़िवादी था, लेकिन शिक्षा के प्रति उनका दृष्टिकोण प्रगतिशील था। उनके पिता चाहते थे कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और समाज में प्रतिष्ठित स्थान बनाएं। पिता के स्थानांतरण के कारण वृंदावन लाल वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा विभिन्न स्थानों पर हुई। उन्होंने झांसी, ग्वालियर और आगरा जैसे स्थानों पर अध्ययन किया। इस भ्रमणशील जीवन ने उन्हें विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और लोगों से परिचित कराया, जो उनके भावी साहित्यिक जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ।
1: बचपन से ही वृंदावन लाल वर्मा में पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं के प्रति गहरी रुचि थी। वे घंटों रामायण, महाभारत और ऐतिहासिक घटनाओं की कहानियां सुनते रहते थे। उनके विद्यागुरु स्वर्गीय पंडित विद्याधर दीक्षित थे, जिन्होंने उनमें संस्कृत और इतिहास के प्रति रुचि जागृत की। वृंदावन लाल वर्मा में लेखन की प्रतिभा बचपन से ही दिखाई देने लगी थी। जब वे मात्र 9वीं कक्षा में पढ़ते थे, तभी उन्होंने 3 छोटे छोटे नाटक लिखे और उन्हें इंडियन प्रेस प्रयाग को भेजा। उनकी प्रतिभा को देखते हुए प्रेस ने उन्हें पुरस्कार स्वरूप 50 रुपए प्रदान किए। उस समय यह एक बड़ी राशि थी। यह उनकी साहित्यिक यात्रा की पहली उपलब्धि थी।
2: मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वृंदावन लाल वर्मा को घर की आर्थिक स्थिति के कारण लिपिक का काम करना पड़ा, लेकिन उनके मन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की तीव्र इच्छा थी। विशेषकर वे वकील बनना चाहते थे। कुछ समय के बाद उन्होंने लिपिक के पद से त्यागपत्र दे दिया और आगे की पढ़ाई के लिए विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर में दाखिला ले लिया। ग्वालियर से बीए करने के उपरांत उन्होंने आगरा जाकर एलएलबी की पढ़ाई प्रारंभ की।
1: कानून की शिक्षा पूर्ण करने के बाद वृंदावन लाल वर्मा ने झांसी में वकालत शुरू की, लेकिन शुरुआती दिन बहुत संघर्षपूर्ण रहे। उन्हें प्रारंभ में मुकदमे नहीं मिलते थे, आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वकालत के साथ साथ उन्होंने लेखन भी जारी रखा। दिन में वकालत की तैयारी करते और रात में लिखते। उन्होंने अपनी आत्मकथा अपनी कहानी में अपने इस संघर्षमय जीवन का विस्तृत वर्णन किया है।
2: धीरे धीरे उनकी वकालत जमने लगी। वे एक सफल वकील के रूप में प्रतिष्ठित हुए, लेकिन उनका मन हमेशा साहित्य में ही रमता था। वे कहते थे कि वकालत मेरी जीविका है, लेकिन साहित्य मेरा जीवन। वृंदावन लाल वर्मा की पहली महत्वपूर्ण रचना सेनापति उदल नामक एक नाटक था, जो वर्ष 1909 में प्रकाशित हुआ। यह नाटक बुंदेलखंड के वीर सेनापति उदल की वीर गाथा पर आधारित था, लेकिन इस नाटक की नियति विचित्र रही। ब्रिटिश सरकार ने इसे जब्त कर लिया क्योंकि उसमें स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता की भावना थी।
1: यह घटना वृंदावन लाल वर्मा के लिए निराशाजनक थी, लेकिन इसने उनके मन में ब्रिटिश शासन के प्रति और अधिक प्रतिरोध की भावना जगाई। इसके बाद उन्होंने कई रचनाएं लिखी, महात्मा बुद्ध का जीवन चरित एक मौलिक ग्रंथ, शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का अनुवाद। ये रचनाएं उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाती हैं। वे मौलिक लेखन के साथ साथ अनुवाद में भी रुचि रखते थे।
2: वर्ष 1927 में वृंदावन लाल वर्मा ने अपना प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास गढ़ कुंडार लिखा। इस उपन्यास को उन्होंने केवल 2 महीने में पूरा किया। यह उपन्यास बुंदेलखंड के मध्यकालीन इतिहास पर आधारित था। गढ़ कुंडार की सफलता ने वृंदावन लाल वर्मा को ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में स्थापित कर दिया। पाठकों और समीक्षकों ने इस उपन्यास की भूरी भूरी प्रशंसा की।
1: ১৯২৭ का वर्ष उनके लेखन का स्वर्णिम वर्ष था। इस एक ही वर्ष में उन्होंने कई महत्वपूर्ण रचनाएं पूर्ण की, लगन, संगम, प्रत्यागत, कुंडली चक्र, प्रेम की भेंट, हृदय की हिलोर आदि। यह उनकी अद्भुत लेखन क्षमता का प्रमाण था। 1930 में उन्होंने विराट की पद्मिनी नामक उपन्यास लिखा। यह उपन्यास भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित था और इसे भी पाठकों का भरपूर प्यार मिला।
2: इसके बाद कई वर्षों तक उनका लेखन स्थगित रहा। इसके कई कारण थे, जैसे व्यस्त वकालत, पारिवारिक जिम्मेदारियां और शायद कुछ निजी परिस्थितियां। वर्ष 1939 में उन्होंने पुनः सक्रिय रूप से लेखन शुरू किया, जिसमें उन्होंने धीरे धीरे व्यंग, जो वर्ष 1939 में प्रकाशित हुआ, वर्ष 1942 से 1944 के दौरान कभी ना कभी, और मुसाहिब जू की रचना की।
1: 1946 में वृंदावन लाल वर्मा ने अपनी सबसे प्रसिद्ध और कालजयी कृति झांसी की रानी लिखी। यह उपन्यास रानी लक्ष्मीबाई के जीवन और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित था। इस उपन्यास ने हिंदी साहित्य में नए कीर्तिमान स्थापित किए। यह उपन्यास इतना लोकप्रिय हुआ कि इस पर दूरदर्शन धारावाहिक बना, इस पर फिल्म बनी और भारत सरकार ने इसके लिए उन्हें 2,000 रुपए का पुरस्कार दिया। यह उपन्यास अंग्रेजी, चेक, स्पेनिश, जर्मन और चीनी भाषाओं में भी अनुवादित हुआ। यह उपन्यास आज भी रानी लक्ष्मीबाई पर लिखा गया सबसे प्रामाणिक और श्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है।
2: इसके बाद वृंदावन लाल वर्मा ने एक के बाद एक श्रेष्ठ उपन्यास लिखे। मृगनयनी 1950 में लिखा हुआ उनका यह उपन्यास मुगल सम्राट जहांगीर और उनकी प्रेमिका अनारकली की कथा पर आधारित है। इस पर भी एक धारावाहिक और फिल्म बनी। टूटे कांटे यह राजपूत वीरता की गाथा है। कचनार में बुंदेलखंड के इतिहास पर आधारित हमें जानकारी मिलती है। वहीं माधव जी सिंधिया, ये महान मराठा योद्धा माधवराव सिंधिया के जीवन पर आधारित है।
1: महारानी दुर्गावती गोंडवाना की वीर रानी दुर्गावती के जीवन पर आधारित कृति थी। यह उपन्यास अंग्रेजी में रानी दुर्गावती द फॉरगॉटन लाइफ ऑफ ए वॉरियर क्वीन ऑफ गोंडवाना एम्पायर शीर्षक से अनुवादित हुआ। अहिल्याबाई होलकर राज्य की महान शासिका अहिल्याबाई होलकर पर केंद्रित थी। भुवन विक्रम यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित था। रामगढ़ की रानी बुंदेलखंड के इतिहास पर और टूटे धनुष राजपूताना के इतिहास पर केंद्रित था।
2: वृंदावन लाल वर्मा ने हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासों की एक मजबूत परंपरा स्थापित की। उनसे पहले भी ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए थे, लेकिन वृंदावन लाल वर्मा ने इस विधा को नई ऊंचाई प्रदान की। आमतौर पर कहा जाता है कि ऐतिहासिक उपन्यास में या तो इतिहास मर जाता है या उपन्यास, लेकिन वृंदावन लाल वर्मा ने इस मान्यता को झुठला दिया। उनके उपन्यासों में इतिहास और कल्पना का संतुलित समन्वय है। उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों को बनाए रखते हुए रोचक कथानक बुना।
1: वृंदावन लाल वर्मा को बुंदेलखंड का चितेरा कहा जाता है। उनके अधिकांश उपन्यासों की पृष्ठभूमि बुंदेलखंड का मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास है। उन्होंने बुंदेलखंड की वीरता और शौर्य की गाथाएं, सांस्कृतिक परंपराएं, प्राकृतिक सौंदर्य और लोक जीवन सबको अपने उपन्यासों में जीवंत रूप से प्रस्तुत किया।
2: वृंदावन लाल वर्मा के चरित्र चित्रण की विशेषता है कि उनके पात्र मात्र ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं रहते बल्कि जीवंत मानवीय चरित्र बन जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, महारानी दुर्गावती, अनारकली, ये सभी पात्र पाठकों के मन में जीवित हो उठते हैं। वृंदावन लाल वर्मा की भाषा सरल और प्रवाहमय है। तत्सम शब्दों का सुंदर प्रयोग है, बुंदेलखंडी शब्दों का समावेश है और वर्णनात्मक शैली अत्यंत प्रभावशाली है।
1: उनकी शैली इतनी मनोहारी थी कि पाठक उपन्यास में पूरी तरह से डूब जाता था, इसीलिए उन्हें हिंदी का सर वाल्टर स्कॉट कहा गया। वृंदावन लाल वर्मा केवल उपन्यासकार ही नहीं थे, उन्हें इतिहास, पुरातत्व, कला, मूर्तिकला, चित्रकला और वास्तुकला में भी गहरी रुचि थी। उन्होंने इन विषयों का भी गहन अध्ययन किया। उन्होंने बुंदेलखंड के विभिन्न किलों, मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया, वहां के शिलालेखों और स्थापत्य का अध्ययन किया। यह सब उनके उपन्यासों की प्रामाणिकता में दिखाई देता है।
2: उपन्यासों के अतिरिक्त वृंदावन लाल वर्मा ने निबंध और लघु कथाएं भी लिखी। उनके निबंध सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक विषयों पर केंद्रित थे। वृंदावन लाल वर्मा ने अपनी कहानी नामक एक आत्मकथा भी लिखी। इसमें उन्होंने अपने संघर्षमय जीवन, साहित्यिक यात्रा और अनुभवों का विस्तृत वर्णन किया है। यह आत्मकथा उनके व्यक्तित्व को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
1: वृंदावन लाल वर्मा केवल साहित्यकार ही नहीं बल्कि एक समर्पित समाज सेवी भी थे। वे प्रेम को जीवन का सबसे आवश्यक अंग मानते थे। उन्होंने जुनून की सीमा तक सामाजिक कार्य किए। उन्होंने वकालत व्यवसाय से कमाई गई समस्त पूंजी समाज के कमजोर वर्ग के नागरिकों को पुनर्वासित करने के कार्य में लगा दी। उन्होंने गरीब और जरूरतमंद लोगों की निस्वार्थ सेवा की।
2: वृंदावन लाल वर्मा एक सरल, विनम्र और उदार व्यक्ति थे। वे दिखावे से दूर रहते थे। उनका जीवन सादगी का प्रतीक था। वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। उनमें अद्भुत धैर्य और मेहनत की क्षमता थी। वे घंटों बैठकर लिखते रहते थे। उनकी एकाग्रता और समर्पण अनुकरणीय था। वृंदावन लाल वर्मा की साहित्यिक सेवाओं के लिए उन्हें अनेक सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए।
1: भारत सरकार ने उन्हें देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से 1963 में सम्मानित किया। डीलिट मानद आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। साहित्य वाचस्पति साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने उन्हें यह उपाधि प्रदान की।
2: सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था। वहीं भारत सरकार ने झांसी की रानी उपन्यास के लिए 2000 रुपए का विशेष पुरस्कार दिया। साथ ही भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया। इन सम्मानों के अतिरिक्त विभिन्न संस्थाओं ने भी उन्हें अनेक पुरस्कारों से अलंकृत किया।
1: वृंदावन लाल वर्मा अपने जीवन के अंतिम दिनों तक सक्रिय रूप से लेखन में संलग्न रहे। 80 वर्ष की आयु में भी उनकी लेखनी थमी नहीं थी। 23 फरवरी 1969 को इस महान साहित्यकार ने अंतिम सांस ली। उनके निधन से हिंदी साहित्य जगत में शोक की लहर दौड़ गई। पूरे देश ने एक महान साहित्यकार को खो दिया।
2: वृंदावन लाल वर्मा ने अपने पीछे एक समृद्ध साहित्यिक विरासत छोड़ी। 70 से अधिक प्रकाशित पुस्तकें, कई अप्रकाशित रचनाएं, हिंदी ऐतिहासिक उपन्यास की मजबूत परंपरा। उनके उपन्यास आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं। विश्वविद्यालयों में उनके साहित्य का अध्ययन होता है। शोध छात्र उन पर शोध करते हैं।
1: वृंदावन लाल वर्मा हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महान स्तंभ के रूप में स्थापित हैं। उन्होंने ऐतिहासिक उपन्यासों को नई ऊंचाई प्रदान की। उनके उपन्यासों ने लाखों पाठकों को भारतीय इतिहास, संस्कृति और वीरता से परिचित करवाया। उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और साहित्य साधना का उदाहरण है। वकालत के व्यस्त जीवन में भी उन्होंने साहित्य को समय दिया और 70 से अधिक पुस्तकें लिखी।
2: आज भी जब कोई झांसी की रानी पढ़ता है तो रानी लक्ष्मीबाई का वीरता भरा जीवन आंखों के सामने साकार हो उठता है। यही वृंदावन लाल वर्मा की महानता है। उनका नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है और सदा रहेगा। वृंदावन लाल वर्मा ने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में अनेक निबंध और लेख प्रकाशित किए जो विविध विषयों पर केंद्रित थे, जैसे साहित्य और समाज, इतिहास और संस्कृति, बुंदेलखंड का इतिहास, कला और स्थापत्य।
1: वृंदावन लाल वर्मा अपने उपन्यास लिखने से पहले गहन शोध करते थे। वे ऐतिहासिक दस्तावेजों का अध्ययन करते, शिलालेखों और पुरातात्विक साक्ष्यों की जांच करते, संबंधित स्थानों का भ्रमण करते, स्थानीय किंवदंतियों और लोक कथाओं का संग्रह करते। झांसी की रानी लिखने से पहले उन्होंने झांसी के किले, रानी महल और आसपास के क्षेत्रों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने 1857 के संग्राम से जुड़े तमाम दस्तावेजों और अंग्रेजी अभिलेखों का भी अध्ययन किया।
2: वृंदावन लाल वर्मा की सबसे बड़ी कला थी ऐतिहासिक तथ्यों को बनाए रखते हुए रोचक कथानक बुनना। उन्होंने इतिहास की सूखी तथ्यात्मकता को जीवंत कथाओं में बदल दिया। उनके उपन्यासों में मुख्य ऐतिहासिक घटनाएं यथावत रहती थीं, प्रमुख ऐतिहासिक पात्र प्रामाणिक रहते थे, काल्पनिक पात्र और घटनाएं केवल कथा को रोचक बनाने के लिए जोड़ी जाती थीं।
1: वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों में नारी पात्र अत्यंत सशक्त और प्रभावशाली हैं। रानी लक्ष्मीबाई, महारानी दुर्गावती, अनारकली, अहिल्याबाई, ये सभी पात्र न केवल सुंदर हैं बल्कि साहसी, बुद्धिमान और निर्णायक भी हैं। उन्होंने नारी को केवल सहायक पात्र के रूप में नहीं बल्कि मुख्य नायिका के रूप में प्रस्तुत किया। उनके उपन्यासों में नारी शक्ति का प्रभावशाली चित्रण मिलता है।
2: वृंदावन लाल वर्मा युद्ध दृश्यों का वर्णन अत्यंत प्रभावी ढंग से करते थे। झांसी की रानी में झांसी की लड़ाई और ग्वालियर के युद्ध का वर्णन इतना जीवंत है कि पाठक को लगता है मानो वह स्वयं युद्ध के मैदान में खड़ा है। वृंदावन लाल वर्मा ने बुंदेलखंड की संस्कृति, परंपराओं, लोकगीतों, रीति रिवाजों और जीवन शैली का सुंदर चित्रण किया। उनके उपन्यासों में बुंदेली भाषा के शब्द और मुहावरे, स्थानीय त्योहार और उत्सव, लोक संगीत और नृत्य, खान पान और वेशभूषा, सब कुछ जीवंत रूप से उभरता है।
1: वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों में प्रबल देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना की भावना है। झांसी की रानी तो राष्ट्रीय चेतना का जैसे महाकाव्य है। इस उपन्यास ने लाखों युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत की। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह उपन्यास क्रांतिकारियों की प्रिय पुस्तक था और इसे पढ़कर कई युवा स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े।
2: वृंदावन लाल वर्मा ने हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लेखन की एक नई परंपरा स्थापित की। उनके उपन्यासों में इतिहास और साहित्य का सुंदर समन्वय है। झांसी की रानी हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। वृंदावन लाल वर्मा हिंदी के सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। उन्होंने अपने उपन्यासों में भारतीय इतिहास की गौरव गाथाओं को जीवंत किया। उनकी तुलना विश्व के श्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यासकारों से की जा सकती है।
1: वृंदावन लाल वर्मा का झांसी की रानी उपन्यास केवल साहित्यिक कृति नहीं है, यह राष्ट्रीय चेतना का दस्तावेज है। इस उपन्यास ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वृंदावन लाल वर्मा के बाद कई लेखकों ने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। उन्होंने इस विधा को इतनी लोकप्रियता दी कि यह हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा बन गई। चतुरसेन शास्त्री, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर जैसे लेखकों ने उनसे प्रेरणा ली।
2: वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों ने भारतीय जनमानस में राष्ट्रीय चेतना जागृत की। झांसी की रानी पढ़कर लाखों लोग रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान से परिचित हुए। यह उपन्यास आज भी युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाता है। उनके उपन्यासों में सशक्त महिला पात्रों ने महिला सशक्तिकरण में अपना योगदान दिया। रानी लक्ष्मीबाई, महारानी दुर्गावती और अहिल्याबाई जैसे चरित्र आज भी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।
1: वृंदावन लाल वर्मा ने अपने उपन्यासों के माध्यम से बुंदेलखंड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उनके उपन्यासों को पढ़कर लोग बुंदेलखंड के इतिहास, संस्कृति और वीरता से परिचित हुए। वृंदावन लाल वर्मा स्मारक झांसी, झांसी में उनकी स्मृति में एक स्मारक स्थापित किया गया है। वृंदावन लाल वर्मा साहित्य पुरस्कार। मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी स्मृति में एक साहित्यिक पुरस्कार स्थापित किया है और विभिन्न विश्वविद्यालयों में शोध केंद्र, उनके साहित्य पर शोध के लिए विशेष केंद्र बनाए गए हैं।
2: प्रतिवर्ष उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर विभिन्न स्थानों पर साहित्यिक गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। साहित्यकार और विद्वान उनके योगदान पर चर्चा करते हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रमों में उनके उपन्यासों को शामिल किया गया है। झांसी की रानी और मृगनयनी ये विशेष रूप से पढ़ाए जाते हैं।
1: वृंदावन लाल वर्मा का जीवन संदेश है कि यदि व्यक्ति में दृढ़ संकल्प, समर्पण और कठिन परिश्रम हो तो वह किसी भी क्षेत्र में महान कार्य कर सकता है। उन्होंने वकालत के व्यस्त जीवन में भी साहित्य को समय दिया और 70 से अधिक पुस्तकें लिखी। उनका संदेश था, इतिहास को भूलना नहीं चाहिए, हमें अपने गौरवशाली इतिहास को हमेशा याद रखना चाहिए। देशभक्ति सर्वोपरि, देश की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। नारी शक्ति को सम्मान, महिलाएं समाज का महत्वपूर्ण अंग हैं और साहित्य समाज का दर्पण। साहित्य केवल मनोरंजन नहीं, समाज को दिशा देने का माध्यम है।
2: वृंदावन लाल वर्मा हिंदी साहित्य के इतिहास में एक दीप्तिमान नक्षत्र हैं। उन्होंने ऐतिहासिक उपन्यासों को ऐसी ऊंचाई प्रदान की कि आज भी उनकी बराबरी करना कठिन है। झांसी की रानी हिंदी साहित्य की अमर कृति है जो पीढ़ियों तक पढ़ी जाती रहेगी। उनके उपन्यासों ने लाखों पाठकों को भारतीय इतिहास, संस्कृति और वीरता से परिचित कराया। उन्होंने साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना जागृत की, यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है।
1: आज जब हम झांसी की रानी पढ़ते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई का वीरता भरा जीवन हमारे आंखों के सामने साकार हो उठता है। जब हम मृगनयनी पढ़ते हैं तो मुगलकालीन भारत जीवंत तो हो उठता है और यही वृंदावन लाल वर्मा की साहित्यिक महानता का प्रमाण है। वृंदावन लाल वर्मा का नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में सदा के लिए अमर है। उनकी रचनाएं आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देती रहेंगी।
2: इतिहास केवल बीते हुए कल की कहानी नहीं होता, वह आज के लिए प्रेरणा और कल के लिए मार्गदर्शन होता है। यही था वृंदावन लाल वर्मा का साहित्यिक दर्शन। उनकी पुण्य स्मृति को शत शत नमन। श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, वाचन भगवती सक्सेना और विजयकांत नायक का। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल, देश के लिए।

0: नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त और आज के आपके फेवरेट शो को लेकर आया हूँ फिर से आपके बीच। और शो का नाम है जुनून, और आप मेरी आवाज पहचान ही रहे होंगे। मैं आपका दोस्त और आज के शो का होस्ट शरद, और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। और आप इसे सुन सकते हैं हमारे एप्लीकेशन रेडियो मधुबन पर। और मेरे साथ हैं आज एक फिर से एक नए जुनून के साथी, और उनका जुनून है रूरल डेवलपमेंट, उनका जुनून है ट्राइबल वेलफेयर, उनका जुनून है रेडियो कम्युनिकेशन, और इसके साथ साथ उनका जुनून है कि वो कैसे अपने जीवन के माध्यम से दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। वो बादल फिल्म का गीत आपको याद है ना, खुद के लिए जिए तो क्या जिए, तो वही बात है। और ऐसे ही जुनूनी जो इस गीत को सच्चा साबित करते हैं, हमारे साथ हैं विनोद। विनोद, आपका स्वागत है हमारे रेडियो शो में। आप तो जानी बानी आवाज हैं और मुझे लगता है श्रोता आपको जानते ही होंगे। जी विनोद
1: जी, बिल्कुल, रेडियो मधुबन से मेरा पुराना रिश्ता है और मेरी शुरुआत जो है वो रेडियो मधुबन से ही हुई है, क्योंकि रेडियो मधुबन में से ही मैंने बहुत कुछ सीखा और अपने जीवन में भी अपनाया, और अब अपनाते हुए जो है वो मेरे अपने समाज के लिए काम कर रहा हूँ।
0: जी, आपसे शुरुआती दौर की बातचीत में मालूम चला, और साथियों बता दूं कि दुनिया के नक्शे में जब कोटड़ा में भूख से कुछ मौतें हुई थी पिछले सालों में, और इसके बाद लोगों ने जानना शुरू किया, सरकारें जागी, प्रशासन चेता, और लोगों को मालूम चला कि क्या हमारे देश में एक ऐसा इलाका भी है जो इतना पिछड़ा हुआ है। कोटड़ा उस तहसील का नाम है जहां से विनोद आते हैं, और कोटड़ा की आबादी आदिवासी आबादी है, वो आदिवासी बहुल क्षेत्र जिसके बारे में हमारे संविधान निर्माताओं ने विशेष प्रावधान किए, और इन विशेष प्रावधानों के बावजूद आजादी के इतने सालों बाद भी उस इलाके का विकास ना हो पाना, उसका ह्यूमन इंडिकेटर उसके पीछे रह जाना, हम सबको सब सोचने पर मजबूर करता है। और विनोद से हम चर्चा करेंगे इस इलाके के बारे में, आदिवासी जनजीवन के बारे में और ग्रामीण विकास के बारे में, विनोद की क्या योजना है। तो विनोद, आपको ये जुनून कैसे लगा कि आप आदिवासी समाज में काम करना चाहते हैं, आदिवासी समाज के मानव इंडिकेटर से, ह्यूमन इंडिकेटर से उनके विकास की बात करते हैं, ये विचार कहाँ से आया, ये जुनून कहाँ से आया?
1: जी, वो कहते हैं ना कि स्कूल में जब पढ़ाई कर रहे होते तो आसपास बहुत कुछ दिखता है, और मेरी जो पढ़ाई है वो आधी गुजरात में हुई और आधी राजस्थान में। तो 10 तक जब मैं पढ़ रहा था गुजरात में, मैंने 11 12 जो है वो आबू रोड में एडमिशन हॉस्टल में लिया, जो कि रेडियो मधुबन के थोड़ा सा सामने ही है, और उसी के जरिए मैं रेडियो मधुबन से भी कनेक्ट हुआ 2011 के बाद से, जब मैं 12वीं में या फिर 11वीं में था तब जुड़ा था, और वहीं से फिर मुझे लगा। और मेरे अंदर ये और बहुत सारी कविताएं हैं, गीत है या फिर जानकारी है, वो इकट्ठे करने का शौक था और इकट्ठी करके जानकारी रखता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसको मैं करूंगा क्या या फिर बाद में काम आएगी, केवल यही एक मुझे लग रहा था मन में। लेकिन रेडियो मधुबन के टीम जो है वो हमारे हॉस्टल में स्कूल में आते थे, तो उन्होंने जो कार्यक्रम वहां पर किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर यहाँ से कोई रेडियो में आकर बोलना चाहता है तो बोल सकता था। मुझे उस समय कुछ पता नहीं था कि रेडियो में कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, लेकिन जब मैं पहली बार गया तो फिर मुझे बताया गया, और उस समय मुझे ये याद नहीं कि मैंने क्या प्रस्तुत किया था, लेकिन मेरे पास प्रस्तुत करने के लिए कविताएं थी, कहानियां थी, और जो जानकारी अखबारों में आती है वो इकट्ठी कोई वो थी जो मैंने प्रस्तुत की थी। और फिर धीरे धीरे रेडियो मधुबन से जुड़ा, और उस समय मैं अपने गांव में नहीं रहता था, मेरा एक घर गुजरात में भी है जहां पर मेरे मम्मी पापा रहते थे, तो गांव में नहीं रहता था, तो जब मैं गांव में नहीं आता था, लेकिन रेडियो मधुबन से जुड़ा तो गांव में आ गया। उसके बाद फिर मुझे लगा कि हमारे गाँव में जो है वो बिजली नहीं थी, और गांव के अंदर बोर्ड लग चुका था कि विद्युतीकरण हो चुका है, तो फिर मुझे लगा कि बिजली लाने के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले सरपंच को लेटर लिखा कि हमारे गांव में बिजली नहीं है लेकिन बिजली का बोर्ड लग गया है, तो वो बिजली आने चाहिए। और फिर सरपंच ने कुछ नहीं किया। 7 दिनों के बाद फिर मैंने वो जो लेटर है उसको अटैच करके विकास अधिकारी के नाम से लिखा वीडियो को। वीडियो ने भी 7 दिन तक कुछ नहीं किया, फिर सीधा मैं कलेक्टर के नाम से लेटर लिखा और सरपंच वाली विकास अधिकारी वाली वो एप्लीकेशन ले जाकर कलेक्टर ऑफिस में दी। लेकिन कलेक्टर ऑफिस में उदयपुर जब मैं गया मिलने के लिए तो उधर पहले लिख के देना पड़ता है पर्ची में कि मिलने के लिए कौन कहां से आया है। तो जैसे ही वहां पर जो प्यून या फिर जो भी होगा उन्होंने देखा कि कोटड़ा से आया है तो मुझे फिर कलेक्टर से मिलने दिया। और उस समय कलेक्टर से क्या बात ये मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ महीनों के बाद जब मैं वापस आबू रोड चला गया था लेकिन मुझे फोन आता है कि गांव में बिजली का काम शुरू हो चुका है। तो वो एक पहली शुरुआत थी, गांव के अंदर बिजली नहीं है और बच्चे पढ़ना चाहते हैं क्योंकि दिन में काम करना पड़ता है, रात को अगर पढ़ना चाहे तो कैसे पढ़ सके। तो वो एक पहली शुरुआत थी लाइफ का, एक ऐसा पॉइंट जहां पर बिजली लाने की स्टार्टिंग की और उसके बाद फिर हैंडपंप के लिए भी प्रयास किया। तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था लाइफ का, काम का। और उसके बाद फिर रेडियो से जुड़ने के बाद तो बहुत सारे कई जो प्रोजेक्ट रेडियो के थ्रू भी चले। और एक और चीज की, मैं भील समाज से आता हूँ तो मेरी अपनी भाषा तो मैं जानता था, भील भाषा में बात करना, और अबू रोड एरिए में ग्रासी समुदाय के लोग रहते थे, उनकी भाषा हालांकि मिलती जुलती है लेकिन अलग थी। तो मुझे वहां के रेडियो मधुबन की जो दीदी है कृष्णा बहन जी, उन्होंने कहा कि आप अगर यहाँ की लैंग्वेज में लोगों के साथ बातचीत करेंगे तो ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं। तो फिर जब गांव में जाकर लोगों से, ग्रासी भाषा मुझे उस समय नहीं आती थी लेकिन फिर मैंने वो सीखा और स्टार्टिंग की लोगों के साथ बातचीत करना था। और लोगों को भी लगा कि ये हमारा ही एक अंदर समाज का है और हम इसके साथ बातचीत कर सकते हैं, और लोगों को भी अपनापन लगने लगा। तो जैसे स्कूलों में जाता था, स्कूलों में रिकॉर्डिंग करना, गांव में जाके लोगों से उनकी खेती के बारे में बातचीत करना, उनके जीवन के बारे में, वो लोग कैसे रहते हैं, या फिर उनका जो भी गांव की जैसे समस्या है, सड़क की है, पानी की हो गई, बिजली की हो गई, तो जब वो लोग अपनी भाषा में बातचीत करके रिकॉर्डिंग करवाते थे तो उन्हें एक अलग खुशी होती थी। समस्या का समाधान तो शायद सेकंड नंबर पे था, पहला तो उन्हें ये लगता था कि कम से कम हमारी बात जो है वो रिकॉर्ड हो रही है। और जब वो लोग शाम को सुनते थे तो उन्हें एक अलग ही खुशी होती थी और इस वजह से वहां के लोगों के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ, जो कि वो जो जुड़ाव तब हुआ था वो जुड़ाव आज तक है। और केवल वहां नहीं, आबू रोड में, मेरे अपने कोटड़ा में भी बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े और एक अलग ही पहचान छोटी सी उम्र में। और मुझे उस समय इतना ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि जब मैं रेडियो में था तो अपनी एक अलग पहचान बनी थी और वही पहचान आज भी मेरे बहुत काम आती है। और उस रेडियो में ही रहते हुए मैंने साइकिल चलाना सीखा, जो साइकिल चलाना तब सीखा जो कि आज भी मैं साइकिल ही चलाता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। उधर के गांव में साइकिल चला के जाके लोगों के बीच रिकॉर्डिंग करना ये होता था। और यहाँ के कोटड़ा के तो लोग ये बोलते हैं कि साइकिल वाला आया, साइकिल वाला लड़का, मतलब वो खुशी ही अलग है
0: जी।
1: आज भी मुझे अंदर लगता है कि नहीं, मतलब वो कहते हैं ना कि जीवन होना तब सफल होता है जब आप कुछ कर पाते, एक तो है कि सोच कर कुछ करना और एक ऑटोमेटिकली आपके सामने कुछ हो रहा है और आप करते जा रहे। मेरे साथ वैसे हो रहा था और कभी लगा नहीं कि मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ, मतलब बस अपने जीवन को जी रहा हूँ और जो जरूरी लग रहा है ना वो कर रहा हूँ, लेकिन कुछ बदलाव हो रहा है ऐसा कभी ये नहीं कि मतलब मैं बदलाव के लिए कर रहा हूँ, लेकिन कुछ हो रहा, बदलाव की जरूरत है और मैं कर रहा हूँ ऐसा
0: जी। ये बदलाव कैसा था, ये जुनून किस तरह के बदलाव के लिए है?
1: वो जो बदलाव है कि जैसे लोगों की एक प्रॉब्लम है कि अगर पानी की समस्या है तो रेडियो में लोग अपनी बात रख पा रहे हैं मेरे जरिए, और मुझे ये लगता था कि हाँ रेडियो में बात जाएगी, प्रशासन तक जाएगी, कहीं ना कहीं तो समाधान होगा ही। और जैसा कि गांव के अंदर सरपंच से भी तो मुलाकात होनी ही है, अगर गांव के लोग बता रहे कि ये समस्या है तो सरपंच भी समस्या के समाधान के लिए शायद कुछ प्रयास करेगी, क्योंकि वो कम्युनिकेशन उसी समय ऑन द स्पॉट या फिर बाद में भी हो पा रहा था क्योंकि सरपंच को भी पता चल रहा था कि लोगों की समस्या है। अगर रेडियो पे जा रही है तो गांव की एक अच्छी इमेज या कैसी इमेज जाएगी अगर समस्या रहती है तो
0: जी। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जो विकास का बदलाव की जो बात आपसे हो रही है, हम ये चाह रहे हैं कि बदलाव किस दिशा में है, अगले 20 साल बाद आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं अपने इलाके में
1: जी। मैं हालांकि एक और मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, हालांकि लाइफ में अब थोड़ा सा मुझे अभी जून महीने में ही एक वर्कशॉप कहूँ या फिर कार्यशाला कहूँ संविधान प्रचारक की हुई, उसको मैंने ज्वाइन किया और उसके बाद थोड़ा एक और नजरिया बदला है। उससे पहले मेरा नजरिया ये था कि जहां जहां आदिवासी समुदाय हैं, और एक और पॉइंट ये था कि जो पीड़ित लोग हैं उनको जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है वो मिले, लेकिन मुझे ये लगता है कि भारत के जितने भी लोग हैं और जिन लोगों को जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है वो सुविधाएं उन्हें मिल पाए, क्योंकि उन सुविधाओं को दिलाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में और उनके साथ जितने भी संविधान निर्माण करता आया थे या फिर जो भी उनका सहयोग करने वाले थे उन लोगों ने इतना प्रयास किया कि संविधान बने हुए जितना टाइम हुआ है 1950 में बना, लेकिन आज भी उन संविधान में इतना कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, और वो जो सारे नियम और वो सुविधाएं लोगों को अब भी अगर कहा जाए तो अगर वो सारी सुविधाएं मिल जाती है तो बेहतर होगा। और वो सारी सुविधाएं एक तो मूलभूत सुविधाएं जो है रोटी कपड़ा मकान, इसके अलावा एजुकेशन है, क्योंकि जितने अधिकार संविधान में दिए हैं वो सारे इंसान की अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। केवल मैं पहले ये सोचता था कि आदिवासी समुदाय और पीड़ित पक्ष, लेकिन अभी मैं ये सोचता हूँ कि भारत के वो सारे लोग जिन्हें ये सब सुविधाएं नहीं मिल पा रही है जो कि एक व्यक्ति के जीवन में उपयोगी होनी चाहिए वो मिल पाए।
0: जी, तो युवाओं को जब आप चलते हैं कि आपने जब एकला चालों को थामा है तो एकला चालों के आपकी गति के साथ और लोग जुड़े हैं आपसे, युवाओं ने कैसी प्रतिक्रिया दी आपको आपके क्षेत्र में?
1: हाँ, जैसे कि आपने एकला चालों की बात की, तो जब मेरे अपने खुद के कोटड़ा टाइम्स की मैं बात करूँ तो जब मैंने इसकी शुरुआत की थी तब इसका नाम भी कुछ और था कि आदिवासी क्षेत्र की जो खबरें वो लोगों तक पहुंचे, और मैं अकेला ही जहाँ कहीं कुछ घटना हो जाती है खुद चले जाता रिकॉर्डिंग करता। कई बार तो लोग ये भी कहते कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, हमारा कुछ गलत कर दोगे, तो खतरे जैसे भी डर लगते थे, क्योंकि अगर कहीं पर हमारे आदिवासी क्षेत्र में एक मौताना नाम से प्रथा है और अगर किसी का मर्डर हो गया तो फिर वो लाश जो है वो बहुत दिनों तक रहती है, और जब तक उस लाश का फैसला नहीं होता वो रहेगी ही। और अगर मैंने एक पक्ष की बात रिकॉर्ड करके उसको यूट्यूब पे चला दिया और दूसरे पक्ष की बात को रिकॉर्ड नहीं किया, या फिर ऐसा भी हुआ है कि एक जगह पर मैं गया हूँ तो वहां पर लोगों ने मुझे कहा है कि हम अपनी बात नहीं रखना चाहते, लेकिन उन लोगों को मैंने समझाया कि अगर आपकी बात को मैं रखूंगा तभी तो लोगों को पता चलेगा कि वास्तव में क्या हुआ था, और उसके बाद फिर मैं दूसरे पक्ष के पास भी गया और उनकी भी बात को रिकॉर्ड किया। तो इस तरीके से जो शुरुआत हुई तब मैं अकेला था, और उसके बाद धीरे धीरे लोगों को लगा कि नहीं हम भी इनके साथ जुड़े, और वो भी फिर अपने क्षेत्र की खुद की जो खबर है वो देने लगे। और एक और मैं बताऊं तो मेरे साथ एक मेरा साथी था प्रकाश डामोर करके, तो पहले वो मेरे साथ काम करता था, कुछ कारणवश डिस्कनेक्ट हुआ, लेकिन उसके बाद वापस जिस तरीके से मैं अपना खुद का चला रहा हूँ कोटड़ा टाइम्स, वैसे उसने भी अपना खुद का चैनल स्टार्ट किया और वो अपने क्षेत्र में काम कर रहा है, जैसे गुजरात के दांता तहसील करके वहां पर। तो मुझे लग रहा है कि जो यूथ मेरे साथ जुड़े थे वो पहले केवल मेरे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन वो अब एक साथ 3-4 मीडिया के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, केवल गांव की जो खबरें हैं वो लोगों तक नहीं पहुंचा रहे, इसके अलावा वो दूसरा भी काम करते हैं जिसके जरिए उनकी अपनी इनकम भी होती है। और जो लोग कोटड़ा टाइम्स के साथ जुड़े थे वो सारे वॉलेंटियर थे, और वॉलेंटियर इसलिए थे क्योंकि मेरी अपनी जो सोच थी वो ये थी कि आदिवासी समुदाय जो है वो अपना खुद का विकास कर सके, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो लोगों तक पहुंचा सके। और इसको शुरुआत करने के पीछे एक कारण ये था कि हमारी जो अपनी खबरें हैं मैं अगर दूसरे मीडिया को देता हूँ मेन स्ट्रीम को, तो वो उनका मन होता तो या तो आगे उनको जगह मिल पाती तभी वो खबरें छपती थी, और इस कारण क्या होता था कि वो खबरें प्रशासन तक भी नहीं पहुंचती थी। फिर मुझे लगा कि नहीं, इसके लिए खुद का ही होना चाहिए ताकि मैं उसको अपने मेन स्ट्रीम में डालूं। और आज ऐसा टाइम है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले हैं वो मेरे पास न्यूज मांगते हैं कि आप गांव की अपनी जो खबरें हैं वो हमें भेजिए।
0: तो आपके इस टाइम्स आपके अखबार में, क्योंकि कहते हैं ना कि यदि लोगों तक पहुंचना है तो अखबार निकाल, तो ये बात है। और गांधी जी ने तो कितने सारे अखबार चलाए, भगत सिंह जी ने काफी सारे अखबार निकाले, तो हर क्रांतिकारी का अपना अखबार रहा है। आपके अखबार में कितने लोगों की टीम है और क्या छपता है?
1: मेरा अखबार तो नहीं है, कोटड़ा टाइम्स जो है वो एक ऑनलाइन न्यूज पोर्टल है और यूट्यूब चैनल है कोटड़ा टाइम्स के नाम से, और शुरुआत में इसमें 11 लोग थे, सारे वॉलेंटियर थे। अभी कुल 5 लोग हैं, वो वॉलेंटियर हैं और अपने अपने क्षेत्र की न्यूज भेज रहे हैं। और फ्यूचर में तो ऐसा भी प्लान है कि जो कोटड़ा टाइम्स, यानी कि उसके अंदर केवल कोटड़ा की न्यूज नहीं आ रही है, क्योंकि जैसे आबू रोड हो गए, जितने भी आदिवासी क्षेत्र आसपास के हैं, करीबन 6-7 तहसील और 4-5 जिले हैं, उनको मैंने शामिल किया हुआ है।
0: आप इस कम उम्र के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर चुके हैं विनोद जी?
1: मैं शुरुआत रेडियो मधुबन की बात से करना चाहूंगा, क्योंकि रेडियो मधुबन में रहते हुए ही बहुत सारे जगह ट्रेनिंग में भी गया, उस दौरान मैंने बहुत सारी चीजों को सीखा और समझा है। और रेडियो में रहते हुए ही मैंने कैसे लिखना है, कैसे ऑडियो एडिटिंग करनी है, कैसे वीडियो एडिटिंग करनी है, ये सब कुछ सीखा था। अगर रेडियो मधुबन नहीं होता तो शायद मुझे नहीं लगता है कि मैं आज जिस मुकाम पर हूँ, अपना खुद का चैनल बनाया है और लोगों का इंटरव्यूज ले पा रहा हूँ। और मुझे ऐसा कभी लगा नहीं था कि बड़े पोस्ट पर व्यक्ति का इंटरव्यू लेना सामान्य होगा, लेकिन आज मैं आराम से अगर कोई भी बड़े पोस्ट का व्यक्ति है तो उससे मिलके उसका इंटरव्यू ले सकता हूँ। और जैसा कि आपने पूछा कि कौन कौन से प्रोजेक्ट पर काम किया, तो रेडियो में रहते हुए जितने जो प्रोजेक्ट थे, जो कि आदिवासी समुदाय को लेकर भी कुछ बनाए थे, एक तो पेशा एक्ट की जानकारी वाला था जो मुझे बहुत अच्छे से याद है, और उसमें टोटल 11 शक्तियां थी और उनके ऊपर आदिवासी भाषा में गीत, आदिवासी स्टोरीज बनाई गई और आदिवासी नाटक उसमें कार्यक्रम के लिए शामिल किए गए। और इसके अलावा जो है वो वहाँ के लोगों को जागरूक करने के लिए बाल विवाह के ऊपर भी काफी सारे कार्यक्रम किए थे। और उसके बाद जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि लिव इन रिलेशनशिप की जागरूकता, तो आबू रोड में और कोटड़ा में दोनों जगह आदिवासी समुदाय भील और ग्रासे दोनों में ये देखने में मुझे उस समय लगा था, अब भी है, लेकिन अब थोड़ा वो कम हुआ है क्योंकि एजुकेशन बढ़ा है, इसीलिए तो तब उसकी जागरूकता की कोशिश की गई थी। और इसके अलावा जो है वो एक जो सामाजिक कुप्रथा है उसको लेकर ही पूरा एक अभियान चलाया गया था, जैसे कि जो मैंने स्टार्टिंग में बात की, लिव इन रिलेशनशिप, कुप्रथा, नशा मुक्ति और बाल विवाह तो नहीं होते थे, लेकिन अगर हो भी रहे हो तो उसकी जानकारी जो है वो लोग जो है वो प्रशासन तक पहुंचाए ताकि उसे रुकवाया जा सके
0: जी।
1: और इसके अलावा हमारी आदिवासी समाज की जो संस्कृति है वो बची रहे उसको लेकर रेडियो मधुबन में सिंगिंग का कार्यक्रम हुआ था, मेरी आवाज ही पहचान नाम से। तो फिर मुझे खुद को भी लगा कि ये जो कार्यक्रम हुआ है वो तो हिंदी गीत का हुआ है, तो हमारे आदिवासी गीतों का भी ऐसा कुछ कार्यक्रम होना चाहिए। तो उस समय रेडियो मधुबन की टीम और हम सब लोगों ने मिलकर, मुझे लगा तो वो हम लोगों ने डिजाइन किया कि आदिवासियों के गीतों का कार्यक्रम होना चाहिए, ऑडिशन होना चाहिए, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। तो उस कार्यक्रम का नाम रखा था मेरी आवाज आदिवासियों की पहचान, इस नाम से था और वो पूरा आदिवासी भाषा में ही था। और उसके जो गीत है वो उस समय रिकॉर्डिंग किए गए थे और कई बच्चों को कैसे गीत बनाने हैं उसकी भी जानकारी नहीं थी, मुझे खुद को भी नहीं थी क्योंकि मैं भी गांव में ज्यादा नहीं रहता था, लेकिन मैंने खुद ने भी फिर गानों को सीखना शुरू किया और लिखना शुरू किया। और फिर जो बच्चे ऑडिशन में सिलेक्ट हुए फिर राउंड में आए, उनको फिर मैंने देशभक्ति गीत है, संस्कृति का गीत है, प्रकृति का गीत है, वो सब कुछ कैसे लिखना है वो उन्हें गाइड करके करवाया और फिर ये कार्यक्रम किया। और वो कार्यक्रम जब मैंने रेडियो में किया तो उसके बाद जैसे ही मैं रेडियो से 2017 में गांव लौट जाता हूँ, उसके बाद फिर मैंने अपने ही क्षेत्र में यहाँ की स्कूलों के साथ एक दूसरा नया कार्यक्रम डिजाइन करके करवाना शुरू किया था। हालांकि कोरोना आने की वजह से फिर वो बीच में ही अटक गया था, लेकिन शुरुआत जो है वो हो चुकी थी। और वो कहते हैं ना कि जब एक रास्ते पर चलते हैं तो चुनौतियां तो आती ही है, और उन चुनौतियों के बीच में जो है वो प्रयास जो है वो जारी रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जारी रहते हैं। तो हालांकि काम तो उस समय सिंगिंग का ये सब कुछ रुक गया, क्योंकि मैंने एक ये भी सोचा था कि हमारे जो आदिवासी अपने गीत है वो ये जो टैक्सी वगैरह चलती है उसमें भी बजने चाहिए। तो उस समय मेरी कल्पना थी और मैंने ऐसा तो कभी सोचा नहीं था कि वो टैक्सियों में गीत बजेंगे, क्योंकि जब भी मैं टैक्सियों में गुजरता था तो हिंदी गाने, गुजराती गीत यही बजते थे। और आज ऐसा समय है कि आबू रोड में भी और हमारे इस एरिया में भी और गुजरात का भी जो आदिवासी एरिया है वहां पर हमारे आदिवासी कलाकारों के जरिए आदिवासी गीत जो है वो प्ले हो रहे म्यूजिक वाले, तो वो भी एक बदलाव मेरी वजह से तो नहीं आया लेकिन आया है, ये मैं देख पा रहा हूँ
0: जी। मेरे रेडियो के साथियों, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन, और फ्रिक्वेंसी है 107.8 FM और हमारे साथ हैं एक युवा जुनूनी विनोद, और विनोद ने अपनी यात्रा अपने जुनून के बारे में भी कुछ कुछ बातें हमसे की हैं, लेकिन हम उससे उसके बारे में विस्तार से समझना चाहेंगे विनोद से, और विनोद से जानना चाहेंगे विनोद आदिवासी समाज में कौन सी कुरीतियां हैं जो अभी भी युवाओं के मध्य हैं और उनके विकास में क्या महत्वपूर्ण बाधा आपको लगती है और सरकार उसमें कैसे सहयोग कर सकती है।
1: तो मैं अपने जितने भी रेडियो मधुबन के श्रोता हैं उनसे कहना चाहूंगा कि मोहताना जो है वो आदिवासी समाज में बहुत पहले से चलते आ रही एक ऐसी परंपरा है जिसके कारण लोगों को अपने घर बार छोड़ के चले जाना पड़ता है, और इसका अर्थ ये होता है कि मौत का मुआवजा, यानी कि किसी की मौत हो गई है तो उसका मुआवजा देना, यानी कि जब तक उस मौत का मुआवजा नहीं मिलेगा, पैसे नहीं दिए जाएंगे, तब तक वो जो लाश है वो नहीं उठाई जाएगी। और मौत होने का कारण कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति की अपनी पत्नी है, डिलीवरी हो रही है उसकी और अचानक उसकी मौत हो गई, तो उसके पीर पक्ष के जो लोग हैं वो उसके पति से पैसे की मांग करेंगे, और जब तक पैसे नहीं दिए जाएंगे तब तक वो जो लाश है वो या तो अंतिम संस्कार के लिए नहीं लेके जा सकते हैं, पोस्टमार्टम वगैरह भी नहीं होगा। इसके अलावा इसमें ऐसा भी होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के खेत में है खड़ा और सांप ने काट लिया और वो खेत किसी और का हुआ, तो जिसका खेत है उसको मौत का मुआवजा भरना पड़ेगा। और अभी रिसेंटली हमारे एरिया में एक केस हुआ था जिसमें जो व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हुई, उसकी मृत्यु बिजली के संपर्क में आने से हुई, बिजली लगने से, तो उसका जो मुआवजा है वो सरकार से मांग की लोगों ने, और सरकार को उसका मुआवजा भी देना पड़ा। तो तब तक कुछ नहीं होता है जब तक लाश को उठाया नहीं जाता। ये है मोहताना, और ये जो परंपरा वो पहले से चलती आ रही है, अभी भी चल रही है, और इसे रोकने के लिए समाज के जो जागरूक लोग हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, वे भी प्रयास कर रही हैं, लेकिन इतनी सफल नहीं रही। और मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जब मैं रेडियो में था तब कोटड़ा SDM कार्यालय से मुझे इसी के लिए सम्मानित किया गया था, मोहताना की कुप्रथा को हटाने के लिए जागरूकता फैलाई जा रही है इसीलिए, और मैं अभी भी ये देख रहा हूँ कि ये अभी भी लग रही है, तो वो सम्मान मुझे नहीं लगता है कि सही था। और क्योंकि केवल प्रयास करने से ये नहीं हो रहा है, हर एक इंसान के अगर ये अंदर ये जागरूकता आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जागरूकता कुछ नहीं आई है। अभी जैसे एक रिसेंटली केस मैंने बिजली वाला बताया, तो एक केस ऐसा है जिसमें बाइक और टैक्सी का एक्सीडेंट होता है जिसमें टैक्सी वाले ड्राइवर की मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो दूसरा परिवार होता है वो सामने वाले पक्ष को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता है, और उनसे वो बात करता है कि जो बीमा राशि है उसके जरिए इसका समाधान किया जाए। क्योंकि अगर मोहताना की बात भी होती है हमारे समुदाय में, तो केवल इतना होता है कि 1,50,000 या फिर 50,000 केवल राशि दी जाती है, बाकी अगर 14-15 लाख या 3 लाख की बात भी होती है तो वो राशि टुकड़ों में बटती है, लेकिन जो पीड़ित परिवार होता है उसको नहीं मिलती है। एक और बात ये कि मोहताना में ऐसा भी होता है कि अगर किसी दूसरे गांव के व्यक्ति का मामला है तो दूसरे गांव के जो लोग है वो उस गांव पे जाके चढ़ाई भी करते हैं, यानी कि पूरा गांव खाली भी हो जाता है, उस गांव के अंदर जो परिवार होता है वो परिवार या फिर उस परिवार के अंदर भी जो उसी जाति के लोग होते हैं, उन लोगों को पूरा अपना घर बार छोड़ के चला जाना पड़ता है, दूसरा पक्ष आके लूटपाट करता है, घर बार तोड़ देता है। और रिसेंटली ऐसा ही केस गिरवर में एक महीने पहले देखने को मिला है, पुलिस भी वहां पर थी लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई और पूरा घर जो है वो तोड़ दिया गया था। तो बदलाव की काफी जरूरत है, ये जो एक प्रथा है वो अभी भी चल रही है।
0: तो इसके लिए आपने क्या अभियान शुरू किया और कैसे आपने युवाओं को जोड़ा इस प्रथा को रोकने के लिए?
1: स्टार्टिंग में जब किया था तो गांव में जाकर मीटिंगें करते थे और लोगों को इकट्ठा करके उन्हें इस बारे में बताते थे, और सामाजिक संस्था के साथ भी मिलकर इसके लिए प्रयास किया, और प्रयास ऐसे थे कि उसमें हम लोगों को इकट्ठा करके केवल हम नहीं बात करते थे, लोगों से ही पूछते थे कि अगर ये चीजें घट रही है तो इससे क्या क्या नुकसान हो रहा है, और उन बातचीत में लोग ये भी बताते थे कि कैसे एक गांव पूरा खाली हो जाता। मैं जहां रहता हूं वहां पर तो गांव के अंदर बहुत सारे घटनाएं घटी हुई है, लोग गए हैं 10-10, 12-12 साल से और उनकी पीढ़ियां भी निकल गई, वो दूसरी जगह बाग की खेती में जाकर रह रहे हैं, तो ऐसी भी घटनाएं हैं। और जो आपने पूछा युवाओं को जोड़ने की बात, तो युवा उस समय जुड़ा था और वो युवा जुड़ा था जो पढ़ाई कर रहा है, कॉलेज कर रहा है, और वो सारे युवा उस समय मेरे साथ मिलकर, और कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि अपना खुद का दुकान थी, बिजनेस था, वो भी मिलकर साथ में जागरूकता का काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही फिर मैं पीछे हटा, और पीछे हटने के पीछे कारण ये था कि मेरे अपने परिवार में भी मेरे पापा की तबीयत खराब हुई, तो फिर मुझे घर आना पड़ा और फिर मैंने एक कदम पीछे लिया, तो फिर जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग थे वो भी डिस्कनेक्ट हो गए, क्योंकि सबकी अपनी एक जिंदगी होती है और जो युवा जुड़े हुए थे वो खुद का अपने बिजनेस नौकरी में भी चले गए। अभी इस प्रथा के ऊपर अगर काम कर रहे हैं तो कुछ संस्थाएं काम कर रही है, और मैंने ये भी देखा है कि जो सरकार की तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट है वो भी लोगों में जागरूकता लाने के लिए बैठक आयोजित कर रहा है और कोशिश ये करता है कि अगर ऐसी कोई घटना घट जाए तो उस घटना स्थल पर पहुंचकर लोगों को समझाइश करता है और जो भी मुआवजे वाली बात होती है वो बीमा के जरिए उन्हें दिलवाने की कोशिश की जाती है, ताकि जान हानि एक तो हुई है लेकिन दूसरी ना हो।
0: जी, तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक लॉजिक क्या है, मतलब इस बात को लेकर, इस परंपरा को इतने सालों तक लोग चला रहे हैं, मुआवजे का अपना एक स्थानीय कानून बना रखा है, जबकि देश दुर्घटना बीमा है, उसकी क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान है, न्यायालय के माध्यम से क्षतिपूर्ति भी होती है, इसका लॉजिक क्या है, इतने सालों से ये कैसे चल पा रहा है?
1: लोगों के चलाने के पीछे का लॉजिक यही है कि अगर कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, अगर हमने सामने वाले पक्ष को जवाब नहीं दिया तो ये और ऐसी घटना कर सकता है, केवल इतना सा लॉजिक है, और लॉजिक जो है वो पहले से चलता आ रहा है। और इसमें ऐसा भी हो रहा है कि अगर मैं कोटड़ा रहता हूँ तो मुझे स्वरूपगंज जाना है या फिर कहीं भी जाना है, तो अगर कुछ उस समुदाय के लोग बीच में रहते हैं तो वो पूरा रास्ता भी बंद कर देते हैं, कहीं आने जाने भी नहीं देते, ये भी हो रहा है। और लॉजिक बस इतना सा ही है कि अगर हमने बदला नहीं लिया तो हमारे और किसी व्यक्ति को ये मार सकते हैं, जैसे राजा महाराजाओं का बदला लेने की जो भावना रहती थी वो भावना, मतलब अभी तक जितना मैंने रिसर्च किया है उससे समझ पाया हूँ।
0: तो ये परंपरा, ये व्यवस्था, ये पूरे क्षेत्र में है या कुछ पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का समुदाय के साथ ये समस्या है? ये परंपरा
1: केवल समुदाय में नहीं, अगर दूसरे समुदाय का भी व्यक्ति है तो उस समुदाय के व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा जाता, कि हालांकि होता यह है कि उसमें पुलिस का हस्तक्षेप रहता है जिस वजह से वो दूसरे समुदाय को समुदाय नुकसान नहीं पहुंचा पाता, लेकिन ऑन द स्पॉट तो उस व्यक्ति को वो लोग नहीं छोड़ेंगे कि जो तुमने किया है उसकी तुम्हें भरपाई करनी पड़ेगी, हालांकि जान हानि का नहीं करते लेकिन पैसों की बात जो है वो पहले रहती है। और इसमें ये जो परंपरा चल रही है इसके पीछे एक कारण ये भी है कि जो यहाँ के पंच है उन्हें उसमें दो पैसे मिलते हैं और पंच अपनी रोजगारी चलाने के लिए भी इसको चला रहे हैं, ये भी देखा गया है।
0: तो ये जो विवाद है ये पंचायत में का निर्णय लिया जाता है, पंचायत का समझौता करवाया जाता है, या ये है कोई भी पक्ष इसमें पक्षकार होता है?
1: पंचायत में इसका निर्णय नहीं होता है, ये जो है वो गांव के सरपंच होते हैं, और गांव का सरपंच को हालांकि उसमें शामिल जरूर किया जाता है, लेकिन उस गांव के जो दूसरे लोग होंगे, उस परिवार से भी हो सकते हैं और उस गांव के भी लोग हो सकते हैं, वो लोग और दूसरे गांव के लोग, वो दोनों आपस में मिलकर इन बातों को समझाइश करते हैं, एक पक्ष बात करता है फिर दूसरे पक्ष को सुनाने जाता है कि उस पक्ष का ये कहना है, और आपस में पूरे दिन चर्चा चलती है, पूरे दिन भी चर्चा हो सकती है, और ऐसा अगर एक दिन में चर्चा नहीं हुई तो 10 दिन भी चर्चा चलती है, और तब तक जो लाश है वो नहीं उठाई जाएगी ना पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन अभी तो पुलिस क्योंकि लाश ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते, इसीलिए इसका निपटारा करने की कोशिश जो वो है वो जल्दी करती है। और ऐसे भी देखा गया है कि पुलिस कई जगह पर अगर एक्टिव नहीं होती है तो लाश जो है वो करीबन एक एक महीने तक भी रहती है, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे मुद्दों को अपने चैनल के जरिए लोगों तक पहुंचा है जहां पर करीबन 41 दिन तक लाश बर्फ की पेटी में रखी जा रही है, क्योंकि पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है, सामने वाले पक्ष पे कुछ कार्रवाई नहीं कर रही, ऐसा भी हो रहा है। और जब इन सब चीजों को चैनल के जरिए लोगों तक पहुंचाया जा रहा है तब प्रशासन को लग रहा है कि नहीं इसमें हमारी भी बदनामी हो रही है, तब जाकर प्रशासन जो है वो एक्टिव हो रहा है। तो अभी तक अगर ये परंपरा चल रही है तो प्रशासन भी इतना एक्टिव नहीं है, क्योंकि लोगों की भागीदारी उसमें नहीं रहती है। और यहाँ के प्रशासन की बात की जाए तो फिर प्रशासन जो है वो दोनों पक्ष से निपटारा लोगों से ही करवाती है, और उसका अपना बेनिफिट भी निकाल देती है, वो यही सच है। और फिर इस वजह से परंपरा जो वो चली जा रही है, क्योंकि पुलिस भी नहीं चाहती कि परंपरा खत्म हो जाए, क्योंकि उनकी अपनी रोजी रोटी है वो भी खत्म हो जाएगी। और ये एक्यूरेट बात है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस रिसेंटली चल भी रहे हैं, और अगर कोई नया व्यक्ति आ गया पुलिस डिपार्टमेंट में तो वो थोड़े दिन प्रयास करेगा कि ये बंद हो जाए, लेकिन फिर उसे समझ में आ जाएगा कि यहाँ की यही परंपरा है और इसे ऐसे ही चलाना होगा, तो फिर वो चलते ही रह रही है।
0: तो इस विकृत परंपरा को लेकर सरकार ने कोई कानून बनाया है या इसके लिए प्रशासन ने कोई नियम बनाए हैं जिससे कि इसको रोक लगाई जाए?
1: प्रशासन ने तो नियम बनाए हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से आदिवासी जो समुदाय हैं उनकी अपनी परंपरा है और उनके अपने नियम है। एक तो रूढ़िगत परंपरा जो कि पांचवी और छठी अनुसूची में जिसका वर्णन है और पेस एक्ट में भी जिसका वर्णन है कि उनके अपने निपटारे जब वो खुद करेंगे तो पुलिस भी हस्तक्षेप करती है, लेकिन ज्यादा नहीं कर पाती क्योंकि उनके अपने कायदे हैं। हालांकि समुदाय नहीं जानता है, उसके बावजूद भी उसके अपने निपटारे वो खुद करता है, और इसीलिए ये नहीं

0: बैठ रहे हैं, एक से लेकर करीबन 4-5 क्लासे जो है वो एक साथ बैठ रही है, रोजाना जो पीरियड होने चाहिए वो भी नहीं हो रहे। तो एजुकेशन की अगर ये हालत है तो कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। तो वैसे ही मैं जिस एरिया में रहता हूँ, कोटड़ा एरिया में, यहाँ पर बांध बनाकर यहाँ के लोगों को विस्थापित करने के प्लान भी चल रहे हैं। प्लान विस्थापित करने के हैं, ये यहाँ के लोगों को लग रहा है और सरकार को लग रहा है कि वो दूसरी जगह के लोगों को डैम बनाकर पानी बचाकर रोक कर पानी पिलाना चाहती है। तो ये भी एक यहाँ पर चुनौती देखने को मिल रही है। और इसको लेकर यहाँ पर बहुत सारे एनजीओ काम भी कर रहे हैं कि शिक्षा से कोई भी बच्चा वंचित नहीं रहे। और जो बांध वाली बात की तो उसको लेकर मैं और मेरे साथ कुछ और लोग हैं जो अभी ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि डैम जो है वो यहाँ पर नहीं बने, क्योंकि दो डैम बनने से करीबन 10-12 पंचायत के बहुत सारे लोग प्रभावित होने वाले हैं, विस्थापित, और उनके पुनर्रखने की वापस जो व्यवस्था होनी चाहिए वो भी नहीं की गई है। हालांकि उनको जमीन दिखाई गई है, लेकिन जिस तरीके से लोगों से वापस अनुमति भी लेनी चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो चुनौतियां तो यहाँ पर ऐसी है कि लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं को ही मतलब कंप्लीट प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर दूसरी चीजें तो उन्हें मिलने से ही रहे। क्योंकि कई गांव में ऐसा कहा जा रहा है कि बिजली पहुंच गई है, लेकिन आज भी गांव के कुछ घरों में बिजली नहीं है। और कुछ बड़ी पोस्ट वाले जो लोग हैं उन्होंने अपने घर के पास से, हालांकि कहने का मेरा भावार्थ यह है, कुछ समय पहले मैंने एक न्यूज भी चलाई थी उसको लेकर कि एक सरपंच है, उनके घर बिजली कनेक्शन जा रहा है, लेकिन जहां से कनेक्शन जा रहा है उसके वायर ऊपर से जा रहा है, लेकिन नीचे वाले घर में बिजली नहीं है। तो ये भी एक तरह से देखा कि सुविधाएं जो है वो नहीं मिल पा रही है, या तो लोग उस सुविधाओं को लेने का तरीका नहीं जान पा रहा है, या फिर उनको सुविधाएं जो है वो नहीं दी जा रही है।
1: इस पूरी यात्रा में विनोद भाई आपने बताया कि आपने किस प्रकार से लोगों को जोड़ा है, मोहताना की जो परंपरा है, जो कुरीति है, उसको लेकर आपने अभियान अपने इलाके में चलाया है, आपने पुलिस और प्रशासन का भी साथ लिया है, लेकिन इस पूरे अभियानों के साथ आपने एक संविधान प्रचारक के रूप में भी काम कर रहे हैं, और एक फेलोशिप भी आपने कई प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। ये किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं? आपको लगता है ये सारे प्रोजेक्ट निरंतरता में है, या इनको हम ये एक दिशा में चलने वाली प्रक्रिया है जिससे कुछ बदलाव होने का संभव है?
0: जो प्रोजेक्ट है वो निरंतर अगर चलाए जाए तो चल सकते हैं और उन्हीं के जरिए बदलाव भी हो सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जीवन में हर एक व्यक्ति के अपने टर्निंग पॉइंट आता है। जब तक मैं एक्टिव था, कुछ काम कर रहा था, तब तक यूथ भी जुड़ा हुआ था, वो भी करने के लिए प्रयासरत था। अभी मैं अगर अपनी जीवन की बात करूं तो मेरा पूरा जो शेड्यूल है पहले से अब चेंज हो चुका है। मुझे अपने समुदाय में जाने के लिए इतना टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि अपनी खुद की एक अपनी शॉप है, सुबह स्कूल जाना, शॉप पे रहना, लोगों का ऑनलाइन कुछ काम है तो वो करना, और अगर मेरी अपनी लाइफ बदली है तो लोगों की अपनी लाइफ भी बदली है। और जो लोग पहले सोचते थे कि कुछ बदलाव होना चाहिए और कर रहे थे, तो वो जो बदलाव है वो मैं अभी सोच भी रहा हूँ, करने का प्रयास भी कर रहा हूँ, लेकिन जो तरीके हैं वो बदल गए हैं। पहले प्रोजेक्ट के रूप में हो रहे थे, लेकिन अब वो कहते हैं ना कि सिस्टम में आना पड़ेगा आपको, तब जाके कुछ बदलाव होंगे। अभी जैसे मैंने कहा कि मैं स्कूल में बच्चों को कंप्यूटर सिखा रहा हूँ, उनको बेसिक, मैं 8-9-10 के बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं संविधान प्रचारक की जो कार्यशाला थी उसमें जाके आया, मुझे खुद को समझ में आया कि संविधान जो है वो बहुत सरल है और हमें आसानी से समझ में आ सकता है और हमारे जीवन के लिए है। मैंने कभी ये महसूस नहीं किया था कि संविधान जो है वो हमारे जीवन के लिए है, मैंने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। और मुझे केवल यही लगता था कि संविधान में हमारे अपने अधिकार है और कर्तव्य है, और कर्तव्य का ये मतलब है कि मुझे किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना है, और अधिकार का मतलब है कि मेरे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसके लिए आवाज उठा सकता हूँ। लेकिन संविधान के अंदर तो मुझे कैसे जीना है उसका भी वर्णन है, और मैं किसके साथ कैसा व्यवहार करूँ ये भी वर्णन है। तो अब मुझे लग रहा है कि अगर मेरा व्यवहार लोगों के साथ बदल रहा है तो ऑटोमेटिकली लोगों को भी समझ में आएगा कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए। और अगर संविधान के मूल्यों को, वैल्यू को, लोग ऐसा नहीं कि संविधान के मूल्य इसीलिए उन्हें करना है, लेकिन अगर वो खुद उन चीजों को समझेंगे कि मुझे सबके साथ समान व्यवहार करना है, सबको अगर कोई चीज मिल रही है बेनिफिट तो मुझे जितना मिल रहा है उसको भी उतना मिलना चाहिए, अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो कैसे इसका समाधान किया जाए ताकि किसी को ठेस नहीं पहुंचे, हानि नहीं पहुंचे, तो प्रोजेक्ट जो पहले थे वो हालांकि

0: सीमित थे, लेकिन उन्हीं प्रोजेक्ट को अगर वापस भी स्टार्ट किया जा सके, लेकिन उनमें वैल्यूज को शामिल करके, वैल्यू के साथ साथ ये है कि लोग उसको महसूस कर सके, क्योंकि पहले केवल ये था कि चीजें खत्म हो रही है, संस्कृति खत्म हो रही है, इसलिए कार्यक्रम स्टार्ट किया सिंगिंग वाला, या फिर समाज में कुछ कुरीति है और वो बदलनी चाहिए इसीलिए कार्यक्रम शुरू किया, लेकिन नहीं, लोगों को अपना जीवन एकदम सुंदर बने उसके लिए अगर ये सोच बना के अगर वापस ये सारी चीजें स्टार्ट की जा सकती है तो बदलाव होंगे। और ये मैं अपने से शुरुआत जब से मैंने ये समझा है तब से मैंने स्टार्ट तो कर दिया है, क्योंकि शॉप में रहता हूँ, बहुत सारे लोग आते हैं, उनके साथ मेरा व्यवहार एक समान सा, या फिर वो लोग अगर दूसरे तरह का व्यवहार भी कर रहे हैं तो उन्हें कैसे वो बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी जानकारी वैसे देना ताकि वो जो व्यक्ति दूसरा उसे नहीं दे पा रहे हैं उससे भी वो उसी व्यवहार में बातचीत करके उसको ले पाए, ताकि कुछ गलत ना हो, सब प्रेम भाव से समझ पाए।
1: तो आपकी आगे क्या यात्रा है, अब आप अपने जीवन में क्या देखते हैं, आप कैसे और इस बदलाव को परिपक्व करने, पल्लवित करने और इसको स्थायी करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं?
0: स्थायी करने के लिए तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी अपनी छोटी बच्ची है, अगस्त में उसके 3 साल पूरे होने वाले हैं, और मैंने खुद से भी मतलब सोचा कि एक छोटे बच्चे का जो मैसेज है वो लोगों तक बहुत अच्छे से पहुंचता है, वो और मैं हम दोनों मिलकर कैसे लोगों तक एक जो संविधान की जानकारी है, अधिकार हो गए, कर्तव्य हो गए, और इस तरीके से हमारे अपनी स्वतंत्रता है, या फिर जो कहते हैं कि धर्म निरपेक्षता, या फिर हमारे समुदाय में भी जब किसी की मौत हो रही है, अगर मुआवजे की बात हो रही है, मौताने की बात हो रही है, तो तुरंत ही अगर वो भावना आ रही है तो लोग उस चीज को बदल पाए, वैसे कुछ विज्ञापन या फिर वैसे कुछ कार्यक्रम डिजाइन करके लोगों तक पहुंचाने का प्रयास है। और साथ साथ में स्कूल के जो जिन बच्चों के साथ मैं अभी काम कर रहा हूँ, उन बच्चों के साथ कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है मेरा, उसमें मैं कैसे इन चीजों को शामिल करूँ, ताकि बच्चे कंप्यूटर तो सीख ही रहे लेकिन साथ साथ में मूल्य को भी समझे, अधिकार को भी समझे, और उसको अपने जीवन में अपनाते हुए उन्हें जो चाहिए वो भी मिल पाए। क्योंकि अगर मैंने इन चीजों को अभी समझा है तो मुझे लगता है कि मैं अगर इसकी शुरुआत अभी कर दूं तो जो अभी तक नहीं समझ पाए वो लोग भी इन चीजों को समझ पाएंगे। और समझने का मतलब यही है कि अगर मेरे ऊपर कोई गुस्सा कर रहा है तो मैं भी सीधा उस पर गुस्सा करूंगा, ये स्वाभाविक है, लेकिन वो स्वभाव कैसे बदले, ऐसी चीजों के ऊपर भी मैं काम करने का सोच रहा हूँ। और इसके अलावा जैसे शॉप है तो कैसे मतलब ऐसी कुछ चीजें वहां पर रहे, क्योंकि विजिटिंग तो रहता ही है, तो बहुत सारे लोग जब विजिट करते हैं तो चीजों को देखकर भी उसको केवल पढ़ते हैं तो भी थोड़ा सा माइंड में रहता है कि हाँ मैंने कहीं पढ़ा था, ये चीजें करने का प्लान है। और अपनी खुद की वेबसाइट जो है, न्यूज चैनल यूट्यूब, तो उसमें अपनी जो न्यूज चला रहा हूँ मैं, उसमें भी उन मूल्यों को शामिल करूँ, ताकि समस्या के साथ मूल्य जाए, कौन से अधिकार का हमारे हनन हो रहा है, कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं और कौन सी समस्या है ये।
1: जी, कोटड़ा में बताते हैं कि कोटड़ा में कई सालों पहले सड़क भी नहीं पहुंचती थी, और कोटड़ा में आज का जो जनजीवन है वो अब विकास की जो मूलभूत संरचनाएं हैं वो उनका विकास हुआ है, कुछ विद्यालय भी बने होंगे, कुछ प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी बने होंगे, लेकिन फिर भी जो ये बुराइयां हैं ये सामाजिक चेंज और सामाजिक आंदोलन से ही होगा, और सामाजिक आंदोलन के लिए किसी एक व्यक्ति को ही आगे आना होगा। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जो बुराइयां हैं लगभग सभी समुदाय में वहां एक जैसी बुराइयां हैं, तो इसका क्या कारण है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई हो, और ये पंच पटेल जो है समाज के वो को लेकर आगे क्यों नहीं आते?
0: जैसा कि मौताने के ऊपर बदलाव करने के लिए मैंने इस पे जब रिसर्च किया तो देखा ये कि मौताना जो है वो शुरू करने के पीछे उद्देश्य अच्छा था, लेकिन समय के साथ इसका जो उद्देश्य है वो पूरा बदल चुका। केवल इतना ही था कि किसी के साथ कुछ गलत ना हो इसीलिए वो बदले की भावना थी, और उस समय कुछ और यानी कि मौत का मुआवजा यानी कि पैसे की बात नहीं थी, ताकि व्यवहार जो है वो बना रहे, और अगर कोई इंसान गलती करता है तो उसे सजा मिले, इस उद्देश्य के साथ पहले का था, लेकिन वो समय के साथ बदल गया, अब केवल बदले की भावना रह गया। और अभी के जो पंच पटेल की बात करें तो उनका इतना ज्यादा बदलाव को लेकर नहीं है, लेकिन आज के जो युवा है वो इससे काफी प्रभावित है। प्रभावित होने का मतलब ये है कि उन्हें लगता है कि ये चीजें बदलनी चाहिए, क्योंकि नहीं बदल रही है इसलिए वो अपना खुद का पैसा सेविंग करके अपना खुद का घर नहीं बना पा रहे, क्योंकि घर बनाएंगे कुछ घटना घटे उन्हें घर बार छोड़ के चला जाना पड़ेगा। और इसको लेकर हमारे कोटड़ा में भी कुछ जो युवाएं हैं उनका अपना ग्रुप बना के वो बदलाव के लिए प्रयास कर रहे हैं, गांव के अंदर मीटिंगें कर रहे हैं। और अगर आबू रोड क्षेत्र की बात करो तो वहां पर भी चीजें प्रचलन में है, तो वहां पर भी वहां का जो आदिवासी ग्रुप है वो अपने खुद की अपनी टीमें बनाकर अलग अलग जागरूकता के कार्यक्रम भी कर रहा है, उनकी अपनी मंथली मीटिंग भी होती है, पैसे भी सेविंग हो रहे हैं, और कैसे लोगों को जागरूक किया जाए और अपनी संस्कृति भी बची रहे, साथ साथ में जो परंपराएं समाज को आगे बढ़ने से रोक रही है उन्हें रोका जा सके। और ये इसलिए हो पाया है क्योंकि एजुकेशन या फिर गवर्नमेंट जॉब में अधिकतर आदिवासी समुदाय के लोग गए हैं।
1: लेकिन एक बात तो है कि इस सबके बावजूद क्या जो नए कानून है या जो हमारे मुआवजे का कानून है या बीमा कंपनियों के से मुआवजा प्राप्त करने का जो कानून है, दुर्घटना बीमा का प्रावधान है, तो ये सब बदलते समय के साथ जो नई वित्तीय सेवाएं सरकार ने शुरू की हैं और एक व्यवस्था बनाई है, एक जिला न्यायालय बनाया है, जिला पंचायत बनाई है, तो क्या इस सरकार के नियमों को फॉलो करने के आदिवासी समाज तैयार है?
0: आदिवासी समाज तैयार है मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है, अगर उनके साथ आज की पीढ़ी ही नहीं बल्कि जो अभी का यूथ है या उनके माता पिता है, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि मेरी अपनी शॉप है और स्टेशनरी भी है, तो दिन में करीबन 10-12 लोग रिपोर्ट के जो पेज होते वो खरीदने के लिए आते। इसका मतलब यह है कि अगर गांव में कुछ घटनाएं घट रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वो मामला पुलिस तक जाना चाहिए, पुलिस तक जाने से उसका समाधान जल्दी हो सके, ये सोच लोगों में आई है, क्योंकि गांव से उसका निपटारा नहीं हो रहा है। और गांव से निपटारा नहीं हो रहा है ये भी है, प्लस गांव के लोग गांव की बात भी नहीं मान रहे हैं, तो लोग भी अब चाहने लगे हैं कि समाधान जो है वो प्रशासन के पास जाए और उसी तरीके से हो, कानून के दायरे में रहकर हो।
1: एक बात और जानना चाहूंगा मैं आपसे कि जो लिविंग की परंपरा है, इसके क्या ऐसे फायदे थे जो ये एक प्रचलन में आया कुछ समुदायों के बीच, और ये क्या सभी समुदाय में है या किसी व्यक्तिगत या किसी पर्टिकुलर समुदाय में ही ये परंपरा देखी गई है?
0: लिव इन रिलेशनशिप बाकी समुदाय का तो मैंने अध्ययन नहीं किया है, लेकिन मेरे अपने आदिवासी समुदाय में और जहाँ मैं रहता हूँ और आबू रोड क्षेत्र की मैं बात करूँ तो पहले बहुत ज्यादा था कम उम्र का लिव इन रिलेशनशिप, अब भी जो है लिव इन रिलेशनशिप हो रहा है लेकिन 18 या फिर उससे प्लस में। और इसके पीछे के जो कारण है वो ये भी है कि समुदाय के पास इतनी इनकम नहीं होती है कि वो उसकी जो शादी है वो तुरंत करवा सके, और इसीलिए कुछ समय तक लोग जो है वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, और फिर जो लड़का होता है वो खुद ही अपने पैसे कमाता है और फिर पैसे इकट्ठे होने के बाद शादी होती है, और अगर कुछ शादी हो भी जाती है तो फिर उसकी ये भी वजह रहती है कि लड़का और लड़की साथ में रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि पहले अगर वो रहते हैं तो उसके बाद शादी करनी है या नहीं करनी वो भी उनके माता पिता को समझ में आता है, और लड़के लड़की उन्हें भी समझ में आता है कि हम दोनों साथ में रह सकते हैं। जितना ये मैं समझ पाया, ये अपना मेरा विचार है, लोगों का अपना अलग विचार हो सकता है, और मुझे लगता है कि मेरी इस बात से शायद मेरा अपना समुदाय वो ये भी सोच सकता है कि मैंने ऐसी क्यों बात की, तो मेरा अपना ये विचार है, मैं ये समझ पा रहा हूँ और जितना मैंने देखा है, अगर किसी को ठेस पहुंचे हो तो इसके लिए मैं माफी भी चाहता हूँ।
1: नहीं जी, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है और वो भी अपनी तरीके से सोचने के लिए आजाद है, लेकिन बात ये है कि हमें सोचना होगा संविधान के दायरे में और समाज की बेहतरी के लिए और समुदाय की बेहतरी के लिए। तो अभी शिक्षा को लेकर या नौकरी को लेकर या सरकारी नौकरी को लेकर क्या एक चेतना विकसित हुई है आदिवासी समाज में, उदयपुर के इलाके की जो आदिवासी समाज है उसके अंदर?
0: जी बिल्कुल, जागरूकता आई है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी एनजीओ भी काम कर रही है जो कि केवल शिक्षा का नहीं समुदाय के बीच में जाकर भी। और रिसेंटली मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपनी बात में यहाँ बांध बनने का जिक्र किया था, और उसे रोकने के लिए यहाँ का समुदाय काफी विरोध कर रहा है। इसकी घोषणा जो है वो 2022 में हुई थी, 2026 हो गए, 4 साल हो गए, लेकिन डैम बनने की शुरुआत अभी नहीं हुई है क्योंकि यहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं, और विरोध के पीछे यही है कि विस्थापित हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, अपनी जमीन नहीं छोड़ सकते हैं ये। और मैं अपनी बात करूँ तो इसे रोकने के लिए लोगों में जागरूकता बनी रहे और सूचना के अधिकार कानून का सबसे ज्यादा उपयोग किया गया है, और वो ऐसे किया गया है कि जब घोषणा हुई थी तब भी किया गया और अभी भी इसका उपयोग किया जा रहा है। और सूचना के अधिकार के तहत ही लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि इसको बनाने को लेकर कहां कहां से अनुमति ली गई है और कौन से प्रावधान के तहत क्या मुआवजा मिलेगा, या फिर जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कैसे चलने वाला है। ये जो सब बातें हैं वो सूचना के अधिकार के तहत जो डिपार्टमेंट है उनसे मांगी है लोगों ने। और सूचना के अधिकार को भी मैंने समझा तो मेरे साथ के कुछ युवा है वो भी समझ रहे, उनके खुद के नाम से आरटीआई लगा रहे, और यही जो बात है वो एजुकेशन पर भी लागू होते, क्योंकि स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपने खुद के नाम से आरटीआई लगा के कि कोटड़ा में आखिर शिक्षकों की जो कमी है या फिर स्कूल भवनों की कमी है वो क्यों, मतलब पूरी करने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उसको लेकर अभी चर्चाएं हो रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगर बच्चा खुद सूचना के अधिकार को जानेगा तो वो अपने अधिकारों के लिए जवाब मांग सकता है, और जवाब मांगेगा तो उसे जवाब मिलेगा, और जवाब मिलेगा तो फिर उसे क्या करना है और कैसे अपनी बात को लोगों के बीच में रखना है ताकि लोगों की जागरूकता भी बढ़े, लोगों की एकता भी हो और जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। प्रयास जारी है।
1: हाँ, कोशिश करने वाले की हमेशा और प्रयास जारी रहना चाहिए। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM, बहुत ही रुचिकर और आनंददायी बात चल रही है। हमको गहराई में समझने को मिल रहा है एक समुदाय, एक कृषि के बारे में और एक युवा जीवन के बारे में, एक जुनूनी के बारे में, जिनका एक जुनून है कि वो अपने समुदाय को विकसित करना चाहते हैं और विकसित भारत 2047 के सपने में अपना योगदान देना चाहते हैं। तो हम से जानना चाहेंगे कि अब उनकी क्या कार्य होता है और संगठन को तैयार करने के लिए, अपने कार्य क्षेत्र को विकसित करने के लिए क्या करने जा रहा है।
0: मेरी आगे की जो योजनाएं हैं वो संविधान को लेकर ज्यादा है, क्योंकि संविधान के मूल्य लोगों तक पहुंचे, और इसके लिए मेरी अपनी जो कोटड़ा टाइम्स की टीम है मैं उसके साथ भी इस पे चर्चा कर रहा हूँ। और साथ ही साथ में, क्योंकि केवल एक कार्यशाला अटेंड करने से मुझे ये समझ में आया कि संविधान से ही मेरा जीवन है, अगर संविधान नहीं होता तो मैं जहाँ हूँ शायद मैं वहां नहीं होता, जितना मैं कर पा रहा हूँ वो मैं नहीं कर पाता। और एक इंसान की जिंदगी जो अभी चल रही है उसमें संविधान का अपना रोल है, और वो रोल लोगों को कभी महसूस नहीं हुआ कि संविधान है तब हम है, और तभी मैं पढ़ पा रहा हूँ, तभी मैं नौकरी जा पा रहा हूँ, तभी मैं गाड़ी में सफर कर पा रहा हूँ, या फिर मैं खुली हवा ले पा रहा हूँ, क्योंकि जब संविधान नहीं बना था तब की परिस्थितियाँ कुछ और थी और अब की परिस्थितियाँ कुछ और है। तो आगे का जो मेरा खास भविष्य में सोच रहा हूँ वो संविधान की अवेयरनेस को लेकर ही ज्यादा सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जैसे मेरे अभी 32-33 ईयर्स चल रहे हैं, 33वें साल में मुझे थोड़ा सा ये समझ में आया कि ये मेरे जीवन से है, तो वो लोगों को भी समझ में नहीं मतलब लोगों को एहसास हो, और वो मैं एहसास दिलाने के लिए युवाओं के साथ, गांव के लोगों के साथ फील्ड में, हालांकि जाना नहीं हो पा रहा है लेकिन कैसे भी मुझे वो टाइम निकालना है, क्योंकि सप्ताह में अगर मैं 1-2 घंटे भी समुदाय के बीच जाता हूँ तो इससे यही होगा कि मैं उनके साथ बातचीत कर पाऊंगा और जान पाऊंगा। और मेरा तरीका ये नहीं है कि मैं उन्हें ये बताऊं कि संविधान ने हमें ये सब कुछ दिया है, केवल मेरी नॉर्मल बातचीत में वो सब कुछ आए और लोग समझ पाए।
1: जी, चलते चलते आपसे विनोद जी जानना चाहूंगा कि ये जो पूरा क्षेत्र है कोटड़ा का और जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं आबू रोड पे, अभी आधारभूत संरचनाएं जो है उसके विकास की क्या स्थिति है और सरकारों ने क्या सफलतापूर्वक अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी को कर पाया है?
0: आधारभूत संरचनाएं तो जो गवर्नमेंट की कहे या फिर क्षेत्र की कहे, जो थी पहले वो बदल रही है, और गवर्नमेंट भी जो है वो अपना देखा जाए तो 100% देने का पूरा प्रयास कर रहा है, क्योंकि गांव के अंदर शिविरें हो रही है और जो शिविरें है वो करीबन 3 महीनों में 6 महीनों में, और उनके अधिकारी जो है, चाहे सरपंच हो, पटवारी हो, विकास अधिकारी हो या तहसीलदार, SDM, सबका अपना रोल जो है वो गांव में, क्योंकि हर पंचायत में कैंप लगाकर लोगों तक सुविधाएं पहुंचे उस पर प्रयास चल रहे हैं, और लोग वंचित ना रहे उसके लिए उससे जुड़े जो लोग हैं उनको भी पाबंद किया जा रहा है, चाहे वो पटवारी हो या फिर उससे नीचे के जो अधिकारी हो उन्हें भी, और ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि लोगों को सुविधाएं सारी मिल पाए। और सुविधाएं नहीं मिल पा रही है तो लोगों तक वो मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है कि कौन से दिन कैंप है, कौन से दिन क्या कुछ हो रहा है। पर सरकार का जो प्रयास है वो पूरा चल रहा है। अब इसमें जो सबसे ज्यादा जिम्मेवारी बनती है तो वो जागरूक युवाओं की बनती है, जिन तक मैसेज पहुंचता है कि सरकार की ये योजनाएं हैं और इसका लाभ ऐसे मिल सकता है, वो युवा के जरिए लोगों तक मैसेज पहुंचे। तो और जितना मैं देख पा रहा हूं तो बहुत कम युवा जो है वो इसमें प्रयास कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बहुत कम युवा प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे दूसरे युवा उसमें जुड़ेंगे। और जुड़ने के पीछे कारण ये है क्योंकि जो युवा नहीं जुड़े हैं उन्हें खुद भी नहीं पता कि इसका लाभ कैसे लेना है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि वही युवा एक पुरुष बन रहा है, अपना परिवार बना रहा है, क्योंकि उन्हें भी उन अधिकारों की जरूरत है, वो जानेगा तो फिर उसके जरिए लोगों तक भी पहुंचा सकता है।
1: जिम्मेदारी युवाओं की है, और ये आपकी फाइनल बात, ये हम लेते हैं आज का टेक अवे हमारे श्रोताओं के लिए, और ऐसे ही चुनौनी के साथ फिर मिलते रहेंगे। विनोद जी, आपने हमें अपना महत्वपूर्ण समय दिया और आम जन तक अपने विचार और अपनी बात आपने पहुंचाई, और एक विशेष समुदाय जिसके लिए संविधान ने भी विशेष प्रावधान किए हैं उनके साथ किए गए छोटे से विशेष प्रयासों पर की चर्चा, और ये आज का हमारा जुनून था। फिर मिलेंगे ऐसे ही साथी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।

यहीं रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। कुछ भी नहीं जब दरमियान।

0: मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: क्रांतिकारी रास बिहारी बोस का जन्म 25 मई 1886 को हुआ था। रास बिहारी बोस स्वतंत्रता आंदोलन के ऐसे क्रांतिकारी योद्धा थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत की आजादी की प्राप्ति में लगा दिया। वे विस्मय प्रकृति के अद्भुत व्यक्ति थे जिनमें एक विशिष्ट तेज और ओज था। उनकी वाणी इतनी सशक्त और गर्जन भरी थी कि सुनने वालों की नसों में खून खौलने लगता था। उन्होंने पंजाब और उत्तर प्रदेश की कई क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिया जिनमें वाइसराय बमकांड मुख्य था। उन्होंने लिबर्टी नामक पर्चा छापकर आजादी के आंदोलन का शंखनाद किया था। सन 1912 में उन्होंने लॉर्डिंग को सबक सिखाने के लिए उस पर बम फेंका और फिर बचकर जापान भाग गए। जापान में रहकर भी उन्होंने भारत की आजादी के आंदोलन का संचालन किया। राज बिहारी बोस से प्रेरणा लेकर ही सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। क्रांतिकारी राज बिहारी का देहावसान 1945 में जापान में हुआ था।
3: अरे राम राम काका,
4: राम राम,
5: राम राम।
3: लो आज हम फिर सब आ गए आपकी शरण में।
5: क्या बात है, क्या घर के खाने से पेट भर गया जो फिर चले आए हो हैं?
6: अरे नहीं काका, भला घर के खाने से कभी पेट भरा है? ये तो आपका प्यार है जो हमें खींच लाता है बार बार आपके पास।
5: हमारा प्यार नहीं, हमारा खाना खींच लाया है तुम सबको।
6: काका आप तो बुरा मान गए, सच ये है कि आपका खाना लजीज होता है,
3: पर इसके साथ साथ कुछ और भी बात तो है काका।
5: वो क्या है बताओ भला? बता दोगे तो आज मैं भाजा के साथ तंदूरी रोटी खिलाऊंगा।
6: अरे अरे भाई, के साथ तंदूरी रोटी?
7: मत बताना कुछ मत बताना।
5: अरे कहाँ भाजा और कहाँ तंदूरी रोटी,
7: अरे ये भी कोई मेल है खाने का?
6: लगता है हमारे काका सठिया गए।
7: हाँ,
6: तभी तो कहाँ बंगाल के भाजे के साथ पंजाब का मेल कर रहे हैं।
8: हाँ काका, ये क्या बात हुई बोला।
5: हाँ सही कहा तुम लोगों ने, तुम्हारा ये काका सचमुच सठिया गया है। भाजा के साथ तंदूरी के अलावा बाल मिठाई या चॉकलेट मिठाई परोसता तो तुम लोग सचमुच मुझे बेवकूफ समझते।
6: पर काका आपने तो कभी इस तरह की बेमतलब बातें की नहीं, फिर ये अचानक बंगाल पंजाब और कहां उत्तराखंड की बातें करने लगे।
5: अच्छा तुम ही बताओ, एक आदमी भला कितने तरह की जिंदगी एक साथ जी सकता है?
6: लो यहाँ आदमी अपनी तरह की एक जिंदगी ही ठीक से नहीं जी पाता, उस पर आप कहते हैं कि कितने तरह की जिंदगी जी सकता है। क्या काका आज आपको ये क्या हो गया है?
5: आज तुम सब जिस शहीद की कहानी सुनोगे वो एक नहीं कई तरह की जिंदगी जीता था।
6: कई तरह की जिंदगी?
5: उसकी यही विशेषता रही कि अंग्रेज पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी उसे पकड़ा नहीं जा सका। अपनी चालाकी से उसने पूरे ब्रिटिश सरकार को ऐसा छकाया कि लोग हतप्रभ रह गए।
7: ऐसा कौन शहीद होगा जो कभी पकड़ा ही नहीं गया? बताओ ना काका, बताओ ना।
6: काका बताओ ना।
5: हम नहीं बताएंगे, तुम सबको एक क्लू जरूर दे देंगे, समझदार हो तो बता दोगे। वो भारतीय होने के बाद भी जापान का नागरिक था, उसकी शादी एक जापानी लड़की से हुई थी।
7: कौन था भाई?
6: काका आप हमें उलझा रहे हैं। हाँ।
7: अच्छा
6: आपकी सोबत में इतना तो जान गए हैं कि सुभाष चंद्र बोस के जापान के साथ अच्छे ताल्लुकात थे।
7: हाँ सही कहा।
6: क्यों क्यों है ना?
7: बिल्कुल बिल्कुल।
6: और उसकी शादी भी एक जापानी से ही हुई थी, पर जापानी नागरिक कभी रहे नहीं वो। क्यों भाई ठीक है ना?
7: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। काका आप तो बता ही दो भाई, फिर तो सचमुच भाजा तंदूरी और पहाड़ी बादिये का तो मजा ही आ रहा है।
5: वो शहीद मूल रूप से थे बंगला भाषी, नौकरी की देहरादून में, दिखने में हट्ठे कट्ठे पंजाबी जवानों की तरह। जापानी पत्नी का नाम था तोशी को।
6: काका
8: एक बात तो सही है कि आज हम आपके सामने बिल्कुल ही हार गए।
0: हाँ, ये बात तो सही है।
8: क्यों भाई, है ना? जो सच है वो तो है।
0: हाँ, बिल्कुल।
8: हम ऐसे किसी शहीद को नहीं जानते जिसमें इतनी सारी विशेषताएं हों।
5: उस शहीद का नाम था रास बिहारी बोस।
8: रास बिहारी बोस?
0: अरे वाह, क्या बात है काका, रास बिहारी बोस।
6: तो काका, आज हो ही जाए कहानी रास बिहारी बोस की।
0: हाँ काका, हो ही जाए।
8: हाँ काका, आज तो हो ही जाए।
0: हो ही जाए।
5: तो सुनो शहीद रास बिहारी बोस की कहानी।
1: रास बिहारी बोस यानी बंगाल के रहने वाले, देहरादून में नौकरी करने वाले, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली से अपनी गतिविधियां चलाने वाले, यारों के यार, बम बनाने में उस्ताद और साथ ही अपनी चलाकी और सूझबूझ से अंग्रेजों के हाथ कभी न आने वाले रास बिहारी बोस, जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। इस सच्चे देशभक्त को लोग रासुदा के नाम से भी जानते थे।
4: रासू, हम तंग आ गए हैं तुम्हारी इस भागने की प्रवृत्ति से। आखिर तुम चाहते क्या हो?
9: मैं भारत माता की सेवा करना चाहता हूँ पिताजी।
4: किस तरह?
9: ब्रिटिश सेना में शामिल होकर।
4: ऐसा कैसे हो सकता है? तुम भला ब्रिटिश फौज में रहकर देश की सेवा किस तरह से करोगे?
9: पिताजी, आपके इस प्रश्न का उत्तर सही सही दूं या गलत रूप से पेश करूं?
4: देखो, झूठ तो तुम्हें बोलने नहीं दूंगा, सच कहना ही होगा।
9: तो सुनिए पिताजी, मैं ब्रिटिश फौज में इसलिए शामिल होना चाहता हूं कि मुझे ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेना है। यदि हम नौजवान आधुनिक युद्ध कला सीख जाएं, तो हम भारत माता को आजाद कराने की दिशा में कुछ कर सकते हैं।
4: कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। तुम मुट्ठी भर लोग क्या ब्रिटिश हुकूमत से लोहा ले सकोगे?
9: पिताजी, यदि सभी ऐसा ही सोचने लगे तो फिर देश के लिए कौन सोचेगा? हाँ, इस तरह से भारत माता तो कभी आजाद हो ही नहीं पाएगी।
4: परिवार को दुख पहुंचाकर क्या तुम ऐसा कर पाओगे?
9: दुखी भारत को सुखी करने के

0: जो रास्ता चुना वो बहुत ही कठिन है बेटा। एक पिता के नाते तुम्हारे लिए केवल मंगल कामना ही कर सकता।
1: पिताजी कितने अच्छे हैं, मुझे विश्वास नहीं होता कि ये आप कह रहे हैं। शुक्रिया पिताजी, मेरे पिताजी, भारत माँ का ये सपूत आपको प्रणाम करता
0: है। प्रणाम करता है। खुश रहो बेटा, खुश रहो।
2: तो ऐसी थी रासुदा के जीवन की शुरुआत। इसके बाद उन्होंने नौकरी खोजना शुरू किया। देहरादून में वन विभाग में शोध संस्थान में सहायक की नौकरी मिल गई। यह नौकरी उन्होंने इसलिए स्वीकार की ताकि प्रयोगशाला में काम करते समय उन्हें ऐसे रसायन मिल जाएं जिससे बम बनाए जा सके। अब रासुदा का क्रांतिकारी रूप खुलकर सामने आने लगा।
1: दोस्त, मुझे प्रेरणा मिली है कि भारत के वायसराय लॉर्ड होर्डिंग्स को किसी तरह से मजा चखाया जाए।
3: दादा, बहुत ही जल्द वो दिल्ली में दरबार का आयोजन कर रहे हैं।
1: तो फिर देर किस बात की, मैं योजना बनाता हूँ। पर इसके लिए वसंत कुमार विश्वास की मदद लेनी होगी।
3: वसंत विश्वास? दादा ये कौन है भला?
1: तुम नहीं जानते, मेरा खाना बनाने वाला मेरा नौकर वो विश्वास वास्तव में बम बनाने और उसे चलाने की कला में निपुण है।
3: वाह क्या बात है रासुदा, इधर रसोईया उधर बम निर्माता, वाह। उसके बनाए भोजन की तारीफ तो देहरादून में कई लोग कर चुके हैं।
1: उस पर किसी तरह का शक ना हो
3: जी,
1: इसलिए उसे इस तरह से जानबूझकर पेश किया गया है। मैं उसे लाहौर भेज दूंगा जहाँ से वो लॉर्ड होर्डिंग्स पर हमले की योजना पर काम करेगा। वहाँ अवध बिहारी बालमुकुंद और दीनानाथ भी हैं।
3: मगर इसके लिए बम कहाँ से मिलेगा?
1: अभी तो मैं चंद्रनगर जाकर बम की व्यवस्था करता हूँ।
3: जी जी,
1: हमें हमला 23 दिसंबर 1912 को करना है
3: जी।
1: समय बहुत ही कम है, मैं चंद्रनगर जा रहा हूँ। कोई पूछे
3: जी
1: तो कह देना की रसोईया भाग गया है, इसलिए उसे खोजने पे आऊँ।
3: ठीक है दादा, ठीक है, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा। आप निश्चिंत होकर जाइए। भारत माता की जय।

0: क्यों दोस्त
1: जी,
0: सारी तैयारियां पूरी हो गई, कोई चूक नहीं होना चाहिए।
1: कोई चूक नहीं होगी दादा, हमारी योजना पूरी तरह से पक्की है। नहीं बचेगा ये लॉर्ड हॉडिंग्स, और इसे बचना भी नहीं चाहिए।
0: वो देखो शाही जुलूस कितना लंबा है, हम उसके चांदनी चौक पहुंचने के इंतजार में।
1: हाथी पर उसकी सवारी कितनी बढ़िया लग रही है। देखो दादा, यहाँ भी पूरी शान और शौकत के साथ है।
0: आज वसंत अपना काम कर दिखाए तो समझो हमने फतह कर ली।
1: पर वो है कहाँ दादा?
0: अगर वो यहाँ होता भी तो आप उसे नहीं पहचान पाते बंधु।
1: अरे ऐसी क्या बात है उसमें?
0: वो देख रहे हो बैंक की इमारत को?
1: जी जी,
0: वही एक महिला के रूप में है वसंत विश्वास। अभी देखना वो अपना काम किस तरह से कर दिखाता है।
2: देखा क्रांतिकारियों का हौसला, अच्छा इस्तकबाल किया लॉर्ड का।
3: क्या हुआ कप्तान साहब? आप तो पुलिस वाले हैं, हमें बताएंगे कि हमारे साहब को क्या हुआ?
4: अरे लॉर्ड साहब को कुछ नहीं हुआ, बम उनके सामने बैठे जमादार पर गिरा है, वो तो मर गया। हमारे लॉर्ड साहब जख्मी हुए हैं भाई।
2: शुक्र है खुदा का, हमारे लॉर्ड साहब बच गए। सचमुच क्रांतिकारियों की तो चाहत ही नहीं होती, वे सभी को मार डालते हैं।
3: लॉर्ड साहब बेहोश हो गए हैं, वे घायल हैं। अरे बाकी सब लोगों को सुरक्षा के घेरे में ले लिया गया है।

0: पसंद तुमसे चूक कैसे हो गई?
1: पता नहीं रासुदा, दरअसल मैं महिलाओं की पंक्ति में पीछे बैठा था, इसलिए सही स्थान पर बम पहुंचने में चूक हो गई। मैंने पूरी तैयारी के साथ बम फेंका था। लगता है नाट की किस्मत अच्छी थी।
0: क्या किस्मत अच्छी थी? तुमने बम सिगरेट के पैकेट में रखा था ना?
1: हाँ रासुदा, पूरा काम योजना के अनुसार हुआ था, बस एक छोटी सी चूक हो गई। अब यही चूक बड़ा पछतावा बन गई है मेरे लिए।
0: नहीं नहीं वसंत भाई, नहीं, हम विफल जरूर हुए हैं, पर इससे हमने अपना इरादा बता दिया है कि हम क्या क्या कर सकते हैं।
1: रासुदा, आप भी इस सेट के लिबास में ऐसे लग रहे हैं जैसे सचमुच कोई मारवाड़ी सेट हो।
0: वो तो ठीक है, अब पूरे देश में खलबली मच जाएगी। चप्पे चप्पे पर क्रांतिकारियों को खोजने के लिए जाल बिछाया जाएगा। इसलिए वसंत, बेहतर यही होगा कि मैं देहरादून निकल जाऊं, तुम लाहौर निकल जाओ, साथियों की पूरी जानकारी देते रहना।
1: जी जाओ, जल्दी जाओ। ठीक है।
2: भले ही रासुदा की योजना विफल रही, पर इस बम कांड से अंग्रेज सरकार चिंता में पड़ गई। पूरे देश में तहलका मच गया।
3: देखा, क्रांतिकारियों के हौसले कितने बुलंद हैं। सरकार बौखला गई है। बम के टुकड़ों को जांच के लिए भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट में लिखा है कि दिल्ली, बंगाल और लाहौर के बम एक ही तरह के थे।
4: पुलिस किस नतीजे पर पहुंची?
3: पुलिस का यह मानना है कि क्रांतिकारियों का कोई एक ऐसा गिरोह है जो बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब में समान रूप से सक्रिय है।
4: इधर लिबर्टी नाम का एक अखबार धूम मचा रहा है, उसके बारे में क्या जानते हो?
3: वो अखबार नहीं, पूरा आग का गोला है। आग का गोला, आग उगलता है, उसे पढ़कर लोग अंग्रेजों के खिलाफ होने लगे हैं।
4: अच्छा, कौन निकालता है ये अखबार, आप जानते हैं उसे?
5: ना जाने कितने क्रांतिकारी हैं, इनमें से कौन निकालता है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, इतना तय है कि अखबार पूरे देश में मिलता है।
4: हाँ, शायद इसलिए पुलिस का ध्यान अब बम कांड से हटकर इस अखबार पर केंद्रित हो गया है। कई शहरों में इस संबंध में छापे मारे गए हैं, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
3: सचमुच में इस विद्रोही साहित्य में जो भी लिख रहा है उसकी कलम में धार है। मैं कायल हो गया हूं उसकी लेखनी का।
2: लिबर्टी अखबार के माध्यम से पूरे देश में आग फैलाकर रासुदा देहरादून से अपने गृह नगर चंद्रनगर में आ गए। उधर विद्रोही साहित्य और क्रांतिकारियों की तलाश में ब्रिटिश पुलिस ने रासुदा के अनेक साथियों को गिरफ्तार कर लिया। ये रासुदा के लिए खतरे की घंटी थी। उनके नाम का वारंट निकल गया, इसलिए वे भूमिगत हो गए।
0: भूमिगत रहकर मैंने बगावत की पूरी योजना तैयार कर ली है। ये बिल्कुल 1857 जैसा ही होगा। अच्छा होगा कि बनारस जाकर योजना को और मजबूत बनाया जाए। अरे पुलिस का क्या है, उसका काम है मुझे खोजना, सो वो खोजती रहे, मैं अपना काम करता रहूंगा।
6: वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु की फतेह। जो बोले सो निहाल। साथियों, आज है 31 दिसंबर 1914। आज हम सब लोग बगावत की योजना बनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। रासुदा ने बगावत की तारीख 21 फरवरी तय की है। इस बैठक में हमारे नए साथी विष्णु गणेश पिंगले के अलावा करतार सिंह सराबा, पंडित परमानंद, बलवंत सिंह, हरनाम सिंह, निधान सिंह, मूला सिंह जैसे महान क्रांतिकारी उपस्थित हैं। सभी लोग अपनी अपनी राय देंगे। मैं सबसे पहले करतार सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे आएं और अपने विचार प्रस्तुत करें।
4: मैं चाहता हूं कि इस बगावत का नेतृत्व रासुदा ही करें।
7: इसका नेतृत्व रासुदा ही करेंगे, लेकिन अभी उन्होंने मुझे जिस काम के लिए भेजा है, समय आने पर वे आप सबके बीच ही होंगे और अपनी राय खुद तय कर देंगे।
6: अब मूला सिंह जी अपने विचार प्रस्तुत करेंगे।
8: मैं तो कहता हूं जी कि सचिंदर साहब तो यहाँ बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, फिर आप लोग रासुदा के पीछे ही क्यों पड़े हैं? वे बनारस में रहकर भी कई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं।
6: अब परमानंद जी अपने विचार प्रस्तुत करेंगे।
9: हमें सचिंदर साहब से कोई शिकायत नहीं है, वैसे भी रासुदा तो हमारे बीच आएंगे ही, हमें अपना काम करते हुए उनका इंतजार करना होगा।
7: रासुदा भी बनारस, पंजाब और कई सीमाओं पर बम के कारखाने लगाने के काम में लगे हुए हैं, इसलिए हमें अपना काम पूरी मुस्तैदी के साथ करना है।
2: आखिर वह घड़ी आ गई, बगावत की पूरी तैयारी हो गई। रासुदा ने यह ऐलान कर दिया कि जैसे ही म्यांमार की छावनी में विद्रोह भड़के, वैसे ही सभी छावनियों में एक साथ बगावत के इस युद्ध में कूद पड़ना है। कहां की पटरियां उखाड़नी है, कहां के टेलीग्राफ के तार कैसे काटे जाए, पुलों को किस तरह से उखाड़ना है, यह सारे काम रासुदा ने बांट रखे थे। सभी को इंतजार था केवल 21 फरवरी का, किंतु अपनों के बीच से कोई ना कोई गद्दार तो निकल ही आता है। इस बार गद्दार के रूप में सामने आया कृपाल सिंह, जिसने पुलिस को खबर दे दी बगावत की योजना विफल हो गई। उधर क्रांतिकारियों की धरपकड़ होने लगी, इधर रासुदा पुलिस को चकमा देकर इधर से उधर होने लगे। सरकार ने उन पर इनाम घोषित कर दिया।

0: लाहौर से बनारस तो पहुंच गया, पर अब क्या दोस्त, पहले यहाँ के साथियों से मुलाकात कर सारी स्थिति की समीक्षा की जाए।
1: जी
0: उसके बाद जो तय होगा वही किया जाएगा।
1: दादा हमारे साथियों की बैठक कब होनी है?
0: अरे भाई जितनी जल्दी हो सके आप बैठक की व्यवस्था करें।
1: मैं सारे साथियों को इतला कर देता हूँ, वे सब शाम को उसी गुप्त स्थान पर जमा होंगे।
0: ठीक है, मैं बाकी की व्यवस्था देखता हूँ।
1: जी
0: साथियों, बगावत की विफलता के बाद हमें किसी नई योजना पर काम करना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है?
1: अच्छा तो यही होगा रासुदा कि अब आप विदेश चले जाएं और वहां के लोगों को संगठित करें ताकि हमें हथियार मिल सके।
0: इस बारे में हमें हमारे बंगाल के साथियों की राय अवश्य लेनी चाहिए। मैं बंगाल पहुंचकर आप सभी लोगों को इस बारे में जानकारी दूंगा।
1: मेरा विश्वास है कि वे लोग आपको देश से बाहर जाने की सलाह देंगे।

0: कलकत्ता तो नहीं पर चंद्रनगर आ गया। आहा, अब सारी बातें यही तय हो जाए तो बेहतर होगा। यहां रहना है या सात समंदर पार?
1: ये तो आज की बैठक में तय हो ही जाएगा।
0: देख लेते हैं। तुम शाम को आ रहे हो ना?
1: हाँ बिल्कुल, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन आप संभल कर रहेंगे?
0: ये मेरा गृह नगर है, फिर भी यहाँ के रास्तों से गुजरने पर मुझे डर लगता है कब कौन सी गोली सीने को पार कर जाए। बैठक में क्या तय होता है ये देखना है।
2: साथियों, आज इस बैठक में हमें यह तय करना है कि रासुदा को भारत में ही रहना है या फिर विदेश जाना है।
3: बगावत की विफलता के बाद हमें फौज से कोई सहायता नहीं मिलने वाली, इसलिए हमें भारी मात्रा में हथियारों की आवश्यकता पड़ेगी।
4: और ये हथियार हमें भारत से नहीं बल्कि विदेशी धरती से मिलेंगे।
2: इसीलिए मेरा सुझाव है कि रासुदा विदेशों में जाकर भारत के लिए सहायता प्राप्त करें।
0: आप लोगों का कहना सही है। दुनिया का कोई भी पराधीन देश अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना स्वतंत्र नहीं हुआ है। यदि आप लोग ऐसा मानते हैं तो मैं अवश्य जाऊंगा।
3: सुनिए रासुदा, कविवर रविंद्रनाथ टैगोर कुछ ही दिनों में जापान जाने वाले हैं। अगर आप चाहें तो इस स्थिति का लाभ उठा सकते हैं।

साथियों के साथ मिलकर रासुदा ने धन की व्यवस्था की। फिर कलकत्ता पहुंचकर प्रियनाथ ठाकुर के नाम से जापान का टिकट खरीदा। 13 जून 1943 को रासुदा और सुभाष चंद्र बोस टोक्यो की इंपीरियल होटल में मिले। यह ऐतिहासिक भेंट थी। दोनों पूरे जोश के साथ मिले। यह भेंट 1 घंटे तक रही। इसके बाद 4 जुलाई 1943 का वह ऐतिहासिक दिन जब रासुदा ने सिंगापुर पहुंचकर कहते भवन के एक समारोह में आजाद हिंद आंदोलन की बागडोर सुभाष चंद्र बोस को सौंपते हुए अपने विचार कुछ इस तरह से व्यक्त किए।

0: आप लोग मुझसे पूछेंगे कि मैं आप लोगों के लिए क्या उपहार लाया हूं। मित्रों, मैं आप लोगों के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम उपहार में लाया हूं। हाँ? आज किसी को भी नेताजी का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं अपने पद से त्याग पत्र देकर नेताजी का नाम आजाद हिंद संघ के अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित करता हूं। इसके अलावा मैं तो अंतिम समय तक देश की सेवा में लगा रहूंगा। हाँ? ये मेरा संकल्प है। जय हिंद।
1: लगातार संघर्ष ने रासुदा को कमजोर कर दिया। नवंबर 1944 को नेताजी रासुदा को देखने पहुंचे थे। ये दो महान नेताओं का अंतिम मिलन था। इस बीच रासुदा की पत्नी तोशिको बोस और पुत्र माशोहोदे का निधन हो गया। करीब करीब टूट चुके रासुदा को जनवरी 1945 को टोक्यो के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके कार्यों को देखते हुए बीमारी की ही अवस्था में जापानी सम्राट ने उन्हें राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया। 21 जनवरी को उनका देहांत हो गया। 25 मई 1886 को जो जीवन दीप जला था वो बुझ गया हमेशा हमेशा के लिए। रास बिहारी बोस को शत शत नमन, शत शत नमन।
2: तो समझे बेटा, ऐसे थे हमारे महान क्रांतिकारी राज बिहारी बोस।
3: सचमुच काका, बड़े महान क्रांतिकारी थे वे लोग। ऐसे भारत माँ के सपूतों को शत शत प्रणाम।
4: निर्देशन प्रमोद शर्मा, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

शुभम राम नारायणम जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम के

0: वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी।
1: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
2: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास न करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा ना करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट्स का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
1: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है जागृति इस कार्यक्रम में। जागृति ये कार्यक्रम महिलाओं के लिए और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए डेडिकेट किया हुआ कार्यक्रम है, और हम अभी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बातचीत कर रहे हैं। और पिछले कड़ी में हमने मानसिक स्वास्थ्य किसे कहा जाता है और मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इन विषयों के ऊपर हमने चर्चा की है। और हमें मदद किया है इन चीज़ों को समझने के लिए हमारे विशेषज्ञ हर्षिता जी और वीरेंद्र जी, आप दोनों साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट हैं। लेकिन आज जिस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं वो है अनिद्रा के बारे में। यानी कि कई बार हम ये महिलाओं के अंदर देखते हैं कि दिन भर की मेहनत करने के बावजूद, थकान होने के बावजूद रात को चैन से सो नहीं पाते हैं या नींद नहीं आती है। वो कारण कुछ भी हो सकता है, हो सकता है वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, या फिर वो किसी बात की चिंता में पड़ी हुई है, या मानसिक रूप से अस्वस्थ है। कारण कुछ भी है, लेकिन उसका जो रूप है उनके जीवन में वो अनिद्रा के रूप में दिखता है। तो कई बार वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं, कई बार नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्या है जो अनिद्रा का कारण बनता है, और हम एक चैन की नींद सोना क्यों जरूरी है, और नींद अच्छी होने से हमारी मानसिक स्वास्थ्य पे कैसे प्रभाव पड़ता है, आज इन विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ, जैसे हमने कहा कि पिछली कड़ी में हमें जिस तरीके से हर्षिता जी और वीरेंद्र जी ने मदद किया है आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस से, आप हैदराबादी जनरल हॉस्पिटल में अब अपनी सेवाएं दे रहे हैं हरियाणा में, और आज रेडियो मधुबन पे बने हुए हैं अपने अनुभवों

0: मगर उसका एक रिजल्ट, एंड रिजल्ट में ये देखने को मिलता है कि वो सो नहीं पाती है। तो उसका क्या कारण हो सकते हैं और नींद ना होने से उनके जीवन पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है?
1: नींद मानसिक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा इंडिकेटर या सबसे बड़ा इशारा है। एक अच्छी नींद हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। अब वो नींद कितनी उचित है वो पर्सन से पर्सन वेरी करता है। कुछ लोग शॉर्ट स्लीपर होते हैं जो 4-5 घंटे सोकर ही एकदम फ्रेश हो जाते हैं और उन्हें कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होती। कुछ लोग लॉन्ग स्लीपर्स होते हैं जिनको 10 घंटे 11 घंटे का नींद चाहिए, बट उन्हें एवरेज अगर देखा जाए तो 7 से 9 घंटे का नींद जो है वो एक नॉर्मल मनुष्य को चाहिए होता है अपने अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए। अगर कभी भी नींद में कुछ दिक्कत आ रही है, अनिद्रा आ रही है, अनिद्रा हो रही है, तो हमें समझना होगा कि वह क्यों आ रही है, उसके कारण हमें ढूंढकर निकालने होंगे। अब अनिद्रा की जो बीमारी है वो या तो प्राइमरी इंसोमनिया हो सकता है जिसको हम बोलते हैं, जो अपने आप आ रही है, जिसके पीछे और कोई कारण नहीं है, सिर्फ नींद कम हो रही है। वो या तो सिर्फ नींद कम हो रही है या फिर उम्र के साथ साथ नींद कम होती जा रही है। इंसान की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है उसके नींद का समय कम होने लग पड़ता है। हम सब जानते हैं कि जो छोटे बच्चे जब पैदा होते थे वो 16 घंटे 17 घंटे 20 20 घंटे सोते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है नींद की ड्यूरेशन कम होती रहती है। अडल्ट लाइफ आने के बाद में आपकी नींद 7 से 8 घंटे की सेट हो जाती है, वो फिर काफ़ी लंबे समय तक रहती है। और जब उम्र ढलने लगती है या जेरियाट्रिक एज ग्रुप आने लगती है, जब आप 50-55 साल के ऊपर के हो जाते हैं, तब आप नींद आपकी धीरे धीरे कम होकर 5 घंटे 4 घंटे की रह जाती है। अगर आप उतनी नींद लेकर भी खुद को फ्रेश महसूस कर पा रहे हैं, जब आप सुबह उठे तो आपका दिमाग एकदम स्वस्थ है, फ्रेश महसूस कर पा रहे हैं, आपको काम करने में कोई थकान महसूस नहीं हो रही, तो मतलब आपकी नींद बिल्कुल ठीक ठाक है। पर जब ऐसा नहीं हो रहा तो वो अनिद्रा है। अब अनिद्रा के अगर कारणों में जाएंगे, जिसको हम सेकेंडरी इंसोमनिया बोलते हैं, तो वो बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी लिस्ट है। अब उसके कारण कुछ शारीरिक हो सकते हैं, आपको बुखार है, आपके शरीर में कुछ दर्दें हैं, आपको कोई और शारीरिक परेशानी है, डायबिटीज के अंदर में भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, हाइपरटेंशन में भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसकी वजह से अनिद्रा हो सकती है। या फिर कोई मानसिक बीमारियां जैसे डिप्रेशन, डिप्रेशन में नींद ज़्यादा भी होती है कम भी होती है, एंग्जाइटी की दिक्कत, बेचैनी की दिक्कत जिसे बोलते हैं, उसमें भी नींद की दिक्कत आती है, या और कुछ गंभीर मानसिक बीमारियां लाइक स्किज़ोफ्रेनिया, डिल्यूजन डिसऑर्डर, जो ऐसी बड़ी मानसिक बीमारियां, उनमें भी नींद कम या ज़्यादा होती रहती है।
0: जी सर, ये आपने बात तो सही कहा कि बीमारियां हो तो फिर नींद नहीं आती है, वो समझ में आता है कि ये इस कारण से हो रहा है। लेकिन एक आम तौर पे महिलाओं का अगर हम टेंडेंसी देखते हैं, ऐसी बड़ी बीमारियों के आइडेंटिफिकेशन तो उनके अंदर नहीं होता है, लेकिन वो सो नहीं पाती है, चाहे वो उनको आने वाली कल की चिंता हो या पूरे दिन में जिस प्रकार की बातें या फिर जिस तरीके के व्यवहार उसने सामना किया है वो उसको दिमाग में खा रहा है, या जो भी है मन को शांत नहीं कर पा रही है, अगर हम सरल भाषा में कहें तो, उस कारण से भी जब सो नहीं पाती हैं, तो ऐसे में वो क्या प्रैक्टिस करे ऐसे दिन भर में, या फिर रात को सोने से पहले वो ऐसा क्या खुद के लिए ऐसा करे जिससे वो मन को शांत कर सके और वो सो सके।
1: अच्छी नींद के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है उसे स्लीप हाइजीन बोलते हैं। जैसे हमारी डेंटल हाइजीन है, फिजिकल हाइजीन है, वैसे ही नींद, अच्छी नींद के लिए स्लीप हाइजीन होती है। उसके अंदर में कुछ प्रमुख चीज़ें होती हैं, अगर आप उसको करेंगे तो आपकी नींद लगभग ठीक हो जाएगी, अन्यथा वो किसी बड़ी बीमारी का संकेत नहीं है। अगर सिर्फ कुछ चिंता या कुछ कारणों की वजह से आपको नींद नहीं आ रही तो वो उससे ठीक हो जाएगी। उसमें सबसे जो जरूरी है वो है आपको अपनी नींद का समय फिक्स रखना पड़ेगा कि मुझे हर रोज इस समय सोने के लिए जाना है और इस समय उठना है, हफ्ते के 7ों दिन रविवार को लेकर। अधिकतर हम देखते हैं कि लोग शनिवार रात को लेट नाइट तक जागते हैं, पर उसका इम्पैक्ट, उसका असर अगले दिन भी रहता है, अगली नींद भी आपकी खराब होगी। तो रोजाना एक समय पर सोना शुरू करें। रात को 9 बजे के बाद में किसी भी ब्राइट लाइट का एक्सपोजर कम से कम रखें, लाइक मोबाइल फोन का इस्तेमाल रात को 9 बजे के बाद, टीवी का इस्तेमाल रात को 9 बजे के बाद ना करें, क्योंकि जब हम सोने के लिए जाते हैं तो हमारा ब्रेन रिलैक्स स्टेट में चला जाना चाहता है। अगर वो एक्टिवेटिंग स्टेट में है तो हमें कभी भी अच्छी नींद नहीं आएगी। जब हम बहुत देर तक फोन या टीवी का इस्तेमाल कर रहे हैं, रात को 10

0: 11-12 बजे तक फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके बाद जब हम सोने के लिए जा रहे हैं, तो हमारा ब्रेन जो है वो इमीडिएटली रेस्ट स्टेट में नहीं जाएगा, वो बहुत देर तक उन्हीं वीडियोस को सबकॉन्शियस लेवल पे घुमाता रहेगा और चलाता रहेगा। इसलिए जब हम सुबह उठेंगे तो हम सो भी गए हैं, साथ वाला आदमी बोलेगा कि तू तो अच्छा खासा सो रहा था, खराटे ले रहा था और ये कर रहा था, बट आप जब सुबह उठेंगे तो आपको फ्रेश फील नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो नींद की क्वालिटी है, सिर्फ क्वांटिटी नहीं क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट है, आपकी नींद की क्वालिटी भी खराब हो गई। तो उसको ठीक करने के लिए आपको रात को 9 बजे के बाद ब्राइट लाइट एक्सपोजर और मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम करना है। तीसरी चीज जो होती है वो शाम को 5 बजे के बाद कैफीन इनटेक को कम कर दीजिए, जिससे चाय, कॉफी, रेडबुल, जो ऐसी चीजें जो एक्टिवेटिंग या जगाने वाली चीजें हैं, उनका इस्तेमाल शाम को 5 बजे के बाद बिल्कुल बंद कर दीजिए, ताकि ब्रेन को कूल डाउन होने के लिए 3 से 4 घंटे मिले। अपने बिस्तर का इस्तेमाल सिर्फ सोने के लिए करें, किसी अन्य कार्य के लिए नहीं। बिस्तर पे बैठ के अगर टीवी देख रहे हैं, बिस्तर पे बैठ के अगर खाना खा रहे हैं, तो उस चीज का अवॉइड करें, क्योंकि बिस्तर का आविष्कार सिर्फ सोने के लिए हुआ था। तो जब बिस्तर पे सिर्फ सोने के लिए जाएंगे तो ब्रेन को ये ऑटोमेटिक सिग्नल जाएंगे कि यहां पे मैंने सिर्फ सोना है। सोते समय कोशिश करें कि एब्सोल्यूट डार्क रहे कमरा, बिल्कुल अंधेरा रहे, रोशनी ना रहे बिल्कुल भी, टेम्परेचर हमेशा ठीक ठाक हो कि आपकी बॉडी को कंफर्टेबल लगे, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा हो। और सोने से पहले कभी भी भारी काम मत करें, मतलब बहुत ज्यादा थकाने वाला काम मत करें कि शरीर में कोई पीड़ा रह जाए, तो उस वजह से भी नींद गड़बड़ होने लग पड़ती है। तो शाम के समय अगर एक्सरसाइज करनी है तो एकदम हल्की फुल्की एक्सरसाइज करी, 10-15 मिनट का सैर कर लिया हल्का, बिना शरीर को ज्यादा कष्ट दिए हुए। और आई थिंक ये अगर चीजें करेंगे तो स्लीप हाइजीन बहुत अच्छी रहेगी और आपको नींद अच्छी आएगी। डॉक्टर हर्षिता, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं?
1: जब हम सोने जा रहे हैं, सर ने बहुत अच्छी स्लीप हाइजीन एक हमारे लिए 6 से 7 पॉइंट्स बहुत ही अच्छे अच्छे ऐड ऑन करे हैं। इसमें बस मैं 2 से 3 पॉइंट्स और है जो ऐड ऑन करना चाहती हूँ, कि जब आप सोने के लिए जा रहे हैं तो जो आपका पिलो है उसका मेजर ध्यान रखें कि वो 3 से 4 इंच का पिलो है जो आपके नेक के लिए, और बिना पिलो लिए नहीं सोना है, या तो आप बेडशीट को फोल्ड करके सोएं, क्योंकि आपकी जो गर्दन की शेप है वो उस हिसाब से डिजाइन है, जो पिलो का साइज है वो कम से कम 3 से 4 इंच का होना चाहिए, आप उतना पिलो लगाकर ही सोएं, आपकी गर्दन के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। और रात को सोते हुए एक एक्सरसाइज है जो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, जिसको हम जैकॉब्सन रिलैक्सेशन मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो JPMR आप ये लिख सकते हैं। ये एक्सरसाइज अगर आप करके सोते हैं, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जो आपको सोने में बहुत ही ज्यादा मदद करती है। ये एक्सरसाइज आप एक ऐसे नाइट रूटीन बना लें कि ये तो मुझे करके ही सोनी है, इसके बिना मुझे सोना ही नहीं है। आप फील करेंगे कि अगर ये पूरी स्लीप हाइजीन आप मेंटेन कर रहे हैं, नेक्स्ट डे ऑटोमेटिकली आपका जो दिन है वो बहुत अच्छा और फ्रेश होगा। लास्ट चीज जो मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ, कि जब भी हम स्टिल कह रहे हैं कि नींद नहीं आ रही है, सब कुछ तो कर लिया, एक बुक उठाएं, पढ़ने लग जाए, नींद आने लग जाएगी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बोरिंग काम हमें लगता है। बोरिंग काम करते हुए हम कैसे बच्चों को नींद आने लग जाती है पढ़ाई के नाम पे, बोरिंग से बुक उठाएं, या फिर कुछ ऐसी जो कुछ शिक्षादायक हो, कुछ पॉजिटिव हो, कुछ भी नेगेटिव, कोई नोवेल, वो चीजें पढ़ने की जगह आप कुछ पॉजिटिव उठाएं, वो पढ़ें, पढ़ते पढ़ते आपको जरूर नींद आ जाएगी। एक प्रॉपर 10-12 पॉइंट्स जो हमने मिलके बताए हैं, ये आप अगर करेंगे बहुत ही अच्छी आपको नींद आएगी।
2: जी, ये बहुत सारी अपने टिप्स दी है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें मैं एक और बात जानना चाहती हूँ। वो महिलाएं जो शाम को निकल नहीं पाती हैं या जो भी हैं, ये सारी चीज़ें अपने बाहरी तौर पे एक फिजिकल कंफर्ट दे सकें और एक कॉन्शियस लेवल पे हमको अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए कि मुझे अभी सोना है तो सोने के लिए मुझे ये चीज़ें नहीं करना है, मतलब शाम से ही अपने आप को प्रिपेयर कर रहे, रात को मुझे ये सोना है तो ये चीज़ें करनी है। उसके साथ साथ जो सुबह से हमारे दिमाग में जो लोड है, सुबह से जो कैरी किया है हमने चीज़ें, वो भी कई बार सताते हैं। और जैसे आपने कहा कि लाइट होने से भी नींद नहीं आती है, तो वो भी एक फिजिकल ऐड ऑन वर्क है, लाइट्स बंद कर दिया, सब कुछ बंद किया, लेकिन जो दिमाग में जो चल रहा है, जो पीड़ा वो पकड़े हुए हैं, या वो पीड़ा जो सता रही है, अगले दिन की चिंता हो, या फिर जो सुबह से बातें हुई है, वो खुद को जवाब नहीं दे पा रहे हैं या फिर उसको स्विच ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे मोमेंट में उन चीजों को हम कैसे कंट्रोल करें?
1: इसका बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि जब सुबह से हम उठे, ऐसा तो नहीं है जीवन में चीजें होनी बंद हो गई, रिश्तेदारों ने कुछ कहना बंद कर दिया, या फिर परिवार वालों से टोन नहीं मिले, या फिर बच्चों ने कुछ गलत नहीं बोला। नॉर्मल है, सुबह उठते हैं उनके लिए काम करना शुरू करते हैं, रात तक जब तक वो सोते हैं उनके लिए काम करते ही रहते हैं, और उनके अगले दिन उठने से पहले महिलाएं उठ जाती हैं। तो सुबह से लेकर रात तक आप जिनके लिए काम करते हैं उन्हीं से आपको चीजें फेस करनी पड़ती हैं। हमें प्यार तो है अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, अपने आसपास के लोगों से, लेकिन जब हम चीजें सुनते हैं तो हमें बुरा लगता है, फिर हम कहते हैं कि हम हर्ट होते हैं, हमें ये जो फीलिंग्स हैं वो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो हमें एट द एंड कर तो हर्ट ही रहे हैं, अपनी बातों से करते हैं, अपने एक्शन से करते हैं। अब आते हैं कि चीजें हम नहीं बदल सकते, हम लोग नहीं बदल सकते, हम परिवार नहीं बदल सकते, लेकिन इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो हमें निकालना है। तो इसका जो सोल्यूशन है, बेस्ट सोल्यूशन है कि हमें कुछ अपने मेंटल हेल्थ में चेंज करना है, वो ये है कि आपको वेंट आउट करना है, अपनी चीजों को बाहर निकालना है। अगर आप बाहर निकालते हैं तो चीजें बहुत अच्छी होती हैं, आप अच्छा फील करते हैं, आपको हल्का फील होता है। अब वेंट आउट करने के 3 से 4 तरीके मैं आज आपको बता सकती हूँ। एक जो लोग या महिलाएं लिख सकती हैं वो एक डायरी राइटिंग करना शुरू करें, सुबह से लेकर रात तक जो भी आपको कुछ भी ऐसा फील हुआ, जो आपको नेगेटिव फील होता है, किसी की कोई बातें फील होती हैं, वो आप लिखना शुरू करें। बेस्ट सोल्यूशन है अपनी फीलिंग्स को ओवरकम करने के लिए। दूसरा, जिनको आलस आता है कि मुझे लिखना नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं तो नहीं लिख पाऊंगी इतना ज्यादा।
2: कई बार हो सकते हैं वो महिला को लिखना भी नहीं आता हो।
1: हाँ एग्जैक्टली, उसी के लिए मैंने बताया। तो दूसरा सोल्यूशन ये है कि अगर आपके पास व्हाट्सएप है, आप उसमें रिकॉर्ड करना शुरू कर दें, वहाँ पे ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, आपके अंदर जो भी चीजें हैं, आपको किसी को बुरा भी लग रहा है किसी को कुछ कहना, लेकिन आप उसके फेस पे नहीं कह पा रहे, लेकिन अगर अंदर रखेंगे तो राई का पहाड़ तो बनेगा ही बनेगा। इसलिए आपको उसको पहाड़ को नहीं बनने देना है, उसको वहीं के वहीं खत्म करना है। उसको खत्म करने के लिए आप बोलिए, आप बात करिए, ठीक है। तीसरा है कि अगर जिनको लिखना आता है वो उस इंसान के लिए डायरी राइटिंग कर सकते, जैसे हमने बोला वैसे ही लेटर राइटिंग कर सकते हैं। ये 3 सॉल्यूशंस हैं जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो आपके वो जो विचारों का एक लूप चल रहा है, जो टर्न ऑन की जगह ऑफ नहीं हो पा रहा, वो स्विच आप ऑफ कर सकते हैं।
2: जी, तो कुल मिला के यही है कि हम उसको स्विच ऑफ करना बहुत जरूरी है। जो कुछ भी हुआ है, जो चीज बीत गया है, उसको पकड़ के बैठे तो फिर उसका समाधान नहीं है। या तो हम उसके लिए सोल्यूशन खुद से ढूंढे, अगर नहीं ढूंढ पाता है तो किसी और से सोल्यूशन ले, लेकिन उसको वहां पे उसको खत्म कर दे,
1: अपने अंदर ना रखें, उसको बाहर निकालें। उसको जितना अंदर रखेंगे आप अपने आप को ही खराब कर रहे हैं, उसको बाहर निकालें। जैसे मैंने 4 तरीके बताए, चारों में से ये उनके लिए भी है जो लिख सकते हैं, उनके लिए भी है जो नहीं भी लिख सकते, नहीं भी पढ़ सकते। चारों में से जो आपको सेट बैठता है आप वैसे वेंट आउट करें, बट करें जरूर। किसी को अपना फ्रेंड बनाएं या कुछ कैसे भी, बट आप वेंट आउट जरूर करें।
2: जी, मैं आप दोनों से एक और सवाल करना चाहती हूँ। हम कैसे ये आइडेंटिफाई करें हमारी लाइफस्टाइल में कि ये मेरी नींद की डिसऑर्डर या इंसोमनिया या निद्रा, जिस भी कारण से जो नींद डिस्टर्ब हुआ है, उस कारण से ये मेरे लाइफस्टाइल में चीज़ें आ रही है या फिर मेरी ये लाइफ में डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं? तो कई बार जैसे हेडेक है, क्रॉनिक हो जाता है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, इरिटेशन है, ऐसी चीज़ें बढ़ती जाती हैं, तो कई बार ये हम नहीं समझ पाते हैं कि ये मैंने नींद पूरा नहीं किया या फिर टाइम पे खाना नहीं खाया। बहुत सारी चीज़ें ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होती जो ऐड ऑन होकर के उसका रिफ्लेक्शन दूसरी तरीके से होता है। तो फिर ये अनिद्रा से किस प्रकार की हमारे लाइफस्टाइल में डिस्टर्बेंसेस होते हैं या फिर हमारे जीवन शैली में क्या ऐसे नुकसान दिखते हैं जिसे हम आइडेंटिफाई करें कि हाँ, मुझे ये नींद ना करने के कारण मेरे अंदर ये दिख रहा है, मुझे सामने वाले व्यक्ति को या किसी को ब्लेम करने की जगह मुझे खुद को ठीक करना है।
0: देखिए, सबसे पहले एक अच्छी नींद का इंडिकेटर जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था वो है अगली सुबह आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जब आप सुबह उठे तो आप अपने आप को कितना फ्रेश महसूस कर रहे हैं अगले दिन के चैलेंजेस को लेने के लिए। तो ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि आपकी नींद अच्छी हुई है या नहीं हुई है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नींद का समय से उतना लेना देना नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो 5 घंटे सोकर भी अगले दिन सुबह एकदम फ्रेश होते हैं और कुछ लोग 12 घंटे सोने के बाद में अगले दिन सुबह फ्रेश फील करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप सुबह उठे तो आपका मन कितना शांत है, आपका मन कितना संतुलित है चीजों को हैंडल करने के लिए, अगले दिन के काम करने के लिए। सिर्फ मन ही नहीं, शारीरिक भी। अगर आपकी नींद ठीक नहीं होगी तो अगले दिन आपको शारीरिक रूप से भी थका थका लगेगा, आपको काम करने में एनर्जी महसूस नहीं होगी। जिस तेजी से आप भाग सकते हैं आप उस तेजी से नहीं भाग रहे होंगे। तो ये सबसे बड़ा साइन है अच्छी नींद होने का। उसके बाद अगर आप देख रहे हैं कि आप बिना बात के बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं, बातचीत में सबके साथ में थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो रहा है, किसी की छोटी छोटी चीजें आपको बहुत बुरी लग रही हैं जो कि पहले नहीं लगती थी, तो आपको सबसे पहले अपनी नींद के ऊपर ध्यान देना होगा कि मेरी नींद ठीक हो रही है या नहीं, मैं अच्छे से सो पा रही हूं या नहीं सो पा रही। उसके अलावा अगर आपकी शारीरिक कुछ बीमारियां, अगर आपका हाइपरटेंशन अचानक से बीपी बढ़ने लग पड़ा है, आपकी शुगर ठीक नहीं रह रही, आप खाना ठीक ठाक परहेज कर रही हैं फिर भी दवाई भी ले रही हैं फिर भी शुगर ठीक नहीं रह रही, तो तब भी आपको उसी समय आप ध्यान कीजिए कि आपकी नींद 90% चांस है कि आपकी नींद ठीक नहीं हो रही, क्योंकि नींद से फिजिकल और मेंटल दोनों इश्यूज आते हैं। तो आपके जो बीमारियां आपको चल रही हैं थायराइड की, शुगर की, बीपी की, उसमें गड़बड़ आएगी, आपका मन शांत नहीं रहेगा, आप एनर्जी, आपके काम के लिए प्रोडक्टिविटी कम होने लग पड़ेगी और आपके बिहेवियर में लोग देख पाएंगे और आपको बोल पाएंगे कि पहले तो तू इतना चिड़चिड़ी नहीं हुआ करती थी, अब तू क्यों छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा कर रही है, क्यों हर बात को इतना दिल से लगा रही है, और आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे कि मैं चीजों को ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हूँ।
2: जी, सो हमारी जीवन में जब अनयूजुअल बिहेवियर को हम खुद नोटिस करते हैं तो उसमें हम अपनी नींद को चेक करना बहुत जरूरी है।
0: जी,
2: इसके अलावा कोई और मेथड्स या कोई और पैरामीटर्स जो आपको लगता है कि इन चीजों पे नींद के लिए अटेंशन देना बहुत जरूरी है, खास करके एज वाइज स्लीपिंग ऑर्डर्स में? जैसे आपने कहा कि एज के अनुसार स्लीप की जो रिक्वायरमेंट्स है वो कम होते जाते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना भी उतना ही जरूरी होता है। आजकल हम यंग एज गर्ल्स को देखते हैं, वो नौकरी के कारण है या जैसे भी, लेट नाइट सोना, और फिर वो लेट नाइट सोने से कई बार हम ये भी डॉक्टर्स के साथ या किसी से सुनने को मिलता है कि मोटापा बढ़ने में भी नींद का बहुत
0: बिल्कुल मोटापा बढ़ने में, हार्मोन्स चेंज होने में, पीसीओडी जैसी दिक्कत आती है लड़कियों के अंदर में, मोटापा बढ़ता है, पीसीओडी जैसी दिक्कत आती है, हार्मोनल चेंज होने लग पड़ते हैं लड़कियों के अंदर में, उस सबका नींद के साथ में रिलेशन है। तो एक अच्छी नींद जो है वो आपकी बहुत सारी बीमारियों को इधर पूरा कंट्रोल कर देती है या फिर एक बहुत बड़ा हिस्सा उनका कंट्रोल करने में मदद करती है, और दवाइयों का असर भी ज्यादा बेटर होता है अगर आपकी नींद ठीक ठाक है।
2: जी, ये तो यंग एज गर्ल्स के लिए आपने कहा कि इस प्रकार की बीमारियों से वो बच सकती हैं अगर वो अपनी स्लीप साइकिल को मेंटेन करती हैं। तो ये जो 12 बजे 2 बजे 3 बजे के बाद जो सोते हैं उससे क्या असर पड़ता है लाइफ में?
0: जब आप लगातार 12 बजे 2 बजे 3 बजे ऐसा करके, देखिए सबसे पहले मैं चीज समझनी पड़ेगी कि जब भगवान ने चीजों को बनाया तो दिन और रात जब बने तो रात नींद के लिए दी गई, तो इसलिए समय को उसी तरह से बनाया गया कि हमारे शरीर के अंदर में क्लॉक होती है जिसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक या सिकार्डियन रिदम, वो डिसाइड करती है कि हमें कब सोना है। जैसे जैसे दिन ढलता है तो हमारी बॉडी के अंदर में कुछ केमिकल चेंज होने लग पड़ते हैं अपने आप से, और वो भगवान ने वैसे ही बना के दिए। जब वो केमिकल चेंज आने लगते हैं तो हमें अपने आप से नींद आने लग पड़ती है और हम एक समय के बाद सो जाते हैं, और जैसे ही सूरज निकलता है तो उसके बाद फिर से हमारी बॉडी में केमिकल चेंज होने लगते हैं और हम दोबारा से जाग जाते हैं, जो कि नॉर्मल रूटीन है, जो कि हम बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो कर रहे हैं जो भगवान ने बनाकर भेजी है। पर जब हम उस क्लॉक के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं किसी भी चीज, जो किसी भी भगवान की बनाई हुई चीज के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंस या उसके रिजल्ट तो आएंगे। तो जब हम बहुत देर तक रात को 2 बजे तक 3 बजे तक लगातार काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं पर सोने को अवॉइड कर रहे हैं, और उसकी जगह हम लोग उसको दिन में सोने को शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे केस आते हैं कि वो सोने का समय उन्होंने चेंज कर दिया, वो रात को 3-4 बजे सोते हैं फिर सुबह 12-1 बजे तक सो रहे हैं, तो उसके शरीर को अपने नुकसान होते हैं। उसके शरीर को नुकसान होते हैं, मानसिक नुकसान होते हैं उसके, क्योंकि हम नेचर की बनाई हुई चीज के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं।
2: तो ऐसे में क्या डिस्टर्बेंसेस देखते हैं साइकोलॉजिकली या फिजिकली?
0: लोग बहुत चिड़चिड़े रहने लग पड़ते हैं, बिहेवियरल इश्यू आने लग पड़ते हैं। जब आप सुबह नहीं उठ रहे, जब आप लेट उठ रहे हैं, तो आपका दिन काम करने का बहुत छोटा हो जाता है, आपका लोगों से मिलने का समय बहुत छोटा हो जाता है। देखिए, अगर आप 4 बजे तक जाग रहे हैं रात को, तो रात के समय तो कोई आपसे नहीं मिल रहा, तो जो आपका ह्यूमन टच का जो काम है, जिसमें आप लोगों से मिल रहे हैं, वो आपका समय अपने आप से छोटा हो जाएगा। अगर आप 2 बजे सोकर उठ रहे हैं, 2 से लेकर शाम को 6 बजे तक 3-4 घंटे ही आप अपने काम कर पाएंगे, बाकी सब काम ऐसे हैं जो आप अकेले कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके बिहेवियर में चेंजेस आने लग पड़ते हैं। आप देखेंगे कि इस तरह के लोग बिना वजह गुस्सा रहते हैं, काम करने में उनका जो ध्यान है वो कम होता है, उनकी प्रोडक्टिविटी कम होने लग पड़ती है, और उनको जो शारीरिक नुकसान है वो भी होने लग पड़ते हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए कि आपकी बीपी शुगर की समस्याएं और ये सब प्रॉब्लम भी आने लग पड़ती है।
2: लेकिन कई युवा महिलाएं जो इस तरीके से नाइट शिफ्ट में काम करती है या ऐसा, उनका ये कहना होता है कि दिन में हमारा काम नहीं होता है, वो क्रिएटिव प्रोडक्टिविटी जो है वो रात को ही होती है।
0: ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो लोगों को लगता है कि सिर्फ क्रिएटिव काम में सिर्फ रात को कर सकती हैं, दिन में नहीं कर सकती। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको अपने मन पे कंट्रोल करना है। अगर आपका मन आपके कंट्रोल में है, तो आप दिन में भी सभी प्रोडक्टिव और सभी क्रिएटिव काम कर सकती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ रात में बैठकर ही क्रिएटिव काम कर पाएंगी और सुबह नहीं कर पाएंगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और हम तो बचपन से मतलब सिखाया गया है कि सुबह का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त जिसको हम बोलते हैं, सुबह अगर आप 4-5 बजे उठ रहे हैं और कुछ काम कर रहे हैं, तो आई थिंक उससे ज्यादा प्रोडक्टिव समय आपको कोई नहीं मिलेगा।
2: जी, सो लास्ट में व्हाट इज द आइडियल टाइम कि यही लास्ट आवर है, इसके बाद जागना नहीं चाहिए, इस समय वो सोना है, एंड दिस इज द लास्ट आवर, इसके बाद सोना नहीं है?
0: देखिए, बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से तो हमें बहुत जल्दी सो जाना चाहिए। हमारा जो नींद का समय है वो 8-8:30 बजे बनता है, और सुबह जल्दी उठना, उसके साथ में लगभग 4-4:30 बजे उठ जाना, तो 8 घंटे की नींद भी हो रही है और हम बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से चल रहे हैं। बट फिर भी आज के मॉडर्न जनरेशन के हिसाब से अगर आप 10 बजे के आसपास भी सो रहे हैं और सुबह 6 बजे भी उठ रहे हैं, तो आई थिंक वो समय आपके लिए बहुत ठीक है।
2: जी, लेकिन 10 के बाद फिर जागना कोई फायदेमंद नहीं है?
0: नहीं।
2: थैंक यू सो मच आप दोनों को, वीरेंद्र जी और हर्षिता जी। हमारी जो ये स्लीप हाइजीन, आज एक नया शब्द हमको सीखने को मिला है, और आइडियल टाइम क्या है सोने का, और नहीं सोने के कारण समय पे हम और सही तरीके से उससे क्या नुकसान होता है और उसको कैसे ठीक करना है, सबसे बड़ी बात है कि सॉल्यूशन, कि हम उसको कैसे ठीक करें, आज आप दोनों ने हमें उपलब्ध कराया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद।
2: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम। अनिद्रा के बारे में, खास करके महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं जागरूकता इस कार्यक्रम में। हम फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है, हमारे मध्य एक ऐसी एक्सपर्ट हाजिर हैं जो 11 इयर्स यानी कि 11 साल के छोटी उम्र से आप स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, जीते आ रहे हैं। लगभग 51 साल से आप राजयोग ध्यान मेडिटेशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप मुंबई से आए हैं, तो मुंबई के सेलिब्रिटीज हो या फिर आम जनता हो या व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हो या यूथ हो या बच्चे हो, सबको आप इंस्पायर करती आ रही है इतने वर्षों से। लगभग 40 साल से आप सेंटर पे रहते हुए लोगों को इंस्पायर कर रही हैं। तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि क्रीना दीदी जी आज हमारे मध्य पधारे हैं जीवन रोशनी इस कार्यक्रम के अंतर्गत। तो आइए उनसे हम जानेंगे जो बहुत ही जरूरी विषय है आज के समय में कि हम एकाग्र नहीं रह पाते कई बार। तो एकाग्रता क्या है, फोकस्ड कैसे रहें, और कई बार हम चाहते हैं फोकस रहना लेकिन हम अटेंशन ही नहीं दे पा रहे हैं। तो अटेंशन क्या है, फोकस क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है या दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, इस बारे में आज प्रकाश डालेंगे आदरणीय क्रीना दीदी जी। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श्री जी।
0: थैंक यू दीदी।
1: मुझे बहुत खुशी है कि मैं रेडियो मधुबन के लिए कुछ ना कुछ अपनी छोटी छोटी सेवाएं भी दे सकूं।
0: जी, थैंक यू। तो दीदी, आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार सोशल मीडिया का जमाना भी है, हम इंटरनेट भी यूज करते हैं, AI को लोग गलत इस्तेमाल भी करते हैं, कई बार हम सही इस्तेमाल करते हुए भी उससे बहुत सारी चीजें सीख पाते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि AI के कारण या इंटरनेट के कारण हम अपने अटेंशन स्पैन घटा रहे हैं और फोकस नहीं रह पा रहे, क्या कहना चाहेंगे?
1: बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल मीडिया और AI का उपयोग तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि जितना व्यक्ति इंटेलिजेंट इवन छोटेपन में होता है वो जल्दी से इसको ग्रास्प कर रहा है और बहुत बहुत ही उसका यूज़ कर रहे हैं। अभी कैसे, क्या यूज़ कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हैं, वो तो हर एक की अपनी चॉइस है, पर बहुत ज़्यादा अभी हो रहा है। लेकिन मैं समझती हूँ कि फोकस या अटेंशन स्पैन जो है वो कोई बाहरी वस्तु के कारण कम हो रहा है ऐसा नहीं है
0: जी।
1: लेकिन जो उसका प्रभाव अलग अलग हमारे मन और बुद्धि पर पड़ता है, कई बार उनसे हमारे थॉट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं
0: जी।
1: या व्यक्ति थोड़ा वीक है अपने नेचर में और जितनी भी परिस्थितियां आती है उन सब के प्रभाव में आता जाता है, ही गेट्स अफेक्टेड, तो फिर उसके थॉट लेवल पे बहुत ज्यादा विचार करना शुरू कर देता है। और उसमें भी जरूरी नहीं है कि सब विचार पॉजिटिव हो, तो नेगेटिव का तो स्पीड ही बहुत ज्यादा होता है, और वेस्टेज जो थॉट्स के होते हैं वो तो खुद को भी पता नहीं पड़ता है, इतना वेस्टेज होता है
0: जी।
1: तो जब इतना सारा क्लाउडेड हो जाता है ना मन और बुद्धि का जो स्पेस है वो, तो उसके कारण वो ज्यादा लंबे समय तक एक बात पर केंद्रित अपने मन बुद्धि को नहीं कर सकता है, क्योंकि पीछे से उसके थॉट्स उसको इंटरफेयर कराते रहते हैं
0: जी,
1: खुद के। तो जितना इंटरफेरेंस ज्यादा होगा, हर एक बात से उसको कुछ और याद आता है, तो डिस्ट्रैक्ट होता जाता है, तो नेचुरली उसका अटेंशन स्पैन कम होगा
0: जी,
1: फोकस नहीं रहेगा, ऐसा मैं समझती हूँ। क्योंकि बाहर के तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस है, लेकिन हमको उसको यूज करना है। जितने भी साइंस ने हमको साधन दिए हैं वो सब यूज करने के लिए दिए हैं
0: जी,
1: तो हम उस पे दोष न डाल के अपने ऊपर अटेंशन ज्यादा दे कि मेरी जो मन की स्थिति है वो ये सब यूज करते समय कैसी है
0: जी,
1: और उस पर अगर हम ध्यान दे करके अपने आप में थोड़ा एनर्जाइज अपने को करेंगे और बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि मनुष्य की बुद्धि इतनी वंडरफुल बनी हुई है कि वो जल्दी से बना अपना फोकस तोड़ सके, पर आज ऐसा हो गया है
0: जी। तो ये सब यूज करते हुए हम कैसे मन को एकाग्र रखें, और आपने कहा कि यूज करना भी है, इन्फॉर्मेशंस भी हमें चाहिए क्योंकि कंपटीशन का जमाना है, तो अगर इन्फॉर्मेशंस या नॉलेज नहीं होगा तो हम शायद कम्पीट नहीं कर पाएंगे
1: जी। सही, प्रैक्टिकल फील्ड में देखो तो ये सब बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल उसके बिना जो कई सिस्टम्स है वो आउटडेटेड हो गए हैं। तो इसलिए जिसकी प्रायोरिटी होती है तो उसको तो हेल्प लेना ही पड़ेगा व्यक्ति को। लेकिन अगर आपको अपना फोकस मेंटेन करना है तो आपको एक प्रैक्टिस तो मिनिमम करनी पड़ेगी
0: जी,
1: कि जैसे फोकस किसको कहा जाता है, डिक्शनरी मीनिंग भी अगर आप देखो ना, जहां पर सारी जो लाइट की रेज है ना वो एक पॉइंट पे मिलती है,
0: एक केंद्र पे,
1: केंद्र बिंदु बोला जाता है उसको
0: जी,
1: उसको फोकस कहते हैं। ऐसे ही अगर हम एक प्रैक्टिस करें कि कोई भी कार्य करने से पहले, भले वो ड्राइविंग हो या अपने लैपटॉप के सामने हो या व्यक्तियों के साथ कम्युनिकेशन हो, आप जो भी नई परिस्थिति में जा रहे हो उस समय आप हर चीज को वापस समेटते जाओ और वो केंद्र बिंदु पर आप अपने आप को ध्यान केंद्रित करो।
0: ओके, तो
1: क्योंकि जैसे टेलीविजन होता है ना, टेलीविजन आप ऑफ करो तो क्या होता है पता है, पूरी लाइट ऐसे पॉइंट पे आके फिर ब्लैकआउट हो जाता है।
0: जी जी राइट।
1: और जब टीवी चालू भी होता है तो हमको नहीं मालूम पड़ता, लेकिन एक पॉइंट से ही पूरा पिक्चर एनलार्ज होता है। वही सिस्टम हमारे अंदर है। तो क्योंकि हम उसको मिस कर रहे हैं, आजकल कई लोगों को वो टेलीविजन की टेक्निक भी भूल गए हैं
0: जी,
1: उनको लगता है कि हाँ टीवी चालू हो गया, टीवी बंद हो गया। बट ये टेक्निक होती है, कोई भी चीज में कुछ जब विजन पे आती है तो वो पॉइंट से इमर्ज होती है
0: जी।
1: ऐसे ही अगर हम प्रैक्टिस करें कि हम पहले जहां से भी निकले वहां से सारे थॉट्स को मर्ज करके एक केंद्र बिंदु पर ला ले, क्या सीखा हमने उससे
0: जी,
1: और फिर थोड़ा उसको डीप साइलेंस में ले जाए कुछ सेकेंड्स के लिए और फिर दूसरी परिस्थिति की ओर जाए, और ये रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपका अटेंशन स्पैन जरूर बढ़ेगा और आपको जो डिस्ट्रैक्शंस है वो कम महसूस होंगे
0: जी। कई बार जैसे मेडिटेशन में हम बैठते हैं तो वही थॉट्स चलते हैं जो हमने देखा, जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया, तो फिर हम फोकस नहीं रह
1: पाते।
0: तो ये धीरे धीरे होगा करते करते,
1: ये चीज करना जरूरी है। जब भी मेडिटेशन में भी बैठो, ये तो हम एक्टिविटी में बैठने की बात कर रहे थे, पर अगर प्योरली मेडिटेशन में भी बैठते हो तो यू कैन नॉट जस्ट स्टार्ट मेडिटेटिंग, आपको पहले हर चीज बाहर की मर्ज करके एक पॉइंट पर आपको आ जाना है, भले वो पॉइंट ऑफ लाइट हो, पॉइंट जहां पर सारी रेज मिल गई है, सब कुछ आपकी बाहर की दुनिया समेट ली है, आपको उस पे आना पड़ेगा और ऐसी पोजीशन पे आप उसमें आएंगे कि वो सेकंड आप सब कुछ भूल जाएंगे।
0: ओके, तो वो क्या टेक्निक से कैसे समेटेंगे अगर मन बार बार बाहर की ओर जा ही रहा है या फिर कुछ और बातें मन में चल रही है, तो क्या बात करेंगे हम मन से?
1: तो जब आप मेडिटेशन में बैठे या एक एक्टिविटी पूरी की तो आप पहले उस एक्टिविटी को रिवाइज करके कि भाई मैंने ये किया, मैं वहां गई थी, मैं वहां मिली, मैंने ये ब्रेकफास्ट खाया, मैंने ये कार्य किया, उस सब को याद करते हुए पूरा जैसे अंदर ले रहे हैं आप कि अब मैं थोड़े समय के लिए इससे भी फ्री हो रही हूँ, ब्रेकफास्ट जो खाया उससे भी फ्री हो रही हूँ, ये भाई से मिली वो उससे भी फ्री हो रही हूँ, ये कार्य कर लिया उससे भी फ्री हो रही हूँ, अब मैं उनमें नहीं हूँ। अपने मन को कहना है, अपने को समझाएं कि अब मैं उन सब में नहीं हूँ, मैं सबसे फ्री हो गई हूँ।
0: मन को हम ऐसे
1: समझाएं उसको, इसको वो मार्ग दिखाएं कि ये सब अभी अगर इसके बारे में सोचोगे तो आप डाइवर्ट हो जाओगे,
0: तो प्रेजेंट में आ जाओगे।
1: हाँ, तो जब प्रेजेंट पल में कैसे आएंगे, जब ये सारे पास्ट की चीजों को आप मर्ज कर देंगे, जैसे समझो कपड़ों का फैलावा है कमरे में, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जब आपका कोई फ्रेंड आ रहा हो या कोई ऐसा कुछ भी कार्य नेक्स्ट इस कमरे में होने वाला हो, तो आप सारे कपड़े समेट कर घड़ी करके आप कबाट के अंदर रख देंगे ना
0: जी,
1: पहले वो क्लियर करेंगे ना, तभी आप दूसरे को एंटरटेन करेंगे
0: जी
1: में, तो आपको वो विस्तार डिस्टर्ब करेगा
0: जी,
1: और आपको लगेगा कि सामने वाला आएगा वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा
0: जी,
1: तो आप पहले उसको समेट लेते हैं। ऐसे ही हर बात को, जहां से भी आप आए, जिसके लिए भी आए, एक सेकंड के लिए सब समेट लो कि अब उसका कोई कनेक्शन नहीं है जो मैंने किया पास्ट का, कितना भी इम्पोर्टेंट कार्य क्यों ना हो, पर अब वो नहीं है। अब मैं प्रेजेंट में कहाँ पर हूँ और मुझे इसी के बारे में सोचना है। तो सबसे पहले अंदर सब समेट कर मैं केवल एक पॉइंट हूँ
0: जी,
1: हम अपने आप में ही फोकस है। मैं पॉइंट हूँ, मैं जहां भी अपनी लाइट को स्प्रेड करूंगी ना, एनर्जी को भेजूंगी, वहां का कार्य होगा
0: जी।
1: तो अगर मैंने उसमें भी 10 जगह एनर्जी भेजी तो फिर कितना वेस्ट हो जाएगा एनर्जी
0: जी,
1: क्योंकि वो दूसरे 9 कार्य तो होने नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: अभी एक ही कार्य होना है तो फिर वो एक ही कार्य के लिए मुझे एनर्जी भेजनी है, तो एकदम फ्रेश आउटलुक भी मिलता है।
0: ओके, तो कई बार हम अपने आप के साथ भी युद्ध करते रहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट में आ जाओ, प्रेजेंट में आ जाओ, बट हम आ भी नहीं पाते हैं।
1: प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करेंगे वो चीज का तो आप वापस अपनी उस स्थिति पर आ सकते हो, नामुमकिन नहीं है।
0: तो ये लाइफ के हर सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल है,
1: हर सिचुएशन के लिए। और दूसरा, रात को सोने से पहले,
0: ओके,
1: ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, रात को सोने से पहले भी जैसे आप पैर धुलाई करते हो, हाथ धुलाई करते हो, ब्रश करते हो, बाकी सब चीजें रख देते हो
0: जी,
1: हाँ, फिर यू चेंज योर क्लोथ्स, ये सब आप करते हो ना प्रक्रिया
0: जी।
1: क्यों करते हो? क्योंकि आपको एक माइंडसेट तैयार करना है कि अभी मेरा दिन पूरा हो गया, अब मुझे सोना है। कई लोग प्रेयर करते हैं ताकि उनको लगता है कि बाय द एंड ऑफ द डे ये सबसे अच्छा काम करेगा, कि मेरे को पूरे दिन के जो प्रभाव से मुक्त करेगा, इसलिए वो प्रेयर करते हैं। ग्रैटिट्यूड के लिए कई लोग करते हैं रात को सोने से पहले, ये सब फिजिकल एक्टिविटी है।
0: ओके,
1: वैसे ही आपके सारे दिन की दिनचर्या को आपको अंदर समेट लेना है, ये हम भूल गए हैं। भूली हुई चीज जब वापस करने को कोई बोले तो तकलीफ होती है, बार बार फिजिकल चीजें ही याद आती है
0: जी,
1: और अपने को लगता है कि फिर टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन जो मेंटली हम करते हैं उसके लिए बहुत कम टाइम चाहिए। फिजिकली जो करते हैं, नहीं, रात को सोने से पहले की बात है, कार्य कर जो फिजिकली करना है उसमें टाइम लगेगा, जैसे ब्रश करना है या हाथ पैर धोने हैं या कपड़े बदलने हैं, लेकिन मेंटली जो आपको एक्टिविटी करनी है सब कुछ समेटने के लिए सुबह से लेकर रात तक, वो तो कुछ सेकंड में भी हो सकता है
0: जी,
1: इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो रात को सोने से पहले भी ये पॉइंट तक वापस समेट लो, ये बहुत जरूरी
0: जी।
1: माना हमेशा समझो कि हर चीज एक स्पार्क से शुरू होती है, हर चीज
0: स्पार्क से शुरू होती है,
1: स्पार्क से शुरू होती है, स्पार्क पे ही एंड होती है। तो हम अपने लिए ये चीज भूल गए।
0: राइट जी, तो बच्चों की बात पूछना चाहूंगी कि जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो बार बार मन भटकता है, तो वो स्पार्क कैसे लाएं कि हम फिर से वापस पढ़ाई पे आए
1: जी? तो उनको एक सेंटेंस अपने लिए निर्धारित करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को
0: जी,
1: और वो सेंटेंस उनको थोड़ी थोड़ी देर के बाद वापस रिपीट करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम अ वेरी स्टूडियस पर्सन
0: जी,
1: या माय इंटेलेक्ट इज रेडी टू ग्रास्प, जो भी सेंटेंस है
0: जी,
1: मेरी बुद्धि पढ़ाई को ग्रहण करने के लिए तैयार है, बस इतना बोलना है मन में। लेकिन ये पढ़ाई के बीच में 10 बार बोलना है
0: जी, पढ़ाई के बीच में
1: 10 बार। उसका इम्प्रेशन बुद्धि पे पड़ता है और बुद्धि उस बात को ग्रास्प करती है।
0: अगर मैं पढ़ाई में सही नहीं हूँ तो भी ओके,
1: तो भी धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो बुद्धि आपको मदद कर रही है और मन भी साथ दे रहा है कि आप वो अटेंशन स्पैन को बढ़ा सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए भी। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो लेकिन कुछ और इंटरेस्टिंग आपको याद आ रहा है जो आपके लिए और इंटरेस्टिंग है, या समझो आपको बार बार ये आ रहा है पर ये किस काम की पढ़ाई है, मैं कर तो रही हूँ, एग्जाम ही देना है बस, और कुछ नहीं होगा इसका, जितना उसके लिए नेगेटिव वेस्ट थॉट्स करेंगे तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्ट होगा और कहीं और जाएगा। तो आपने जब कहा कि नहीं, मेरी बुद्धि अभी ग्रास्प करने के लिए तैयार है, तो वो बुद्धि कैच कर लेती है और आपको मदद करती है कि जो कर रहे हैं उसी में ग्रास्पिंग आपका बढ़ जाता है। तो आपकी मन और बुद्धि ही आपका पूरा एनर्जी जो है, कहाँ पर आपको ले जाना है, गाइड करना है, डायरेक्ट करना है, वो मदद करती है। लेकिन आज हम यही दो बातों को बहुत जल्दी भूल गए हैं, क्योंकि हमारी जो हैबिट्स है, हमारा जो नेचर है, वो ही जो बन गया है वो ही डिस्ट्रैक्ट कर लेता है
0: जी,
1: वो ही डिस्ट्रैक्ट करता है, है कि नहीं
0: जी। तो जैसे आप हैबिट्स की बात कर रहे हैं और सोमान की बात भी आपने कही कि आप स्टूडियस हो, ये आप बार बार प्रैक्टिस करो, तो आपकी बुद्धि भी स्वीकार करने लगेगी और शायद यूनिवर्स भी साथ देता है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या दिन में कई बार हम ओवरथिंकिंग भी कर लेते हैं, तो ये भी हमें डिस्ट्रैक्ट करती है ओवरथिंकिंग। मान लीजिए किसने कुछ कहा तो हम अपने आप को ही कोसते रहते हैं। तो जैसे स्टूडेंट्स के लिए भी कहना चाहेंगे कि हम अपने आप से तो बोल रहे हैं कि हम स्टूडियस हैं, लेकिन टीचर ने ये कह दिया कि तुम तो गधे हो, तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, तो फिर ये ओवर थिंकिंग करने लगता है
1: जी। और ओवर थिंकिंग जो करता है उसका एजुकेशन पे असर भी पड़ता है और उसकी इंटरेस्ट कम हो जाती है
0: जी।
1: तो इतना वीक हम ना बन जाएं जो हम अपने आगे के रास्ते को ही ब्लॉक करें, उसके लिए आपको पहले से ही इसके लिए अलर्ट रहना पड़ेगा कि लोग अपना ओपिनियन देते रहेंगे। और मुझे बहुत छोटेपन से ही इसका अनुभव मिलता रहेगा, मेरे पापा, मेरी माँ, मेरी बड़ी बहन, फिर मेरी फ्रेंड, मेरे टीचर, सब अपना अपना ओपिनियन देंगे, है ना। और पहले क्या होता है, हम बहुत फ्रेजाइल होते हैं, हम हर एक पे ट्रस्ट रखते हैं, हमको लगता है हर एक मेरे लिए है, यू नो, और सबके ओपिनियंस फिर धीरे धीरे घर कर जाते हैं
0: जी।
1: तो उसमें आप अपनी आइडेंटिटी को लूज करने का पूरा चांस अपने आप को दे देते हो
0: जी।
1: भले सब ओपिनियन दे, आपको केवल अपने ऊपर फोकस करके देखना है कि सचमुच ये मेरी गलती है या इस प्रकार से भी चीज की जाती है, या इनका ओपिनियन है पर मुझे अभी भी इस बात का जो मैंने किया उस पर पूरा कॉन्फिडेंस, मुझे ऐसा अंदर से लग रहा है कि मैंने जो बोला वो बिल्कुल राइट है, तो चेक करने का। अगर आपको लगे कि नहीं ओपिनियन बेटर है मेरे विचारों से, तो वो ओपिनियन स्वीकार करे और आगे बढ़े। पर हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है, समटाइम्स आपका कॉन्फिडेंस भी काम कर जाता है, है ना। तो इसीलिए आपको बहुत अनबायस्ड रह करके डिसीशंस लेने होंगे। चेक करो क्या मेरी ये मिस्टेक हुई है, मुझे इस मिस्टेक को करेक्ट करना है, मेरे से ये मिस्टेक नहीं हुई है लेकिन सामने वाले का ओपिनियन है, तो मुझे इसी कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ना है। है तो आपकी जीवन
0: जी,
1: है तो आपकी आइडेंटिटी बनाने की बात, है ना। तो वो आपको ही डिसीशन अल्टीमेट लेना पड़ेगा
0: जी। तो ये
1: फिर आपका ओवर थिंकिंग नहीं होगा। अगर छोटेपन से ये गाइडेंस दी जाए
0: जी,
1: है ना
0: जी।
1: जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गिर गया तो हम जमीन को ऐसे मारते हैं, कहते देखा इसकी भूल है, इसकी भूल है, तो क्या होता है कि वो व्यक्ति फिर दूसरों को दोष देने लगता है, वो बच्चा आगे चल के भी
0: जी।
1: लेकिन अगर उसको समझाया जाए कि कोई बात नहीं, देखो तो दूसरी बार इधर ध्यान से चलना तो नहीं होगा, वो भी पॉजिटिवली बोल सकते हैं ना
0: जी।
1: तो फिर वो उस रीति से समझेगा कि मुझे चलते समय ये ध्यान रखना है। हाँ, लेकिन अगर हमने कहा अरे तुम गिर गए, अरे बहुत लगा क्या, हाँ चोट लगी, देखो मैं ऐसे कर, तो फिर वो पैम्परिंग से वो ज्यादा वीक हो जाएगा। तो ये अलग अलग तरीके हैं एक छोटे बच्चे को समझाने के लिए, और फिर वही संस्कार आगे चल करके बच्चा भी प्रदर्शित करता है। तो ओवर थिंकिंग तब होता है जब आपने कुछ रॉन्ग गाइडेंस दे दी और फिर वो उसी रीति से चलता रहा, तो आगे चल के वो लोगों के बारे में, परिस्थितियों के बारे में हमेशा ओवरथिंक करेगा, क्योंकि वो खुद अपनी एनालिसिस नहीं करता है
0: जी। तो आजकल हम मल्टीटास्किंग के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो क्या ये प्रोडक्टिव होता है या इससे हमारी जो कंसंट्रेशन है वो कम होता है?
1: नहीं, मल्टीटास्किंग से कंसंट्रेशन कम होने का कोई मार्जिन वैसे नहीं है, पर अगर आपका ढंग जो है वो हर चीज को अधूरा छोड़ के दूसरे पर जाना, या समझो आपका डेलीगेशन ठीक नहीं है, आपके डिसीशन ठीक नहीं है, तो नेचुरली फिर जो होगा उसके रिपरकेशन में, उसके लिए आपको ओवरथिंकिंग पे ले जा सकता है।
0: मल्टीटास्किंग को आप कैसे देखते हैं? मान लीजिए मैं गाना सुनते सुनते खाना खा रही हूँ, या फिर मैं कुछ और करते हुए अपना ऑफिस का काम कर रही हूँ, वो मल्टीटास्किंग होता है साथ साथ में दो चार चीज़ें करने में, या फिर कैसे मल्टीटास्किंग करते हुए भी फोकस रह सकते हैं?
1: द रियल सेंस ऑफ मल्टीटास्किंग माना कि व्यक्ति ऑफिस भी संभाल रहा है, घर के बच्चों का भी देख रहा है, और साथ में कोई सोशल वर्क भी कर रहा है, साथ में कोई डोनेशन का कार्य भी कर रहा है,
0: मतलब बैलेंस करके चल।
1: हाँ, मल्टीटास्किंग वो नहीं है कि मैं गीत सुनते हुए अपना स्टडी कर रही हूँ। दैट इज नॉट कॉल्ड मल्टीटास्किंग। दैट इज योर इंटरेस्ट कि आपको कुछ आवाज चाहिए ऐसी जिससे आप कॉन्सेंट्रेट कर सको। वो अलग बात है, माना आप हॉबी और आपके टास्क को मिक्स कर रहे हैं टू मेक द एटमोस्फियर लाइट और व्हाटएवर।
0: जी,
1: है ना, कोई जोर जोर से बोल के पढ़ता है, वो मन में नहीं पढ़ पाता है क्योंकि उसको वही ज्यादा बोलना भी चलता है और पढ़ना भी हो रहा है, वॉकिंग भी हो रही है।
0: जी जी,
1: तो ऐसे भी लोग करते हैं, बट दैट इज नॉट मल्टीटास्क।
0: ओके,
1: दैट इज मिक्सिंग योर वेज एंड मीन्स ऑफ डूइंग थिंग्स विद वन एक्टिविटी। बाकी मल्टीटास्किंग माना कि एक व्यक्ति बहुत सारे कार्य बाहर अंदर उस सामाजिक रूप से कर रहा है
0: एंड ही फाइंड्स टाइम, एक टाइम में एक ही चीज करना है, मतलब ऑफिस के टाइम में ऑफिस का काम
1: depends,
0: है
1: डिपेंड्स। अगर आप एफिशिएंट हो, आप ओवर थिंकिंग में नहीं जा रहे हो, आप इफेक्टिव हो हर कार्य के लिए, तो व्हाई नॉट।
0: ओके,
1: आपके टैलेंट पर है।
0: जी, तो ये चेक करना है कि आप कैसे कर रहे हो।
1: पोटेंशियल तो हर एक में होता है, आप कई बार पोटेंशियल यूज ही नहीं करते, कई बार आपको अवेयरनेस ही नहीं है अपने पोटेंशियल के बारे में।
0: तो कैसे चेक करें कि हमारे अंदर क्या पोटेंशियल्स हैं?
1: ऐसी परिस्थितियां जीवन में आती है जब आपको वो अवेयरनेस आती है।
0: ओके,
1: आती है तो उस समय अगर आप अवेयर हो कि इस परिस्थिति ने मेरे पोटेंशियल्स को बाहर निकाले, तो इट इज गुड नो इफ यू कैन एक्नॉलेज। बाकी तो परिस्थितियां लोगों को आती ही है,
0: वो अनुभव
1: फिर अगर, अगर थोड़ी नेगेटिव टाइप की परिस्थिति भी आती है कभी कभी, कभी पॉजिटिव भी आती है, परिस्थिति परिस्थिति है
0: जी,
1: उसमें आपने कैसे अपने पोटेंशियल्स को यूज किया वो आपके ऊपर है।
0: जी, जब मन भारी या दुखी हो तब फोकस को कैसे वापस लाया जाए?
1: जी, मन भारी या दुखी हो तो उस समय पहले तो उसको लाइट करना पड़ता है। लाइट, क्योंकि आप अपना कार्य अपनी जिम्मेवारी नहीं छोड़ सकते हैं।
0: जी,
1: और छोड़ना भी नहीं चाहिए। अगर एक बार छोड़ने की आदत पड़ गई ना, तो छोटी छोटी बातों में आप छोड़ते रहोगे।
0: जी,
1: फिर आप कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के योग्य नहीं बन सकते। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको रखनी पड़ेगी, लेकिन उसके पहले जो चीज आपको लाइट करती है, जैसे आपको कोई संगीत है, फ्लूट प्लेइंग है, या आपको कोई गार्डन में जाके रिलैक्स होना अच्छा लगता है, या कोई वर्कआउट कर लेता है, कोई वॉक पे चला जाता है, कईयों के कई मेथड्स होते हैं, तो जो हर एक को सूट हो, अगर वो थोड़ा अपने को लाइट कर देना, तो फिर अपनी जिम्मेवारी पे वापस आ सकते हैं। तो ये लाइट होने के समय में वो ओवर थिंकिंग को साथ में नहीं लेता है, बिकॉज उसकी जो आदत है ना कि मैं पार्क में जाता हूँ तब मेरा ओवर थिंकिंग नहीं होता है, देखा हुआ है, उसका अनुभव है, इसलिए अगर वो भारी हुआ तो वो सीधा पार्क में जाएगा।
0: जी,
1: और सचमुच ही वो चीज उसको मदद करती है लाइट वापस होने के लिए, माना वो थोड़े समय के लिए वो जगह से, वो सिचुएशन से निकल के एक ऐसी जगह जाता है जहां उसको अनुभव है अंदर कि वो लाइट रहता है। वो कर ऐसे करते जैसे हम लोग मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे जो बड़े हैं, दादियां हम जिनको बोलते हैं, तो एक दादी गुलजार जी है, तो उनको एक बार प्रश्न किया था किसी ने कि जब आपका मन भारी है, आपका मूड ऑफ है, और कोई क्लास के लिए आता है, तो क्या आप क्लास में जा पाओगे? तो दादी ने बोला, जाना तो है क्योंकि जिम्मेवारी है, लेकिन उसके पहले थोड़ा मेडिटेशन रूम में जाके अपने आप को हल्का कर, अच्छी बातें कहकर, भगवान से अच्छी बातें कर करके अपने को हल्का कर दो, गीत बजा दो, एक कमेंट्री बजा दो, भले वो बैठे जो आए हैं, वो उसकी चिंता मत करो, और जैसे आपको फील हो कि अभी हो गया है, आप जाओ वहाँ, बहुत ब्यूटीफुल क्लास हो जाए, उल्टा, यू नो, अ डिफरेंट एक्सपीरियंस,
0: क्योंकि आप अपने रोल को मना भी नहीं कर रहे हो,
1: नहीं,
0: और आप जा भी रहे हैं और भगवान से बात करके जाएंगे तो हेल्प तो मिलेगी।
1: हाँ जरूर, या आप साइलेंस में चले गए या आप बिल्कुल अपने को हल्का छोड़ दिया रिलैक्स करके मेडिटेशन रूम में और फिर जाओ तो आप एक नए व्यक्ति ही हो समझो पास्ट से।
0: बिल्कुल, तो ऐसे हर किसी के घर में एक छोटा सा मंदिर या फिर भगवान के फोटो जरूर होता है, तो आप उसके सामने जाकर के अपनी बात कह के जा सकते हैं। जी, तो अभी आपसे जानना चाहेंगे कि ध्यान की अवधि के बारे में कि क्या ज्यादा जरूरी है, लंबे समय तक ध्यान बनाए रखना या कम समय में गहराई से फोकस रहना।
1: ओके, शुरू तो कम समय से ही होता है और वो कम समय जैसे 5 मिनट या 10 मिनट में आपको कितना टाइम ध्यान लगा वो इम्पोर्टेंट है
0: जी,
1: है ना। तो वो प्रैक्टिस की अगर नोट की जाती है तो धीरे धीरे आप अपनी अवधि को बढ़ाते हुए देखते जाएंगे
0: जी।
1: लेकिन आपने नोट ही नहीं किया, आपने एक चार्ट मेंटेन ही नहीं किया तो एक संस्कार बन जाएगा कि भाई मेरे से तो लंबा टाइम का नहीं होता है, मेरा तो 10 ही मिनट इनफ है, मेरा तो 20 मिनट ही इनफ है। तो वो आपने क्या किया, आपने प्रगति के लिए चार्ट नहीं बनाया पर आपने अपना एक नेचर बना दिया, फिर आपको कंसंट्रेशन केवल 10 मिनट या 20 मिनट लगेगा, फिर कोई 1 घंटा बिठा देगा ना तो आपका नहीं होता। वी डोंट हैव टू क्रिएट अ पर्टिकुलर संस्कार, पर हमें चार्ट रख के अपनी अवधि को भी बढ़ाना है, अपने फोकस को भी बढ़ते हुए अनुभव करना है। दिस इज द मोस्ट सिस्टमैटिक वे, है ना।
0: ओके, आपको चेक करते हुए अपने आप को धीरे धीरे,
1: नॉट जस्ट मेकिंग अ नेचर के भाई हाँ मैंने देखा है मैं 10 मिनट बैठती हूँ ना तो मेरा ध्यान बहुत अच्छा होता है, तो ये नेचर बना दिया। योगी होता है या कोई भी व्यक्ति होता है, स्टूडेंट होता है, उसको कई बार पूरी रात पढ़ना पड़ता है
0: जी, राइट,
1: और कई बार दिन में 1 ही घंटा पढ़ना होता है। तो वो ऐसा नहीं कह सकता कि आज मैं पूरी रात नहीं पढ़ सकता हूँ, उसको पढ़ना होगा। तो वो एक ही प्रकार का संस्कार नहीं बनाता है,
0: फ्लेक्सिबिलिटी
1: भी लाता है और रोज से प्रैक्टिस से अपनी अवधि भी बढ़ाता है कभी कभी और देखता है कि कितना फोकस रहा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी आपसे जानना चाहेंगे कि दीदी जैसे हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, तो ये देखते देखते क्या हमारे अटेंशन स्पैन पर भी असर पड़ता है कि हम भी जो भी काम करते हैं उसमें हम फोकस नहीं रह पाते, 10 मिनट भी नहीं या 5 मिनट के बाद हमारा ध्यान भटक जाता है।
1: थोड़े समय पहले मैंने देखा था कि वेस्ट के टीवी में बहुत जल्दी एड्स और आती है और एकदम फास्ट फास्ट मूव होती है, उतनी स्पीड में इंडिया में नहीं होता था। इंडिया में आप पूरा एड लाइक देख पाते थे अच्छी तरह से, जबकि वेस्टर्न टीवी में बिल्कुल फास्ट होता था
0: जी।
1: तो मुझे भी सोच चलती थी कि ये लोग इतना फास्ट क्यों करते हैं। तो मुझे एक जगह पता चला कि क्योंकि वहाँ उनकी दिनचर्या भी इतनी फास्ट है, इतनी फास्ट लाइफ है उन लोगों की कि अब उनको लंबा स्लो सुनने को ही नहीं होता है, इसीलिए वो लोग ज्यादा इन्फॉर्मेशन फास्ट फास्ट फास्ट रीलों में देते हैं, ऐसा पता चला
0: जी।
1: और फिर यहाँ भी हम देखते हैं कि अभी थोड़ा फास्ट कर दिया है हर चीज और छोटे छोटे बनाते हैं। क्यों छोटे छोटे, अरे आजकल कोई लंबा देख नहीं पाता है, इसे छोटा ही बनाने का वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ओवरथिंकिंग का है
0: जी।
1: जितना हमारा ओवरथिंकिंग बढ़ता है ना तो नेचुरली अटेंशन स्पैन कम हो जाता है।
0: ओके, तो मूल कारण ओवरथिंकिंग।
1: हाँ जी, इट इज नॉट कि दिस इज मोर इफेक्टिव देन दैट। आप एक लेक्चर भी सुनो 1 घंटे का, बहुत इफेक्टिव होता है
0: जी।
1: और उसका ही एक छोटा रील देखो, वो भी इफेक्टिव रहता है।
0: हाँ, क्योंकि आजकल लोग दोनों एंजॉय देखते हैं।
1: यू कैन एंजॉय बोथ, पर कई लोग ऐसे हैं जो लंबा नहीं सुन सकते।
0: ये सबके लिए लागू नहीं होता।
1: हाँ, सबके लिए लागू नहीं होता। बाकी अगर आपका अटेंशन है, फोकस बराबर है, तो आप दोनों एंजॉय करें।
0: राइट जी,
1: इररिलेटिव ऑफ द स्पैन
0: जी,
1: है ना। जो भी है, आपका इंटरेस्ट बराबर होगा और आप हर चीज को बराबर सुनेंगे
0: जी। तो उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है और दीदी ने प्रैक्टिस की बात कही है।
1: हाँ,
0: तो जरूर आप उस प्रैक्टिस करते
1: प्रैक्टिस केवल नहीं, ओवरथिंकिंग नहीं हो।
0: हाँ, तो उसको चेक भी करना चाहिए हमको।
1: हाँ, ओवरथिंकिंग जिसमें कम होगा ना वो दोनों एंजॉय करेगा
0: जी।
1: जिसमें ओवरथिंकिंग ज्यादा है ना तो पेशेंस कम है।
0: ओके, तो पेशेंस का बहुत बड़ा रोल है फोकस रहने में
1: जी।
0: तो आजकल धैर्यता ज्यादा कम हो रही है,
1: धीरज कम हो रहा है,
0: धीरज कम हो रहा है तो,
1: और जल्दी रिजल्ट ओरिएंटेड है, बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए। इसे कोई गोल गोल बात भी करेगा ना वो भी नहीं पसंद करता है, डायरेक्ट सॉल्यूशन बताओ ऐसे कहते हैं,
0: डायरेक्ट बात करो,
1: घुमा फिरा के मत करो, क्योंकि लोग में धीरज ही नहीं है सुनने
0: जी।
1: अभी कोई कह रहा था
0: जी
1: कि होम्योपैथी दवा तो बहुत अच्छी है लेकिन स्लो है, माना पहले वो सारी दूसरी दवाओं का असर बंद करता है फिर उसकी असर होती है तो लोग तंग हो जाते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई इसके असर ही नहीं है बीमारी पर, ऐसे होता है,
0: होता है। तो अब हम शारीरिक बात करते हैं, क्या हमारी जो दिनचर्या है, स्लीप है, स्लीप साइकिल है, फूड है, एक्सरसाइज है, इसका भी एकाग्रता पर असर पड़ता है?
1: एक्टिविटी तो आप बहुत कर सकते हो, स्ट्रेंथ भी उतनी शरीर को दी गई है कि आप बहुत ज्यादा एक्टिविटी कर सकते हो, तो एक्टिविटी में भले कितना भी हो, हाँ उतना भी नहीं हो कि जो आपका स्ट्रेंथ ही नहीं है और फिर भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, वैसा नहीं, पर मैक्सिमम आपको जितना होता है आप कर सकते। अगेन जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है ना, आपकी एटीट्यूड्स है, उसमें आपके विचार है, आपके नेचर है, आपका वे ऑफ डूइंग थिंग्स है, ये जो सारी चीजें ना अगर वो बैलेंस्ड नहीं है ना उन एक्टिविटीज के साथ, तो उसमें आप देखेंगे कि आप एक्टिविटीज कर रहे हो लेकिन

0: यहाँ भी अगर आप धीरज से खाते हैं, बराबर च्यू करके खाते हैं, अच्छी जगह अच्छे वाइब्रेशन में खाते हैं,
1: टाइम पर
0: खाते हैं, अच्छी क्वालिटी वाला खाते हैं और जिसमें आपका मन भारी ना हो जाए ऐसा फूड खाते हैं, तो आपको मदद मिलेगी जरूर
1: जी। और लंबे समय तक हम बैठ करके काम करते हैं सिस्टम के सामने, तो उस समय हमारे ध्यान को कैसे हम बनाए रखें?
0: लंबे समय तक बैठने पर एक ही प्रॉब्लम है कि आपको एक पेन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बॉडी को एक ही सिचुएशन में रखना आजकल के नॉर्मल लोगों का करना बहुत डिफिकल्ट है। पहले हमारे संत करते थे, ऋषि मुनि करते थे, घंटों एक ही पोजीशन में बैठ के उनकी तपस्या होती थी और उनको कुछ नहीं होता था, ऐसे ही खड़े होके चले जाते थे। पर अभी जो हमारा बॉडी बना है ना, उसमें एक ही प्रकार का काफी समय तक रहना, जैसे खड़ा रहना, जैसे मॉल में हम देखते हैं ना कितने घंटे 12 घंटे व्यक्ति खड़ा ही रहता है
1: जी।
0: और अगर एक ही जगह खड़ा रहे तो क्या हालत होगी उसकी। ऐसे एक ही जगह सिस्टम के आप बैठे हो तो उसके लिए कहा जाता है कि आपको कभी खड़ा होना है, कभी पांव को हिलाना है, कभी हाथ को, कभी कमर ट्विस्टिंग करनी है, फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी है
1: जी।
0: ऐसे ही आपको कभी कोई प्लेजेंट म्यूजिक भी सुनना चाहिए या आप अच्छी बातें जो आपको रिलैक्स करती है, लाइट करती है, ऐसी अच्छी बातें भी आप देखो। मीन्स यू शुड फीड योर माइंड एट दैट टाइम विद वेरी पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव, वेरी एनर्जाइजिंग थॉट्स और एक्टिविटी। तो अगर ऐसा करते हैं तो आपका बैलेंस अच्छा रहेगा। बाकी तो डेफिनेटली एक ही पोजीशन में अगर आप बैठे हो तो आपका अटेंशन स्पैन कम होने वाला है,
1: तो बीच बीच में आपको
0: उठके या आप कोई एक्टिविटी दूसरी करो या आप कुछ फन एक्टिविटी अपने लिए करो, जिससे क्या होता है थोड़ी एक्सरसाइज भी करने की जरूरत है, तो आपका अटेंशन स्पैन अच्छा ही रहेगा
1: जी। जिस जगह पे हम काम करते हैं कई बार हमें डिस्ट्रैक्शंस का सामना करना पड़ता है, चाहे वो चीज वस्तु हो, जैसे आप मॉल की बात कह रहे थे तो वैरायटीज ऑफ कस्टमर्स आते हैं तो उनकी व्यवहार से भी हम कई बार परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमें तो स्माइल करनी है
0: जी।
1: और हम अपने साथ वालों के साथ रहना ही पड़ेगा
0: जी।
1: और मैनेजमेंट कैसा भी हो, हमें सैलरी की जरूरत है तो हमें उनकी भी बातें सुन करके काम करना है
0: जी।
1: तो कई बार व्यक्ति दुखी होने के बावजूद भी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है
0: जी।
1: और फिर धीरे धीरे धीरे धीरे आई थिंक वो डिस्ट्रैक्शन मोड पे चला जाता
0: है। हाँ हाँ।
1: तो उस एनवायरमेंट में रहते हुए भी, उस जगह में रहते हुए भी कैसे अपने आप को बचाए रखें?
0: राइट। इसमें ना अगर हम ऐसा देखें कि ये सब एक्टर्स है अलग अलग और वो अलग अपना अपना रोल बजा रहे हैं, इनको ये रोल दिया गया है, इनको ये रोल दिया गया है अलग अलग प्रकार का। हाँ, तो एक है जो एक्चुअली किसी कस्टमर को कन्विंस करने के लिए खड़ा ही नहीं है, वो कम बात करता है, दिखाता है कस्टमर को लेना है तो लेगा, नहीं तो चला जाएगा। एक जन है वो बहुत अच्छी तरह से इंटरेस्टिंग वे में बात करता है और इनको ना थोड़ा इंस्पायर करता है कि ये लेंगे, तो वो एक नहीं चार चीजें लेके जाता है। तो हर एक अपना रोल बजा रहा है, ऐसे नेचर वाइज भी हर एक का रोल होता है। अब समझो कि जो सुपीरियर है उसको ये भाई पसंद आता है जो बातें करके एक से चार करता है, तो फिर उसका व्यवहार वो शांत वाले के साथ कैसा होगा? थोड़ा कम होगा ना, कम होगा। ही विल नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट द अदर पर्सन। पर अगर वो समझे कि नहीं, ऐसे भी लोग जरूरी है मॉल में, सभी ऐसे होंगे तो नहीं, हर एक अलग अलग होते हैं एंड दे आर डूइंग देयर ड्यूटी बट इन डिफरेंट स्टाइल्स। ऐसे अगर हम अपनी सोच को बदले कि भाई इस व्यक्ति को गुस्सा क्यों आ रहा है, वो मेरा इंसल्ट क्यों कर रहे हैं, तो उसके पीछे उसके नेचर को समझे कि इसका नेचर क्या है, वो कौन सी चीज से डिस्टर्ब होता है, तो हम अगर समझेंगे तो हम कुछ अपने अंदर पॉजिटिव चेंज भी ला सकते हैं, नॉट टू प्लीज हिम बट टू मेक आवर सेल्व्स मोर इफेक्टिव
1: जी,
0: है ना।
1: तो वो सब देखते हुए भी हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है,
0: धीरे धीरे ऐसा
1: रिजल्ट आएगा क्योंकि
0: जब तक आपने एक्सेप्टेंस नहीं है ना, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा
1: जी। जी बिल्कुल। तो एक्सेप्ट करना बहुत
0: जरूरी है। भाई एवरीबडी इज प्लेइंग देयर ओन रोल,
1: भले वो
0: तो मैं किसी का रोल नहीं बदल सकती हूँ, लेकिन मैं अपने रोल को मोर इफेक्टिव बना सकती
1: हूँ और मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। मेरा नेचर
0: हाँ
1: अगर कि मैं मुझे बात करने नहीं आती है
0: जी, जी, कोई
1: जैसे
0: बात
1: वो
0: डोंट कंप्लेन।

0: कंपेयर,
1: किसी से कंपेयर भी करने की जरूरत नहीं, वो अपना रोल बजा रहा है, मुझे अपना रोल बजाना है।
0: अगर मैनेजर कंपेयर किया तो,
1: मैनेजर कंपेयर करे तो सुन लो, फिर देखो कि मैं कौन सी चेंज अपने में ला सकती हूँ, और अगर ला सकते हो तो वेरी गुड है बैलेंस करने के लिए।
0: अगर बाकी आप करने
1: की, अगर आपने फोर्सिबली अपने में चेंज लाया तो वो न कस्टमर पर इफेक्टिव होगा न आपको अच्छा लगेगा,
0: क्योंकि वो नेचुरल नेचर नहीं है।
1: नेचुरल चेंज अपने में आना चाहिए, तो भले कोई कुछ भी बोले पर अपने को फोर्स नहीं करना है अपने ऊपर, है ना। अगेन फोर्स करेंगे तो फिर आपका विचार बदलता रहेगा अंदर, तो सामने जो आ रहे हैं उनसे डील करने में आपकी जो खुलापन होता है, ओपन माइंडनेस होती है, वो नहीं होगा, वो डिस्टर्ब करेगा वातावरण को और भी।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अभी आपसे जानना चाहेंगे कि जब आसपास के लोग डिस्टर्ब करते हैं तो शांत रहकर काम कैसे करें, घर में भी, घर में मान लीजिए सब मेंबर्स के साथ हमारा नहीं बनता है कई बार, क्योंकि विचार अलग अलग होते हैं, तो कैसे शांत रखें अपने आप को और काम भी करें।
1: देखिए, शांत रहना ये चुप रहना अलग होता है।
0: ओके जी।
1: कोई चुप हो जाते हैं
0: लेकिन अंदर चलता रहता है चीज़ें।
1: चुप हो जाते हैं और कोई भी बात करने को इग्नोर करते हैं। ज्यादा टाइम बाहर चले जाएंगे जब वो व्यक्ति होता है जिसके साथ नहीं जमता ऐसे, तो वो थोड़ा आर्टिफिशियल हो जाता है और वो हो सकता है वाइब्रेशन के कारण और भी प्रॉब्लम बढ़ जाए। तो आपको ये देखना है कि जितना उसका फील्ड है उतना मेरा भी फील्ड है और दूसरे का भी फील्ड है, पर ये फील्ड में हमको कैसे रहना है, है ना। तो अगर उसने गुस्सा किया और मैं भी गुस्सा कर रही हूँ और बार बार ये चीज हो रही है, तो वातावरण में कौन से इमोशन फैलेंगे, नेगेटिव, है ना, तो दुख का वातावरण बढ़ेगा। तो ऐसा करना है कि जो लोग पॉजिटिव है घर में वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा दे
0: जी।
1: सामने वाले को चेंज करने की एक्सपेक्टेशन में ना जिए कि इसका गुस्सा कब कम होगा तब घर में शांति होगी, नहीं, आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाते जाओ और जब बोलना ही है तब बोलो, बैलेंस से हर कार्य करो
0: जी,
1: है ना। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे सामने वाले का गुस्सा भी कम होता जा रहा है। इसी को मेडिटेशन भी कहा जाता है। मेडिटेशन माना अपने माइंड के लेवल से आप कार्य कर रहे हो, केवल हाथ से नहीं, केवल मुख से नहीं, लेकिन माइंड के लेवल को भी आप इसमें ट्रेन कर रहे हो कि जो मन है वो दूसरे तीसरे चौथे डिस्ट्रैक्टिव विचारों में न जाए, ऊपर अटेंशन में रख रहे हो और उसको एनर्जी को आप मोबिलाइज कर रहे हो और आप उसमें भी एक अच्छा विचार रख करके कर्म कर रहे हो, जिसको हम कर्म योगी स्टेज बोलते हैं।
0: तो ये अटेंशन सदैव रख सकते हैं हम अपने ऊपर?
1: नहीं, धीरे धीरे स्टार्ट होता है,
0: धीरे धीरे
1: धीरे धीरे स्टार्ट होता है, कोई भी चीज ABCD से ही होता है। तो ये धीरे धीरे स्टार्ट होता है।
0: जैसे 24 घंटा हम अपने ऊपर अटेंशन रख सकते हैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए?
1: मे बी नॉट, पर जितना भी आप कर सकते हो ना तो उतना भी थोड़ा बहुत रिजल्ट तो जरूर आएगा
0: जी,
1: है ना। और कभी कभी ना नेचुरल परिस्थितियां भी रिजल्ट को चेंज कर देती है। कई बार उसी व्यक्ति का इतना जोरदार ऐसी परिस्थिति आती है कि वो व्यक्ति एकदम रियलाइज करने लगता है, पछतावा करने लगता है और अपने आप को बदल देता है। आपने भले खाली एनर्जाइज किया पॉजिटिविटी को, पर वो परिस्थिति ऐसी आ गई जो वो व्यक्ति चेंज हो जाता है। तो कोई ना कोई रीति से रिजल्ट जरूर आती है
0: जी।
1: जरूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज यू एनर्जाइज्ड पॉजिटिवली कि सामने वाला बदल गया, नहीं, अलग अलग रीति से,
0: क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, मानसिक शांति या फिर डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए।
1: और आपने अपने घर के लिए भी किया ना,
0: घर के लिए भी किया,
1: ऐसा थोड़ी एक ही व्यक्ति को टारगेट करके करते हो, पूरे घर के लिए भी किया, तो आपका कंट्रीब्यूशन तो सदा रहेगा ही रहेगा।
0: राइट।
1: उस व्यक्ति का जब भी चेंज होना होगा, जैसे भी होना होगा, वो हो जाएगा। पर नेगेटिव के साथ नेगेटिव नहीं बनना है अपने
0: जी,
1: तो वो घर को पॉजिटिव नहीं बनाएगा, इतना तो अटेंशन दे ही सकते।
0: तो
1: माना अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ेगा बार बार कि नहीं मुझे अपना रोल बजाना है, मुझे अपना रोल बजाना है, और अगर हो सकता है उस समय मैं शांत रहूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस व्यक्ति का सुन रही हूं या मैं उस व्यक्ति को गलत रीति से मान दे रही हूं, नहीं, पर उस समय मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ बोलने की जरूरत है। इट्स योर ओन डिसीजन, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनीबडी एल्स, समझे ना।
0: जब आपको लगता है कि बोलने से फायदा भी नहीं है और बात बढ़ेगी भी तो नहीं बोलना।
1: जी जी
0: ओके। तो कई बार हम गलत जगह पे भी ना कह देते हैं डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए, तो क्या ये सही है या कहाँ पे नो बोलना है, कैसे पता करें हम?
1: अभी क्या है कि बहुत ज्यादा नो भी तो कोई सुन नहीं सकता है, है ना। तो नो की जगह अगर आपको दूसरा कोई मेथड आता है, कोई दूसरे रास्ता आता है, तो आप वो उनको पूछ सकते, राय ले सकते कि मैं इस रीति से करूं या मैं ये कार्य करूं इसकी जगह, आप ऐसा ऑप्शन दो
0: जी।
1: तो एटलीस्ट वो व्यक्ति ना तो नहीं सुनेगा। कभी कभार कोई चीज के लिए आपको ना बोलना पड़ेगा तो आप सॉरी बोल के बोलेंगे, लेकिन हमेशा ना बोलेंगे वो कोई एक्सेप्ट नहीं करता है
0: जी।
1: तो उसको थोड़ा टर्न करके, एक ऑप्शन दे करके आप बोलो तो बेटर रहता है
0: जी।
1: बाकी ना बोलना कोई गलत बात नहीं है।
0: जब आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे या वो करने से ज्यादा डिस्टर्ब होंगे तो तब आप
1: गलत बात बिल्कुल नहीं है, तब कभी ना बोलना भी सीखना पड़ता।
0: राइट। और क्या बीच बीच में जब हम छोटे छोटे ब्रेक्स लेते हैं तो हम ज्यादा फोकस रहता है?
1: छोटे छोटे ब्रेक्स माना किस प्रकार?
0: हम
1: चाय पीने जाएंगे ऐसे?
0: हाँ, चाय पीने जाएंगे या फिर घर का काम बहुत ज्यादा है एक साथ कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, थोड़ा बैठ जाए अपने साथ बैठे, ऐसे छोटे छोटे ब्रेक्स लेना चाहिए?
1: बहुत ज्यादा नहीं पर लेना जरूरी है, बहुत ज्यादा भी नहीं, क्योंकि आपके करने की अवधि इतनी लंबी हो जाएगी ना
0: जी,
1: तो हो सकता है आपका कार्य ही पूरा ना हो, पर ब्रेक्स लेना जरूरी है,
0: पॉज होना
1: जरूरी है।
0: ओके।
1: कभी बॉडी को भी रिलैक्स करना बहुत जरूरी होता है, ओवरडू कोई भी चीज को कभी नहीं करना चाहिए
0: जी।
1: जैसे कोई समझो कोई मंदिर पे जा रहा है और मंदिर पर चढ़ने के लिए लगभग 700 सीढ़ी है, तो वो 100 सीढ़ी चढ़ के 2 मिनट अगर बैठेगा रिलैक्स होने के लिए तो वो कोई भगवान नाराज नहीं हो जाएगा? फिर वो एनर्जी इकट्ठा करता है और 150 सीढ़ी चढ़ जाता है
0: जी।
1: तो ब्रेक किस लिए आप ले रहे हैं?
0: ताकि आप थोड़ा और फास्ट मूव कर सको
1: और अपने को एनर्जाइज कर सको
0: जी।
1: बाकी जो ब्रेक लेता है बार बार और फिर थोड़े ही पास में आके कहता अब मैं मंदिर में तो नहीं जा सकता हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, तो उसने क्या किया, ब्रेक नहीं ली लेकिन वहां भी अपनी एनर्जी को यूज की
0: जी।
1: ब्रेक लेना माना एनर्जी को कंजर्व करना ताकि आगे के लिए आप एड कर सको
0: जी,
1: तो ब्रेक अच्छी है
0: जी। बिल्कुल। और अभी तो वक्त हो गया है कि यहाँ से हम विदा लें आपसे, लेकिन जाते जाते आपसे पूछना चाहेंगे एक दो क्वेश्चंस कि बार बार आजकल हम मोबाइल चेक करते हैं नोटिफिकेशंस और ये सब, तो प्रैक्टिकली कैसे हम बदल सकते हैं इस आदत को?
1: देखिए उधर आता है मोबाइल में, डू यू वांट टू अलाउ नोटिफिकेशन और नॉट, तो अगर वो आता है आपको नहीं चाहिए तो उसी समय ना बोल दो, है कि नहीं
0: जी।
1: आप अलाउ भी करते हो और फिर आप नोटिफिकेशंस को कैंसिल करने में टाइम गवाते हो, है कि नहीं
0: जी।
1: तो इतना तो पहला डिसीजन वो पूछता ही है कि आपको अलाउ करना है कि नहीं करना है। तो जिसमें आपको लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम जाता है तो पहले से ही आप उसको डिसाइड कर लो कि मुझे नहीं चाहिए। दूसरा कि कई बार कई लोग बिल्कुल नहीं देखते हैं, क्या हो जाता है, फोन फुल हो जाता है।
0: Yes, हम डिलीट भी नहीं करते हैं चीजें, कुछ
1: फुल हो जाता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं कि जिसमें आपको डिलीट करते रहना पड़ेगा
0: और अटेंशन भी देख के डिलीट करना पड़ेगा।
1: हाँ जी, अटेंशन देख के भी डिलीट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा इस इंस्ट्रूमेंट्स का, आज का साइंस के इंस्ट्रूमेंट्स का, ये थोड़ा ज्यादा ही मैनेजमेंट करना पड़ता है, उसमें बहुत टाइम जाता है। तो एक बार क्या हुआ कि मैं कभी नहीं कैंसिल करती थी कुछ भी, तो एक बार क्या हुआ, मुझे एक फोन से दूसरे फोन में सब ट्रांसफर करना था, तो आप नहीं मानेंगे एक पूरा दिन तक भी ट्रांसफर नहीं हो रहा था। फिर वो भाई ने समझाया मुझे कि देखिए आप तो ओपन भी नहीं कर रहे हैं कहीं व्हाट्सएप, तो आपने क्यों रखा है, क्योंकि आपने ओपन भी नहीं किया, उस जगह लेता जा रहा है और अब यहाँ के लिए वो टाइम लगा रहा है
0: जी।
1: या तो आपको मेरे को ओपन करके देना पड़ेगा सब, तभी थोड़ा जल्दी होगा। तो मैंने देखा सचमुच वेस्ट था इतना सारा। तो ये बिगिनिंग से हमको ध्यान रखना पड़ेगा, जो पूरी नॉलेज नहीं है ना मोबाइल की, तो वो फिर ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप लेते हैं ना, तो उसकी थोड़ी नॉलेज ग्रास्प करना बहुत जरूरी है ताकि आप उसको इफेक्टिवली यूज कर
0: सको। लाइफ भी ऐसी है,
1: लाइफ भी ऐसी है। अंडरस्टैंडिंग जितनी ज्यादा होगी इफेक्टिवनेस उतना ज्यादा होगा, तो आपका अटेंशन स्पैन भी बेहतर ही रहेगा
0: जी।
1: तो आज तो लाइफ भी कभी कभी मेस में होती है,
0: राइट। तो कौन से नोटिफिकेशंस ऐसे हैं लाइफ में जो हमें मंद रखना चाहिए?
1: एक तो गॉसिप,
0: ओके,
1: गॉसिप तो जरूर, बैक बाइटिंग।
0: और डिलीट क्या करना चाहिए?
1: वरना यही यही जो है
0: ये नोटिफिकेशन बंद है और इसी को डिलीट
1: भी करना है
0: पास्ट के है तो मैसेजेस।
1: हाँ, फिर दूसरा, दूसरों पर इल्जाम लगाना, दोष डालना, भले आपका भूल, तो ब्लेम गेम भी एक चीज है जो हमको नहीं रखनी चाहिए। फिर तीसरा, कोई को दुश्मनी हम क्यों बनावे, ऐसा ख्याल ही आपके अंदर क्यों आता है कि ये मेरा दुश्मन है, तो वहीं पर अपने एक्शंस को पहले से थोड़ा कंट्रोल करो कि मुझे जरूरी नहीं है किसी को दुश्मन बनाना, भले दोस्त कम हो, पर किसी को दुश्मन बनाना ये तो मेरी डायरेक्टरी में होना ही नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ कुछ है चीजें। दूसरा कि जितना हो सके मुझे शांति से कार्य करना है, मैं गुस्सा क्यों होती हूँ, क्रोध में क्यों आती हूँ, ये तो मेरी एनर्जी पूरी ये हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है इसमें, क्रोध करने में। तो अंडरस्टैंडिंग कि भाई कौन सी चीज मुझे आगे बढ़ा रही है, कौन सी चीज मुझे रोक रही है, तो ऐसी सब नोटिफिकेशंस को हमें पहले से अगर नहीं डाले, डाउनलोड ही नहीं करे, या तो डिलीट करते जाए
0: वो एप्लीकेशन ही ना रहे।
1: हाँ हाँ, क्योंकि वो हाँ, तो ऑफकोर्स अपना फोकस बहुत अच्छा रहेगा लाइफ में। और ऐसे नहीं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने जिनका फोकस बहुत अच्छा रहा, भले उनके कितने भी जेलिसी वाले दुश्मन बने, उन्होंने क्या क्या उनके साथ किया, उनको वो मैटर नहीं करता है, उन्होंने अपने जीवन में क्या किया वो ही मैटर करता है। और ये लोग बहुत फोकस्ड लोग थे, जैसे स्वामी विवेकानंद जी है, बहुत फोकस्ड थे, जैसे मदर टेरेसा है, वो अपने जमाने में बहुत फोकस्ड थी
0: जी,
1: है ना, खुद ही अपना जीवन निर्माण किया और खुद ही उसको सस्टेन भी करती रही
0: जी।
1: उसके बाद भले वो ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी किया हो, लेकिन उनके होते समय तो काफी मना फोकस्ड रही। ऐसे हमारे कई राजा महाराजाओं की फैमिलीज है जिसमें काफी फोकस्ड रूप से उन्होंने राज्य भी किया और भारत को दुश्मनों से बचा के रखा। तो भले उनकी फैमिलीज थी, सब कुछ था, लेकिन काफी फोकस्ड लोग थे, उनका क्लियर थिंकिंग, फोकस्ड माना क्लियर थिंकिंग,
0: क्या करना है क्या नहीं करना है,
1: क्या नहीं करना है, बहुत क्लैरिटी होती है उनके थॉट्स में। ऐसे तो बहुत एग्जांपल्स है, संत ज्ञानेश्वर का भी एग्जांपल है, बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट। ऐसे कई संत भी रहे हैं हमारे भारत में और पूरे विश्व में भी ऐसे कई लोग, जैसे अब्राहम लिंकन जो फर्स्ट प्रेसिडेंट रहा अमेरिका का, उसका भी काफी फोकस था, कितना कुछ वो डिफीट हो रहा था तो भी उसने अपना रास्ता ही नहीं छोड़ा। और एंड में जब से वो 60 साल का हुआ तब अमेरिका ने सामने से बोला कि हमको आपके जैसे प्रेसिडेंट की जरूरत है
0: जी।
1: तो देखो कैसे वो अपने टारगेट पे पहुंच गया ना। तो ऐसे कई लोग फोकस्ड है और उन्होंने हमें सिखाया है। ये तो क्या है कि हमने सीखना ही बंद कर दिया है
0: जी,
1: सीखना बंद किया तो फिर आप कैसे अपनी लाइफ को गुजार रहे हो, कैसे पर, और फिर गलत एग्जांपल्स ले लेके उसको फॉलो करते जा रहे हैं, तो फिर कैसे फोकस्ड रहेंगे।
0: अपने लक्ष्य को भी रिवाइज करना है,
1: करना चाहिए।
0: अगर मैं देख भी रही हूँ कुछ तो क्यों देख रही हूँ, मुझे क्या करना है,
1: मुझे क्या मिलना है इसमें से, वो जरूर देखना चाहिए। कोई भी चीज मिलती है ना आपको सामने से, तो उसके 3 प्रश्न पूछो। पहला प्रश्न पूछो क्या ये मेरे लिए यूजफुल है, फिर दूसरा प्रश्न पूछो कि क्या ये आगे चल करके मेरी प्रगति करेगा, और तीसरा है कि क्या मेरा इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसे कुछ कुछ प्रश्न पूछ के आप उस बात को पहले एनालाइज करो
0: जी,
1: और फिर वो कार्य करो तो आप फोकस्ड रहेंगे।
0: राइट, बिल्कुल। तो अगर आपको एक लाइन में बताना हो डिस्ट्रैक्शन से बचने का सबसे पावरफुल मंत्र क्या है?
1: पावरफुल मंत्र यही रहेगा कि आई एम हियर टू रीच माय ओन डेस्टिनेशन फ्रॉम माय ओन फ्री विल।
0: ओके,
1: आई एम हियर टू रीच माय डेस्टिनेशन विच इज क्रिएटेड फ्रॉम माय ओन फ्री विल।
0: जी, मेरी इच्छाओं से ही मेरे को अपना डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। बिल्कुल, इसे हम जरूर याद रखेंगे। दीदी अभी वक्त हो गया विदा लेने का, तो आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
1: उसमें यही कहना चाहूंगी कि थैंक यू मुझे समय देने के लिए, अपने विचारों को बांटने के लिए आप सबके साथ, और मुझे लगता है कि आप लोग भी इस पर अपने थॉट्स कंट्रीब्यूट करेंगे और हर एक अपनी लाइफ का थोड़ा एक एनालिसिस करेंगे, जैसे एक मिरर सामने रखते हुए अपनी पूरी जीवन यात्रा को देखेंगे। और आगे ये भी समझो कि हर एक के अंदर वो फोकस है ही है, कहीं नहीं जाता है, केवल हमको वापस उसका अनुभव कैसे करना है। तो जैसे कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, तो जितनी भी नहीं काम की चीजें होती है वो निकाल देता है, एंड एट द एंड वो मूर्ति अपने आप शेप ले लेती है। तो ऐसे ही हमारा भी फोकस अपने आप शेप ले लेगा, अगर उसके अलावा जो भी वेस्ट है, जो डिस्ट्रैक्शंस आपको कर रहे हैं, वो आप धीरे धीरे एक बाय एक निकालते जाओ, तो लास्ट में क्या रहेगा, आपका प्योर फोकस। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट।
0: थैंक यू सो मच दीदी आज हमारे साथ बने रहने के लिए। उम्मीद है कि जब जब आप शांतिवन आएंगे तो हमारे साथ टाइम स्पेंड करेंगे और हमारे श्रोताओं को आपके जो अमूल्य जीवन के ज्ञान है, जो आप प्रैक्टिकल जीते हैं, वो हमारे साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।
1: थैंक यू। धन्यवाद आपको।
0: दोस्तों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? डेफिनेटली अच्छा ही लगा होगा, तो आप हमें फीडबैक दे सकते हैं 9414151415 पर। नमस्ते।

0: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता संदीप त्रिवेदी का नमस्कार स्वीकार करें। दोस्तों, हाजिर हूं आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। हमराही दरअसल एक कार्यक्रम तो है ही, साथ ही साथ एक अवसर होता है किसी अनूठी अनसुनी कहानी से रूबरू होने का भी। तो इस कहानी में अलग अलग किरदार होते हैं, अलग अलग घटनाएं होती हैं, और उन घटनाओं में समाज के लिए छुपा हुआ कोई ना कोई संदेश होता है, और उसी संदेश को आप सब तक पहुंचाने का उद्देश्य रेडियो मधुबन का है। और इसीलिए आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। दोस्तों, बार बार आप सब सुनते रहे हैं कि समाज बहुत भेदभावों से भरा हुआ होता है, समाज बहुत सारे अंतर विरोधों से भरा हुआ होता है। जहां समाज में अनेक अनेक अच्छाइयां भी हैं, तो कुछ समाज में बुराइयां भी होती हैं, और वो बुराइयां हम सब महसूस करते हैं, लेकिन उनको दूर करने के लिए प्रयास शायद बहुत कम लोग होते हैं जो करते हैं। और रेडियो मधुबन एक ऐसा ही प्रयास कर रहा है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि समाज में किसी तरह का अंतर ना हो, किसी तरह समाज में भेदभाव ना हो, समाज किसी व्यक्ति को उसकी शारीरिक अक्षमता के आधार पर उसको परेशान ना करे, बल्कि समाज में सभी को बराबरी का दर्जा मिले। तो दोस्तों, आज भी हमराही की हम ऐसी ही एक अनूठी और अनोखी कहानी लेकर के आप सबके बीच में हाजिर हैं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे दो विशेष मेहमान भी हमारे साथ आ गए हैं। अब मैं ज्यादा भूमिका नहीं बनाते हुए आप सब का परिचय करवाता हूँ। हमारे साथ आज अहमदाबाद गुजरात से जुड़ रहे हैं श्रीमान सुदीप त्रिपाठी जी और उनकी श्रीमती जी रमा त्रिपाठी मैम।
1: नमस्कार।
2: मेरा भी नमस्कार।
0: जी जी जी जी, आप दोनों का रेडियो मधुबन के इस मंच पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है।
2: धन्यवाद।
0: तो सुदीप सर, हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वालों को आप अपनी दिव्यांगता के बारे में बताएं और अपने जीवन की जो भी घटनाएं गतिविधियां रही हैं थोड़ा सा उनके बारे में बताएं।
1: यूपी के इटावा डिस्ट्रिक्ट में हमारी जन्मभूमि रही है। वहां से मेरे पिताजी, जब मेरा ये आंखों का प्रॉब्लम हुआ और करीब करीब हम एक काश्तकार थे, करीब 150-200 बीघा के काश्तकार थे हम लोग भी जी। लेकिन आंखों के इलाज में बहुत सारा पैसा ऐसे खर्च हुआ। उसके बाद मेरे पिताजी अहमदाबाद आए और थोड़े दिन बाद हमें भी बुला लिया, और उसके बाद हमारी कर्मभूमि वो अहमदाबाद ही बन गई। और मेरे जो ताऊ थे वो एक कवि थे, और हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमारी जो हमारे यहाँ यूपी में चकबंदी होती है
0: जी,
1: भूमि सुधार कार्यक्रम बोला जाता है।
0: हाँ जी।
1: उसमें सभी की भूमि यानी जमा कर ली जाती है, उसके बाद सभी को अलग अलग भूमि अलॉट की जाती है।
0: अच्छा।
1: तो हमारी भूमि अधिग्रहित तो हुई, लेकिन बाद में लोगों ने पैसा खिला के अपनी अच्छी भूमि ले ली और हमें एकदम खराब भूमि दे दी गई। हमारे पास तो पैसे थे नहीं। तो वहाँ एक शर्मा जी एसीओ हुआ करते थे, उनके विरोध में उन्होंने एक अच्छी सी कविता लिखी कि जिसका बच्चा किया कैंसर ने आंखों से अंधा, इलाज में सब कुछ था खोया कौन लगाता कंधा, पैसे के बारे में मिट्टी छांटी वेद कुमार की, सीमा पार हो गई शर्मा जी के भ्रष्टाचार की। तो ये हाँ, ये कविता पूरे अखबारों में छपी और उनके वहां जो एसीओ थे उनका तबादला हुआ
0: जी।
1: के बाद डिप्टी डायरेक्टर ऑफ चकबंदी जो थे, डीडीसी बोले जाते थे, दीपक राय ब्रिद, यहाँ हमारा केस चलना था, हमारे पास तो पैसे थे नहीं, तो केस तो हमने दायर कर दिया। उसके बाद हमें रोज वहां जाना पड़ता, करीब 20-22 कोस हम लोग साइकिल पे जाते और वो मिल नहीं पाते, 8-1 दिन हो गए। तो फिर मेरे ताऊ ने एक कविता लिखी थी और वो मुझे गाने के लिए बोला था, न्याय के लिए
0: जी।
1: तो उन्होंने लिखा कि न्याय कर दो या कह दो कि बेटा मुझे

0: का साधन यानी लेने का, क्रय का साधन हमारा नहीं है। जैसे ही मैंने इतना बोला तो अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा आपके साथ न्याय होगा, आप परेशान होइए नहीं। और जब भी केस चला तो उन्होंने फिर न्याय किया, उन्होंने हाँ वही ब्लाइंड बच्चा, तो उतना उनको याद आया जब केस चला तो, और हमें उस तरीके से न्याय मिला। तो एक यानी कविता में भी ये ताकत होती है कि वो एक सुधार की ओर समाज को मोड़ सके, ऐसा मैंने महसूस किया। और उसके बाद तो हमारी कर्मभूमि गुजरात रही है
1: जी।
0: यहाँ गुजरात में शिक्षा दीक्षा यानी एमए बीएड के बाद मैंने स्कॉलरशिप वाला आंदोलन था 92-93 के बाद, यानी जो स्कॉलरशिप स्टेट गवर्नमेंट को एडॉप्ट करनी थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद कर दी थी, स्टेट गवर्नमेंट को एडॉप्ट करनी थी, तो गुजरात गवर्नमेंट ने 2 साल एडॉप्ट नहीं की। तो हमने 1994 में एक आंदोलन छेड़ा और हम सब साथ में लड़े, और 41 दिनों के बाद हमें गवर्नमेंट से ये एश्योरेंस मिला कि भाई आपकी जो स्कॉलरशिप है, जितने भी दिव्यांग जनों की स्कॉलरशिप है वो बहाल की जाती है। और उसके बाद मैंने अपने व्यवसाय में भी हाथ आजमाया, अपने पुस्तैनी व्यवसाय गेस्ट हाउस का बिजनेस था, करीब 1999 तक वो मैंने अपनाया। उसके पहले मैं एसटीडी पीसीओ भी चलाता रहा, और लेकिन गेस्ट हाउस के व्यवसाय में मुझे एक दिन एक बात क्लिक हुई कि ये पैसा वगैरह तो ठीक है, लेकिन हमारे दिमाग का इसमें कोई ज्यादा उपयोग नहीं हो रहा है, हम जो कुछ पढ़े हैं उसका इसमें कुछ उपयोग नहीं हो रहा। और ऐसा आदमी कभी भी फिक जा सकता है, कभी भी उसकी उपादेयता खत्म हो जा सकती है।
1: बिल्कुल।
0: तो उसी साल फिर मैंने एजुकेशन में टीचर्स ट्रेनिंग फॉर द ब्लाइंड का डिप्लोमा किया, और बाद में मैं अपने जहां पढ़ाता हूं वहां मुझे तुरंत उसी साल जॉब भी मिल गई। ये बातें हैं,
1: बड़ी दिलचस्प है आपकी कहानी त्रिपाठी जी। और कहीं ना कहीं जो कहा जाता है ना एक, कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: वो आपके साथ तो पूरी तरह से मतलब घटित हुआ,
0: यानी अनुभवी तक की बात हो गई वो।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके ताऊ जी का नाम क्या हुआ करता था?
0: वो उसके बारे में भी उन्होंने लिखा था कि भाई जनपद इटावा के अंदर मंदना तिवारियों का छोटा सा ग्राम है, बाबा दीनानाथ पिता हरि नारायण वेदों में रही ललित ललाम है, और कृष्ण गोपाल नाम तरुण उपनाम है, ऐसा
1: क्या बात,
0: तरुण उपनाम से वो कायम लिखा करते थे।
1: तो उनकी कविताओं का प्रभाव समाज पर पड़ा, सरकार पर पड़ा, और आपकी समस्याओं का समाधान हुआ, लेकिन उनकी लेखनी का थोड़ा बहुत प्रभाव आप पर भी पड़ा कि कुछ आपने भी बाद में सोचा हो?
0: हाँ, मैंने भी कुछ कुछ लिखना प्रारंभ किया है, कभी कभी इतना
1: आगे आपसे भी सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि रमा जी को सुनना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो भी बहुत उत्सुक है कब से
1: इंतजार करवा रहे हैं उनको। तो रमा मैम, हमारे सुनने वालों को आप भी अपने बारे में बताएं।
2: हमारे घर में हम 6 बहनें और एक भाई है, तो मुझसे छोटी सिर्फ एक ही बहन है, बाकी सब मुझसे बड़े हैं। तो मेरे फादर को स्टार्टिंग में सब लोग मतलब घर के जो उनसे 3-4 बड़े भाई हैं वो ऐसा कहते थे कि पहले मेरे फादर फौज आर्मी में गए, वहां बोला यहाँ तुम नहीं चल पाओगे, वहाँ के जो भी ऑफिसर्स थे, क्योंकि मेरे पापा ही पढ़े हैं और कोई लोग पढ़े नहीं है उनके फैमिली में, भाई ताऊ जी, एक ताऊ जी और पढ़े थे जिनकी डेथ हो गई, बाकी और कोई पढ़ा लिखा नहीं था, तो उनसे तो सब वहाँ खुश थे, लेकिन बाकी और जो लोग गए थे उन्होंने ये कहा कि फिर घर में कौन देखेगा, इसलिए वो उनको वहां से छुड़ा दिया गया। खेती देखो, फिर के खेती तुम नहीं कर पाओगे, तुमने तो पढ़ाई में ध्यान दिया है, अब तुम दुकान देखो, गांव में कोई दुकान खुलवा दी। फिर ऐसे करके फिर वो दुकान भी उन लोगों ने नहीं ज्यादा चलने दी, फिर उन्होंने खुद ही सोचा, वो 1978 में मेरे पापा दिल्ली आ गए
1: जी,
2: तो वहां पे उन्होंने लीफ प्रिंटिंग का काम सीखा, जो प्लास्टिक की जो पाउडर और आईने और लिपस्टिक, मतलब जितनी भी जो कंपनियां होती हैं उनके अंदर जो कलर्स किए जाते हैं
1: जी,
2: वो मेरे पापा का काम, फिर उन्होंने ये काम करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मेरा जन्म हुआ और मैं तो बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ। जब मैं 6 महीने की थी तब से लेके निकले मुझे मेरे मदर फादर कि किसी तरीके से अगर इसकी आंखें ठीक हो जाएं, कहीं ले गए जाने कलकत्ता, कभी एम्स में, कभी तब इतने साधन भी नहीं थे कहाँ निकलना जाना, इतना ट्रेन जो भी इतना मुझे याद नहीं है, लेकिन वो लोग जो बताते हैं यही कि 6 महीने की थी तब से मुझे लेके निकले थे। फिर वही दिल्ली में रहने लगे तो हमें वो राष्ट्रीय विरजानंद स्कूल है दिल्ली में जो ब्लाइंड गर्ल्स का, वहां पे मैं मेरी पढ़ाई हुई। गर्ल्स ज्यादा थी तो उसके बाद हमारे स्कूल के 2 पार्ट हो गए, एक विकासपुरी और एक राष्ट्रीय विरजानंद
1: जी।
2: तो लेकिन हालांकि दोनों राष्ट्रीय विरजानंद के ही भाग हैं, एक सेकेंडरी स्कूल हो जाता है जो विकासपुरी है और एक खाली राष्ट्रीय विरजानंद अन्नकन्या के नाम से जाना जाता है
1: जी।
2: तो वहां मेरी 12th तक पढ़ाई हुई। उसके बाद मैं AICVE से 4 साल वहां पे रह के मैंने 3 साल कॉलेज गोइंग हॉस्टल में रही। उसके बाद 1 साल का गैप रहा मेरा घर पे, फिर वापस वहीं से मैंने स्टेनो किया।
1: अच्छा, तो आपने आगे एमए वगैरह नहीं किया?
2: नहीं, मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन करके और थोड़े दिन घर पे रही, उसके बाद स्टेनो का कोर्स किया और 2005 में मेरी फरक्का एनटीपीसी में जॉब लगी जो बंगाल में 28 किलोमीटर पहले आता है सिर्फ बांग्लादेश से।
1: जी जी जी।
2: तो वहाँ कौन जाएगा इतना दूर, क्योंकि 1500 किलोमीटर दिल्ली से दूर।
1: ठीक बात है।
2: स्वीकृति पत्र में मेरी स्वीकृति दे दी थी तो मुझे तो जाना ही था। फिर बाद में जब घर में पता चला ये बंगाल में है, इतना दूर है, तो मेरे फादर ने बोला कोई बात नहीं कितना भी दूर हो, लेकिन तुम्हारी जॉब लगी है, हमारा मकसद यही था कि तुम अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ।
1: क्या
2: तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। मेरे फादर मेरे साथ रहे 6 महीने तक, उसके बाद फिर मदर आई, फिर फादर, ऐसे करके वहाँ 3 साल मैंने निकाले। फिर 2008 में मैं गुजरात में आई।
1: अच्छा, तो जॉब के पहले विवाह हो गया था आपका?
2: जी नहीं सर, 2008 में शादी हुई थी।
1: 2008 में शादी। अच्छा, शादी के समय आप गुजरात आए?
2: जी, शादी के 4 महीने बाद मैं गुजरात।
1: 4 महीने। आपके परिवार में किसी और को है दृष्टि बाधा की समस्या?
2: सर, मेरे परिवार में जैसे मैंने बताया हम तो बहने भाई जो भी है, हमारे पूरे 6 घर है। मेरे जो दादा थे या परदादा जो
1: जी, और
2: भाई 6 भाई उनका, फिर पूरा उन सब में लेके बुआओं के कहीं के भी ले लीजिए, घर में किसी को भी अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1: अच्छा सुधीर सर, ये आपकी आंखों की जो प्रॉब्लम है, जब आप कितने साल के थे तब हुई आपको?
0: ऐसा बताया जाता है कि जब मेरी आंखें को खराब हुई, यानी जन्म से मेरी बहुत बड़ी बड़ी आंखें थी।
1: अच्छा।
0: और करीब 2.5-3 साल के आसपास कुछ कभी ऐसा एक दिन देखा गया कि मुझे कुछ भी चीज लेने को बोला जाता, जिस दिशा में वो चीज होती उससे मैं विरुद्ध जाता, या कुछ ऐसा यानी जिससे तारतम्य न बन पाए कोई वस्तु का और मेरा, ऐसा कुछ बिहेवियर मेरा नजर आया
1: जी।
0: और फिर बाद में वहां के लोकल डॉक्टर के पास ले गए तो ऐसा कुछ आंख में सफेद सफेद जैसा दिख रहा था। उसके बाद हम कानपुर वगैरह गए तो वहां पता चला कि ये आंखों का कैंसर, इसको रेटिना ब्लास्टोमा बोलते हैं। तो 6-6 महीने हेलट में वहां सीतापुर बिताए हैं। यहाँ की सिविल हॉस्पिटल में मेरी दूसरी आंख निकाली गई, यानी मेरी आईबॉल भी नहीं है जो।
1: अच्छा।
0: हाँ जी, दोनों आंखों में आई बॉल नहीं है। दूसरी आंख जब निकाल दी तब उन्होंने बोला था अब ये भाई मुक्त है, लेकिन अब नजर इनको जीवन भर नहीं मिल पाएगी
1: जी।
0: तो वो करीब 7-8 साल के आसपास की घटना है।
1: तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई सुदीप सर?
0: मेरी शिक्षा दीक्षा वगैरह सब गुजरात में ही हुई। हम लोग गुजरात में, यानी मैं, मेरा भाई, मेरी एक छोटी बहन, वो सभी गुजरात में ही पले बड़े हुए।
1: तो और आपके परिवार में तो नहीं किसी और को ये समस्या आंखों की?
0: मम्मी की दृष्टि थोड़ी कमजोर है एक आंखों से, बाकी वैसे तो किसी को वैसी समस्या नहीं है। ये बताते हैं कि ये कहीं पुश्तैनी ही हो सकता है, ये रेटिना ब्लास्टोमा पहले की 7 पीढ़ियों में कहीं भी हो सकता है।
1: अच्छा।
0: तो कहाँ रहा होगा पता नहीं है,
1: पता
0: लेकिन
1: नहीं। राइट, हमारे श्रोता इंतजार कर रहे हैं, मुद्दे की बात पर भी आ जाते हैं। जरा आप दोनों का मिलने का जो कार्यक्रम है वो किस तरह हुआ,
0: उसके बारे में रमा जी पहले बताएंगे फिर मैं थोड़ा बताऊंगा।
1: चलिए चलिए। जी जी जी।
2: तो बंगाल में जॉब कर रहे थे
1: जी,
2: तो उस टाइम में मेरे भाई ने मतलब घर में ये कहा था कि इस तरीके से कैसे रहना चलेगा, मतलब अपने खुद के पैरों पे खड़ी हो चुकी है, तो अब समय तो है कि अब हम इसका अच्छी जगह पर रिश्ता कर दिया जाए।
1: जी,
2: तो
1: जी।
2: मैंने यही कहा था अपने घर में कि कहीं भी करें, लेकिन पहले तो सोचती थी कि मैं फुल्ली साइटेड से करूंगी या जो भी है।
1: जी, जी,
2: तो
1: जी,
2: लेकिन
1: जी।
2: बाद में जब हम विंध्याचल टेस्ट देने गए थे तो वहां सबने बोला भूल के भी ये भूल मत कर, क्योंकि कोई तकलीफ पड़े तुझे बाद में पछताना पड़े कि तू जैसा सोचती है ऐसा नहीं होगा या तुम अच्छा। मैंने कहा ठीक है तो फिर अब ब्लाइंड से करूंगी।
1: आपके साथियों ने ये समझाया आपको?
2: जी सर।
1: कि आपको विवाह आपके जैसे व्यक्ति से ही करना चाहिए?
2: नहीं, हाँ मतलब उनका यही था, पार्सली से क्यों नहीं सोचती। अच्छा। नहीं, मैंने कहा या तो फुल्ली साइटेड से करूंगी या फुल्ली ब्लाइंड से करूंगी।
1: गुड।
2: लेकिन मैं पार्सली से मैं नहीं करूंगी।
1: जी जी जी।
2: तो फिर यही बात रही, तो मैंने कहा ठीक है अगर नॉर्मल से ऐसा है, कहीं किसी का एक्सपीरियंस रहा होगा हमें नहीं पता अगर।
1: जी जी।
2: तो ठीक है तो फिर मैं ब्लाइंड से ही करूंगी, मैं पार्सली से तो नहीं करूंगी।
1: जी।
2: क्योंकि होता है ना कि थोड़ा बहुत किसी ना किसी चीज में ऐसा, जब नॉर्मल से उन्होंने मना कर दिया तो फिर मन में ये आ जाता है। तो फिर उसके बाद मेरे जो दीदी है, बड़ी दीदी, उनके घर के पास मेरी सास की भतीजी रहती है, तो उन्होंने पहले भी शायद कभी बात की होगी, मुझे नहीं पता चली। उस टाइम में फिर यही बात चली थी कि हम, मेरा एक भाई है अहमदाबाद में है, तो आप उनसे बात कर लीजिए अगर आपकी बहन को लाइन से शादी करनी है। तो फिर मेरे फादर आए और एक ही दिन देखा, उन्होंने स्कूल भी देखने गए थे इनका, और फिर उन्हें ठीक लगे तो फिर बस उन्होंने तय कर दिया। फिर मेरी उस टाइम तक मुझे कुछ पता नहीं था, फिर अगले 7-8 दिन के बाद हम लोगों ने, वो भी इन्होंने फोन नहीं किया था, मुझे ही फोन करना पड़ा। मैंने कहा ऐसा है कौन जिससे
1: ये पहल आपको करनी पड़ी है।
2: जी सर, मतलब मेरे देवर की शादी पहले हो चुकी है जो अब नहीं है, और वो एक्सपायरी भी मेरे आने से पहले ही हो चुके हैं, लेकिन उनका परिवार है, बच्चे हैं, सब है, क्योंकि काफी जल्दी उनकी शादी हो गई थी।
1: तो
2: मेरे देवरानी ने मुझसे एक बार बात की थी कि नंबर वाला नंबर ले लो या दे दो कुछ, तब इन्होंने नंबर बताया था, तो मुझे नहीं पता ये कौन है। मैंने कहा खाली नंबर ले लिया, याद कर लिया बस। लेकिन फिर 7 दिन तक कोई फोन ही किसी का नहीं आया। अब मैंने कहा जब नंबर मुझे दिया ही है तो मैं एक बार फोन तो करके देखूं ये है कौन जिससे मेरी बात चल रही है। फिर मैंने
1: आपके मामले में तो ये हुआ कि भाई तय पहले हुआ और बातचीत आप लोगों की बाद में हुई, क्यों?
2: जी सर।
1: अच्छा, तो आपका तो ये विचार चल रहा था साइटेड का, और फिर आपके दोस्तों ने आपको समझाया, लेकिन इस बीच में आपके घर वाले विवाह के लिए तो सोच रहे थे, लेकिन किससे करना है उस बारे में घर वालों की क्या राय थी, आपके मम्मी पापा या भाई वगैरह?
2: घर वालों की तो एक राय ये थी कि मेरी दीदी एक बहुत हमारे घर के पास ही रहती है और उनके एक देवर हैं थे उस टाइम में, तो अभी भी हैं, उन्होंने ये सोचा था कि उनसे इसका विवाह कर दिया जाए।
1: अच्छा, वो साइटेड थे?
2: जी हाँ, वो साइटेड है और मतलब देखने वेखने में भी काफी अच्छे हैं।
1: जी जी जी।
2: तो फिर लेकिन मन का जब, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई तो है नहीं ना, 10th है जो भी है
1: बस,
2: तो वही मेरे को फिर इस चीज से क्या फायदा जब मुझे काम अपने करवाने दूसरों के पास जाना पड़े।
1: जी।
2: कुछ भी लिखाई की पढ़ाई की जो भी है।
1: जी।
2: तो फिर बात तो वही आई जाए, मैंने कहा अच्छा तो मुझे ब्लाइंड से पढ़े लिखे ब्लाइंड से करूंगी, तो काम मेरे सही हर तरीके से होते रहेंगे और हम लोग एक दूसरे को समझ सकेंगे। तो फिर इसलिए मेरे मदर फादर ने मेरी बात सुन ली और फादर आए, देख के गए।
1: चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि फादर ने हमेशा आगे बढ़ करके आपकी सभी,
0: इन्होंने भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं,
1: इच्छाओं का सम्मान किया और उन्हीं के नक्शे कदम पर चल करके आप भी आगे बढ़े।
2: जी, जब स्कूल जाने लगी थी स्टार्टिंग में, जब छोटी थी बहुत, 3 या 4 साल की थी, उसी टाइम में हॉस्टल में था, तभी स्कूल ले गए थे, तो मेरी मम्मी तो रो रो के बीमार हो गई थी, नहीं जाने दूंगी।
1: अच्छा।
2: फिर मेरे फादर ने ये कहा कि अगर इसे हम नहीं जाने देंगे तो घर में कब तक ये रहेगी और सब बहन भाई पढ़ेंगे, ये फिर बाद में बोलेगी इनको पढ़ाया मुझे नहीं पढ़ाया,
1: बिल्कुल,
2: और फिर ये अपने पैरों पे कैसे खड़ी हो पाएगी, किसके भरोसे रहेगी।
1: ठीक बात है।
2: फिर भी मेरी मम्मी बीमार पड़ गई तो मेरे भैया के साथ मम्मी को गाँव भेजा, उसके बाद मेरे फादर मुझे स्कूल में छोड़ के,
1: क्योंकि देखेंगी नहीं तो फिर ज्यादा चिंता नहीं होगी।
2: जी
1: जी जी जी। वाह, बहुत, फादर आपके बहुत ही प्रोग्रेसिव विचारधारा के व्यक्ति रहे हैं,
2: जी सर, उन्होंने सबको, मतलब हम बहने छह हैं, मैंने आपको बताया
1: जी,
2: मैं पहले ही बताया, दो बहनों को छोड़ के बाकी सबने ग्रेजुएशन कर ली।
1: वाह बहुत खूब।
0: ये बोलते हैं ना, कोई हसीना पहले कदम बढ़ाती नहीं। ये उनकी क्या मजबूरी है वही जाने, मजबूरी दिल पे ना हो तो। लेकिन 7 दिन बाद हमारी बातचीत शुरू हुई, फिर तो हमें वो 900 रुपया 1100-1100 रुपये के अनलिमिटेड वाले वाउचर करवाने पड़ते थे और काफी रात को,
1: यानी
0: हाँ ढाई 3-3 बजे तक बातचीत होती थी
1: जी,
0: और बहुत अच्छा लगता था। लेकिन पहले यानी मेरा मेरी सोच थी,
1: लेकिन त्रिपाठी जी प्रश्न तो ये उठता है ना कि आपने क्यों नहीं पहल की ये
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रश्न जरूर होना चाहिए, हर एक किसी को ये प्रश्न जरूर होना चाहिए। मैं पहले ऐसा सोचता था कि मुझे खुद को शादी नहीं करनी, और मैं यानी थोड़ी धार्मिक प्रकृति में उस तरफ मेरा ज्यादा ध्यान था खूब काफी। अच्छा। हाँ तो उसी में हाँ, लेकिन इतना तय था, मैं शादी करने की ज्यादा सोचता नहीं था, लेकिन यदि जब यदि करनी ही होगी तो मैं किसी साइटेड से या पार्शली ब्लाइंड से यानी आंशिक दृष्टि वालों से किसी से मैं शादी नहीं करूं, यदि करनी है तो मैं ब्लाइंड से ही शादी करूं, इतना जरूर तय था।
1: वाह ये
0: तो जब इन्होंने प्रयास शुरू किया तो
1: बनने लगा कि आधा काम तो वही खत्म हो जाता है कि हम ये तय कर लें कि हमें निर्णय क्या लेना है।
0: हाँ नहीं बिल्कुल, वो मैं जब से मैंने अपनी यानी सोच संभाली है तब से मैं बिल्कुल स्पष्ट था कि मुझे किसी ब्लाइंड के तरीके से साथीदार मिले तो मुझे कुछ ज्यादा खुशी होगी, तो उस तरीके से मुझे मिला। तो बीच में थोड़ा नोकझोंक भी हो गई थी एक बार, यानी मैंने पूरा ये बताया कि भाई मेरा निर्णय ये है, मैं वैसे तो शादी तो करना ही नहीं चाहता
1: जी।
0: तो फिर इन्होंने कुछ यानी हमारी 4-5 दिन बीच में बात नहीं हुई
1: जी,
0: फिर फोन से बात शुरू हुई और हम लोग फिर यानी ये करीब अगस्त सितंबर की बात है और फिर अंततोगत्वा फरवरी में हमारी शादी हुई। काफी खुशी हुई, करीब 2100 किलोमीटर का फासला था, मैं अहमदाबाद में था वो फरक्का थी, तो शादी करते ही फिर वो फरक्का पहुंच गई।
1: लेकिन फर्क पड़ गया फिर फर्क का
0: बिल्कुल लेकिन इन्होंने भगवान की भी पिटाई नहीं छोड़ी। एक दिन यानी हम लोग यानी प्रयास करने लगे कि इनका गुजरात में ट्रांसफर करवाया जाए, तो काफी राजनीतिक वगैरह सब प्रयास करने थे। एक दिन इन्होंने गणेश जी की मूर्ति को काफी पीटा कि अब तो मैं घर के घर से बाहर रख दूंगी, मेरा कुछ काम
1: नहीं है।
0: और यानी यानी काकतालीय न्याय हुआ
1: जी जी,
0: और
1: क्या बात है।
0: दिन हाँ दूसरे ही दिन
1: सुनवाई तुरंत हुई,
0: उनके ट्रांसफर की खबर उनको पहुंच गई।
1: विवाह से पूर्व, विवाह से पूर्व मैम ने जैसा कि बताया कि उनके एक रिलेटिव ने आपके बारे में बताया, ऐसे ही आपके जहन में और आपके परिवार के जहन में भी तो तैयारियां तो चली रही होंगी।
0: हाँ यानी पापा जी आए थे तो उन्होंने काफी दिल्ली से आए थे यहाँ, उन्होंने काफी जांच पड़ताल की थी, मेरे स्कूल तक आए थे, कहाँ से
1: आप लोगों ने, मेरा मतलब ये था कि आपने भी कह
0: नहीं, अच्छा उसके हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि हम लोग यानी एक तो क्या है कि ब्राह्मण है और रूढ़िवादी ब्राह्मण समाज है हमारा, तो दूसरी जगह तो हम लोग कुछ क्योंकि ब्लाइंड में उस यानी समकक्ष मिल पाना बहुत ही मुश्किल होता है
1: जी।
0: तो सब लोग प्रयास में थे लेकिन ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था। फिर जब ये रिश्ता तय हुआ फिर हम लोग गए और ऐसे ही देखने गए थे इनको, रमा जी के घर वहां गए थे और उनको ऐसा था कि आज ही मंगनी वगैरह सब हो जाएगी, हम लोग तो देखने गए थे ऐसे ही, कुछ ऐसे कुछ प्रिपरेशन के साथ नहीं गए थे। और उसके बाद इनको बुलाया पापा ने, वो हमारी पहली यानी मेरी तो मुलाकात नहीं हुई थी लेकिन मेरे पापा के साथ इनकी मुलाकात हुई 2-1 मिनट की, और उसके बाद चलो ठीक है बहुत अच्छे हैं ऐसा करके वो ऊपर चली गई। तो ऊपर जाके इनको परिवार वालों ने पूछा कि भाई क्या कुछ हुआ, हाँ हाँ ऐसा ऐसी बातचीत हुई तो फिर क्या, फिर मैं चली आई, असमंजस में पड़ गए, क्या हुआ ये, हम लोगों को बताया गया कि आप लोग ऐसे, मेरे पिताजी के पास तो वैसे कुछ था नहीं, तो कुछ उनके पास कैश या वैसे जो भी कुछ था, तो तुरंत ही उनको फिर से नीचे बुलवाया और तुरंत गोद भरवाई गई। शाम को जैसे दिन हमारा रिश्ता तय हुआ और फिर तो सब आगे बढ़ने लगा, हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। पहली बार मैंने उनको एक ड्रेस भेंट की थी
1: जी,
0: यहाँ से, यानी मुझे अपने स्कूल के कार्य के लिए कलकत्ता जाना हुआ था और उस टाइम पर वहाँ हड़ताल वगैरह भी हुई थी, तो हम लोग 300 किलोमीटर दूर रह गए थे मिलने से, लेकिन हम शादी से पहले रूबरू में तो नहीं मिल पाए। उसका हमें यानी बहुत उस दिन में बहुत रोया था, ये भी बहुत यानी दुखी थी, हम लोग रात को काफी देर तक उस दिन भी जागे थे, लेकिन हम एक दूसरे से 300 किलोमीटर दूर ही रह गए। शादी के बाद ही वो जो फासला है वो हम दूर कर पाए।
1: जी जी जी जी जी जी जी। अच्छा त्रिपाठी सर, यहाँ पे एक प्रश्न आ रहा है मेरे दिमाग में कि आपकी नजर में दो लोगों को विवाह के बारे में सहमत होने के लिए क्या आवश्यक है, क्या जरूरी है?
0: एक तो ये है कि हमारे जो सोच है एक दूसरे की सोच मिलनी चाहिए।
1: अच्छा।
0: और एक जीने का जज्बा होना चाहिए। मैंने एक चीज देखी है रमा जी में, मैंने बहुत अच्छे थे, उनका जीने का जज्बा बहुत ही जोरदार है। कुछ दो चार ऐसी मैं चीज बताऊं उनको, यानी शॉपिंग का शौक है तो शॉपिंग करने जाती हैं और मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन जो उनके जज्बे हैं, जो उनकी ऐसी यानी जो महत्वाकांक्षाएं हैं बहुत ऊंची हैं, कि एक बार ऐसी है कि मैं खाट पे बिछा बिछा के नोटों को गिनना मैं चाहती हूँ, यानी जितने मेरे पास पैसे आएंगे मुझे एक बार खाट पे बिछा बिछा के वो गिनने।
1: क्या बात है।
0: हाँ, और उन्होंने जो भी कुछ यानी जो भी कुछ सोचती हैं उसके पीछे पूरी तन्मयता से लग जाती हैं,
1: पैशन
0: और हाँ, और वो उनकी आरजू पूरी भी होती है। हम इसी तरीके से, हमारे बच्चा भी नहीं था
1: जी,
0: लेकिन हमने सोचा और अभी हमारा IVF चाइल्ड है, 5 साल का, 5 साल की लड़की।
1: ये तो बड़ी बड़ी दिलचस्प बात बताई सर, मुझे लगता है बहुत सारे साथियों को भी प्रेरणा मिल सकती है इस बात से जो आपने कहा अभी अभी कि
0: हाँ बिल्कुल,
1: ये के बारे में बहुत सारे लोगों को मतलब पूरी जानकारी तो नहीं ही है एक तो, और दूसरा कहीं ना कहीं डर भी है लोगों के मन में।
0: हाँ, ये क्योंकि इसमें काफी यानी मेडिकली भी बहुत जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि आजकल ये सब इलाज बहुत महंगे हैं, तो इसके बारे में पूरी जानकारी भी नहीं होती और एक शंका भी रहती है हमारे साथ कुछ धोखा हो जाएगा कुछ के कुछ ऐसा, और यानी अच्छा डॉक्टर नहीं मिला या कोई अच्छी सी प्रोसेस इसमें हम कामयाब ना हो पाए, तो ऐसा भी हो जाता है। कई लोगों को ऐसा भी रहता है कि किसी दूसरे का गर्भ हमारे में रख दिया जाएगा या अदल बदल हो जाएगा।
1: तो ये सबसे बड़ा ये
0: ऊपर पिक्चर भी बहुत बनी है।
1: एक तो सर सबसे बड़ा ये है जो अभी आपने कहा, दूसरा ये भी रहता है कि शायद बच्चा कुछ विकृत हो सकता है जन्म के समय।
0: हाँ,
1: ये भी भावना होती है,
0: वो भावनाएं रहती है। और हमारे केस में तो ये भी है कि इनका करीब करीब अभी भी रोज का 160 किलोमीटर का अप डाउन है
1: जी,
0: तो आना जाना सब मिला के वहां का जो गिन लिया जाए तो 360 किलोमीटर का अप डाउन उनका डीडी का है, और उसके बाद ये प्रेगनेंसी कंसीव करवाना, ये बहुत ही अपने आप में काबिले तारीफ यानी प्रयास माना जाएगा।
1: वाकई में सर बहुत मतलब जज्बे वाली जो बात आपने कही मैम के बारे में, वो शत प्रतिशत साबित होती है इस घटना से।
0: बिल्कुल, और वो जो ठान लेती हैं वो करती हैं। हाँ, हमारे पास यानी हम एक मंदिर में गए थे, यानी हम लोग क्या करते थे यानी जो
1: जी, मैं चाहूंगा कि एक एक दो दो सेंटेंस में अगर आप IVF के बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं तो उनकी बहुत सारी जो गलतफहमियां हैं वो एक तो दूर होंगी और कई लोग मुझे लगता है आपकी इस कहानी को सुनकर के प्रेरित होंगे।
0: IVF ऐसी एक ट्रीटमेंट है कि जिससे कहीं भी यानी स्त्री के ओर से या पुरुष की ओर से कहीं भी जो भी छोटी मोटी कमियां हैं वो चीजें बाईपास हो जाती हैं और जो प्रोसेस है गर्भधारण की वो एक ट्यूब में करवाई जाती है और उसके बाद वो स्त्री के जो गर्भाशय में वो ट्रांसफर कर दिया जाता है।
1: जी जी।
0: तो ये करीब इस प्रकार की प्रोसेस होती है।
1: पूरा प्रोसेस कितने समय का रहता है सर?
0: 15वें दिन के आसपास वो स्त्री बीज निकाले जाते हैं, उनको पुष्ट करने वाले इंजेक्शन वगैरह यानी सब कुछ दिया जाता है,
1: वो सारी ट्रीटमेंट भी उन्हीं दौरान चलती रहती है। जी
0: हाँ, यानी हाँ वो बीज निकाल लिए जाते हैं, ट्यूब में रखे जाते हैं
1: जी।
0: और उसके बाद 5-1 दिन के बाद में जितने भी फर्टिलाइज होते हैं उनको अलग रख दिया जाता है। तो दूसरे महीने यानी पूरे फिर 15वें मासिक से 15 दिन के बाद फिर उनका एक छोटी सी प्रक्रिया करके वो जितने यानी जो गर्भ हैं रहे हैं वो फ्रोजन करवा दिए जाते हैं। सामान्य तौर पर 1 साल तक वो फ्रोजन रखे जाते हैं। उसके बाद यदि आपको ज्यादा फ्रोजन करके रखवाना है यानी 1 या 2 आपने ट्रांसफर करवा लिए और आपके पास शेष रह जाते हैं तो वो आगे जाके भी आप उनको फ्रोजन करे हुए यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये सभी चीज के लिए अलग अलग पैसा वगैरह होता है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी अब अवेलेबल है कि एक बार हमारा अच्छे 4-5 गर्भ हो गए हैं तो वो 2 या 3 या ऐसे साल के बाद भी ट्रांसफर करवाए जा सकते हैं।
1: और ये पूरी प्रक्रिया सर, इसमें खर्च कितना लग जाता है पूरी प्रक्रिया में A to Z में, मोटा मोटा अगर हम कहें अंदाजे से?
0: अधिकतर जगह पर पैकेज है।
1: अच्छा।
0: तो लोग पैकेज के अंदर जाते हैं तो लोगों को 9 से 10 लाख का पैकेज होता है। उसमें 2 ट्रायल 3 ट्रायल 4 ट्रायल ऐसे अमुक लोग देते हैं। वैसे देखा जाए एक जो सही अच्छे से ट्रायल हो जाए तो करीब 3-3.5 लाख में ये करीब हो जाता है आराम से। स्त्री की 40 साल की उम्र है तब तक ये करा लेना काफी अच्छा माना गया है। उसके बाद जो है वो थोड़ा थोड़ा यानी रिस्क फैक्टर बढ़ता जाता है।
1: वाकई में सर।

0: ये बच्चों में क्रिएटिविटी जितनी डेवलप की जाए वो हमारे बहुत बढ़िया सर। ए, मैं ये कह रहा था कि इस कार्यक्रम को, इस जानकारी के लिए हमारे श्रोता तो याद रखेंगे ही। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने सभी बातों को दरकिनार करके ये कदम उठाया और उसमें आप लोग सक्सेसफुल हुए, और बिकॉज आपका जो जुनून है, जो जज्बा है, कहीं ना कहीं उसने भी किसी मेडिसिन से कम असर नहीं किया है। मैं सही कह रहा हूँ?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जज्बा वाली बात तो हो चुकी, क्योंकि हम 4 ट्रायल करवा चुके हैं। जो पहले दूसरे ट्रायल में हमें पहले ट्रायल में सफलता मिली थी लेकिन वो काम नहीं आई, बच्चे की धड़कन नहीं आई थी जी। दूसरे में हमें सफलता नहीं मिली, फिर तीसरे में हमारी बच्ची हुई, हमें प्राप्त, हमने हॉस्पिटल चेंज किया, पूरी प्रोसेस चेंज कर दी, और चौथी के लिए हम फिर गए। इस बार हमें आंशिक सफलता मिली, यानी फिर इस बार वही चीज हुई कि धड़कन बच्चे की नहीं आ पाई। अच्छा। लेकिन आज हमारे पास भी एक जरिया है, ईश्वर, यानी आप सब की दुआ होगी और ईश्वर की इच्छा होगी तो हमें बच्ची का भाई या बच्ची की बहन प्राप्त हो सके।
0: निश्चित रूप से सर, ये हम सब दुआ करते हैं। और यहाँ पर एक प्रश्न जरूरी बन जाता है मैम के लिए भी, तो केवल एक प्रश्न मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा इस संदर्भ में। रमा मैम, तो एक महिला के नजरिए से, एक महिला की दृष्टि में ये सारी प्रक्रिया कितनी तकलीफ देह रहती है, अगर थोड़ा सा बताएंगे तो?
2: सर तकलीफें तो ये जो इंजेक्शन होते हैं जो रोज रोज दो, और किसी किसी की जो बहुत पुराने टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जो लोग, वो 3-3 इंजेक्शन भी देते हैं जी। जो हमें पहले 2 ट्रायल में नहीं पता थी, इसलिए थर्ड में तो हम खुद वेबसाइट से सर्च कर करके हॉस्पिटल चेंज करके गए थे, तो ईश्वर ने हमारी सुनी। तो 2 इंजेक्शन कुछ पेट पे देते हैं, एक बैक साइड में देते हैं, तो ये पेन उस टाइम में इतना नहीं पता चलता, लेकिन बाद में जब सर्दियां आती है जी। जो अभी तक भी मुझे होता है, सर्दियों में जैसे हवा चलती है मेरे दोनों पैरों में बहुत दर्द होता है।
0: तो इसका कोई आगे जाकर के कोई समाधान है मैम, कि जो ऐसा तो बॉडी पेन्स हैं वो कम हो सके?
2: अभी तक तो सर ऐसा कुछ नहीं पता चला, क्योंकि हम जो एक फिजियो तेल है वो मैं लगा लेती हूँ। अच्छा। इससे मुझे ठीक हो जाता है,
1: और विटामिन्स के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। और इनके बारे में एक चीज मैं बहुत ही अग्रेसिव होके बताना चाहूंगा सर, कि ये एक इंजेक्शन से भी डरती थी, एक इंजेक्शन लेना भी उनको यानी ना गवारा था, गवारा नहीं होता था। और उस व्यक्ति ने, यानी मैं गिन लूं तो एक ट्रायल के करीब करीब 45-50 इंजेक्शन लेने होते हैं, तो हमारे तो 4 ट्रायल हुए, तो आप यानी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बहादुरी इन्होंने बाद में दिखाई है।
0: ये सारी बातें भी ध्यान में रखनी जरूरी है कि प्रक्रिया सुरक्षित है और अच्छी है, टेक्नोलॉजी का भी पूरा उपयोग होता है और आधुनिक तकनीकें बहुत विकसित हो गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शारीरिक कुछ तकलीफें भी हो सकती हैं।
2: देखिए सर, पेन अब हम कहते हैं कि इंजेक्शन से दर्द होता है, लेकिन कभी कभी अपने आप भी अगर दर्द होने लगेगा आगे जाके एज में, तो उससे तो ये ठीक है ना कि हम कुछ पाने के लिए कुछ सहन कर रहे हैं।
0: ये बात बिल्कुल सही कही, और अल्टीमेटली परिवार के बारे में सोचना भी हम सबका दायित्व है। तो आपकी एक गुड़िया है मैम, आपने बताया
2: जी सर,
0: क्या नाम है गुड़िया का?
2: देवांशी।
0: देवांशी, तो वो एकदम स्वस्थ है बच्ची, बिल्कुल ठीक है?
3: नमस्ते सर।
0: नमस्ते नमस्ते देवांशी, नमस्ते, कैसे हो?
3: मैं अच्छी हूँ, पर मेरा असली नाम तो वो है दीक्षा।
0: जी, तो बच्ची एकदम खुश है, बच्ची को तो कोई ट्रीटमेंट किसी तरह का नहीं लेना पड़ता इस?
2: जी सर, उसके भी वैसे तो वो ठीक है, कुछ स्टार्टिंग में हमने चेकअप वेकअप करवा लिया।
0: वो तो जरूरी, वो तो चलिए जरूरी है। जी जी जी, ठीक बात है, वो ठीक है।
2: पावर की उसको थोड़ा चश्मा है अभी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है।
0: नहीं वो ठीक है, वो तो मैं तो मेडिकली वैसे पूछ रहा हूँ कि ओके ओके, चलिए ये बहुत अच्छी बात है, और देवांशी का भविष्य बहुत उज्जवल हो ऐसी हम कामना करते हैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से। जी
3: थैंक यू सर।
0: त्रिपाठी सर, एक बात मेरे दिमाग में आ रही थी शुरू से ही, जब मैंने, मुझे नहीं पता कि रेडियो कार्यक्रम में मुझे ये बात पूछनी चाहिए कि नहीं पूछनी चाहिए, जब मैम

0: कहा रमा मैम ने कि आपके छोटे भाई,
1: हाँ जी,
0: उनका कम उम्र में ही देहावसान हो गया,
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
0: और उनका विवाह भी हो गया था।
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो आपके परिवार के लिए निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखदायी समय रहा होगा, लेकिन
1: हाँ जी,
0: लेकिन पूछना मैं ये चाह रहा था सर कि जो उनकी वाइफ है,
1: हाँ जी,
0: उनके बारे में फिर आगे परिवार में किसी तरह का निर्णय लिया गया, या आपके यहाँ जैसा आपने कहा रूढ़िवादी हमारा ब्राह्मण परिवार है, तो जो है उसको स्वीकार करके ही रहा गया
1: जरूर।
0: और कहीं तीसरी बात, किसी बोर्ड पर क्या ये बात भी आई इनका विवाह साथ कर दिया जाए?
1: हाँ, मैं स्वीकार कर लूं ऐसा उनका, वो ही आप पूछना चाह रहे ना। ऐसा था कि जो मेरी भाई की मिसिस है वो मेरे बारे में अच्छी तरीके से एक तो जानती थी, दूसरी बात ये है कि सिरोसिस ऑफ लीवर, लीवर का संकोचन होने के कारण मेरे भाई को जान गंवानी पड़ी। वो उसकी कुछ आदतें ठीक नहीं थी,
0: अच्छा जी,
1: तो उसके कारण गंवानी पड़ी। तो बच्चे एक शायद 9 साल का था और एक शायद 7 साल का ऐसा था, उसी उम्र में गंवानी पड़ी जी। लेकिन रूढ़िवादी समाज हमारा होते हुए भी ऑप्शन दिए थे उनको कि भाई, और हम मेरे भाई की जो मिसिस है उनके परिवार को भी बुला के हमने बिठा के पूरी डिस्कशन की थी कि भाई इनको यदि आप दूसरी जगह इनकी शादी करवाना चाहते हैं तो उसमें भी हम खुश हैं, बच्चे लेके जाएं तो भी खुश हैं, और बच्चे हमारे यहाँ छोड़ जाएं तो भी हम खुश हैं, और सभी परिस्थितियों में हमें खुशी होगी, हम यथाशक्ति हमारी भी मदद भी करेंगे उनकी शादी दूसरी जगह करवाने में। लेकिन वो कोई पक्ष उसमें राजी नहीं हुआ और अंततोगत्वा हाँ हमारे यहाँ वो हैं और काफी अच्छे तरीके से हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। हाँ एक बात जरूर है जिनका इनको मलाल रहेगा कि यानी मेरे छोटे भाई की मिसेज थी, ये मैं बड़ा हूँ, बड़े आने के बावजूद उनको वो सम्मान जो बड़े का सम्मान होना चाहिए वो रमा जी को नहीं मिल पाया। वो एक कसक जो है वो भी शायद आपके दिमाग में प्रश्न रहा हो ये पूछने के, वो कसक एक है कि मुझे वो अमुक जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान
0: दृष्टिबाधित होने की वजह से,
1: हाँ दृष्टिबाधित होने की वजह से ही वो सम्मान नहीं मिल पाया, वो हमें कबूल करना होगा, मुझे कबूल करना होगा, मैंने प्रयास भी किए लेकिन वो सम्मान भी नहीं, उन्हें जो तरीके से चाहिए वो नहीं।
0: हाँ, हाँ, बराबरी का जो हम कार्यक्रम में भी जिसकी बात करते हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं मिल पाया। वो उन्होंने यानी भाई की मिसेस तक उतने तक तो स्वीकार नहीं ही किया, तो ये बात भी है वो अपनी जगह है।
0: और मेरा प्रश्न वो भी था सर कि कहीं उनका देहावसान आपके विवाह से पहले हुआ था?
1: हाँ बिल्कुल, मेरे विवाह से 3 साल
0: आपके
1: पहले।
0: बारे में भी कहीं बातचीत हुई उनसे इस बारे में?
1: नहीं, वो ऐसी कभी नहीं,
0: ऐसी परिस्थिति नहीं आई कभी,
1: ऐसी परिस्थिति नहीं आई, क्योंकि वो मैं बहुत ही फर्म था ना, मैंने बताया कि मैं वो शख्स हूँ सर कि मैंने मेरी ससुराल में मैं पहली बार गया था जब इनको देखने के लिए हम लोग गए थे
0: जी जी,
1: तो वहां जाके मैंने 2 घंटे सुंदरकांड किया था शायद यहाँ किसी को बहुत अजीब लगे,
0: मतलब आप वहीं मिलने गए हैं लड़की से और वहां जाके सुंदरकांड कर रहे हैं।
1: हाँ जी तो उससे शायद आप अंदाजे लगा पाएंगे वो जो आप प्रश्न पूछना चाह रहे हैं
0: जी।
1: तो मैं मेरे
0: किसी की हिम्मत नहीं हुई ये बात पूछने की आपसे।
1: बिल्कुल
0: वरना रमा जी का क्या होता फिर है?
1: नहीं हम बहुत खुश हैं, हम एक दूसरे से मिलके बहुत खुश हैं। 14 साल हमारे कहाँ खेलते कूदते बीत गए, हर एक चीज में मुझे साथ दिया है, सहकार दिया है, नोकझोंक होती रहती है, ऐसा नहीं है।
0: ये बात भी बहुत जरूरी है जो विवाह वाला प्रश्न था उसके लिए कि दोनों के विचार, दोनों के ख्यालात सब एक साथ मिलने चाहिए।
1: नहीं हमारा पुश्तैनी काफी कुछ है लेकिन करीब विवाह होने के 3-4 महीने के बाद से ही हम लोग और उसके यानी इतनी फैसिलिटी हमने कुटुंब की कुछ परिवार की यूज की ही नहीं, हम अपने पैरों पे खड़े हैं, जितना भी किया है हमने अपने पैरों पे किया है, तो वो भी हमारे लिए एक यानी मिसाल मैं तो कह सकता हूँ, किसी के लिए भी हो सकती है। हमने अपने पैरों पे घर से कुछ भी लिए बिना अपना पूरा आशियाना बसाया है और हम अपनी जिंदगी जी रहे।
0: बहुत बढ़िया। तो कार्यक्रम तो लगभग अब अंतिम पड़ाव पर है लेकिन बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा आप दोनों के साथ में, आप दोनों की जो आपसी समझ, आपसी तालमेल, वो लाजवाब किसी के लिए भी सीखने के लिए बहुत जरूरी है।
1: हमारे मैंने ऐसा देखा है सर के जो लोग ब्लाइंड होते हैं उनकी यानी दोनों यानी पति पत्नी ब्लाइंड है तो उनकी समझ काफी अच्छी होती है और उनके बच्चों की परवरिश भी काफी अच्छी होती है, ऐसा मैंने यानी ये मेरा दर्शन है। उसका शायद मैंने कोई सर्वे तो नहीं किया लेकिन काफी कुछ ऐसा थोड़ा जो अनुभव किया है तो वो हमारे बारे में भी उतना ही सटीक बैठता है। तो हम दूसरे को इतना यानी मेरे किसी भी चीज के बारे में हम दोनों इतनी जानकारी मेरे बारे में वो उनके बारे में कि कोई भी फोन आ जाए या आप किसी कोई भी फोन कर दे और एक या दूसरा आदमी उठा ले तो वही उतनी ही शिद्दत से आंसर मिलेगा सामने वाले को जितनी शिद्दत से मैं उनके बारे में देना चाहूंगा या वो मेरे बारे में तो उतनी ही शिद्दत से वो आंसर मिलेगा, इतनी समझ हमारी।
0: क्या बात, बहुत खूब। रमा मैम
2: जी,
0: आपसे भी प्रश्न रहेगा कि आप कितना खुश हैं
2: सर?
0: मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही आप भी बेबाकी से उत्तर देती हैं अपनी बात का।
2: ये तो सर मतलब सभी कहते हैं मैं फरक्का में थी तो मेरे यहाँ सर मतलब जो हमारे साथ एचआर में है वो सब ये कहते थे कि हम सवाल पूछे पूरा करें उससे पहले रमा जी के होठों में जवाब आ। मैंने कहा सर ऐसे मत बोलिए, मुझे पता नहीं अगर आपको कुछ किसी को कुछ गलत लगे, नहीं गलत कुछ नहीं होता लेकिन आप एकदम स्पष्ट जवाब दे देती है।
0: जी जी जी जी जी जी, तो कुल मिलाकर के आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं?
2: हाँ सर मैं संतुष्ट हूँ।
0: वाह बहुत खूब। और चलते चलते हमारे सुनने वालों को रमा जी आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज इस मंच पर?
1: वो 90s के गीत बहुत पसंद करते हैं तो शायद गीत के रूप में भी आप जवाब।
0: हाँ हाँ हाँ, अरे वाह, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई। जी नहीं नहीं, दो लाइन गुनगुना दीजिए, आपको त्रिपाठी जी की भी इच्छा है, त्रिपाठी जी की भी इच्छा है।
2: नहीं सर तो फिर वो वही गाना, उनको तो वो एक पुराना गाना गाने तो छोड़ देते हैं
0: जी,
2: लेकिन मैं तो बस इतना कहना चाहूंगी कि अगर हम किसी के बारे में सोच रहे हैं कि हम इसी को अपना आगे चल के इसी के साथ हमें अपना जीवन बिताना है या जो तो उसके साथ, मैं तो ये समझती हूँ कि फिर मिलने के जो तरीके तो नहीं कह सकते लेकिन जितना ज्यादा हम मिलते हैं ना उतना ज्यादा ना मिले तो अच्छा है, मैं तो ये समझ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, यानी ज्यादा मिलने जुलने में समय बिताने की बजाय सीधा मतलब जो होना है वो होने देने की ओर
2: जरूरी लगता है उतना ठीक है, लेकिन मैं तो जो हमारे में हमसे हुआ है या भगवान ने कर के उससे, क्योंकि देखिए कलकत्ता तक आए फिर भी हम नहीं मिले, वो भी जा सकते आ सकते थे फरक्का, मैं भी जा सकती थी
0: बिल्कुल,
2: लेकिन हम नहीं पहुंच पाए तो मैं तो इसमें भी कुछ अच्छा ही समझती हूँ। तो बाद में मिले हैं एक दूसरे से, बातचीत भी बाद में, बातचीत तो ठीक है फोन में करते ही थे लेकिन फिर भी साथ बैठ के नाश्ता करना खाना पीना कुछ तो कभी तो बनता है लेकिन जो आजकल होता है, लेकिन हमारा ऐसा कुछ रहा नहीं तो फिर भी हम काफी खुश हैं। तो ऐसे भी एक दूसरे के बारे में जान जाए इतना ही तो चाहिए तो किसी भी तरीके से जाना जा सकता है।
0: वाह बिल्कुल। तो त्रिपाठी जी चलते चलते आप भी हमारे श्रोताओं को अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे बता दीजिए।
1: नहीं मैं तो यही चीज कहना चाहूंगा कि आदमी को यानी इतनी खुशी से यानी जीवन व्यतीत करना है तो उनके जो संबंध है जहां भी तो उसका उसकी सोच उसके लिए समय निकालना उसके लिए प्रयास होना हर एक अपने जीवन संगिनी के लिए उसका बच्चों के लिए उसके उसके लिए भी यानी आपके पास एक अलग बैलेंस होना जरूरी है, समय का बैलेंस होना जरूरी है, संस्कारों का बैलेंस होना जरूरी है और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें एक मौका मिला है तो एक आज ही मैं सुबह एक प्रोग्राम में था तो एक बहुत ही अच्छी लिंकन साहब की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि पढ़ाया जाए किसी को तो वो रुजुता से पढ़ाया जाए तो हम वो जीवन में वो चीज उतार लें कि रुजुता से हम अपने जो संबंध हैं किसी के भी साथ जो हमारे संबंध पनपते हैं तो उन्हें इतनी रुजुता से पनपाया जाए तो हमें संसार बहुत ही अच्छा लगेगा, जीने लायक लगेगा और जो शिकायतें हैं वो थोड़ी कम हो पाएंगी। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि संबंधों की रुचिता होना, संबंधों में रुचिता बनी रहे, ये मेरे ख्याल से जरूरी है। और उस समय की शायद मांग भी है क्योंकि इतना आज वो नहीं।
0: जी जी जी, बहुत बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। और श्रोताओं, तो आपने सुना आज सुदीप सर और रमा मैम को। और अगर IVF के बारे में आप लोगों के मन में और कोई कंफ्यूजन है या आपका लगता है कि कोई सवाल छूट गया है, तो आप लोग आगे अगर हमारे दोनों मेहमानों से किसी तरह का गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप रिकॉर्डिंग क्लब या रेडियो मधुबन में संपर्क करें। हम जरूर सुदीप सर तक आपकी क्वेरी को पहुंचाएंगे और बल्कि सुदीप सर से आपका संपर्क भी करवाएंगे। ये बात मैं उनसे बिना पूछे ही बता रहा हूँ, क्यों सर?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो हम हमेशा तैयार रहते हैं कि जो हमने अर्जित किया है वो बांटा जाए। हमारे गुजराती में यहाँ एक कहावत है, गमतानो करिए गुलाल, यानी जो हमें चीज अच्छी लगती है वो बांटने में बहुत खुशी होती है।
0: वाह क्या बात है, बहुत खूब सर। जो अच्छी लगती है चीज वो हमेशा सबके साथ बांटी जाए। अगर कार्यक्रम भी आपको अच्छा लगता है तो औरों तक जरूर पहुंचाइएगा। तो सुदीप सर और रमा मैम, आप दोनों का एक बार फिर से रेडियो मधुबन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमें ये अवसर दिया सबसे मिलने का और ये अवसर के लिए। और ये सभी चीजें, यानी काफी बहुत ऐसा होता है कि इतने डीप में बात नहीं की जा सकती ऐसे प्रोग्रामों में, लेकिन ये जरूरी होती है। तो शायद किसी को भी
0: जी
1: मार्गदर्शन मिल सके, तो इस ख्याल से भी आपने जो प्रयास किया है वो भी वंदनीय है, सराहनीय है। आपको भी हमारी सबकी ओर से, हमारे पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।
0: चलिए धन्यवाद सर। तो श्रोताओं, सुनते रहें रेडियो मधुबन 90.4 FM और मुस्कुराते रहें हमेशा, हर दिन हर पल। और क्या कर सकते हैं, रेडियो मधुबन का ऐप जरूर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर रेडियो मधुबन को सातों दिन 2400 घंटे 365 दिन अगर सुनना चाहें तो गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और रेडियो मधुबन के नाम से आप ऐप ढूंढ करके इंस्टॉल कर लें। आप ईमेल करना चाहें तो info@radiomadhuban.in पर करें और अगर कॉल करना चाहें तो 9414151415 आपका इंतजार हमेशा करता रहता है। मिलते हैं श्रोताओं अगले रविवार फिर किसी और हमराही के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।
3: नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा और आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन में। आपकी भजन आप सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। एक भजन जो मैं बहुत प्रेम से गाता हूँ, उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूँ। मैया मोरी मैं नहीं माँ खायू, ये भजन मुझे बहुत प्रिय है, आप भी सुनिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप और कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। जिंदगी से प्यार वैसे तो सभी को होता है, लेकिन दोस्तों कभी कभी कुछ ऐसे मौके आते हैं जब हम वो प्यार करना भूल जाते हैं और हमें एहसास कराना पड़ता है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और समझ लीजिए लव यू जिंदगी ऐसा कार्यक्रम ही नहीं, ऐसा मौका भी है। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, अपने इमोशंस को पढ़ेंगे, खुद को बेहतर जानेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हमारे एक्सपर्ट्स। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं कल्पना जी का, जो कि ग्लोबल अस्पताल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, आप स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं और आप अनेक एपिसोड्स के माध्यम से हमें गाइड करते रहते हैं। ये आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद आयुषी जी, बहुत अच्छा लग रहा है फिर से एक बार श्रोताओं से रूबरू होते हुए। हम जो कुछ भी लाइफ में सीखते हैं जब उसे दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो जो खुशी मिलती है, संतोष मिलता है, वही वो चीजें हैं जो हमें अपने रेडियो के श्रोताओं से जोड़े रखती हैं।
0: बिल्कुल। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे दूसरे एक्सपर्ट प्रीनिधि जी, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं और साथ साथ जाने माने एंकर और आरजे भी हैं। प्रीनिधि जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार आयुषि जी, कल्पना जी नमस्कार, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है लव यू जिंदगी के और एपिसोड में वापस जुड़ के। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जितना हमारे श्रोता मित्रों को हर एपिसोड में कुछ नया सुनने और समझने को मिलता है, इस एपिसोड में मुझे भी कुछ नया सुनने और समझने को मिलेगा और इसलिए खुशी होती है हर बार इस कार्यक्रम
0: जुड़ने के लिए। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बातचीत की थी इमोशनल अवेयरनेस के बारे में और रेटिंग सिस्टम के बारे में आपने बताया था कल्पना जी, किस प्रकार से हम अपने इमोशंस को रेट करते हैं कि हम 2 पे हैं कि 5 पे हैं कि 8 पे हैं। हम जो बातचीत कर रहे थे उसके आखिर तक हम एक क्वेश्चन पे आके रुके थे कि अगर मान लीजिए जेलसी है या मुझे कोई ऐसी चीज है जो पसंद नहीं आ रही है या मुझे ऐसा लग रहा है ये क्यों मुझसे आगे बढ़ गया या मैं कहाँ रह गई, वो कंपेरिजन आ जा रहा है, उसको रेट करने से क्या फर्क पड़ता है? मतलब मुझे पता है मैं जेलस हूँ या फिर कभी कभी मैं अवेयर नहीं हूँ कि मैं जेलस, सामने वाला ही गलत लग रहा है, तो इसको रेटिंग करने से क्या मदद मिलती है या डील कैसे किया जाता है, कुछ इस बारे में अगर आप कंटिन्यू करें।
1: जी बिल्कुल, जब आपके अंदर कोई भी नेगेटिव इमोशंस होती है, चाहे वो खुद के लिए हो चाहे किसी और के लिए, जब उसकी इंटेंसिटी को हम पहचानते हैं, जैसे आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको बुखार आया है तो डॉक्टर पहले आपका बुखार नापते हैं कि कितना है भाई, 98 है, 100 है, 101 है, 102 है। जिस हिसाब से आपका बुखार है उसकी इंटेंसिटी उस तरह से पहचानी जाती है। उसी तरह से कोई भी नेगेटिव इमोशन जो मेरे प्रति क्रिएट होता है, जो दूसरे के प्रति क्रिएट होता है, जब उसकी इंटेंसिटी का पता चलता है तब हम उसे कैसे हैंडल करना है, कैसे उसे कम करना है, किस लेवल से कहां तक ले आना है, ये समझ हमें डेवलप होती है। तो इसलिए इंटेंसिटी का जानना जरूरी है। दूसरी बात, नेगेटिव इमोशन चाहे वो अपने लिए हो चाहे वो दूसरे के लिए हो, नुकसान ही करता है, उसका हमें फायदा होता ही नहीं। तो ऐसे इमोशंस क्रिएट करने के बजाय अगर हम उन्हें रिप्लेस करें, नेगेटिव इमोशंस को रिप्लेस करें, जैसे हम हमेशा कहते आए हैं कि एंगर, हमें गुस्सा आता है, हम एक्सप्रेस करते हैं बोल के, चिल्ला के, डांट के, किसी भी तरह से, उसकी भी एक इंटेंसिटी होती है। बट अगर एंगर को हमें रिप्लेस करना है तो किससे कर सकते हैं कि हमारा पर्पस भी फुलफिल हो, जिस बात के लिए हम गुस्सा कर रहे हैं वो बात दूसरों की समझ में भी आ जाए लेकिन हमें गुस्सा भी नहीं करना पड़े। तो हमने कई बार इस इमोशनल एक्सप्रेशन के बारे में चर्चा की है जिसे हम असर्टिवनेस कहते हैं, कि अपनी बात खुलकर स्पष्ट रीति से कहे भी लेकिन बिना विचलित हुए, बिना गुस्सा किए, बिना अग्रेशन के, शांत भाव से वो बात जैसी है वैसी कह दे, सो उसको असर्टिवनेस कहते हैं। तो यहाँ बात आती है इंटेंसिटी इसलिए जानना है क्योंकि हमें उसे रिप्लेस करना।
0: ओके, दैट्स वंडरफुल। और ये जो आपने एग्जांपल दिया बुखार का, सच में हम वहां तो नापते हैं लेकिन मन में वो नापतोल करना है ये तो आइडिया ही नहीं आता, कि हमको ये आंकना भी है कि क्या लेवल है उस गुस्से का या जेलसी का और उससे डील करने में फर्क पड़ता है आपने जैसा बताया। श्रीनिधि जी, या मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि क्या आपने कभी ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट किया है या कुछ ऐसा इमोशंस को ऑब्जर्व करके कोई रिप्लेसमेंट किया है?
2: सबसे पहले तो कल्पना जी ने जो बात कही, मैं समझता हूँ ये हमें से लगभग ज्यादातर लोग कर पाने में सक्षम होते हैं, सिर्फ हमें वो पैमाना नहीं मिलता, अगर वो मापदंड मिल जाता है, स्केल मिल जाता है, तो हम अपने आप को स्केल पे नापने में सक्षम है।
0: ओके।
2: और सिर्फ छोटे बच्चे ही होते हैं शायद कोई चीज समझ में ना आए, मगर ज्यादातर एडल्ट्स जो होते हैं या टीनेजर्स भी अपने इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से ऑन स्केल प्रेजेंट कर सकते हैं। आम बातचीत में जो इतनी ज्यादा समझ नहीं भी रखता हो, वो भी व्यक्ति अक्सर अपने इमोशनल स्टेट के बारे में बता देता है, खासकर ऐसे समय पर जब हम नेगेटिव इमोशंस से जूझ रहे हैं या उन इमोशंस के कब्जे में हैं, तो अक्सर सिंपल सा क्वेश्चन ये बात कही जाती है, तो लोग आके बोलते आज मेरा मूड खराब है, मेरे कुछ मत बोलो आज, ये लोग कुछ कहते हुए नजर आते हैं। कभी कभार लोग बोलते हैं आज मेरा मूड बहुत ही खराब है, मेरे से बिल्कुल बात मत करो, ये भी चीज सुनता है लोग बोलते हैं। जैसे चिड़चिड़ापन है, चिड़चिड़ापन इरिटेशन देखने को मिलता है, उससे थोड़े और लेवल पे लोग थोड़ा गुस्सा करते हैं, आंखों से दिखाते हैं या चेहरे पे वो गुस्सा नजर आता है, फिर उससे थोड़ा और गुस्सा होता है तो व्यक्ति गुस्सा मुंह से बोलना शुरू करते हैं, नाक खराब बोलने लगना या फिर ऊंची आवाज में बोलना, ये सारी चीजें देखते हैं। इसी के एक और लेवल पे अगर हम देखते हैं तो व्यक्ति हाथ पैर चलाने लग जाए, उससे एक और लेवल। तो मैं समझता हूँ ये रेटिंग्स हम सभी स्वाभाविक रीति से लोगों में देखते हैं, इनका पारा कितना चढ़ा हुआ, टेम्परेचर नापा जा सकता है। लोग कहते भी हैं उदासी के लिए भी आज थोड़ा मन ठीक नहीं है, ये बहुत ही बेसिक लेवल, उसके बाद में नहीं थोड़ा मैं उदास फील कर रहा हूँ। तो कभी कभार तो लोग बिल्कुल ही चेहरे पे वो शक्ल पे नजर आने लगती है कि सामने वाला पूछ लेता है कि आज ठीक नहीं लग रहे हो, उदास उदास से लग रहे हो, मायूस लग रहे हो, क्या बात है। कभी कभार लोग सामने से बोल देते हैं कि आज मैं बहुत उदास हूँ, मेरा मन ही नहीं लग रहा किसी चीज में। तो ये भी लोग कहते हैं और ये कहने का जरिया हमने खुद तय किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास वो स्केल नहीं है। नेचुरली कल्पना जी बेहतर बता सकती कि वो अपने प्रैक्टिस में क्या चीजों को देखते हैं, लोग जब अपने स्केल में कहाँ अपने आप को स्केल पे फिट करते हैं, बट स्वाभाविक रीति से भी हम एक स्केल को जानते हैं और अपने शब्दों में हम अलग अलग तरीके से उन्हीं फीलिंग्स को कम, थोड़ा बीच में, थोड़ा ज्यादा और एकदम एक्सट्रीम पे हम ये रीड करना चाहते हैं। हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं तभी भी, और हम सामने वाले के भी भाव से, हाव से, उनके हाव भाव से इन चीजों को माप लेते हैं या भाप लेते हैं, ऐसा कहना स्वाभाविक है। और जब रिप्लेसमेंट करने की बात कल्पना जी कह रहे थे, तो ये रिप्लेसमेंट कभी व्यक्ति खुद करता है, कभी कभार दूसरों से मदद लेता है। और मैं समझता हूँ कई मामलों में मैंने अपने दोस्तों से मदद ली है, जब मेरा मूड खराब है या फिर मैं उदास महसूस कर रहा हूँ या आज मन नहीं लग रहा है, तो मैंने अक्सर ये चीजें कही है मेरे आसपास रहने वाले लोगों से, मेरा मन नहीं लग रहा है, सोच पता नहीं खाली खाली सा लग रहा है या थोड़ा बेचैनी सी हो रही है। अब ये चीजें जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो सामने वाले आपके मूड को बेहतर करने के लिए प्रयास करते हैं, वो कुछ आपको पॉजिटिव सुनाए, बेचैनी हो रही है तो वो आपको कुछ रीअश्योरेंस देंगे, अगर आप चिंतित हैं तो फिर हम आपको चिंता का कारण पूछेंगे और उसे निवारण करने का प्रयास करेंगे। और कभी कभार हम स्वयं भी अपने आप को ये चीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि भाई रेलवे स्टेशन पहुंचना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, हो सकता है आप ट्रेन मिस कर जाएं, तो आपके मन में बेचैनी है और उस समय पर आप एंग्शियस हो जाते हैं। मगर ऐसे समय पर जब आप देख रहे हैं कि मैं अंदर से बेचैन हो रहा हूँ, तो मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ, और मैंने अनेकों बार ये चीज की है, मैं अपने आप को याद दिलाने, देखो ट्रेन तो मैं पकड़ ही लूंगा, चाहे दौड़ के पकड़ना पड़े पकड़ लें। और मन फिर से कुछ चीज कहता है नहीं पकड़ा, तो फिर मैं अपने मन को समझाता हूँ कोई बात नहीं, अगर नहीं पकड़ना होगा तो पकड़ेंगे,
0: जैसे क्वेश्चन आंसर एक डिस्कशन चल रहा है मन के साथ,
2: मैं रिप्लेस कर रहा हूँ उस क्वेश्चन के लिए, कुछ और आंसर दे रहा हूँ, फिर एक प्रश्न आ रहा है उसके लिए
0: श्योर कर रहे हैं उसे,
2: उस एंजाइटी को रीअश्योरेंस के साथ रिप्लेस कर रहा हूँ, मैं श्योर कि हाँ मैं पकड़ ही लूंगा, कोई बात हो सकता है आज ट्रेन लेट हुई हो सकता है मैं टाइम पे पहुंच जाऊं। अनेक ऐसी चीजें हैं जो आप पॉजिटिव रीअफर्मेशन के रूप में अपने आप को ये रीअश्योरेंस दे सकते हैं, तो एंजाइटी के लिए रिप्लेसमेंट मैं दे रहा हूँ,
0: ऐसे और भी चीजें,
2: ऐसे अनेक चीजें हैं जिसके लिए आप चीजें कर सकते हैं। अक्सर एक और चीज जो मैंने अक्सर ये चीज अपने आप के लिए कहा है, कभी आपको प्यार की महसूसता कम होती है, आपको लगता है कि कोई प्यार कम करता है आपसे या आज आपको ऐसा महसूस कर रहे हैं, कोई कोई मेरे प्यार से बात करे, यार सुबह से मतलब लोगों ने मेरे को बहुत परेशान किया हुआ है, प्यार से बात ही नहीं करते हैं लोग, तब उस समय पर मैंने अपने आप को याद दिलाया मैं दूसरों से प्यार की अपेक्षा क्यों कर रहा हूँ, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मैंने अपने आप को कहा है, मैंने अपने आप को ये भी समझाया है कि मैं प्यार लेने वालों में से नहीं हूँ, प्यार देने वालों में मैं दाता नहीं हूँ, मेरे पास प्यार का भंडार है, मैं प्रेम से भरपूर हूँ, ये मैंने अपने आप को याद दिलाया है। बहुत बार मैंने अपने आप को याद दिलाया है कि मैं प्यार के सागर की संतान हूँ, परमात्मा भगवान प्यार का सागर है जिसके लिए हम गाना गाते हैं कि प्यार का सागर है, तो प्यार का सागर मेरे पास है, मैं दूसरों से क्यों अपनी प्यास बुझाऊं। तो अनेक ऐसी चीजें अपने आप को कहने से भी वो चीज आपका जो हाव भाव है, जो आपका तीवर चढ़ा हुआ है, नीचे उतर जाता है।
0: कितना फर्क पड़ता है खुद से बात करने से, और जिसको सेल्फ लव पे भी हमने बहुत सारे एपिसोड्स किए हैं, बातचीत की है। कल्पना जी, मैं यहाँ पे फिर से एक बार आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे लास्ट एपिसोड में भी आपने कहा था कि हम इमोशन को आइडेंटिफाई कभी कभी गलत करते हैं, मतलब वो प्यार है या सिर्फ अट्रैक्शन है या कोई और चीज है, तो वो राइट आइडेंटिफाई कैसे करें? बहुत बार प्यार को लेके ही कंफ्यूजन होता है नहीं है, जब लोग अपने पार्टनर चूज करते हैं तब भी बहुत कंफ्यूजन होता है, कॉलेज में भी कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चों को भी कंफ्यूजन होता है, तो वो राइट इमोशन को आइडेंटिफाई कैसे करें, खासतौर से अगर प्यार की बात हो।
1: बिल्कुल, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, 10-12 साल की उम्र से लेकर 20-25 साल की उम्र तक प्यार वाला ये इमोशन हमारी लाइफ में एंटर होने लगता है, वो फीलिंग हमें अपोजिट सेक्स के लिए आने लगती है। सो ये चीज को अच्छी तरह से समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे हम किताबों में पढ़ते हैं और ज्यादातर आजकल बच्चे फिल्मों में देखकर प्यार को समझने लगते हैं। प्यार फिल्मों में देखकर या किताबों में पढ़कर समझने की बात हालांकि है नहीं, ये बचपन से माँ बाप से हमें प्यार मिलता है, हम अपने माता पिता से प्यार करते हैं, भाई बहनों के बीच में प्यार होता है, हर रिश्ते में प्यार की बुनियाद तो होती है, परंतु एक दूसरे, अगर गर्ल है तो बॉय के प्रति, बॉय है तो गर्ल के प्रति आकर्षित होने के कई कारण होते हैं। जैसे कि कोई पढ़ाई में अच्छा है तो मुझे अच्छा लगने लगता है, जिसके अंदर कोई स्पेशल क्वालिटीज है, जैसे कोई गाने वाला है, कोई म्यूजिशियन है, उसको अलग अलग वाद्य यंत्र बजाने आते हैं और वो अच्छा परफॉर्म करता है तो मुझे अच्छा लगने लगता है और मैं समझती हूँ वो प्यार है। मतलब जनरली जब बड़े होते हुए बच्चे समझते कि वो प्यार, तो वो अच्छा लगना कोई और प्यार होना, इसमें अंतर है। हमें फिल्मों के एक्टर्स भी अच्छे लगते हैं जो रोल प्ले करते हैं, हम कहते हैं हम उनके फैंस हैं। क्रिकेटर्स भी हमें जो अच्छे लगते हैं, हम कहते हैं हम उनके पीछे पागल है। अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है तो ये जब इतने सारे खिलाड़ी है उनके प्रति भी हमें बहुत ज्यादा आकर्षण होती है, तो हम कहते हैं हम उनके फैन हैं, तो हम ये नहीं कहते कि हमें उनसे प्यार है। पर कई बार मिसअंडरस्टूड किया जाता है इस भावना को, कहा जाता है हम प्यार करते हैं। तो बड़े होते बच्चों में आकर्षण, अट्रैक्शन और प्यार, ये चीज ना समझ में आने के कारण वो जैसे लोग आजकल फेसबुक पर मिलते हैं या किसी सोशल मीडिया पर मिलते हैं, हेलो हाय हो जाती है, कभी कभी फेक प्रोफाइल से भी बात करते हैं और बातें करते करके उनकी बातें अच्छी लगनी लगती हैं। वो जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, अपने इमोशंस को वो वैलिडेट कर रहे हैं, उससे वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो हमें उनसे प्यार हो गया ऐसा हम समझते। कई बार उस व्यक्ति को देखा भी नहीं हुआ। तो मैं एक किस्सा सुनाना चाहूंगी कि कैसे बढ़ती उम्र के बच्चों को प्यार, आकर्षण और भुलावे में अंतर समझ में नहीं आता है। तो एक 15-16 साल की कन्या थी, कुमारी थी, और गुजरात के एक गांव में रहती थी। उसे अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया में कनेक्ट होते होते एक व्यक्ति से पहचान हुई, जिसका XYZ नाम था, जिसने बताया कि मेरी ये उम्र है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं से मत, बातचीत में उनका सिलसिला आगे बढ़ता है। तो जब भी कभी वो उससे बात करती, वो बिल्कुल फ्री होके उसकी बातें सुनता, उसकी इमोशंस को समझता। कभी भी उसका कोई मूड खराब है या लड़ाई झगड़ा हुआ है किसी से, शेयर करो, तो वो ध्यान से सुनता और उसको और भी ज्यादा अच्छी तरह गाइड कर। तो उसने उसको धीरे धीरे अपना सपोर्ट सिस्टम समझना शुरू किया और घर वाले, परिवार, भाई बहन, माता पिता से ज्यादा वो व्यक्ति उसके लिए इम्पोर्टेंट हो गया जो ऑनलाइन दूर कहाँ बैठा है पता नहीं, ऑनलाइन वो सिंपथी या एम्पथी उसको दिखा रहा है। वो उससे कहा उसने कि मुझे प्यार हो गया। अब माँ बाप को चिंता हो गई कि ये किससे प्यार कर रही है। सो चलो ठीक है, माँ बाप ने कहा मिलाओ उससे, कहाँ है हम मिलते। तो उसने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और मैं आती हूँ तुम्हें मिलने के लिए। तो उस धीरे धीरे बात करना कम कर दिया और फिर उसको एक दिन बुलाया भी। और यही नहीं, वो सामने वाला व्यक्ति इस व्यक्ति को इतना मजबूर कर दिया कि रिचार्ज करना उसका, उसके खर्चे उठाना, इसके लिए भी ये लड़की तैयार होने लगी और वो करने लगी। एक जगह उसने बुलाया मिलने के लिए, वो गई वहां मिलने के लिए, लेकिन वो वहां नहीं आया, बहाना बना दिया और ऐसे ही उसको मैनिपुलेट करता गया। आखिर में वो लड़की की मानसिक अवस्था इतनी खराब हो गई, इतना डिप्रेशन में चली गई, उसने पढ़ाई छोड़ दी और आखिर उसको रिहैब में डालना पड़ा। सो हम अपने इमोशंस के साथ बहते हुए कहाँ तक पहुँच रहे हैं? क्या हम अपने जीवन को कोई किसी तरह का नुकसान पहुँचा रहे हैं? ये समझ में नहीं आता है। इसीलिए लव, प्यार, हमारे प्रोग्राम का भी नाम है लव यू जिंदगी। जिंदगी से भी प्यार होता है, उस प्यार की भावना को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: फीलिंग को आपने जैसे कहा आइडेंटिफाई करना बहुत बहुत बहुत जरूरी है, नहीं तो उसके बहुत जो रिपरकशंस होते हैं वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। श्रीनिधि जी, यहाँ मैं आपकी भी ओपिनियन जानना चाहूंगी। एट सच यंग एज, मतलब इतनी कम उम्र में, जब हम सब कुछ सीख ही रहे होते हैं, जिंदगी को जान ही रहे होते हैं, दुनिया हमने पूरी देखी भी नहीं है, उस समय कैसे आइडेंटिफाई करें और क्या फ्रेंड्स की हेल्प ले या फिर खुद से जो समझ में आ रहा है समझ ले, रीच आउट करे, क्या लगता है आपको?
2: इसमें दो चीजें हैं आरुषि जी। सबसे पहले तो ये है कि जब हम ऐसे किसी सिचुएशन में होते हैं जब हम अपने इमोशंस को नहीं रीड कर पाते या समझ नहीं पाते, या हम समझते तो हैं मगर उन सिचुएशंस में स्ट्रगल कर रहे हैं, ये होता है, स्वाभाविक है कि हम अपने इमोशंस के साथ स्ट्रगल कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप छोटे बच्चे हैं तभी आप स्ट्रगल करेंगे, आप युवा होते हुए स्ट्रगल कर सकते हैं, टीनेजर होते हुए स्ट्रगल कर सकते हैं, आप उम्र के बेहतर पड़ाव पे पहुंचकर नौकरी विक्री करने के बाद भी आप स्ट्रगल कर सकते हैं, यहाँ तक भी मैं कहना चाहूंगा कि आप अधेड़ उम्र में मिड लाइफ क्राइसिस के रूप में आप इन इमोशंस से स्ट्रगल कर सकते हैं, और कभी कभार बुढ़ापे में भी, इनफैक्ट जब आप लाइफ के किसी ट्रांजिशन से गुजर रहे होते हैं तब भी आप इन चीजों से स्ट्रगल कर सकते हैं। तो पहले तो ये मान लेना चाहिए कि हाँ, इमोशंस को कई बार प्रोसेस करना आसान नहीं होता या हम सक्षम नहीं होते उस घड़ी। इसमें आपकी गलती नहीं है, इस समय पर किसी दूसरे इंसान की गलती नहीं है, बस वो है, ये सच्चाई है, ऐसा होता है। बिल्कुल वैसा ही है कि किसी को किसी चीज का इन्फेक्शन हो जाना शरीर में, वो स्वाभाविक है, मतलब वो हो सकता है। आप लाख अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास करें मगर फिर भी अगर कोई वायरस कहीं से अटैक करता है या कोई महामारी जैसी चीज है या कोई ऐसी चीज है वो आपको अटैक कर सकती है, और ये चीज है हमारे इमोशंस के साथ भी होता है। जैसे हम फिजिकल हेल्थ में इन्फेक्शंस के लिए प्रोन हो जाते हैं कभी कभार, ऐसे ही हमारे मेंटल हेल्थ में भी ये चीजें हो सकती हैं, भावनात्मक रीति से किसी चीज को सहन कर सकते हैं। तो ये मान लेने से क्या होता है कि हम ये भी समझने लग जाएंगे कि अगला हिस्सा इसका ये है कि जब आप सक्षम नहीं है उस चीज को प्रोसेस करने में आप मदद लेंगे। और सबसे पहले मदद की जब बात की जाती है, हम अपने स्वजनों से मदद लेते हैं, और हमारे युवा साथियों के लिए मैं समझता हूँ ये युवाओं की उम्र के साथ की बात है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे हमउम्र लोग हमें बेहतर समझ सकते हैं, और इसी वजह से हम अपने दोस्तों के साथ ज्यादा कम्फर्टेबल होते हैं। और टीनेज में आप देखेंगे कि जैसे आप टीनेजर्स में थोड़े आगे बढ़ते हैं, जब आप 16 17 18 साल के होने लगते हैं, आप ज्यादा समय अपने दोस्तों के साथ बिताना पसंद करते हैं। लोगों का कॉलेज स्कूल जल्दी खत्म हो भी जाता है तो जल्दी घर नहीं आते, वो ज्यादा टाइम दोस्तों के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि वो मेरे जैसे ही हैं, उनके भी इमोशंस मेरे जैसे हैं, इसलिए वो मुझे बेहतर समझ पाएंगे। और ये चीज होता है बचपन में, शायद ये चीज ऐसी नहीं होती, युवा काल में, खासकर बढ़ते उम्र में ही, जिसमें ये चीज जरूर देखने को मिलती है। तो इसलिए दोस्तों से मदद लेने में कोई बुराई नहीं है, मगर ये भी समझने की जरूरत है कि संभव नहीं है कि आपके दोस्त जो आपके हम उम्र है, खासकर जब युवा काल के दहलीज पर है, लेटर टीनेजर्स में है, तो उनके अंदर उसी प्रकार की मैच्योरिटी हो, ये संभव नहीं। और हर कोई आपकी मदद करना चाहेगा, भले उसके पास वो स्किल सेट्स हो या वो भावनात्मक रूप से उतना सक्षम है या नहीं है। मदद करने का भाव आपके सच्चे मित्र हमेशा आपके लिए रखेंगे, आपके लिए अच्छा सोचेंगे, इसलिए वो कोशिश करेंगे कि वो आपकी मदद कर सके। उधर क्या ये गाइडेंस हमेशा सही होता है या नहीं, इस पर जरूर प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि वो अपनी प्रज्ञा, अपना विजडम, अपने अनुभव के आधार पर बताएंगे, और उनका भी अनुभव कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि वो भी आपके उम्र है। तो युवाओं साथियों के लिए ये समझने की जरूरत है कि ऐसे समय पर भले ही आप अपने दोस्तों से बातचीत करने में कंफर्टेबल है, बिल्कुल करें, उसमें कोई दो राय नहीं, शेयर करना ही चाहिए, मगर सही मार्गदर्शन के लिए, जो मार्गदर्शन आपके दोस्त आपको दे रहे हैं, उसे किसी बड़े से वेरीफाई करके तब लागू किया जाना चाहिए। वरना क्या होता है कि अनुभव के अभाव के कारण कभी कभार हम मिसगाइड हो जाते हैं, क्योंकि उद्देश्य गलत नहीं होता दोस्तों का, वो भी आपका भला करना चाहते हैं, मगर भले उद्देश्य के साथ भी अगर हम कोई गलतियां करते हैं तो उसका खामियाजा बुरा ही निकलता है। इसलिए सोच समझ के साथ उन चीजों को करने की आवश्यकता है, और इसलिए ऐसे लोगों से जो इमोशनली मैच्योर हैं, अनुभवी हैं, उन लोगों के पास मदद लेना चाहिए। बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि पेरेंट्स के साथ बातचीत करने में इसकी चाहत होती हो या वो क्या मानेंगे, क्या कहेंगे, ये सोच लेते हैं कि इनहिबिशन क्रिएट कर लेते हैं। अक्सर बच्चे बुजुर्गों के साथ, अपने दादा दादी, नाना नानी, उनके साथ खुलकर बात करने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ, ये हमें जज नहीं करेंगे, हम बिल्कुल ओपन रह सकते हैं इनके साथ। तो वो चीजें यहाँ मायने रखती है, और मैं समझता हूँ कल्पना जी एग्री करेंगे इस बात को कि जब लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं तो वो हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको ये विश्वास रहता है कि जिनके साथ हम ये बातचीत कर रहे हैं उनके साथ हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर बातचीत करेंगे, और जो कुछ भी हम उनके सामने कहेंगे वो पूर्णतया कॉन्फिडेंशियल रहेगा, वो उन्हें जज नहीं करेंगे, वो उनके ऊपर कोई लेबल नहीं लगाएंगे, उन्हें एक खराब उदाहरण के रूप में कहीं प्रस्तुत नहीं करेंगे, उनकी एक प्राइवेसी और सीक्रेसी मेंटेन रहेगी। एक विश्वास वहां पर एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। मैं समझता हूँ कल्पना जी बेहतर बता पाएंगे इस विषय में।
0: कल्पना जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें?
1: जी मैं सहमत हूँ श्री दीदी जी से, उन्होंने बात बिल्कुल सही कही कि हमें जो अगर वैलिडेशन लेना है, किसी से गाइडेंस लेना है, तो हमारे बड़ों से चर्चा कर लेनी चाहिए। बट थोड़ा सा इससे आगे बढ़कर मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हम अपने आप से कनेक्टेड होते हैं जी, तब अपने लाइफ के डिसीजंस लेना हमारे लिए आसान हो जाए। जैसे अगर हम हमारे क्रिकेट की दुनिया में अभी आजकल जो छाई हुई नई सनसनी है, हमारे वैभव सूर्यवंशी है, इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तब ये महसूस होता है कि इस छोटे से बच्चे को अपनी लाइफ का डिसीजन लेने का ये जो हिम्मत है, कितनी छोटी उम्र में आ गई। उन्होंने छोटी उम्र में उनके पिताजी की मदद से इस स्किल को समझा, और उस स्किल को हासिल करने में बचपन से लेकर अब तक, मतलब अभी भी बच्चा ही है, उसके पीछे वो चले गए। और इस वजह से उन्होंने, हम इमेजिन कर सकते हैं कि दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पार्टीज में जाना, इतनी सारी बातें मिस की होगी उन्होंने, परंतु उन्हें पता था कि उनके लाइफ का डिसीजन उनके फादर ने और उन्होंने मिलके लिया है, और वो बहुत सही लिया है, इसलिए उस डिसीजन के साथ वो चलते रहे। तो वैसे ही जब कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड कभी भी होता है, जैसे श्रीमती जी ने कहा कि वो किसी भी उम्र में हो सकता है, बचपन में भी हो सकता है, बड़े होने पर भी हो सकता है, तो अगर हम ऐसी प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा 10 मिनट्स के लिए साइलेंस में बैठकर खुद के साथ जुड़ने का अभ्यास करते हैं, तो मेरी क्या कैपेसिटीज है, मेरी क्या वैल्यूज है, मेरी क्या इच्छा है, मैं क्या जानना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, ये चीजें हमें धीरे धीरे समझने लगती हैं, और अपने ख्वाब के पीछे हम अपनी एनर्जी लगाना शुरू करते हैं। और हमारे सामने उदाहरण तो है ही, छोटी सी उम्र में अपने ख्वाब के पीछे उन्होंने सही एनर्जी लगाई, तो उसका रिजल्ट उनको कितना बेहतर मिल रहा है, इससे अच्छी तरह हम नहीं समझ सकते
0: जी। कल्पना जी, बिकॉज हम अंतिम चरण में पहुंच गए आज के एपिसोड के, हम एकदम लास्ट में पहुंच गए हैं, तो मैं मेडिटेशन का तो आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि हमें कराएं साथ साथ। क्या कोई ऐसे प्रश्न है जो हम खुद से डिटैच होके पूछ सकते हैं, जो हमें प्यार के इमोशन को सही आइडेंटिफाई करने में मदद करे, जो साइलेंटली बैठ के ऑब्जर्व कर सके खुद के बारे में अगर कुछ?
1: बिल्कुल। सुबह उठने के बाद जब हम अपने दिन की तैयारी, मेंटल और फिजिकल तैयारी करते हैं, मैं अपने श्रोताओं से कहना चाहूंगी कि वो थोड़ा टाइम सुबह उठने के बाद का अगर आप खुद के साथ आप बिताते हैं और ये 5 या 7 मिनट सोचने में बिताते हैं कि आज मुझे फिजिकली और मेंटली अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे प्रस्तुत करना है, तो हमारा माइंड इतना सुंदर जवाब हमें देता है, वो सोचकर हमें आश्चर्य लगेगा। तो पॉजिटिव प्लान जब हम बनाते हैं तो हम अपने आप से पूछ सकते हैं, आज मैं इमोशनली किस तरह से बैलेंस्ड वे में फिजिकली और मेंटली अपने आप को प्रेजेंट करूंगा या करूंगी, ये सवाल हम पूछ सकते हैं। आज मैं अपनी भावनाओं को सही शब्दों के साथ सही व्यक्ति के सामने व्यक्त करने का प्रयास करूंगा। इस तरह से छोटे छोटे सवालों से, क्या मैंने आज ध्यान से सुना है जो लोग कह रहे, लोगों की बातें सुनते समय अगर हम ध्यान से सुने और उनको समझने की कोशिश करें, उनके भावनाओं को समझने की कोशिश करें, तो वो भी एक अभ्यास होता है कि दूसरे क्या कहना चाहते, शायद उनके शब्दों से व्यक्त नहीं हो रहा तो भावनाओं से समझ आ रहा है। सो ये चीजें मैं पहले समझूंगा और फिर बात में जवाब दूंगा। क्या आज किसी को मेरी बातों से खुशी मिली है? आज मैंने किसी को नाराज करने जैसा कोई काम तो नहीं किया या करूंगा? सो ये छोटे से प्रश्न है जिनके साथ हम आगे बढ़ते हैं, और मैं चाहूंगी कि हमारे युवा शांति से बैठकर ये अभ्यास करें, चाहे वो 2 मिनट के लिए ही क्यों ना हो, जिसमें कुछ पॉजिटिव और पावरफुल अफर्मेशंस हो जो हमें इमोशनली मैच्योर बनाने में काम आएंगे। तो आज अभी भी मैं इस कार्यक्रम के अंत में श्रोताओं से अनुरोध करती हूँ कि 1 मिनट के लिए वो शांति से बैठ जाएं। सबसे पहले तो गहरी और लंबी सांस लें और अपने को एहसास कराएं कि मैं इस 1-2 मिनट के लिए बिल्कुल फुर्सत में हूँ खुद को समझने के लिए। अपने श्वासों पर ध्यान दें, उन्हें अच्छी तरह से महसूस करें। अपना राइट हैंड अपने हृदय पर रखते हुए अपने हृदय की धड़कन को सुनने का प्रयास करें, कितनी नॉर्मल है, कितनी स्टेबल है, कितनी शांत है। कानों से सुनने वाली एकदम छोटी सी आवाज जो बहुत मधुर है, उसे सुनने का प्रयास करें, और अंत में अपने मन में 3 बार दोहराएं, मैं एक शांत प्रेममय समझदार आत्मा हूँ, मैं एक शांत प्रेममय समझदार आत्मा हूँ, मेरे प्रत्येक शब्द में सम्मान मधुरता और सकारात्मक ऊर्जा है। धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच कल्पना जी, थैंक यू सो मच श्रीनिधि जी। आज बहुत एक इंटरेस्टिंग चर्चा हुई और हमें समझ में आया कैसे अपने इमोशन को रेट करना है, कैसे उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, क्या क्वेश्चंस हम खुद से पूछ सकते हैं, और कैसे हम दोस्तों की और कब बड़ों की मदद ले सकते हैं क्लैरिटी लाने के लिए जीवन में, और इमोशंस को बेहतर समझ के बेहतर एक्शन देने के लिए, ताकि हमारी लाइफ को वो बेहतर बनाए और हमें नुकसान ना करे। तो थैंक यू सो मच आप दोनों का इस जर्नी पे हमें लेके जाने के लिए। मुलाकात होगी लव यू जिंदगी के अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए लेते हैं इजाजत और जिंदगी से खुलकर कहते हैं कि लव यू जिंदगी। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: कभी कभी इतिहास की कुछ रातें समय की दीवारों पर अपनी छाप ऐसे छोड़ जाती हैं, मानो ब्रह्मांड भी ठहर कर उन्हें देखता हो। स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर उस विशेष कार्यक्रम में जहां हर सुर इतिहास से मिलता है और हर शब्द में वतन की खुशबू बसती है। आप सुन रहे हैं एक गीत एक नारा, राष्ट्रगीत हमारा का एक ऐसा सफर जहां हम उन पलों को फिर से जीते हैं जिन्होंने इस मिट्टी को आजादी की शपथ दी। आज की कहानी एक ऐसी रात से शुरू होती है जो सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं भारत की धड़कन बन गई। आज गीत बन्नो को एक ऐसी कहानी सुनाएगी जो सिर्फ कहानी नहीं इतिहास का एक मूल हिस्सा थी। तो चलिए चलते हैं उस दौर में।
1: भगत जी के फांसी की कहानी सुनाओ ना दीदी।
2: बन्नो, वो रात जब हवा भी कांप रही थी, वो सन्नाटा जिसमें दीवारें भी रो पड़ी थी, लाहौर की उस जेल में आज कोई साधारण कैदी नहीं, एक विचार बंद था, एक तूफान बंद था, एक ऐसा नौजवान जिसकी सांसों में आजादी की खुशबू थी और जिसकी धड़कनों में इनकलाब का राग। आज 23 मार्च की रात थी, वो रात जो इतिहास के पन्नों पर खून से नहीं हिम्मत से लिखी गई। लोग कहते हैं मौत डराती है, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मौत को देखकर मुस्कुरा देते हैं। आज इसी जेल में उस मुस्कान का नाम था भगत सिंह। दीवारों पर लटकते साए भी थरथरा रहे थे, पर एक इंसान अपनी किताब की पन्नों में लेनिन से मिल रहा था और उधर एक बूढ़ा चौकीदार छतर सिंह जिसके कदम लड़खड़ा रहे थे, पर दिल बार बार कह रहा था ये लड़का सिर्फ इंसान नहीं, एक युग है जो खत्म नहीं होगा।
1: ये कैसी रात थी?
2: यही सिलसिला है उस रात का जब एक क्रांतिकारी, एक चौकीदार और मौत से पहले की वो आखिरी रात जिसमें किताबें बंद नहीं हुई, इनकलाब का दीपक बुझा नहीं और साहस अपनी ऊंचाई पर खड़ा था। अब चलो कहानी के माध्यम से तुमको उस कोठरी की ओर ले चलती हूं जहां छतर सिंह धीरे धीरे दरवाजा खोल रहा है और सामने भगत सिंह अपनी वही शांत मुस्कान दिए लेनिन की जीवनी पढ़ते हुए कहते हैं, सत श्री अकाल छतर सिंह जी, कहिए।
3: भगत, मैं तेरे लिए ग्रंथ लाया हूं, पाठ कर।
4: छतर सिंह जी, अगर आपने पहले कहा होता तो मैं आपकी बात मान लेता, मगर अब मैं अगर परमात्मा को याद करूंगा तो कहेंगे कि मैं बुजदिल हूं जिसने सारी जिंदगी मुझे याद नहीं किया, अब मौत सामने है तो मुझे याद करने लगा। ओ नहीं छतर सिंह जी, मैंने जिस तरह अपनी जिंदगी गुजारी है मुझे उसी तरह इस दुनिया से जाने दीजिए, और वैसे भी परमात्मा को याद करने की क्या जरूरत, वो तो हमारे साथ है। आज क्या तारीख है?
3: आज 23 मार्च है।
4: और कल?
3: कल? कल बहुत दूर है, तू घबरा मत, कुछ नहीं होगा बेटे, कुछ नहीं होगा।
4: नहीं छतर सिंह जी, मैं नहीं घबरा रहा, पर आप क्यों घबरा रहे हैं? आप तो इतने सालों से यहां हैं, कितनों को फांसी चढ़ते देखा है आपने, आपके सामने कितने आए कितने गए, फिर आप?
3: तू साड़ा भगत है, तेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, तुझे कोई नहीं भूल सकता। तू वो सब छोड़, मैं तेरे लिए खाना लाया हूं, ले खा ले।
4: हां जी उधर रख दीजिए, मैं ये किताब खत्म करना चाहता हूं पहले।
3: लेकिन सरदार जी सुबह?
4: सुबह की बात सुबह करेंगे, अभी तो मैं एक क्रांतिकारी से मिल रहा हूं।
3: किताब में कौन है वो?
4: व्लादिमीर इलिच लेनिन, रूस की क्रांति के नायक। ये उन्हीं की जीवनी है, रेमिनिसेंसेस ऑफ लेनिन। छतर सिंह जी, आप जानते हैं लेनिन ने एक ऐसी क्रांति लाई थी जिसने न सिर्फ रूस को बदला बल्कि पूरी दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा था कि सिर्फ शासक को बदलने से कुछ नहीं होगा, जब तक व्यवस्था नहीं बदलती शोषण खत्म नहीं होगा।
5: आपकी बातें थोड़ी मुश्किल लगती है सरदार जी।
4: कोई बात नहीं, सरल भाषा में समझाता हूं। हम भारत को सिर्फ अंग्रेजों से आजाद नहीं करना चाहते, हम एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहां कोई किसी का शोषण ना करे, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, सभी को बराबरी का हक मिले। ये है असली इंकलाब। लेनिन भी यही चाहते थे। उन्होंने भी साम्राज्यवाद और पूंजीवाद को मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। उनका मानना था कि इन दोनों से ही दुनिया में असमानता और शोषण फैलता है। मेरी और लेनिन की सोच में कई समानताएं हैं। हम दोनों का लक्ष्य सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था बल्कि एक ऐसी समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना था जहां मजदूर और किसानों का राज हो। हम दोनों ने साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष किया, लेनिन ने रूसी क्रांति से दुनिया को प्रेरित किया और मैं इसी विचार को भारत में आगे बढ़ा रहा हूं। लेनिन ने मजदूरों को जगाया, उन्हें समझाया कि उनकी असली ताकत क्या है। उन्होंने कहा कि दुनिया के मजदूरों एक हो, यही मेरी भी सोच है। मैं चाहता हूं कि भारत के मजदूर, किसान और नौजवान एकजुट होकर इस शोषक व्यवस्था को उखाड़ फेंके।
6: फांसी का समय हो गया है
5: सरदार जी, समय हो गया है।
4: एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा था, क्या मुझे एक अध्याय भी पूरा नहीं करने देंगे? ठीक है, अब चलिए।
7: ओए,
8: नहीं भाई,
7: हम हथकड़ी नहीं लगाएंगे।
9: ओ जी नहीं, हथकड़ी तो आपको लगानी पड़ेगी।
7: ओए,
8: आज बिल्कुल आजाद जाएंगे हम।
4: ओए, जाते जाते किसी को नाराज नहीं करते।
8: तू कहता है तो लगा लेते हैं।
10: रहने दो, ऐसे ही ठीक है।
4: शुक्रिया जेलर साहब। आज आप लोगों को देखने को मिलेगा कैसे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपनी भारत माता के लिए मौत को हंसते हंसते गले लगाते हैं। जी बहुत खुशनसीब हैं आप।
10: कोई आखिरी ख्वाहिश?
4: हाँ, हम एक बार गले मिलना चाहते हैं।
10: हाथ खोल दो।
1: दीदी, ये लोग सच में मर गए? भगत जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी, सब?
2: हाँ बन्नो, वो तीनों सच में चले गए। लेकिन एक बात सुनो, क्रांतिकारी मरते नहीं, उनकी सांसें बस शरीर छोड़ देती हैं, पर उनका इंकलाब जिंदा रहता है।
1: दीदी, भगत जी ने वंदे मातरम क्यों कहा? क्या ये गीत इतना जरूरी है कि लोग इसके लिए जान दे दे?
2: बन्नो, जब भगत सिंह ने आखिरी बार वंदे मातरम कहा तो वो कोई शब्द नहीं थे, वो वचन थे जो उन्होंने मां भारती से किए थे। तुम जानती हो बन्नो, मैं एक गीत नहीं, एक प्रतिज्ञा हूं। मेरी धुन में उन्हीं मजदूरों की हथौड़ी की टक टक है जिन्होंने सूखे पेट पर भी देश बनाया। मेरे शब्दों में उन किसानों की कर्राहें, उन माओं की प्रार्थनाएं और उन बेटों की अंतिम सांसें बसती हैं जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूम लिए। जब मैं बनी थी तो मेरा हर अक्षर किसी न किसी की तपस्या से निकला था, कभी बंकिम जी के कलम से, कभी अरविंदो जी के तप से, कभी लाखों युवाओं की रगों में दौड़ते साहस से, और आज आज जब भगत सिंह जी ने मुझे पुकारा तो ये गीत नहीं था, ये भारत की मिट्टी का अंतिम स्पर्श था। मैंने बहुत कुछ देखा है, कभी कोड़ों की आवाज, कभी गोलियों की गूंज, कभी क्रांति वीरों के नारे, पर आज जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की हंसी फांसी के तख्ते से गूंजी तो मेरे भी शब्द भारी हो गए, क्योंकि बन्नो मेरी रचना का अर्थ इन्हीं लोगों ने खून से समझाया है।
1: दीदी, क्या आप यानी वंदे मातरम दुखी हो जाता है ऐसे पलों पर?
2: नहीं बन्नो, दुखी नहीं, क्योंकि मेरा स्वर बनता ही तब है जब कोई युवा अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। मैं रोती नहीं, मैं गर्व से भर उठती हूं, क्योंकि एक क्रांतिकारी मौत के सामने भी मां भारती को ही पुकारे तो उससे बड़ा सम्मान मेरे लिए क्या होगा।
1: तो दीदी, वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, एक वादा है?
2: हाँ बन्नो, एक वादा, एक ओथ, एक शपथ कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी निष्ठा, हमारा प्रेम, हमारी आत्मा हमेशा अपनी मातृभूमि को समर्पित रहेगी।
11: माँ और मातृभूमि, चाहे उनसे हम कितने ही दूर क्यों ना चले जाएं, उनका प्रेम हमारे लिए और हमारा ऋण उनके लिए कभी समाप्त नहीं होता। इसी प्रेम के नाम पर भगत सिंह जैसे असंख्य देशभक्त हंसते हंसते बलिदान हो गए। उनमें से कई के नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है, पर जब जब वंदे मातरम गूंजता है उन सब की आत्माएं हमारे भीतर बोल उठती हैं। वो लोग चले गए, पर उनका प्रेम, उनका स्वप्न और मातृभूमि के लिए दिया गया वचन अमर हो गया, क्योंकि वंदे मातरम सिर्फ पुकार नहीं, वो रिश्ता है जो माँ और संतान के बीच कभी टूटता नहीं। ऐसी ही अमर गाथाओं को फिर से महसूस करने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा के आने वाले एपिसोड और भी भावनाओं और भी देश प्रेम से भरे होंगे। फिर होगी मुलाकात एक नए अध्याय के साथ, तब तक सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए 107.8 FM रेडियो मधुबन। वंदे मातरम, जय हिंद।

बचपन की सुरक्षा है एक खास जिम्मेदारी, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के साथ उन्हें लंबे समय के पुनर्वास के लिए मदद भी करता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चे या बड़े जो उनकी सहायता करना चाहते हैं डायल कर सकते हैं 1098 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया, और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। सही में सरकार का मंच है आसपास गांव और अंचल में जो गतिविधि हो रही, जो संस्कृति है, जो लोकगीत है, जो प्रतिभाएं समूह रूप में जो करते हैं, जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच एक स्टेज देता है। तो आज इस कार्यक्रम को लेकर हमें बहुत खुशी है, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जिसको ओम शांति नाम से प्रसिद्ध है और सरकार लाइसेंस दिया है आसपास गांवों को उन्नत करने के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, सबका भाव भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए, तो आज हमें आबरोड तहसील के और ग्राम पंचायत के नाड़ी में पहुंचे माताओं बहने आई लोग और बड़े बड़े भाई बुजुर्ग लोग को सम्मान करते हुए उनको स्वागत करते इस कार्यक्रम को सजाने के लिए। तो एक प्रस्तुति सुनेंगे, खासकर भजन संध्या में जिसे अपना दिल का बात रखते, तो हमारा साथ एक होवनहार दिव्यांग कहेंगे नहीं, लेकिन उसका अंतर चक्षु बोले इस तूल चक्षु को दिखाई कम देता है, लेकिन उनका बुद्धि रूपित आंख है वो तेज है, तो उसको स्वागत करके उनका नाम शायद प्रभु राम है ना। वाह, नाम ही कितना सुंदर, प्रभु राम, प्रभु का राम है और प्रभु को राम भी कहते हैं, है ना। हर घर में प्रभु को याद करते हैं, तो हमारा प्रभु राम को स्वागत करते हैं, प्रस्तुति सुनाएंगे। हमारा श्रोता मित्र ध्यान से सुने और हमारा जो कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रभु राम को स्वागत करते हैं। प्रभु राम जी, आप कहाँ से?
1: हम और गांव से।
0: और गांव से आज खुशी लग रहा है?
1: खुशी है सर,
0: खुशी, हमेशा खुशी रहते हैं,
1: हमेशा खुशी रहते हैं, लेकिन आप आने से हमारे को ज्यादा खुशी हो गई।
0: क्या बात, क्या बात, हम आने से उनको खुशी मिला, और हमारा पास ऐसी क्या विशेषता है जो आपको खुशी मिला?
1: आपने हमारे को जो सब जो जिनों को जो शुद्ध बुद्धि दी है, और जितना भी आपने जो बताया वो बहुत अधिकृत बताया, हमारे जो नहीं मालूम था उन लोगों को भी सबको मालूम हो गया।
0: अभी उलाना नहीं देंगे
1: जी,
0: उलाना और नहीं देंगे, कभी किसी को बोलेंगे नहीं, हमको पता नहीं, अभी पता चल गया, पता चल गया,
1: हमारे को सबको पता चल गया।
0: हाँ, बहुत अच्छा, पता चल गया जो हम कौन है और कैसे और कहाँ पर है। चलिए एक प्रस्तुति सुनेंगे, सुनेंगे एक प्रस्तुति भजन के रूप में, शुरू करिए।
2: मन डरे रे सेवा माता पिता कर रे, ओ गर्भवास में आयो थारी माता घणो दुख पायो, रियो नवरे वास ओ डर रे सेवा माता पितारी कर रे, ओ जब थारो जन्म हुओ रे थने पालनिए लड़ायो, माई की दो मरने रे मुँह कर रे सेवा माता पितारी कर रे, हो तो रे पांच वर्ष लो वेगो थने स्कूल बनवा लेगो, थारे पढ़ाई कराई भरपूर रे सेवा माता पितारी कर रे, ओ तो 20 वर्ष रो हो गो ओ थने माता पिता परणायो, थारे नारी लाई रे सुंदर रे सेवा माता पितारी कर रे, ओ मन डर रे सेवा माता पितारी कर रे, ओ थारे छोरा टाबर वेगा माँ बाप से न्यारा वेगा, फे तो नारो बनायो वो घर रे सेवा माता पितारी कर रे, ओ मन डर रे सेवा माता पितारी कर रे, ओ मात पितारे वाली सेवा वोई ब्रह्मा विष्णु महादेवा, वोई रामचंद्र रघुवर रे सेवा माता पितारी कर रे, ओ मन डर रे सेवा माता पितारी कर रे, ओ गावे राम लाल हरिजन रे सेवा माता पितारी कर रे, ओ मन डर रे सेवा माता पितारी कर रे।
1: धन्यवाद, जय
0: जय हिंद और जय प्रभु राम, प्रभु राम की जय हो। और माता पिता, सही में माता पिता कितना भी जन्म ले, लेकिन माता पिता मिलना मुश्किल होता है, ये माँ बाप नहीं मिलेगा जो माँ बाप अभी फिर जन्म लेंगे तो दूसरा माँ बाप मिल सकता है, लेकिन इस जन्म में जो माँ बाप है जो हमें इतना पालना दिए, इतना सेवा किए, माँ जैसे मातृ गर्भ में रख कितना 9 महीना तक पाल उसको कितना बड़ा किया, और जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को भूल जाते हैं बच्चे, लेकिन भूलना नहीं चाहिए। जैसे गीत का माध्यम से प्रभु राम जी बताए, सेवा माँ बाप का सेवा से बड़ा सेवा कोई है नहीं। इसलिए सबको मालूम है, जब एक कहानी आप सुनते होंगे जानते होंगे, जब शिव जी का दो बेटा एक गणेश जी और कार्तिकेय, उनको घूमने के लिए भाई पूरा भ्रमण करके जल्दी जो आएगा रेस लग गया, उनका प्रयास दौड़ लगे, जो पहला आएगा जीतेगा उनको अग्र पूज्य नाम दिया जाएगा। लेकिन कार्तिकेय का तो वाहन मोर था और गणेश का वाहन क्या था, चूहा। लेकिन बुद्धि का खेल है, आत्मा का खेल है, तो तुरंत वो पंछी लेकर चल गए अपना कार्तिकेय, लेकिन उसका तो चूहा वाहन गणेश का पास था, इसलिए वो मात पिता का चार तरफ घेरी लगा दिया और तुरंत पहुंच गया। तो बुद्धि का काम किया, कौन बुद्धि से काम किया, श्री गणेश ने, इसलिए अग्र पूज्य हुए। तो प्रभु राम जी अपने बात में या गीत में, माँ बाप का सेवा से बड़ी सेवा कोई है नहीं। इसलिए माँ बाप जो भगवान हमारा माँ बाप है, उनका सेवा के लिए हमें भेजा, तो उनका सेवा करना चाहिए कि नहीं चाहिए,
1: करना चाहिए।
0: तो सबसे बड़ा माँ बाप कौन है, भगवान, तो भगवान का सेवा हम लोग कर रहे कि नहीं, इसलिए उनका सेवा कर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, खासकर आज प्रभु राम का आवाज को रोक नहीं पाए, और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: प्रभुराम जी को पुनः स्वागत करते हैं। प्रभुराम जी, पुनः आपको एक चांस मिल रहा है, क्योंकि सबको आप पार करके और आपका जो विशेषता है देखने को मिल रहा है, तो सुनाइए और एक प्रस्तुति शुरू करिए प्रभुराम जी।
2: हंसा सुंदर काया रो मत कर जे अभिमान, आखिर एक दिन जानो रे मालिक रे दरबार।
1: क्या बात, क्या बात।
2: हंसा सुंदर काया रो थे मत कर जो अभिमान, आखिर एक दिन जानो रे ईश्वर रे दरबार। गर्भवास मेरे दुख पायो जब हरि से करी पुकार, पल पल भूल नहीं रे अनजुग तेरे मां। हंसा सुंदर काया रो मत कर जे अभिमान, आखिर एक दिन जानो रे मालिक रे दरबार। कुटुंब कबेलो देखने थे तो गर्भ कियो मन माए, हंसा केलो जावे रे कोई ने आवे साथ। हंसा सुंदर काया रो मत कर जे अभिमान, आखिर एक दिन जानो रे ईश्वर रे दरबार। राम नाम री रे बांध गाटरी बहु से कर लपात, सात सेवटिया के वेरे आवे थारे काम। हंसा सुंदर काया रो मत कर जे अभिमान, आखिर एक दिन जानो रे मालिक रे दरबार। आखिर एक दिन जानो रे ईश्वर रे दरबार।
1: धन्यवाद। सही में एक प्रेरणादायी और जो हकीकत है, इस कार्यक्रम का माध्यम से हमारा श्रोता मित्र तक पहुंच पा रहे हैं, और हर गांव में इस तरह भावना है। भले बहुत सारा लोग है, बहुत सारा मनरेगा में आते, लेकिन एक कमाल कर दिए, एक जैसे आकाश में रात को बहुत सारा सितारे रहते लेकिन एक चांद पूरा उजला दे देता है। तो इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से हमारा प्रभुराम जी सुंदर रूप में प्रस्तुति दिए, और एक दिन हमें जाना ही है, और एक दिन हमें आए थे और एक दिन जाना है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है, क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाना है। लेकिन हमारा कर्म, हमारा संस्कार, हमारा बुद्धि यदि तेज होगा तो जो भी जिसका घर में भी जन्म लेंगे वो अच्छा से अच्छा निभा पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद लेते हैं। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद प्रभुराम को भूलने पर नाम, जैसे प्रभुराम जी आपका नाम कौन रखा था, बहुत सुंदर, मुझे बहुत अच्छा लगा, नाम कौन रखा था?
3: कोई ज्योतिष होने रखा था।
1: हाँ, इसलिए प्रभु को प्यारे हो गया, प्रभु का साथ भजन करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद लेते हैं। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हमारा माताएं बोलते भाई हम क्यों पीछे रहेंगे, पांडव सेना, प्रभुराम पांडव सेना का तरफ से और हमारा शक्ति सेना की तरफ से हमारा मैट भी स्वागत करेंगे। एक भजन होगा, भजन संध्या में आज, और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

0: आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, हमें बहुत खुशी है। आज भाई लोग और माता लोग, बाबूजी लोग अपना आवाज को रोक नहीं पा रहे। इस कार्यक्रम को सजाने के लिए रेडियो मधुबन इस तरह मंच पूरा जहाँ जाते हैं वहाँ पर हमारा स्टूडियो बन जाता है। आज रेडियो मधुबन यहाँ का मंच स्टूडियो है। स्टूडियो में सभी माताओं को धन्यवाद देते हैं। संगठन पहला बार देखे, पूरा सभी दिल से भाई लोग का आवाज को, प्रभु राम का आवाज को सुन के हमारा रेखा बहन और उनका टीम उनको आगे बढ़ाएंगे। और रेखा को आज तो भाग्य का रेखा स्वयं परमात्मा ने दे दिया, जितना खींचना हो भाग्य का रेखा खींच लेगा, क्योंकि परमात्मा का ये काम है, मेरा काम नहीं है। भाग्य का रेखा भगवान के हाथ में रहता है और भगवान जब चाहता है ना छप्पड़ फाड़ कर देता है। तो आज हमारा भाव और भावना को भगवान तक पहुंचे। और जैसे प्रभु राम जी अपना बात में संगीत में एक मोटिवेशनल मैंने जो आवश्यकता है संसार को जो सीखने की चीज वो बताए, जैसे हमें एक दिन जाना है, एक दिन जानने का पहले क्या करना चाहिए हमें सीख मिली। तो हमारा रेखा देवी को स्वागत करते, उनका टीम को और मैट को भी धन्यवाद देते जो कि इस कार्यक्रम को सजा रहे। तो एक प्रस्तुत सुनाएंगे रेखा देवी बहन।
2: अरे सतगुरु मिल

0: कीजिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद भाव और भावना को लेकर, क्योंकि इस तरह कार्यक्रम इस तरह मंच मिलता नहीं माताओं बहन को। आकाशवाणी में जाएंगे तो उनको कोई बुलाएगा नहीं, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो में जाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। किंतु सरकार क्या किया, रेडियो मधु आपका रेडियो नाम पे रेडियो दिया है जो आपका आवाज को जन जन तक पहुंचाते। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक भजन सुनेंगे, शायद रेडी है तो अल्प विराम के बाद। रेखा बहन को भी धन्यवाद और हमारा मैट को भी धन्यवाद देते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

आगे बढ़ाते हुए अगला प्रस्तुति के लिए सुनते हैं। हमारा सभी साथी उनको भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पांडव का बिना शक्ति कुछ नहीं कर सकते, इसलिए पांडव पीछे से हमें सहयोग देते हैं, हमारे भाई लोग और हमारा बहन है, माता भी एक गीत प्रस्तुत करेंगे। रेखा एंड पार्टी शुरू करिए।

0: रामे भोले शिव शंकर भगवान
1: की जय हो।
2: बोलो शिव बाबा की जय, शिव भोले बाबा की जय, हर हर महादेव की जय। और जय में ही हमारा माता बहनों का भी जय है। आज बहुत खुशी लग रहा है, सभी ने अपना अपना बात को गीत का माध्यम से, भजन का माध्यम से सुना है। तो भाई साहब आपका नाम बताइए।
3: केशव पुरोहित।
2: पुरोहित जी, अरे बाप, पुरोहित को तो मानना पड़ेगा भाई। पुरोहित बहुत चालाक होते हैं और बहुत होशियार होते हैं। हर स्कूल में पुरोहित है मास्टर साहब। आपका गांव में भी बहुत सारा पुरोहित है।
3: लड़का का मास्टर ही है।
2: क्या नाम है? अशोक पुरोहित। आप बोला ना पुरोहित, शंभू पुरोहित है, मोहन पुरोहित है, सब पुरोहित। हमारा शिक्षक का नाम स्कूल में जाते हैं क्योंकि पुरोहित लोग बहुत शिक्षित होते हैं। और आज तो सभी माताएं शिक्षित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, अंतिम प्रस्तुति के लिए हम चलेंगे। और एक प्रस्तुति होगा, जो आएगा वो पाएगा, जो नहीं आएगा वो खोएगा। खोना नहीं है, पाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, अंतिम प्रस्तुति के लिए हम चलेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद।

अरे 6 घंटा का 12 घंटा कर दी गणो आयो चो जोर, नारायण के लगायो ढोक मारी बेड़ा कर दी पार। पहली 6 घंटा चाले चो पाचे करियो विचार, दोनी जोड़ियो हाथ मारी नारायण सुनया पुकार। अरे नारायण 12 घंटा कर दिया बाला देव, गुजर किरे आई बीनती।

ओम शांति, मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी मिल रहा है, क्योंकि खुशी क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आज माताएं बहनें अपना आवाज को रेडियो में दे रहे हैं। रेडियो को जाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, एक सेकंड में 10 रुपया खर्च होता है आवाज सुनने के लिए एडवर्टाइज, लेकिन माताओं को बहन को आज रेडियो मधुबन जितना गाना चाहिए, जितना आपका 1 घंटा का प्रोग्राम है, इसलिए कितने खुशी का बात है। एक एडवर्टाइज के लिए 100-100 रुपया खर्च करते हैं बोलने के लिए, लेकिन आज सरकार ने दिया एक गरासिया भाषा का एक आदिवासी गीत, न हो आदिवासी एरिया में आए एक आदिवासी गीत सुनाएंगे। 1 2 3 शुरू।

जय हो, जय हो, सभी का जय हो। और बहुत खुशी और हर्ष का साथ इस कार्यक्रम को सजाए सभी बहन माता और भाई लोग को धन्यवाद देते हैं। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर, किसी भजन संध्या को लेकर, किसी मनरेगा का आवाज को। तो आज हमें बहुत खुशी है, सभी को राम राम, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहे।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड। मधुबन अनप्लग्ड यानी कि संगीत का वो सफर, यानी कि शेर व शायरी, क्रिएटिविटी और पंक्तियों का सफर। जी हाँ, जब एक गाना बनता है तो शब्द मोतियों की तरह पिरोए जाते हैं, बातें वही होती हैं, लेकिन कहने का अंदाज इतना अलग होता है कि वो दिल में घर कर जाते हैं। और ऐसी ही कुछ बातें, ऐसी ही कुछ पंक्तियां, ऐसी ही कुछ लाइंस आज आपको मिलेंगी कार्यक्रम मधुबन अनप्लग्ड में। और इसको और खूबसूरत बनाने के लिए आज हमारे समक्ष है एक ऐसी अतिथि, एक ऐसी हस्ती जिन्होंने लेखन जगत में अपना नाम ही नहीं कमाया बल्कि ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया जो प्रेरणा का स्रोत है। जी हाँ, हमारे समक्ष हैं डॉक्टर अलका अग्रवाल सिकतिया जी, जिन्होंने बीएससी की, फिर अंग्रेजी में भी उन्होंने पढ़ाई करी, हिंदी साहित्य में गोल्ड मेडलिस्ट रही, पीएचडी की उपाधि भी उन्होंने प्राप्त की। उनका शोध रहा हरिशंकर परसाई पर, लघु शोध और प्रबंधन शोध उन्होंने किया। कई प्रकाशन उनके नाम है, वैसे तो हम कुछ के नाम आपको जरूर लेकर सुनाते हैं। मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, अदृश्य, मेरी तेरी, सबकी, मीरा कूल, व्यंग संग्रह है ये। कई पत्र पत्रिकाएं भी उनकी प्रकाशित हुई और इसके साथ साथ उन्होंने लेखन क्षेत्र में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। उनको कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, चाहे वो गोदरेज कंज्यूमर फिल्म फेस्टिवल सम्मान हो, दुष्यंत सम्मान हो, रचनाकार आयोग द्वारा बिस्मिल्ला खां पुरस्कार हो, ऐसे कई अवार्ड भी उन्हें प्राप्त है। वैसे तो उनके करियर की लंबी व्याख्या है, लेकिन चलिए पहले उनका स्वागत करते हैं और उनके बारे में और जाने का आज अवसर हमें मिलेगा। आपका बहुत बहुत हृदय से स्वागत है अलका जी।
1: जी बहुत बहुत आभार, और ये मेरे लिए हार्दिक प्रसन्नता का विषय है कि आज ब्रह्मा कुमारी के रेडियो मधुबन में मुझे ये अवसर मिला है। और बचपन से हम सुनते आए हैं, और मैं 90s में एक बार यहाँ पर आई भी थी।
0: अच्छा।
1: और उस समय बहुत से, हम जो मनुष्य होते हैं, जिज्ञासा तो हमारे भीतर होती है।
0: बिल्कुल।
1: तो बहुत से जिज्ञासाएं थी, तो मैं लगातार प्रश्न पूछती जा रही थी, क्योंकि उस समय छोटी भी थी थोड़ी सी। तो वो जो दीदी थे, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि आपके भीतर इतनी जिज्ञासा है, आप कहाँ रहती? मैंने बताया मुंबई, बॉम्बे, तब तो बॉम्बे था
0: जी।
1: तो उन्होंने कहा कि हमारे सेंटर पर जाइएगा, और कुछ ऐसा होता है ना कि हम छोटी छोटी सी बातों को लेकर कई बार परेशान भी हो जाते हैं, तो वो कुछ कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि जिज्ञासा और परेशानी दोनों थी, और मुझे पता नहीं क्यों मैं, मेरे कदम उठ गए आपके जो मलाड में सेंटर है वहाँ उठ गए।
0: ओके।
1: और वहाँ पर फिर मुझे बहुत से प्रश्नों का उत्तर भी मिला और मेरे मन की परेशानियों का समाधान भी हुआ था। तो मैं लगातार कई बार गई, लेकिन फिर बहुत सी बातें होती कि अगर आपने परिवार चुना है तो कुछ प्रायोरिटीज हो जाती हैं कि वी कांट गो अगेंस्ट दैट। तो ठीक है, मतलब फिर मैं गई नहीं, लेकिन हाँ, मैं जो आपके सिस्टर बी के शिवानी जी हैं, उनको तो सुनना किसको अच्छा नहीं लगता
0: जी, जी।
1: तो बहुत बार जब हम कहीं अटकते हैं ना, तो हम जब उन सुनने लगते हैं तो हमको बहुत से प्रश्नों का समाधान मिल जाता है
0: जी।
1: और अभी शिव बाबा ने, पता नहीं उनकी क्या मंशा है, मुझे नहीं मालूम है, फिर से उन्होंने बुलाया, और यहाँ पर भी जो आपका आर्ट एंड कल्चर का, आप ये जो 3 दिन का पूरा कॉन्फ्रेंस होता है, राष्ट्रीय सम्मेलन, तो उसमें क्योंकि विषय इतना अच्छा था, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपको समाज को बचाना है, देश को बचाना है और विश्व को बचाना है, तो परिवार को बचाना सबसे अधिक आवश्यक है।
0: बिल्कुल।
1: तो जो विषय था, और मेरा विषय था संस्कृति, संस्कार और परिवार के मूल्यों के संवर्धन की कला, तो ये बहुत आवश्यक है कि जैसे मुझे ये लगता है कि हम अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं, और जो दूसरे देश के लोग हैं वो हमारी संस्कृति की ओर आ रहे हैं।
0: आ रहे हैं।
1: तो खैर, ये तो मैंने बताया कि स्पीकर यहाँ आई थी, लेकिन आज आप सबसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है और मेरी आवाज आप तक पहुँच रही है, तो उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ।
0: वैसे तो बहुत सारे प्रश्न है मेरे मन में, लेकिन मैंने आपकी बहुत सुंदर प्रोफाइल जो पढ़ी, उसमें आप ये भी लिखा था कि आप फाउंडर हैं क्रिएटिव राइटिंग की।
1: सॉरी,
0: आप फाउंडर हैं क्रिएटिव राइटिंग।
1: जी जी, हाँ।
0: जी, तो अगर उसके बारे में कुछ बताएं।
1: जी जरूर। क्रिएटिव राइटिंग, देखिए क्या होता है, जो लेखक होता है ना, नजर और नजरिए का फर्क होता है। अब सामने ये पेड़ दिख रहा है मुझे, है ना, मैं भी देख रही हूँ, कोई और भी देख रहा है, किसी को सिर्फ लगेगा कि उसमें पत्तियां हैं, लेकिन एक जो लेखक होता है उसमें अलग दृष्टिकोण से देखता है। एक अलग पर्सपेक्टिव से देखता है. तो बहुत से लोग कोविड में खास तौर पर बहुत, क्योंकि कोविड में लोग अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे थे, अंतर यात्रा कर रहे थे, और कई लोग जब बहुत परेशान थे तो कई लोगों ने हमसे संपर्क किया
2: जी.
1: मेरे साथ में दिनेश शाकुल जी हैं, जो चंद्रगुप्त बनते थे चाणक्य सीरियल में, और काफी बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत नॉलेजेबल हैं
2: जी.
1: तो कई लोगों ने हमसे कहा कि लिखा कैसे जाता है, हम लिख तो रहे. तो फिर हमने क्रिएटिव राइटिंग का जो है वो शुरुआत करी.
2: ओके.
1: और उसमें हमने कहा कि जो कविता क्या होती है, कविता में अलग अलग भाव होते हैं, नाद होता है, और उसमें किस तरह से आप उसको लिखते हैं. तो फिर हमने ये काफी सारी पूरा सिलेबस बनाया था. पांच मॉड्यूल्स थे, उसके पांच मॉड्यूल्स में हमने वो सिलेबस बनाया था.
2: अच्छा.
1: और उसमें हम उनको वो पूरी क्लासेस लेते थे और उसके बाद उनको हम होमवर्क देते थे. तो कई लोगों ने उसमें बहुत अच्छी कविताएं लिखना सीखा. और क्योंकि मैं महिला काव्य मंच है, अंतर्राष्ट्रीय है, जिसके फाउंडर है नरेश नाथ जी, तो उन्होंने मुझे महाराष्ट्र मकाम का अध्यक्ष बनाया. तो उसमें बहुत सी महिलाएं जुड़ी. और उसमें आरुषि जी क्या है कि मन से मंच तक.
2: अच्छा.
1: है ना
2: जी.
1: तो ये जो आपने कहा क्रिएटिव राइटिंग और मन से मंच तक, तो मन में बहुत से लोगों के भाव होते हैं ना. आप अनुभूति को जब अभिव्यक्ति में ढाल देते हैं, उसको उतार देते हैं कागज के कैनवास पर, तो वो कविता, कहानी, गजल कुछ भी बन जाती है. तो इसी तरीके से जब बहुत सी महिलाएं आई जिनको लिखना नहीं आता था और वो केवल कुछ भी या तो किसी की पढ़ देती थी, फिर हमने उनको थोड़ा सा और गाइड किया. तो इस तरह से जो क्रिएशन, क्योंकि देखिए कलाकार तो क्रिएशन करता है.
2: बिल्कुल.
1: और यहाँ पर एक चीज मैंने बड़ी अच्छी सुनी कि कलाकार यानी जो कल को आकार देता है.
2: क्या बात है.
1: तो मुझे बहुत अच्छा लगा. तो हम ये नहीं कहते कि हम सचमुच पूरा कल को आकार दे सकते हैं, एक चेतना जरूर पैदा कर सकते हैं। तो एक क्रिएटिव राइटिंग के क्रिएशन कैसे था, राइटिंग तो है लेकिन क्रिएशन क्रिएटिव कैसी हो, रचनात्मकता कैसे आए उसमें, तो ये जो है हमने पूरा मॉड्यूल बनाए हैं और उसको लेकर के हमने पूरी कविता के ऊपर क्रिएटिव राइटिंग की. इसी तरह से कहानी पर भी हम मॉड्यूल बना रहे थे लेकिन किसी कारण से छूट गया. क्योंकि मैं कहती हूँ कहानी एक घटना से नहीं होती. जैसे जब हम छोटे थे, मैं बहुत छोटी उम्र से लिख रही, पहले तो मैं बता दूं 6-7 साल के लिए जब से मैंने कुछ लिखना शुरू कर दिया था. उसके रीजंस भी हैं, अगर आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगी.
2: बिल्कुल. खैर, जाना चाहेंगे.
1: तो क्या होता है ना कि जैसे मैंने एक घटना कहीं देखी, दूसरी घटना कहीं देखी, तीसरी घटना कहीं देखी, तो हम जब सबको सिंक्रोनाइज करते हैं, क्योंकि जो रचनात्मकता होती है, रचनात्मक लेखन, क्रिएटिव राइटिंग होती है, वो रिपोर्टिंग नहीं होती है. उसमें आप यथार्थ के साथ में कल्पना का भी उसमें सम्मिश्रण रहता है.
2: बिल्कुल.
1: तो ये जो होता है, ये तो क्रिएटिव राइटिंग इज अ वेरी वास्ट फील्ड और उसमें ये वाली बात है. और एक बात बहुत आवश्यक है कि क्रिएटिव राइटिंग कोई मशीनी तो वो होती नहीं. उसमें आपको भावनाओं में जब तक पगी नहीं हो ना, तो उसमें वो बात नहीं आ पाती है. तो मुझे लगता है कि हर जो रचनाकार है उसके अंदर भावनाएं तो होनी चाहिए और वो अपने दुख के साथ दूसरे के दुख को भी उसी तरह से अनुभव कर सके,
2: संवेदनशील
1: कर सके. बिल्कुल. तो क्योंकि दुनिया तो बहुत बड़ी है और जिंदगी हमारे आसपास बिखरी पड़ी है, तो उस जिंदगी को जब आप रचनात्मकता में ढालते हैं, वो क्रिएटिव राइटिंग.
2: क्या बात है. कितनी सुंदर डेफिनेशन दी है आपने.
1: थैंक यू.
2: आपने फिल्मों के लिए लिखा है, आप रेडियो की बात करें या फिर कविताओं की बात करें, आर्टिकल्स की बात करें, कहानी, मतलब बहुत बहुत कुछ लिखा है आपने. आपके कई पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं. कुछ एक किसी प्रकाशन के बारे में आप जरूर बताएं. जैसे मान लीजिए, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग टाइटल लगा, मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, तो इसके पीछे का क्या कहानी है, ये कैसे लिखा या क्या, उसके बारे में कुछ
1: मैं बताती हूँ. एक तो आपने रेडियो की बात की, उस पर फिर मैं मुर्दे पे आऊंगी. तो रेडियो लेखन के लिए मैं आपको बताऊं कि क्योंकि जैसे मैं बॉम्बे से हूँ, तो एक बार किसी ने कहा कि बम्बई के में संयुक्त परिवारों पर आप कुछ एक लिखो.
2: अच्छा.
1: तो मुझे किसी ने चैलेंज किया कि आपको बॉम्बे में संयुक्त परिवार मिलने वाले ही नहीं है. लेकिन बोलते हैं ना, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, और मुझे तो करना था. आप मानेंगे नहीं आरुषि, जब मैं जब ढूंढने लग गई, 13 परिवार की जगह मुझे इतने परिवार मिलते चले गए. और वो मैं आज भी गूज़बम्प्स आते हैं मुझे जब मैं वो अनुभव शेयर करती हूँ. तो जिनके भी परिवार में गई, तो क्या होता है ना कि जैसे एक जगह अगर जब इकट्ठा होता जाता है पानी तो सड़ने लगता है. इसी तरह से ना परिवारों में भी कई बार कुछ भावनाओं में एक दूसरे से क्लैशेस होने लगते हैं. तो लेकिन जब मैं उनसे मिली, और एक परिवार अंधेरी का मैं आपको बताती हूँ, दुबे परिवार था, तो वहाँ बड़े भाई भाभी ने ही उनके पूरे मतलब छोटे भाई बहनों को बड़ा किया था और बहुत अच्छे से सारा कुछ उनका किया था. तो जब हमने ये किया तो वो लोग लिटरली रोने लग गए और मुझे गले लगा लिया और उनने कहा कि जैसे एक विरेचन होता है ना जिसको कैथासिस कहते हैं, एरिस्टोटल ने जो दिया था कि उनने कहा हमारे अंदर की सारी जो गलत भावनाएं आने लगी थी वो सब खत्म हो गई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरीके से एक हमने जो काम किया, तो रेडियो लेखन में ये एक अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा। और ये रापा सीरियल अवार्ड होता है, रापा यानी जो टेलीविजन और दूरदर्शन में जो बेस्ट होता है, तो उसको बेस्ट रापा सीरियल अवार्ड भी मिला था।
2: क्या बात है
1: जी,
2: क्या बात।
1: अब आपने मुझसे मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, तो आपको जैसे शीर्षक बहुत अच्छा लगा, तो दरअसल ये एक मेरे एक दोस्त हैं, तो वो पहले फिल्मों में एक्टिंग करते थे, अब वो बिहार में कहीं रहते हैं। तो क्या हुआ था कि मेरी कहानी पढ़ के उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया कि मुझे बहुत अपनी अपनी सी वो कहानी लगी, बहुत मैं कनेक्ट हुआ हूँ उससे, तो फिर उनसे बातचीत होने लग गई। तो जो क्योंकि बॉम्बे में तो बॉलीवुड और बॉम्बे की लाइफ, तो बॉम्बे या तो मतलब ऐसे कहते गरीब से गरीब को भी भूखा नहीं सुलाता, अमीर से अमीर को भी। तो बॉम्बे एक ऐसी मिस्ट्री है कि जिसको हर कोई हल करना भी चाहता है, जिसमें जाकर फंस भी जाता है। तो ये हुआ कि वो रवि नाम है उनका, तो उनसे मेरी फिर अच्छी बातचीत होने लग गई। और वो फिल्मों में सीरियल्स में सब स्ट्रगल कर रहे थे, फिल्मों में स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, बन गए तो बन गए, नहीं तो बहुत खत्म भी हो जाते। खैर तो वो जो बताते थे, फिर उनकी कविता थी मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, और तो इस तरीके से तो वो फिर बाद में उनसे ही, क्योंकि उनकी लाइफ थी तो वो स्ट्रगल करते हुए दो दोस्तों की कहानी है। फिर अंत में ये होता है कि जो दो दोस्त हैं, मतलब एक दोस्त दूसरे दोस्त को संभालता है, फिर दूसरा दोस्त जब परेशान होता है तो ये संभालता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है कि वो कुछ ऐसा समझौता करने के लिए तैयार हो जाता है और रूम से चला जाता है। उस समय पेजर हुआ करते थे जब मैंने ये कहानी लिखी थी, तो पेजर पर ये कबीर जो है पहला वाला दोस्त, वो आदित्य को मैसेज करता है कि मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, इतिहास वो लिखते हैं जो धारा के विरुद्ध चलकर अपना रास्ता खुद बनाते हैं। तो अब मैं ये शीर्षक कैसे है, देखिए कई लोग कहते हैं मुर्दे मतलब तुम्हारे शीर्षक मुझे समझ नहीं आए, जो समझ सकता है जैसे आपको अच्छा लगा। अब आप मुझे बताइए कि जो जीते जी मर जाएगा वो तो मुर्दा हो गया ना, और जीते जी जिसके अंदर जिजीविषा है, एक संघर्ष की कामना है, तो वो कभी मुर्दा नहीं हो सकता।
2: बिल्कुल,
1: इतिहास उनका ही लिखा जा सकता है,
2: और हार नहीं मानता
1: है ना, उसका इतिहास तो कभी नहीं लिखा जाएगा। तो ये बात है, और यही मैं अपने जिंदगी में भी कहती हूँ कि हार कभी मत मानो, है ना, जैसे एक वो है ना कि हार के आगे जीत है, तो यही वाली बात है कि अपने आप को हारने नहीं दो। खास करके यहाँ आने के बाद इस डिवाइन में कि मतलब जब हम अपने आप से संवाद करते हैं, परमात्मा से खुद को जोड़ते हैं और अपने असत्य को पहचानते हैं, तो हमको लगता है कि नहीं हार तो कहीं है ही नहीं। तो कुछ इसी तरीके से कि इतिहास आप लिख सकते हैं, आप अपने जीवन में अपने आप को एक हमेशा कर्मठ बना के रखिए।
2: जी बिल्कुल, ये जब कभी कभी बहुत बड़ी मुश्किलें आती हैं तो उसको जीवित रखना बहुत जरूरी होता है, जो हमारे अंदर की आग है, जो हमारे अंदर की भावनाएं हैं। मैं एक और प्रश्न आपसे जरूर पूछना चाहूंगी यहाँ पे, क्योंकि आप कई आपने उपन्यास भी लिखे, कई कहानी संग्रह हैं, तो कहानियां लिखने के लिए अगर मान लीजिए कोई इंटरेस्टेड है, कोई युवा है जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो अगर आप कुछ टिप्स दें, कुछ ऐसी बातें जो मदद करें, जैसा आपने कहा ना अनुभूति को अभिव्यक्ति मिलाने के लिए, आपकी ओर से कुछ ऐसे,
1: मतलब आपका प्रश्न है कि कौन सी बातें कहानी लिखने में मदद करें।
2: जी जी जी,
1: हमारा जो मैका है वो कटनी एमपी में है, और वहाँ एक फार्म हाउस है हमारा। तो मेरे पापा जो थे उन्होंने पूरी अपना सारा एकदम रात से लाइफ छोड़ के, उनको फार्मिंग बहुत पसंद आई, तो वो हम मतलब 400 एकड़ जमीन थी, बंगला था, तो हम लोग वहाँ रहते थे। तो वहाँ जो गांव की लड़कियां आया करती थी उनसे हमारी दोस्ती हो जाती थी, और वो लड़कियों को देख करके ना मेरे जहन मतलब वो अंकित होती चली गई। उस समय तो मैं बहुत छोटी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे क्योंकि मैंने छोटी उम्र में कहानी भी लिखनी शुरू कर दी थी, तो वो कहीं ना कहीं मतलब जैसे एक शिवरात्रि नाम की लड़की थी, हाँ उसका नाम ही शिवरात्रि था, और आज भी मुझे वो वैसे की वैसे याद है, एकदम लंबी छरहरी सांवले रंग की, बड़ी बड़ी आंखें, तो वो कहीं ना कहीं मेरे जहन में अंकित हो गई, है ना। इसी तरह से हमारे यहाँ पर एक गाल बाबा थे, तो उनकी बेटी का नाम था अमसा था, अमसा। अब आप बोलेंगे अमसा कोई नाम होता है ना, है ना। अब वो उसका रीजन क्या था कि मेरी दीदी ने उनकी बेटी का नाम रखा था अंशा।
2: अच्छा।
1: अब अंशा तो वो नहीं बोल सकते थे तो अमसा बोलते थे, तो एक कैरेक्टर मेरी अमसा बनी, एक कैरेक्टर मेरी शिवरतिया बनी, और फिर उनकी कहानी दूसरों कहीं से आए, जैसे जैसे मैंने बताया आपको कि कटनी की हूँ मैं, तो कटनी में ना चूने के भट्टे बहुत होते हैं, तो चूने के भट्टों में जो लोग काम करते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ उनको टीबी बहुत हो जाती है, तो वो जो सारी जो चीजें थी वो, उसके बाद में रेलवे लाइन पर जैसे गरीब लोग हैं वो कोयले बिन रहे हैं, कोयले के जो वैन निकलती ना कोयले गिरते हैं, तो वो कोयले बिनते बिनते ट्रेन से कट जाते हैं, कई बार उनको नहीं पता चलता था। तो ये जो मेरा जो एकदम मासूम सा मन था ये बहुत मुझे परेशान करती थी ये चीजें। और वो फिर सब मेरी कहानी में ना, मतलब एक चीज वहां में जैसे बताया ना, एक घटना ये, एक घटना वो, तो ये जैसे कि जो मतलब मेरी कहानी में अमसा जो है वो गांव से शहर आती है, फिर वो इस तरह से उसकी और वो अमसा से मिलती है ये जो राइटर है, और वो चूने भट्टे के वहां जाती है, तो वो बोलती है कि दीदी हम ना कक्का भाई, क्योंकि मैं वहां की तो मुझे भाषा भी आती, दीदी हम कब ना चूने के भट्टे में काम करीबे। तो वो फिर बोलती, लेकिन जब दूसरी बार जाती तो देखती कि वो अमसा खांस रही है बुरी तरीके से, तो वो बोलती कि तुमको क्या हो गया, तब वो कहती कि दीदी हम कहे थे ना कि हम अम्मा वाला काम कभी ना करेंगे, लेकिन हमारे घर में खाने को नहीं बचा, दद्दा भूखे मर रहे हैं, दीदी भूखी मर रही, तो क्या करें, काम तो करवे को पड़ा थे। तो वो सारी जो चीजें थी, तो वो मतलब वो मैंने वो भाषा वहां की, क्योंकि बचपन में उनके बीच में जाते थे, तो ये ना जो लेखक होता है ना वो बहुत ज्यादा ग्रहणशील होता है और उसका ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प होता है और संवेदनाएं कहीं, और उस पर जो संवेदनाएं होती है ना, तो कहते हैं ना जैसे कि हीरे पॉलिश कर दिया है, तराशती है संवेदनाएं, इस तरह से कहानियां हमारी बनती हैं। जैसे आपसे ही मैं बात कर रही हूँ, अब आपकी स्माइल पर ही मैं कुछ कविता लिख दूंगी। तो ये तो देखिए क्या होता है कि नजर की बात है,
3: नजर नजरिया जो आपने कहा,
1: बिल्कुल हाँ।
3: जैसा आपने कहा था कि आपने बहुत कम उम्र में ही लिखना शुरू कर दिया था, तो क्या ऐसी कहानियां थी जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, या फिर क्या कोई ऐसा क्षण था जिसने आपको इंस्पायर किया, या कहां से लिखने की शुरुआत इतनी कम उम्र में कैसे हुई?
1: क्या हुआ था आरुषि जी, कि बचपन में मतलब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था, अक्सर मैं साक्षात्कार में ये बात तो आती कि लोग पूछते हैं कि लिखना कैसे शुरू किया, क्या किसी ने, जैसे आपने पूछा क्या किसी ने इंस्पायर किया या कोई ऐसा क्षण आया, तो मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घट गई थी। तो मतलब हम लोग पांच बहन थे और मैंने अपना बहुत, दीदी लोगों ने मेरा नाम जल्दी लिखा दिया था, तो मैं मम्मी पापा फार्म हाउस में रहते थे, तो मैं दीदी लोग के साथ यहाँ रहती थी और मैं बहुत छोटी सी थी, तो मेरी दीदी जो थी सबसे बड़ी वो खुद 18 साल की थी जब उनकी शादी हुई थी, और वो मेरे लिए माँ समान थी कि मम्मी फार्म हाउस पे रहते थे मम्मी पापा। तो उसके बाद मतलब उन्होंने मुझे डांस वगैरह, हम लोग का पिक्चर हॉल हुआ करता था तो डांस वगैरह करती थी, तो उनने कहा कि इसको डांस सिखाया जाएगा, तब तो लिखने जैसा कुछ सोचा भी नहीं था, मैंने नहीं सोचा ही नहीं था, मतलब 5-6 साल की बच्ची क्या सोचेगी ना उस वक्त। तो मैं क्या करती थी, पिक्चर हॉल से आती थी, फिर वो लैच लगा के फिर गा के अंदर, तो बोले करती क्या अंदर ये, तो दीदी लोग ने देखा तो इसको डांस सिखाया जाएगा, और वो ही गा के सिखाते थे मुझे, क्योंकि क्लासेस नहीं थी, कथक बेस है लेकिन मेरे डांस का। तो खैर फिर वो दीदी की शादी बहुत जल्दी हो गई, 19वें साल के पहले ही, मतलब कहते हैं डाउरी डेथ थी उनकी, तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, मतलब आज भी कई बार आंसू आ जाते हैं उनकी बात करते हुए मेरे आंखों में। तो उनसे जो छोटी दीदी थी उन्होंने कहा कि तुम्हारे मन में जो आता है ना याद करके लिखा करो, और डांस, शशि दीदी नाम था शशि, तो उनने कहा कि शशि को मतलब उनका मन था कि तुम डांस करो, तो मेरी जो प्रभा दीदी वगैरह थी उन्होंने मुझे लगा था डांस, तो मतलब मैंने कई सारे डांस में भी अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार बहुत सारे जीते हुए हैं, सरस्वती माँ की कृपा है जो उन्होंने मुझे कला दे करके भेजा, और मैं कहती हूँ लिखना मेरे लिए सांस लेने जैसा, अब बोलती हूँ क्योंकि तब तो मालूम नहीं था मुझे। तो मैं जो भी मन में कुछ भी आता था पेंसिल से लिखती जाती थी उसको, फिर धीरे धीरे 3 ईयर्स की जब हुई तब तक मैं कहानियां लिखने लगी थी जी। तो उस टाइम्स ऑफ इंडिया का एक पब्लिकेशन था सारिका, धर्मयुग अगर आपने सुना होगा, सारिका, ये दोनों टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन हुआ करते थे, तो सारिका में मेरी पहली कहानी छपी नवांकुर विशेषांक में। उसके बाद तमाम जगहों से पत्र आने लग गए और बात और मंगाई जाने लग गई कहानियां, और मतलब उस समय मुझे अब बहुत सेलिब्रिटी बन गई, इतने सारे लेटर्स के बीच में छोटी सी अलका बैठी हुई पत्र पढ़ रही है सारे। खैर फिर वो एक सिलसिला शुरू हो गया आकाशवाणी जबलपुर और फिर तमाम जगह, फिर बॉम्बे भी गई, तो मेरे साथ में अच्छा ये हुआ क्योंकि मेरे पति वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं लेकिन वो मेरे लेखन को बहुत पसंद करते रहे हमेशा से, तो उन्होंने कहा कि तुम लिखना बंद मत करो, और मुझे कुछ वहां पर जनसत्ता में सब रंग उनका आता था, तो शादी के बाद भी मेरा लेखन कभी ना रुका नहीं। तो यही वाली बात है कि आप दुख से या तो अपने आप को बना लीजिए या दुख में अपने आप को खत्म कर दीजिए, तो दुख ने मुझे बनाया है जी, इस तरह में लिखने लग गई, शब्दों में ढाल दिया अपने दुख को मैंने।
3: ये जो सेंटेंस है, ये दुख से या तो अपने आप को बना लीजिए या खत्म कर दीजिए, यही से वो जो आपका जो पहला टाइटल है शायद वो सिद्ध हो जाता है कि मुर्दे इतिहास नहीं लिखते. इतिहास वो लिखते हैं जैसे आप जैसे लोग जो जिन्होंने दुख से अपने आप को बना लिया. मुझे लगता है लाखों लोगों को दुख से निकालने के निमित्त बन गए.
1: जी,
3: क्या इसके लिए फिर आपको ऐसा कुछ लगा कि हाँ मुझे और ट्रेनिंग करनी है या और कहानियों को समझना है? किसको, मतलब आप पढ़ते किनको थे या कौन आपको बहुत पसंद, कौन किसका लेखन आपको बहुत पसंद था?
1: जैसे चित्रा मुद्गल जी का बहुत अच्छा लगता है मुझे. मधु काकड़िया इस समय जो है हमारे समय की, मतलब हम हमारे से बड़ी पीढ़ी की है, लेकिन मधु काकड़िया जी बहुत अच्छा लिखती है. उसके अलावा जैसे कि हरिशंकर परसाई जी को तो मैं खैर एक तरह से उनके लेखन को जीती हूँ. ज्ञान रंजन जी भी मुझे बेटी जैसे ही मानते थे और मेरा एक सौभाग्य रहा है कि मुझे इन सब से मिलने का मौका मिला है. मुक्तिबोध को मैंने पढ़ा है, अज्ञेय को मैंने पढ़ा है, तो कई बार जैसे बाबा नागार्जुन की कुछ कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं. इसी तरह से अमरकांत मुझे बहुत पसंद थे, उनकी जिंदगी और जो क्या बहुत सारी. तो मतलब मैं ये नहीं बोल सकती कि मुझे एक कोई साहित्यकार पसंद है. कभी किसी की कुछ चीज अच्छी लगती है, कभी किसी की कोई चीज बहुत अच्छी लगती है. तो और आपको ना वो रास्ता जैसे बशीर बद्रे उनकी आप शायरी सुनेंगे कि आप सुने कि हम बचपन में थे ना तो वो रखते थे उजाले अपनी यादों के, हमारे साथ रहने दो न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए. और बहुत सारे है कि मतलब उनके मतलब बार बार हम उनके बहुत सारे शेर हमें याद आते हैं. तो जो भी अच्छा मिलता है, और कई बार ये भी होता है आरुषि जी की बहुत नाम नहीं होता है किसी का, लेकिन अचानक आप उठा के पढ़ते हैं तो अरे इतने ही लिख दिया, ये मैंने क्यों नहीं लिखा, तो ये होता है. और जैसे कि कई बार ये होता है कि जैसे ना जैसे अगर आप बोलेंगे तो मैं अपनी एक आध आपको रचना भी सुना दूंगी.
2: जी मैं एक्चुअली वो पूछने ही वाली थी कि कुछ पंक्तियां अगर आप सुनाएं अपने लेखन की हमें भी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा.
1: तो पहले से मैं बताती हूँ कि ना बता जैसे मतलब हमेशा मुझे मेरे हस्बैंड कहते हैं, और मैं ना मैंने मुझे लगता है कि आपका भी, मुझे लग रहा है आपके अंदर का भी बच्चा हमेशा जिंदा रखती है आप. तो अपने भीतर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखना चाहिए. तो मेरे पति हमेशा कहते हैं मम्मी पापा ने तुमको बड़ा करके नहीं भेजा. तो मैं कहती थी कि कहते हैं वो कि हम बड़े नहीं हुए, कहते हैं वो कि हम बड़े नहीं हुए. बड़े होना मतलब झूठ बोलो शान से, मक्कार हो जाओ. क्या करें इस परिभाषा पे हम खरे नहीं हुए, तो कहते हैं वो कि हम बड़े नहीं हुए.
2: वाह वाह.
1: तो क्या हुआ कि मेरी बेटी अब तो बड़ी हो गई, तो जब वो 5 साल की थी ना तो एक बार मेरे साथ जा रही थी. अच्छा वो वैसे मम्मा बोलती है, लेकिन जब वो बहुत उसमें प्यार में होती है तो माँ बोलती है मुझे. और मुझे बहुत मतलब तो मैं लगती हूँ कि ना, और सचमुच मुझे लगता है कि जो रिश्ते आपको जो खुशी देते हैं ना वो कहीं नहीं मिलती है. और मैं आपको दो कविताएं इसलिए सुनाऊंगी कि आपने अगर परिवार चुना है तो पहले मैं वो सुनाती हूँ, फिर मैं अपनी बेटी पे.
2: प्लीज प्लीज जरूर जरूर
1: जी. तो क्या सपने बन गए बॉन्साई, कहते हैं कुछ लोग कि स्त्री जब बनती है माँ करती जाती है अपने सपनों को छोटा छोटा, बहुत छोटा, मारती जाती है अपने सपनों को खुद बेमौत, या हो जाते हैं उसके सपने बौने, बन जाते हैं क्या बॉन्साई, बन जाते हैं बॉन्साई. सोच का बवंडर उठा अभी तर उसके, क्या ये सच उसका भी है, क्या ये सच उसका भी है, हो जाने दिया है उसने अपने सपनों को बौना, बना दिया हरे भरे वृक्ष से बॉन्साई. विचार मंथन चल पड़ा अंतस में, अगर ऐसा होता तो मिट चुका होता कब का वजूद उसका. उसने टटोला खुद के वजूद को महसूस किया, अरे वो तो वहाँ है, मतलब उसका वजूद तो वहाँ है, बड़ा अजीब है व्यक्तित्व उसका. एक कोस्त्री विमर्श की बातें तमाम, पर झेलती है यातनाएं भी तो क्या छद्म है उसकी बौद्धिकता, लेखन में विरोध के स्वर है मात्र दिखावा. तर्कों की मथानी से फिर मंथन वो करती है, तब सांसारिक सच की सोच नवनीत से उतरती है, पत्नीत्व और मातृत्व का चुनाव उसका ही तो है. तो फिर शायद जायज है समझौते भी, यातना सहते हुए भी खुद को खुश रख पाती है, अपने वजूद से पहचानी जाती है, यानी नहीं होने दिया उसने अपने सपनों को बौना. जिजीविषा के पानी, महत्वाकांक्षा की खाद और आत्मसम्मान की धूप से बचाया है उसने अपने सपनों को बॉन्साई बनने से. तो अब मेरी बेटी मेरे साथ जा रही थी, एक बार 5 साल की थी तब, वो तो ऐसे आंख बंद करके एकदम बैठी थी, मैं उसको देख रही थी. अचानक उसने मुझे जो बोला तब ये कविता निकली. क्या बोला था इसमें आएगा. सुबह की सुहानी बयार सी है वो, अल सुबह की शीतल ओस सी है वो, उसे देखकर लगता है ऐसे भर ली हो भोर की भीनी खुशबू भीतर जैसे। उसका मीठा बोसा लगता है यूं सहला गया ठंडी हवा का झोंका जू। चूमती जब मासूमियत से आंखों को मेरी, कितना नाजुक पिघलता सा है वो एहसास। उस रोज सुबह सुबह संग मेरे वो निकली नन्ही परी ने आंखें बंद कर ली अपनी, खो गई एक प्यारी सी दुनिया में। एंजल सी चमकती चेहरे पे उसके, अपनी छोटी छोटी बाहों का घेरा मेरे गले में डाल, आंखों में सितारे भर कर कहा उसने, माँ माँ माँ मुझे सुबह बहुत अच्छी लगती है। अनहद ना सब बज उठा अंतस में मेरे, मंदिर में बज गई हूँ घंटियां जैसे। कैसे महसूस कर पाती है मेरी नन्ही सी कली सुबह की पावन खूबसूरती, कितनी मधुर है ये अनुभूति। बड़े प्यार से फिर वो मुझसे सटी, सीप सी पलकें बंद कर अपनी, झर झर झर झर झर झरते झरने सी आवाज में कहा उसने, सुबह कितनी अच्छी लगती है ना माँ, है ना माँ सुबह कितनी अच्छी लगती है ना। खिल उठी भीतर मेरे खुशियों की बीथियां, कितनी प्यारी होती हैं बेटियां, आगोश में अपने भरकर पेशानी उसकी चूमकर कहा मैंने, बेटी मेरी मुझे तो तू खुद सुबह सी लगती है, तू खुद सुबह सी लगती है।
2: क्या बात है। मतलब सच में ये जो आपने पंक्तियां कही हैं, हर माँ सुनेगी तो अपनी बेटी को, अगर वो उनसे थोड़ा सा भी दूर है तो मुझे लगता है वो उनके करीबी पल, वो उनकी आंखों के सामने वैसे तो रहते ही हैं, लेकिन वो आंखों में आंसू बन के बह जाएंगे। इतने खूबसूरत हैं ये पंक्तियां। आपकी बेटी क्या कहती है जब वो आपकी कविता सुनती है?
1: मेरी बेटी अभी मतलब बेटा भी है मेरा, अभी जॉब कर रहा है, और बेटी अभी लॉ कर रही है और फोर्थ ईयर में है। और अभी मैं आपको बताऊं कि पता नहीं, मतलब कई बार हमको लगता है कि शायद पता नहीं वो उतना प्यार करती है, लेकिन अभी इधर में भोपाल में किसी कार्यक्रम से गई थी, यहाँ पर हूँ मैं 26 तारीख से, तो वो मुझे बहुत मिस कर रही है, तो रोज फोन करती है, तो मुझे लग रहा है कि काश मैं जल्दी चली जाती। खैर, तो वो ना लॉ कर रही है। अच्छा, एक बात अच्छी कि वो इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखती है, मुझसे बेहतर लिखती है, और वो बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी बात कर लेती है। तो मैं कहती हूँ कि उसका नाम, वैसे हम लोग घर में मिष्टी बोलते हैं, वैसे उसका नाम शरण्या है।
2: अच्छा।
1: तो कई बार ना वो जब छोटी भी थी ना, तो जैसे मैं उसको लोरी सुनाया करती थी, तो वो मुझे अपनी गोद में सुला करके वैसे लोरी गाती थी। तो मैं कहती थी कि बेटी माँ बन जाती है, तो मतलब ये होता है। तो अभी भी ना कई बार मम्मा ऐसे नहीं करना, मम्मा वैसे करना है, तो मैं कई बार, मुझे लगता है, और मैं अभी उसको बोलने देती हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है कि हाँ वो मेरी माँ बन करके मुझे उस तरीके से वो कर रही है। तो बड़ी प्यारी सी, नाजुक सी है, और अच्छा लिखती है, और लॉ कर रही है। और उसका शुरू से ना बहुत ये मन था कि मैं इसमें रहूं, मतलब जो जासूसी जो सीरियल होते थे, हाँ, इस तरह के जो होते थे, वो देखा करती थी, तो उसको उसमें मतलब बहुत इंटरेस्ट आता था, तो उस तरीके से वो अब वो लॉ कर रही है।
2: क्या बात है। अच्छा, इसीलिए उन्होंने वो प्रोफेशन बनाया उसको, और समाज की मदद के लिए, जैसे वो एक उसको इंटरेस्ट को भी उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। क्या बात है। तो वो क्या करते हैं, तो जब आपके घर वाले आपकी कविताएं सुनते हैं तो क्या आपको फीडबैक देते हैं, कैसा लिखा है कहते हैं, या क्या महसूस हुआ, कैसा, मतलब पहले, सबसे पहले जब आप लिखते हैं तो किसको सुनाते हैं आप?
1: आपको बताऊं, मैं सबसे पहले अपने पति को सुनाती हूँ।
2: अच्छा,
1: ठीक है
2: जी।
1: वो मेरे सबसे बड़े क्रिटिक हैं, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन मैंने देखा कि साहित्य की समझ उनके बहुत अच्छी है, और मैं ना बहुत जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी अभी जैसे बोल के बता रही हूँ आपको, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोला कर
2: जी।
1: तो मुझे कहते हैं कि थोड़ा ना थम थम के
2: आराम से,
1: है ना। तो उन्होंने मुझे एक तो ये सिखाया, दूसरा वो कहते थे कि तुम्हारा जो फोर्टे है वो तुम्हारी भावनाएं संवेदनाएं हैं, तो तुम अपने किसी के बोलने से ना उसको बदलो नहीं। और वो कई बार मुझे कहते हैं नहीं ये चीज ऐसे अच्छी नहीं लग रही है, तो वो मैं उनको बताती हूँ। अच्छा, कई बार ये भी होता था कि मैं अपने कुछ दोस्तों को भी बता देती थी, तो पता चलता था थोड़े दिन में मेरी चीज उनके नाम से आने लग गई। ये बहुत होता है आरुषि जी। मेरी तो आपको बताऊँ, ये कविता है जो बहुत ज्यादा फेमस हुई है, द्रौपदी तुम्हें उठाने होंगे शस्त्र, तुम्हें ही बनना होगा सशक्त, नहीं आएंगे अब कोई कृष्ण, उसको चुरा के लोगों ने कर लिया, सुनो द्रौपदी श्रेष्ठ उठा लो अपना आएंगे गोविंद। ये मैंने लिखी थी कविता।
2: अच्छा, उसमें एक दो शब्द बदल के किसी
1: बदल के, और ये मतलब एक मिनिस्टर है, नाम नहीं ले रही हूँ मैं यहाँ रेडियो पे, एक मिनिस्टर है उन्होंने, फिर एक और, तो तमाम उसको बहुत सारे राजनेताओं ने उसको कोट किया। तो मेरा बेटा मुझे बोलता है कि मम्मा आप लिखते हो, आप इतना अच्छा लिखते हो, आप उसके लिए, तो मेरे पास में मेल है वो, जब मैंने पहले लिखी थी, भेजी थी, पेपर में छपी भी थी। अच्छा, मैं एक और काम किया करती थी, उस कविता को हम तो जाते थे, हम मार्शल आर्ट वालों को लेकर के जाते थे, तो मार्शल आर्ट वाले जो थे वो वहां पे मार्शल आर्ट सिखाते थे लड़कियों को. एक मेरे साथ वकील जाते थे मेरे दोस्त, और मैं एक कविता गाती थी बोलती
2: अच्छा,
1: थी
2: जी.
1: तो हम पूरी लड़कियों को, मैं कहती थी कि आप लड़कियों को इतना ट्रेन कर दो कि दो चार लोगों को से अपने आप को सेफ तो कर सके वो.
2: बिल्कुल.
1: तो ये मैं, मेरा ये पूरा का पूरा मोटो था. लेकिन खैर, उसके बाद मेरे एक सीरियल को मेरा, मैंने लिखी थी कहानी तपस्या वाला था. वो क्या था, तपस्या थी उस सीरियल में. अब मैं सीरियल का नाम ही पता नहीं कैसे अचानक से अभी बात करते. तो उस पर सीरियल बन गया और वो मेरी कहानी की चोरी थी. तो
2: अच्छा.
1: खैर, मुझे फिल्म राइटर एसोसिएशन में, मुझे मेरे फेवर में डिसीजन भी आया, पर बहुत कुछ ऐसा हुआ. पर ठीक है, क्या किया जा सकता है. तो बहुत कुछ होता है. लेकिन और भी, जैसे कि मैं, अगर आप बोलेंगी तो आपको मैं एक दो चार शेर सुना दूं, अगर आप बोले तो.
2: जरूर जरूर. और शेर भी सुनना चाहेंगे. और साथ में जो आपने कहा ना कि लड़कियों को इतनी तैयार हो जाए, इतना मोटिवेट हो जाए कि वो खुद की रक्षा स्वयं कर सके. हाँ. तो अगर कोई ऐसी भी कविता हो तो भी हम जरूर सुनना चाहेंगे. अगर आप कोई,
1: जैसे कि मैंने वो जो द्रौपदी वाली थी ना, कि मतलब सुनो द्रौपदी शेर उठा लो, कि मतलब द्रौपदी अब जगह जगह पुकार रही है, लेकिन मतलब उसको खुद को ही सशक्त बनना होगा. तो ये तो है. लेकिन अभी फिलहाल ये है कि जैसे दूसरों को भी, कि मतलब हम कहते हैं कि अपने दिल और जान में रखना, नाम मेरा भी ध्यान में रखना. मुफलिसों को ना दो चांद तारे भले, वाके उनके ध्यान में रखना. कि भाई, आपके मन में एक दया भाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अपने किरदार, ये देखिए, जैसे कि अपने किरदार को बहुत मजबूत इस बदलते जहान में रखना. ऐसे नहीं कि आप बह गए धारा के साथ में. तो मेरा शीर्षक भी है, मुर्दे इतिहास में लिखते, कि आपका अगर किरदार मजबूत है तो फिर आपको कोई बदल नहीं सकता है. कि इस बदलते जहान में रखना, तेरे कपड़ों पे जो है गर्दे सफर, कामयाबी की शान में रखना. कई लोग कहते होता ना कि जब बड़े बन गए तो भूल जाते हैं. आप अपनी जमीन से हमेशा जुड़े रहे. तो ये मैं कहती हूँ कि तेरे कपड़े पे जो है गर्दे सफर, कामयाबी के शान में रखना. हमेशा याद रखो कि हम कहाँ से उठे, कहाँ पहुँचे हैं. और तुमको आकाश है छूना अगर, तुमको आकाश है छूना अगर, पंख अपनी उड़ान में रखना. अपने दिल और ध्यान में रखना. और ये जो आपने कहा कि, मुझे कई लोग कहते हैं कि तुम इतना मीठा बोलती हो कि मतलब हम तो बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं. मैंने कहा नहीं, वो ऊपर वाले ने दे के भेजा है. तो ये शायद इस तरह है कि सुन के हो जाए जो फिदा तुम पर, सुन के हो जाए जो फिदा तुम पर, लुत्फ ऐसा जुबान में रखना. अपने दिल और ध्यान में रखना, अपने दिल और ध्यान में रखना. और कभी कभी होता है ना कि हम बहुत दुखी हैं तो हम बोल नहीं पाते हैं. तो अब जैसे, अब तो बाबा है वो कोना, हमको कभी लगेगा तो हम बाबा को स्मरण करेंगे. तो कि रो सको जहां पे छुप छुप कर, रो सको जहां पर छुप छुप कर, ऐसा गोशा मकान में रखना. ऐसा कोना मतलब गोशा, ऐसा गोशा मकान में रखना. और वो गोशा आध्यात्मिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. और ये कि कम नहीं है, हालांकि मैंने अलका अपना इसमें तलफ़ुज़ जो होता है, मक्ता जो कहते हैं, लेकिन मैं इसको भी बदल देती फिलहाल यहाँ की. कम नहीं है किसी से कोई, कम नहीं है किसी से कोई, दोस्तों ये गुमान में रखना, दोस्तों ये गुमान में रखना. तो आपने जैसे कहा, तो मेरी कहानी थी बेटी
2: जी.
1: तो उसमें माँ अपनी बेटी के बारे में सोचती, और वो पहले सोचती नहीं शादी, तो दूसरे कहते भाई बेटी बड़ी हो रही शादी करा. तो बेटी को फिर बताने लगती है, देखो तुम जाओगी एक राजकुमार जैसा लड़का होगा, तुम्हारा ध्यान रखेगा. और लड़की, वो बेटी सपने पाल लेती है. शादी होती है, शादी होती है जब, तो वो जब आती है घर तो वो खुश नहीं है, मैके जब आती है. तब माँ को समझ में आता है कि उसको जो सपने बेटी को दे दिए हैं, वो उसको हाथ में हाथ लेकर घुमाने नहीं लेकर जाता है. बहुत सारी जो चीजें,
2: राजकुमार आएगा,
1: राजकुमार आएगा, तो वो तो नहीं मिला उसको कि भाई नमक कम है तो भी बोलेगा है वो है. तब उसको समझ में आता है कि मैंने इसे गलत सपने दे दिए हैं. फिर वो उसको दूसरी तरह से, कि एक एक कविता है कि हो जाती वो पयस्विनी, जब वो माँ खुद बनती है तो महिला, तो वो बेटी को फिर अलग तरीके से समझाती है.
2: अच्छा.
1: आपकी, और वो प्रेग्नेंट है जब बेटी आती, तभी भी

0: ऐसा होगा। मैंने कहा अमूमन तो सभी सोचते हैं,
1: अमूमन सभी सोचते,
0: तो मैंने भी सोचा था। बोले अच्छा, तो मुझे एक दिन फोन किया, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैंने कहा कि क्यों? बोले कि आपकी कहानी से मैं अपनी पत्नी की भावनाओं को समझने लग गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर एक दिन मैंने बोला कि मेरे कुछ कहानियां टाइप कर दीजिए। बोले आज आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों? बोले मैं आज अपनी पत्नी को डेट पर लेकर जा रहा हूँ और ये आपकी कहानी का असर है।
1: और इससे पहले शायद वो, हाँ, तो वो रियलाइजेशन मतलब उनको हुआ उससे।
0: एक्चुअली मतलब क्या होता है ना, कई बार ना जो दूसरे घर से लड़की आती है ना, पति समझ ही नहीं पाता है कि ये कितनी अंदर अपनी भावनाएं लेकर आई है,
1: उनके सपने क्या है,
0: सपने लेकर आई है ना। और आप जब तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं आप कायम कर पाते, तो जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और हम एक दूसरे के साथ में साथ साथ कदम बढ़ा के चल रहे हैं ना, ये कोई नहीं सोचे कि मैं, ये तो आई है मैं ही, क्योंकि एक शोविनिस्टिक मेंटालिटी
1: सोचते हैं इनको एडजस्ट करना है, ये आई है यहाँ से, मगर वो सोच उनके मन में क्या चल रही है वो सोच समझ ही नहीं पा रही।
0: वही वाली बात। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि उसके बाद उनको लगा कि अच्छा ये भी सपने लेके
1: बदलाव कितना,
0: उसको समझना चालू कर दिया। तो मुझे लगता है कि मेरा लिखना सार्थक हो गया। और इससे मुझे बहुत सारे इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे कई लोगों ने मुझे कहा कि आपको देख के हमने डांस करना सीखा, आपको देख कर, मतलब कटनी में पहले, मैं मारवाड़ी हूँ, हमारे दादाजी नगर सेठ हुआ करते थे, तो लड़कियों को डांस वगैरह, इवन मेरे बाबा जी ने वैसे बहुत हमको फ्रीडम दे रखे थे, हमको कभी पता, आप आरुषि जी, मैं बिल्कुल खुले दिल से बोलती हूँ कि मुझे कभी वो डिस्क्रिमिनेशन हमारे घर में नहीं हुआ,
1: लड़का और लड़की वाला,
0: हाँ लड़का अच्छा। लड़की वाला कभी नहीं हुआ। हम लोग पांच बहने थे, पर कभी नहीं, ना बाबा जी ने, दादा जी ने, ना पापा ने, मम्मी, किसी ने नहीं। तो फिर लेकिन वो लोग आए तो बोले डांस, तो उनने बोला भाई नगर सेठ की बेटी ने, लोकचंद फुलचंद की पोती डांस करेगी, तो बोले अगर आपकी बेटी डांस करेगी पोती तो बहुत सी बच्चियों, तो उन्होंने हाँ कह दिया।
1: अच्छा, कि हाँ, बाकी लोगों को भी और इंस्पिरेशन मिले।
0: हाँ, तो उन्होंने हाँ कहा। और मैंने पहला डांस जो किया था वो था होठों पे ऐसी बात, और उसके बाद में कारी कारी कारी अंधी आ रही थी रात नवरंग की, तो उसमें भी मुझे दूसरी बार किसी ने डरा दिया, अरे तुमसे तो बहुत बड़ी डांसर आ रही, तुम क्या जीतोगे, छोड़ दो। मैं रोई तो मम्मी ने कहा अब तो तेरी असली परीक्षा है बेटा, अब तो तेरे को जीतना ही, दीदी लोगों ने भी, तो वो मैं फिर जीती, फिर मैं सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार बनी।
1: क्या
0: तो ये मतलब हमेशा मुझे मतलब ये कि मुझे लोग फॉलो करते, अच्छा अलका ने किया, उनकी पोती ने किया, अब हमारी बेटियों को भी,
1: हमारी बेटियों को भी करना चाहिए ना, एक सीख। क्या बात है, मुझे आपकी बातों से ना एक चीज और बहुत समझ में आई कि साहित्य कैसे जीवन को आसान बनाने में मदद करता है, कैसे एक दूसरे को समझने में मदद करता है। तो हमें से बहुत लोग हैं जो पढ़ते नहीं है, मोबाइल में ही चले गए हैं जिंदगियां, तो अगर साहित्य के और नजदीक जाएंगे तो अपने आसपास वालों को भी और बेहतर समझ पाएंगे।
0: बिल्कुल सही बात है जी,
1: ये पढ़ना चाहिए। और
0: बिल्कुल देखिए क्या होता है ना, आपने आप भी बचपन से पुस्तकें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। और मैं दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में गई थी, तो आज तक वालों ने एक इंटरव्यू किया था, उनने कहा कि क्या आपको लगता है कि आजकल पुस्तकों का अस्तित्व खत्म हो रहा है। मैंने अगर ऐसा होता तो आप पुस्तक मेले में मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं और तमाम स्टॉल्स हैं और लोग खरीद रहे हैं किताबें और स्पेशली जाते हैं, और खास करके बच्चों के माता पिता जाते। मेरी बेटी भी बहुत पढ़ती, ठीक है वो अंग्रेजी में पढ़ती लेकिन बहुत किताबें पढ़ती है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे जब हम मोबाइल पे, आजकल जो हम रील बोलते हैं ना, रील लाइफ में के कारण हम रियल लाइफ से दूर होते जा रहे हैं, और व्हाट्सएप, हम फेसबुक पे, अच्छा अभी हम परिचित हो गए, अच्छा आप में से कनेक्टेड है, अरे अलका जी आपकी तबीयत, ओ प्लीज गेट वेल सून, अपना ध्यान रखिएगा, ऐसे लगेगा आरुषि से ज्यादा तो मेरा कोई अपना है ही नहीं। लेकिन अभी मेरे घर में अगर कोई है, और मैं आपको तो पूछ रही हूँ, आप मुझे पूछ रहे, लेकिन आपके घर में तो मतलब लोग लीस्ट वरीड होते हैं, सोचते भी नहीं कि घर में भी हमको वही चीजें करनी है। तो लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो साहित्य हमें एक एक, एक भावना देता है। जैसे मेरी जिंदगी में बहुत सी चीजें हैं कि मैंने कहानियां पढ़ रही हूँ, आलेख, जैसे मैंने परसाई जी को, उनको पढ़ करके मेरी चीजें बहुत भीतर बदला है।
1: जो
0: आप उसको उस तरह से जब पढ़ेंगे ना, आपको बहुत एक प्रेरणा मिलती है, कई बार
1: पर्सपेक्टिव भी मिलता है, एक नया पर्सपेक्टिव भी मिलता है,
0: पर्सपेक्टिव मिलता है, नया पर्सपेक्टिव मिलता है जिंदगी को समझने का,
1: समझने का।
0: अच्छा कि हम तो अभी तक हम कूप मंडूक बने रहते हैं, पर जब आप पुस्तकों को पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए बहुत से लेखक, जैसे वो क्या होता है कि उन्होंने पूरी राजनीति पढ़ी होती है, तमाम माइथोलॉजी पढ़ी होती है, तमाम वेद पढ़े होते हैं, या नहीं भी तो और जिंदगी को पढ़ा होता है, और वो उसको उसका सार उसमें लिखते हैं। तो आपको तो सार पूरा मिल गया ना एक जगह, तो जब आपको सार मिल रहा है तो आपको साहित्य बहुत कुछ देता है। साहित्य का अर्थ होता है सहित, जिसमें हित हो, सबका हित,
1: सबका हित हो,
0: तो साहित्य तो हित ही करेगा, तो साहित्य पढ़ना ही चाहिए।
1: अलका जी, मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी, जो युवा हमें सुन रहे हैं, अगर आप कुछ किताबें सजेस्ट

0: करें कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए. कुछ कुछ किताबें
1: देखिए, आजकल एक तो सेल्फ हेल्प के बुक्स बहुत आ रही, रॉबिन समथिंग उनका ध्यान एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, और रोंडा बर्न की भी जैसे द मैजिक, और आप लोगों का भी साहित्य शायद जैसे अभी जीवन पलटने की कला है, तो ये तो एक अलग चीज है. लेकिन उसके अलावा जैसे कि बहुत सी अच्छी कविताएं आती हैं. हाँ, नेगेटिव बहुत ज्यादा मत पढ़िए. और उसके अलावा जैसे कि हमारे जो बहुत सारे पहले के साहित्यकार हैं, जैसे मैंने इंग्लिश में भी एमए किया है, तो आप वर्ड्सवर्थ को पढ़ते हैं या शैली को पढ़ते हैं, बहुत बहुत सारी चीजें हैं ऐसे, तो मुझे लगता है कि उनको पढ़ना चाहिए. और आजकल के भी जैसे अब देवदत्त पटनायक जो आपके यहाँ शायद आ भी चुके होंगे, वो तो उन्होंने माइथोलॉजी को ना बहुत ही खूबसूरती से डिपिक्ट किया है. उनके एक हनुमान की रामायण है, पता है आपको? अच्छा, उन्होंने लिखी है, हाँ, कि हनुमान जी ने एक रामायण लिखी. तो वाल्मीकि जी को पता चला कि नारायण ने उनको बोला, नारद मुनि ने कहा कि आप जाइए एक बार हनुमान की रामायण देखिए. तो हनुमान जी की रामायण पता है कहाँ लिखी थी? गार्डन में, एक बागीचे में, और केले के पत्तों में, इसमें उसमें उसमें. और वो वाल्मीकि जी पढ़ते जा रहे, रोते जा रहे, रोते जा रहे. तो हनुमान जी बोले, क्यों रो रहे हैं आप ऐसे? तो बोले, नहीं, आपने जो लिख दिया मेरी रामायण कौन पढ़ेगा? आप, हनुमान जी ने क्या किया, उसको सारे को खा लिया, पत्तों को. बोले, क्या किया आपने, इतना सब लिखा? बोले, मेरे राम मेरे अंदर हैं, अब आपको हमेशा सब याद रखेंगे. तो इस तरह की जो आपको एक जगाने वाली अवेयरनेस जहाँ है, वो सारी चीजें. और आजकल तो देखिए ये डिजिटल जमाना है, आप
0: बिल्कुल
1: AI दे देता है, गूगल को पूछिए,
0: आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं
1: जी,
0: ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे नॉवेल्स भी, उपन्यास भी.
1: हम बॉम्बे में रहते हैं, मैं सोचती हूँ मैं अपनी लाइब्रेरी बहुत बना लूँ, बड़ी बनी, तो कहाँ रखूंगी मैं सारी चीजें 3BHK के फ्लैट में. अब आप ऑनलाइन करते जाए, किंडल पे पढ़ लीजिए, और उसमें देखिए कि सेल्फ हेल्प बुक्स मुझे जैसे जिस समय मुझे जो पढ़ने का मन है कि आई एम फीलिंग लो, नहीं मुझे कुछ पढ़ना है, मुझे आध्यात्मिक कुछ पढ़ना है, तो सब कुछ तो आपके क्लिक में अवेलेबल है.
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि मैं बोल दूंगी ये पढ़ो तो नहीं, क्या होता है जो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है,
0: उनको क्या इंटरेस्ट है,
1: उनको क्या पढ़ना है, उनका क्या इंटरेस्ट है. तो जिसमें खुद की रुचि हो, बस आप ये मत पढ़िए कि आप दूसरों का बुरा करने का सोचे. अपने आप को आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे इवॉल्व हो सकते
0: ऐसा
1: हैं,
0: कुछ पढ़िए,
1: कैसे बेहतर इंसान बन सकते हैं, जो कल से उससे बेहतर बनना है हमें, और बेहतर करते करते दूसरों को भी साथ में लेके चलना है, ऐसा कुछ पढ़िए.
0: बहुत सुंदर बात है, और चाहे कहानियां पढ़ें चाहे कविताएं पढ़ें, लेकिन और मुझे लगता है और संवेदनशील भी बनाती है हमें ये.
1: बिल्कुल, मैं एक छोटी सी लघु कथा आपको बता देती
0: हूँ. बिल्कुल, बिल्कुल,
1: अभी हाल ही में जैसे क्या होता है, और ये सचमुच में जब होता है ना, क्योंकि कहानियां हमें जिंदगी से मिलती हैं आरुषि जी, तो आजकल कैंसर बहुत कॉमन हो गया है. तो एक हस्बैंड वाइफ है, और वो जो वाइफ है वो सोच रही कि आज वो अक्षत, और लड़की का नाम है रंगोली, अक्षत आज कहाँ रह गया, अभी तक आया क्यों नहीं, अभी उसने मुझे वीट जूस भी बना के नहीं दिया है. वो अपने कमरे में जाती है और तमाम वो सारी देखती, जहाँ उन दोनों की फोटोज हैं, यहाँ गए थे वहाँ गए थे, अच्छा वो देखती डेकोर पूरा उसके मन से, तो अक्षत ने कराया पूरा पर्ल कलर का. फिर वो देखती है कि कहीं पर्दे का हवा का झोंका आता है और उसके बाल उड़ते, तो उसको याद आता है कि अक्षत कहता कि रंगोली तुम्हारे बाल कितने सुंदर है ना, एकदम मतलब मुलायम, वो ये रेशमी और ब्राउन कलर के, वैसे सब तो अपने आंखों पे उसके बाल भी छा लेता. तो कहती अक्षत बाल तुम्हारे भी तो कितने सुंदर, तुम रोमन गॉड जैसे दिखते. और अचानक वो सोचते सोचते दर्पण के सामने चली जाती है और देखती कि उसके सिर पे बाल नहीं है, क्योंकि केमोथेरेपी से बाल चले गए, तो 6 महीने पहले उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ था. और इससे तो वो मतलब रोते रोते सो जाती, थोड़ी देर में उसको स्पर्श महसूस होता है, तो देखती अक्षत तुम कहाँ, अक्षत तुम्हारे बाल कहाँ गए? तो वो बोलता है नहीं, वो चलो सॉरी, चलो खाना भी लगा है और तुम्हारा वीट जूस भी बना हुआ है. तो तब वो देखती तो बोलता है कि बस वो मतलब उसको मतलब बहुत प्यार से सताता है. तो वो सोचती कि आज जो रंगोली है वो अक्षत के प्यार से सज गई है, मतलब ये कि पति जो है उसके लिए उसने अपने बाल भी, कि जब तक उसकी पत्नी के बाल नहीं आएंगे वो भी बाल ऐसे ही रखेगा. तो ये जो चीजें होती है ना कि मतलब एक पॉजिटिव संदेश मैं देना चाहती हूँ. आजकल मैं लघु कथाओं, मतलब मैं लघु कथा शोध केंद्र बॉम्बे की अध्यक्ष बनी हूँ हाल ही में, तो हम लघु कथाओं पे बहुत काम कर रहे हैं. और आजकल की लघु कथाएं जो एक संदेश देना चाह रही हूँ वो बहुत पॉजिटिव संदेश देती हैं, कि अब उसमें नेगेटिविटी नहीं हो, एक पॉजिटिव संदेश के साथ में अपनी लघु कथा को खत्म करिए. तो आजकल हम लोग वो कर रहे हैं.
0: कई बार हम सोशल मीडिया पे भी और अपने आसपास जिंदगी में बहुत चीजें देखते हैं, लेकिन उन्हें भूल जाते हैं. कहते हैं ना आजकल की रात गई बात गई जैसे हो जाता है, एक न्यूज आई दूसरी न्यूज चली गई. लेकिन जब लघु कथा के रूप में हम उन्हें सुन रहे हैं तो मुझे लगता है वो छाप छूट जाती है, वो चीज फिर वो हमारे अंदर, वो हमारा हिस्सा बन जाती है कहीं ना कहीं. बहुत प्रेरणादायक कहानियां हैं।
1: आपने जैसे बात की, आपको याद है ना बचपन में हम सब ने कहानी सुनी ना कि एक पिताजी थे, उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया, एक लकड़ी का गट्ठर दिया कि तोड़ो, है ना,
0: बिल्कुल।
1: तो वो कोई नहीं तोड़ पाए, जब अलग अलग करके तोड़ा तो तोड़ दिया, तो उन्होंने कहा यही चीज सिखा। तो कथा के माध्यम से वो बात हमेशा आपके जहन में, जैसे आपने कहा बिल्कुल वही बात है कि हमारे जहन में अंकित हो जाती है, हमारे अंदर अंकित हो जाती है, हमें याद आती है। मैं अपनी बेटी को ना बचपन में और बेटे को भी एक कहानी सुनाती थी, हम लोग मारवाड़ी हैं, हल्दी हल्दी मल्दी सटवा सूट। अच्छा। कि सटवा सूट जो है वो थोड़ी सी बिटर है, दो बहनें हैं तो हल्दी मल्दी सबका भला करती है। तो जब हल्दी मल्दी अपनी नानी के घर जाती, सबको मिलती, सबका भला करती जाती, तो जब वो लौटती तो उसको बहुत सारे गिफ्ट मिलते। सटवा सूट भी कहती कि मैं जाऊंगी और सबको, तो जो भी बोलता क्यों मैं, क्यों वो तो थी हल्दी मल्दी, मैं हूँ सटवा सूट, मैं नहीं करती तुम्हारा काम। अब वो आती तो उसको कोई कुछ नहीं देता। तो मेरी बेटी आज भी, मम्मा मैं आपकी हल्दी मल्दी हूँ ना। तो ये हमें ना इस तरह के संस्कार कहानियों के माध्यम से हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। और बिल्कुल आपने सही बात बोली कि आप भाषण देंगे ना कोई नहीं सुनेगा, उसको इंटरेस्टिंग वे में बता के कहिए तो आपको लोग जरूर सुनेंगे,
0: जरूर सुनेंगे। तो कहानियां और पढ़िए और सुनिए और सुनाइए, है ना। भारत की तो मतलब मुझे लगता है भारत में तो कहानियां बसती हैं हर कोने में,
1: बिल्कुल
0: हर भाषा में, हर लोकगीत लोक कथा में बहुत कुछ है सच में। तो आपने आज हमें वापस मुझे लगता है जोड़ दिया, जहाँ से हम थोड़ा दूर भी निकल आए थे, तो वापस उन कहानियों की ओर अब बढ़ जाएंगे। अलका जी, क्या कोई और आपकी ऐसी कविता या कोई एक ऐसा हमारे श्रोताओं के लिए अगर आप शेयर करें?
1: बिल्कुल सुना दूंगी आपको। वैसे लता दीदी पर भी एक, जब लता दीदी तो गजल तो मैं गा के तरन्नुम में तो अभी नहीं सुनाऊंगी
0: जी,
1: पर एक है ना ये, आजकल हम पर्यावरण के लिए बहुत परेशान मतलब है, देखिए तो मैं सुना देती हूँ कि क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं सुनाऊंगी कि जहाँ पर कहीं पर नेगेटिविटी हो।
0: okay.
1: एक ये बॉम्बे में आतंकी हमला हुआ था, है ना, तो उससे मैं, अच्छा मैं एक चीज और बताती हूँ कि मैं जब बहुत दुखी होती हूँ ना और गुस्से में होती हूँ तो मेरे भीतर से कविता निकलती है, सिलसिलेवार जिंदगी कहानी बनती है, और मैं व्यंग भी लिखती हूँ, मेरे जैसे आपने व्यंग संग्रहों के नाम भी लिए, तो विसंगतियां व्यंग बन जाती। तो जब ये आतंकी हमले हो रहे थे लगातार, और हमारे भी बहुत परिचित लोग थे जो उसमें मारे गए थे, तो उस समय मैंने एक सिम्बॉलिक कविता लिखी थी कि मैं उसको कुछ तरन्नुम में भी गा के थोड़ा सा वैसे बता देती हूँ। एक चिड़िया

बीच हरियाली छाई थी, खिले थे सुंदर फूल, तितलियां रंग बिरंगी उड़ रही थी उड़ रही थी। माँ तोती ने दरख्त पे बनाया एक घरौंदा, सुरक्षित रख कर बच्चे उसमें निकल गई लेने दाना। पर अचानक कहीं से आया एक कठफोड़वा, ये कठफोड़वा वो आतंकवादी है, चोर

बच्चे चीखे डर डर के, तितली के पंख गिरे कट कट के, हरियाली बदली पतझड़ में, फैल गया आतंक, मिठू न जाने कहाँ गुम हो गया। तितलियों ने उड़ना छोड़ा, हो गए फूलों के रंग सभी बदरंग।

0: सच में वो उस इंसिडेंट ने, उस घटना ने हम सबको हिला दिया था, अंदर से झंझोर दिया था.
1: मुंबई का जो आतंकी हमला
0: था वो भूल नहीं सकते. और ये जो आपने कविता सिंबलाइज करके उसको, जो वो हम भावनाओं को प्रकट किया, ये एक लेखक ही कर सकते हैं कि उस प्रकार से भी उस बात को कहा जाता है, हम सोच नहीं सकते. आपका बहुत बहुत धन्यवाद है अलका जी. मुझे लगता है आपकी इतनी कहानियां, इतनी सारी बातें हैं, अभी संभव नहीं है सब कुछ इन एक घंटे में समेट पाना, लेकिन फिर भी जो आपने जो आज सुनाया है वो हमारे सिर्फ आज तक नहीं, मुझे लगता है आगे तक वो प्रेरणा बन के हमारे साथ रहने वाला है.
1: अगर एक मिनट होगा तो खाली आदर्श, एक हमने फिल्म लिखी थी और आदर्श पे फिल्म के ऊपर हमने नॉवेल लिखी थी.
0: अच्छा.
1: तो उसमें मैंने क्यों इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ पर उसमें एक न्यूक्लियर फैमिली, जो एकल परिवार होते हैं ना, एकल परिवार का बच्चा कैसे अपने आप को, कई बार तो हम बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगती तो वो कुछ ऐसा होता है, तो ये जो है परिवारों को बचाना कैसे जरूरी. तो आदर्श फिल्म जो है उस तरह से वो मैंने लिखी थी और वो बहुत ही खूबसूरत फिल्म है. बल्कि मैं तो चाहूंगी मैं आपको लिंक भेज दूंगी अपनी,
0: जरूर जरूर,
1: तो आप वो देखिएगा. तो मुझे लगता है कि ना हम लेखकों का एक दायित्व ये भी है कि सिर्फ लिखने के लिए ना लिखें, है ना, एक कुछ ना कुछ बदलाव, और जो कृतित्व और व्यक्तित्व है ना लेखक का वो एक हो, ये मैं चाहती हूँ कि आप लिख कुछ रहे हैं, कुछ वो मत करिए, जो आप हैं वो लिखिए, और समाज में बदलाव की चेतना के लिए जरूर लिखें. आप समाज सुधारक नहीं है हम, पर कोशिश करें कि कुछ तो बदले, कुछ तो अच्छा लिखें हम. तो बहुत अच्छा लगा मुझे आज आपके रेडियो मधुबन में, और क्योंकि यहाँ बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स हम लेकर जा रहे हैं और कोशिश करेंगे हम, कि प्रयास हमारा ये रहेगा कि हम आगे भी जुड़े रहें और अपने घरों में भी उसी शांति के प्रकाश को फैला सकें. आपकी मुस्कान बहुत प्यारी है, आपकी मुस्कान के लिए मैं आपको बाद में कविता भेज दूंगी. बहुत बहुत आभार आपका, शुक्रिया.
0: मैं चलकर जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, इतना समय आपने निकाला हमारे.
1: बहुत बहुत आभार, धन्यवाद
0: सो मच. तो दोस्तों फिलहाल तो वक्त हो गया इजाजत लेने का, लेकिन मैं यकीनन ये कह सकती हूँ कि आज कुछ आप अपने साथ जरूर लेकर जा रहे होंगे, कुछ ऐसा जो आपको जीवन के सफर में मददगार साबित होगा. फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, मुलाकात होगी अगले एपिसोड में. रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

0: दोस्तों, जीवन में जब भी हम उतार चढ़ाव की बात करते हैं, कई बार हमने सुना है कि जीवन संगीत की तरह है, क्योंकि संगीत में भी उतार चढ़ाव होते हैं। सुरों को कभी ऊपर से गाया जाता है, कभी नीचे से, कभी सुर तेज लगाए जाते हैं, कभी धीमे से। इन सुरों के खेल को जब हम समझ जाते हैं तो संगीत हमारा मधुर हो जाता है। ऐसे ही सुरों के एक साधक के साथ आज हम मिलने जा रहे हैं। 107.8 FM रेडियो मधुबन पर आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम यशस्वी भारत। आज के हमारे यशस्वी भारत कार्यक्रम के मेहमान हैं एक ऐसे ही महान संगीत साधक, उस्ताद वसीफुद्दीन डागर जी, जो कि अपने ध्रुपद गायकी के लिए देश विदेश में मशहूर हैं। ध्रुपद भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में हम भारतीय भी बहुत कम जानते हैं, लेकिन डागर घराने से आने वाले उस्ताद वसीफुद्दीन डागर जी ने बचपन से ही ध्रुपद गायकी को अपने जीवन का एक ऐसा अभिन्न अंग बना लिया, जिसकी वजह से आज उनका नाम ध्रुपद गायकी के साथ समकक्ष हो गया है। ज्यादा देर न करते हुए दोस्तों, आइए मिलते हैं उस्ताद वसीफुद्दीन डागर जी से, जिन्हें वर्ष 2010 में भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। जानेंगे उनसे उनके जीवन के बारे में, संगीत के बारे में, और संगीत के इस अनोखे पहलू के बारे में जिसका नाम है ध्रुपद। तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं वसीफुद्दीन डागर जी का हमारे स्टूडियो में। वसीफुद्दीन जी, आपका हमारे रेडियो मधुबन के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार, मुझे बड़ी खुशी है रेडियो मधुबन में जुड़ने की आप लोगों के साथ। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट।
0: और हमारा ये बहुत बड़ा भाग्य हम कहेंगे कि आज का ये हमारा एपिसोड आप सजा रहे हैं अपने चमक से, अपने हुनर से और अपने तजुर्बे से भी, क्योंकि बहुत कम ही ऐसा अवसर मिलता है कि हम ऐसे भी वीकली वंस एन एपिसोड आता है, और जनरली जितने भी हमारे मेहमान होते हैं वो बहुत व्यस्त होते हैं, क्योंकि उनका चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, वो इतने डीप लेवल पे इन्वॉल्व होते हैं अपने फील्ड से कि उनका समय निकाल के आप आना एक तो बहुत मुश्किल होता है, और फिर हम उनसे एक घंटा मांगते हैं। तो इसलिए आपने वो एक घंटा हमें दिया, इसके लिए पहले तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया है।
1: It's all my pleasure. Yeah, it's all my pleasure.
0: तो वसीफुद्दीन जी, हम हमारी आज के बातचीत की जर्नी शुरुआत करेंगे पहले आपकी कहानी आपकी जुबानी से, क्योंकि आज आप एक जाने माने ध्रुपद गायक हैं। ध्रुपद के जो इतिहास को आज आप वर्तमान में लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जब आप बचपन में आपने अपने आसपास में शायद ध्रुपद के सुरों में खुद को पलते हुए देखा है, लेकिन कभी आपके मन में क्या आया होगा, क्यों आपने इसको सेलेक्ट किया, या आप कुछ और फील्ड में भी जा सकते थे, या आपकी जर्नी क्या रही, ये हमको जानना है। अक्सर जब हम किसी मेहमान के बारे में बात करते हैं तो जो हमने पढ़ा होता है, सुना होता है, हम उसके जरिए उनका जिक्र करते हैं, लेकिन जब वो खुद अपने बारे में कहते हैं तो वो कहानी जानना और भी मजेदार हो जाता है। तो हम जानना चाहेंगे आपकी कहानी आपकी जुबानी।
1: जी, वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट मैं 20वीं पीढ़ी में हूँ, 20th जनरेशन इन द फैमिली। So my father, my grandfather, my great grandfather, my great great great grandfather had all been musicians. So of course it's a blessing. भगवान का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है कि मतलब आप अगर खानदान में पैदा होना ही काफी नहीं होता है, ईश्वर की प्रभु की बहुत कृपा होनी चाहिए एक म्यूजिशियन बनने के लिए, आर्टिस्ट बनने के लिए। तो वो परमात्मा ने कर्म किया कि उसको, उसने मेरे में भी म्यूजिक की तरफ बहुत ही प्यार और बहुत ही स्नेह रखा, और मैं उससे म्यूजिक के प्रति मैं हमेशा ही मुझे अच्छा ही लगा बचपन से अभी तक। तो ये है कि मतलब आज साइंस भी बोल रही है, मतलब बहुत पहले से ही हम लोग भारत में तो माना ही जाता है कि पैदा होने पहले से ही सुन रहे होते हैं। तो आई बीन लिसनिंग बिफोर आई वॉज बॉर्न, सो म्यूजिक वॉज वेरी मच इन द एटमोसफियर। माई अंकल, my tauji ustad zahiruddin dagar sahab was there, my father ustad fayazuddin dagar sahab, both of them were my teacher, my hero, you can say. I was looking at main unko hi hamesha dekhta rehta tha ki bhai ye ho raha hai, ye performances hai, तो जर्नी में यही टारगेट यही था। और फिर स्कूल में मेरे टीचर भी बोलते थे, आई गॉट एनकरेजमेंट फ्रॉम माय प्रिंसिपल एंड माय स्कूल एंड माय टीचर, दे ऑल एनकरेज दैट यू नो दैट यू आर, आप करो आप करो। और फिर एक बात ये भी बोलते थे, एक टीचर ने मुझसे ये भी बोला, देखो आसिफ आपका, आपको मालूम है आपको क्या बनना है, लेकिन आपके जो दोस्त है ना इनको कुछ नहीं मालूम इनके कहाँ पे इनकी लाइफ किधर लेके जाएगी। तो वन थिंग इज वेरी वेरी गुड कि आपको ये पता है कि आपको क्या करना है और आपकी इच्छा भी आपको ये, आप ये करना चाहते हैं, तो इट्स अ ब्लेसिंग, बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है। और मैं भी इसको मानता हूँ, हमारे परिवार वाले भी इसको मानते हैं कि उसकी कृपा रही कि मैं म्यूजिशियन बन गया। और फिर बहुत आसान तो होता नहीं है, बहुत कठिन डगरपन घटकी जो है ना, वो डगरपन घटकी मैं ये बोलता हूँ, ये जगह जो है ना ये है, ये डगरपन घटकी, इसे खाना भी है पीना भी है गाना भी है बोलना भी है, सारे यही नेक जो है कंट्रोल करता है पूरे के पूरे, इसको भी मस्तिष्क को भी वो कनेक्ट करता है। तो लेकिन यही है डगरपन घटकी, तो इसको पूरा का पूरा, इसको पूरा का पूरा साधना, स्वरों की साधना, उसको रियाज किस तरीके से करना है, साधना किस तरीके से करना है, कैसे आपको वक्त लगाना है, क्योंकि जब इसको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो गला भी खराब होता है, गला बैठ जाता है, जिस चीज के ज्यादा इस्तेमाल होती है तो खराब भी तो होने लगता है ना। तो गले की किस तरीके से केयर की जाती है, गले को किस तरीके से रफ एंड टफ बनाया जाता है, किस तरीके से किया जाता है। तो मैं पहले मैंने ये सोचा था कि मैं अचार नहीं खाऊंगा, मेरे एक अंकल नहीं खाते थे और कोई और नहीं खाते थे, तो मैंने कहा मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं खट्टा नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा। तो मेरे पिताजी ने बोला कि अपने गले को डेलिकेट नहीं बनाने की जरूरत है, नहीं इतना उसको छुई मुई नहीं बना देना, छुई में थोड़ा सा ये हो गया तो हो जाएगा, वो हो गया तो हो गया, रफ एंड टफ होना चाहिए, अचार भी खाओ आइसक्रीम भी खाओ सब कुछ करो, सब कुछ वो करो। तो मेरी आदत अभी भी है, अभी अब सब लोग यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो, आई ईट गोलगप्पा आल्सो, आई ईट चाट आल्सो, मैं सब कुछ खाता पीता हूँ, मतलब उसको गले को रफ एंड टफ बनाने की जरूरत होती है। तो साधना फिर ताऊ जी से और पिताजी ने साधना शुरू करवाई, बच्चे को क्या जरूरत है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का, जो भी हमारी आदतें जो व्हेनेवर देयर वाज सम ऑडियंस उसके बीच में मुझे बुला लिया जाता था, हाँ हाँ हमारा बच्चा भी कर रहा है और वो भी है बहुत बहुत अच्छा करता है, हाँ बेटा बेटा सुनाओ, तो बच्चा वो क्या चाहिए बीच में आके, आई यूज टू सिंग एंड देन ग्रेजुअली और थोड़े थोड़े स्कूल भी शुरू हो गया था, स्कूल के साथ फिर वो भी था, पहले थोड़ी देर की एक क्लास होती थी शाम को या कोई स्कूल से आने के बाद, या फिर और समय होता था जब छुट्टी होती थी तो उसमें जो है वो ज़्यादा लंबे सेशंस होते थे, सुबह से शुरू हो जाते थे, सुबह 6 बजे से या 6:30 जब भी उनका जब भी शुरू हो जाता था रियाज तब से लग जाते थे वो, तब से 10, 11, 12 बजे तक जो है 3-4-5 घंटे उसमें लग जाते थे। तो शाम को छुट्टी के दिन ये होता था, ये फॉर्मेट होता था, वरना स्कूल डेज में तो फिर वही शाम को 1-1.5 घंटे की क्लास होती थी, उसमें वो होता था, फिर उसमें प्रैक्टिस करते करते जो है फिर उसमें, क्योंकि ग्रेजुअली ओनली स्टैमिना बिल्ट होता है, स्टैमिना तो एकदम ऐसा आता नहीं है ना, स्टैमिना को भी तो वक्त समय देना पड़ता है। तो इसी तरीके से उसमें फिर ग्रेजुअली इसके ऊपर ही चला गया। तो एट द एज ऑफ 20 आई गेव माई फर्स्ट परफॉर्मेंस इन भारत भवन, पहला मेरा परफॉर्मेंस भारत भवन में हुआ था। और बहुत सी चीज़ें उसमें भी घटी थी, मेरी ट्रेन 6 घंटे लेट हो गई थी जब हमको जाना था और मैंने कुछ खाया ही नहीं, तो पूरे टाइम 6 घंटे ट्रेन मतलब लेट होना, एक जगह पे खड़ी हुई थी 6 घंटे, हमने कुछ खाया भी नहीं और हम पहुँचे 4:30 बजे और 5:30 बजे परफॉर्मेंस था। तो बस तैयार होने का ही टाइम था, बस उसमें भी भागा दौड़ी करके फिर तो ताऊ जी ने पूछा भी आपको भूख लग रही है, तो मैंने कहा उन्होंने अरे तुमने खाया नहीं ट्रेन में, मैंने कहा जी नहीं खाया, वो भी थे अलग अलग उसमें थे, हम लोग अलग अलग कंपार्टमेंट में थे, टिकट नहीं गिरी थी आसानी से तो अलग अलग आए थे, तो उस पर कहने अरे क्यों नहीं खाया, मैंने कहा मुझे आप उधर थे तो मैंने नहीं खाया। तो फिर मुझे पहुंचे गए भूख लग रही है, कहा जी बहुत जोर से भूख लग रही है, कभी तो खाना नहीं आपकी स्टमक एम्प्टी, हम लोग को बहुत पहले से हम लोग नहीं खाते हैं उसमें, क्योंकि उसको उसमें आवाज जो लोअर आवाज और मंदिर की आवाज और वो सब कुछ उसको बिल्ट अप करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए मेरे भारत भवन में मेरा प्रोग्राम हुआ था 88 में, और फिर उसके बाद फिर मेरे पिताजी की डेथ हो गई, तो फिर मैं ताऊ जी के साथ जुगलबंदी में उनके साथ बैठा मैं, तो फिर वही उसी तरीके से ही चलता रहा वो मामला. सो नाउ आई एम हियर एंड आई एम ऑनर्ड टू बी बॉर्न इन सच अ फैमिली. इतने सारे ग्रेट म्यूजिशियंस यहाँ पे रहे हैं एंड आवर टीचर्स आर फार सुपीरियर देन अस. वी कैन नॉट अचीव दैट. वी ट्राई टू डू लिटिल, थोड़ा बहुत उनकी तरह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे गुरु हमारे सारे बड़े, बहुत बड़े हैं, उनको किसी तरीके से भी छू नहीं सकते, इतने बड़े हैं वो.
0: यही सिखाती है भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा कि हमेशा नम्र रहना है और हमेशा झुक करके चलना है, इसमें ही महानता है, इसलिए हम समझते हैं. लेकिन मैं इस पे वापस आऊंगा, लेकिन मैं पहले सवाल वहां पूछना चाहता हूं कि बचपन में जब आप अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों के साथ घिरे होते हैं जिनकी आकांक्षाएं या इच्छाएं इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, पैसा कमाना है और गाड़ियां होनी चाहिए, घर होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, बहुत सारा अलग अलग किस्म का सपनों से घिरा हुआ मन होता है उस समय. इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं हम, और कई चीजों का हम पर प्रभाव भी पड़ सकता है. तो वो जो यंग वासिफुद्दीन थे, उन्होंने खुद को कैसे इस इन्फ्लुएंस से बचा के रखा और कैसे खुद को बताया कि मेरा लक्ष्य जो है वो ये है, और उसके लिए आपने उस समय क्या किया? मतलब क्या आपने खुद को सुनाया, समझाया, या वाज देयर अ गाइड हु वाज मेंटरिंग यू?
1: माय फादर वाज माय बिग गाइड. माय अंकल वाज आल्सो देयर, वेरी मच देयर, बट फॉर कंसल्टिंग थिंग्स इट वाज माय फादर विद हुम ही वुड ऑलवेज suggest something. So actually my friends also supported me. They knew who I am and what family I belong to. But wo jaise wo maine bataya na chutti ke din jo hai wo bada mushkil din hota tha waise, kyunki us din hi sabse lamba hamara session hota tha. और उस दिन ही सुबह छुट्टियों में जब है ना, वो सुबह क्रिकेट हमारी 7 बजे खेला जाता था, सारे कॉलोनी के सारे इकट्ठे होते थे और अलग अलग क्लब्स के साथ खेलते थे, अलग अलग कॉलोनी के साथ मैचेस होते थे. उसमें मेरे छुट्टी के दिन वाले जो है मेरे मैचेस छूट जाते थे, बिल्कुल नहीं खेल पाता था क्योंकि मेरा इसमें सेशन में ही चला जाता था. तो उस पर नाराज भी होते थे वो लोग, मैं बॉलिंग करता था, फास्ट बॉलिंग करता था, तो दे नीडेड मी इन द टीम, बट मैं उसको नहीं कर पाता था मैं उस पर. तो वो नाराज वाराज हो के वो कितना कितनी देर नाराज होंगे, जो मुझे उनको मालूम है कि मुझे जो करना है मैं वही करूंगा. तो I had a love for cricket also, मतलब था, लेकिन मेरे दिमाग में कभी और कुछ बनने का, क्रिकेटर बनने का जरूर है. तो हर बच्चे को कोई खेल स्पोर्ट्स के ऊपर ही दिमाग लगता है कि स्पोर्ट्स ही में कुछ आगे वो करेंगे. सो दोज वर द डेज, वो एक स्पेशलाइजेशन के ऊपर किसी पे भी वो नहीं था. हमारे पहले के वो माहौल भी चला गया, जैसे कॉलोनी के लोग खेला करते थे, सब कुछ खेला करते थे. आज तो बगैर किट के जो है ना कोई बच्चा क्रिकेट ही नहीं खेलने के लिए आता है, बगैर सही शूज नहीं हो फुटबॉल के तो वो नहीं खेलना चाहते, सही रैकेट नहीं हो तो वो. हम लोग तो एक दूसरे के शेयर करके खेल लेते थे, रैकेट एक या दो के ही होते थे, उन्हीं से पूरा का पूरा बैडमिंटन भी खेल लेते थे और फुटबॉल शूज जो है वो चाहे कैसे भी खेल लेते थे, चप्पल थी या कैसा भी जूता था वो खेल लेते. आजकल जो है ना बहुत ही अपनी किट, अपना पैड, अपना विकेट, किसी के पास 2 विकेट थी, किसी के पास 2 विकेट थी, तो You can imagine what am I saying. तो एक वो माहौल एकदम ही डिफरेंट था और डिफरेंट, मतलब हम उसी में ही पैदा हुए, एक साथ ही सबको जितने भी हैं, सब दोस्त वोस्त जो भी मिलजुल के जैसा भी है, तो वी हैड अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर. तो जरूर अट्रैक्ट करती हैं ये चीज़ें जब बहुत ज़्यादा. मेरा अपना पर्सनल वो है कि कोई भी सब्जेक्ट कोई भी लोग पसंद करते हैं तो मिडल ऑफ द सब्जेक्ट, मिडल ऑफ द कोर्स, वो आपको हमको ये एक बार जरूर मन में आता है, अरे मुझे कैसे पसंद आ गया ये वाला सब्जेक्ट, ये तो इतना बेकार, इतना बुरा है और कितना वैसा है. कोई टेक इट एनीथिंग, कि हम फिजिक्स ले लें, केमिस्ट्री ले लें, ज्योग्राफी ले लें, जो भी कुछ ले लें, व्हेन यू गो इनटू डेप्थ ऑफ द एजुकेशन, वो अपना भयानक रूप दिखाता ही है वो सब्जेक्ट जो है. तो म्यूजिक में भी ऐसे क्षण आते हैं जो बहुत बहुत डिफिकल्ट चीजें, समय आता है कि आप गला नहीं चल रहा है, गला सपोर्ट नहीं करता है, वो है, फिर ऊपर से और टास्क मिल जाता है और डिफिकल्ट वो चीजें की हो जाती है. तो इट हैपेंस विद एवरी सब्जेक्ट, कि मतलब बीच में जो है जरूर ये लगता है कि अरे मुझे म्यूजिक कैसे पसंद आ गया, ध्रुपद है बड़ा मुश्किल है ना, तो मैं तो कुछ और ही कर लेता तो अच्छा होता है, लेकिन हर चीज मुश्किल है. तो ये जरूरी है कि आपको यू हैव टू हैव ट्रस्ट, आपको अपने पे यकीन रखना है और आपके टीचर्स के ऊपर यकीन रखना है, अपने बड़ों पे आदर सम्मान बहुत जरूरी है, जो आजकल जो है गायब होता जा रहा है। लेकिन फिर भी हमको पॉजिटिव ही सोचना पड़ेगा कि उन लोगों पे, उन नई यंगर जनरेशन को हमको ये प्रोत्साहित करना है कि आप इससे भी कुछ होता ही है। आजकल हमें सवाल पूछने की कोई इजाजत नहीं थी, आजकल हर टेक्निक के बाद वो पूछते इससे मुझे क्या फायदा होगा, उससे मुझे क्या फायदा। अरे भैया करो तो, करना जरूरी है, करत अभ्यास जो है, आपको अभ्यास करना जरूरी है। फिर उसके बाद फिर आपको अपने आप अपने दृष्टिकोण ही बनेंगे, पहले से सवाल पूछ लेते। कुछ लोग अपना आपको इंटेलिजेंस समझते हैं सवाल पूछने का, उसमें जवाब मिल भी चुका होता है तो उनका सवाल जो है ना पहले से टेक्स्ट तैयार होता है, तो फिर भी वो सवाल पूछते हैं। तो पहले तो हमको सवाल पूछने की इजाजत ही नहीं थी, तो जवाब मिल जाते हैं, जवाब सवाल अगर पूरा सवाल बन जाए तो सवाल में ही जवाब होता है। तो यू हैव टू गिव अ टाइम,
0: बताया कि करते करते ही आपको जवाब मिलता भी है, मतलब पहले करने की आवश्यकता है। आपने कहा करत अभ्यास के जड़ मति हो सुजान, मतलब मुझे ऐसा लगता है पहले के लोग थोड़े से सुजान पहले से ही होते थे और इसलिए उनको जड़मति से सुजान होने में कम टाइम लगता था। अभी शायद जड़मति वाला हिस्सा ज्यादा है जिसके वजह से सवाल भी ज्यादा है या डाउट। सवाल मैं समझता हूँ गलत नहीं है, लेकिन जो संशय है, जो डाउट है ऑन द प्रोसेस, ये प्रोबेबली बुद्धि को करप्ट कर देता है कि ये जो मुझे बता रहे हैं इसमें जो डाउट आ रहा है गुरु के प्रति या शिक्षा के प्रति, ये बहुत खतरनाक होता है। और जैसे आपने बताया कि हर सब्जेक्ट में ही एक लो पॉइंट आता है जहां पर आपको लगता है कि मैंने क्यों ले लिया ये सब्जेक्ट, मैंने अपने पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मार ली, लेकिन ऐसे समय पे ये संशय और ज्यादा प्रबल हो जाता है। तो व्यक्ति अपने बुद्धि को संशय से कैसे बचाए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। मैं आपके अनुभव से जानना चाहूंगा कि आज का युवा या कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में अगर पारंगति लेना चाहता है और उसमें अगर उसको संशय आ रहा है या वो जूझ रहा है, तो संशय से खुद को कैसे बचाए।
1: संशय से किस तरीके से बचे, उसे बचना तो मुश्किल है, लेकिन उसमें फिर यही है कि यू हैव टू डेवलप अ रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर, आप उन पर ट्रस्ट करिए, यू हैव टू डेवलप अ ट्रस्ट। और वो भी गायब हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, कुछ लोगों में वो भी गायब हो जाता है, बट यू हैव टू हैव ट्रस्ट, आपको यकीन रखना पड़ेगा कि इसी सिया समंदर से मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा और इसी सिया समंदर से नूर निकलेगा। तो ये तो बहुत बड़े लोगों का ये कहना है, लेकिन मैं एक उस बचपन में जो है उसको बहुत मुश्किल से वो चीजें समझती है, तो माँ और बाप जो है ना वो, या कभी भाई बहन भी जो है, बड़े भाई या बड़े बहन या कोई भी, they can inspire you, they can give you a reply। उसमें से अगर आप उसमें से अगर उस क्षण में अगर आप उसको ट्रस्ट करके उसको उसी विधि को, उसी विधा को, उसी विद्या को अगर आप ट्रस्ट कर लें तो यू विल गेट द रिप्लाई। तो इसी तरीके से मैं उस डाउट्स में जब मैं आया था, जब मुश्किल क्षण थे, जब डिफिकल्ट प्रैक्टिस हो रही थी और वो आई वाज नॉट एबल टू डू, तो ये लग रहा है यार कि क्या मतलब है, फिर देन यू हैव टू गिव अ टाइम, आपको थोड़ा समय देना पड़ता है। तो बेस्ट थिंग इज टू गेट आउट ऑफ द रूम ऑल्सो, आप थोड़ी देर के लिए उस जगह से हट जाओ थोड़ा सा, अगर बहुत ज्यादा लोड हो जाता है तो उस जगह को छोड़ना अच्छा रहता है। जब जगह छोड़ते हैं तो फिर वो जगह याद आती है, जब थोड़ी देर आप जगह छोड़ हट जाओ तो फिर आपको वो जगह फिर याद भी आती है, आपको दिखती भी है, जहाँ पे आप पढ़ रहे थे, जहाँ पे आप अभ्यास कर रहे थे, थोड़ा सा उस जगह को छोड़ने से आपको ये लगता है कि हाँ चलो छोड़ो दिमाग में, थोड़ी देर आप जब बाहर अपना व्हेन यू टेक वो सब निकाल देते हैं तो उसके बाद फिर वही जगह वापस आपको याद आती है, फिर आप वापस वो खींच के लेके आ जाती है, तो कहीं ना कहीं तो आप अट्रैक्शन तो आपका उसी पे ही था ना, तो इसीलिए आप वो कर रहे थे, तो इसीलिए देन यू गेट इनटू दैट। तो उस टाइम जो है मैं अभी है कि आपको समय को भी समय देना पड़ता है, यू हैव टू गिव अ टाइम, समय को समय देना पड़ता है। जब आप अच्छा समय आप किसी की क्वालिटी टाइम कहीं पे आप देते हैं तो वो दैट क्वालिटी टाइम्स गिव्स यू बैक, फिर आपको वो समय अच्छा समय दिखाता है। तो ये समय एकदम ऐसे तो आ नहीं जाता है, तो सन्मयता के साथ उस समय का आपको परिश्रम करना चाहिए, आपको और आपको उसका इंतजार करना चाहिए। आजकल जो है समय उड़ क्यों रहा है, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं ना, हमारे आध्यात्मिकता में हम लोग का यही वो रहता है कि भाई जो चीज अच्छे श्लोक क्यों पढ़ने को लिए बोलते हैं, क्यों बोलते हैं अच्छी बातें बोलो, क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि वो अच्छा जो है उससे अच्छा ही होता है, जो बुरा होता है तो उससे बुरा ही होता है। तो इसीलिए ही जो है हम लोग पिछले 30 साल से हम लोग या ज्यादा से 30-40 साल हो गए हमको ये समय नहीं है। We don't have time. कितनी जल्दी समय उड़ गया, समय कितनी जल्दी उड़ जाता है। मेरे ख्याल से हम लोग को जो है अब ये मंत्र भी जाप करना चाहिए, समय है। जब समय है करेंगे तो समय भी थमेगा, समय भी रुकेगा। क्योंकि हम लोग जो मेडिटेशन करते हैं, जो हम लोग संगीत जो गाते हैं, जो मेडिटेशन करने वाले, तो वो क्या है, सबसे सुंदर समय कौन सा है? बहुत सारे हो सकते हैं। कोई कहता है सूर्य उदय है, कोई कहता है सूर्य अस्त है, कोई कहता है यही समय है, कोई कहता है सुबह का समय है। तो ज्यादातर सुबह को ही बोलते हैं कि सुबह का समय बहुत अच्छा होता है। तो उन्हीं को मैं ये सवाल पूछता हूँ कि रात अच्छी नहीं है क्या? रात कुछ नहीं देती क्या? तो रात भी कुछ देती है, हर समय कुछ ना कुछ आपको देता ही है। लेकिन सबसे सुंदर समय वो समय है जब आपको समय का ही आभास नहीं हो। क्योंकि समय को तो वो जो 5 मिनट का गाना कभी 5 मिनट में खत्म हो जाता है, कभी 5 मिनट में नहीं खत्म होता, कभी 5 मिनट से पहले खत्म हो जाता है। ये होता है, ये हम सबके साथ हो चुका है जो हमको पसंद है। कभी हम वो गाना पूरा का पूरा सुन पाते हैं, कभी वो टॉक जो है बहुत अच्छी तरीके से सुन पाते हैं, कभी नहीं सुन पाते कितनी अच्छा प्रवचन हो रहा होता है नहीं सुन पाते, कभी पूरा का पूरा सुन लेते हैं अच्छी तरीके से। तो वो क्षण जब आ जाता है, समय जब एक क्षण में प्रवेश कर देता है, तो फिर आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये ध्यान जो है, ये संगीत है जो है, ये ध्यान जो है वो आपको उस क्षण में ले जाता है, आप वो समय को कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो ये बहुत बहुत जरूरी है कि मतलब अपने आप को आप रियलाइज, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ असेसमेंट, जैसे धारणा क्या है, ध्यान क्या है, किस तरीके से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 स्टेजेस है। तो आपको किस तरीके से अपने आप को वो करना है, मतलब कमिट करना है। कमिटमेंट के बाद फिर आपकी धारणा भी चाहिए।
0: मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी जो आपने बताया कि समय को भी समय देना बहुत जरूरी है, और जब समय आपको आभास ही ना हो वो समय आपका बेस्ट समय है। ये बहुत बड़ी बात कही आपने कि आप अपने, इसे ही हम योग कहते हैं, कि आप अपने कर्म से या जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उससे आप इतना जुड़ जाए कि आपको जो थर्ड एलिमेंट है समय उसका ख्याल ही ना रहे। और इसके लिए ही जो आपने बताया कि अभ्यास धारणा ये बहुत मायने रखती है। मुझे एक और सवाल इसमें ध्यान आता है कि व्यक्ति जब अपने विधा में इस प्रकार से जुड़ जाता है कि वो और विधा अलग नहीं हो, उसका एक इमेज बन ही जाता है उस विधा के साथ, तब कहीं ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति के ऊपर ये बोला जा रहा है कि भाई आप तो बस यही करते हैं, आपको तो बस यही आता है। लेकिन एक ह्यूमन स्पिरिट जो है, एक मनुष्य जो है, वो लगभग सब कुछ करने में पारंगत हो सकता है, लेकिन कोई एक विधा को चूज करता है। कभी आपको ऐसा सुनने में आया है अपने लिए कि भाई आप तो केवल ध्रुपद गायकी में ही आगे हैं, या आप कुछ अलग प्रकार के गायकी में नहीं कर सकते, या कईयों के लिए ऐसा बोला जाता है भाई ये तो लोक संगीत ही कर सकते हैं, ये शास्त्रीय संगीत नहीं कर सकते, या ये वेस्टर्न म्यूजिक ही कर सकते हैं, इनसे ये म्यूजिक नहीं होगा, ये तो इस तरीके की बातचीत बहुत सुनने में आती है। इसमें कितना तथ्य है
1: भाई? एक चीज आ जाए वो आसान तो है नहीं। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो एक कभी अगर आप साधक बन जाते हैं और संपूर्ण साधक बन जाते हैं, तो that should give you blessing. That blesses. This is a blessing you get. और आप में अगर उत्तेजना है तो आप उत्तेजित कहीं पे भी रह सकते हैं।
0: बहुत अच्छा है।
1: तो आप में अगर आप उत्तेजित हैं तो आप उत्तेजित रहेंगे ही रहेंगे। तो लेकिन उसी को तो रिलैक्स करने के लिए ये माध्यम है, ये योग क्यों है, योग को धीरे करने के लिए क्यों बोला गया है, ये ठहरने को क्यों बोला गया है, मेडिटेशन को, ध्यान को क्यों कहा गया है कि आप ठहरो। सबसे पहले मतलब जो हम लोगों ने अंगुलीमाल का वो जो सुना ना, वो पहली बार जो उन्होंने वो जब वो जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि उसने कहा, उनको कहा ठहरो, तो उन्होंने कहा कि तुम कब ठहरोगे, मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। तो पहले तो ये बहुत जरूरी है कि ये ठहरने का मतलब क्या है। आप रुकने का मतलब क्या है, थमने का मतलब क्या है, अपनी अपनी जो भी अपनी उत्तेजना है आपकी, जो इधर उधर जो आपकी इंद्रियां जो आपकी सब जगह पे लेके जा रही है, तो उसको एकाग्रत कर मतलब क्या है। अब जैसे मुझे पता नहीं, मैं ध्यान का तो मुझे ना क्या बोलूं, लेकिन ध्यान मेरे लिए वो है कि शोर में भी अगर आप अपने सेंटर प्राप्त करें तो वो ध्यान है। एक एम्बियंस क्रिएट करके ध्यान किया तो ध्यान अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। जहाँ पे ऑलरेडी पिन ड्रॉप साइलेंस है वहां पे ध्यान आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमको वहां पे प्रैक्टिस करवानी चाहिए जहाँ पे बच्चे छिड़कूद कूद कर रहे हैं, वहां पे आप अपने ध्यान प्राप्त करें, वो ध्यान है। और देखो ध्यान आया कहाँ पे, कौन से मुल्कों में आया, भारत से, भारत में आया, चीन में है, जापान में है, जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है। शोर तो आजकल बहुत हो गया ना, आजकल तो आज जो पंखा है वो भी शोर करता है, पंखे का भी शोर है, कूलर का भी शोर है, एसी का भी शोर है। उस शोर में से आपको आवाज अपनी बचानी है, निकालनी है, संभालनी। तो ध्यान का मतलब ये इतनी डेंसली एरिया में क्यों ध्यान दिया गया, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में वहां पे पंखे की जरूरत नहीं है, उनको एसी की जरूरत नहीं है, वहां पे ऑलरेडी ठंडे हैं मुल्क, उनको वो वैसी उनके जो हमारे हमारे टोन में उनके टोन में इसलिए भी फर्क है क्योंकि वो उनको एसी और से लड़ाई नहीं करनी पड़ती, लेकिन हमको अपनी आवाज निकालने के लिए एसी से भी लड़ाई करनी है, पंखे से भी करनी है, ये से भी करनी है, सब चीजों से करनी। तो इस ये भी एक वजह है कि वो मतलब उनके टोन और इधर के टोन में क्यों फर्क हो जाता है। तो इस सारी चीजों को ध्यान देखना पड़ता है ना। तो ध्यान एक ऐसी जगह है कि मतलब आपकी यू हैव टू फाइंड योर सेंटर, जब थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल एंड फाइंड इट, फाइंड योर सेंटर, ये है ध्यान। अब जैसे स्वर जो है, स्वर जैसे हिंदी में लिखते हैं स्वर, तो आधे सा और व र है। एक और बात बोलता हूँ मैं, और मैं आजकल बस यही दिमाग में चढ़ा हुआ है, तो मैं ढाई अक्षर किस चीज का है,
0: प्यार का कहते हैं,
1: प्यार का, लेकिन आ की मात्रा है, प्रेम का भी बोलते हैं, उसमें हलंत है, प्रे प में हलंत है, फिर ए की मात्रा है, फिर माँ है ना, तो फिर कितने हो गए, हलंत व हलंत, हाँ ढाई से ज्यादा हो गया। प्यार में आ की मात्रा भी लगी, पा या
0: फिर आ की मात्रा,
1: तो हाँ प्यार नहीं है, प्यार है, तो आ की मात्रा है, तो वो भी, तो ढाई अक्षर जो है वो है। फिर अगर अगर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ढाई अक्षर स्नेह का भी बन सकता है फिर तो, और ढाई अक्षर स्वर का है
0: जिसमें कोई एक्स्ट्रा मात्रा नहीं है।
1: जी जी बिल्कुल, एक्स्ट्रा मात्रा नहीं है। तो ये स्वर जो है प्रभावित करता है, हर मनुष्य को प्रभावित करता है, अच्छे स्वर बोलने के लिए बोलते हैं। तो इसी तरीके से अगर ध्यान भी इतना वो है, इतनी कोमल चीज है, स्वर इतना कोमल है कि एक अक्षर का भी भार नहीं सहन कर सकता, उसी तरीके से ध्यान किस तरीके से लिखा जाता है, ध्यान का अध्ययन क्या है, अध्याय पढ़ने का, अध्ययन करने का, अध्याय ध्यान, ध्यान क्या है, आधा था या और ना, आ की मात्रा के साथ ध्यान है, वो भी मैं ढाई नहीं बोल रहा उसको, लेकिन वो भी इतनी डेलिकेट चीज है कि उसको भी पूरा धा नहीं दिया, धारणा में पूरा दिया हुआ धा, धारणा में पूरा धा है, धारणा के साथ बैठो फिर ध्यान, उसके अंदर जब आप धारणा के साथ बैठते तो वो फिर ध्यान की प्राप्ति होती है, फिर वो डेलिकेट हो जाता है, वो
0: बहुत सुंदर,
1: फिर ध्यान मिलता है। ध्यान प्राप्त करने के बाद फिर समाधि है। अब समाधि क्या है, समाधि, लेकिन मैं उसको समाधि बोल रहा हूँ, समाधि नहीं बोल रहा मैं, जब आप सम का मतलब बराबर आ गया, सम
0: बराबर, आदि मतलब शुरुआत, फिर
1: तो इट्स अ न्यू बिगिनिंग। अब जिसको ध्यान प्राप्त होता है वो ही बता सकता है, जो समाधि जिसको मिली है, कि वो क्या होता है, सुपर कॉन्शियस स्टेट या सुपर अनकॉन्शियस स्टेट, कुड बी सिमिलर, क्या पता, जिनको मिला है वही जानते हैं।
0: ये ब्यूटी है कि हमारे जो पारंपरिक विधाएं हैं, जो शास्त्रीय संगीत है या नृत्य है या कोई भी विधा जो परंपरा से भारत में चली आ रही है, वो अपने आप में बहुत आध्यात्मिक है। और कोई व्यक्ति अगर केवल उसको ऊपर ऊपर से सीखता है, समझता है, या उसको मैं कहूँगा रोजगार का साधन ही समझता है, तो वो कभी इतने गहराई में उसके आध्यात्मिक रस को नहीं ले पाता। लेकिन जब कोई व्यक्ति उसके गहराई में पहुंचता है, जैसे कि हमारे श्रोता आज देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं वासिफुद्दीन जी आपको, कि एक आध्यात्मिक पथ जो है वो इजीली कोई भी विधा दे देती है। और कई बार जो हमारे स्पेशली मैं यंग जनरेशन के लिए कहूंगा, क्योंकि पहले शायद जब 1988 में आपने 20 वर्ष की आयु में भारत भवन में पहला अपना परफॉर्मेंस दिया, उस समय शायद कोई जो आजकल के टीवी रियलिटी शोज होते हैं और जो ये चकाचौंध होता है वो नहीं होता था। तो इसलिए जो तपस्या है, जो आध्यात्मिक पथ है, वो चल पाना एक सहज, मैं सहज तो नहीं शब्द यूज करना चाह रहा, लेकिन एकमात्र उपाय होता था। आज इतना ज्यादा प्रलोभन है कि भाई हम इधर स्टार बन जाएंगे, इधर हमारे फॉलोवर्स बन जाएंगे, इधर हमको एक सिंगिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, इधर हमारा एक परफॉर्मेंस हो जाएगा। इन सब के बीच में व्यक्ति भूल ही जाता है कि इन सभी विधाओं का उद्देश्य था कि आत्मा को आध्यात्म से जोड़ना, परमात्मा से जोड़ना। चाहे आप संगीत के माध्यम से जुड़ रहे हैं, चाहे आप नृत्य के माध्यम से जुड़ रहे हैं, वो पर्पस ही कहीं गुम हो गया। कैसे हम उसको ठीक करें, क्या करना चाहिए हमें?
1: भारत एक ऐसी जगह है। देखो, सबसे पहले तो एक भारत क्या विश्व जो है, पूरा हमारा शरीर जो है परफेक्ट एग्जाम्पल है धरती का, पृथ्वी का। मतलब एक मोटा मोटा एक उदाहरण लें तो जितना पानी उसको जरूरत है उतना हमारे हमारे शरीर को जरूरत है। एग्जैक्टली सेम परसेंटेज, ये तो मोटा मोटा है। फिर और भी चीजों को अगर मिलाए तो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी मिल जाती है। तो फिर शरीर इज अ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटेड बाय गॉड, भगवान की बनाई हुई वीणा है, गायत्री वीणा है। एंड दिस इंस्ट्रूमेंट इज इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिएटिंग ऑल द इंस्ट्रूमेंट। सारे इसी ने बनाए ना, सारे इंस्ट्रूमेंट, सितार है, सरोद है, सारंगी है, हारमोनियम है, जितने भी है वो इसी ने बनाया है। साउंड पहले उसमें बैम्बू से पहले साउंड उसको सुनाई पड़ी, उसने कहा कि भाई थोड़ा सा इसके अंदर होल क्रिएट कर देंगे तो कुछ और हो जाएगा। तो मनुष्य इज कंटेम्पररी ऑफ ऑल टाइम, सदा से वो है। तो दिस इज इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिएटिंग ऑल द इंस्ट्रूमेंट। सब्जेक्ट बनाने वाला कौन है, सब्जेक्ट नहीं पढ़ने वाला कौन है, नहीं समझने वाला कौन है, समझने वाला कौन है, समझाने वाला कौन है। तो मनुष्य ही है, सब चीजों के पीछे मनुष्य है। तो सेल्फ रियलाइजेशन हमारे यहाँ जो है हर चीज में, भारत में, साउथ साउथ एशिया जो है, जो मैं आई इंक्लूड पाकिस्तान ऑल्सो एंड बांग्लादेश ऑल्सो, ये साउथ
0: जी
1: एशिया जो
0: जी
1: है,
0: अखंड भारत।
1: नेपाल, नेपाल जो ये है, अखंड भारत जो है, इधर ये आध्यात्मिक जो एक स्वरूप है और जो हर चीज में आत्मा डालने की जो वो है, एक ख्वाहिश है। फूल में भी फूल की भी आत्मा को तलाश करने की कोशिश करता है, किसी और चीज को भी, पत्थर, जहाँ पे पत्थर, जहाँ पे बूंद गिर रही है जिस पत्थर पे, उसकी भी आत्मा तलाश करने की कोशिश करता है। उसमें क्यों बूंद कहाँ पे पड़ के, वो जो पत्थर जो इतना साफ हो गया है, कभी आपने उधर हाथ तो लगाए होगा, वो जहाँ पे बूंद पड़ती है वो पत्थर
0: जी
1: कितना सॉफ्ट हो जाता है, कितना अच्छा लगता है उस पत्थर पे हाथ लगाना।
0: जी
1: और बूंद की औकात क्या है पत्थर के अगेंस्ट, लेकिन उसके अंदर भी वो छेद कर देता है, उसको भी सॉफ्ट कर देता है। तो भारत का, भारतीयों का, या भारत भारत इंडियन थॉट में यही है कि हर चीज में आत्मा डालता है। बगैर आत्मा के वो अपनी चीजों में भी अपने आत्मा ही तलाश करता है, अपने साज में तलाश करता है, जो बजा रहा है या तानपुरा है या जो भी है उसके अंदर, जो गाड़ी गाड़ी से कमाता है उसके अंदर भी, वो गाड़ी से भी वो वार्तालाप करता है, जो टैक्सी से जो कर रहा है वो भी उससे भी बात करता है अपनी गाड़ी से भी। भारत में होता है ये सब, और जगहों में भी होता है, ये नहीं बोलता और जगहों पे नहीं होता, होता होगा कहीं पे, लेकिन हम लोग अपनी चीजों में आत्मा डालने की हमको शुरू से ही वो है। चाहे फूल हो, पुष्प हो, कुछ भी हो, हर चीज है पुष्प, फिर वो आ जाता है कि वो क्या है। तो मनुष्य इज ब्लेस्ड टू थिंक फ्रॉम द अदर साइड, दूसरी ओर से सोचने की उसमें क्षमता है। और जो जीव है, जो भी आते हैं, जानवर आते हैं, मरते हैं, खत्म हो जाते हैं, दूसरे को मारता है, दूसरा वो करता है, वो करता है, वो आके वो खत्म हो जाते हैं। सर इसी कीड़े मकोड़े भी आते हैं, वो करते हैं अपने अपना काम वाम करते हैं, अपना काम, कीड़े मकोड़ों का भी अपना काम है, पानी का भी अपना काम है, उसका भी अपना काम है, वो अपने साइकिल में आते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, फिर ये मनुष्य भी यही सोचता है कि आपको कैसे पता वो एक दूसरे से बात करते हैं या नहीं करते जानवर।
0: जी
1: तो ये मनुष्य के पास, मनुष्य इज ब्लेस्ड टू थिंक फ्रॉम द अदर साइड। तो ये सिर्फ मनुष्य में ही एबिलिटी है कि दूसरी तरफ से भी सोचने की उसमें क्षमता है। तो इसलिए वो सबसे चॉइसेस परमात्मा का वो इसीलिए बन जाता है, दूसरे की तरफ से भी सोचने की कोशिश करता है, दूसरे के भाव को भी लेने की कोशिश करता है।

0: ये जो मैंने सवाल पूछा था कि ये जो प्रलोभन है चारों तरफ, ये भी हमने ही क्रिएट किया है। और
1: बच्चों को, सिर्फ बच्चों को हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते भाई, तो
0: बिल्कुल
1: बच्चों को नहीं क्रिटिसाइज कर सकते, प्रोवाइडर्स शुड बी क्रिटिसाइज्ड जो प्रोवाइड कर रहे हैं, ये नेट पे और ये हर हर जगह पे जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सबसे बेतुकी बेहुदा साइट्स हैं, अगर बाय बाय मिस्टेक इफ यू क्लिक इट डजंट गो, सैकड़ों क्लिक के बाद भी वो नहीं जाती है वो, और जो आम साइट्स हैं और जो वो है आराम से बंद भी हो जाती है, खुल भी जाती है, बंद भी हो जाती है, लेकिन जो सबसे बेतुकी बेहुदा जो जो साइट्स हैं, अगर बाय मिस्टेक इफ यू यू हिट दैट, वो हटती नहीं है, कितनी देर तक नहीं हटती है। तो दिस इज टू बी हु टू बी ब्लेम्ड। अब एआई इज देयर, एआई आर्टिफिशियल
0: इंटेलिजेंस
1: इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आल्सो नीड टू बी कमांडेड,
0: ट्रेन।
1: यू हैव टू कमांड, यू हैव टू कमांड। ह्यूमन एरर दे देते हैं, ह्यूमन एरर कंप्यूटर में, कंप्यूटर को आप टाइप करते रहे, एक हल्के सी भी गलत टाइप हो जाता है तो वो शो कर देता है।
0: जी
1: तो ह्यूमन एरर्स आर देयर, लेकिन यू कांट जस्ट ट्रस्ट के मशीन हमको संभाल लेगी, मशीन तो हमको
0: ये
1: नहीं संभाल सकती ना
0: जो आपने बात
1: मशीन।
0: कही कि हम अक्सर ये कह देते हैं कि युवा पीढ़ी जो है इस तरफ भाग रहा है भाग रहा है, लेकिन जो आपने बात कही कि जो प्रोवाइडर्स हैं उनको इन चीजों को पहुंचा कौन रहा है, ये मेकर्स जो हैं उनको ये बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस प्रकार की चीजों का इन्वेंशन किया जाए या प्रोजेक्ट बनाया जाए जिसमें लोगों में ये भागम भाग की होड़ कम हो, इनफैक्ट उनके अंदर ये चीज ज्यादा बढ़े कि भाई एकाग्रता। या जो आपने पहले बात कही कि भले आपके पास 100 सब्जेक्ट्स हो लेकिन एक को भी अगर आप सध लेते हैं तो इट्स अ बिग डील, इट्स एनफ फॉर द एंटायर लाइफ टाइम। कंटेंटमेंट, संतुष्टता उसमें आ ही जाती है।
1: बिल्कुल,
0: मुझे याद आता है मैं
1: कंटेंटमेंट
0: बचपन
1: टेक्स
0: में,
1: यू इनटू ब्लिस।
0: जी आनंद, ब्लिस।
1: जी, आप
0: मुझे
1: क्या
0: याद
1: बोल रहे
0: आता
1: हैं?
0: है कि मैं बचपन में तबला सीखता था
1: जी
0: और मेरे जो गुरुजी थे उन्होंने हमें क्लियरली ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था कि आपको अभी कहीं परफॉर्म नहीं करना है, ना किसी स्टेज पे जाना है, ना ही कुछ करना है, मैं आपको बताऊंगा आपको आप कब रेडी हैं। बट हम, जैसे आप बता रहे, वैसे हम रविवार को, क्योंकि छुट्टी रविवार को ही होती थी, आजकल तो 2 दिन छुट्टी मिलती है बच्चों को भी स्कूल में, हमें तो एक ही दिन मिलता था, तो हम एक दिन जाते थे सुबह से और गुरुजी के साथ और सभी शिष्य मिल करके हम तबला सीख रहे होते थे, घंटों निकल जाते थे, हमें पता भी नहीं चलता था। और कब एक समय आया जब उन्होंने बोला आपको यहाँ बजाना है। तो ये जो पेशेंस पकड़ के रखना है कि मुझे बाहर निकलना है, मुझे बताना है लोगों को कि मैं कितना अच्छा हूँ या मैंने कितना सीख लिया है या मुझे क्या आता है नहीं आता है, ये चीज जो है वो गुरु के ऊपर जो ट्रस्ट था एंड जो वर्च्यू ऑफ पेशेंस, धैर्यता, ये कहीं ना कहीं अभी कम होती हुई नजर आ रही है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, इससे आपको थोड़ा ये चीज, मेरा सवाल थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि हमारे कोई परिचित थे जिन्होंने अपने बच्चे को एक बहुत ही अच्छे संगीत शिक्षक के पास शिक्षा के लिए भेजा था, और वो जो संगीत शिक्षक थे उनको हमने ही रेकमेंड किया था, और वो संगीत शिक्षक जो है हमें फिर फोन करके कहते भाई इनके पेरेंट्स ने आकर के हमें पहले दिन ही पूछ लिया मेरा बच्चा कब रेडी हो जाएगा, फलाना प्रोग्राम आने वाला है, ऑडिशन के लिए जाना है। तो मैंने सोचा कि ये तो मेरे से गलती हो
1: पेरेंट्स
0: गई।
1: पेरेंट्स पेरेंट्स आल्सो हैज टू बी ब्लेम्ड। एक बच्चे से इतनी एक्सपेक्टेशन करवा रख लेते हैं कि ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले। एक तो
0: जी
1: हर को अपना बच्चा ना प्रोजेडी लगता है वैसे, एक ये भी एक हो गया है। तो एक एक बात ये भी है कि टैलेंट, वी नीड टैलेंट एंड यू हैव टू बी टैलेंटेड टू अचीव व्हाटएवर फील्ड यू आर इन। बट एक्सपीरियंस इज समथिंग डिफरेंट। विद एक्सपीरियंस व्हाट यू गेट होल्ड ऑफ थिंग्स, एक्सपीरियंस रिप्लेसमेंट नहीं है टैलेंट का। टैलेंट से आपको
0: अनुभव अनुभव
1: एक्सपीरियंस नहीं
0: है
1: आएगा,
0: और हुनर
1: अनुभव
0: हुनर है।
1: अनुभव है। और उसके अंदर अनुभव भी जब आता है, जब आप तप तप जब आप उसके अंदर होता है, आप समय जब बिताते हैं अपनी चीज के साथ, अपने लगाव के साथ, आप उस चीजों के साथ स्पेंड करते हैं, तो फिर उसके साथ लगाव पैदा होता है। तो लगाव जब पैदा होता है तो फिर बात ही दूसरी हो जाती है।
0: तो
1: तो ये
0: ये जो
1: बहुत जरूरी
0: कल्चर
1: है।
0: है, ये जो भागम भाग का कल्चर है, तुरंत हमको जल्दी फेमस होना है, हमें जल्दी पैसा कमाना है, इसमें हम वो तपस्या का पार्ट छोड़ देते हैं।

0: And do you think it restricts our longevity in the field of our music or our art form?
1: एक्चुअली जो है वो तो करवाए ना, फिर वरना उनको इतनी सब चीजें हैं, देयर इज रिप्लाई ऑफ एवरीथिंग। अब वो क्या गूगल कम था, वो एक और भी आ गया, वो जीडीपी पता नहीं कौन सा है, वो चैट
0: चैट जीपीटी
1: है, वो है, पता नहीं कौन कौन से आ गए जो आप ही को आपका जवाब दे रहे। तो मतलब वो तो पागल हो रहे हैं लोग। लोगों का क्या है, लोगों का मत जो है ना बिल्कुल मारी गई है वो तो। खैर चलो ठीक है, दिस दे आर गोइंग आफ्टर दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट यू नीड ह्यूमन टच। ह्यूमन टच के बगैर कुछ हो नहीं सकता। या अगर मतलब एक कंप्यूटर के साथ भी जी सकते थे लोग, लेकिन क्यों फिर पेट के साथ क्यों जीने लगे? क्योंकि वो सांस ले रहा है, वो जवाब दे रहा है। तो इसलिए वेस्ट में जो है बुढ़े लोगों के पास वो पेट वो कर देते हैं, क्योंकि वो उससे वो बात करते रहते हैं, वो अपना रिएक्शन भी देता है, पेट जवाब भी देता है। तो कंप्यूटर को जब तक आप कमांड नहीं करेंगे तब तक रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन अगर पेट जो है वो रिएक्शन दे देगा, अगर उसको कुछ सही नहीं लग रहा तो कहीं पे उसको वो रिएक्शन दे देगा, लेकिन कंप्यूटर बगैर कमांड के नहीं देगा ना। तो ये आर्टिफिशियल वो भी थी ना, कौन सी वो जो पूरे घर का जो कंट्रोल करती थी कि ये वाला भजन सुना दो, ये राग सुना दो, वो सुना दे, एलेक्सा। हाँ वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। तो अब कहाँ गई वो एलेक्सा, जितनी बात हो रही थी अब वो आर्टिफिशियल दूसरी इंटेलिजेंस आ गई। तो ये प्रोवाइडर्स वो उनको चाहिए, आपके एप्पल फोन है या एंड्रॉइड फोन है, वो थोड़े थोड़े दिन में वो कोई एक और चीज उसके अंदर इजाफा कर देते हैं, दैट विल बी द बेस्ट फॉर यू, दैट विल बी द बेस्ट फॉर यू। तो वो मार्केटिंग है। तो सबसे पहले मार्केटिंग तो इसी की मार्केटिंग होनी चाहिए कि आपके जो आत्मा की क्योर कैसे है, आत्मा को क्या चीज अच्छी लगती है, आत्मा किससे रिझती है। आत्मा में तम है, तम मतलब अंधेरा है। आत्मा तभी जब हम अपने आप को अप्रिशिएट करना बंद कर देते हैं तो आत्मा तम की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तम देन वी क्या, हाँ यही हम ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही हैं, हम तो सबसे ही बुरे हैं। वंस यू स्टॉप टू अप्रिशिएट योर ओन सेल्फ तो वो आप डिप्रेशन की तरफ चले जाते। तो इसलिए रोशनी की तलाश जरूरी है। सो यू हैव टू नो हाउ टू अप्रिशिएट योर ओन सेल्फ।
0: फिर और
1: मतलब औरों की भी प्रशंसा जरूरी है। फिर मतलब इसके अंदर भी तो इम्बैलेंस हो जाए ना, सिर्फ आप अपनी अपनी अपनी कोई अप्रिशिएट करते रहे और किसी और को नहीं अप्रिशिएट कर रहे, दैट इज आल्सो बैड। तो फाइंड द राइट बैलेंस के मतलब औरों से भी प्रशंसा जरूरी है, आपको अपने को भी अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए स्वर को लगा के जो हमको आनंद जितना आता है वो लोगों को पता नहीं आता है या नहीं आता है, पता नहीं क्या है, लेकिन वो है। अब आप जो क्रम कर रहे हैं आज जो टीवी मतलब इसमें जो रेडियो जॉकी जो है या जॉकी है जो भी है, तो इसमें पहले जॉकी तो पहले एक तो शब्द मुझे सही नहीं लगता है वैसे तो, क्यों पता नहीं क्यों रेडियो जॉकी बना दिया है, मुझे समझ नहीं आता जॉकी क्यों नाम दे दिया है। जॉकी का मतलब जॉकी जो है पहले से उसमें इस्तेमाल, आई एम सॉरी अगर बुरा लगा तो मुझे माफ कर
0: देना। नहीं नहीं इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट।
1: जॉकी किसके लिए बोलते थे? आप सुकून से बैठे हुए फिर भी जॉकी क्यों बने? जॉकी तो बैठता ही नहीं है, उसको तो रिब्स दबाने होते हैं, तो इसलिए वो मुकर रिब्स दबाते दबाते वो हो जाता है। वो तो सुकून से वो कहाँ बैठता है? वो
0: आपकी बात एकदम राइट है कि लोगों ने जो चीज बोलना शुरू कर दिया बगैर सोचे समझो उसको आगे बढ़ाते भी गए, वो आगे बढ़ाते भी गए, कभी सोचा भी नहीं कि इसको क्यों बोला जा रहा है, बस एक धुन सी थी कि भाई हमको उस होड़ में पार्ट लेना है। एकदम एक्यूरेट है आपका कहना।
1: तो अब बुरे बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगेगा जो मैं बात कह रहा हूँ, I'm sorry, मैं पहले से उसके लिए अपोलॉजी कहता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से तो यही है। मतलब जो और जो आप सुकून से सुन रहे हैं ना, और लोग सुकून से सुनते ही नहीं है, सवाल गाने से पहले भी बात करने लगते हैं, गाना खत्म होने से पहले भी बात करने लगते हैं। तो भाई संभालो, संभालना जरूरी है, समझना जरूरी है। तो ये सब चीजें हैं अपनी जगह पे, बहुत इम्पोर्टेंट है, सब लोगों को सब कुछ चल रहा है, लेकिन एक धैर्य लाना भी बहुत जरूरी है। आपने शब्द इस्तेमाल किया तो धैर्य जो है वो बहुत बहुत जरूरी है, और अपने पे विश्वास भी जरूरी है। हम किसी औरों पे ज्यादा देखने लगते हैं, अपने से ज्यादा कुछ और लोगों को देखने लगते हैं, जिसकी वजह से हमको सुकून नहीं मिल पाता है। हम दूसरों की तरफ इतने अपने रुझू कर लेते, इतना उनके बारे में सोचने लगते, इतना उनके लिए वो करने लगते कि हम अपने अपने आप को देखना बंद कर देते। तो उनको भी देखिए, अपने आप को भी देखिए। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है, हर राग में हमारे सा जरूर होता है, सा के बगैर कोई भी राग नहीं। सा से संगीत है, सा से संगति है, सा से सूक्ष्म है, सा से सारांश है, सा से संचार है, सा से संस्कार है, सा से संस्कृति है, सा से सृष्टि है, सा से सूर्य है, सा से समंदर है, सा से समक्ष है, कितनी चीजें हो गई। सा से स्वर है, सा से सरस्वती है, सा से स्थापना है, सा से स्थापित है, सा से स्थान है, कितनी सारी चीजें इससे। तो संतुलन भी सा से है, संघर्ष भी सा से है, और सरेंडरनेस को क्या बोलते हैं,
0: समर्पण।
1: समर्पण, समर्पण भी सा से है। समर्पण करना पड़ता है, आपके श्वास को समर्पण करना पड़ता है, तब आपको सही तरीके से स्वर भी, स्वर की भी ध्वनि समझ आती है बहुत मुश्किल से। ध्वनि, ध्वनि भी वैसे ही है आदेशा से, स्वर भी आदेशा आदेशा से है। इसके अब इसकी हर चीज की गहराई में जाओ तो कुछ ना कुछ मिलता है, चला जाएगा।
0: ये आपके साथ तो ऐसे लग रहा है कि दिन पर दिन निकल सकते हैं गहराइयों में जाते जाते, लेकिन पेट नहीं भरेगा हमारा। लेकिन जैसे आपने बताया कि धैर्य, संतुलन, समर्पण और विश्वास, ये सारी चीजें जो हैं किसी व्यक्ति को महान बनने में बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इससे पहले आपने कहा ब्लेसिंग्स, बड़ों की दुआएं, बड़ों के ब्लेसिंग्स, अपने टीचर की ब्लेसिंग्स, ये बहुत बड़ा रोल निभाती है।
1: आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है भाई, आशीर्वाद के बगैर कुछ नहीं होता
0: जी, बगैर आशीर्वाद के रूखा है जीवन। जी, आशीर्वाद में ही आश्रय है। केवल एक अक्षर को लेकर के उस्ताद वासिफुद्दीन डागर जी ने हमें कितनी सारी बातों का दर्शन कराया। ये बातें दार्शनिक नहीं है, ये सत्य है दोस्तों। स से सत्य भी है, स से स्वर है, सर से स्थापना है, स्थाई है, स से समर्पण है, और स से है सुनते रहने का हमारा सिलसिला, स से सिलसिला भी है। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे अगले एपिसोड में भी आप हमारे साथ स से साथ जुड़े रहें, ताकि वसीफुद्दीन डागर जी के साथ हम उनकी और भी गहरी गहरी ज्ञान भरी बातों को सुनेंगे और उनसे कुछ सुनने का भी हम आग्रह करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों अगले एपिसोड में भी आप हमारे स से साथ रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, मैं वापस लौटूंगा वसीफुद्दीन डागर जी के साथ यशस्वी भारत कार्यक्रम के एक और एपिसोड में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन।

0: पांच यूट्यूब वीडियो को लाइक करके पांच लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
0: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
0: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मीन्स ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
0: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं।
2: क्या बात है यार।
3: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
0: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
3: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है।

0: और हैप्पी होंगे। आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान जिन्हें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं डॉक्टर सपना गुप्ता जी हैं, जो नेचुरोपैथ हैं और कंसल्टिंग करते हैं और काफी लंबे समय से अलग अलग जगह पे उन्होंने रिसर्च किया है। और अब आज हम लोग जिस विषय को लेकर बात करेंगे वो है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। हम लोग हमेशा जो है, कल जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ डे था, विश्व स्वास्थ्य दिवस था, तो उसमें हम लोग स्वास्थ्य के बारे में जरूर बात की, लेकिन 90% से ज्यादा जो बीमारियां होती हैं वो मन से शुरू हो जाता है। अगर मन को ठीक से समझ ले तो हम लोग शायद फिर हम हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएंगे, हेल्दी रहेंगे, वेल्दी रहेंगे। तो आज इसी विषय को लेकर डॉक्टर सपना गुप्ता हमारे साथ जुड़ेंगी और बातें करेंगे। तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। जनता जी, सपना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: बहुत थैंक्स ब्रदर।
0: जी, और मैं चाहूंगा कि हमारे साथ रमा पंचाल जी जुड़ गई हैं पूना से। तो मैं चाहूंगा कि रमा जी एक बहुत ही छोटा सा गीत जो है सुनाइए डॉक्टर सपना के स्वागत। जी नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो 90.4 एफएम पर बातें मुलाकातें। और मैं चाहूंगा हमारे जो मित्र हैं जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आपको अगर कोई सवाल हो, किसी भी तरह का हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जरूर आप कमेंट सेशन में अपना नाम लिख के क्वेश्चन डालिए, ताकि वो क्वेश्चन हम डॉक्टर साहिबा से अवश्य पूछ सकें।

Thank you.

Gracias.

0: बहुत ही अच्छा लग रहा है। और रमा बहन बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। चलिए अब आगे बढ़ते हुए मैं सीधे आपको जोड़ना चाहूंगा डॉक्टर सपना जी से। डॉक्टर सपना जी बहुत बहुत स्वागत है दिल से, और मैं चाहूंगा कि आज जो विषय हम लोग निश्चित तौर पे वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हेल्थ माना बाहर से जो दिखाई दे रहा है उसी पर काम होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में जो हमारा हेल्थ है वो हमारे मन से शुरू हो जाता है। और मुझे लगता है कि आज का जो विषय है वो हम सभी के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। और सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने ऐसे विषय लेकर हमारे साथ जुड़ा, और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका है, आज जो कुछ आप सुनाएंगे वो सबके लिए लाभदायक होगा। बहुत बहुत स्वागत।
1: पहले तो थैंक यू सो मच ब्रदर, आपका बहुत आभार, और मैम का बहुत थैंक यू जिन्होंने इतना अच्छा गीत हमारे लिए प्रस्तुत किया। राणा सर जो बहुत ध्यान से, बहुत पेशेंस से, बहुत स्माइल के साथ सुन रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, स्क्रीन पे इतने अच्छे लोग दिखाई देते हैं तो अच्छा लगता है।
0: जी,
1: तो पहले तो मैं सबका स्वागत करती हूँ, आपके जो सुनने वाले ऑडियंस हैं उनको मेरा प्रणाम है, सबको नमस्कार है मेरा। और जो आज टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो उसमें पहला रोल होता है मानसिक स्वास्थ्य का। जैसे कि हम दो दिन पहले भी हम इसी बारे में बात कर रहे थे, आज फिर हम इसी टॉपिक के साथ में इसीलिए आए क्योंकि आज के टाइम में लोग जो है फिजिकल मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, इनको कहीं ना कहीं इग्नोरेंस में रखते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बहुत फर्क डालता है या इम्पैक्ट डालता है। तो जब आप मन के अगर या मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो अगर हम बेसिक की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमको पहले पता होना चाहिए कि मन क्या है। जब हम मन को समझ पाएंगे तभी हमको समझ में आएगा कि ये मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है या मेंटल हेल्थ क्या होती है। तो मन को समझना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और मन को समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इस बात को जाने कि मन जो फैकल्टी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मन जो है वो आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है, इमॉर्टल और मॉर्टल, जैसे गीता जी में भी वर्णन आता है मॉर्टल और इमॉर्टल, विनाशी और अविनाशी। तो जब हम इस शरीर को देख रहे हैं तो हमको पता है कि ये शरीर विनाशी है, एक ना एक दिन ये कॉस्ट्यूम छोड़ के हम चले जाएंगे, तो ये शरीर जो इन आंखों से दिखाई दे रहा है वो खत्म हो जाने वाला है। लेकिन मन जो हमारे आत्मा की एक फैकल्टी है, एक आत्मा की हमारी, जैसे आत्मा का कहा जाता है कि तीन फैकल्टी होती है, उसमें से एक फैकल्टी होती है मन। और कई बार लोग कंफ्यूज करते हैं मन और मस्तिष्क में, तो मैं पहले ये फर्क मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि मन और मस्तिष्क दोनों अलग अलग चीजें होती है। जब आप इन दोनों में कंफ्यूजन आप अपना दूर कर लेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। कई बार क्या होता है कि मस्तिष्क जैसे कहते हैं, ब्रेन जो रहता है वो एक कहते हैं ना विनाशी ही है, वो शरीर के साथ में ही चला जाने वाली पार्ट, शरीर का एक पार्ट है, जो मांस से, न्यूरॉन से और जो ब्रेन के जो पार्ट्स हैं। तो बेसिकली जो मस्तिष्क होता है वो तीन भागों से मिलकर बना होता है। तो उन तीन भागों को अगर हम बात करें तो वो साइंस का एक एनाटॉमी हो जाता है, जो टॉपिक आज हम पढ़ने नहीं बैठे हैं। हम आज का टॉपिक लेके आए हैं मानसिक स्वास्थ्य। तो मन के बारे में हम बात करेंगे, तो मन जो होता है, मन का जो कार्य होता है वो होता है सोचने का, थॉट्स, विचार। जब हम दिन भर अपनी दिनचर्या देखते हैं, कभी रात को सोते वक्त मैं अधिकतर अपने पेशेंट से और जानने वाले लोगों से कहा करती हूँ कि जब भी आप रात को सोने के लिए जाते हैं तो एक बार पूरे दिन भर के दिनचर्या पे अपनी दृष्टि जरूर रखनी चाहिए कि आज दिन भर में मैंने आज क्या अच्छा काम किया और क्या मैंने बुरा काम किया। तो दोनों चीजों का आकलन कर लेने से आपको अपने बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल पाती है। जब आप अच्छे कार्यों का अपने आप को बता पाते हैं कि मैंने ये अच्छा काम किया, तो आप इनकरेज करते हैं अपने आप को कि मैं और अच्छा काम करूं। और जब बुरे चीजों में आप जाते हैं तो कोशिश करते हैं, अपने आप को बोलेंगे कि हम ये बुरा काम दोबारा से नहीं करें। तो जब मैं मन की बात करती हूँ तो मन मतलब जहां पे हमारे विचार उत्पन्न हो रहे हैं, और विचार दो तरह के हो सकते हैं या विचार तीन तरह के हो सकते हैं। अगर कहें तो इनके तुलना हम ब्रह्मा विष्णु महेश इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक विचार जो उत्पन्न होता है, एक विचार जिसकी हम पालना करते हैं, एक विचार जिसका हम विनाश कर देते हैं। तो अगर बेसिकली भी देखा जाए तो हमको क्या करना चाहिए कि जो पॉजिटिव थॉट्स हैं, जो अच्छे थॉट्स हैं, उसकी हमको पालना करनी चाहिए। जो निगेटिव थॉट्स हैं उसको हमको विनाश कर देना चाहिए। और जो उत्पन्न हो रहा है, जो हमारा मन है जो विचार उत्पन्न कर रहा है, तो वो हमको देखना चाहिए कि हमारा मन किस तरह के विचार उत्पन्न कर रहा है। तो मानसिक स्वास्थ्य की जहां हम बात करते हैं, तो मन को समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने मन को समझ लिया कि मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, तो मन के विचारों से उत्पन्न होने वाला जो स्वास्थ्य है उसको कहते हैं मानसिक स्वास्थ्य। अभी आपकी चॉइस होती है, ये आपके अपनी खुद की निजी, इसको परवरिश भी कह सकते हैं, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। इसके लक्षण भी होते हैं, इसके कारण भी होते हैं और इसके उपाय भी होते हैं। तो जो मन को समझ लेता है वो बहुत सारी और चीजों को समझ पाते हैं हम।
0: जी जी और बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम अगर अपने मन को समझ लें तो बाकी सब काम जो है आसान हो जाता है, ये आपने बताया। और जो एनाटोमी की बात कर रहे थे वो तो विस्तार है, उसके बारे में कभी हम लोग सुनेंगे, लेकिन वो भी हमारे मन के ही अवस्था का एक रूप है। अगर हम मन को ठीक कर लें तो हमारा एनाटोमी भी शायद अच्छा हो सकता है,
1: 100% अच्छा हो जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि ऐसे कुछ उदाहरण या कुछ और आप बता सकते हैं कि मन ठीक होने से बीमारी ठीक हो गई या व्यक्ति ठीक हो गया, ऐसे कुछ उदाहरण बहुत सारे होंगे आपके पास, एक आध उदाहरण सुनाइए। और ब्रजभूषण जी, मैं चाहूंगा कि आपको कोई सवाल आता है मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड तो आप जरूर कर सकते हैं। जी
1: सर, आप सवाल करेंगे या मैं उदाहरण बताऊं? पहले
0: उदाहरण बताइए।
2: डॉक्टर मैडम।
1: जी जी जी, तो मैं उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ, इतिहास में कई सारे उदाहरण ऐसे हैं जो हमारे इतिहास में भी हैं और हमारे साइंस ने भी ये प्रूव किया है। कई सारे देश में और विदेश में अगर आप देखें, अगर आजकल पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, हमारे अवचेतन मन की शक्तियां, ये विषय बहुत चर्चा में है। अगर आप देखें कि अगर मोस्टली लोगों ने शायद वो मूवी देखी हुई है, रोंडा बर्न की जो मूवी है, शक्ति द पावर है, उसके पहले एक और पार्ट आया है उसका, नाम भूल रही हूँ मैं उसका, जो हमारे ही खुद के इतिहासों से ली गई है। मतलब पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, मतलब आपके विचारों में इतनी शक्ति होती है कि आप अपने विचार शक्ति से जब विजुअलाइज करते हैं फीलिंग के साथ में, तो आप बहुत सारी बीमारियां ठीक कर पाते हैं। और उन बीमारियों को ठीक करने का जो बेसिक होता है वो मैं आपको बताती हूँ। ये एक्सपेरिमेंट बहुत सारे किए गए हैं। तो पहले एक नेगेटिव आपको एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। ये हमारे जेल की एक कहानी है। किसी एक कैदी को दूसरे दिन फांसी दी जानी थी, और ये मतलब लाइव, मतलब ये साइंटिफिकली मतलब लोगों ने प्रूव करा है और ये एविडेंसेस है, प्रूव्स है इस बात के कि मतलब साइंस ने इस बात को प्रूव किया है कि मन के जो विचार होते हैं वो कितने ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, कितने ज्यादा उसमें ऊर्जा होती है, कितने ज्यादा उसमें पावर होती है। तो मैं उस, वो जो एक कैदी था, उसका नाम एक्चुअली हम लोगों को अलाउ नहीं होता कि हम नाम बताएं या वो उस घटना का जिक्र करें, बस हाँ हमको ये पता होता कि ये प्रूव और एविडेंस है। तो उसको फांसी होने वाली थी नेक्स्ट डे, तो उसको बोला गया कि आपको शाम के वक्त, उस जो दूसरे दिन की शाम के पहले की ही बात है, उसको बोला गया कि आप अपनी आंखें बंद करिए और अपने ईश्वर को याद करिए और आपको जो चाहिए है वो आप उनसे प्रार्थना करिए। उसको बोला गया प्रार्थना करने के लिए, और उसके साथ क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था, तो क्योंकि उसको नेक्स्ट डे फांसी दी ही जानी थी, तो वो साइंटिस्ट जो थे अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने जो दो सेफ्टी पिन होते हैं, आलपिन जिन्हें बोलते हैं, वो आलपिन उनके पास मतलब रखी हुई थी, और उन्होंने ऑल ऑफ सडन वो जो कैदी था उसके पैरों में, एक पैर में उसको वो दोनों पिन एक साथ छुपा दी। तो और पीछे से किसी ने शोर किया कि सांप है, सांप है, कोबरा सांप है, कोबरा सांप है, इसके डसने से तो इमीडिएट मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह का वहां पे किसी ने अनाउंस किया, और ऑल ऑफ सडन ऐसा हुआ कि 5 से 10 मिनट के अंदर उस कैदी की मृत्यु हो गई। और आश्चर्यजनक बात यह थी कि जब उसकी मृत्यु हुई और उसके मुंह में से वो झाग जिस तरीके से एक मतलब सांप के डस लेने के बाद जिस तरह एक इंसान की मृत्यु होती है, बिल्कुल वही लक्षण उसके अंदर पाए गए। बाद में जब पोस्टमार्टम किया गया और बाद में जब उसकी पूरी सारी सर्जिकल जांचें हुई और नॉन सर्जिकल जांचें हुई, ब्लड की जांचें और बाकी जितनी भी जांचें हो सकती थी, जब वो जांचें की गई तो उन जांचों में पाया गया कि उसके शरीर में वही जहर निकला जो एक कोबरा सांप के डसने के बाद एक मनुष्य के अंदर शरीर में पाया जाता है, वही जहर उस कैदी के शरीर में पाया गया था। तो एक ये छोटा सा उदाहरण है, इससे आप समझ सकते होंगे कि हमारे जो मन की शक्तियां हैं, मतलब मन के जो विचार हैं, उसका कितना पावरफुल प्रभाव हमारे इस पे हो सकता है। इसी तरीके से एक ब्रिटेन की एक महिला थी, उनको ब्रेस्ट कैंसर था, तो उन्होंने डॉक्टर जोसेफ मर्सी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्तियां, ये किताब है, बहुत फेमस राइटर है, उनकी किताब उन्होंने पढ़ी मैडम ने, और क्यूरी मैडम उनका क्यूरी वेन करके उनका नाम था, उन्होंने वो किताब पढ़ा और उनको कैंसर था, थर्ड स्टेज क्रॉस कर चुका था। उन्होंने उसमें पढ़ने के बाद एक विजुअलाइजेशन टेक्निक होती है जिसमें हम अपने मन में फीलिंग के साथ में देखते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मतलब मैं ठीक हो जाऊंगा नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इस स्लोगन के साथ में से उसको विजुअलाइज करना पड़ता है। तो मैम ने विजुअलाइज करना शुरू किया और आश्चर्यजनक परिणाम ऐसे आए कि अगले एक महीने बाद जब उनकी मैमोग्राम कराया गया था, उस मैमोग्राम में उनका कैंसर 60% तक क्योर हो चुका था और उसके बाद के कुछ महीनों बाद वो पूर्णतः स्वस्थ हो गई थी। तो इस तरह का उदाहरण भी बहुत सारे उदाहरण है। कई लोग अपनी बीमारियां ठीक करते हैं, कई लोग अपने पैसा कमाने के लिए भी इस टेक्निक का उपयोग करते हैं, कई लोग अपनी करियर के लिए, जब करियर काउंसलिंग में हमारे पास लोग आते हैं तो अपने करियर के लिए भी इस टेक्निक का उपयोग किया जाता है, मन की शक्तियों का उपयोग किया जाता है। तो हमारे मन में इतनी असीम शक्तियां होती हैं, इतनी ज्यादा कहना चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब विध्वंसक और सकारात्मक दोनों तरह की शक्तियां हमारे मन में होती है। ये हमारी चॉइस होती है, ये हमारी मतलब पसंद है कि मैं किस तरह के विचार उत्पन्न करके अपना जीवन मैं चलाना चाहती हूँ, पॉजिटिव थॉट के साथ में या नेगेटिव थॉट के साथ में। और इस तरह के बहुत सारे उदाहरण है। एक हुमायूं का भी किस्सा अगर आपने सुना हो तो, उनकी बेटी की मृत्यु होने वाली थी तो उन्होंने कुछ इस तरह की सोच की, नहीं इसकी मृत्यु मुझे, तो वो एक रात में ही बूढ़े हो गए थे और उनका बेटा जो था वो बच गया था और वो उनकी डेथ हो गई थी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, मन के जो संकल्प है, मन के जो थॉट्स है, उसमें इतनी शक्तियां होती है, कहते हैं संकल्पों से तो दुनिया सृष्टि रच जाती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है।
0: चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, आशा करूंगा हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर, जहां पर मन के विचार जो हैं किस तरह से शरीर के ऊपर प्रभाव डालते हैं और इतना जल्दी और इतना इफेक्टिवली काम करते हैं। आपके थॉट्स में बहुत पावर है, आपके विचार में बहुत पावर है, ये हमें पता चलता है। इसलिए इंग्लिश में कहावत है, थॉट्स कैन मूव माउंटेन्स। मुझे लगता है कि वो पहाड़ तो नहीं लेंगे जो हम पहाड़ों को देख रहे हैं, लेकिन आपके जिंदगी में थॉट्स जो है वो काम कर जाएंगे। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप जब भी सोचें, सोच समझ कर सोचें और पॉजिटिव सोचें, ताकि उसका इफेक्ट आपके शरीर पर और आपके लोगों पर, अन्य लोगों पर उसका प्रभाव पड़े। तो आइए, मैं चाहूंगा कि ब्रजभूषण जी भी काफी लंबे समय से जो है पब्लिक सर्विस में है, इंश्योरेंस का अपना काम करते हैं, तो उनके पास भी बहुत सारे ऐसे विचार आते होंगे, तो मैं चाहूंगा कि विचार जरूर पूछिए आप भी। मैं चाहूंगा कोई सवाल तो जरूर पूछिए जी।
2: और ये हमने बचपन में भी एक बुक पढ़ी थी, मन और उसकी प्रचंड शक्ति।
0: हाँ,
2: तो उसमें यही बताया गया था, जैसे डॉक्टर मैडम ने बताया कि भी सब सबकॉन्शियस माइंड में जो है ना, कई चीजें इतनी जबरदस्त घर कर जाती हैं कि बचपन में की कुछ चीजें जो है वो आदमी के मृत्यु पर्यंत तक उस फोबिया से वो ग्रसित रहता है, उससे निकल नहीं पाता है। एक उदाहरण हमने एक कहीं बुक में पढ़ा था कि कोई फॉरेन में मैडम थी जिनको कैंसर हो गया था, जबकि वो बहुत हेल्दी थी, सारे वो नॉर्म्स का पालन करती थी जो एक हेल्दी वुमेन को रहने के लिए करना चाहिए, फिर उनको कैंसर कैसे हो गया। तो फिर किसी साइकेट्रिक के पास गए, उनसे पता किया कि भाई ऐसा कैसा, और वो ठीक नहीं हो रहा।
0: बिल्कुल
2: तो फिर उनको जब सेक्रेटरी के पास ले जाया गया तो उन्होंने फिर उनसे बातचीत के दौरान ये पाया कि बचपन में उनके साथ कुछ हादसा उनके फैमिली मेंबर के साथ हो गया था, कुछ मिसबिहेव हो गया था और वो जो है उसके कारण से उनको अचानक हो गया। तो जब उनको अच्छा वो भूल भी गई थी, वो वाकये को वो भूल भी गई थी, बट फिर जब उनको याद दिलाया गया और फिर उन्होंने बहुत रोया, बहुत रोई बहुत रोई और कुछ दिनों के बाद ही उनका कैंसर पूर्ण रूप से ठीक हो गया, क्योंकि हेल्दी तो एक्चुअली वो थी ही। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें जो घर कर जाती हैं, इसके कारण से मेरे को लगता है मैक्सिमम लोग ग्रसित रहते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से, और वो ऐसे ध्यान नहीं रहता आदमी को कि मेरे को क्या हो रहा है, लेकिन वो उसकी प्रॉब्लम उनको होती है। सो ये तो बात है डॉक्टर मैडम जो आप बता रहे थे और हमने उसमें से कुछ अपना वो जो है शेयर किया, बट इसको हाउ टू क्योर इट ये एक जानने की बात है कि इसको कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में डॉक्टर मैडम कुछ बताइए।
0: बिल्कुल
1: जी सर, मैं जरूर बताना चाहूंगी। पहले तो एक बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट है हम समझ लेते हैं। मानसिक स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य मतलब जो परिस्थितियां हमारे साथ हो रही हैं, जो हालात हमारे साथ हो रहे हैं, उन परिस्थितियों और हालातों में खुद पर हम अपना कितना नियंत्रण रख पाते हैं, मानसिक स्वास्थ्य की वही परिभाषा है। अगर इसको परिभाषित करें हम कि मानसिक स्वास्थ्य का परिभाषा क्या होनी चाहिए, तो मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा ये है कि आप जो हैं जैसे हैं, पहले बात तो अपना एक्सेप्टेंस लेना, प्लस आपके साथ जो और जैसे हालात हो रहे हैं, जो परिस्थितियां हो रही हैं, उन परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, वो होता है मानसिक स्वास्थ्य। क्योंकि वही आपके मन में कितनी पावर है, आपका मन कितना शक्तिशाली है, ये बताता है कि आप नियंत्रण आपका कितना स्ट्रांग है। पहली बात तो ये है। दूसरा, लक्षणों पे अगर हम जाएंगे, अगर लक्षणों की बात करूं तो हमको पता भी तो होना चाहिए ना कि मतलब कोई व्यक्ति है तो ये मतलब मेंटली हेल्दी है या नहीं। तो इसके बहुत सारे लक्षण होते हैं। जिस दिन आप लक्षणों को समझ लेंगे, उपाय आपको खुद समझ में आने लगेंगे, कारण भी आपको समझना बहुत हद तक जरूरी है। तो लक्षण तो इसके बहुत सारे हैं, मैं कारणों पे बात करती हूँ। तो कारणों पे अगर मैं जाऊं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है, जो माता पिता की परवरिश जो होती है, एक बच्चे को जो माता पिता परवरिश देते हैं, संस्कार भी देते हैं, परवरिश भी देते हैं, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि बचपन में अगर बच्चे के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है तो बच्चे का मानसिक विकास अच्छा हो ही नहीं सकता है। दूसरा, खान पान जो रहता है, न्यूट्रिटिव चीजें हैं जो मस्तिष्क के लिए, ब्रेन के लिए जरूरी होती हैं, जैसे हम कहते हैं ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, बादाम है, वचा है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो ब्रेन के लिए टॉनिक का काम करती हैं। तो ब्रेन टॉनिक दिए जाने बहुत जरूरी है। खाना, भोजन, ये मतलब कुछ ऐसी चीजें होती है। मतलब माता पिता की परवरिश तो ठीक है, और आस पड़ोस आपका कैसा है, मतलब आपके पड़ोस में किस तरह के लोग हैं, क्योंकि जो आपका आस पड़ोस होता है, आपके माता के पिता की परवरिश होती है, वही आपको सिखाती है कि हालातों से कैसे। क्योंकि आप देखिए, कोई भी, ये तो हर कोई जानता है कि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। आज हम जिन हालातों में है, कल वो हालात होंगे या नहीं होंगे, तो हालातों से लड़ने की जो शक्ति होती है वो मानसिक शक्ति को प्रदर्शित करती है। तो वो कैसे आती है, एक तो माता पिता हमको सिखाते हैं, दूसरे हम हालातों से कई बार सीखते भी है, जब हम बड़े हो जाते हैं, मैच्योरिटी आती है, जिम्मेदारियां आती हैं, तो उसे कहते हैं कि हालात और जिम्मेदारियां हर इंसान से सब कुछ करा लेती हैं। ये एक पॉइंट भी आता है, लोग बोलते हैं कई बार कुछ बच्चों में कुछ कमियां होती हैं, उसकी वजह से उनके अंदर हीन भावना आती है, तो उनके अंदर ये मानसिक विकास उतना अच्छा नहीं हो पाता है। जैसे कुछ बच्चों को मैंने देखा है हिचकियां बहुत आती हैं, कुछ बच्चे स्टैमर करते हैं, हकलाते बहुत हैं, तो उन बच्चों का मानसिक विकास उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। कई माता पिता होते हैं बच्चों को खेल कूद, क्योंकि खेल कूद बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी होता है, तो खेलना है, बहुत अच्छी हेल्दी डाइट है, परवरिश, ये कुछ ऐसे मतलब ऐसे कारण हैं जो मानसिक आपका जो स्वास्थ्य है उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। और एक बेसिक सी चीज मैं लोगों को अक्सर अपनी मोटिवेशनल स्पीच में सिखाया करती हूँ कि जब हालात आपके पॉजिटिव हैं, जब आपके चारों तरफ सकारात्मकता है, उस सकारात्मक वातावरण में अगर आप सकारात्मक सोच रहे हैं और कर रहे हैं, तब आपने कोई बड़ी बात नहीं की है। लेकिन चारों तरफ हालात अगर नकारात्मक है, निगेटिविटी है आपके चारों तरफ, उस निगेटिविटी में से, उस नकारात्मक व्यवहार वातावरण या विचारों में से कोई एक पॉजिटिविटी निकाल लेना ही पॉजिटिव इंसान की निशानी होती है। मतलब सकारात्मक इंसान की पहचान अगर आप करना चाहें तो जो सकारात्मक माहौल है, हालात है, उसमें आप सकारात्मक सोच के और कर रहे हैं तो वो एक बड़ी बात नहीं है, वो एक बड़ा कारक नहीं है। बड़ा कारण वो है जब आप चारों तरफ नेगेटिविटी से घिरे हुए, उस नकारात्मकता से भी कोई पॉजिटिविटी आप निकाल दें, वो होती है सकारात्मकता। तो पहले तो लक्षण जो है उसको, पहले तो हम ये समझे कि मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है, उसके लक्षणों को जाने, उसके कारणों को जाने। क्योंकि जिस दिन आप कारण समझ लेते हैं, मेरा ये मानना है कि जब आपको किसी किसी भी चीज का रूट कॉज पता लग जाता है, जड़ मालूम पड़ जाती है, उसके बाद उसका इलाज कर पाना या उसको समझ पाना है के बाद में उसका हल निकाल लेना बहुत आसान होता है। तो मानसिक जो क्षमताएं हैं उनका डेवलपमेंट करना, उसका विकास करना, ये पूर्णतः हम लोगों पर निर्भर करता है, चाहे आप किसी भी उम्र में हो और चाहे किसी भी। और जो आप बोल रहे हैं कि इसका उपाय क्या हो सकता है, तो आप मुझे कोई मानसिक स्वास्थ्य जिसका कोई पैरामीटर दीजिए तो मैं आपको बताती हूँ कि उस हालात में, उस परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए। तो अगर आप मुझे कुछ कुछ उदाहरण देंगे या कुछ आसपास का कोई बताएंगे घटना या किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व या कोई नेचर या व्यवहार आपको जो परेशान कर रहा है, अगर आप उसके बारे में बात करेंगे तब मैं आपको उपाय बता पाऊंगी, वो ज्यादा बेहतर रहेगा।
2: यस डॉक्टर मैडम, मैं आपको एक उदाहरण के उसमें बताता हूँ। मेरे एक रिलेटिव है, ही इज 35 इयर्स एंड ही इज वेरी मच फिट एंड फाइन, और वो नेचुरोपैथी ही अडॉप्ट कर रखा उन्होंने, और उसमें मैं बोल सकता हूँ कि मास्टरी है। बट उनकी प्रॉब्लम एक क्या है कि जब वो कभी तेज में आते हैं या कभी कुछ परेशान होते हैं तो उनका हाथ जो सीवरिंग करने लगता है, तो ये मतलब समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों, इतने फिट आदमी को ऐसा क्यों होता होगा, तो क्या मतलब इसके,
1: इसका मैं आपको कारण बताती हूँ सर। कहीं ना कहीं जो मानसिक स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं ना, तो मानसिक स्वास्थ्य का अगर बेसिक अगर हम रूट कॉज देखें ना, तो मैंने आपको बोला था समायोजन, मतलब जिसके अंदर नियंत्रित, मतलब हर चीज के लिए एक नियंत्रण की क्षमता होती है हर इंसान के अंदर में। तो जिसके अंदर जितनी ज्यादा नियंत्रण क्षमता होती है, मतलब हालात है, परिस्थिति है। अब जैसे एक एक छोटा सा एग्जांपल मैं अपने लिए देती हूँ, मैं अपना एक एग्जांपल अगर आपको बताऊं कि जैसे मैं खुद की बात करूं, तो अभी जैसे मुझे, मैं कामाख्या गई थी, तो मुझे अगर वहां के लिए मुझे फ्लाइट नहीं मिली, ठीक है, और मुझे जाना है वहां पे, जरूरी में जाना है, तो ये मेरा एडजस्टिंग पावर है कि अगर चलो ठीक है मुझे फ्लाइट नहीं मिला कोई बात नहीं, आई कैन गो बाय ट्रेन, मैं ट्रेन से चले जाती हूँ। अब उसमें भी अगर मैं बात करूँ, थर्ड ए सी नहीं मिला कोई बात नहीं, मुझे अगर बहुत ज्यादा जाना जरूरी है तो मैं स्लीपर से चली जाती हूँ। तो ये मेरी एडजस्टमेंट, ये मेरी विल पावर है, ये मेरी दृढ़ इच्छा शक्ति है, या ये मेरी विल पावर है, या मेरा ये मानसिक स्वास्थ्य कहता है कि मैं किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढालने के लिए अगर मैं एलिजिबल हूँ तो मैं अपने किसी भी परिस्थिति और हालात के हिसाब से अपने निर्णय में ले सकती हूँ। तो जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो आपके रिलेटिव हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं इमोशनल ब्लॉकेजेस है। जिन लोगों में ईगो बहुत होता है, ये प्रॉब्लम जो आप बता रहे हैं ये अहंकार के कारण आती है। जब इंसान को ये अहंकार हो जाता है, क्योंकि मेरे अंदर बहुत ज्ञान है, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, नेचुरोपैथ का मुझे बहुत अच्छा ज्ञान है, जब उनके अंदर ये अहंकार आता है, तो ये अहंकार जब ईगो बहुत बढ़ जाता है ना इंसान के अंदर, तो इमोशनल ब्लॉकेजेस में कहीं ना कहीं जो हार्ट वाला ये हमारा जो अनाहत चक्र होता है, अगर आपने 7 चक्र पढ़े हो अगर कभी, तो आपको पता होगा कि जो चक्रास होते हैं तो उसमें से जो हमारा हृदय चक्र होता है, अनाहत चक्र जो होता है, उसमें ब्लॉकेजेस आती है, ईगो, अहंकार, ईर्ष्या जो होती है। तो हर इमोशन का हमारे 7 चक्रों से बहुत गहरा संबंध होता है। तो कहीं ना कहीं उनके हृदय चक्र में, उनका जो चक्रा है उसमें, अगर आप कभी ऑरा स्कैनर से स्कैन करवाएंगे तो आपको पता लगेगा कि उनका जो हृदय चक्र है उसमें कहीं ना कहीं आपको ब्लॉकेजेस मिलेगी, और वो उनके ईगो के कारण है, उसी के कारण उनको शिवरिंग होने लगता है। क्योंकि ये जो शिवर करना, ये जो काम होता है, वाइब्रेशन है, शिवरिंग करना, लेफ्ट हैंड में जो पेन है, ये हार्ट से रिलेटेड चीजें बताती है, और हार्ट या ब्लड प्रेशर से। तो ब्लड प्रेशर कब बढ़ता है, गुस्सा आने पर, गुस्सा कब आता है, जब आपकी उम्मीद के अगेंस्ट में जाके कोई कोई काम कर रहा, मतलब आपने उम्मीद किया कि मैंने आपको बोला कि जाओ मेरे लिए गिलास पानी लेके आओ, है ना, मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने अगर बोला है तो आपको लेके ही आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला है, मैं हूं, मैं बोल रही हूँ तो आपको लेके आना है, और वो उम्मीद पूरी नहीं हो और आप बोल दें कि नहीं मैं पानी नहीं लेके आ रहा हूँ और मेरी वो उम्मीद पूरी ना, तो इमीडिएट मुझे गुस्सा आएगा। क्यों? क्योंकि मेरी उम्मीद थी, मुझे पता था कि आपको ये काम करना, अरे मैंने बोला है तो आप कैसे मना कर सकते हो। तो ये जो उम्मीद नहीं पूरी होने के कारण जो गुस्सा आया, वहीं पे इमोशनल ब्लॉकेजेस होता है, वहीं अनाज चक्र हमारा ब्लॉक होता है, और वहीं पे ये शिवरिंग और ये ब्लड प्रेशर से रिलेटेड और हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो शुरू हो जाती है। तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं उनको ईगो का कहीं प्रॉब्लम है, ईगो का जो कनेक्शन है उनका काफी गहरा है, तो आप देखिएगा उनको इमोशनल में कहीं ना कहीं ईगो का प्रॉब्लम आता है।
0: बिल्कुल, चलिए आशा करूंगा कि हमारे ब्रज शर्मा जी को बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ रहे होंगे कि इन चीजों को अब धीरे धीरे हम लोग जो है इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, तो नेचुरली हमारा जो जीवन शैली है कहीं ना कहीं हमें जो है गहराई में खुद को समझने की जरूरत होती है, तब जाके वो चीजें जो है आसानी से हम उसको पकड़ पाते हैं। तो निश्चित तौर पे ब्रजभूषण जी आपको कुछ और पूछना है?
2: हाँ, मैं ये बोलूंगा कि मैं ये बात बोलूंगा कि डॉक्टर मैडम ने जो सिम्टम्स बताए, जो बात बताई वो एकदम सही है, ये बात तो है, बट हाउ टू क्योर इट
0: अभी उसको निकालना है,
2: ये बात
0: जानना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
2: ये बात
1: तो अगर, हाँ जी, तो अगर आप क्योर की बात करते हैं तो मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ सर, बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक जैसे अगर हमारे पास कोई आता है, जैसे मेरे पास अगर कोई आया है, तो उसका ये एक्सेप्टेंस लेना, पहले उसको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मेरे अंदर ये तकलीफ है। जिस दिन वो ये एक्सेप्टेंस ले लेंगे कि मैं ईगोइस्टिक हूँ, मैं अहंकारी हूँ, और जहां कहीं मेरा ईगो सेटिस्फाइड नहीं होता है, जहां कहीं मेरे अहंकार की पूर्ति नहीं होती है, वहां पे मुझे उनका एक्सेप्टेंस करना ही उनकी बीमारी का इलाज है। पहले तो उनको एक्सेप्टेंस लेना पड़ेगा, पहले वो स्वीकार करें कि हाँ मैं मानसिक रूप से, मेरे को ये ईगो का प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं जो ब्लॉकेजेस हैं। अब जैसे मेरे पास पेशेंट आते हैं, मेरे पास मैं बताती हूँ काउंसलिंग के लिए जो पेशेंट आते हैं हमारे पास, मैं आपको बताती हूँ, मतलब ऑल ओवर इंडिया तो ठीक ही है, फॉरेन से भी हमारे पास जो फोन आते हैं, तो मतलब लोगों के पास समस्याओं का भंडार होता है। तो मैं उनको एक ही रिक्वेस्ट, मैं एक ही बोलती हूँ, मैंने कहा सर आप प्लीज, क्योंकि 10 मिनट बाद फिर फोन आता है, मैडम ये बताना तो मैं भूल ही गया था, मैडम ये बताना तो मैं भूल ही गई थी। तो मैं, मेरे जितने भी लोग होते हैं, मैं उनको एक ही बात बोलती हूँ, अपनी डायरी और पेन लीजिए, जब आपको लग रहा है मन शांत है, उस डायरी में नोट डाउन करिए शुरू से लेकर आखिरी तक आपको क्या क्या समस्या है, क्योंकि हर अगले 10 मिनट बाद उसका फोन आता है कि मैं ये भूल गया था, मैडम मैं ये भूल गया था। तो कहीं ना कहीं जो आप बोल रहे हैं, तो जैसे एक मैं पेशेंट की बात बताती हूँ, काउंसलिंग के लिए पेशेंट आया हुआ था, मैडम मतलब मुझे बस ये थोड़ा थोड़ा थोड़ा कभी कभी ये मेरे को कोई सामने वाला उल्टा सीधा बोल देता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है, बस कभी कभी हो जाता है, मतलब ऐसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम, मतलब वो सामने वाला व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं था, ये एक्सेप्टेंस वो स्वीकार नहीं कर रहा था कि मैं बीमार हूँ। अगर वो स्वीकार कर ले कि मेरे को मेंटली थोड़ा सा डिस्ट्रेक्शन है या मेंटली थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हूं मैं, क्योंकि उसका हर एक से लड़ाई झगड़ा होता था, हर एक से लड़ रहा है वो, हर एक से, ट्रेन में जा रहा है तो लड़ रहा है, लोकल ट्रेन में जा रहा है तो लड़ रहा है, ऑटो वाले से तो वो लड़ रहा है, तो वो कहता है मैडम मेरे में थोड़ा ना प्रॉब्लम है, लोग ही ऐसे मिलते हैं मुझे। तो उसके अंदर स्वीकार्यता की भावना जब तक नहीं आएगी, जब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं लेगा कि मैं बीमार हूँ या मुझे ये इमोशनल ब्लॉकेजेस है, तब तक हम किसी पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे पास पेशेंट आएगा, अगर वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैडम मेरे पास तकलीफ है, मेरे तन में प्रॉब्लम है, मेरे मन में प्रॉब्लम है, बहुत सारे ऐसे पेशेंटों के फोन आते हैं, आज ही करीब 4 पेशेंटों के ऐसे फोन आए, मैम कोई बीमारी नहीं है हमको, मैम कोई बीमारी नहीं है हमको, बस कॉन्स्टिपेशन रहता है और गैस रहती है। अब बताइए उनको कौन बोले कि सारी बीमारियों की जड़ कॉन्स्टिपेशन ही होती है, और कॉन्स्टिपेशन के बाद अगर गैस्ट्रिक आया है तो बीपी, शुगर, थायराइड, कुछ ऐसी बीमारियां होती है हम रेगुलर चेकअप नहीं कराते, और हर 15-15

0: मैसेज कि आप ऐसा करना शुरू करो। और मैडम आप हैं कहाँ से बाय द वे?
1: सर एक्चुअली मैं ओपीडी मेरा ऑल ओवर इंडिया में रहता है, फॉरेन में भी मेरी ओपीडीज रहती हैं।
0: ओके
1: मैं बेसिकली अभी मैं इंदौर से यहाँ भोपाल शिफ्ट हुई हूँ।
0: अच्छा,
1: बाकी हम लोग को
0: बहुत
1: जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ वही मैं बाकी हम लोग को जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हम लोगों के लिए जो डायग्नोस्टिक पार्ट है वो मेरा मेन टूल जो है डायग्नोस्टिक, क्योंकि इलाज हम किसी मैं किसी भी पैथी के साथ में इलाज कर सकती हूँ। क्योंकि मैंने कई सारी पैथी सीखी हुई हैं तो मुझे पता है कि इस इंसान का इलाज आयुर्वेदा में अच्छा है, पंचगव्य में अच्छा है। जैसे आज ही कैंसर पेशेंट के 2-3 फोन आए, तो वो इलाज करना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क फॉर मी। इलाज करना मेरे लिए मुश्किल नहीं होता है क्योंकि ईश्वर है वो मेरे साथ में रहता है, क्योंकि उसकी इतनी कृपा है मुझ पे कि वो साथ देता है। बट डायग्नोस्टिक पार्ट इम्पॉर्टेंट है, वो हम लोग कुछ 7-8 तरीके होते हैं जिससे हम डायग्नोज कर पाते हैं, और जिस दिन मुझे रूट कॉज का पता लग जाता है उस दिन बीमारी तो जाना तय होती है।
0: तो डॉक्टर मैडम, जो लोग दर्शक आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर वो चाहें कि आपसे संपर्क करें तो हाउ टू कॉन्टेक्ट यू?
1: सर या तो मेरा नंबर जो
0: फ्लैश कर देंगे रमेश
1: या तो
0: भाई
1: वो
0: जी।
1: मेरा नंबर या तो वो मेरा नंबर नीचे क्लिपिंग में फ्लैश कर दें, या जो हमारी वीडियोस जो चल रही हैं अभी, सीरीज जो चल रही है हमारी, उस सीरीज में यूट्यूब में अगर मैं, क्योंकि मेरा खुद का भी चैनल है, तो मैं यूट्यूब में अगर मैं कभी देखती हूँ और किसी का
0: अच्छा,
1: कमेंट आया है तो अगर कोई यूट्यूब में पूछता है तो आई कैन गिव आंसर, हम लोग आंसर दे सकते हैं उनको।
0: तो
1: या
0: आपके
1: फिर ये
0: नाम से ही YouTube में है मतलब?
1: नहीं, मेरे नाम से वो चैनल अभी मैंने एक्टिवेट अभी हाल फिलहाल के लिए बंद करके रखा है क्योंकि फ्रॉड
0: ओके
1: कॉल्स बहुत आने लगे थे सर। हम लोग थोड़ा सा इस फील्ड के हैं कि लोग थोड़ा सा परेशान ज्यादा
0: करते
1: करने लगते हैं
0: हैं
1: आप
0: राइट। इसी जो
1: इसलिए।
0: ये वीडियो जो हमारा पब्लिश हो रहा है, इसी के नीचे आप जी
1: कमेंट डालिए और सवाल पूछिएगा,
0: ओके
1: तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में उसी कंटिन्यूएशन में सवाल डालेंगे और उनको मैसेज भी कर
0: या
1: देंगे, भाई आप इस लिंक से जुड़ी हैं। अभी फिर से डॉक्टर साहिबा जो है कल या परसों शाम को हमारे साथ रहेंगे, तो वो लाइव में भी अपना सवाल पूछ सकते हैं।
0: इसमें हाँ
1: ठीक
0: मतलब बाय डिफॉल्ट मतलब आप इसमें एक ऐसा वो अगर डाल देंगे ना, तो सारे जितने लोग भी, क्योंकि आपका चैनल तो जो है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड प्लेस होता है,
1: जी
0: तो लोग इनसे संपर्क कर पाएंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: जी,
1: ठीक
0: तो
1: है। जो
0: ब्रदर से
1: क्वेश्चन
0: रिक्वेस्ट करेंगे तो बिल्कुल
1: ब्रदर डाल देंगे वो नंबर।
0: जी,
1: तो क्या रहेगा कि एटलीस्ट, क्योंकि क्या होता है जेन्युइन लोग हो ना तो इलाज करने
0: तो
1: में हमको भी बहुत
0: कॉन्फर्मेशन,
1: खुशी
0: जैसे
1: होती
0: क्या
1: है।
0: है टाइम ज्यादा राइट
1: एक्सपांशन हो जाता है और जिन्यन है या नहीं वो भी समझ में नहीं आता कभी कभी, इसीलिए जरूरी है कि थोड़ा बाकी
0: सा
1: अगर
0: हम
1: आप
0: लोग
1: ब्रदर के कांटेक्ट में हैं तो वो आपको मेरा नंबर तो एटलीस्ट वो दे ही सकते हैं।
0: नहीं, मेरा मेरा जहां तक संबंध है वो तो मैं कर लूंगा, बट मैं सबके भलाई के लिए सोच रहा था।
1: वही
0: तो
1: सबके
0: ब्रदर
1: भलाई के लिए सोच रहे हैं, तो हम लोग YouTube वाला जो लिंक है ना वो उनको शेयर कीजिए और नीचे मैसेज करके वो डाल देंगे ना अपना नाम, और कुछ पूछना है तो आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग टू डॉक्टर सपना, तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड का लिंक उनको पेस्ट कर देंगे ताकि वो लाइव में ही बात कर सके, और जिन्यन
0: सारे लोग
1: होगा तो
0: सुन ही
1: फिर
0: रहे
1: उनका नंबर
0: हैं।
1: देंगे।
0: हाँ
1: हाँ बिल्कुल
0: इस जो है रिले को सारे लोग देख रहे हैं, तो दे विल डू इट।
1: जरूर जरूर। चलिए रमा जी, आपको कुछ पूछना हो तो एक आध सवाल, नहीं तो फिर हम लोग पूरा करेंगे मैसेज के साथ और बद्रभूषण जी एक छोटा सा गीत सुनाएंगे।
2: अच्छा भी लगा, बड़े पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव उनका जो हर शब्द बोलने में भी बहुत
1: जी
2: प्रभावी
1: जी
2: है, अच्छा लगा, वेरी
0: हाँ
2: नाइस है।
1: थैंक यू सो मच,
2: बहुत
0: थैंक
2: सुनने से काफी
0: यू
2: लोगों का आधी बीमारी खत्म हो जाती है। डॉक्टर
1: सो मच। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
2: बच्चे
1: चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। ब्रजभूषण जी, मैं चाहूंगा जाते जाते एक छोटा सा पीस आप भी सुना दीजिए डॉक्टर साहबा के लिए, फिर हम लोग पूरा करते हैं एक मैसेज के
0: तो
1: साथ।
0: माहौल को कुछ खुशनुमा कर देते हैं
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: कुछ
1: कर दीजिए।
0: कुछ लीक से
1: हाँ
0: हटकर गा के
1: सही बात है सही बात है।

0: नमस्कार ब्रजभूषण जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया, थैंक यू सो मच। आपका थोड़ा सा नेटवर्क इशू हुआ लेकिन आपके बहुत बढ़िया। चलिए डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा मैसेज के साथ पूरा करते हैं। जी
1: जी मैं थोड़ा सा ध्यान लोगों का ये बताना चाहूँगी, ये बोलना चाहूँगी कि आज के टाइम में बच्चों की परवरिश पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। बच्चा किन लोगों के साथ उठ रहा बैठ रहा है, उसकी संगति कैसी है, बच्चे को आप किस तरह का खाना दे रहे हैं, क्योंकि आजकल बच्चों के अंदर बहुत सुसाइडल टेंडेंसी बहुत ज्यादा जागृत हो गई है। क्योंकि मैं पूरे इंडिया में घूमती हूँ, मैं जाती हूँ, जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड जो हो गया ना आजकल का, जो माता पिता बच्चों के ऊपर अननेसेसरी का वो डाल रहे हैं ना, मेरा बच्चा इंजीनियर डॉक्टर, इंजीनियर डॉक्टर, अरे हमको फैक्ट्री नहीं बनानी है बच्चों को, मतलब डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा तो अच्छा इंसान तो बनाओ उसको, एटलीस्ट अच्छा इंसान बनाओ। क्योंकि जो क्राइम, जो क्रिमिनल्स बढ़ रहे हैं, वो भी किसी का बच्चा ही तो है। वो क्रिमिनल कहाँ से आया? वो क्रिमिनल पैदा तो नहीं हुआ था, क्रिमिनल सोसाइटी ने या परवरिश ने उसको बनाया। जो रेपिस्ट है, आपको क्या लगता है ये जो इतने कांड हो रहे हैं आजकल, ये सब हमारे ही बच्चों में क्योंकि निकला, एक आध कोई बच्चा होगा ना। तो मतलब मुझे थोड़ा सा लगता है कि माँ बाप को थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए, माँ बाप को थोड़ा सा जागृत होना चाहिए, अपने बच्चों को थोड़ा सा देखना चाहिए कि मेरे बच्चे की परवरिश क्या मैं आज के माहौल के हिसाब से कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ। क्योंकि आजकल देखिए न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, पहले के टाइम पे जब हम संयुक्त परिवार में हुआ करते थे, बच्चे कब, एक तो तीन तीन चार चार बच्चे होते थे, बच्चे कब पल के बड़े हो जाते थे हमको मालूम ही नहीं पड़ता था। आजकल ये ट्रेंड है, आजकल ये फैशन है कि एक ही बच्चा पैदा करेंगे। तो बच्चा जब एक सिंगल चाइल्ड होता है तो उसके अंदर केयरिंग और शेयरिंग की भावनाएं आ ही नहीं सकती है। और जब बच्चे में केयरिंग और शेयरिंग की भावना नहीं आती है और बाहर जब वो जाता है तो वो परिस्थितियों के साथ एडजस्टमेंट सीख ही नहीं पाता है। तो मैं माता पिता को मैं एक ही संदेश देना चाहती हूँ, अपने बच्चों का जो शारीरिक स्वास्थ्य तो ठीक है, पहले मानसिक स्वास्थ्य को देखिए, उस बच्चे के मन में किस तरह के विचार उत्पन्न हो रहे हैं, हम किस तरह का उस बच्चे को मानसिक आहार दे रहे हैं वो देखें पहले, वो बहुत जरूरी है। तो मेरा संदेश तो मैं आज के पेरेंट्स को देना चाहूंगी, एटलीस्ट कम से कम दो बच्चे तो करिए, और अपने खुद के नहीं करने हो तो मैं कहती हूँ कोरोना टाइम में इतने बच्चे जो अनाथ हुए, एक को गोद लेके पाल लीजिए। अपना बच्चा पैदा करके तो हर कोई पाल के बड़ा कर लेता, अपना बच्चा पाल के बड़ा करना कोई बड़ी डील नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। मैं हर एक को यही बोलती हूँ, वो जो बच्चे जेन्युइनली जो अनाथ हो गए उनको किसी को अडॉप्ट करके उसको परवरिश दीजिए, एग्जाम्पल सेट करिए, एग्जाम्पल सेट करिए। तो मैं तो सभी लोगों को यही बोलती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी दो बेटियां जरूर अडॉप्ट करूंगी, मैं खुद भी उसी प्रोसेस में हूँ कि मैं करूँ और एग्जाम्पल सेट करूँ, क्योंकि इससे बड़ी खुशी कोई होती नहीं है।
0: डॉक्टर सपना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने कोट किया और बहुत ही अच्छा मानसिक स्वास्थ्य पर मन की बातों को आप एग्जांपल के साथ हमारे साथ शेयर किया। एंड डॉक्टर, मुझे लगता है कि हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे बीच बीच में अंतराल में, तो लोगों को काफी इंफॉर्मेशन भी मिलेगा और जो लोग इस सीरीज को देखना शुरू करेंगे तो उनके मन के सवाल, जैसे ब्रजभूषण जी ने बात ही अच्छा सवाल पूछा कि ये क्या है, किस तरह से हेल्दी व्यक्ति भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है तो उनकी हाथ शिवरिंग हो जाता है या फिर उनके चीजें चेंज हो जाती है, तो वो कहाँ से आ रहा है और इसका इलाज क्या है ये आपने बताया। तो मुझे लगता है कि हमारे जो भी एक्शंस हो रहे हैं, जो भी हम लोग कहीं लैक हो रहे हैं, अस्वस्थ फील कर रहे हैं, तो किस कारण से हो रहा है, अगर कारण का पता चला तो निवारण तो आसान है ना, इलाज तो बहुत सिंपल है, लेकिन कारण का पता होना बहुत जरूरी है और किस थॉट से, किस स्वभाव से ये चीजें हमारे स्वास्थ्य में गड़बड़ी कर रहा है ये समझना बहुत जरूरी। तो निश्चित तौर पर आपसे जब वार्तालाप करेंगे तो चीजें खुल के सामने आएगी और आसानी से व्यक्ति जो है उस प्रॉब्लम को ट्रैप करके उसको खत्म कर सकता है। रमा जी, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया, ब्रजभूषण जी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाया, डॉक्टर साहबा को बहुत बहुत खुशियाँ, मिलते हैं जल्दी ही। और चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में जहाँ पर आपको बहुत अच्छा लगा हो उसे जरूर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, प्रैक्टिस करें। और नीचे कमेंट सेशन में आपका कोई भी सवाल हो डॉक्टर सपना जी से आप पूछना चाहते हो तो जरूर कमेंट में अपना नाम के साथ उम्र के साथ आप लिखिए, बढ़िया सा लिंक डालिए, तो मैं वो कमेंट डॉक्टर साहिबा को शेयर करूंगा और फिर आपको अगले एपिसोड में उसका जवाब भी मिल जाएगा। और लग रहा है कि आपका जिंदन केस है तो मैं आपको नंबर भी उनका प्रोवाइड करूंगा ताकि आप डायरेक्टली उनसे बात भी कर सकें, ठीक है ना? तो आप जिंदन है तो आपका काम हो जाएगा बाकी जितना हो सके, क्योंकि डॉक्टर साहिबा को भी बहुत काम होते हैं और उनका भी अपना पर्सनल लाइफ है, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जुड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं उनका जो है टाइम वेस्ट ना हो ये हम ध्यान रखें, है ना? एंड संतोष कुमार जी, प्रियंका अडल का और भोपाल से श्याम सुंदर जी ने याद भेजा है, तो उन्हें भी बहुत बहुत याद, बहुत बहुत प्यार। फिर मिलते हैं, सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति
2: ओम शांति।

ख्वाबों की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। आपकी अपनी उषा के साथ वंदे मातरम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आप सभी को, राम राम। आज आपको मिलवाएंगे आबू तलेटी

0: के रहने वाले शरावती महाजन से। आपके उम्र 76 वर्ष के हैं, 76 इयर्स के, और आप में बहुत सारी खूबियां हैं। भजन कीर्तन करना, कढ़ाई बुनाई का काम करना, सिलाई करना, घर के सारे काम को संभालते हुए कैसे परिवार को एक साथ में लेके चलना, तो आपकी बहुत बड़ी खूबी है। आइए आपसे मिलवाएंगे शरावती महाजन से। मैडम नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: कैसे हो आप?
1: हाँ, अच्छे।
0: अच्छा मैडम, अभी आपके उम्र 76 इयर्स के आप हैं, जीवन में काफी, कहते ना कि 76 साल का जो सफर है जीवन का बहुत लंबा होता है, और काफी अनुभव आपको हुए होंगे जीवन में। तो चलिए हम वर्तमान की बात तो फिर बाद में पूछेंगे, लेकिन थोड़े से बचपन को याद कर लीजिए कि आपका बचपन कहाँ पर बीता, कैसे बीता?
1: हमारा बचपन कोकण में बीता है।
0: था कोकण महाराष्ट्र?
1: हाँ, कोकण महाराष्ट्र में बीत गए है।
0: अच्छा, आप कितने भाई बहन थे, कैसे रहते थे?
1: हमारे दो भाई थे और मैं अकेली।
0: अच्छा, तीन भाई बहन।
1: हाँ,
0: तो आप इकलौती बहन होने के नाते आपको बहुत प्यार मिला होगा।
1: हाँ, प्यारी तो थी सबकी।
0: आप छोटे थे या भाइयों से बड़े थे?
1: मैं सबसे बड़ी। अच्छा, भाई छोटे थे।
0: अच्छा, आपके माता पिता उस समय क्या काम करते थे?
1: हमारा मना पिताजी का किर्लोस्कर प्रेस में कैंटीन था।
0: अच्छा, कैंटीन था। माता जी भी कुछ करते थे?
1: माता जी ने घर काम, माता जी काम नहीं करती थी।
0: अच्छा, तो आप जैसे तीन भाई बहन थे, आपस में कैसे रहते थे?
1: आपस में अच्छे रहते थे हम।
0: कभी झगड़ा होता था? खट्टी मिट्टी तकरार कहते हैं ना, होती थी?
1: नहीं, हम पहले से ही, मेरी माँ पहले से ही एकदम मना आनंदी स्वभाव की थी, इसलिए हम भी कुछ भी हो जाए आनंदी रहते थे ऐसे।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ,
0: आपके माता जी खुश मिजाज रहते थे तो आप भी हमेशा खुश मिजाज ही रहते थे।
1: हाँ, मेरे को भी ऐसे बिलिंग ऐसा कुछ नहीं था, बिंदास रहने का ही स्वभाव हमारा।
0: अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई की आपने?
1: 11वीं हुई है, वो पुणे में हुआ।
0: हाँ। अच्छा, वो पुणे में, तो क्यों कोकण में पढ़ाई नहीं थी?
1: कोकण में नहीं की, हम बचपन पूरा हुआ और पुणे में ही आई, तो माना बात का जीवन हमारा पूरा पुणे में गया।
0: बचपन आपने कोकण में बिताया।
1: हाँ।
0: और उसके बाद आप
1: पुणे में आए?
0: जी,
1: क्योंकि हमारा पिताजी किर्लोस्कर प्रेस पुणे में है ना, इसीलिए हम पुणे में आए।
0: अच्छा, आप कितने साल के होंगे और पुणे में आए?
1: 7 साल के।
0: अच्छा, तो फिर कोकण की तो आप याद ही भूल गए होंगे। पुणे में
1: कोकण की अच्छी तरह से याद है हमको, बहुत अच्छा लगता था कोकण भी और पुणे में भी।
0: बीच बीच में आना जाना होता था पुणे से कोकण?
1: हाँ, कभी जाते थे कुछ हुआ तो बीच बीच में।
0: अच्छा, और पुणे में आपने फिर पढ़ने, मतलब पढ़ाई की शुरुआत आपकी पुणे में हुई या कोकण में भी जाते थे स्कूल?
1: नहीं, स्कूल में कोकण में नहीं जाती थी, पुणे में ही जाने लगी।
0: अच्छा, तो पढ़ाई के साथ साथ और आपको क्या क्या शौक था उस समय? आप कौन सा खेल खेला करते थे?
1: खेल से हम आजकल के जमाने जैसा नहीं, बच्चे बच्चिया सब इकट्ठा खेलते थे हम बिंदास। मना हमारा पेशवेकालीन वाड़ा था 3-4 मजली, तो उसमें हम रहते थे ना, तो सब इकट्ठा खेलते थे, ताश खेलने का खेलते थे और सब लुका छुपी क्या बोलते हैं ऐसा खेल खेलते थे हम।
0: अच्छा, और वो कहते हैं कि कभी कभी खेल खेल में कभी झगड़े भी हो जाते, तो ऐसा भी होता था खेलते खेलते कभी कोई जीत गया कोई हार गया तो झगड़े हो जाते, तो कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ?
1: झगड़ा नहीं, ऐसे सब अच्छे थे।
0: अच्छा, और स्कूल में आपने पढ़ाई की, वहां पर कैसा माहौल था, कैसा माहौल मिला आपको?
1: पढ़ाई पहले मैं 2-3 बरस मना म्यूनिसिपल स्कूल में नजदीक था ना, पुणे से आई थी तो वो मालूम नहीं था मेरे को भी, तो नजदीक थी इसीलिए म्यूनिसिपल स्कूल में रही थी 2-3 बरस, तो उधर इतना अच्छा माहौल नहीं था, हमारे टीचर विचर बेकार थे, मना वो लड़कियों पर नजर विजर ऐसा होता था, प्रिंसिपल स्कूल में तभी टीचर अच्छे नहीं होते थे।
0: अच्छा, फिर बाद में क्या किया, स्कूल चेंज किया?
1: बाद में लड़कियों के स्कूल में जाने लगी। मैं मेरे पिताजी को बोली मैं इसमें ये स्कूल में नहीं रहेगी, मेरे को दूसरे स्कूल में जाना है, तो लेडीज स्कूल में जाने लगी मैं।
0: अच्छा, पढ़ाई में कैसे थे आप?
1: पढ़ाई में मना ठीक था, 5 नंबर के अंदर ही आते थे।
0: तब तो होशियार थे आप, टॉप 5 में आते थे आप।
1: हाँ,
0: बहुत अच्छी बात है। और उस समय तो थोड़ी सी भी पढ़ाई करो जॉब मिल जाती थी, तो आपके भी सर्विस का ऑफर आया आपको भी?
1: सर्विस जाती थी।
0: अच्छा, सर्विस की थी।
1: हाँ।
0: चलिए सर्विस की बात जरूर करेंगे कि कब से आपने शुरू की, परंतु अभी चल रहे कि जैसे आपने बताया कि टॉप 5 में आप आते थे, और भी कोई एक्टिविटीज होती थी आपके स्कूल में, जैसे खो खो है, कबड्डी? हाँ, है
1: खेल बील, पीटी ऐसा होता था, लेजिम बिजिम सब सिखाते थे हमको।
0: तो आप भी रहते थे?
1: हाँ, मेरे को भी अच्छा लगता था लेजिम बिजिम।
0: अच्छा, और कौन कौन से कंपटीशन में आप रहते थे? गीत संगीत कविता वगैरह डांस वगैरह में भी आप रहते थे?
1: हाँ, गाना बिना खेलते थे हम।
0: गाने का शौक था आपको?
1: हाँ, गाना बिना गाती थी।
0: किस तरह के गाने आप गाते थे?
1: कौन सा भी गाना हो मेरे को अच्छा लगता था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा भजन या राष्ट्रगीत ऐसे अच्छे लगते थे मेरे को पहले से। पढ़ने का भी शौक था, बहुत छोटी छोटी किताबें मैं पहले से ही पढ़ती थी।
0: तो राष्ट्रीय गीत आप सुनाते थे?
1: हाँ, मैं भी सुनाती थी।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप घर पर अपने मम्मी को किस तरह हेल्प करवाते थे, घर के कामों में हेल्प करवाते थे?
1: नहीं, इतना नहीं, घर में काम करने को मेरे को इतना ये नहीं था, खाली सफाई थोड़े करती थी। मेरी मम्मी मजबूत थी, वो हमको देती ही नहीं थे ऐसे काम, स्वयं करने का उसको शौक था। और मेरे को सहेली या बाहर खेलना ऐसा अच्छा लगता था।
0: अच्छा, खेलना अच्छा लगता था?
1: हाँ, खेलना, थोड़े बड़े होने के बाद बातें करना अच्छा लगता था, उसमें समय जाता था। और पढ़ाई भी हम सहेलियों के साथ ही करते थे, कभी हम उनके घर में जाते थे, वो हमारे घर में आते थे ऐसे।
0: तो चलिए मैडम, आपसे और भी बातचीत करेंगे, परंतु अभी समय हो चला है एक गीत सुनने का। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधु, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में। शरावती जी महाजन, जो आबू तलेटी के रहने वाले हैं, आपकी उम्र 74 वर्ष की है, काफी अनुभवी हैं, इनके अनुभव हमने सुने भी हैं और भी सुनेंगे, परंतु एक गीत के बाद। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई। चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो न, न,
0: अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
4: वंदे मातरम में पुनः आप सभी का स्वागत है। शरावती जी महाजन जो आबू तलेटी के रहने वाले हैं और आपकी उम्र 76 वर्ष की है, आपकी बचपन की बातें हमने सुनी थी और भी सुनेंगे। चलिए तो मैडम आपका पुनः स्वागत है वंदे मातरम कार्यक्रम में। थैंक यू। आपके बचपन की बातें चल रही थी, आपको कैसा लग रहा है आज आप 76 वर्ष के हैं और बचपन की बातें जो आपको ताजा ताजा याद आ गई और जो बातें आप कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको?
5: हमको बचपन तो बहुत अच्छा ही, किसी को भी लगता है, मेरे को तो बहुत ही अच्छा गया बचपन।
4: जी जी, तो आपको हर एक एक्टिविटीज में रहने का शौक था, है ना?
5: हाँ, बहुत एक्टिविटी थी, गाना गाना और दूसरों को खुश रखना और हम भी खुश रहना।
4: क्या बात है, बहुत खूब। तो अच्छा, आपको गाना गाने का शौक था तो आप दो लाइन सुनाएंगे?
5: हाँ, ये मैंने खुद किया है तैयार गाना, वही गाती हूँ।

0: अच्छा था, आप मराठी में गाते थे है ना?
1: हाँ,
0: और मराठी में बनाते भी थे।
1: हाँ,
0: तो ये जो दो लाइन आपने सुनाई है इसका अर्थ क्या है?
1: उस टाइम बालक वर्ष था ना,
0: अंतरराष्ट्रीय बालक दिवस।
1: हाँ, तो मेरे पोते को ये मैं लिख के दिया था और ये गाने के ऊपर उन्होंने कार्यक्रम भी किया था स्कूल में उसके।
0: अच्छा, बहुत खूब। तो पढ़ाई आप करते थे उस समय भी गीत बनाते थे?
1: नहीं, तभी इतना खेलने में टाइम जाता था।
0: अच्छा, और बोले हुए गीत गाते थे?
1: हाँ, टाइम मिलेगा तभी गाने बोलते थे या बनाते थे ऐसे।
0: जी जी जी। और आपके अंदर ऐसी क्या विशेषता है जो मतलब सभी पसंद करते हो?
1: माना ऐसे अच्छे अच्छे आइटम किचन में बनाना, हमारे मोदक उकड़ी के मोदक बोलते हैं, उकड़ बना के उसके मोदक करते हैं, वो हमको अच्छे आते थे। केक भी बनाती थी।
0: क्या बात है, ये सब शादी के बाद शुरू किया या पहले ही बनाते थे आप?
1: पहले से भी बनाती थी।
0: अच्छा।
1: पूरी हमारी प्रसिद्ध है, वो भी आती थी।
0: तो आपने अपने मम्मी से सीखा?
1: हाँ, मम्मी से सीखा।
0: अच्छा, कितने साल के थे और आपकी शादी हुई?
1: 21 बरस की थी तभी मेरी शादी हुई।
0: और आप कह रहे थे कि आपने जॉब भी की, तो जॉब आपने कब की? 10th की पढ़ाई के बाद शुरू की या कब की आपने?
1: शादी के पहले ही की थी।
0: हाँ, तो स्कूल में की? टीचर बने थे आप?
1: नहीं नहीं रेडियो का पार्ट बनाने की कंपनी थी उसमें की थी, और उधर भी हमको अच्छे सब मिले थे, माना कर्मचारी सब बहुत अच्छे थे।
0: कितने समय तक की आपने नौकरी?
1: 2 बरस तक की।
0: अच्छा,
1: और 400 रुपए था, लेकिन तभी तो बहुत माना इसको मूल्य था।
0: 400 रुपए
1: मैंने शादी के लिए आधा खर्चा मैंने ही किया था।
0: जी जी जी। आज आप 76 साल के हैं और बात है आपके कम से कम 60-65 साल पहले की, है ना? क्योंकि आपके बचपन की बातें चल रही है, तो आप 15-17 साल के बाद आपने सर्विस की होगी, 18 साल के बाद। तो इतने समय पहले 400 रुपए की बहुत कीमत हुआ करती थी।
1: बहुत कीमत थी तभी। सोना 140 रुपए है
0: तोला।
1: तोला
0: जी जी, बहुत सस्ता था उस समय। तो बहुत अच्छा है, आपने फिर जॉब क्यों छोड़ी? जब इतनी अच्छी जॉब थी, अच्छी सैलरी थी, फिर आपने क्यों छोड़ी?
1: शादी के बाद हम बम्बई में आए ना, इसीलिए पुनः छोड़ना पड़ा।
0: अच्छा, शादी के बाद भाई कि अब बॉम्बे रहना है तो फिर कोई फायदा नहीं जॉब करने का,
1: तो छोड़ के बम्बई में आई। उसके बाद हम नहीं कर सके क्योंकि बम्बई में पहली बार आई ना, तो कुछ भी मालूम नहीं था।
0: शादी करके आप बॉम्बे में आए तो आपके ससुराल बॉम्बे में?
1: नहीं, ये बॉम्बे में नौकरी करते थे, ससुराल हमारा कोंकण में ही था।
0: अच्छा, वापिस कोंकण चले गए।
1: हाँ, इसीलिए बम्बई में सब बात का जीवन गया।
0: अच्छा, तो फिर आप कोंकण से, आपके हस्बैंड की जॉब बॉम्बे थी इसलिए आप बॉम्बे आ गए। तो क्या जॉब करते थे आपके हस्बैंड?
1: रेलवे में नौकरी थी उनको।
0: अच्छा, परिवार के साथ रहे आप कोंकण में कभी?
1: हाँ, बीच बीच में जाते थे ना, तो परिवार हमारा अच्छा था, सास भी अच्छी थी। आम के दिन में हम हमेशा जाते थे, तो आम भी हमारे लिए अच्छे अच्छे रखती थी, तो बच्चियों को भी और हमको भी अच्छा लगता था।
0: कितना बड़ा परिवार था ससुराल में?
1: ससुराल में था लेकिन वो अपने अपने घर में ही था ना, एक देवर खाली था, सास थी और इनके बड़े भाई की 2 बच्चियां थी। वो हमारी सास देवरानी माना बच्चियों की माँ बचपन से ही गई, तो वो दोनों हमारे साथ संभालती थी। एक अच्छी थी और एक थोड़ा सिर पर परिणाम था। वो अच्छी एक थी, वो उसको हम पति को बोले कि हम उसको ले जाएंगे और उसका शिक्षा सब अच्छा करेंगे, तो हम उसको लेकर बम्बई में आए और उसका एजुकेशन बाद में थोड़े दिन नौकरी करती थी।
0: बेटियों को लेके आए?
1: हाँ, उसके देवर के बेटी को लेके आई क्योंकि सास को दोनों संभालना जमता नहीं था ना, इसीलिए लेके आई और उसकी शादी भी हमने की।
0: अच्छा, तो देरानी कहाँ गई आपकी?
1: ऑफ हो गई।
0: अच्छा, भगवान को प्यारी हो गई
1: बचपन से। ऑफ हो गई थी।
0: अच्छा, बेटियों को जन्म देने के बाद।
1: इसीलिए मैं उसको पालना दी।
0: जी जी जी, आपके कितने बच्चे?
1: मेरी दो बच्चे है।
0: जी जी जी, आपके दो बेटियां हैं और एक बेटी हो, तीन बेटियां आपके। और फिर जैसे कि आपके देवरानी नहीं है, खाली देवर आपके गांव में रहे और आपके सास ससुर आपके साथ रहते थे या कोकण में ही रहते थे?
1: नहीं, कोकण में ही रहते थे, बाकी सब
0: बीच बीच में आप जाते थे।
1: हाँ,
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मैडम आपसे और भी बातचीत करेंगे, फिर से समय हो चला है एक गीत सुनने का, तो सुनेंगे एक गीत, सुनते

नमस्कार, मैं हूँ शिप्ला, डिस्ट्रिक्ट मोहाली, स्टेट पंजाब से। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें।

0: और शरावती महाजन हमारे साथ बने हुए हैं। आप काफी अनुभवी हैं, 76 वर्ष के आप हैं और काफी आपके जीवन के अनुभव रहे हैं, हमने भी सुने हैं और भी सुनेंगे। तो मैडम, आप बॉम्बे में, मतलब 3 बेटियां, आप सभी कैसे रहते थे और किस तरह आपने शिक्षा और संस्कार दिए अपने बच्चों को?
1: मैंने मेरी बेटियों को, दोनों बेटियों को और मेरे देवर की लड़की को, तीनों को बहुत अच्छे संस्कार दिए और अच्छे अच्छे कपड़े भी सिलाती थी उनको, वो भी बहुत अच्छे संस्कार वाली हो गई।
0: अच्छा, और कपड़े आपको सिलाई कढ़ाई बुनाई इन सब का भी शौक है ना, तो आप क्या क्या करते थे घर में?
1: हम घर में सब थैलिया, पर्दा, ऐसे बच्चों का थोड़ा सा कपड़ा भी सिलाती थी। मना हमने कोर्स किया था
0: सिलाई का?
1: हाँ।
0: कहाँ, बॉम्बे आने के बाद या पुणे में ही?
1: पुणे में ही किया था।
0: अच्छा, तो और क्या सिल लेते थे आप, और क्या सिलाई करते थे? बच्चों के कपड़े वगैरह भी आप ही सिलते थे?
1: हाँ, आती थी, छोटे छोटे कपड़े होते थे तभी मैं सिलाती थी।
0: अच्छा, कभी आपने मोल की सिलाई भी की, दूसरों के भी सिले?
1: नहीं, दूसरों के नहीं की, घर में ही सबका टाइम जाता था।
0: जी जी, और कढ़ाई बुनाई में क्या करते थे आप?
1: कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा आता था, इतना नहीं किया है।
0: अच्छा, आपको भजनों का बड़ा शौक है, तो सत्संग में जाते थे आप?
1: हाँ, मेरे बाजू वाली और हम भजन के क्लास में रोज जाते थे।
0: तो पूरे आपका ग्रुप था?
1: हाँ, मना उनका ही ग्रुप था, उसमें हम दोनों जाती थी। तो हमारे टीचर बहुत अच्छे थे, मना शास्त्रोक्त गाना भजन गीत सिखाते थे हमको।
0: आप सीखने जाते थे या सत्संग करने जाते थे?
1: सत्संग नहीं इतना किया हम।
0: अच्छा, तो आप गीत संगीत सीखने जाते थे?
1: हाँ, सीखने के लिए जाती थी मैं।
0: तो उस समय क्या फीस लेते होंगे?
1: अच्छे अच्छे भजन गीत उसने सिखाए हमको, हमने लिख भी दिए सब।
0: अच्छा, तो फीस लगती होगी ना?
1: फीस थोड़ी सी थी, 100 रुपया ऐसा कुछ था।
0: अच्छा, तो मतलब 3 बच्चियों का काम करना, फिर आपके हस्बैंड का भी काम करना, 5 जनों का काम करने के बाद भी आपको समय मिलता था?
1: दोपहर का टाइम मिलता था ना, तब भी जाते थे, 1 घंटा होता था तब भी जाती थी।
0: अच्छा, तो कितने समय तक आप गए इस तरह सीखने के लिए?
1: 1-2 बरस तक गई।
0: 1-2 साल तक आपने गीत संगीत सीखे?
1: हाँ, भजन गीत अच्छा लगता था ना, तो मैंने मना सीख लिया ऐसे।
0: अच्छा, तो कभी आपने फिर गाया भजन जैसे आप सीखे 1-2 साल, उसके बाद कभी आपको गाने का अवसर मिला?
1: हाँ, ऐसे कभी मिलता था तभी गाती थी।
0: अच्छा, तो फिर तो आप, वो कहते हैं ना कि 1-2 साल अगर हम क्लास करते हैं तो काफी परफेक्ट हो जाते हैं, तो आपके भजन सभी पसंद करते होंगे फिर तो?
1: हाँ, भजन गीत मेरे को बहुत अच्छे लगते, भीमसेन जोशी ऐसे अच्छे अच्छे गीत वाले के गीत भी मेरे को अच्छे लगते हैं, लेकिन मराठी में, हिंदी में नहीं था ना।
0: अच्छा, मराठी में सीखा आपने?
1: हाँ, मराठी में सीखी ना, ज्ञानेश्वर, पंढरी का विठोबा, इसके ऊपर सब गीत थे, तुकाराम महाराज।
0: अच्छा, पर सारे मराठी में।
1: हाँ,
0: तो वो कहते हैं कि जब हम गीत संगीत सीखते हैं तो खुद का भी अनुभव बढ़ता है और हम खुद भी बनाते हैं। तो जैसे आपने 2 लाइन तो बोली थी कि आपने ही बनाई, इसके अलावा भी आपने बनाए होंगे गीत संगीत?
1: संगीत ऐसे बनाए नहीं है मैंने, गाने को अच्छा लगता था।
0: अच्छा, गाना अच्छा लगता था, लेकिन आपने कभी बनाया नहीं?
1: नहीं,
0: कभी कोशिश नहीं की?
1: नहीं, याद भी नहीं है।
0: अच्छा, आप कह रहे थे आपके 3 बेटियां है, तो बेटियों को भी आपने पढ़ाया तीनों को?
1: जो वाले एक थे तो मैं मराठी पढ़ाती थी उसको, वो कर्नाटक की थी ना, मद्रासी थी, तो उस समय मराठी विषय स्कूल में था, तो उसके बेटी को मैंने मराठी पढ़ाया है।
0: अच्छा, पड़ोस की बेटी को?
1: हाँ।
0: और आपने अपनी तीनों बेटियों को कहाँ तक पढ़ाई कराई?
1: बड़ी वाली BCOM हो गई और छोटी वाली 13वीं तक गई और बाद में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी।
0: अच्छा, ऐसा क्यों? बड़े वाले ने जब BCOM पूरी कर ली तो छोटे वाले को भी तो पूरे करनी चाहिए ना, डिग्री तो पूरी लेनी चाहिए।
1: अध्यात्म में बड़ी गई ना, तो इसको भी जाना था, इसीलिए पढ़ाई छोड़ दी।
0: अच्छा, अध्यात्म में इंटरेस्ट आ गया था इसलिए।
1: सबको, हमको सभी को अध्यात्म में इंटरेस्ट था।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि जीवन में हम घर का काम काज करते हुए अध्यात्म को अपनाते हैं, सत्संग को अपनाते हैं, तो अच्छा ही है ना। हमारी श्रद्धा अच्छी बनी रहती है, हमारे विचार अच्छे चलते हैं। तो मैडम, आपने बेटियों को किस तरह की शिक्षा और संस्कार दिए?
1: बेटियां भी अपने आप ही सीखी मेरे से ही, तो वो भी मना अच्छे संस्कार वाली निकल गई और अध्यात्म में आगे गई।
0: जी जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। और शादी भी करवाई होगी बेटी की?
1: हाँ, एक बेटी ने शादी की, एक ने नहीं की, बड़ी ने।
0: जी जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जैसे आपको भजन में इंटरेस्ट था, आपने सीखा भी, इस तरह बेटियों को भी अलग से कोई कोर्स करवाया?
1: हाँ, उन्होंने दोनों को गाने के क्लास में डाला था, तो गाना दोनों को भी पसंद है इसीलिए। और छोटी वाली को डांस भी सीखी है।
0: अच्छा, डांस क्लास भी करवाया आपने?
1: हाँ, और बड़ी छोटो दोनों को गाने के क्लास में भी जाती थी।
0: अच्छा, और आपकी तीसरी बेटी, आप कह रहे थे देवर की बेटी, उसने भी किया?
1: नहीं, उसने नहीं किया।
0: अच्छा, उसकी शादी हुई या क्या हुआ?
1: शादी की उसकी, और अच्छी तरह से रहती है। ऐसे हमने बहुत जनों के शादियां भी की है। मेरी एक मौसी की लड़की की, एक हमारा पहचान गांव में रहते थे ना, तो उसमें गांव में लड़के अच्छे अच्छे मिलते नहीं थे मना शादी के लिए, तो हमको पत्र लिखती थी कि हमको भी उधर देखो। तो मेरे एक लड़की को मना मौसेरी बहन को लाया, उसकी शादी की। दूसरी ने भी फोन किया, उधर देखो, तो दूसरी के भी लाया और शादी की। मेरे भाई को भी पुणे से बम्बई लाया, उसको मना नौकरी लगवाई, उसकी शादी भी हमने ही की। ऐसे बहुत जनों के शादियां भी की है।
0: क्या बात है, बहुत आपने दुआओं का काम किया, बहुत सेवा की लोगों की।
1: हाँ, दुआएं तो होती ही है पीछे।
0: तो जैसे आपने इतना सपोर्ट किया सभी का, तो सभी खुश तो हुए होंगे ना?
1: हाँ, मेरे से सभी खुश है, मेरा कोई शत्रु नहीं है।
0: बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है मैडम। आपसे और भी बात करेंगे, परंतु समय हो चला है एक ब्रेक का, तो ले लेते हैं एक ब्रेक, पुनः लौट करके आ रही हूँ। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधु, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी। लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू। आप सच बोलेंगे, देयर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में शरावती महाजन, इनसे हमने सुने हैं इनके काफी जीवन के अनुभव, और भी सुनेंगे, लेकिन इनके बेटी यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। नमस्ते मैडम।
3: नमस्ते जी।
2: आपका शुभ नाम?
3: तेजश्री।
2: तेजश्री जी, आप जैसे कि माता जी ने बताया है कि आप दो बहनें हैं, है ना, तो आप बड़े वाले?
3: जी हम बड़े हैं।
2: अच्छा, तो आप थोड़ा सा अपने बारे में परिचय देंगे कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की और आप किस तरह के विशेष आपकी रुचि है?
3: हमने पढ़ा है बीकॉम, ग्रेजुएशन पूरा किया, और मेरा रुचि हमेशा ये रहा कि कोई भी जो पॉजिटिव काम होता है उसमें आगे बढ़ना है। तो बीकॉम पूरा करके साथ में मैंने और भी बहुत कुछ सीखा भी, जैसे टाइपिंग सीखा, गाना भी सीखा, जरूरी जितना सिलाई सीखा, ताकि हम अपना खुद का काम खुद कर सके। उसके साथ में हम टेलीग्राम उस समय होता था, टेलीप्रिंटर वगैरह, उसके भी कोर्सेस किए। तो केक का मुझे शौक था, तो केक के भी क्लासेस किए। तो ऐसे हर प्रकार से शौक था, तो जितना मेरी कैपेसिटी थी उतने में क्लास पूरा करके लाइफ में अपनाने का मैंने प्रयत्न किया।
2: बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीजें सीखना भी जरूरी है। तो कभी किसी चीज में आप आगे बढ़ पाए जो आपने प्रोफेशन बनाया हो उसको?
3: हाँ जी, जैसे देखो पढ़ाई तो होती है, वो तो हमको हर व्यवहार में काम आती है। पढ़ना ये जरूरी है, ये मेरे लाइफ का एक मकसद था एकदम। और मेरे मदर फादर जो है, माता पिता, वो भी यही मेरे को शुरू से बचपन से हम सुनते आए कि पढ़ना है बच्ची, पढ़ना है, पढ़ने से अपना जीवन खुद भी हम बना सकते हैं और दूसरों को भी हम मदद कर सकते, राह दिखा सकते हैं। इसलिए वो पढ़ाई तो एक तो मुझे बहुत काम आई। दूसरी चीज है केक का जो मुझे शौक था, तो आज के लाइफ में भी मैं अनेकों को अपने जन्मदिन के लिए केक बना के देती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो केक जो है वो एक मेरा ये हॉबी होने के कारण, बेकरी आइटम, मैं अनेकों को मेरी ये कला का लाभ दे सकी, आज भी दे रही हूँ। और बाकी जो है जैसे सिलाई होती है या कोई चीज का जैसे गाना होता है, तो ये हमको फंक्शन होता है उसमें प्रोत्साहन देने में काम आता है। सिलाई होती है तो हम दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, हम अपना छोटा मोटा काम जो है वो कर सकते हैं। तो मेरी ये सदैव इच्छा रही कि मैं खुद भी करती हूँ और दूसरों को भी मैं हमेशा प्रोत्साहन देती हूँ कि अपने जीवन में पढ़ना जरूरी है, पढ़ करके दूसरों को बनाने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जीवन ऐसा होना चाहिए जो हमको देख करके और 10 जन बने, ऐसा जीवन ना हो कि हमको देख करके 10 लोग भी बुराई की तरफ जाए, ऐसा नहीं। इसलिए पढ़ाई जरूरी है, तो ये लक्ष्य मेरा रहा।
2: क्या बात है, बहुत खूब तेजश्री जी, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत स्वयं को भी सीखने को मिला। और जैसे आप दो बहनें हो, फिर एक आपके अंकल की लड़की भी है, फिर आपके मम्मी पापा की भी जिम्मेवारी है, तो अभी आपकी एज क्या होगी?
3: मेरी एज अभी 55 चल रही है।
2: 55 के आप क्या बात करते, लगते नहीं है। और आपने भाई शादी नहीं करने का जो फैसला लिया है वो इन्हीं वजह से लिया या आप बताएंगे?
3: जी देखो ये शादी एक जिम्मेवारी, शादी यानी जिम्मेवारी, शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं अपने लाइफ में जिम्मेदारी को महत्व देती हूँ। तो हम दो बहनें हैं और छोटी बहन की शादी हो गई है, तो मदर फादर को कौन संभालेगा, ये मेरी जिम्मेवारी है, भगवान ने मुझे दिया है ऐसा मैं समझती थी, और इसी वजह से मैंने शादी नहीं की। लेकिन जैसे शादी होती है ना, तो एक नया परिवार से हम जुड़ जाते हैं, लेकिन इसके वजह से मना शादी के हिसाब से नहीं, लेकिन शादी ना करके भी मैं बहुत बड़े परिवार से जुड़ी हूँ, पूरा विश्व मेरा परिवार है और ईश्वर मेरा साथी है, तो बस हम इसलिए मदर फादर को साथ रख करके अपना जीवन बहुत ही आनंद से गुजार रहे हैं।
2: जी जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी सोच है आपकी कि आपने अपने माता पिता के बारे में सोचा कि माता पिता की सेवा कौन करेगा, और इस वजह से बहुत सारे कारण जो कि आप ईश्वर में रुचि रखते हैं, अध्यात्म में रुचि रखते हैं, ये भी कारण है, फिर माता पिता की सेवा का भी सवाल है, तो बहुत बड़ा त्याग किया आपने।
3: मुझे तो त्याग तो नहीं लगता है, लेकिन ये लगता है कि लाइफ जीने की कला हमेशा सीखते रहना चाहिए, और ये सीखना कभी भी बंद नहीं होगा, अंतिम सांस तक ये सीखते रहना है और सीखते रहना चाहिए, ये मेरा लक्ष्य है।
2: बहुत खूब, बहुत सुंदर लक्ष्य है। और तेजश्री जी, जैसे कि हमारे बहुत सारे श्रोता बंधु सुन रहे ये कार्यक्रम, तो उनको आप अपने जीवन के अनुभव से क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने अपने माता पिता की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली, बड़े प्यार से आप सभी के साथ रहते हैं, तो क्या कहेंगे आप समाज में?
3: एक समाज का एक छोटा सा हिस्सा मैं खुद होने के कारण मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि समाज में हम रह रहे हैं, ये अवेयरनेस, ये जागृति हमको जरूर होना चाहिए कि हम जो करते हैं उसका असर हर चीज का समाज के ऊपर पड़ता है, फिर चाहे वो गलत हो चाहे अच्छा हो, तो हमको हमेशा ये लक्ष्य रहना चाहिए कि हमको अच्छा ही करना है ताकि हम भी अच्छे बने और हमको देख करके भी दूसरे अच्छे बने। बुरा करो, कोई आपको मना नहीं करेगा, आप किसी का बुरा कर सकते, किसी को मार सकते, कुछ भी कर सकते, लेकिन भोगना तो आपको ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम जो कर्म करेंगे वही हमारे साथ जाएगा। दुनिया वालों का किसी का बुरा नहीं होगा, मेरा खुद का बुरा होगा, इसलिए मेरे को ये सदैव याद रहता है कि मुझे जब मैं शरीर छोड़ूंगी यानी भगवान के पास जाऊंगी तो मुझे मेरे अच्छे कर्म के साथ ही जाना है, है ना, तो ये मेरी सदिच्छा है।
2: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया है। चलिए अब हम फिर से मैडम की तरफ चलते हैं। मैडम, आप जैसे बॉम्बे में रहे, पुणे में रहे, पुणे में बड़े हुए, बॉम्बे में आए, बॉम्बे से फिर आबू कैसे आना हुआ?
4: क्योंकि हम बूढ़े हो गए, तो बूढ़े होने के बाद बीमारी वगैरह आई, तो तेजश्री बड़ी लड़की इधर थी, इसीलिए हम उसके साथ आए।
2: अच्छा, तेजश्री जी आबू में थे तो आप भी दोनों जने इधर आ गए?
4: हाँ, उसके नजदीक ही जगह ली और इधर आना हुआ।
2: जी जी, तो कितने साल से आप यहाँ रह रहे हो?
4: 2 साल हुए।
2: अच्छा, आबू में अच्छा लगता है आपको?
4: हाँ, आबू तो अच्छा ही है, बहुत अच्छा है।
2: कहाँ आपकी मराठी भाषा, फिर कहाँ यहाँ राजस्थानी भाषा?
4: हिंदी भी हम ऐसे बोलते हैं ना, मराठी तो है ही हमारी भाषा, लेकिन हिंदी में ऐसा सब फर्क नहीं लग, मना द्वंद्व नहीं रखते।
2: जी जी जी, हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा है और ये भाषा सब जगह चलती है।
4: हाँ, सब जगह चलती है ना, इसीलिए ऐसा कुछ लगा नहीं मना।
2: अच्छा माता जी, लास्ट में आपसे इतना सा पूछना चाहूंगी कि 76 वर्ष के सफर में विशेष आपको क्या अनुभव हुए, आपको क्या सीखने को मिला जो हमारे समाज को आप प्रेरणा दे सकते हैं?
4: हमको प्रेरणा मिली कि हम कुछ स्ट्रांग रहना चाहिए, माताएं हो के भी हम पुरुष के जैसे स्ट्रांग रहना चाहिए, क्योंकि पहले से ही पुरुषों ने महिलाओं को द्वितीय स्थान दिया है, लेकिन अभी वो समय रहा नहीं है, इसीलिए हम स्ट्रांग रहेंगे तो हमको कोई तकलीफ नहीं होगी। अब स्ट्रांग रहने के साथ भी हमको अच्छा भी रहना चाहिए, हमको आनंदी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, तो दूसरे भी हमको मान देंगे और स्वयं भी खुश रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे।
2: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया है कि महिला है तो क्या हुआ, महिला होने के बावजूद भी हम स्ट्रांग रह सकते हैं, तो ये बहुत ही सुंदर मैसेज आपने दिया है। हमारी माताएं बहनें सभी सुन रही हैं, जरूर आपके मैसेज पर गौर करेगी। और अब आपसे मैं अनुमति चाहूंगी, बहुत ही सुंदर आपने जीवन के अनुभव दिए हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
4: थैंक यू, आपको भी धन्यवाद।
2: तो शरावती महाजन, जिनका सुंदर सा नाम है, काफी आपने देखे पढ़ाई भी अच्छी की है और जीवन के अनुभव भी काफी शेयर किए हैं, लेकिन परिवार के साथ मिलजुल कर रहना, और जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे परिवारों की शादी भी आपने करवाई है, तो इतने जनों का आपने सपोर्ट भी किया, और हर कार्य करना, सीखना और बच्चों को सिखाना, उमंग उत्साह में लाना, जॉब करना, कहते हैं कि नारी कहीं पर भी हारती नहीं है, हर परिस्थिति में कड़ी होती है, चाहे अच्छी परिस्थिति हो चाहे विपरीत परिस्थिति हो, खुद को कैसे ढालना, एक नारी शक्ति को आना चाहिए जो आपने बखूबी निभाया है। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृशक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहती हैं तो हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हो। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

मैं अशोक खोसला बोल रहा हूँ और मैं रेडियो मधुबन सुनने वालों सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ सबको। वो सबको बहुत बहुत खुश गवार गुजरे, सब बहुत खुश रहें और आगे भी प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलें, यही शुभकामना है। धन्यवाद। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया, और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। सही में सरकार का मनसा है आसपास गांव और अंचल में जो गतिविधि हो रही, जो संस्कृति है, जो लोकगीत है, जो प्रतिभाएं समूह रूप में जो करते हैं, जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच एक स्टेज देता है। तो आज इस कार्यक्रम को लेकर हमें बहुत खुशी है, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जिसको ओम शांति नाम से प्रसिद्ध है और सरकार लाइसेंस दिया है आसपास गांव को उन्नत करने के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, सबका भाव भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए, तो आज हमें आबू रोड तहसील के और ग्राम पंचायत के नाड़ी में पहुंचे। माताओं बहनें आई लोग और बड़े बड़े भाई बुजुर्ग लोग को सम्मान करते हुए उनको स्वागत करते इस कार्यक्रम को सजाने के लिए। तो एक प्रस्तुति सुनेंगे, खासकर भजन संध्या में जैसे अपना दिल का बात रखते, तो हमारा साथ एक होवनहार दिव्यांग कहेंगे नहीं लेकिन उसका अंतर चक्षु बोले इस तूल चक्षु को दिखाई कम देता है लेकिन उनका बुद्धि रूपित आंख है वो तेज है, तो उसको स्वागत करते। उनका नाम शायद प्रभु राम है ना, वाह नाम है कितना सुंदर, प्रभु राम, प्रभु का राम है, आप प्रभु को राम भी कहते हैं है ना, हर घर में प्रभु को याद करते हैं। तो हमारा प्रभु राम को स्वागत करते हैं, प्रस्तुति सुनाएंगे। हमारा श्रोता मित्र ध्यान से सुने और हमारा जो कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रभु राम को स्वागत करते हैं। प्रभु राम जी आप कहाँ से?
1: हम और गांव से।
0: और गांव से आज खुशी लग रहा है?
1: खुशी है सर,
0: खुशी हमेशा खुशी रहते हैं,
1: हमेशा खुशी रहते हैं, लेकिन आप आने से हमारे को ज्यादा खुशी हो गई।
0: क्या बात, क्या बात, हम आने से उनको खुशी मिला और हमारा पास ऐसी क्या विशेषता है जो आपको खुशी मिला?
1: आपने हमारे को जो सब जो जिनों को जो शुद्ध बुद्धि दी है और जितना भी आपने जो बताया वो बहुत अधिकृत बताया, हमारे जो नहीं मालूम था उन लोगों को भी सबको मालूम हो गया।
0: अभी उलाना नहीं देंगे
1: जी,
0: उलाना और नहीं देंगे कभी, किसी बोलेंगे नहीं हमको पता नहीं, अभी पता चल गया, पता चल गया
1: हमारे को, सबको पता चल गया।
0: हाँ बहुत अच्छा, पता चल गया जो हम कौन है और कैसे और कहाँ पर है। चलिए एक प्रस्तुति सुनेंगे, सुनेंगे एक प्रस्तुति भजन के रूप में, शुरू करिए।
2: मन डर रे डर रे डर रे सेवा माता पिता कर रे, ओ गर्भवास में आयो थारी माता घणो दुख पायो, रियो नवरे वास ओ डर रे सेवा माता पितारी कर रे, ओ जब थारो जन्म भोरे थने पालनिए लड़ायो, माई की दो मरने रे मुँह कर रे सेवा माता पितारी कर रे, हो तो रे पांच वर्ष रो वेगो थने स्कूल बनवा लेगो, थारे पढ़ाई कराई भरपूर रे सेवा माता पितारी कर रे, हो तो 20 वर्ष रो होगो हो थने माता पिता परणायो, थारे नारी लाई रे सुंदर रे सेवा माता पितारी कर रे, वो मन डर रे डर रे डर रे सेवा माता पितारी कर रे, वो थारे सोरा टाबर वेगा माँ बाप से न्यारा वेगा, फिर तो नारो बनायो वो घर रे सेवा माता पितारी कर रे, वो मन डर रे डर रे डर रे सेवा माता पितारी कर रे, ओ माता पितारे वाली सेवा वही ब्रह्मा विष्णु महादेवा, वही रामचंद्र रघुवर रे सेवा माता पितारी कर रे, ओ मन डर रे डर रे डर रे सेवा माता पितारी कर रे, ओ गावे राम लाल हरिजन रे सेवा माता पितारी कर रे, ओ मन डर रे डर रे डर रे सेवा माता पितारी कर रे।
1: धन्यवाद, जय
0: जय हिंद और जय प्रभु राम, प्रभु राम की जय हो। और माता पिता, सही में माता पिता कितना भी जन्म ले लेकिन माता पिता मिलना मुश्किल होता है, ये माँ बाप नहीं मिलेगा जो माँ बाप अभी फिर जन्म लेंगे तो दूसरा माँ बाप मिल सकता है, लेकिन इस जन्म में जो माँ बाप है जो हमें इतना पालना दिए, इतना सेवा किए, माँ जैसे मातृ गर्भ में रखकर कितना 9 महीना तक उसको कितना बड़ा किया, और जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को भूल जाते हैं बच्चे, लेकिन भूलना नहीं चाहिए। जैसे गीत का माध्यम से प्रभु राम जी बताए, सेवा माँ बाप का सेवा से बड़ा सेवा कोई है नहीं। इसलिए सबको मालूम है, जब एक कहानी आप सुनते होंगे जानते होंगे, जब शिव जी का दो बेटा एक गणेश जी और कार्तिकेय, उनको घूमने के लिए भाई पूरा भ्रमण करके जल्दी जो आएगा रेस लग गया, उनका प्रस दौड़ लगे, जो पहला आएगा जीतेगा उनका अग्र पूज्य नाम दिया जाएगा। लेकिन कार्तिकेय का तो वाहन मोर था और गणेश का वाहन क्या था, चूहा। लेकिन बुद्धि का खेल है, आत्मा का खेल है, तो तुरंत वो पंछी लेकर चल गए अपना कार्तिकेय, लेकिन उसका तो चूहा वाहन गणेश का पास था, इसलिए वो माता पिता का चार तरफ घेरी लगा दिया और तुरंत पहुंच गया। तो बुद्धि का काम किया, कौन बुद्धि से काम किया, श्री गणेश ने, इसलिए अग्र पूज्य हुए। तो प्रभु राम जी अपने बात में या गीत में, माँ बाप का सेवा से बड़ी सेवा कोई है नहीं। इसलिए माँ बाप जो भगवान हमारा माँ बाप है, उनका सेवा के लिए हमें भेजा था, उनका सेवा करना चाहिए कि नहीं चाहिए,
1: करना चाहिए।
0: तो सबसे बड़ा माँ बाप कौन है, भगवान, तो भगवान का सेवा हम लोग कर रहे कि नहीं, इसलिए उनका सेवा कर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, खासकर आज प्रभु राम का आवाज को रोक नहीं पाए, और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: प्रभुराम जी को पुनः स्वागत करते हैं। प्रभुराम जी, पुनः आपको एक चांस मिल रहा है, क्योंकि सबको आप पार करके और आपका जो विशेषता है देखने को मिल रहा है, तो सुनाइए और एक प्रस्तुति शुरू करिए प्रभुराम जी।
2: हंसा सुंदर कायारो मत कर जे अभिमान, आखिर एक दिन जानो रे मालिक रे दरबार।
1: क्या बात, क्या बात।
2: हंसा सुंदर कायारो थे मत कर जो अभिमान, आखिर एक दिन जानो रे ईश्वर रे दरबार। गर्भवास मेरे दुख पायो जब हरि से करी पुकार, पल पल भूल नहीं रे अनजुग तेरे मां। हंसा सुंदर कायारो मत कर जे अभिमान, आखिर एक दिन जानो रे मालिक रे दरबार। कुटुंब कबेलो देखने थे तो गर्भ कियो मन माए, हंसा केलो जावे रे कोई ने आवे साथ। हंसा सुंदर कायारो मत कर जे अभिमान, आखिर एक दिन जानो रे ईश्वर रे दरबार। राम नाम रे बांध गाटरी बहु से कर लपात, सात सेवटिया के वेरे आवे थारे काम। हंसा सुंदर कायारो मत कर जे अभिमान, आखिर एक दिन जानो रे मालिक रे दरबार। आखिर एक दिन जानो रे ईश्वर रे दरबार।
1: धन्यवाद। सही में एक प्रेरणादायी और जो हकीकत है इस कार्यक्रम का माध्यम से हमारा श्रोता मित्र तक पहुंच पा रहे हैं, और हर गांव में इस तरह भावना है। भले बहुत सारा लोग है, बहुत सारा मनरेगा में आते, लेकिन एक कमाल कर दिए। एक जैसे आकाश में रात को बहुत सारा सितारे रहते, लेकिन एक चांद पूरा उजला दे देता है। तो इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से हमारा प्रभुराम जी सुंदर रूप में प्रस्तुति दिए, और एक दिन हमें जाना ही है, और एक दिन हमें आए थे और एक दिन जाना है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है, क्या लेकर आया था क्या लेकर जाना है। लेकिन हमारा कर्म, हमारा संस्कार, हमारा बुद्धि यदि तेज होगा, तब जो भी जिसका घर में भी जन्म लेंगे वो अच्छा से अच्छा निभा पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद लेते हैं। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद प्रभुराम को भूलने पर नाम जैसे, प्रभुराम जी आपका नाम कौन रखा था? बहुत सुंदर, मुझे बहुत अच्छा लगा, नाम कौन रखा था?
3: ज्योतिष ने रखा था।
1: हाँ, इसलिए प्रभु को प्यारे हो गए आप, प्रभु का साथ भजन करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद लेते हैं। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हमारा माताएं बोलते भाई हम क्यों पीछे रहेंगे, पांडव सेना, प्रभुराम पांडव सेना का तरफ से और हमारा शक्ति सेना की तरफ से हमारा मैट भी स्वागत करेंगे। एक भजन होगा, भजन संध्या में आज और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

0: आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमें बहुत खुशी है, आज भाई लोग और माता लोग, बाबूजी लोग अपना आवाज को रोक नहीं पा रहे। इस कार्यक्रम को सजाने के लिए रेडियो मधुबन इस तरह मंच पूरा जहाँ जाते हैं वहाँ पर हमारा स्टूडियो बन जाता है। आज रेडियो मधुबन यहाँ का मंच स्टूडियो है। स्टूडियो में सभी माताओं को धन्यवाद देते हैं। संगठन पहला बार देखे, पूरा सभी दिल से भाई लोग का आवाज को, प्रभु राम का आवाज को सुन के हमारा रेखा बहन और उनका टीम उनको आगे बढ़ाएंगे। और रेखा को आज तो भाग्य का रेखा स्वयं परमात्मा ने दे दिया, जितना खींचना हो भाग्य का रेखा खींच लेगा, क्योंकि परमात्मा का ये काम है, मेरा काम नहीं है। भाग्य का रेखा भगवान के हाथ में रहता है और भगवान जब चाहता है ना छप्पड़ फाड़ कर देता है। तो आज हमारा भाव और भावना को भगवान तक पहुंचे। और जैसे प्रभु राम जी अपना बात में संगीत में एक मोटिवेशनल मैंने जो आवश्यकता है संसार को जो सीखने की चीज वो बताए, जिसे हमें एक दिन जानना है, एक दिन जानने का पहले क्या करना चाहिए हमें सीख मिली। तो हमारा रेखा देवी को स्वागत करते हैं, उनका टीम को और मैट को भी धन्यवाद देते हैं जो कि इस कार्यक्रम को सजा रहे। तो एक प्रस्तुत सुनाएंगे रेखा देवी बहन।
2: अरे सतगुरु मिलत

बहुत बहुत धन्यवाद भाव और भावना को लेकर, क्योंकि इस तरह कार्यक्रम इस तरह मंच मिलता नहीं माताओं बहन को। आकाशवाणी में जाएंगे तो उनको कोई भुलाएगा नहीं, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो में जाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। किंतु सरकार क्या किया, रेडियो मधुबन आपका रेडियो नाम पे रेडियो दिया है, जो आपका आवाज को जन जन तक पहुंचाते। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक भजन सुनेंगे शायद, रेडी है तो अल्प विराम का बाद। रेखा बहन को भी धन्यवाद और हमारा मैट को भी धन्यवाद देते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

आगे बढ़ाते हुए अगला प्रस्तुति के लिए सुनते हमारा सभी साथियों को भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पांडव का बिना शक्ति कुछ नहीं कर सकते, इसलिए पांडव पीछे से हमें सहयोग देते हमारे भाई लोग, और हमारा बहन माता भी एक गीत प्रस्तुत करेंगे, रेखा एंड पार्टी शुरू करिए।

0: दूरदर्शन का माध्यम से सुना है।
1: तो
0: भाई साहब आपका नाम बताइए।
1: केशव पुरोहित।
0: पुरोहित जी, अरे बाप, पुरोहित को तो मानना पड़ेगा भाई, पुरोहित बहुत चालाक होते हैं और बहुत होशियार होते हैं। हर स्कूल में पुरोहित यही है मास्टर साहब। आपका गांव में भी बहुत सारा पुरोहित है।
1: लड़का का मास्टर ही है।
0: क्या नाम है?
1: अशोक।
0: अशोक पुरोहित। आप बोला ना भाई, पुरोहित शंभु पुरोहित है, मोहन पुरोहित है, सब पुरोहित हमारा शिक्षक का नाम स्कूल में जाते हैं, क्योंकि पुरोहित लोग बहुत शिक्षित होते हैं और आज तो सभी माताएं शिक्षित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, अंतिम प्रस्तुति के लिए हम चलेंगे और एक प्रस्तुति होगा। जो आएगा वो पाएगा, जो नहीं आएगा वो खोएगा। खोना नहीं है, पाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, अंतिम प्रस्तुति के लिए हम चलेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद।

अरे 6 घंटा का 12 घंटा कर दी गणो आयो चो जोर, नारायण के लगायो ढोक मारी बेड़ा कर दी पार। पहली 6 घंटा चाले चो पाचे करियो विचार, दोनी जोड़ियो हाथ मारी नारायण सुनया पुकार। अरे नारायण 12 घंटा कर दिया बाला देव, गुजर किरे आई बीन ती।

ओम शांति, मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुरा।

नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी मिल रहा है, क्योंकि खुशी क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आज माताएं बहनें अपना आवाज को रेडियो में दे रहे हैं। रेडियो को जाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, एक सेकंड में 10 रुपया खर्च होता है आवाज सुनने के लिए एडवर्टाइज, लेकिन माताओं को बहन को आज रेडियो मधुबन जितना गाना चाहिए, जितना आपका 1 घंटा का प्रोग्राम है, इसलिए कितने खुशी का बात है। एक एडवर्टाइज के लिए 100-100 रुपया खर्च करते हैं बोलने के लिए, लेकिन आज सरकार ने दिया एक गरासिया भाषा का एक आदिवासी गीत, न हो आदिवासी एरिया में आए एक आदिवासी गीत सुनाएंगे। 1 2 3 शुरू।

जय हो, जय हो, सभी का जय हो। और बहुत खुशी और हर्ष का साथ इस कार्यक्रम को सजाए। सभी बहन माता और भाई लोग को धन्यवाद देते हैं। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर, किसी भजन संध्या को लेकर, किसी मनरेगा का आवाज को। तो आज हमें बहुत खुशी है। सभी को राम राम, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहे।

0: नमस्कार, आप सुन रहे ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी संगीत प्रेमी मित्रों का स्वागत है। हमने पहले भी समझा है संगीत का मानव जीवन में क्या रोल है, या संगीत कैसे हमारे जीवन को परिपूर्ण करता है। जैसे बादल बिना सूरज की रोशनी आकर्षक नहीं हो सकती, सृष्टि चक्र में रात और दिन अविरत होते ही रहते हैं। अर्थात दिन के होने से रात का महत्व और रात के होने से दिन का महत्व हम जान सकते हैं। वैसे ही एक इंसान हर सांस में संगीत का संपूर्ण रूप से लाभ उठा सके तो गम के पलों में भी वो आत्मविश्वास के साथ फिर से अपनी जीवन यात्रा तय कर सकता है। तो आइए ऐसे महत्वपूर्ण संगीत की भूमिका जो हमारे जीवन में हमेशा ही रहती है, इसको समझने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ मौजूद है श्यामली जी। श्यामली जी, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हाँ गीता जी, आपको भी प्रणाम करती हूँ, जितने सारे लिसनर है सबको मैं प्रणाम करती हूँ।
0: श्यामली जी, पिछले एपिसोड में हमने पटदीप राग के बारे में आपसे जानकारी ली।
1: हाँ जी,
0: आगे आप हमें क्या सिखाने वाले हैं?
1: आगे हम आज तो बंदिश लेकर आए हैं, तान लेकर आए हैं
0: जी,
1: वो कराना है। तो अगर लिसनर जो है बंदिश लिख लेते हैं तो अच्छा है ना
0: जी।
1: तो
0: जी,
1: मैं बोलना शुरू करती हूँ। ताल तीन ताल की है, मैंने पहले बताया कि पांच मात्रा की मुखड़ा है। मैं तोड़े संग, ये जो है पांच मात्रा की मुखड़ा है। मैं तोड़े संग ना जाऊ पियार वा ढीट लंगर वा, मैं तोरे संग ना जाऊ पियार वा ढीट लंगर वा, बस इतना तक है साई।
0: अच्छा,
1: ठीक है। अंतरा है, हमारी तुम संग ना ही बने रे, हमारी तुम संग ना ही बने रे, रात रहे तुम सौतन दिंग वा, मैं तोरे संग ना जाऊ। अच्छा। अभी हम क्या करते हैं, ये बंदिश को सुर में सजा देते हैं जैसे हमने किया
0: जी।
1: ठीक है।

0: गुरु जी के पास शिक्षा लेते हैं तो अच्छा है।
1: कैसे
0: उसको बस ऐसे कैसे उसको थोड़ा सा बिस्तर करना है, कैसे करना है, मेरे पास तो अभी तबला नहीं है, लेकिन तबला के साथ जैसे अच्छा लगता है
1: उससे मैं ताल बिठा के वो आराम से सीख सकते हैं।
0: जी जैसे हमने किया ना सुर में भी।

0: ऐसे आएंगे, थोड़ा रिदिम से करना है, करने के बाद वो आसानी से उठ जाएंगे।
1: अच्छा okay? श्यामली जी, इसी के साथ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में हम सभी सुनेंगे पटदीप राग से संबंधित एक मीठा सा गीत। पुनः हम लौटते हैं संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 90.4 FM।

0: पुनः आप सभी श्रोता मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में स्वागत है। ब्रेक में आपने एक सुंदर सा मीठा सा गीत का आनंद लिया। ब्रेक से पहले हमने बंदिश सीखी।
1: हाँ जी,
0: आगे श्यामली जी हमें पटदीप राग में क्या सिखाएंगे?
1: हाँ, थोड़ा सा तान भी करना है ना, तान बिना संपूर्ण नहीं होता है। तान करते हैं अगर शास्त्रीय संगीत में द्रुत ख्याल में थोड़ा तान नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे अच्छा। उसको थोड़ा बोलतान करेंगे, तान करेंगे, तब उसको संपूर्णता आते हैं। ठीक है,
0: पूरा ही मेरे को लगता है पैकेज होता है।
1: पैकेज होता है,
0: आपने सही संगीत बात है। में भी हर राग का एक पैकेज होता है। हाँ, ये अगर इसमें से कुछ एक भी कमी होती है तो पूरा राग संपूर्ण नहीं होता।
1: जी जी, चलो मैं करके सुनाती हूँ।
0: हाँ जी।

0: ये तान।
1: हाँ जी, तान के साथ
0: आकार भी।
1: हाँ, तान आकार भी किया है, बिस्तर भी, थोड़ा सा बिस्तर भी के अंतरा में बिस्तर भी किया है। ठीक है, अंतरा स्थाई अंतरा की तान किया हमने।
0: जाते जाते मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि ये जो आप बोल रहे हैं सभी राग की अपनी अपनी बंदिश होती है।
1: हाँ जी।
0: तो कोई भी गुरु के पास यही बंदिश मिलेगी या अलग अलग?
1: ऐसे कोई बात नहीं, सबके गुरु के पास अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, हमने जैसे बचपन में सीखा है, जैसे हमने गुरु के पास शिक्षा लिया है, वही बंदिश करती हूँ। बीच अच्छा। बीच में दूसरा भी बंदिश करती हूँ।
0: अलग कलेक्शन भी होगा?
1: हाँ, अलग, जैसे करती हूँ ना, कभी कभी दो बंदिश करती हूँ ना, जैसे हमें अभी भी किया है, जो हमने पिछले एपिसोड में हमने गीत किया है, तो वो भी बंदिश रूप से ले सकता है। एक तल के ऊपर थे, तीन तीन तीन तीन करके 12 मात्रा में थे, तो वो बंदिश भी हो सकता है।
0: ये जरूरी नहीं है कि सभी गुरुजी के पास एक ही जैसी बंदिश हो, अलग अलग बंदिश में भी सीख सकते हैं।
1: जैसे सिखा रही हूँ, अगर गुरु के पास जैसे शिक्षा लिखता है वही सही है। जो गुरु देते हैं वही सदगुरु है, वही देते हैं।
0: जी,
1: जो जैसे सदगुरु है सच ही देते हैं, गुरु के पास वही सच मिलता है।
0: अच्छा,
1: ठीक है।
0: श्यामली जी, जाते जाते आज आप हमें क्या सुनाने वाले?
1: प्रदीप राखी पर बहुत सुंदर एक लता जी का कंपोजिशन है, शर्मिली फिल्म है,
0: शर्मिली
1: वो लता जी का है, मेघा छाए आधी रात। अगर ये गीत नहीं करेंगे तो प्रदीप राख अधूरा हो जाते हैं। तो मैं ये करना चाहती हूँ, कोशिश करती हूँ। ठीक है
0: जी।

0: वाह बहुत सुंदर,
1: थैंक यू।
0: मैं भी बोलती हूँ मैं भी क्या करूँ क्योंकि समय तो अपने समय पर देता है।
1: बहुत प्रदीप राग की पर ये जो गीत है इतना सुंदर है, लता जी ने भी इतना अच्छा खूबी निभाए हैं।
0: जी जी, और इसके सारे शब्द भी
1: है, हमने अब बताया ना प्रकृति इसको शांत है, शांत प्रकृति का है। पिछले एपिसोड में थोड़ा चंचल था बीच जो था, तो अभी ये जो राग इतना प्रकृति शांत,
0: जी
1: शाम की राग है ना, 3 से 6 बजे अगर करते हैं प्रदीप राग प्रेजेंट करते हैं तो कितना अच्छा है ना।
0: जी जी श्यामली जी, इसी के साथ समय देता है हमको इजाजत, पुनः मिलेंगे हम अगले हफ्ते संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। श्रोता मित्रों, आपके कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कुछ पूछना चाहते हो संगीत के विषय में, आप हमें जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9414151415। फिर से रिपीट करती हूँ, हमारा नंबर है 9414151415। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4 FM।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है? ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी?

0: मर्जी से चलता है, हमारी मर्जी से चलता है, हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं। कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज़, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा। और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है, किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: अगर आप किसी से रास्ता पूछें और वो गलत बता दे तो कितना घूम जाते हैं, है ना? समझ ही नहीं आता कि थोड़ा और आगे देख लिया जाए या फिर पीछे से टर्न लिया जाए। बस राठौड़ परिवार में अभी कुछ वैसा ही माहौल है। सबने कड़वी बातें बोल तो दी हैं और घर के बड़े यानी भगवत सिंह राठौड़ जी ने निर्देश दिया कि पहले होगी पेट पूजा, फिर होगा काम दूजा, यानी लड़ाई को टेम्पररी रूप से स्थगित कर दिया गया है। अब ब्रेक के बाद आग और भड़केगी या फिर शांत होगी, चलिए देखते हैं।
1: जमाई साहब, नाश्ता शुरू कीजिए।
2: माँ साहब, मैं बस आता हूँ, आप लोग शुरू कीजिए।
1: लेकिन जमाई साहब, आप कुछ तो खाइए फिर चले जाइएगा।
2: नहीं, मैं अभी बाद में लेता हूँ।
3: अरे आपके पास कौन सा काम है फला जमाई साहब?
4: इधर की बात उधर करने से तो अच्छा है इंसान कोई काम ना करे।
3: क्या कहा आपने, क्या कहा आपने? मैं क्या कुछ नहीं करती इस घर में? हाँ, आपको क्या पता, नाश्ता करके निकल जाएंगे अपने काम पे। इस घर में मैं ना हूँ तो कोई काम ना हो ठीक से। क्या हुआ देवर जी, कोई प्रॉब्लम है का?
5: नहीं तो बड़ी भाभी, बस गले की खराश थी।
3: तो पानी पी लीजिए, नहीं तो राजकुमारी से कह के काढ़ा बनवा दे।
6: हाँ हाँ देवर जी, अभी बना लाती हूँ मैं। थोड़ा सा करेला, थोड़ा सामने वाले पेड़ की छाल और हरे नीम के पत्ते के साथ बस दो बूंद गरम घी।
5: नहीं मतलब नहीं, जरूरत नहीं है भाभी, मैं एकदम ठीक हूँ। देखिए, गा के सुनाओ।
7: नहीं, नहीं।
4: किशन, माना तुम कविता लिख लेते हो पर तुमसे अच्छा मेरा पुराना टेप रिकॉर्डर गाता है।
5: क्या बड़े भैया, आप भी। वैसे आपका वो पुराना टेप रिकॉर्डर तो खराब हो गया था ना, उसमें तो एई एई की आवाज आ रही थी।
3: पुराना टेप रिकॉर्डर आपने तो उसी कबाड़ी वाले को दे दिया था ना, जिसका मोल बड़ा कम लगाया था उस नालायक ने।
4: वो मतलब, अरे क्या मेरी बात लेके बैठ गए? कोई जमाई साहब को तो देखो, अब तक आए नहीं, हम लोग नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं भाई।
8: शांति, जाओ जमाई साहब को लेकर आओ।
6: मैं नहीं जाऊंगी वीरेंद्र भैया, बच्चा थोड़ी है, खुद ही आ जाएगा।
1: हे राम, किस मुहूर्त में पैदा हुई थी तू? कोई अपने पति को ऐसे बोलता है क्या?
6: हाँ, आप भी मुझे ही बोलो, इस घर में मुझे कोई नहीं समझता है।
5: शांति दीदी, बस हाँ, ज्यादा फिल्मी हो रहे हैं आप, मैं जाता हूँ जीजा जी को बुलाने।
0: वैसे कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, पर ये बहस सालों से चली आ रही है कि फिल्मों में वही दिखाते हैं जो समाज में हो रहा है, या फिर फिल्मों में जो देखते हैं वो समाज में होने लगता है। वैसे जो हम देखते हैं सुनते हैं, भाई उसका असर मन पर तो पड़ता ही है। फिलहाल शांति जी अपने दर्द को सबसे बड़ा मान बैठी हैं। आखिर उनके पति बाकी पतियों की तरह कमा जो नहीं रहे, और उनके पति सूरजमल कुछ न कर पाने का दुख और जिल्लत के बोझ को झेलकर अपने गम छुपाए कमरे में बैठे हैं। किशन उन्हें बुलाने गया है, अब देखते हैं क्या वो कामयाब होगा। चलिए
5: जीजा जी, मैं अंदर आ जाऊं।
2: किशन, अब अभी जाऊं यहाँ से।
5: जीजा जी, आप रो रहे हैं।
2: नहीं, किसने कहा? जाओ जाओ, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है।
5: जीजा जी प्लीज, मुझे अंदर आना है, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकता, मैं भी तो आपका भाई जैसा हूँ। जीजा जी, ये लीजिए, पानी पीजिए।
2: देखो किशन, मैं यहाँ जब से आया हूँ तब से कोई खुश नहीं है, ऊपर से शांति भी नाराज है। वो सही कहती है, मैं ही नकारा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ उसके लिए। सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया है।
5: जीजा जी, जो भी हुआ है उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, और आप इतना कुछ होने के बाद भी दोबारा कोशिश कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है।
2: क्या फायदा इस कोशिश का जो रंग ना लाए।
8: जमाई सा, मैं कुछ कहूं?
2: भैया, आपने तो मुझे शुरू से बहुत हौसला दिया है, लेकिन मैं
8: जमाई सा, आप रो लीजिए, लेकिन मैं बस इतना कहूंगा कि हम आपको ससम्मान इस घर में जगह दे रहे हैं, और आपके काम करने या ना करने से ये कम ज्यादा नहीं होगा।
5: माफ कीजिएगा जीजाजी, शांति दीदी तो अशांति करके रखती है पूरे घर में। बचपन में एक बार उनको मार्केट नहीं लेके गए थे बड़े भैया, क्या हंगामा मचाया था, सारे घर के शीशे तोड़ दिए थे।
2: कोई रिफंड प्रोसेस है क्या इसका?
8: जमाई सा, आपको तो सिर्फ उल्टा सुनना पड़ता है, मुझे तो खाना भी पड़ता है, वो भी चुपचाप।
5: इसी बात पे अर्ज किया है।
8: बोल भाई बोल।
5: वो नहीं है लेकिन उनकी महक है हवाओं में, वो नहीं है लेकिन उनकी महक है हवाओं में, उन्हें इल्म भी नहीं बस वही है हमारे ख्यालों में।
8: हाँ? ये किसकी बात करने लगा?
5: नाश्ते की भैया, भूख लगी जोरों से और कुछ नहीं सूझ रहा अब मुझे।
8: तू भी किशन, चल चलिए जमाई सा नाश्ता करते हैं।
6: जमाई सा अब तक आए नहीं, इतनी देर हो गई।
7: जमाई सा रो रहे होंगे, छोटी छोटी बातों पे औरतों से ज्यादा रोने लगते हैं।
6: माँ सा, मैं देख कर आती हूँ क्या हुआ।
9: माँ मैं जाती हूँ, मैं बताती हूँ उनको कि इस शांति की बात को ज्यादा सीरियसली ना लें, इसकी बातें इसको ही समझ नहीं आती है।
10: दीदी मैं चुप बैठी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलोगी आप।
9: वाह शांति और शांत, वाह वाह ये तो चमत्कार है। अगर तूने उन्हें खरी खोटी ना सुनाई होती तो अभी सब अच्छे से बैठ करके नाश्ता कर रहे होते।
10: दीदी वैसे तो बड़ी फेमिनिस्ट बनकर घूमती हो आप, अभी मेरा साथ नहीं दे सकती आप?
9: शांति, फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं होता कि लड़की की गलती हो तो भी उसका साथ दिया जाए।
11: शांति।
10: पर पापा ये।
11: बस बेटा अब बस कर, अगर गलती जमाईसा के भी होती ना तब भी ऐसे ताने कसने से नहीं हो जाती, और थोड़ा सा उनका दुख समझ, कितनी बड़े परेशानी से निकले हैं वो, अभी तुझे तो उनका साथ देना चाहिए।
10: पापा सिर्फ अभी की बात नहीं है, वहाँ पर भी घर में यही होता है, इनको समझ में ही नहीं आती है दुनियादारी।
6: और तुझे आती है?
11: तुम लोग डिसाइड कर लो, समस्या का हल चाहिए या सिर्फ नाराजगी से पेट भर लोगे?
6: हल चाहिए।
11: तो बस हो गया अब।
4: शांति, रागिनी, नाश्ता ठंडा हो गया है, जाओ जाके राजकुमारी की मदद करो, गरम करके लेके आओ, जाओ।
12: लो आ गए जमाईसा। जमाईसा अब बैठिए, बस नाश्ता गरम ही हो रहा है।
5: माँ माहौल तो ठंडा है ना यहाँ का, वो गरम नहीं होना चाहिए।
3: अरे कोई जमाईसा के लिए गरम गरम दाल बाटी लेके आओ। जमाईसा आप खाइए, मेरी रेसिपी है, एकदम स्वादिष्ट।
5: इनको क्या हो गया, बड़े प्यार से बात कर रही।
4: अरे भूख लगी है ना, अभी गुस्सा दिखाने से फिर जमाई सा चले गए तो दाल बाटी नहीं मिलेगी।
6: चलिए चलिए सब लोग खाइए, नाश्ता ठंडा हो रहा है, ये लीजिए। हाँ बच्चों तुम लोग इधर आ जाओ।
3: अरे वाह, लाओ लाओ, मुंह में पानी आ गया मेरे तो।
1: वाह राजकुमारी, आज तो तूने कमाल कर दिया, बड़ी स्वादिष्ट दाल बाटी बनाई है।
6: थैंक यू मासा, आपसे ही तो सीखा है, इसमें मैंने अपना कुछ भी ऐड नहीं किया।
8: धन्यवाद भगवान का, बच गए।
1: चलो चलो सब लोग खाओ गर्मा गर्म दाल बाटी चूरमा। इस वक्त तो दूध वाला पेपर वाला कोई नहीं आता, अब कौन आ गया गेट पे?
8: शांति गेट खोलो।
6: अरे किशन जाओ ना गेट खोलो।
9: अरे अरे गेट खोलो ना।
10: जाइए गेट खोलिए।
4: कोई तो जाओ।
6: अरे गेट खोलिए।
4: कोई तो जाओ।
8: शांति गेट खोल दो।
10: अरे गेट खोलो तो कोई।
9: हाँ, किसी को उठ के तो जाना नहीं है, सभी को एक दूसरे को बोलते रहते, बस यही तो ऐसे ही
8: कर क्या रहे हैं। अरे कोई देखो, बाहर कोई है।
3: अरे कौन है गेट पे?
8: पुलिस।
11: पुलिस?
8: अरे कौन
13: पुलिस?
9: यहाँ तो कोई घरेलू हिंसा भी नहीं हुई, वैसे मेंटल हैरासमेंट तो किया है इसने, ये कहीं शांति को पकड़ने तो नहीं आए?
10: क्या दीदी, मुझे क्यों पकड़ेंगे, मैं तो कितनी मासूम हूँ।
8: ये ना जरूर किशन की घटिया पोएट्री के लिए उसे पकड़ने आए होंगे।
5: भैया कहीं परेशान होकर जीजाजी ने तो पुलिस नहीं बुला ली?
14: मैंने नहीं बुलाई, मैं तो कमरे में था।
4: अरे तुम लोग चुप हो जाओ, मैं देखता हूँ।
0: क्या लगता है आपको, पुलिस क्या करने आई होगी राठौड़ परिवार में? अब कौन सा नया ट्विस्ट आने वाला है इन घर वालों के जीवन में, भाई ये तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। वैसे कितना कुछ हो गया ना आज, सोचिए बचपन में जब एक दूसरे से रूठते थे तो कैसे फटाफट मान भी जाते थे, काश वो मासूमियत हमेशा रहती। आज हम एक दूसरे से ऐसे नाराज होते हैं कि उनका दुख भी दिखाई नहीं देता, ईगो इतना बड़ा हो जाता है कि मेरी बात, मेरी परेशानी, मैं सही, बस मैं ही रह जाता है। बाद में जब ये मैंपन का नशा उतरता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। कबीर दास जी ने तो कहा है कि प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। परिवार मतलब प्रेम, प्रेम मतलब मैं नहीं हम। खैर अब राठौड़ परिवार तो आनंद ले रहे हैं राजस्थानी पकवान का, मैं भी चलता हूँ क्योंकि मेरे पेट के चूहे भी अब मुझे और बातें नहीं करने देंगे, है ना? फिर मिलेंगे जल्दी। आखिर आपको बताना भी तो है ना कि पुलिस क्यों आई है राठौड़ परिवार के दरवाजे पर। फिलहाल के लिए नमस्ते, टाटा, बाय बाय, घड़ी खम्मा दोस्तों।
15: घर ऑन एयर पात्र परिचय। दादाजी भगवत सिंह राठौड़, आरजे ज्ञानेश्वर। दादी जी अंबिका देवी राठौड़, आरजे संध्या। चाचा किशन सिंह राठौड़, आरजे श्रीनिधि। ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौड़, आरजे रोहित। ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा। बुआ रागनी राठौड़, आरजे कृष्णा। बुआ शांति राठौड़, आरजे मोना। वीरेंद्र राठौड़, आरजे विशाल। राजकुमारी राठौड़, आरजे आरुषि। बच्चे रूहानी, अमीक्षा। नैरेटर आरजे अमित।

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस वेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

ओम शांति। आज है 7 सितंबर 2026 और अभी हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बहुत सुंदर तरीके से बाबा ने एक विश्लेषण किया है। बाबा जब कहते हैं भगवान वाच, तो मनुष्य समझते हैं कि शायद ये ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं भगवान वाच, परंतु बाबा कहते हैं कि मनुष्य को ये समझाना है कि कैसे भगवान वाच अर्थात निराकार भगवान इस संसार में अवतरित होते हैं और एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेते हैं, जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता है, परंतु जो ज्ञान सुनाते हैं, राजयोग सिखाते हैं, मनुष्य को देवतुल्य बनाते हैं, नर से सुश्री नारायण, नारी से सुश्री लक्ष्मी समान। तो बाबा कहे यही सबूत है कि कैसे भगवान आकर के हमें इतना ऊंच ये पढ़ाई से बनाते हैं। जैसे कहा गया है कि इस पढ़ाई से मैं तुम्हें राजाओं का राजा, प्रिंस का भी प्रिंस बनाता हूं। तो बाबा कहते वास्तव में इस समय परमात्मा आकर के वो कर्तव्य कर रहे हैं। साथ ही साथ बाबा आज कर्मों की गुह्य गति भी समझाते हैं कि जैसे गीता के अंदर कहा गया है कर्म की गति अति गुह्य है, तो बच्चों को भी हर कर्म करते समय बड़ी सावधानी के साथ कर्म करना है। लौकिक अलौकिक दोनों तरफ कर्म करो साक्षी होकर के। बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया में रहते हैं तो लौकिक संबंध के साथ भी तोड़ जरूर निभाना है, परंतु कोई विकर्म न हो जाए उसका अटेंशन जरूर रखना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम यहां से कृष्ण जैसा प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। आज की मुरली से प्रश्न है, बाबा जब भगवान वाच शब्द बोलते हैं तो कई बच्चे भी मूंज जाते हैं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि भगवान तो गुप्त है। वह समझते हैं शायद इस दादा ने भगवान वाच बोला, परंतु निराकार भगवान को बोलने के लिए जरूर मुख चाहिए ना। बाबा कहते ये वंडरफुल समझने की बात है कि मैं कैसे इनमें प्रवेश कर तुम्हें पढ़ाता।

ओम शांति। भगवान वाच, भगवान क्या कहते हैं? ये भगवान वाच किसने कहा? देखने में तो कोई आता नहीं है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। भगवान वाच किसने कहा? देखने में तो कोई आता नहीं और मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। कोई समझेंगे कि बोलने वाले ही कहते हैं भगवान वाच, लेकिन निराकार भगवान बोल रहे हैं ये सिर्फ तुम ही जानते हो। साकार ब्रह्मा बाबा के द्वारा निराकार भगवान बोल रहे हैं, बाबा कहते ये सिर्फ तुम ही जानते हो। ये कौन बैठा है? भगवान कहाँ है? ये नई बात है ना, इसलिए मनुष्य मूंझ जाते हैं। लेकिन भगवान वाच है जरूर। कहते हैं, मैं बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूं। नर से नारायण अथवा कृष्ण, नारी को लक्ष्मी अथवा राधे बनाने के लिए योग और ज्ञान सिखाता हूं। इनसे और क्या चाहिए? तुमको हम राजाओं का राजा, प्रिंस का प्रिंस बनाता हूं। प्रिंस प्रिंसेस भी तो मंदिर में जाते होंगे ना। विकारी प्रिंस निर्विकारी प्रिंस से कृष्ण को नमन करते हैं, तो मैं तुमको प्रिंस का भी प्रिंस बनाता हूं। श्री कृष्ण जैसा स्वर्ग का प्रिंस बनो। नॉलेज पढ़ने से ही तो बनेंगे ना। डॉक्टर व बैरिस्टर कहेंगे ना स्टूडेंट को कि मैं तुमको डॉक्टर व बैरिस्टर बनाता हूं। बाबा कहते डॉक्टर व बैरिस्टर अपने स्टूडेंट को कहेंगे ना, मैं तुमको डॉक्टर व बैरिस्टर बनाता हूं। परंतु पढ़ेंगे तब तो बनेंगे। बाबा कहते हैं, बच्चे अच्छी रीति समझते हो कि राजयोग सिखलाने वाला एक ही भगवान है, न किसी कृष्ण। राधे कृष्ण तो अलग अलग राजाए के बच्चे हैं, उन्हों की आपस में सगाई होती है, शादी के बाद नाम बदलता है। इसलिए चित्र में भी लक्ष्मी नारायण के नीचे राधे कृष्ण को दिखाया है। हिस्ट्री हॉल में बाबा के सामने जो ट्रांसलेट थी तो उसमें लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे राधे कृष्ण का चित्र दिखाया था। उसके तरफ इशारा करते हुए बाबा ने ये बात कही। अब बाप अच्छी रीति समझाते हैं कि ब्रह्मा भी नंबर वन भगत था। पिछाड़ी में नारायण की पूजा करते थे, श्री कृष्ण की भक्ति की, बसरी नारायण की भक्ति की, एक ही बात है। कृष्ण ही बड़ा होकर नारायण बनता है। अब तुमको नर से नारायण बनने के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब इनकी आत्मा भी पढ़ रही है, ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी पढ़ रही है, फिर भविष्य में श्री कृष्ण बनती है। बाप कहते, बच्चों तुम ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो, फिर काम चिता पर बैठ सांवरे बन गए हो। यह है कंसपुरी, मैं तुमको कृष्णपुरी ले जाने के लिए आया हूं। बाबा आया ही है हम बच्चों को कृष्णपुरी ले जाने के लिए। श्री कृष्ण ही सर्वगुण संपन्न, सोले कला संपूर्ण है, यहां कोई में सर्वगुण है नहीं। मैं आया हूं बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनाने। बनना है योग बल से। संपूर्ण निर्विकारी कैसे बनेंगे? योग बल से। बाहुबल है हिंसक लड़ाई, जो तीर कमान से होती थी, फिर बंदूक को तलवारों से हुई, अब तो होती है बॉम्ब से। खुद कहते हैं, हम ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जो घर बैठे सब खत्म हो जाएंगे, फिर मिलिट्री क्या करेगी? बाप कहते, मीठे मीठे बच्चों ये पाठशाला है, मैं तुमको प्रिंस श्री कृष्ण जैसा बनाता हूं, जो फर्स्ट प्रिंस सतयुग का था वह अब 84 जन्म लेकर कलयुग में बेघर बना है।
भारत में ही उनका राज्य था, फिर पुनर्जन्म लेना पड़े ना। श्री कृष्ण को भगवान कहते तो भगवान फिर पुनर्जन्म में कैसे आएगा? बाबा कहते अगर श्री कृष्ण को भगवान कहते तो भगवान फिर पुनर्जन्म में कैसे आएगा? भगवान तो निराकार है, वह है ही एक रचयिता, बाकी सब है रचना। तब तो कहते हैं कि हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। बाप समझाते हैं कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी आपस में भाई बहन ठहरे तो फिर क्रिमिनल असॉल्ट कैसे हो? तुम वर्षा एक बाप से लेते हो भविष्य के लिए, अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो शांति धाम सुखधाम में कैसे जाएंगे? पुकारते भी है हम पतित बन गए हैं, पावन बनाने आओ, तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। पावन बनने के लिए बाप कहते हैं मुझे याद करो, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। तुम सब आत्माएं अब वापस वानप्रस्थ में जा सकती हो, इसीलिए वानप्रस्थी हो। ऐसा कोई गुरु रास्ता बता न सके, ये ज्ञान है ही एक बाप के पास। वही पतित पावन निराकार है, बाप कहते हैं कि मुझे याद करो थोड़े टाइम के लिए, मैंने इस तन का लोन लिया है। थोड़े टाइम के लिए ही बाबा ने इस तन का लोन लिया है, शरीर बिगर आत्मा कैसे बोल सकेगी? भगवान वाच है कि मैं बूढ़े साधारण तन में प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ाता हूं। मैं गर्भ में नहीं आता हूं, गर्भ में आने वाले को तो पुनर्जन्म में आना पड़े, मैं एक ही बार आता हूं। प्रकृति का आधार मुझे जरूर चाहिए, मैं इसमें बैठ तुमको पढ़ाता हूं। यह तो पहले अपना जवाहरात का धंधा करता था, कोई गुरु ने नहीं सिखाया, अचानक ही बाप ने प्रवेश किया। अगर गुरु ने सिखाया होता तो और भी शिष्य होते। अचानक ही एक दिन बाप ने प्रवेश किया, करण करावनहार होने कारण इससे कर्तव्य कराते रहते हैं, यह भी सीखता जाता है, ब्रह्मा बाबा भी सीखता जाता है, तुम भी साथ में सीखते जाते हो। बोलते हैं तुमको परंतु सुनता पहले मैं हूं। ब्रह्मा बाबा कहते हैं शिव बाबा बोलते हैं तुमको परंतु सुनता पहले मैं हूं। पढ़ाने तुम बच्चों को आता हूं परंतु इनकी आत्मा भी पढ़ती रहती है। बच्चों को राजयोग सिखाने आया हूं, ऐसा कभी कोई पढ़ाते नहीं है। यह है पावन बनने की बात, यह संगम युग है ही पुरुषोत्तम बनने का। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण था, स्वयंवर के बाद उनकी डिग्री कुछ कम हो जाती है, इसीलिए श्री कृष्ण की महिमा बहुत है। नाम ही है श्री कृष्णपुरी, इनको कहा जाता है कंसपुरी। बाकी कहानी बनाई है श्री कृष्ण और कंस की। बच्चों को समझाया है कि परिपक्व अवस्था होने से भक्ति आप ही छूट जाएगी। तुम कभी कोई को ऐसा नहीं कहना कि भक्ति न करो, उनको ज्ञान देना है। बाबा कहते पहले तुमको ज्ञान देना है, बाप तुमको ज्ञान दे स्वर्ग का प्रिंस बनाने आए हैं। श्री कृष्ण भी स्वर्ग का मालिक था, अब नहीं है, फिर से वह भी राजयोग द्वारा बन रहे हैं। तुमको भी पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। हेवन की स्थापना करने वाला है हेवनली गॉड फादर, वही आकर नई सृष्टि रचते हैं, वह करेगा तब जब कलयुग पूरा होगा। सतयुग त्रेता में नहीं आते, कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम युगे आता हूं। उन्होंने कल्प अक्षर निकाल सिर्फ युगे युगे लिख दिया है, तो भी चार युग है, पांचवा है ये संगम युग। अच्छा फिर तो पांच अवतार मानो,
परंतु इतने कच्छ मच्छ परशुराम अवतार होते हैं क्या? ये सभी है शास्त्रों की बातें। धर्म का नाम और भारत का नाम ही बदली कर दिया है। धर्म का नाम हिंदू हो गया और भारत का नाम इंडिया हो गया, हिंदुस्तान हो गया, तो दोनों को बदली कर दिया है। हिंदू धर्म और हिंदुस्तान कह देते हैं, भारत नाम क्यों बदलना चाहिए? यदा यदा ही धर्मस्य, उसमें भी भारत का अक्षर आता है। यदा यदा ही धर्मस्य जब कहते हैं तो श्लोक में भारत अक्षर आता है। बाप समझाते हैं, तुमने कोई एक जन्म थोड़ी भक्ति की है, द्वापर से की है। भक्ति भी पहले अभिचारी थी, सिर्फ शिव की भक्ति करते थे। जिस शिव बाबा ने ही भारत को स्वर्ग बनाया था और अब फिर से स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं। जिस शिव बाबा ने भारत को स्वर्ग बनाया और अब फिर स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, तो पतित शरीर में बैठ बनाते हैं कि मैं आता ही हूं पतित शरीर, पतित दुनिया में पतितों को पावन बनाने। भक्ति मार्ग में तो फिर भी मेरे लिए बड़ा भारी मंदिर बनाते हैं। कितनी क्लियर बात है। इनमें बाबा की प्रवेशता हुई और गीता आदि पढ़ना छोड़ दिया। शिव बाबा ने जैसे ही प्रवेशता की तो सब कुछ छोड़ दिया, भक्ति छूट गई। अनायास ही तो छोड़ा, तुमको कोई ने कहा नहीं कि भक्ति नहीं करो। अब तुम बच्चों को बाबा समझाते हैं कि फिर से मैं तुमको कृष्णपुरी का मालिक बनाता हूं। श्री कृष्ण की फिर 8 डिनास्टी चलती है। पहले कहेंगे प्रिंस ऑफ सतयुग, फिर बनता है किंग ऑफ सतयुग। 8 पीढ़ी उनकी चलती है। उस समय तो दूसरी राजाई होती नहीं है। अब बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी सतयुग के प्रिंस बनो। भक्ति में कोई सुख नहीं है, ज्ञान से ही तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। कोई का बाप मर जाता है तो उनसे पूछा जाए तुम्हारा बाप कहाँ गया, कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। समझते हैं आत्मा और शरीर दोनों गए, लेकिन शरीर तो यहां ही छोड़ गए, बाकी गई आत्मा। इसका मतलब पहले नरक में था, आत्मा शरीर छोड़ स्वर्ग में गई, फिर उसमें रोने की क्या दरकार है? स्वर्ग अब यहां है क्या? परंतु समझते नहीं है, कह देते सब ईश्वर का हुक्म है, सुख दुख सब ईश्वर देता है, सब ईश्वर के रूप है। परंतु बाप कहते हैं कि मैं बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूं? बाप से बच्चे कब दुख मांगते हैं क्या? बाप तो बच्चों को लायक बनाकर प्रॉपर्टी दे जाते हैं, बाकी दुख तो हर एक को कर्मों के अनुसार ही मिलता है। बाप कहते हैं अभी बच्चे आदि कुछ नहीं मांगो। बाबा कहते अभी बच्चे आदि कुछ नहीं मांगो, अब ये प्रॉपर्टी आदि सब खत्म होने वाली है, फिर तुम्हारे बच्चों को क्या मिलेगा? इतना समय ही नहीं जो तुम्हारी प्रॉपर्टी का बच्चा मालिक बन सके। बच्चा बड़ा हो तब तो मालिक बने, परंतु इतना टाइम ही नहीं है। विनाश सामने खड़ा है। मनुष्य तो कहते हैं कि कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो विनाश विनाश करते रहते हैं। कहानी है ना, शेर आया, आखिर तो आया और खा गया। सब समझते हैं कि थोड़ा थोड़ा काल आएगा, ये तो होता ही रहता है, लेकिन तुम कहते हो कि महाकाल आया हुआ है। अब काल नहीं, महाकाल आया हुआ है। शिव बाबा कालों का काल आया हुआ है, जो सभी आत्माओं को वापस ले जाएगा। तो शरीर तो जरूर छोड़ना पड़े, इसलिए बाबा कहते हैं योग से पवित्र बनो। आत्माओं को पवित्र बनाए फिर वापस ले जाएंगे,
अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो बहुत सजाएं अंत में खानी पड़ेगी और उच्च पद भी पा नहीं सकेंगे। श्री कृष्णा नंबर वन पास विथ ऑनर है, उनको स्कॉलरशिप मिलती है, 21 जन्म राज्य पाते हैं, कितना सहज समझाते हैं, बुद्धि में बैठता भी है फिर गुम हो जाता है, किसको भी भक्ति छुड़ानी नहीं है। बाबा की श्रीमत, किसी को भी भक्ति छुड़ानी नहीं है, बाप आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने। कहते मैं कल्प पहले मिसल, फिर उसी साधारण तन में आया हूं, कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूं। यह है ऊंच से ऊंच पढ़ाई, इससे ऊंची और कोई पढ़ाई ही नहीं है। तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान है, फिर भारत ही सतो प्रधान बनता है, और धर्म वालों ने इतना सुख नहीं देखा है तो दुख भी नहीं देखा है। बाहर वालों के पास पैसे तो बहुत है तो गरीब देश को कर्ज देते हैं, उन विचारों को पता नहीं है, ये तो रिटर्न हो रहा है, बिल्कुल घोर अंधेरे में कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, पिछाड़ी में हाय हाय कर उठेंगे, फिर तुम कहेंगे टू लेट, क्योंकि लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर क्या करेंगे, बम्बोर को आग लग जाती फिर तो टू लेट हो जाता है। इसलिए बाप कहते बच्चे अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करते जाओ। बाबा कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं, बाबा को आकर कहते हैं कि बाबा अगर हम पूजा नहीं करते हैं तो वो कहते हैं ये तो नास्तिक बन गया है। बाबा राय देते हैं कि साक्षी होकर बाबा की याद में रहो, थोड़ी थोड़ी पूजा बाहर से कर दो। एक होता है दिल से करना, दूसरा होता है राजी करने के लिए करना। अंदर में तुमको शिव बाबा को याद करना है, अगर कोई तंग करते हैं तो पूजा कर दिखाओ तो वह खुश हो जाएंगे, यह कोई पाप का काम नहीं है। बाबा कहते हैं अगर आपको पूजा करनी पड़े तो ये कोई पाप का काम नहीं है। बाबा तो बहुतों को कहते हैं शादी आदि पर भले जाओ, दोनों तरफ तोड़ निभाना है, वहां भी सुनाते सुनाते कोई ना कोई को तीर लग जाएगा, युक्ति से चलना है। बाप का फरमान है कि अब पतित नहीं बनना है, पवित्र बनने से ही तुम श्री कृष्णपुरी के मालिक बनेंगे। शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और विश्व के मालिक बन जाएंगे। बच्चों ऐसी ऐसी युक्ति से अपने मित्र संबंधियों को समझाना है। वह है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। यह रूहानी यात्रा बाप सिखलाते हैं, कहते हैं कि मामेकम याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे और सब दुख दूर हो जाएंगे। कोई विरला व्यापारी व्यापार करे अर्थात वैकुंठ की बादशाही लेवे, श्रीमत पर चलते रहो, ऐसे भी ना हो पैसे आदि कहां मुफ्त में जाए, कुछ फल नहीं निकले। बाबा कहते ऐसे भी ना हो पैसे आदि कहीं मुफ्त में जाए, कुछ फल भी नहीं निकले, घर बार भी संभालना है, बच्चों की पालना भी करनी है, सिर्फ श्रीमत पर चलना है। राय लेनी है कि बाबा इस हालत में हम क्या करें। बाबा बच्ची कहती है कि हम शादी करें, तो बाबा कहते कि शादी करानी ही पड़ेगी क्योंकि उनका हिस्सा है, उनको दे दो। बाप सिर्फ समझाते हैं, फिर भी कुछ पूछना हो तो पूछकर श्रीमत पर चलो। बच्चों को बाप की आज्ञा पर चलना है, इसमें ही कल्याण है, बाबा की आज्ञा पर चलने में ही कल्याण है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को
या प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, हर कर्म साक्षी होकर शिव बाबा की याद में करना है, लौकिक अलौकिक दोनों तरफ तोड़ निभाना है, लौकिक से युक्ति युक्त चलना है। दूसरी पॉइंट, इस समय अंतिम जन्म में भी यह वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है इसलिए पावन जरूर बनना है, कोई भी बंधन नहीं बनाने हैं। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, फरमान की पालना द्वारा सर्व अरमानों को खत्म करने वाले माया प्रूफ भव, फरमान की पालना द्वारा सर्व अरमानों को खत्म करने वाले माया प्रूफ भव। अमृत वेले से लेकर रात तक दिनचर्या में जो भी फरमान मिले हुए हैं उसी प्रमाण अपनी वृत्ति, दृष्टि, संकल्प, स्मृति, सर्विस और संबंध को चेक करो, जो हर संकल्प हर कदम फरमान को पालन करते हैं उनके सब अरमान खत्म हो जाते हैं। अगर अंदर में पुरुषार्थ का व सफलता का अरमान भी रह जाता है तो जरूर कहां न कहां कोई न कोई फरमान पालन नहीं हो रहा है। बाबा कहते, अगर अंदर में पुरुषार्थ का व सफलता का अरमान भी रह जाता है तो जरूर कहां न कहां कोई न कोई फरमान पालन नहीं हो रहा है। तो जब भी कोई उलझन आए तो चारों ओर से चेक करो, इससे माया प्रूफ स्वतः बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का चिंतन करके उन्हें मिटा देना है, यही स्वचिंतन है। अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का चिंतन करके उन्हें मिटा देना, यही स्वचिंतन है। आज का व्यक्त इशारा है, अब अपने दाता स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, जैसे कोई खाली स्थान होता है तो ऑलराउंड सेवाधारी समय प्रमाण जगह भर देते हैं, ऐसे अगर किसी के द्वारा कोई भी शक्ति की कमी अनुभव हो तो भी अपने सहयोग से जगह भर दो, जिससे दूसरे की कमी का भी अन्य कोई को अनुभव न हो। इसको कहा जाता है दाता के बच्चे बन, समय प्रमाण उसे सहयोग की देन देना, उसे सहयोग की देन देना। अच्छा, ओम शांति।